0: लिए उतरे और चौथे दिन अपनी मांग को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दर पर पहुंचते हैं।
1: यहाँ पे आप देखिए कि संसद भवन से बाहर मार्च करते हुए ये तमाम नेता नजर आ रहे हैं और कुछ इस तरीके से लोकतंत्र बचाओ अभियान छेड़ दिया है यहाँ पे इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने। और बैठक के बाद 5 बजे की बैठक के बाद इस तरीके से नारेबाजी और घेराबंदी यहाँ पे विजय चौक पर हम लोग पहुँच गए हैं। ये विजय चौक है, पीछे आप देखें कि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है।
2: मांग तो पूरे देश की जो मांग है कि पूरा जो संरचना है बेईमानी का उसको खत्म किया जाए और ज्ञानेश जी प्रतीक पुरुष हैं जो शील्ड बन के खड़े हैं मोदी जी और अमित शाह जी वो चले जाए।
3: देखिए मुझे लगता है कि जो सारे देशभक्त हैं वो देश में लोकतंत्र को बचाने में लगे हैं, वो चाहे किसी राजनीतिक दल के सदस्य हो या न हो। और जो आज जो वोटर लिस्ट में पूरे चुनाव प्रक्रिया में जो धूल मिलाने का जो काम हो रहा है वो आज के तारीख में सबसे बड़े देशद्रोही का काम है।
4: थी मुझे हंसी आ रही कि सरकार इतनी डर गई, लोग परेशान हो गए। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ब्लैंकेट बैन क्यों लगा रहे, सब क्यों बंद करो, सारे मेट्रो ट्रेन बंद, सारी ट्रेनें बंद, सारे बसेस बंद, दिल्ली में घुस नहीं सकता, इतना डर।
0: इसके दो मकसद हैं, एक तो इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाना, दूसरा ये बताना कि सारे विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा चाहते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने वालों में बड़े नाम थे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, सीपीएम के एमए बेबी, सीपीआई के डी राजा, समाजवादी पार्टी के राजीव राय, सुप्रिया सुले, उमर अब्दुल्ला, मनोज झा और वीसीके के टी तिरुमावलन। जब इंडिया गठबंधन के ये 10 नेता राष्ट्रपति द्रौपदी से मिलने राष्ट्रपति भवन के अंदर पहुंचे तो बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई।
5: एक प्रकार से मैं आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि जब हमने राष्ट्रपति को इलेक्शन चोरी वोट चोरी के बारे में बताया तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने डिनाई नहीं किया। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने यह नहीं कहा कि हिंदुस्तान में चुनाव चोरी नहीं हो रहे हैं। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने उल्टा हमसे कहा कि आप सबूत हमारे पास लाइए और यही ग्रुप खुशी से जो पूरा का पूरा सबूत हमने कलेक्ट किया है राष्ट्रपति के पास ले जाएगा, ले जाने के लिए तैयार है। पूरा देश जानता है, स्टूडेंट्स जानते हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है। नरेंद्र मोदी इसके आर्किटेक्ट हैं, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार इसके इम्प्लीमेंटर्स हैं और इस बात को राष्ट्रपति ने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने आज डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में सोचेंगी और एक्शन लेंगी।
6: हमने तो पॉजिटिव आउटलुक से देखा है कि उन्होंने जो दो चार बात कहा कि आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल गो थ्रू द डिटेल्स एंड हमको सबूत चाहिए, यू प्लीज सेंड अस द डिटेल्स एविडेंस।
7: हमने डिमांड किया है कि फिर से एक बार ईवीएम को निकाल दो और बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराया जाए और दूसरा कि ये वोट चोरी जहाँ जहाँ हो गए वो सबूत उन्होंने मांगा है, वो सबूत हम लोग तैयार कर रहे हैं और सबूत हम दे देंगे।
0: ये लगातार चौथा दिन है जब ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने विपक्ष उतरा है। 6 अक्टूबर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च किया, पुलिस ने बैरिकेडिंग करके विपक्षी सांसदों को रोका और कुछ को हिरासत में लिया, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पुलिस को चकमा देकर आकाशवाणी भवन परिसर में धरना दे दिया और पूरे 8 घंटे तक धरना देने के बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को जबरन हिरासत में लेकर उठाया। 7 अक्टूबर कांग्रेस ने पहले इंडिया गठबंधन के सांसदों को लंच दिया और फिर जंतर मंतर के लिए कूच किया। दिल्ली पुलिस ने दूसरे दिन भी विपक्षी सांसदों की बस को रोका तो राहुल और प्रियंका ने सड़क पर ही ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और आखिर में 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को फिर से हिरासत में लेकर धरना खत्म करवाया। 8 अक्टूबर तीसरे दिन इंडिया गठबंधन के सांसदों ने कनॉट प्लेस में लंच किया और बसों से सीधे राजघाट यानी गांधी समाधि के लिए कूच किया। यहां भी भारी फोर्स की तैनाती की गई, लेकिन राहुल प्रियंका समेत सभी विपक्षी सांसद गांधी स्थल पर बैठकर वापस आ गए। 9 अक्टूबर चौथे दिन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलते हैं और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपते हैं।
8: हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम जनता की अदालत में तो है ही, हम सड़कों पर हैं और वोट चोरी इस देश में नहीं चल सकती है।
9: दैट इज मंडे द इंडिया ब्लॉक पार्टी लीडर्स विल गो टू सुप्रीम कोर्ट।
10: इस बीच बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने संवैधानिक सीमाएं लांघ दी हैं।
11: संवैधानिक संस्थान महामहिम राष्ट्रपति एक व्यक्ति नहीं है, वो देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है। उसको लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो न सिर्फ विचित्र लगता है बल्कि उसमें सच से ज्यादा सियासत की गंध आ रही है। उनका यह कहना कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने उनके आरोपों को स्वीकार कर लिया है, यह दर्शाता है कि जो अभी तक राहुल गांधी देश की हर संस्था के बारे में, हर संवैधानिक संस्था को अपनी राजनीति का शिकार बनाने का दुष्चक्र रच रहे हैं, उन्होंने अब आज ऐसा प्रतीत होता है कि सारी सीमाएं पार कर दी।
10: आज राहुल गांधी चेन्नई में रहेंगे, छात्रों के साथ कार्यक्रम करेंगे और दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने चेतावनी दे रखी है कि भले ही दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति ना दे, लेकिन फिर भी वो जंतर मंतर के लिए कूच जरूर करेंगे।
0: इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छिड़े संग्राम में एकजुटता दिखाई तो 10 अक्टूबर को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर कूच का ऐलान करके टेंशन बढ़ा रखी है।
12: इट इज आवर डेमोक्रेटिक राइट कि अगर हम सरकार से किसी बात पे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो हम अपनी बात को डेमोक्रेटिक और पीसफुल तरीके से रख सकते हैं। आज इस देश में हालात ये हो गए हैं कि एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट पर प्रोटेस्ट करने के लिए हमको प्रोटेस्ट करनी पड़ रही है। मतलब इतना तो ब्रिटिश राज में भी नहीं होता था। अभी मुद्दा तो सेकेंडरी हो गया है, अभी तो ये हो गया कि इनको जंतर मंतर पर पहुंचने ही मत दो। और जो पूरी लड़ाई है वो इसी बात पे थी कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है। हमारी लड़ाई, हमारे जो सवाल हैं, हमारी जो मांगे हैं वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। और जिस तरह से बीजेपी ज्ञानेश कुमार के बचाव में आई है, जिस तरह से तमाम राज्यों में जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पे हमारे लोगों को डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, उससे हमारी लड़ाई और क्लियर हो रही है कि यस बीजेपी एंड द इलेक्शन कमीशन आर वर्किंग टुगेदर, और इसी बात की तो सारी लड़ाई है हमारी।
0: जुलाई में हुए जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन पर दूध की जली दिल्ली पुलिस अक्टूबर में छाछ फूंक कर पी रही है। दिल्ली पुलिस बार बार कह रही है कि 10 अक्टूबर वाले इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है और उसके 3 कारण भी गिना रही है।
13: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है, कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा।
0: पहला, परमिशन 10 दिन पहले मांगनी होती है, जबकि सीजेपी ने 7 अक्टूबर को सिर्फ इंटीमेशन यानी सूचना दी है। दूसरा, पिछली बार परमिशन लेकर सीजेपी ने वादा खिलाफी की। तीसरा, मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर के हालात को देखते हुए परमिशन नहीं दी जा सकती।
14: साहिल, मैं तो क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि मैं परमिशन मांगने नहीं गया था,
15: इन्फॉर्म करने,
14: मैं इन्फॉर्मेशन देने गया था, इंटीमेशन देने गया था फॉर्मल वे में। हम लोगों ने जब अनाउंस किया था, पुलिसिंग का पॉलिसी है कि दे वुड मॉनिटर व्हाट द सिचुएशन इज इन द कंट्री एंड इन दिल्ली, दिल्ली पुलिस वुड डू इट, तो उनको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन था कि क्या होने वाला है। 7 तारीख को फिर मैं गया, वहां पे मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन जो हम लोगों ने लेटर दिया उसमें हमने एसर्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज अस द राइट टू प्रोटेस्ट, लेकिन पुलिस के तरफ से रवैया बहुत खराब था। दे डिड नॉट से एनीथिंग, उन्होंने ये नहीं बोला कि देंगे नहीं देंगे, उन्होंने एक्नॉलेज किया लेटर को एंड एक स्टैम्प डाल के हमें दे दिया। नन ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली पुलिस मेट मी, जबकि लास्ट टाइम उन्होंने 5 राउंड सीनियर ऑफिसर से हमें मिलवाया था, मैंने किया था लास्ट टाइम भी प्रोसेस, लेकिन इस बार बिल्कुल भी कोई सीनियर ऑफिसर मिलना नहीं चाह रहा था. एंड दिस इज अ न्यू टैक्टिक दैट दे हैव अडॉप्टेड.
15: व्हाट इज द टैक्टिक यू थिंक दैट
14: द टैक्टिक इज टू नॉट अलाउ एनी डेमोक्रेटिक डिसेंट इन द कंट्री. दिल्ली ऑल्सो द लास्ट टाइम देयर वर पीसफुल प्रोटेस्ट, इट हैपेंड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, एंड इस बार वो चाहते हैं कि बिल्कुल भी देश का युवा रोड पे ना निकले. एंड वही टैक्टिक इसमें भी दिख रहा है कि कुछ भी इंफॉर्मेशन उनके तरफ से भी हमें ना आए, हमारे से वो सारे इन्फॉर्मेशन ले ले जो हम कोऑपरेट करना भी चाहते हैं. हमने उनको जब मैं मिला था, जो भी अधिकारी था, मैंने बोला था कि वी विल फुली कोऑपरेट विद देम इन द एक्सपेक्टेशन दैट द पुलिस वुड ऑल्सो कोऑपरेट विद अस, बिकॉज द पुलिस इज नॉट दे आर नॉट द वंस हु विल गिव परमिशन वेदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और नॉट. कितना स्ट्रेंज और एब्सर्ड कॉन्सेप्ट है कि सोचिए गांधी जी जब दांडी मार्च निकाल देंगे, वो ब्रिटिशर्स को जाके बोलेंगे साहेब 2 घंटे का टाइम दीजिए मैं दांडी मार्च करके आता हूं. इज दिस हाउ द कंट्री विल फंक्शन? एंड ये गुलामी वाला जो मानसिकता है हमारे जो इंडिपेंडेंस के बाद 80 साल में हमारे अंदर घुसाया गया कि आप परमिशन लीजिए स्टेट से कि उनके खिलाफ ही प्रोटेस्ट करने, तो उनसे परमिशन लीजिए. हाउ एब्सर्ड कि अभी भी हम लोग वही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं 80 साल बाद.
0: लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि उन्हें परमिशन की कोई जरूरत नहीं है.
16: ज्ञानेश कुमार ने परमिशन लिया था 13 करोड़ वोट डिलीट करने से पहले. ज्ञानेश कुमार ने परमिशन लिया था, सुप्रीम कोर्ट तो बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल भी नहीं दिया था फॉर्म 6 के मॉडिफिकेशन का. तो जब ज्ञानेश कुमार बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे 13 करोड़ वोट डिलीट करता है, तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 19, क्या जरूरत है परमिशन?
0: बीजेपी की चेतावनी को देखते हुए दिल्ली में जैसे किलेबंदी कर दी गई है. दिल्ली के सभी बॉर्डर पर फोर्स तैनात हैं, चेकिंग चल रही है, तो जंतर मंतर के आसपास कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई है. दंगा रोधी वाहन भी तैनात किए गए हैं. 300 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जगह जगह माइक लगाए गए हैं. 57 मेट्रो स्टेशन बंद हैं. दिल्ली निजामुद्दीन की 165 में से 38 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं.
17: मुझे लगता है कि अब बात थोड़ी उसके आगे चली गई है. एक ज्ञानेश कुमार को, जिसको हम एक ब्यूरोक्रेट कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेट ही वो, कोई मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, एक ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए अपने जम्मू कश्मीर से फोर्स बुला ली, अपने नक्सल एरिया से फोर्स बुला ली, आपसे आपको वो भी कम लगा, आपने सारे रास्ते बंद कर दिए, आपको वो भी कम लगा, आपने मेट्रोज बंद कर दिए, आपको वो भी कम लगा, आपने रेलवेज बंद कर दी. देश ही बंद कर दो ना, इलेक्शन बंद कर दो, देश ही बंद कर दो. आर्टिकल 19 गिव्स अस द राइट टू प्रोटेस्ट एंड जंतर मंतर इज अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट. अगर हम मुंबई में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अगर हम बेंगलोर में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो हम दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते? क्या दिल्ली किसी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर चल रही है? मुंबई में पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया, बेंगलुरु में पूरा कोऑपरेट किया, दिल्ली में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, दिल्ली में कौन सा लॉ चल रहा है अलग से? तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि दिल्ली का लॉ बुक कोई और है क्या जो इंडिया से अलग है?
0: दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन वाले अल्टीमेटम के चलते पुलिस सतर्क है, लेकिन दिल्ली में किलेबंदी और इतनी सख्ती को लेकर बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है. जी हां, बीजेपी के प्रदर्शन से पहले मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और कई ट्रेनों को रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, और ये याचिका सीपीएम के महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद एमए बेबी ने दाखिल की, और सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस भी हुई. साथ ही सीजीआई की तरफ से टिप्पणी भी की गई. चीफ जस्टिस की बेंच में कपिल सिब्बल ने कहा दिल्ली में ट्रेनें रद्द, मेट्रो बंद, होटल बंद हैं. प्रशांत भूषण ने कहा पूरी दिल्ली बंद कर दी है. गोपाल शंकर नारायणन ने कहा 57 मेट्रो स्टेशन भी बंद किए हैं. इस पर सीजीआई ने कहा सुबह तो ऐसा कुछ नहीं था. फिर जस्टिस बागची ने कहा कि प्रदर्शन का हक है, लेकिन कानून के हिसाब से इजाजत मांगिए, नहीं देते तो कोर्ट आइए. गोपाल शंकर नारायणन ने कहा इसमें समय लगेगा, प्रोटेस्ट कल है. सीजीआई सूर्यकांत ने कहा आपको कुछ चीजों को रोकना ही होगा, उन्हें रोकने के लिए सिर्फ उतनी ही कार्रवाई करें जितनी जरूरी हो. सुप्रीम अदालत ने आयोजकों को बुलाया और कपिल सिब्बल आयोजकों को नहीं ला पाए. अदालत में पुलिस प्रशासन के एहतियाती कदमों को लेकर भी चर्चा हुई, और सरकार ने अनुपातिक तैयारियों का वादा किया, और कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की बात कही. एहतियातन दिल्ली पुलिस अब भी दिल्ली में आने जाने वालों पर नजर रख रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर वाहनों की तलाशी जारी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
10: सीजेपी के प्रमुख अभिजीत देबके प्रदर्शन करने पर अड़े हुए हैं और इसी प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट है। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से पुख्ता जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं।
0: बाजारों से लेकर बॉर्डर तक हाई अलर्ट पर पुलिस, जगह जगह दिल्ली पुलिस की बुनादी।
13: नई दिल्ली में और सभी जगह धारा 163 BNSS लागू है।
0: 10 अक्टूबर यानी कल जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली किसी छावनी में तब्दील हो चुकी है। दावा यही है कि प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, लिहाजा भीड़ जुटी तो एक्शन होगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से लोगों को सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली अफवाहों से बचने की सलाह दी जा रही है।
18: किसी भी भड़काऊ संदेश या उकसावे में नहीं आए, जिम्मेदार नागरिक बने और कानून का पालन करें। अपने क्षेत्र की सुरक्षा में पुलिस और प्रशासन का साथ दें और अपने परिवार वाले और अपने बच्चों को इस बारे में समझाएं कि इस तरह की अननेसेसरी भीड़ में या ऐसे कोई प्रोटेस्ट में किसी में हिस्सा न लें।
0: ये वीडियो दिल्ली के चांदनी चौक का है। मस्जिद के केयर टेकर की माने तो बीते दिन स्थानीय पुलिस ने लोगों से जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट से दूर रहने की अपील की थी।
19: पुलिस अफसर जो यहाँ के बीट अफसर है ना, वो आए थे शाम के 5 बजे और उन्होंने ऐलान किया था कि प्रोटेक्शन जो हो रहा है जंतर मंतर पे, उसमें आदमी को नहीं जाना चाहिए और नहीं अपने बच्चों को जाने देना चाहिए। जी हाँ, यही उन्होंने ऐलान किया था, इस बात पे अमल करना चाहिए हर आदमी को।
20: कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक पुलिसकर्मी एक मस्जिद के अंदर जाकर के मोबाइल से पढ़ के एक अनाउंसमेंट कर रहा है, जिसमें वो लोगों को माइक पे बता रहा है कि किस तरीके से इस प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है और वो अपने बच्चों को भी समझाएं कि वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बने। इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी मस्जिद के बाहर है। अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो ये चांदनी चौक में स्थित शाही मस्जिद है जिसके अंदर का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। यहीं पर दिल्ली पुलिस आई और यहां पर आकर के दिल्ली पुलिस ने अनाउंसमेंट की है और लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है उसके लिए परमिशन नहीं मिली है और अपने बच्चों को भी वो समझाएं कि वो आगे जाकर के इस प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बने क्योंकि लीगल एक्शन हो सकता है।
0: दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में भी दिल्ली पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को बता रही है कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है, धारा 163 लागू है, लिहाजा प्रोटेस्ट में शामिल ना हो।
13: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है। नई दिल्ली में और सभी जगह धारा 163 BNSS लागू है, जो कि कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा। आप सभी को सूचित कर दें, बता दें अपने बच्चे जो भी आस पड़ोसी उन सबको बता करके ब्रीफ कर दें कि वहां पर कोई भी परमिशन नहीं है।
0: तो दिल्ली की कुछ मस्जिदों से ऐलान किया गया है कि 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल ना हो।
21: इस ऐलान को गौर समाज फरमाए कि जो जंतर मंतर पर 8, 9, 10 तारीख को जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो इल्लीगल है, वहाँ पर कोई व्यक्ति ना जाए, इसलिए कि सरकार ने वहाँ पर धारा 163 लगाई हुई है। कृपया आप असरा प्रशासन का साथ दें, कोई वहाँ ना जाए।
0: दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। बिना परमिशन सीजेपी को प्रदर्शन या धरना करने की इजाजत नहीं है।
22: क्या परमिशन मांगी गई, कब मांगी गई?
23: 7 तारीख को कांग्रेस जनता पार्टी ने एक परमिशन एप्लीकेशन दी थी इंटीमेशन करके, जिसमें ये बताया गया कि वो सीईसी की अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग 10 तारीख को जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन जो इंटीमेशन की है उस पर गौर किया गया और ये पाया गया कि ये एप्लीकेशन इस्टेब्लिश्ड जो गाइडलाइन है उसके तहत हमारे पास नहीं आई है, बहुत ही कम समय में आई है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने उनका जो प्रीवियस कंडक्ट था, उन्होंने जो हमारी लॉफुल डायरेक्शंस को नहीं फॉलो किया या उनकी जो अंडरटेकिंग दी गई थी उनके द्वारा उसको भी नहीं कंप्लाई किया। और प्रेजेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और पब्लिक सेफ्टी के मद्देनजर इस एप्लीकेशन जो थी उसको रिजेक्ट किया जाता है।
0: पुलिस की दलील है कि पेपर लीक को लेकर जंतर बंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल सीजेपी की तरफ से नहीं रखा गया, हिंसा हुई, कई पुलिस वाले जख्मी हुए, लिहाजा अब की बार प्रदर्शन के नाम पर दिल्ली की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होगा।
10: 2 अक्टूबर से लेकर अब तक 27 FIR दर्ज हो चुकी हैं। पुलिस को अंदेशा है कि प्रदर्शन के नाम पर कुछ लोग दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते

0: मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए 7 अक्टूबर को सीजेपी की तरफ से परमिशन मांगी गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं दी गई। इसके बावजूद सीजेपी ने जंतर मंतर पहुंचने का ऐलान किया है। ऐसे में सीजेपी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। जंतर मंतर को बैरिकेड से घेरा गया है, मतलब सीजेपी के समर्थकों को जंतर मंतर जाने से रोकने की प्लानिंग है। इसी कड़ी में नए सीसीटीवी और लाउडस्पीकर तक लगाए गए हैं।
1: जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली पुलिस की कोशिश ऐसी है कि कहीं कोई जमावड़ा एक जगह पर ज्यादा ना होने पाए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के तहत जो कैमरे आते हैं, जो जुड़े हुए हैं, उन कैमरों को भी लगाया गया है। हालांकि कई ऐसे कैमरे हैं जो इस इलाके में पहले लगे हुए थे, लेकिन आप देखिए इस खंभे पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको जो कैमरा नीचे लगा हुआ दिख रहा है, ये अभी इंस्टॉल किया गया है। इसके ऊपर लाउड स्पीकर लगाया गया है, जिससे लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप यहाँ पर इकट्ठे ना हो, ये गैर कानूनी है। तो पुलिस ने जगह जगह कंट्रोल रूम बना रखे हैं, एरियो को डिवाइड कर रखा है और हर एरिया की जिम्मेदारी एक आईपीएस स्तर के अधिकारी की है।
0: ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है। थाने के बाहर दिल्ली पुलिस की तरफ से पोस्टर पर चेतावनी लिखी हुई है। थाने के बाहर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के ठीक बाहर, जो पिछले कई दिनों से जंग का अखाड़ा बना हुआ है। और इस थाने के बाहर की आप तैनाती देखिए, जैसे किले की बाहर पूरी सुरक्षा होती है, उस तरीके से इस थाने की भी सुरक्षा के लिए बाहर बैरिकेड है। अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस गेट पर तैनात मिलेगी, दिल्ली पुलिस आपको तैनात मिलेगी और यहाँ पर चेतावनी भी लगाई गई है। ठीक आप देखिए, बैरिकेड पर चेतावनी लगाई गई है कि BNSS की धारा 163 लागू है, अगर लोग जुटेंगे तो उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी।
0: जंतर मंतर की तरफ जाने वाले रास्ते की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है।
2: इस वक्त मैं जनपद रोड पर हूं और मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये जो सड़क है ये सीधा जंतर मंतर की तरफ जाती है। यहां से करीब 500 मीटर आगे ही वो धरना स्थल है, जहां अमूमन लोग जाके बैठते हैं और धरना देते हैं। अगर आप यहां तैयारियां देखें तो इस पूरी सड़क को ट्रैफिक के लिए और पैदल मूवमेंट के लिए भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात भी कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर आप देखें यहाँ आसपास करीब हर खंभे पर कैमरे लगा दिए गए हैं और ऐसे बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं। इन लाउड स्पीकर्स का ये काम है कि ये लगातार अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा होना इस वक्त गैरकानूनी है। इस पूरे इलाके में 163 BNSS की धारा लगी हुई है, जो किसी भी तरह के प्रदर्शन को वर्जित करती है। और अगर यहाँ पर कोई पहुंचता है या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश करता है, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करता है या पुलिस वालों पर हमला करने की कोशिश करता है, तो उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
0: संसद मार्ग की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर बैरिकेड को दूसरे बैरिकेड से जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने जंजीर और ताले का इस्तेमाल किया है।
1: इस वक्त हम संसद मार्ग पर मौजूद है, जहाँ पर सीजेपी की प्रस्तावित प्रोटेस्ट से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। और ये आप देखिए, ये जो बैरिकेड रखे गए हैं, यहाँ इन बैरिकेड में ये चेन्स लगाई जा रही है मोटी मोटी। इन चेन्स को पेच के जरिए अगर आप देखेंगे तो इनको पेच के जरिए इससे जोड़ दिया गया है बैरिकेड से, और नीचे की तरफ ऐसे लॉक सिस्टम लगाए गए हैं, ताकि इस लॉक को दूसरा जो ये लॉक सिस्टम है, जो इस अगर हम कहें दूसरा बैरिकेड है, इस बैरिकेड में जो लॉक सिस्टम है, इस चेन को इससे जोड़ा जा सके। यानी कि इन बैरिकेड को हटाना इतना आसान नहीं होगा। आप दरअसल पुलिस ने तैयारी की है जो इस पूरे प्रोटेस्ट से निपटने के लिए, क्योंकि परमिशन तो दी नहीं है और उसके कारण पुलिस ने बताया कि एक तो सिर्फ 3 दिन पहले एप्लीकेशन दी गई और दूसरा जो पिछला आचरण था परमिशन लेने के बाद प्रोटेस्ट का, उसको देखते हुए परमिशन डिनाई की जा रही है।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: आना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दिल्ली किले में तब्दील, राजधानी की सभी सीमा सील, नई दिल्ली के 4 किलोमीटर दायरे में इंटरनेट सेवा बंद, 45 मेट्रो स्टेशन के गिरे शटर। दिल्ली की किलेबंदी पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत का मक्खी मारने के लिए हथौड़ा नहीं चला सकते, सर्वोच्च अदालत ने कहा, इतना ही एहतियात करें जिससे आम लोगों को ना हो परेशानी। राष्ट्रपति से इंडिया गठबंधन के नेताओं की मुलाकात पर विपक्ष और बीजेपी में ठनी, राहुल का दावा, वोट चोरी के आरोपों पर महामहिम भी सहमत, बीजेपी बोली झूठ बोल रहे हैं राहुल। उपचुनाव में बीजेपी एनडीए के शानदार प्रदर्शन पर बम बम बीजेपी, पीएम मोदी ने कहा इस जनादेश से मिलेगी और मजबूती, अमित शाह बोले राहुल के झूठ और दुष्प्रचार के बावजूद बड़ी जीत। और दूसरे T20 में भारत की 6 विकेट से करारी हार, शे होप के आतिशी शतक से वेस्टइंडीज ने 250 रन के विशाल स्कोर को पीछे छोड़ा, 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर।

0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ वांशु दीक्षित। और शुरुआत आज की बड़ी खबर से, किले में तब्दील हो गई है दिल्ली। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए नई दिल्ली का इलाका छावनी बन चुका है। वहीं दिल्ली के बहुत से ऐसे बॉर्डर हैं जो सील कर दिए गए हैं। लुटियंस दिल्ली में हाई अलर्ट है। जंतर मंतर की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। कल शाम से जबरदस्त चेकिंग हो रही है। नई दिल्ली के 4 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवा बंद है। पाबंदी का असर मेट्रो से लेकर ट्रेन सेवा तक पड़ा है। कल रात 9 बजे ही 45 रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया। अब यह पाबंदी आज शाम 6 बजे तक लागू रहेगी। और यही नहीं, दिल्ली आने वाली कई ट्रेन्स कैंसिल कर दी गई हैं। तो बहुत से एहतियाती कदम उठाए गए हैं। और जब आप तस्वीर देखेंगे आज की, तो आपको समझ में आएगा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कितने व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सीजेपी का प्रदर्शन और सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। जितने भी एंट्री पॉइंट है दिल्ली के, वहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है। इसके साथ ही जगह जगह बैरिकेडिंग करते हुए रूट डायवर्जन किया गया है। कई ट्रेनें जो दिल्ली आने वाली थी, कम से कम 38 ऐसी ट्रेनें हैं जिनको कैंसिल किया गया है। 6 बजे तक ये पाबंदी रहेगी। कल रात 9 बजे से ही 45 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। नो एंट्री नो एग्जिट। और अब इंटरनेट को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि नई दिल्ली के 4 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवा बंद। और जबरदस्त चेकिंग हो रही है। देखिए, दिल्ली में धौलाकुआ में कैसे चेकिंग हुई। हर आने जाने वाले पर निगरानी रखी जा रही है। और कहीं पर कुछ संदिग्ध नजर आ रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि प्रदर्शनकारी हैं, बाहर से आए हैं, प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं, तो पहले उनको समझाया बुझाया जा रहा है। और ये देखिए, गाड़ियों की चेकिंग कैसे की जा रही है। एक एक करके हम आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, जब आप नोएडा से दिल्ली जाते हैं तो वहां लगने वाली सीमा है कालिंदी कुंज बॉर्डर, वहां की तस्वीरें देखिए। ये देखिए, बकायदा वहां पर पोस्टर लगा दिए गए हैं, चेतावनी भी जारी की गई है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लोगों को आगाह किया जा रहा है। यहां पर चेतावनी वाला नोटिस लगाया गया है जिसमें जानकारी दी गई है कि बीएनएस की धारा 163 लागू है, भारतीय न्याय संहिता। अब यहां पर भीड़ एकत्रित करना कानूनन अपराध है, और ऐसा अगर आप करते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। देखिए, यही भोपू है स्पीकर जिससे अनाउंसमेंट कराया जा रहा है।
1: बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें, धन्यवाद। अन्य लागू धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है यदि कोई व्यक्ति।
2: अभी हम दिल्ली की नोएडा से लगने वाली सीमा कालिंदी कुंज बॉर्डर पर मौजूद है, और यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, और इसकी चेतावनी जो नोटिस है उसको लगा दिया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ धारा 163 BNSS लागू है, अतः इस क्षेत्र में किसी तरह के एकत्रित होने या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। आदेशानुसार उपायुक्त पुलिस दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस। वहीं यहाँ पर आप देखेंगे साउंड स्पीकर के जरिए जो है लगातार इस संबंध में जानकारी दी जा रही है, ताकि आप देख सकते हैं लगातार जो है अनाउंसमेंट के जरिए धारा 163 की जानकारी दी जा रही है, और लोगों से अपील की जा रही है कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, इसीलिए इसका उल्लंघन न करें। वहीं यहां पर पुलिस तैनात है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। हालांकि चूंकि ये बॉर्डरिंग इलाका है, ट्रैफिक का काफी दबाव रहता है, और आप देख सकते हैं रात के 11 बजने वाले हैं, और रात के 11 बजने के बाद भी ट्रैफिक का क्या स्थिति है, तो उसके मद्देनजर ट्रैफिक को निकाला जा रहा है और बैरिकेड वगैरह यहां पर लगाए गए हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए हैं और पुलिस कर्मियों की तैनाती है। इधर आप देखेंगे बैरिकेड से क्लोज कर दिया गया है एक लेन को, ताकि किसी प्रकार की स्थिति न हो। यहाँ पर ट्रेन की भी व्यवस्था रखी गई है, और तमाम इंतजाम जो सुरक्षा के हैं वो यहाँ पर किए गए हैं, ताकि किसी प्रकार के होने वाले प्रदर्शन और जो मजमा है उसको इधर से आने से रोका जा सके। और लगातार अनाउंसमेंट कर जानकारी दी जा रही है कि यहाँ पर धारा 163 लगी हुई है, इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और इस संबंध में लगातार जहाँ यहाँ नोटिस बोर्ड लगा करके जानकारी दी गई है, तो वहीं लगातार अनाउंसमेंट के जरिए, लाउड स्पीकर के जरिए, अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को जानकारी दी जा रही है कि यहाँ पर BNSS की धारा लगी हुई है, और वहीं यहाँ पर पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। आशुतोष कुमार, दिल्ली आज तक।
0: सीलमपुर और कश्मीरी गेट को जोड़ने वाले युधिष्ठिर सेतु की तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं और वहां पर आप देखेंगे किस तरह से खास तैयारियां की गई हैं। आइए देखिए, ये वो तस्वीरें हैं युधिष्ठिर सेतु की। अब यहां भी अगर आप एंट्री करेंगे तो बैरिकेटिंग की गई है और बैरिकेटिंग करते वक्त वहां पर पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और एक एक गाड़ी पर अगर कहीं पर कुछ संदिग्ध लग रहा है तो उसकी चेकिंग की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पर मौके पर रहते हैं, किसी भी गाड़ी को रोककर वहां पर चेकिंग की जा रही है और पूछताछ भी की जा रही है। और ये एंट्री पॉइंट पर भी है, एग्जिट पॉइंट पर भी है और ये सब हो रहा है सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर सावधानी बरतते हुए। अलर्ट मोड पर इस वक्त पूरा पुलिस प्रशासन दिखाई दे रहा है। जैसा आपको बताया, दिल्ली इस वक्त किले में तब्दील हो गई। आमतौर पर ऐसी तस्वीरें आपको 26 जनवरी या 15 अगस्त पर दिखाई देती हैं, लेकिन उससे पहले भी अगर कहीं 4 से 5 लोग दिखते हैं तो उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आप क्यों इकट्ठा हुए हैं।
3: सुरक्षा की दृष्टिकोण से नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे पिकेट्स लगाई गई हैं। इसमें जैसे कि आपको पता है कि नई दिल्ली में 163 BNSS लागू है और साथ में कल की प्रोटेस्ट को परमिशन भी नहीं मिली है, तो उसके दृष्टिगत हमारी यही कोशिश रहेगी कि कोई भी असामाजिक तत्व नई दिल्ली की ओर ना जाए और जो शांति व्यवस्था है वो बनी रहे।
0: तो देखिए, दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं और वहां उन तस्वीरों को देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि पूरे दिल्ली में इस वक्त किस तरह की सुरक्षा का इंतजाम है। इंडिया गेट, जंतर मंतर, कालिंदी कुंज, लोधी रोड, युधिष्ठिर सेतु जहां से भी आपने देखा, कालिंदी कुंज की भी तस्वीर आपने देखी, जनपथ जहां एक बार अच्छा प्रदर्शन हो चुका है विपक्ष की तरफ से, धौलाकुआं और दिल्ली नोएडा बॉर्डर, हर जगह आप देखेंगे हैवी डिप्लॉयमेंट और चेकिंग, पूछताछ, सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। और फिर आपको बता दें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 163 लागू है, तो ऐसे में भीड़ एकत्रित नहीं हो सकती है। लोगों को समझाइश दी जा रही है, हिदायत दी जा रही है कि भीड़ एकजुट ना करें। और ये 8 तस्वीरों से आप समझेंगे कि अलग अलग जगह चेतावनी, कहीं पर लाउड स्पीकर से तो कहीं पर बैनर पोस्टर के जरिए आम लोगों को चेतावनी दी जा रही है और ये बताया जा रहा है कि कानून का पालन करें।

0: और ये रास्ता जो है आपको जंतर मंतर के तरफ जाता है, साउथ दिल्ली से जंतर मंतर के तरफ ये रास्ता जाता है। देखिए दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पे गाड़ियों की जो है वो चेकिंग की जा रही है, किसी भी तरह से प्रदर्शनकारी जंतर मंतर ना पहुंचे इसको लेकर के यहाँ पर सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, बैरिकेडिंग लगाया गया है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा दे, ये यहाँ पर जो रास्ते को है उसको भी बंद किया जा रहा है, एक तरह से कि गाड़ियां जो है वो कम निकले, एक तरह से एक ब्रेकर की तरह यहाँ पे डिवाइडर लगाया जा रहा है ताकि कम से कम गाड़ियां निकले। और यहाँ पे जो लोधी कॉलोनी थाने के जो स्टाफ है वो लगातार लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और जो भी गाड़ियां जा रही है, क्योंकि गाड़ियों को चेक किया जा रहा है कि गाड़ियों में किस तरह के लोग हैं, कहीं कोई प्रोटेस्टर तो नहीं है। और देखिए ये तस्वीर तब है जब अभी आधी रात हुए है, आधी रात से ही 10 अक्टूबर को कोई प्रोटेस्टर जंतर मंतर ना पहुंचे इसको लेकर के जो है यहाँ पे जो है कार्रवाई की जा रही है, जांच किया जा रहा है।
1: तो व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त तरीके से की गई है और क्या इंतजाम किए गए हैं ये जानने की कोशिश करी एडिशनल सीपी से हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा ने, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं।
2: ये बताएं कि किस तरीके की तैयारी है।
3: देखिए कल के प्रोटेस्ट के दौरान मद्देनजर रखते हुए हमने ट्रैफिक का अपना एक एडवाइजरी इशू करी है, जिसमें हमने करीब 30 स्ट्रेचर्स हैं जो हमारे नई दिल्ली के तरफ जो है स्टेशन है उस पर हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा। और अगर कहीं भी किसी प्रकार का अगर कोई डिसरप्शन होता है ट्रैफिक में तो उसके अकॉर्डिंग हम नेसेसरी डायवर्जेंस करेंगे। और हमने इसके लिए हमारे जो भी ट्रैफिक की साइट है हमारे सोशल मीडिया के थ्रू अपनी एडवाइजरी को हमने दे दिया है, और जैसे वहाँ पे कहीं भी किसी भी स्ट्रेच पे हमारे स्टाफ डिप्लॉयड रहेंगे, और अगर कहीं वहाँ पे हमें प्रोटेस्ट या कोई किसी तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन दिखता है तो अकॉर्डिंगली हम इसको डायवर्ट करेंगे।
2: बॉर्डर्स को लेकर के सर, बॉर्डर्स को लेकर के काफी लोगों में बातचीत हो रही है कि बॉर्डर बंद कर दिए जाएंगे, सील कर दिए जाएंगे, तो बॉर्डर्स पर कैसी तैयारी है।
3: देखिए बॉर्डर्स पे हमारी जो है हमारे स्टाफ डिप्लॉयड रहेंगे, और बॉर्डर्स पे हम लोगों का जो है हमारा जो है ट्रैफिक का स्टाफ भी रहेगा। और हम लोगों का यही है कि किसी प्रकार का हमारा कोई बॉर्डर सील नहीं है, किसी प्रकार का हम लोग का ट्रैफिक आवागमन होता रहेगा। पर जैसे हमने आपको बताया कि जैसे हम लोग हालात देखेंगे, अगर हमें कोई लगता है कि ये ऐसे कोई प्रोटेस्टर्स हैं जो दिल्ली में आके किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन कर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली लोकल पुलिस जो भी एक्शन लेगी। अगर वहाँ पे डिसरप्शन किसी रोड पे होता है तो हमारे ट्रैफिक स्टाफ मौजूद रहेंगे, अकॉर्डिंगली हम लोग पे डायवर्जन प्लान बनाएंगे।
1: तो अगर प्रोटेस्टर्स हैं तो फिर एक्शन लिया जाएगा। देखिए भारी सुरक्षा बंदोबस्त का असर कल दिल्ली बॉर्डर पर देखने को मिला। तस्वीरें कालिंदी कुंज बॉर्डर की हम आपको दिखाते हैं, जहां दिल्ली गुरुग्राम सरहौल बॉर्डर पर भी कल शाम लंबा जाम देखा गया। देखिए दो तस्वीरें। अब जब इतनी चेकिंग होगी तो उसके बाद लंबा जाम भी लगेगा। तो ऐसे में आप देखिए, सबसे पहले जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें कहां की हैं? वो तस्वीरें हैं कालिंदी कुंज बॉर्डर की, जहां भीड़ है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वो दिल्ली गुरुग्राम सरहौल बॉर्डर है। कल शाम लंबा जाम देखा गया, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि जब बैरिकेडिंग लगाई जाती है तो बैरिकेडिंग लगाने के बाद गाड़ी मध्यम तरीके से चलती है, धीरे धीरे चलती है, और उसके बाद फिर जाम लगता है, और जाम लगता है तो फिर ऐसे हालात आ जाते हैं जहां लोग परेशान हो जाते हैं। और इस तरह के जब प्रदर्शन होते हैं तो लोगों की परेशानी बढ़ जाती है, और ऐसा होता है, ऐसा हमने पहले भी देखा है, पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं। कई लोगों की ट्रेनें छूट गई ट्रैफिक की वजह से, कई लोग अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाए सही समय पर, तो ये आम है आम लोगों के लिए। तो देखिए सोनीपत से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, और यहां भी लोगों की परेशानियों में इजाफा होता हुआ दिखाई दिया। ये देखिए ये सोनीपत है, सोनीपत रेलवे स्टेशन, और यहां पर भी चेकिंग की जा रही है। जंतर मंतर पर आज सीजेपी का प्रदर्शन है, तो ऐसे में अब आपको जो कल भी आपने वो खबर देखी होगी जहां इटारसी जंक्शन से कुछ लोग सीजेपी के आ रहे थे दिल्ली की ओर, तो उनको जनरल डब्बे से वहीं पर डिटेन कर लिया गया। तो सोनीपत बॉर्डर की भी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सोनीपत रेलवे स्टेशन पर, वहां भी पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया गया, बहुत सघनता के साथ चेकिंग की गई। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर थे, और रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी जो यात्री थे उनसे पूछताछ की गई। तो बहुत सी तस्वीरें आज आप देखने वाले हैं। जेएनयू की बात करें तो जेएनयू में सीजेपी के समर्थन में प्रोटेस्ट हुआ। अब ये वो तस्वीरें देखिए, देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, प्रोटेस्टर्स अपना काम कर रहे हैं और जेएनयू में सीजेपी के समर्थन में छात्र अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने सीजेपी के समर्थन में ये प्रदर्शन किया और ये भी बैनर पोस्टर अपने साथ में लेकर आए थे। रात भर रत जगा किया गया और प्रदर्शन किया गया। ये वो तस्वीरें देखिए सीजेपी के समर्थन में। हालांकि कुछ लोग आधी नींद में दिखाई दे रहे हैं लेकिन इनके अंदर एक जज्बा है और वो है सीजेपी को सपोर्ट करने का।
4: देखिए जब इस देश में मोदी सत्ता में आया था तो उसने पूरे देश को रोक तो लिया लेकिन वो जेएनयू को कभी रोक नहीं पाए। तो जब उस वक्त जेएनयू को रोक नहीं पाए, आज तो पूरा देश जेएनयू बन चुका है, तो जेएनयू को कोई रोक नहीं सकता है। भूख हड़ताल 10वें दिन क्यों नहीं पहुंच जाए, हमने 12वें दिन लॉन्ग मार्च किया है भूख हड़ताल के। आज तो मैं नहीं बैठा लेकिन हमारे साथी बैठे हुए हैं। हमने जंतर मंतर पे 23 दिनों तक भूख हड़ताल करके चलो संसद का कॉल दिया था। तो जेएनयू उस वक्त नहीं जब रुका तो आज क्या ही रुकेगा जब आज पूरा देश जेएनयू बन चुका है।
5: तो यानी 10 अक्टूबर को यानी कल जो सुबह में प्रोटेस्ट होगा इसके लिए परमिशन नहीं दी गई?
4: प्रोटेस्ट के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। प्रोटेस्ट अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक लीगल डिमांड है। आप जब दंगा करते हैं ना तो दंगा करने के लिए आपको परमिशन चाहिए कि हम दंगा राइट फैलाने जा रहे हैं, हम मारने जा रहे हैं किसी को। प्रोटेस्ट के लिए क्यों परमिशन चाहिए? दिल्ली का जंतर मंतर है, डेजिग्नेटेड प्लेस आप ही ने बनाया, कोई हमने तो बनाया नहीं है। आप क्यों नहीं वहां प्रोटेस्ट करने देंगे? तो परमिशन की कोई जरूरत नहीं इस देश के नागरिकों को। ये देश का नागरिक सड़क को आबाद कर रहा है, कल भी आबाद करेगा और कल से बस रुकने वाला नहीं है।
1: तो देखिए नई दिल्ली में हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर रद्द हुई ट्रेनों के कारण रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ के बीच ट्रेन में सवार होने के लिए लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। धक्का मुक्की सब जारी है। हालात ऐसे हो गए कि ट्रेन के दरवाजों से अंदर जगह नहीं मिल रही है। ठूस ठूस कर एक दूसरे को धक्का देकर एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। इमरजेंसी खिड़की के रास्ते कोच में घुसने को लोग मजबूर हो गए हैं। भीड़ का आलम यह रहा कि बच्चे हों, महिलाएं हों, हर कोई किसी तरह ट्रेन के अंदर पहुंचने की कोशिश करता नजर आ रहा है। बच्चे रो रहे हैं, बुजुर्गों की सांस नहीं आ रही है, लेकिन सफर करना है, मंजिल तक पहुंचना है तो जान जोखिम में डालने से भी परहेज नहीं कर रही है। देखिए ये इमरजेंसी एग्जिट है, जब आपातकाल में इससे ट्रेन से बाहर निकला जाता है, लेकिन यहां पर बच्चों को ठूस ठूस के अंदर भरा जा रहा है जैसे कोई सामान हो।
6: कहाँ जाना था?
7: दिल्ली।
6: तो दिल्ली के लिए गाड़ी नहीं है?
7: नहीं, कैंसिल हो रही है गाड़ी। आज जो गाड़ी थी वो कैंसिल है।
6: तो अब कितनी देर से बैठे हुए?
7: मैं तो यहाँ बैठा हूँ 3-4 घंटे से बैठा हूँ।
6: क्या बता रहे हैं, कोई गाड़ी है आज?
7: अब कोई कंफर्म नहीं है बता रहे हैं। अब जो पहले से चल रही है उनके लिए बता रहे हैं, बकाया जो आज के लिए चल आ रही थी वो सब कैंसिल है।
6: चले जा रहे हैं फैमिली के साथ?
7: फैमिली के साथ। और क्या है कि लोगों को जब कहीं जाना होता है और जो ना मिले ट्रेन तो कितनी दिक्कत आती है, कोई बहुत जरूरी काम से जा रहा होता है।
8: दो गाड़ियां आई, दोनों भरी आई, बहुत बुरा हाल है, चढ़ नहीं पा रहे।
6: और गाड़ियां होंगी या कैंसिल हो गई?
8: कैंसिल बता रहे हैं।
6: दिक्कत हो रही है,
8: अनाउंसमेंट हो रहा है।
6: तो
8: अभी तो रिजर्वेशन में जनरल वाले रिजर्वेशन में घुस के जा रहा है, बहुत बुरा हाल है।
1: देखिए झांसी मंडल बहुत अहम स्टेशन है अगर आप यातायात के नज़रिए से देखें तो, रेलवे के नज़रिए से। और अगर आपको लग रहा है सर झांसी ही ऐसा है तो ऐसा नहीं है। रेल यात्रियों को परेशानी हर जगह उठानी पड़ रही है। बिहार के बेगूसराय में रेलवे स्टेशन पर कल क्या हाल था वो कुछ रेल यात्रियों की जुबानी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं।
9: दिल्ली में प्रोटेस्ट है इसको लेकर अचानक से रद किया, इसको किस तरह
10: नहीं प्रोटेस्ट अलग चीज हो गया, लेकिन उसका सूचना तो आप पहले दे सकते हैं ना कि अमुक कारण से ट्रेन रद्द हो रही है। आप रिपोर्ट सूचना नहीं दीजिए और दूर दराज से आदमी आ रहा है, फिर सारा फैमिली के साथ आ रहा है, लगेज है, फिर फेयर लग रहा है, फिर जाने का फेयर लग रहा है, टाइम का भी कुछ तो केयर कीजिए।
11: देखिए आज हम लोग को अचानक एक नोटिफिकेशन आती है कि बिहार की लगभग 4 ट्रेन है जो दिल्ली जाने वाली है वो एकाएक बंद कर दी जाती है सरकार के द्वारा। तो अब देखिए ये अचानक बंद कर देने से आम आवाम में जो इतना परेशानियां हो रही, हम ही देखिए दिल्ली जाने वाले थे लेकिन हमारी टिकट जब कैंसिल हो गई तो हम एकाएक हक्का बक्का रह गए कि अभी कैसे जाएंगे। तो मेरी घर में जो फैमिली जिसका तबीयत खराब है, अभी हम परेशानी में है कि दिल्ली कैसे जाएं। ये सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर सिस्टम है। सरकार को पहले इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, पहले से जब उसको जानकारी थी कि आंदोलन वहां हो रही है तो आंदोलन के नाम पर ये ट्रेन बंद करना कहीं से कोई बर्दाश्त नहीं किया जाए।
8: ट्रेन इस समय में रद्द नहीं करना चाहिए, पूजा का समय है, हर आदमी कहीं कहीं ट्रेवल कर रहा है, दिल्ली जाना या आना है, ये सरकार की नीति गलत है। इस नीति का हम लोग विरोध करते हैं कि हर बार ट्रेन कैंसिल कर दिया जाता है किसी न किसी नाम पे।
9: कितनी परेशानी होती है यात्रियों को? जो
8: यात्रियों की बहुत परेशानी होती है, पहले से टिकट बुक करा के रखते हैं, एन टाइम पे टिकट कैंसिल कर जाए, ट्रेन कैंसिल हो जाती है, उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, फिर से उनको फ्लाइट बुक करना पड़ता है या अन्य माध्यम से जाना पड़ता है।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी मोर्चा खोले हुए हैं और इसी बीच शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात करके ज्ञापन सौंप दिया। अब इधर सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में किलेबंदी कर दी गई है।
12: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है, कोई भी प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा।
13: ज्ञानेश कुमार पर संग्राम, आज विपक्ष कल सीजेपी। चार दिन से लगातार राहुल गांधी का ज्ञानेश कुमार पर वार।
14: मंडे को हम सुप्रीम कोर्ट, यही पूरा का पूरा ग्रुप मेमोरेंडम ले, इफ जस्टिस के लिए मेमोरेंडम लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
13: अब ज्ञानेश कुमार पर लड़ाई राष्ट्रपति के दर तक आई। सीईसी के इस्तीफे की मांग, राष्ट्रपति को इंडिया का ज्ञापन।
15: हमने तो पॉजिटिव आउटलुक से देखा है कि उन्होंने जो दो चार बात कहा कि आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल गो थ्रू द एंड आम को सबूत चाहिए।
13: 10 अक्टूबर को सीजेपी का जंतर मंतर प्लान, किले में तब्दील दिल्ली।
16: डरे हुए हैं और जो आदमी डरता है आज नहीं कल मरता है।
17: भारत जैसे लोकतंत्र में प्रदर्शन की पूरी संभावनाएं हैं और आप जरूर करें प्रदर्शन, बट प्रदर्शन से समाधान नहीं निकलेगा, समाधान संवाद से निकलेगा।
13: एक तरफ दिल्ली किले में तब्दील हो चुकी है, दिल्ली पुलिस से लेकर बीएसएफ भी दिल्ली की सीमाओं पर तैनात है, तो दूसरी तरफ लगातार चौथे दिन राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए उतरे और चौथे दिन अपनी मांग को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दर पर पहुंचते हैं।
18: यहाँ पे आप देखिए कि संसद भवन से बाहर मार्च करते हुए ये तमाम नेता नजर आ रहे हैं और कुछ इस तरीके से लोकतंत्र बचाओ अभियान छेड़ दिया है यहाँ पे इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने। और बैठक के बाद, 5 बजे की बैठक के बाद इस तरीके से नारेबाजी और घेराबंदी यहाँ पे विजय चौक पर हम लोग पहुँच गए हैं। ये विजय चौक है, पीछे आप देखें कि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है।
19: मांग तो पूरे देश की जो मांग है कि पूरा जो संरचना है बेईमानी का उसको खत्म किया जाए और ज्ञानेश जी प्रतीक पुरुष हैं, जो शील्ड बन के खड़े हैं मोदी जी और अमित शाह जी, वो चले जाए।
20: देखिए मुझे लगता है कि जो सारे देशभक्त हैं वो देश में लोकतंत्र को बचाने में लगे हैं, वो चाहे किसी राजनीतिक दल के सदस्य हो या न हो। और जो आज जो वोटर लिस्ट में पूरे चुनाव प्रक्रिया में जो धूल मिलाने का जो काम हो रहा है वो आज के तारीख में सबसे बड़े देशद्रोही का काम है।
21: थी मुझे हंसी आ रही कि सरकार इतनी डर गई, लोग परेशान हो गए, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ब्लैंकेट बैन क्यों लगा रहे, सब क्यों बंद करो, सारे मेट्रो ट्रेन बंद, सारी ट्रेनें बंद, सारे बसेस बंद, दिल्ली में घुस नहीं सकता, इतना डर।
13: इसके दो मकसद हैं, एक तो इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाना, दूसरा ये बताना कि सारे विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा चाहते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने वालों में बड़े नाम थे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, सीपीएम के एमए बेबी, सीपीआई के डी राजा, समाजवादी पार्टी के राजीव राय, सुप्रिया सुले, उमर अब्दुल्ला, मनोज झा और वीसीके के टी तिरुमावलन। जब इंडिया गठबंधन के ये 10 नेता राष्ट्रपति द्रौपदी से मिलने राष्ट्रपति भवन के अंदर पहुंचे, तो बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई।
0: एक प्रकार से मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि जब हमने राष्ट्रपति को इलेक्शन चोरी वोट चोरी के बारे में बताया तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने डिनाई नहीं किया। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने यह नहीं कहा कि हिंदुस्तान में चुनाव चोरी नहीं हो रहे हैं। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने उल्टा हमसे कहा कि आप सबूत हमारे पास लाइए, और यही ग्रुप खुशी से जो पूरा का पूरा सबूत हमने कलेक्ट किया है राष्ट्रपति के पास ले जाएगा, ले जाने के लिए तैयार है। पूरा देश जानता है, स्टूडेंट्स जानते हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है। नरेंद्र मोदी इसके आर्किटेक्ट हैं, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार इसके इम्प्लीमेंटर्स हैं, और इस बात को राष्ट्रपति ने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने आज डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में सोचेंगी और एक्शन लेंगी।
15: हमने तो पॉजिटिव आउटलुक से देखा है कि उन्होंने जो दो चार बात कहा कि आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल गो थ्रू द डिटेल्स एंड हमको सबूत चाहिए, यू प्लीज सेंड अस द डिटेल्स एविडेंस।
16: हमने डिमांड किया है कि फिर से एक बार ईवीएम को निकाल दो और बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराया जाए, और दूसरा कि ये वोट चोरी जहाँ जहाँ हो गए वो सबूत उन्होंने मांगा है, वो सबूत हम लोग तैयार कर रहे हैं और सबूत हम दे देंगे।
13: ये लगातार चौथा दिन है जब ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने विपक्ष उतरा है। 6 अक्टूबर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च किया, पुलिस ने बैरिकेडिंग करके विपक्षी सांसदों को रोका और कुछ को हिरासत में लिया, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पुलिस को चकमा देकर आकाशवाणी भवन परिसर में धरना दे दिया, और पूरे 8 घंटे तक धरना देने के बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को जबरन हिरासत में लेकर उठाया। 7 अक्टूबर कांग्रेस ने पहले इंडिया गठबंधन के सांसदों को लंच दिया और फिर जंतर बंतर के लिए कूच किया। दिल्ली पुलिस ने दूसरे दिन भी विपक्षी सांसदों की बस को रोका, तो राहुल और प्रियंका ने सड़क पर ही ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, और आखिर में 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को फिर से हिरासत में लेकर धरना खत्म करवाया। 8 अक्टूबर तीसरे दिन इंडिया गठबंधन के सांसदों ने कनॉट प्लेस में लंच किया और बसों से सीधे राजघाट यानी गांधी समाधि के लिए कूच किया। यहां भी भारी फोर्स की तैनाती की गई, लेकिन राहुल प्रियंका समेत सभी विपक्षी सांसद गांधी स्थल पर बैठकर वापस आ गए। 9 अक्टूबर चौथे दिन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलते हैं और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपते हैं।
2: हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम जनता की अदालत पे तो है ही, हम सड़कों पर हैं, और वोट चोरी इस देश में नहीं चल सकती है।
22: दैट इज मंडे द इंडिया ब्लॉक पार्टी लीडर्स विल गो टू सुप्रीम कोर्ट।
1: यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।

नवरात्रि का महापर्व, नवरात्रि के पर्व की कैसे करेंगे तैयारियां, कलश स्थापना का क्या होगा विधान और कैसे होगा समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दिल्ली किले में तब्दील, राजधानी की सभी सीमा सील, नई दिल्ली के 4 किलोमीटर दायरे में इंटरनेट सेवा बंद, 45 मेट्रो स्टेशन के गिरे शटर। दिल्ली की किलेबंदी पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत का मक्खी मारने के लिए हथौड़ा नहीं चला सकते, सर्वोच्च अदालत ने कहा, इतना ही एहतियात करें जिससे आम लोगों को ना हो परेशानी। राष्ट्रपति से इंडिया गठबंधन के नेताओं की मुलाकात पर विपक्ष और बीजेपी में ठनी, राहुल का दावा, वोट चोरी के आरोपों पर महामहिम भी सहमत, बीजेपी बोली झूठ बोल रहे हैं राहुल। उपचुनाव में बीजेपी एनडीए के शानदार प्रदर्शन पर बम बम बीजेपी, पीएम मोदी ने कहा इस जनादेश से मिलेगी और मजबूती, अमित शाह बोले राहुल के झूठ और दुष्प्रचार के बावजूद बड़ी जीत। और दूसरे T20 में भारत की 6 विकेट से करारी हार, शे होप के आतिशी शतक से वेस्टइंडीज ने 250 रन के विशाल स्कोर को पीछे छोड़ा, 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। किले में तब्दील हो गई है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। जंतर मंतर पर कॉकरोच, जनता पार्टी के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए नई दिल्ली का इलाका छावनी बन चुका है। वहीं दिल्ली के बहुत से बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, लगभग सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। लुटियंस दिल्ली में हाई अलर्ट है। जंतर मंतर की ओर जाने वाले रास्तों पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। कल शाम से जबरदस्त चेकिंग हो रही है। जो लोग कल रात में या कल शाम से दफ्तर से बाहर निकले होंगे, घर पहुंचे होंगे, उनको पता होगा। नई दिल्ली के 4 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवा भी बंद है। पाबंदी का असर मेट्रो से लेकर ट्रेन सेवा तक पड़ा है। कल रात 9 बजे से ही 45 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। पहले आ रही थी 57 की खबर, लेकिन 45 मेट्रो स्टेशन कल रात से ही बंद। अब ये पाबंदी कब तक लागू रहेगी? आज शाम 6 बजे तक। यही नई दिल्ली आने वाले कई ट्रेन कैंसिल कर दी गई हैं। तो कुछ यात्री झांसी में परेशान हो रहे हैं, कुछ बिहार में परेशान हो रहे हैं, तो कोई कहीं से परेशान हो रहा है क्योंकि उन्हें दिल्ली आना था, लेकिन 38 ट्रेनें ऐसी हैं जो रद्द कर दी गई हैं। तो परेशानी लोगों की बढ़ गई है। ये देखिए, कालिंदी कुछ अनाउंसमेंट कराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 163 लागू है, तो कृपया सहयोग करें।
1: धन्यवाद। हम दिल्ली की नोएडा से लगने वाली सीमा कालिंदी कुंज बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहां पर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और इसकी चेतावनी जो नोटिस है उसको लगा दिया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहां धारा 163 BNSS लागू है, अतः इस क्षेत्र में किसी तरह के एकत्रित होने या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। आदेशानुसार उपायुक्त पुलिस दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस। वहीं यहां पर आप देखेंगे साउंड स्पीकर के जरिए जो है लगातार इस संबंध में जानकारी दी जा रही है, ताकि आप देख सकते हैं लगातार जो है अनाउंसमेंट के जरिए धारा 163 की जानकारी दी जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, इसीलिए इसका उल्लंघन न करें। वहीं यहां पर पुलिस तैनात है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। हालांकि चूंकि ये बॉर्डरिंग इलाका है, ट्रैफिक का काफी दबाव रहता है और आप देख सकते हैं रात के 11 बजने वाले हैं और रात के 11 बजने के बाद भी ट्रैफिक का क्या स्थिति है, तो उसके मद्देनजर ट्रैफिक को निकाला जा रहा है और बैरिकेड वगैरह यहाँ पर लगाए गए हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए हैं और पुलिस कर्मियों की तैनाती है। इधर आप देखेंगे बैरिकेड से क्लोज कर दिया गया है एक लेन को, ताकि किसी प्रकार की स्थिति न हो। यहाँ पर ट्रेन की भी व्यवस्था रखी गई है और तमाम इंतजाम जो सुरक्षा के हैं वो यहाँ पर किए गए हैं, ताकि किसी प्रकार के होने वाले प्रदर्शन और जो मजमा है उसको इधर से आने से रोका जा सके। और लगातार अनाउंसमेंट कर जानकारी दी जा रही है कि यहाँ पर धारा 163 लगी हुई है, इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और इस संबंध में लगातार जहाँ यहाँ नोटिस बोर्ड लगा करके जानकारी दी गई है, तो वहीं लगातार अनाउंसमेंट के जरिए, लाउड स्पीकर के जरिए, अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को जानकारी दी जा रही है कि यहाँ पर BNSS की धारा लगी हुई है और वहीं यहाँ पर पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। आशुतोष कुमार, दिल्ली आज तक।
0: सीलमपुर और कश्मीरी गेट को जोड़ने वाले युधिष्ठिर सेतु की तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं और यहां पर भी जबरदस्त चेकिंग चल रही है। यहां पर भी आप देखेंगे तो पुलिस की बैरिकेडिंग लगा दी गई है और इस सेतु के एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट दोनों जगहों पर ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं कोई अराजक तत्व ना हो, या फिर ये भी पूछताछ की जा रही है कि अगर भीड़ में कोई नजर आ रहा है कि देखिए BNSS 163 लागू है, तो ऐसे में कोई प्रदर्शन करने के लिए नहीं जा रहा हो। अब समझाइश दी जा रही है, हिदायत भी दी जा रही है और प्रॉपर चेकिंग की जा रही है और ये अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। तो युधिष्ठिर सेतु की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
2: सुरक्षा की दृष्टिकोण से नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे पिकेट्स लगाई गई हैं। इसमें जैसे कि आपको पता है कि नई दिल्ली में 163 BNSS लागू है और साथ में कल की प्रोटेस्ट को परमिशन भी नहीं मिली है, तो उसके दृष्टिगत हमारी यही कोशिश रहेगी कि कोई भी असामाजिक तत्व नई दिल्ली की ओर ना जाए और जो शांति व्यवस्था है वो बनी रहे।
0: तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं और इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो इन तस्वीरों में एक चीज आपको कॉमन नजर आएगी, वो है सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस के इंतजाम। इंडिया गेट, जंतर मंतर, कालिंदी कुंज, लोधी रोड, युधिष्ठिर सेतु, धौलाकुआ जनपद, दिल्ली नोएडा बॉर्डर, हर जगह आप देखेंगे येलो बैरिकेटिंग की गई है। और इस बैरिकेटिंग पर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, डिग्गी खोलकर चेकिंग की जा रही है क्या सामान उसमें रखा है, और लोगों से पूछताछ की जा रही है। अगर भीड़ दिखाई देती है या 4 से 5 युवक दिखाई देते हैं, ग्रुप में लोग दिखाई देते हैं, तो उनसे पूछताछ की जा रही है और उनको बताया जाता है कि भाई BNSS 163 लागू है, तो ऐसे में आप एकजुट नहीं हो सकते, आप भीड़ लेकर नहीं जा सकते हैं। और चेकिंग की जा रही है, पूछताछ की जा रही है उनसे, हर आने जाने वाले पर निगरानी रखी जा रही है।
1: ये रास्ता जो है आपको जंतर मंतर के तरफ जाता है, साउथ दिल्ली से जंतर मंतर के तरफ ये रास्ता जाता है। देखिए दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पे गाड़ियों की जो है वो चेकिंग की जा रही है, किसी भी तरह से प्रदर्शनकारी जंतर मंतर ना पहुंचे इसको लेकर के यहाँ पर सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, बैरिकेडिंग लगाया गया है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा दे, ये यहाँ पर जो रास्ते को है उसको भी बंद किया जा रहा है, एक तरह से कि गाड़ियां जो है वो कम निकले, एक तरह से एक ब्रेकर की तरह यहाँ पे डिवाइडर लगाया जा रहा है ताकि कम से कम गाड़ियां निकले। और यहाँ पे जो लोधी कॉलोनी थाने के जो स्टाफ है वो लगातार लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, और जो भी गाड़ियां जा रही है क्योंकि गाड़ियों को चेक किया जा रहा है कि गाड़ियों में किस तरह के लोग हैं, कहीं कोई प्रोटेस्टर तो नहीं है। और देखिए ये तस्वीर तब है जब अभी आधी रात हुए है, आधी रात से ही 10 अक्टूबर को कोई प्रोटेस्टर जंतर मंतर ना पहुंचे इसको लेकर के जो है यहाँ पे जो है कार्रवाई की जा रही है, जांच किया जा रहा है।
0: तो देखिए आज प्रोटेस्ट को लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, ट्रैफिक को लेकर क्या एडवाइजरी जारी की गई है। हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा ने बात करी दिल्ली के एडिशनल CP ट्रैफिक से,
3: बताएं कि किस तरीके की तैयारी है।
4: देखिए कल के प्रोटेस्ट के दौरान मद्देनजर रखते हुए हमने ट्रैफिक का अपना एक एडवाइजरी इशू करी है, जिसमें हमने करीब 30 स्ट्रेचेज हैं जो हमारे नई दिल्ली के तरफ जो है स्ट्रेचेज है उस पर हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा, और अगर कहीं भी किसी प्रकार का अगर कोई डिसरप्शन होता है ट्रैफिक में तो उसके अकॉर्डिंग हम नेसेसरी डाइवर्जेंस करेंगे। और हमने इसके लिए हमारे जो भी ट्रैफिक जो दिल्ली पुलिस साइट है हमारे सोशल मीडिया के थ्रू अपनी एडवाइजरी को हमने दे दिया है, और जैसे वहाँ पे कहीं भी किसी भी स्ट्रेच पे हमारे स्टाफ डिप्लॉयड रहेंगे, और अगर कहीं वहाँ पे हमें प्रोटेस्ट या कोई स्थिति के ऑब्स्ट्रक्शन दिखता है तो अकॉर्डिंगली हम इसको डायरेक्ट करेंगे।
0: बॉर्डर्स को लेकर के सर, बॉर्डर्स को लेकर के काफ़ी लोगों में बातचीत हो रही है कि बॉर्डर बंद कर दिए जाएंगे, सील कर दिए जाएंगे, तो बॉर्डर पर कैसी तैयारी है।
4: देखिए बॉर्डर्स पे हमारी जो है हमारे स्टाफ डिप्लॉयड रहेंगे, और बॉर्डर्स पे हम लोगों का जो है हमारा जो है ट्रैफिक का स्टाफ भी रहेगा, और हम लोगों का यही है कि किसी प्रकार का हमारा कोई बॉर्डर सील नहीं है, किसी प्रकार का हम लोग का ट्रैफिक का आवागमन चलता रहेगा। पर जैसे हमने आपको बताया कि जैसे हम लोग हालात देखेंगे, अगर हमें कोई लगता है कि ये ऐसे कोई प्रोटेस्टर्स हैं जो दिल्ली में आके किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली लोकल पुलिस जो भी एक्शन लेगी। अगर वहाँ पे डिसरप्शन किसी रोड पे होता है तो हमारे ट्रैफिक के स्टाफ मौजूद रहेंगे, अकॉर्डिंगली हम लोग पे डाइवर्जन प्लान बनाएंगे।
0: दिनेश कुमार गुप्ता को आपने सुन लिया। लेकिन देखिए रेलवे स्टेशन पर भी चेकिंग की जा रही है, हर जगह सावधानी बरती जा रही है। सोनीपत रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, ये आपके सामने देखिए। वरिष्ठ अधिकारी निकले हैं जांच पड़ताल करने के लिए, जायजा लेने के लिए मौके पर। अब रेलवे प्लेटफॉर्म है ये, यहां पर यात्रियों से भी बातचीत की जा रही है, अगर कहीं पर भीड़ दिख रही है, युवा दिख रहे हैं, तो उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि आप कहां जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं। एक आम रूटीन जो चेकिंग होती है वो रेलवे स्टेशन सोनीपत पर की गई है, और ये सब किया जा रहा है जंतर मंतर पर CJP के प्रदर्शन को देखते हुए। तो भारी सुरक्षा बंदोबस्त का असर कल दिल्ली बॉर्डर पर देखने को मिला, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कालिंदी कुंज बॉर्डर की, जाम लगा हुआ है और ये कल रात का है, कल शाम का है। हो सकता है बहुत से लोग इस जाम में फंसे हुए हों और वो अभी इस वक्त देख रहे हों। और दूसरी तरफ दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर, आमतौर पर यहाँ पर विषम परिस्थितियों में जाम लगता है, लेकिन अभी ये आप तस्वीरें देखेंगे तो आप समझेंगे कि कल यहाँ पर लोगों को कितना परेशान होना पड़ा होगा। जो लोग 7-8 बजे तक घर पहुँच जाते हैं, 9 बजे तक घर पहुँच जाते हैं, वो कल 10-11-12 बजे तक घर पहुँचे, और उसकी वजह यही है कि सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाए गए हैं और चेकिंग की जा रही है। ये दिल्ली गुरुग्राम सरहौल बॉर्डर की तस्वीरें हैं। वहीं जेएनयू की बात करें तो जेएनयू में छात्र रात में एकजुट हुए, सोए नहीं, उन्होंने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन सीजेपी के समर्थन में किया। ये वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं जहां जंतर मंतर पर आज सीजेपी का प्रदर्शन है। तो सीजेपी को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन देने के लिए जेएनयू के छात्र एकजुट हुए। कुछ लोग हाथ में बैनर लेकर आए थे, पोस्टर लेकर आए थे और सीजेपी का समर्थन कर रहे थे, सरकार का घेराव कर रहे थे।
5: देखिए, जब इस देश में मोदी सत्ता में आया था तो उसने पूरे देश को रोक तो लिया, लेकिन वो जेएनयू को कभी रोक नहीं पाए। तो जब उस वक्त जेएनयू को रोक नहीं पाए, आज तो पूरा देश जेएनयू बन चुका है, तो जेएनयू को कोई रोक नहीं सकता है। भूख हड़ताल 10वें दिन क्यों नहीं पहुंच जाए, हमने 12वें दिन लॉन्ग मार्च किया है भूख हड़ताल के। आज तो मैं नहीं बैठा लेकिन हमारे साथी बैठे हुए हैं। हमने जंतर मंतर पे 23 दिनों तक भूख हड़ताल करके चलो संसद का कॉल दिया था। तो जेएनयू उस वक्त नहीं जब रुका, तो आज क्या ही रुकेगा जब आज पूरा देश जेएनयू बन चुका है।
6: तो यानी 10 अक्टूबर को यानी कल जो सुबह में प्रोटेस्ट होगा, इसके लिए परमिशन नहीं दी गई?
5: प्रोटेस्ट के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। प्रोटेस्ट अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक लीगल डिमांड है। आप जब दंगा करते हैं ना, तो दंगा करने के लिए आपको परमिशन चाहिए कि हम दंगा राइट फैलाने जा रहे हैं, हम मारने जा रहे हैं किसी को। प्रोटेस्ट के लिए क्यों परमिशन चाहिए? दिल्ली का जंतर मंतर है, डेजिग्नेटेड प्लेस आप ही ने बनाया, कोई हमने तो बनाया नहीं है। आप क्यों नहीं वहां प्रोटेस्ट करने देंगे? तो परमिशन की कोई जरूरत नहीं है इस देश के नागरिकों को। ये देश का नागरिक सड़क को आबाद कर रहा है, कल भी आबाद करेगा और कल से बस रुकने वाला नहीं है।
0: नई दिल्ली में आज प्रोटेस्ट है, उसको लेकर कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, करीब 38 ट्रेनें हैं और रेलवे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी स्टेशन जो बहुत अहम है, वहां यात्रियों की भारी भीड़ है और ट्रेन में सवार होने के लिए जद्दोजहद है। बच्चों को इमरजेंसी खिड़की से अंदर बैठाया जा रहा है, हालात ऐसे हो गए कि ट्रेन के दरवाजों में अंदर जगह ही नहीं मिल पा रही है, धक्का दे देकर सामान डालकर एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है और लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब परेशान हैं।
7: दिल्ली
8: के लिए गाड़ी नहीं है?
7: नहीं, कैंसिल हो रही है गाड़ी। आज जो गाड़ी थी वो कैंसिल है।
8: तो अब कितनी देर से बैठे हुए?
7: मैं तो यहाँ बैठा हूँ 3-4 घंटे से बैठा हूँ।
8: क्या बता रहे हैं, कोई गाड़ी है आज?
7: अब कोई कंफर्म नहीं है बता रहे हैं, अब जो पहले से चल रही है उनके लिए बता रहे हैं, बकाया जो आज के लिए चल आ रही थी वो सब कैंसिल है।
8: चले जा रहे हैं फैमिली के साथ?
7: फैमिली के साथ। और क्या है कि लोगों को जब कहीं जाना होता है और जो ना मिले ट्रेन तो कितनी दिक्कत आती है, कोई बहुत जरूरी काम से जा रहा होता है।
9: दो गाड़ियां आई, दोनों भरी आई, बहुत बुरा हाल है, चढ़ नहीं पा रहे।
8: और गाड़ियां होंगी या कैंसिल हो गई?
9: कैंसिल बता रहे हैं।
8: दिक्कत हो रही है,
9: अनाउंसमेंट हो रहा है, अनाउंसमेंट तो हो रहा है।
8: तो आप कैसे, रिजर्वेशन किसी ने करा लिया, उसको क्या दिक्कत नहीं आ रही होगी?
9: अब ये तो रिजर्वेशन में, जनरल वाले रिजर्वेशन में घुस के जा रहा है, बहुत बुरा हाल है।
0: बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर भी लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी मंजिल तक जाना चाहते हैं, दिल्ली तक जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि आखिरी वक्त पर कैंसिल हो गई। और क्यों कैंसिल हो गई है? क्योंकि दिल्ली में सीजेपी का प्रदर्शन है। जैसे आपको बताया, कुछ 38 ट्रेनें हैं जो रद्द हुई हैं। अब ऐसे में यात्रियों की परेशानी कैसी रही वो भी सुन लीजिए।
10: दिल्ली में प्रोटेस्ट है, इसको लेकर अचानक से रद्द किया, इसको किस नहीं प्रोटेस्ट अलग चीज हो गया, लेकिन उसका सूचना तो आप पहले दे सकते हैं ना कि अमुक कारण से ट्रेन रद्द हो रही है। आप रिपोर्ट सूचना नहीं दीजिए और दूर दराज से आदमी आ रहा है, फिर सारा फैमिली के साथ आ रहा है, लगेज है, फिर फेयर लग रहा है, फिर जाने का फेयर लग रहा है, टाइम का भी कुछ तो केयर कीजिए।
11: देखिए, आज हम लोग को अचानक एक नोटिफिकेशन आती है कि बिहार की लगभग 4 ट्रेन है जो दिल्ली जाने वाली है वो एकाएक बंद कर दी जाती है सरकार के द्वारा। तो अब देखिए, ये अचानक बंद कर देने से आम आवाम में जो इतना परेशानियां हो रही, हम ही देखिए दिल्ली जाने वाले थे लेकिन हमारी टिकट जब कैंसिल हो गई तो हम एकाएक हक्का बक्का रह गए कि अभी कैसे जाएंगे। तो मेरी घर में जो फैमिली जिसका तबीयत खराब है, अभी हम परेशानी में है कि दिल्ली कैसे जाएं। ये सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर सिस्टम है। सरकार को पहले इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, पहले से जब उसको जानकारी थी कि आंदोलन वहां हो रही है, तो आंदोलन के नाम पे ये ट्रेन बंद करना कहीं से बर्दाश्त।
0: जनेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी मोर्चा खोले हुए हैं और इस बीच शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा। इधर सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में किलेबंदी कर दी गई।
12: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है। कोई भी प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा।
13: ज्ञानेश कुमार पर संग्राम, आज विपक्ष कल सीजेपी। 4 दिन से लगातार राहुल गांधी का ज्ञानेश कुमार पर वार।
14: मंडे को हम सुप्रीम कोर्ट यही पूरा का पूरा ग्रुप मेमोरेंडम ले इफ जस्टिस के लिए मेमोरेंडम लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
13: अब ज्ञानेश कुमार पर लड़ाई राष्ट्रपति के दर तक आई। सीईसी के इस्तीफे की मांग, राष्ट्रपति को इंडिया का ज्ञापन।
15: हमने तो पॉजिटिव आउटलुक से देखा है कि उन्होंने जो 2-4 बात कहा कि आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल गो थ्रू द एंड आम को सबूत चाहिए।
13: 10 अक्टूबर को सीजेपी का जंतर मंतर प्लान, किले में तब्दील दिल्ली।
16: डरे हुए हैं और जो आदमी डरता है आज नहीं कल मरता है।
17: भारत जैसे लोकतंत्र में प्रदर्शन की पूरी संभावनाएं हैं और आप जरूर करें प्रदर्शन, बट प्रदर्शन से समाधान नहीं निकलेगा, समाधान संवाद से निकलेगा।
13: एक तरफ दिल्ली किले में तब्दील हो चुकी है, दिल्ली पुलिस से लेकर बीएसएफ भी दिल्ली की सीमाओं पर तैनात है, तो दूसरी तरफ लगातार 4th दिन राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए उतरे और 4th दिन अपनी मांग को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दर पर पहुंचते हैं।
18: यहां पे आप देखिए कि संसद भवन से बाहर मार्च करते हुए ये तमाम नेता नजर आ रहे हैं और कुछ इस तरीके से लोकतंत्र बचाओ अभियान छेड़ दिया है यहाँ पे इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने। और बैठक के बाद, 5 बजे की बैठक के बाद इस तरीके से नारेबाजी और घेराबंदी यहाँ पे विजय चौक पर हम लोग पहुँच गए हैं। ये विजय चौक है, पीछे आप देखें कि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है।
19: मांग तो पूरे देश की जो मांग है कि पूरा जो संरचना है बेईमानी का उसको खत्म किया जाए और ज्ञानेश जी प्रतीक पुरुष है जो शील्ड बन के खड़े हैं मोदी जी और अमित शाह जी वो चले जाए।
20: देखिए मुझे लगता है कि जो सारे देशभक्त हैं वो देश में लोकतंत्र को बचाने में लगे हैं, वो चाहे किसी राजनीतिक दल के सदस्य हो या न हो। और जो आज जो वोटर लिस्ट में पूरे चुनाव प्रक्रिया में जो धूल मिलाने का जो काम हो रहा है वो आज के तारीख में सबसे बड़े देशद्रोही का काम है।
21: मुझे हंसी आ रही कि सरकार इतनी डर गई, लोग परेशान हो गए, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ब्लैंकेट बैन क्यों लगा रहे, सब क्यों बंद कर रहे, सारे मेट्रो ट्रेन बंद, सारी ट्रेनें बंद, सारे बसेस बंद, दिल्ली में घुस नहीं सकते, इतना डर।
13: इसके 2 मकसद हैं, एक तो इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाना, दूसरा ये बताना कि सारे विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा चाहते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने वालों में बड़े नाम थे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, सीपीएम के एमए बेबी, सीपीआई के डी राजा, समाजवादी पार्टी के राजीव राय, सुप्रिया सुले, उमर अब्दुल्ला, मनोज झा और वीसीके के टी तिरुमावलन। जब इंडिया गठबंधन के ये 10 नेता राष्ट्रपति द्रौपदी से मिलने राष्ट्रपति भवन के अंदर पहुंचे तो बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई।
14: एक प्रकार से मैं आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि जब हमने राष्ट्रपति को इलेक्शन चोरी वोट चोरी के बारे में बताया तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने डिनाई नहीं किया। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने यह नहीं कहा कि हिंदुस्तान में चुनाव चोरी नहीं हो रहे हैं। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने उल्टा हमसे कहा कि आप सबूत हमारे पास लाइए और यही ग्रुप खुशी से जो पूरा का पूरा सबूत हमने कलेक्ट किया है राष्ट्रपति के पास ले जाएगा, ले जाने के लिए तैयार है। पूरा देश जानता है, स्टूडेंट्स जानते हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है। नरेंद्र मोदी इसके आर्किटेक्ट हैं, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार इसके इम्प्लीमेंटर्स हैं, और इस बात को राष्ट्रपति ने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने आज डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में सोचेंगी और एक्शन लेंगी।
15: हमने
0: यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या होगा विधान और कैसे होगा समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: एक कचौड़ी, दो समोसा, चकमक, तेरा क्या भरोसा?
2: चकमक चाचा से सीधे चकमक है?
1: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, पूछ रहा ना।
2: लेकिन भैया नारे, अरे फालतू में सब बेकार, एकदम बेकार। नारे होते थे हमारे टाइम।
1: अच्छा
2: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
1: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
2: अरे जमीन के चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में?
1: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
2: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
1: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा लेके जाएंगे।
2: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
1: अरे लाल फूल, नीला फूल, जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
2: अरे बारी बारी, सबकी बारी, आपकी बारी, अटल बिहारी।
1: चाय गरम, दूध गरम, चकमक चाचा भी शरम
2: है।
1: हाँ,
2: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
1: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
3: हम जैसे, इधर आओ। हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
1: आई चाचा, खेल रहा।

सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दिल्ली किले में तब्दील, राजधानी की सभी सीमा सील, नई दिल्ली के 4 किलोमीटर दायरे में इंटरनेट सेवा बंद, 45 मेट्रो स्टेशन के गिरे शटर। दिल्ली की किलेबंदी पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत का मक्खी मारने के लिए हथौड़ा नहीं चला सकते। सर्वोच्च अदालत ने कहा, इतना ही एहतियात करें जिससे आम लोगों को ना हो परेशानी। राष्ट्रपति से इंडिया गठबंधन के नेताओं की मुलाकात पर विपक्ष और बीजेपी में ठनी, राहुल का दावा, वोट चोरी के आरोपों पर महामहिम भी सहमत, बीजेपी बोली झूठ बोल रहे हैं राहुल। उपचुनाव में बीजेपी एनडीए के शानदार प्रदर्शन पर बम बम बीजेपी, पीएम मोदी ने कहा इस जनादेश से मिलेगी और मजबूती, अमित शाह बोले राहुल के झूठ और दुष्प्रचार के बावजूद बड़ी जीत। और दूसरे T20 में भारत की 6 विकेट से करारी हार, शे होप के आतिशी शतक से वेस्टइंडीज ने 250 रन के विशाल

आपका, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कल से नवरात्रि का आरंभ हो रहा है और आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे नवरात्रि की तैयारियों के बारे में और कलश स्थापना के नियम और मुहूर्त के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

26 दिन शनिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, रात के 9:19 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, रात के 9:42 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 9:10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। कल से नवरात्रि का आरंभ होने जा रहा है और आपको हम एक दिन पहले ही नवरात्रि की तैयारियों की जानकारी देंगे। नवरात्रि और इसके दिनों का महत्व क्या है? देखिए, नवरात्रि साल में 4 पड़ती है, माघ में, चैत्र में, आषाढ़ में और आश्विन में। नवरात्रि से वातावरण के तमस का अंत होता है और सात्विकता की शुरुआत होती है। मन में उल्लास, उमंग और उत्साह की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है, इसीलिए नवरात्रि में देवी की उपासना ही की जाती है। नवरात्रि के 9 में देवी के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है और हर स्वरूप से विशेष तरह का वरदान मिलता है और ग्रहों की तमाम बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यानी नवरात्रि के जो 9 हैं वो शक्ति की कृपा प्राप्त करने का अद्भुत अवसर हैं और इसमें आपको देवी की और शक्ति की कृपा मिल सकती है। इस बार नवरात्रि 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक रहेगी, जिसमें हम सब शक्ति की पूजा करेंगे। नवरात्रि पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, चिंताएं कम होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रीन।

समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। तो नवरात्रि का आरंभ कल से हो रहा है, नवरात्रि के पहले क्या क्या तैयारियां हमें करनी चाहिए। नवरात्रि के पहले माँ दुर्गा का एक चित्र, उनकी या तो एक मूर्ति, लाल वस्त्र, चौकी और मिट्टी के कलश की या धातु के कलश की व्यवस्था कर लें। घर को हर तरीके से साफ सुथरा कर लें। अगर घर में तामसिक चीजें हैं, प्याज लहसुन आदि है, तो उसको दूर कर दें। अगर आपको कलश स्थापित करना है, अखंड दीपक जलाना है, तो मिट्टी के एक बड़े दीपक की व्यवस्था करें। दोनों समय चूंकि नवरात्रि में पूजा होगी तो दोनों वेला के प्रसाद की व्यवस्था करें, और प्रसाद में सबसे उत्तम होगा कि आप लौंग और बताशा ला करके अपने घर में रख लें। तो घर की पर्याप्त साफ सफाई कर लें, घर में पवित्रता मेंटेन रखें ताकि नवरात्रि के 9 दिनों तक आप पूजा उपासना कर पाए। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि में 9 दिन की साधना के लिए कलश की स्थापना कैसे करेंगे। घर के उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में एक चौकी या एक ऊंचा आसन स्थापित करिएगा। इस पर लाल कपड़ा बिछाइए और उसके ऊपर माँ दुर्गा की मूर्ति या माँ दुर्गा का चित्र स्थापित करिएगा। उसके पास एक मिट्टी का कलश स्थापित करिएगा। कलश में जल भरिएगा और एक सिक्का डालिएगा। कलश के मुख पर मौली से बंधा हुआ एक नारियल रखिएगा। कलश के चारों तरफ मिट्टी लगाकर उसमें जौ बो सकते हैं या अलग से वेदी बनाकर उसमें जौ बोइएगा। कलश की जब आप स्थापना करेंगे देवी के सामने कल यानी नवरात्रि के पहले दिन, तो उसके साथ एक अखंड दीपक भी आपको जला देना चाहिए। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, करियर में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, परिवार में शांति बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की चिंता समाप्त होगी। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अभिषेक वर्मा ने हमें लिखा है, आगरा से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अक्टूबर 1980, जन्म का समय शाम के 7:35, जन्म स्थान है शिकोहाबाद। अभिषेक कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो मेरा जीवन कब से बेहतर होगा, कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगी। अभिषेक आपकी कुंडली कहती है कि जो व्यापार आप अभी कर रहे हैं उस व्यापार में आप आने वाले समय में बदलाव करेंगे जो कि आपके लिए सही रहेगा और पूरी तरह से कर्जा उतरेगा 2028 के अगस्त तक। आपका बेहतर समय मई 2027 से आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहने। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें, आपको लाभ होगा। देखिए, नवरात्रि में बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। व्रत रखने का नियम क्या है और विधान क्या है? देखिए, नवरात्रि में 9 दिन का व्रत भी रखा जा सकता है और 2 दिन का व्रत भी रखा जा सकता है। जो लोग 9 दिन व्रत रखेंगे वो लोग व्रत का समापन करेंगे दशमी तिथि को, दशमी तिथि को पारायण करेंगे। जो लोग 2 दिन व्रत रखेंगे पहली और अष्टमी तिथि को, वो लोग नवमी को पारायण करेंगे। जब आप नवरात्रि का उपवास रखते हैं तो उपवास के दौरान फलाहार और जलाहार ग्रहण करना सर्वोत्तम होगा। ज्यादा तली भुनी चीजें उपवास में मत खाइएगा। और जो लोग बीमार हैं या शारीरिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे लोग कृपया उपवास ना रखें। सात्विक आहार ग्रहण करके नवदुर्गा की पूजा करिए, लेकिन अगर बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो उपवास रखने से बचना चाहिए। हर बार देवी का आगमन किसी एक विशेष वाहन पर होता है और उससे आने वाले समय के बारे में अनुमान लगाया जाता है। तो इस बार देवी के आगमन से क्या सूचना मिल रही है? हर बार देवी का आगमन किसी विशेष वाहन पर होता है, इससे आने वाले समय के बारे में अनुमान लगाया जाता है। इस बार देवी का आगमन हाथी पर यानी गज पर हो रहा है और हाथी पर आगमन बड़ा शुभ है,
गज पर आगमन संपन्नता समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। हाथी पर आगमन होने से आने वाले समय में लोगों के जीवन में शांति और आनंद आएगा और देवी का हाथी पर आगमन हर व्यक्ति के लिए शुभ होगा, हर व्यक्ति के लिए मंगलकारी होगा। नवरात्रि में कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

सफलता हो सकती है। करियर में बड़े निर्णय ना लें, धन हानि हो सकती है। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि।

आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम पूरा होगा, विदेश से लाभ के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, नवरात्रि का प्रथम दिन नव दुर्गा की साधना के आरंभ का दिन है और कल से नवरात्रि आरंभ हो रही है, तो पूजा में सबसे पहला काम जो नवरात्रि में किया जाता है वो कलश की स्थापना है। कलश की स्थापना का मुहूर्त क्या होगा? देखिए, कलश की स्थापना आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को की जाती है। इस बार आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 11 अक्टूबर को रात में 9:30 तक रहेगी। इसीलिए कलश की स्थापना इसके पहले कर लेनी होगी। कलश स्थापना का सबसे अच्छा समय 11 अक्टूबर को प्रातः 6:18 से 10:11 के बीच का है। इसके अलावा दोपहर 11:44 से 12:30 के बीच का समय भी उत्तम है। इस समय भी कलश की स्थापना की जा सकती है। फिर बता दूं कि रात के 9:30 तक प्रतिपदा की तिथि है। प्रतिपदा के समापन के पहले शुभ समय में कलश की स्थापना कर ली जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में लाभ होगा, वाहन सावधानी से चलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, पारिवारिक समस्या हो सकती है। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, महत्वपूर्ण काम पूरा होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं।

देवी की उपासना में लाल रंग की वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग होता है, ऐसा क्यों? देखिए, लाल रंग रजोगुण का रंग है और शक्ति का रंग माना जाता है, तो देवी की पूजा शक्ति की प्राप्ति के लिए की जाती है, इसीलिए देवी की पूजा में लाल रंग के फूल, लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग की चुनरी का प्रयोग किया जाता है ताकि देवी से शक्ति का वरदान मिल सके। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 6, कोई यात्रा हो सकती है। नंबर 7, धन लाभ के योग हैं। नंबर 8, मानसिक चिंता हो सकती है। और नंबर 9, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनि मंत्र का जप करिएगा, ऐसा करने से आपके रोजगार की स्थिति में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक@aajtak.com पर। अगला प्रश्न गरिमा ने हमें लिखा है और गरिमा हमें पटना बिहार से मेल लिखती हैं। गरिमा की जन्म तारीख है 14 फरवरी 1999। जन्म का समय सुबह के 5:35। जन्म स्थान है पटना बिहार। गरिमा कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल सकेगी? गरिमा, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप टीचिंग क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो साल 2027 में शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय सेवा आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, थोड़ा फोकस और मेहनत बढ़ाने की जरूरत है, तो आप एक मोती बनवा लीजिएगा, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, अदरक खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है
तो हनुमान चालीसा का पाठ करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए या चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन भूमि भवन, तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

शुभ होगा कन्या राशि वालों के लिए, हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा।

लाभकारी यात्रा हो सकती है। आज सावधान रहना होगा, मिथुन राशि के लोगों को सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज अमावस्या तिथि है, आज कोई भी शुभ और मंगल कार्य ना करें। आज अपनी सामर्थ्य के अनुसार

आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

और अब दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन की। दिल्ली में प्रदर्शन में सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए नई दिल्ली से लेकर बॉर्डर तक सुरक्षा का पहरा है। वहीं मुंबई से दिल्ली के लिए सीजेपी के अभिजीत दिपके रवाना हो गए हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया उन्होंने कि 10 बजे मिलते हैं जंतर मंतर पर। जंतर मंतर की तरफ जाने वाले रास्तों पर बैरिकेटिंग और सघन चेकिंग अभियान जारी है अभी भी। और ये देखिए, ये इस तरह से बैरिकेटिंग लगा दी गई है, हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है हर बैरिकेटिंग पर। आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। अब ये दावा है कि नई दिल्ली के 4 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवा बंद है। मेट्रो रेल सेवाओं पर भी पाबंदियों का असर पड़ा है। कई ट्रेनें रद्द हैं तो 45 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। एंट्री एग्जिट पॉइंट बंद, हजारों सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। ऐसे में आज प्रदर्शनकारियों के मार्च और पुलिस की तैयारियों पर सबकी नजर है। और अब वक्त उछला है नॉन स्टॉप 100 का। प्रेजेंट

मुकम्मल तौर पर सीजेपी के प्रदर्शन को नहीं मिली इजाजत। मेट्रो के 45 स्टेशन बंद। दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें रद्द। कुछ इलाकों में इंटरनेट भी ठप। राजधानी दिल्ली में बीती रात से मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद। अगले आदेश तक जारी रहेगी रोक। 45 स्टेशनों से गुजरने वाली ट्रेनों के फेरे घटाने और गेट बंद करने का भी ऐलान। टीएमआरसी संबंधित अधिकारियों और स्टाफ को जरूरी निर्देश। रेलवे का बड़ा फैसला। आज सुबह 4 से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली सभी ट्रेनें रद्द। रेलवे ने ट्रैफिक जाम का दिया हवाला। सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली ट्रेनें शुरुआती स्टेशन पर ही रद्द हो जाएंगी। उत्तर रेलवे का बयान। कुल मिलाकर दिल्ली आने वाली जाने वाली 75 ट्रेन कैंसिल। नई दिल्ली में जनपद इलाके में 4 किलोमीटर के दायरे में 9 अक्टूबर रात 10 से 10 अक्टूबर रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद। चिनॉट प्लेस में शनिवार को सभी दफ्तर और दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही भागीरथ प्लेस भी दुकानें बंद रहेंगी। दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजों में क्लास ऑनलाइन की गई। परीक्षाएं टाली गई। प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद। 20,000 सुरक्षाकर्मी सहित 300 नए ऑडियो वीडियो सीसीटीवी कैमरों की तैनाती की गई। दिल्ली पहुंचने वाले यात्रियों को मुश्किलों से बचाने का मकसद। यात्रियों की जानकारी और सुविधा के लिए फैसला। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। वोट चोरी के आरोपों पर बैलेट पेपर से चुनाव घुटाने की मांग। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद विपक्ष ने सरकार पर और सख्त किया घेरा। बोले राहुल, वोट चोरी किया हमारे आरोपों पर महामहिम भी सहमत। राहुल गांधी ने कहा सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राहुल गांधी पर बीजेपी का वार। कहा राहुल गांधी ने संवैधानिक सीमा लांघी है। दिल्ली की किलेबंदी पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत का मक्खी मारने के लिए हथौड़ा नहीं चला सकते। सब कुछ ठप होने से आम लोग ना हो परेशान। दिल्ली में प्रदर्शन से पहले पुलिस अलर्ट। 12 डिटेंशन सेंटर बनाए। जवानों को संयम बरतने के निर्देश। दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यात्रियों की सुविधा को लेकर चिंता। दिल्ली में प्रदर्शन से पहले अलर्ट। बॉर्डर पर भारी फोर्स तैनात। बीएसएफ के जवान भी मौजूद। संदिग्ध वाहनों की चेकिंग। दिल्ली पुलिस की अपील, जिम्मेदारी से व्यवहार करें। जिम्मेदार भाषा और सम्मान को जरूरी बताया। मनीष सिसोदिया का केंद्र पर हमला। बोले देश में अघोषित आपातकाल लगा है। प्रदर्शन रोकने के लिए जनता को हो रहा है नुकसान। उपचुनाव में बीजेपी एनडीए के शानदार प्रदर्शन पर पीएम मोदी का पोस्ट। जनता का जताया आभार। कहा इस जनादेश से मिलेगी और मजबूती। अब नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल हवाई अड्डा होगा नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का नाम। यूपी कैबिनेट में फैसले पर मोहर। जेवर एयरपोर्ट के नाम बदलने पर अखिलेश यादव का तंज। बोले नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री को जनता बदलने जा रही है। अखिलेश यादव का ऐलान, शुभ मुहूर्त निकलते ही अयोध्या जाकर राम मंदिर में करेंगे दर्शन। बोले जरूर जाऊंगा। आज है महालया का पावन दिन। पूरे देश में भक्ति और उत्साह का माहौल। नवरात्रि से पहले माता वैष्णो देवी के धाम में तैयारी जारी। बाजार से लेकर भवन तक फूलों लाइटों और तोरण द्वारों से सजावट। कोलकाता के ईडन गार्डन में महालया की शाम को मेगा इवेंट। प्रधानमंत्री मोदी कम से कम 5 दुर्गा पूजाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 5,000 पूजा कमेटियों को संबोधित करेंगे। चेन्नई में राहुल गांधी आज छात्रों से मिलेंगे। छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। देशभर में अंतिम चरण में शक्ति उत्सव की तैयारी। मां की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में लगे मूर्तिकार। मां के विभिन्न स्वरूपों में किया जा रहा सुंदर श्रृंगार। राजकोट में नवरात्रि को लेकर आखिरी तैयारियां पूर्ण। खलैयाओं ने नए स्टेप्स और कॉस्ट्यूम्स के साथ की तैयारी। हिंदू संगठनों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर बड़ी मांग। 11 अक्टूबर से शुरू हो रहे नवरात्र पर पश्चिम बंगाल में जोरों पर दुर्गा पूजा की तैयारियां। दुर्गापुर में अमेरिका के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर सज रहा है पंडाल। 59वें साल में दिखेगी भव्यता। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में भी दुर्गा पूजा की भव्य तैयारी। बड़े बड़े पंडालों का निर्माण। रविंद्र संघ पूजा समिति के पंडाल में मां बाप के अलग होने पर बच्चों पर हो रहे असर को दिखाया जाएगा। प्रयागराज के आलोक शंकरी मंदिर में श्रद्धालुओं की विशेष आस्था। मंदिर में नहीं है देवी मां की कोई मूर्ति। यहां मां के दिव्य पालने की होती है पूजा। जूनागढ़ के सासण फिर जंगल में जंगल सफारी का आगाज। सफारी सीजन के पहले ही दिन पर्यटकों को हुआ शेरों का दीदार। जंगल में शेरनी और उनके शावकों के साथ नए शेर भी नजर आए। शेरों को देख रोमांचित हुए पर्यटक। बारिश के मौसम के बाद खुलता है गिर सफारी। फ्लाई दुबई के कैप्टन स्मिथ मच्छार को प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित करेगा इसराइल। राष्ट्रपति ने ऐलान किया।
नागरिक वीरता के लिए दिया जाता है राष्ट्रपति पुरस्कार। इस पर छाड़ने की पायलटों के मंसूबों को नहीं होने दिया, को पायलट के मंसूबों को नहीं होने दिया पूरा। 174 यात्रियों की जान बचाई। लद्दाख में शुरू हुई देश की पहली हाई एल्टीट्यूड सफारी, स्नो लेपर्ड के दीदार का मौका। 6 गाड़ियों को एलजी ने दिखाई हरी झंडी। देहरादून अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चापड़ लेकर घुसा युवक, बच गई अफरा तफरी, सीसीटीवी में कैद। बिजनौर में बैंक के ब्रांच मैनेजर ने असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर को मारी लात, नियमों के खिलाफ काम करने से मना किया तो चेन्नई ट्रांसफर कराने की धमकी। जोधपुर के सैलून में महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप, आरोपित गिरफ्तार, मोबाइल में मिले अन्य वीडियो की जांच जारी। डांग की घाटीदार सड़क पर बाइक स्टंट, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। मेरठ में बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर फायरिंग का आरोप, पुलिस ने कहा पुराने विवाद के चलते हुई फायरिंग। मेरठ में स्कूली छात्रों के दो गुटों में मारपीट, बेल्ट और चेन से हमला, वीडियो वायरल हुआ है। लखनऊ में होमगार्ड ने पत्नी और बेटे की गला घोटकर हत्या की, वारदात के बाद डायल 112 पर दी सूचना, थाने पहुंचकर सरेंडर। बागपत में 14 सेकंड के सीसीटीवी में कैद हुआ मौत का मंजर, सिलेंडर ब्लास्ट, सड़क पर आग और भागती भीड़, अब तक 3 की मौत। ललितपुर में किसान से 15,000 रुपए की रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कानपुर में भरे बाजार, तेज रफ्तार ऑटो हुआ बेकाबू, 2 सेकंड की देरी से बगल में खड़ा था दुकानदार, बच गया। अलवर में कार से आए चोर और घर के बाहर खड़ी कार चोरी करते हुए फरार हो गए। मोगा में सिख युवक के अपहरण और बेरहमी से पिटाई का आरोप, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, संगरूर पुलिसकर्मी पर लगे गंभीर आरोप। इंदौर में क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन, ऑनलाइन सट्टेबाजी, क्रिकेट और कैसीनो सट्टेबाजी नेटवर्क का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, 9 मोबाइल, लैपटॉप, कैश जब्त। असम के बोंगाई गांव में झपट मारो का आतंक, जैन मंदिर के बाहर महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार, सीसीटीवी में कैद। इंदौर में मोबाइल दुकान में तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। जामनगर में बेकाबू कार ने एक रिक्शा, 2 बाइक, बिजली के खंभे और मकान को मारी टक्कर, अफरा तफरी का माहौल। कच्छ में भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर और डंपर की टक्कर में 7 मजदूरों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। तरन तारण में आप सरपंच अश्विनी की हत्या, सीसीटीवी में कैद, बाइक सवार हमलावरों ने गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। भोपाल में प्रेमी जोड़े की मौत से सनसनी, पहले चूहा मार, दवा खाई और फिर फंदे पलट के। फरीदाबाद में 7 पढ़ने वाली लड़की के घर फंदे से लटका मिला 10वीं के छात्र का शव, परिजनों ने छात्र के घर पर जमकर किया हंगामा, लगाया हत्या के आरोप। ओडिशा के जगत सिंहपुर में घर में पटाखा बनाते समय जबरदस्त ब्लास्ट, हादसे में पिता पुत्र की मौत। उधम सिंह नगर में ओवरटेक के दौरान बिड़े डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली, हाईवे की दूसरी ओर कार भी चपेट में आई, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बस्ती में रास्ते के विवाद में दो पक्षों में पथराव, छत से पत्थरों की बरसात का वीडियो वायरल, एक आरोपी गिरफ्तार। पूरे मारपीट और पथराव की चपेट में आने से कुल 4 लोग घायल, भारी पत्थर लगने से एक छोटी बच्ची भी घायल हुई। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
2: एक दो, एक श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ
1: एक हिंट तो देते।
2: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
3: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
2: असली शहद, असली स्वाद।
4: How's the hostel? Settled?
5: Yes, Mom, really nice.
4: कोई आ रहा है क्या?
6: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटी तो निभाली, अब फिर से थोड़ा रोमांस है।
4: मयंक, for real?
6: One carat for my one true love. Natural diamond, real love, solitaire. To reignite your new season of love.
7: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार। सर एक बार दो तीन थमका लगाने बस।
8: मेरे पास एक आइडिया है।
7: क्या?
8: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
9: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
10: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
11: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
9: कौन सी बनानी है?
12: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
13: गैसो फास्ट 27%,
12: इनो 9.2%।
14: गड़बड़ है।
15: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
16: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
17: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
18: इट्स अ माय वे।
19: और वही कहाँ गए थे घूमने?
20: जीके मैक्स।
21: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
20: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
21: जेके वॉल मैक्स
20: बेस्ट पेंट,
21: जेके मैक्स।
20: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints. JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।
22: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
23: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
22: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
24: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ? पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है। तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
25: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।

AI ने इंसानों का काम आसान किया है, लेकिन AI की बढ़ती ताकत ही सबसे बड़ी चिंता बनती जा रही है। डर यह है कि AI जितनी तेजी से ताकतवर हो रहा है, क्या उसकी सुरक्षा भी उतनी ही तेजी से मजबूत हो रही है? एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोडे ने इसी को लेकर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि AI मॉडल की क्षमता तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सुरक्षा इंतजाम अभी भी पीछे है, जबकि अगले 6 से 12 महीनों में AI एजेंट्स की क्षमता काफी बढ़ने का अनुमान है, जिसके गलत इस्तेमाल से साइबर अटैक और फ्रॉड का खतरा बढ़ सकता है और AI के लिए मजबूत सुरक्षा मानक बनाने की जरूरत है। अमोडे का कहना है कि आने वाले महीनों में AI एजेंट्स इंटरनेट पर बड़े पैमाने पर काम करने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। अगर ऐसी ताकत का गलत इस्तेमाल हुआ तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। ये खतरा कागजी नहीं है। एंथ्रोपिक की थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट में उसके क्लॉड मॉडल के साइबर ऑपरेशन, निगरानी, फ्रॉड और हथियारों से जुड़े काम में गलत इस्तेमाल की कोशिशों का जिक्र है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा पिंच यही है कि दुनिया AI से डर भी रही है और AI की रेस से पीछे भी नहीं हटना चाहती। अमेरिका और चीन दोनों AI को आर्थिक ताकत के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं। अमेरिका की कोशिश है कि चीन AI की रेस में आगे ना निकले, जबकि चीन AI में आत्मनिर्भर बनने पर जोर दे रहा है। इससे अमेरिका और चीन के बीच AI की बढ़त को लेकर मुकाबला तेज होता जा रहा है। चीन का फोकस AI में आत्मनिर्भरता और घरेलू टेक्नोलॉजी पर है। वहीं अमेरिकी एजेंसियों ने चीनी कंपनियों पर AI मॉडल से क्षमता निकालने का आरोप लगाया है, जबकि चीन ने इन आरोपों को अमेरिकी टेक दबाव की रणनीति बताया है। यानी समस्या ये नहीं है कि दुनिया AI को रोकना चाहती है, समस्या ये है कि हर देश चाहता है कि AI की अगली बड़ी छलांग उसके हाथ से निकले और इसी रेस में सुरक्षा पीछे छूटने का डर है। AI की इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दुनिया AI की रफ्तार को इतनी तेजी से आगे बढ़ा सकती है कि आर्थिक और तकनीकी बढ़त भी बनी रहे, लेकिन सुरक्षा उसके पीछे न छूटे। असल में आने वाले वक्त में AI केवल चैटबॉट या स्मार्ट टूल नहीं रहेगा, इसका असर नौकरी, कारोबार, साइबर सिक्योरिटी और राष्ट्रीय सुरक्षा तक दिखाई देगा। AI की रेस में अमेरिका और चीन अपनी बढ़त के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन इस दौड़ में असली जीत तभी होगी जब AI की ताकत के साथ उसकी जिम्मेदारी और सुरक्षा भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। आज तक ब्यूरो।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ
1: एक हिंट तो देते।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार रोटी ठुमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
4: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
4: कौन सी बनानी है?
7: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
8: गड़बड़ है।
9: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
10: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
11: और वही कहाँ गए थे घूमने?
12: GK Max.
13: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
12: GK Max. Best putty.
14: JK Wall Max.
12: Best paint.
14: JK Max.
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन most beautiful walls के लिए सिर्फ JK Max paints. JK Max. JK Max paints. खुशियों के रंग.
15: आ गया सोमवार और आ गए
16: चकमक चाचा।
15: एक कचौड़ी दो समोसा चकमक, तेरा क्या भरोसा?
17: चकमक चाचा से सीधे चकमक है?
15: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, बुझ रहा ना।
17: लेकिन भैया नारे, अरे फालतू सब बेकार, एकदम बेकार। अरे होते थे हमारे टाइम।
15: अच्छा
17: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई
15: छूटेंगे। तो खत्म कहानी।
17: अरे जमीन के चकबंदी में, जमीन के चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में?
15: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
17: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
15: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा दे के जाएंगे।
17: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
15: अरे लाल फूल नीला फूल जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
17: अरे बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अखिल बिहार।
15: चाय गरम दूध गरम चकमक चाचा भी सरम
17: है।
15: हाँ,
17: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
15: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
18: हम जैसे? इधर आओ।
19: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
15: चाचा,

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ
1: एक हिंट तो देते।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
4: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता, पर स्टेज नहीं हिलता,
3: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
4: कौन सी बनानी है?
6: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
7: गड़बड़ है।
8: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
10: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
11: GK Max.
12: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
11: GK Max. Best पुट्टी?
13: JK Wall Max.
11: Best paint?
13: JK Max.
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन most beautiful walls के लिए सिर्फ JK Max paints. JK Max. JK Max paints. खुशियों के रंग.
14: आ गया सोमवार और आ गए
15: चकमक चाचा।
14: एक कचौड़ी, दो समोसा, चकमक तेरा क्या भरोसा?
16: चकमक चाचा से सीधे चकमक है?
14: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, गूंज रहा ना।
16: लेकिन भैया नारा अरे फालतू में सब बेकार, एकदम बेकार। अरे होते थे हमारे टाइम।
14: अच्छा
16: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई
14: दो कुलचा एक बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
16: अरे जमीन के चकबंदी में, जमीन के चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में?
14: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
16: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
14: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा दे के जाएंगे।
16: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
14: अरे लाल फूल, नीला फूल, जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
16: अरे बारी बारी, सबकी बारी, अब की बारी, अटल बिहारी।
14: चाय गरम, दूध गरम, चकमक चाचा भी शरम
16: है।
14: हाँ,
16: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
14: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
17: हम जैसे? इधर आओ।
18: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
14: आई चाचा।

कार खरीदने वाला हर ग्राहक एक ही सवाल पूछता है, माइलेज कितना मिलेगा और जेब पर कितना बोझ पड़ेगा। आने वाले समय में ये सवाल ऑटो कंपनियों के लिए भी सबसे जरूरी होने वाला है। वजह है सरकार के नए फ्यूल एफिशिएंसी नियम जो कार बाजार की तस्वीर बदल सकते हैं। सरकार ने कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नॉर्म्स यानी CAFE 3 को नोटिफाई कर दिया है। ये नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे और 2032 तक प्रभावी रहेंगे। इन नए नियमों को 2032 तक फेज वाइज सख्त तरीके से लागू किया जाएगा। इनके जरिए 5 साल में फ्यूल एफिशिएंसी में करीब 16.7% सुधार का लक्ष्य है और इसके लिए कंपनियों को पूरे बेड़े की औसत खपत कम करनी होगी। इन नियमों का असर किसी एक मॉडल पर नहीं, कंपनी की कुल गाड़ियों के औसत फ्यूल कंजम्पशन पर पड़ेगा। इसलिए कंपनियां अपनी पूरी रणनीति पर दोबारा काम कर सकती हैं। नए नियमों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खास जगह दी गई है। यही वजह है कि आने वाले वर्षों में ग्राहकों

को ज्यादा किफायती ईवी देखने को मिल सकती हैं। नियमों के मुताबिक एक बैटरी ईवी को कैलकुलेशन में 3 गाड़ियों के बराबर वेटेज दी गई है। ऐसे में ज्यादा ईवी बिक्री से कंपनियों को नियम पूरा करने में मदद मिलेगी। वहीं एंट्री लेवल और किफायती ईवी लॉन्च पर भी फोकस बढ़ सकता है और हाइब्रिड गाड़ियों को भी अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा। इंडस्ट्री का मानना है कि ज्यादा बिक्री वाली किफायती ईवी कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। इससे इलेक्ट्रिक कारों की रेंज बढ़ाने और नए मॉडल लाने पर जोर बढ़ सकता है। दूसरी तरफ बड़ी एसयूवी और ज्यादा ईंधन खपत वाली पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में कंपनियां प्राइसिंग और मॉडल मिक्स बदल सकती हैं। कहीं बेहतर माइलेज वाली तकनीक पर निवेश बढ़ सकता है और ग्राहकों को ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट विकल्प मिल सकते हैं। जानकारों का मानना है कि कंपनियां नियमों को पूरा करने के लिए कुछ ज्यादा उत्सर्जन वाली गाड़ियों की कीमतों और पोर्टफोलियो में बदलाव कर सकती हैं। हालांकि कौन सी गाड़ी कितनी महंगी या सस्ती होगी, इसका फैसला कंपनियां अपने स्तर पर करेंगी। कुल मिलाकर नए नियमों का मकसद पेट्रोल और डीजल की खपत कम करना है, प्रदूषण घटाना और साफ तकनीक वाली गाड़ियों को बढ़ावा देना है। इसका असर अगले कुछ साल में कार बाजार में दिख सकता है, जहां ग्राहकों के सामने इलेक्ट्रिक और ज्यादा माइलेज वाली गाड़ियों के विकल्प बढ़ते नजर आ सकते हैं। आज तक ब्यूरो।

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली किले में तब्दील। जंतर मंतर के आसपास भारी सुरक्षा, 4 किलोमीटर दायरे में इंटरनेट सेवा बंद। राजधानी की सभी सीमाएं सील, 45 मेट्रो स्टेशन बंद। मुंबई से दिल्ली रवानगी से पहले सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने प्रदर्शन की इजाजत न मिलने पर सरकार पर साधा निशाना, कहा 9:30 बजे तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद।

दिल्ली की किलेबंदी पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत का मक्खी मारने के लिए हथौड़ा नहीं चला सकते। सर्वोच्च अदालत ने कहा उतना ही एहतियात करें जिससे आम लोगों को ना हो परेशानी। राष्ट्रपति से इंडिया गठबंधन के नेताओं की मुलाकात के बाद राहुल गांधी का दावा, महामहिम ने हमसे मांगे हैं वोट चोरी के सबूत, हम उन्हें हर प्रमाण देंगे। बीजेपी बोली संवैधानिक सीमा लांघ रहे हैं राहुल। और उपचुनाव में बीजेपी एनडीए के शानदार प्रदर्शन पर बम बम बीजेपी, पीएम मोदी ने कहा इस जनादेश से मिलेगी और मजबूती। अमित शाह बोले राहुल के झूठ और दुष्प्रचार के बावजूद बड़ी जीत।

0: देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ मानशु दीक्षित। और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा प्रदर्शन प्रस्तावित। और इससे देखते हुए आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली छावनी में तब्दील हो गई। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के भारी इंतजाम किए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती है। किसी भी प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। जगह जगह इस बात की घोषणा भी की जा रही है, लाउड स्पीकर के थ्रू अनाउंस किया जा रहा है कि नई दिल्ली में BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लगाई गई है, तो प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। आज 45 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, नो एंट्री नो एग्जिट। दिल्ली से आने और जाने वाली कई ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं और यह संख्या बहुत ज्यादा है दिल्ली जो पहुंच रही है। और देखिए ये अब तस्वीरें आना शुरू हो चुकी हैं, तस्वीरें आना शुरू हो चुकी है। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जो जुलाई में कुछ तस्वीरें आपने देखी थी, कुछ ऐसी तस्वीरें आज भी आप देख रहे हैं। ये CJP का प्रदर्शन शुरू हो चुका है और जैसा कि दिल्ली पुलिस ने कहा था कि आप खुद जिम्मेदार होंगे अगर आप यहां पर आएंगे, तो आप तस्वीरें देख लीजिए। कुछ छात्र आए हुए हैं, कुछ युवा आए हुए हैं, प्रदर्शनकारी आए हुए हैं और वो प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर जाना चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। देखिए दिल्ली में सीमित दायरे में इंटरनेट पर भी पाबंदी लगाई गई है इस इलाके के आसपास, इस क्षेत्र के आसपास। अब CJP की तरफ से कहा गया था कि हम तो प्रदर्शन करेंगे, मेट्रो बंद है, लोगों को आने नहीं दिया जा रहा, लेकिन जो प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है।
1: करॉट प्लेस में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो क्राउड है, जो प्रदर्शनकारी है, वो करॉट प्लेस जो है वो पहुंचे थे। उनको फिलहाल और पुलिस की तरफ से डिटेन किया जा रहा है। ये देखिए ये नज़ारा है CP के इनर सर्कल के पास का, चंपक मार्केट के पास का। आप देखिए कितने सारे ये प्रदर्शनकारी हैं जो प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे थे और अब यहाँ पर पुलिस की तरफ से इन तमाम प्रदर्शनकारियों को जो है वो डिटेन किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें दिल्ली के प्लॉट प्लेस के पास की, जहाँ पर ये प्रदर्शनकारी पहुँचे थे, उनको फिलहाल अब दिल्ली पुलिस की तरफ से डिटेन किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए दिल्ली तमाम अधिकारी जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी आए थे प्लॉट प्लेस और आसपास के तमाम हिस्सों में। BNS की धारा 163 लागू है, यानी 5 से ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से ये प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुँचे थे, उनको यहाँ पर पुलिस की तरफ से डिटेन किया जा रहा है और पहले से ही यहाँ पर पुलिस की तरफ से साफ इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पर प्रदर्शन पूरी तरीके से प्रतिबंध है। उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर पहुँचे, पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस की मदद से इन तमाम प्रदर्शनकारियों को जो है वो फिलहाल डिटेन किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई सारे प्रदर्शनकारियों को फिलहाल पुलिस ने डिटेन किया है। एक कितने ये प्रदर्शनकारी हैं जिनको यहाँ से अब डिटेन किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। ये सुबह 7 से प्रदर्शनकारी जो है वो पहुँचे थे प्रदर्शन करने के लिए, अब बसों के जरिए बसों जिन बसों में भरा गया है वहाँ पर अब ये नारेबाजी जो है वो करते हुए प्रदर्शनकारी जो है वो नजर आ रही है। ये नारेबाजी आपको नारेबाजी बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंचे थे। जैसे पुलिस ने रोकने की कोशिश करी तो जन सुविधा केंद्र के अंदर के तमाम प्रदर्शनकारी घुस गए, वहीं पर पुलिस ने लोगों को डिटेन कर लिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए देखिए पुलिस जो है वो आप देख सकते हैं कि बसों में किस तरीके से प्रदर्शनकारी जो है वो हंगामा करते हुए आपको नजर आएंगे। पुलिस का एक कड़ा बंदोबस्त इस वक्त जो है छावनी में तब्दील है और आसमें देखिए कि कहां कहां से प्रदर्शनकारी आए थे, उनको फिलहाल अब पुलिस की तरफ से डिटेन जो है वो यहां पर किया जा रहा है। कैमरा पर्सन आलोक के साथ सुशांत पैरा, दिल्ली। आज तक
0: तो रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई है, तस्वीरें आना शुरू हो गई है, यानी प्रदर्शनकारी अगर पहुंच रहे हैं तो उनको डिटेन किया जा रहा है। अब ये तो हमने आपको बता दिया क्या व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं और वो व्यवस्थाएं आप देख चुके होंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अंशुल सिंह भी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सुशांत मेहरा जिनकी अभी आप रिपोर्ट देख रहे थे वो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुशांत बताइए, आप जहां पर मौजूद हैं वहां से अभी आपने रिपोर्ट भेजी और वहां देखा गया कि बहुत से प्रदर्शनकारी इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद पहुंचे लेकिन उनको तुरंत डिटेन कर लिया गया, यानी पुलिस बहुत अलर्ट है अभी, और क्या जानकारी आपके पास?
2: देखिए, यही पुलिस के पास इनपुट था कि प्रदर्शनकारी जो है वो दिल्ली के अंदर आ सकते हैं और हंगामा जो है वो हो सकता है। कई सारे सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए तमाम मेट्रो स्टेशन बंद किए गए थे। लगभग कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में तकरीबन अगर कहा जाए तो 100-125 के आसपास प्रदर्शनकारी जो है वो प्रदर्शन करने के लिए जैसे ही पहुंचे तो पुलिस ने उनको खंदेड़ा। तमाम प्रदर्शनकारी जो है वो जनसुविधा केंद्र में जाकर के पहुंच गए, उसके बाद पुलिस ने उनको वहां से डिटेन किया। दिल्ली के तमाम हिस्से जहां पर सेंट्रल दिल्ली के खासतौर पर अगर बात की जाए, चाहे वो मिंटो ब्रिज हो, कड़ा पहरा जो है वो दिल्ली पुलिस का आ रहा है, कई लेयर की बैरिकेटिंग है।
0: अच्छा सुशांत, मैं आता हूं, दोबारा से आऊंगा आपके पास। अंशुल भी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अंशुल, आप जहां पर मौजूद है वहां से क्या रिपोर्ट आ रही है और किस तरह की तैयारियां दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई हैं, बताइए।
3: जी, दिल्ली की पूरी तरीके से किलेबंदी कर दी गई है। इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं। करीब 170 के आसपास जो लोकल ट्रेन्स हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन्स हैं, उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। मैं अपने पीछे आपको अगर ये बोर्ड दिखाऊं तो आपको इस बोर्ड देख के ही समझ में आ जाएगा कि एक के बाद एक जो ट्रेन्स हैं वो यहां पर कैंसिल कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं। तो किसी को भी आसपास के इलाके से कोई अगर प्रोटेस्टर यहां पर आना चाहता है तो उसे यहां आने की इजाजत किसी भी तरीके से नहीं दी जाएगी। लेकिन इन सब के वजह से कई लोगों को जो है असुविधा भी हो रही है। आज सुबह से ही लोग जो है यहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे कुछ पैसेंजर्स भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप किस तरफ जाना है? सर, आप
4: अभी सर हमें जाना है गया।
3: आप कहाँ से आ रहे हैं और स्टेशन तक पहुंचने में कुछ दिक्कत हुई क्या?
4: सर, अभी हम आ रहे हैं दुबई से, है ना, और एयरपोर्ट से आने में काफी परेशानियां हुई सर।
3: कैसे क्या
4: सर, एयरपोर्ट से हम लोग आ रहे थे तो पहले नंबर वहां जब टैक्सी बुक किया तो बीच में रास्ता में छोड़ दिया, फिर दोबारा टैक्सी करके फिर हम यहाँ आए सर। वो टैक्सी वाला यहाँ लेके नहीं आया।
3: क्या पुलिस क्या कह रही थी?
4: वो पूरा जाम था, पुलिस वाले वहाँ पे रोक रहे थे उसको। वो टैक्सी वाला बोला कि भैया हम आगे नहीं जा पाएंगे, अब दूसरा टैक्सी यहाँ से ले।
3: देखिए, आप जो ये ऐसे पॉइंट्स हैं एयरपोर्ट से स्टेशन तक आने के लिए, हालांकि दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जिनके पास वैलिड टिकट होगा उन्हें अलाउ कर दिया जाएगा और उन्हें नहीं रोका जाएगा। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं जो यहाँ पर आए हैं आज, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका, कहाँ से आए हैं?
5: भैया मनीष नाम है मेरा, मैं भीलवाड़ा से आया हूँ, राजस्थान से।
3: अच्छा, आपको आज ये प्रोटेस्ट में जाना है?
5: हाँ भैया, प्रोटेस्ट में जाना है, लेकिन देखते हैं सरकार जाने देती नहीं देती है, परेशान है, रात भर से इधर उधर चल रहे हैं, घूम रहे हैं बहुत सारी जगह। तो हमारे जो भाई लोग आ रहे थे उनको रास्ते में डिटेन कर लिया, रास्ते में उनको रोक लिया, मतलब सरकार नहीं चाह रही है कि उनके खिलाफ।
3: आपको यहाँ आने में क्या दिक्कत हुई और यहाँ से निकले हैं अभी तक आप?
5: मैं सबसे पहले जयपुर जब स्टेशन पे पहुंचा तो वहाँ पे पुलिस वाले थे, वो लोग पूछ रहे थे कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या काम है।
0: तो प्रोटेस्टर्स बहुत से हैं जो अलग अलग साधन जरिए से दिल्ली तो पहुंचे हैं, लेकिन अब कैसे पहुंचे प्रोटेस्ट साइट पर, ये उनके मन में सवाल है। दोबारा आएंगे हम अंशुल आपके पास। तो देखिए, दिल्ली से लगी सीमाओं पर भी सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। चिल्ला बॉर्डर से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता अंशुल सिंह, जिनको भी आप सुन रहे थे, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
3: वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत क्लियर है कि ये मैसेज दे दिया गया है कि अगर आप दिल्ली की तरफ ये सोचकर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वहां पे धरने पर बैठेंगे और धरने का पार्ट बनेंगे तो आपको हो सकता है यहाँ नोएडा बॉर्डर पर ही रोक दिया जाए, आपको हिरासत में ले लिया जाए, डिटेन कर लिया जाए और उसके बाद कानूनी कार्रवाई भी हो। पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली पुलिस इसी तरीके का एक अवेयरनेस कैंपेन चलाने की भी कोशिश कर रही है, जहां वो कम्युनिटी सेंटर्स में जाकर के या पब्लिक प्लेसेस में जाकर के ये अनाउंस कर रही है कि ये जो प्रोटेस्ट आज बुलाया गया है ये प्रोटेस्ट कानूनी तौर पर इलीगल है। और अगर कोई नई दिल्ली में ये सोच के घुसता है कि वो जंतर मंतर पे जाके धरना देगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अभी से कुछ घंटों बाद ही बस ये प्रोटेस्ट शुरू होने वाला है। सीजेपी का कहना है कि 10 बजे से लोग इकट्ठा होने शुरू होंगे। तो अब ये देखना होगा कि जो दिल्ली पुलिस ने अवेयरनेस कैंपेन चलाया है या दिल्ली पुलिस जिस तरीके से ये मैसेजिंग करने की कोशिश कर रही है कि ये प्रोटेस्ट इलीगल है, उसका कितना असर पड़ता है ग्राउंड पे और किस तरह की भीड़ आज इस प्रोटेस्ट में शामिल होती है। वीडियो जर्नलिस्ट इमैनुअल के साथ अंशुल सिंह, आज तक।
0: सीजेपी प्रदर्शन को लेकर दिल्ली के कई इलाकों में गाड़ियों की लगातार चेकिंग हो रही है। हमारी संवाददाता श्रेया चटर्जी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, अलग अलग जगहों पर जो रास्ते जंतर मंतर की तरफ जाते हैं या फिर जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं वहाँ चेकिंग की जा रही है। हर जगह पर इतनी भारी पुलिस बल मौजूद है जो हर आने जाने वाली गाड़ी पर नजर बनाए हुए है।
6: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन की कॉल के चलते हुए दिल्ली में आज 163 बीएनएस धारा लागू है और इसी के तहत आप देख सकते हैं कि कैसे दिल्ली पुलिस तमाम जो चेक पॉइंट्स है जो न्यू दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली जोन तक पहुंचती है वहां पे रैंडम चेकिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसी दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो यहां पे तैनात हैं और ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स होम सेक्रेटरी द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी जो कमिश्नर ऑफ पुलिस को लिखी गई कि पिछले 20 जुलाई कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस कारण प्रदर्शन का एक कॉल दिया था उसमें जो परमिशन पत्रों में उन्होंने लिखा था उसके चलते जो हुआ 20 जुलाई वो एक वायलेशन ऑफ परमिशन था और इसीलिए पास्ट इंसिडेंट्स के मद्देनजर रखते हुए ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगाए गए हैं। ये दिल्ली पुलिस का कहना है। आप देख सकते हैं कैसे रैंडम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, जैसे अगर कोई गाड़ी में इनको लगे कि यूथ एक साथ जा रहे हैं या रैंडमली ऐसा कुछ भी नजारा हो तो उस गाड़ी को रोक के उनका पर्पस पूछ के फिर उनको आगे जाने दे रहे हैं। यही विजुअल है तरह तरह की और जगहों पे भी जो सेंट्रल दिल्ली ग्रीट करती है। ये बताना बेहद जरूरी है, हम धौला कुआं में खड़े हैं। एयरपोर्ट से अगर किसी को भी सेंट्रल दिल्ली या न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जाना है तो इसी पॉइंट से होते हुए जाना पड़ेगा क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के जो लीडरशिप है जैसे सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दीप के, वो फ्लाइट लेके लैंड करने वाले हैं 9:30 बजे। यही वो रास्ता है जिससे होके उनको गुजरना पड़ेगा, तो हो सकता है इस पॉइंट पे उनको रोक दिया जाए क्योंकि प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, डिटेंशन ऑर्डर्स की भी एक पॉसिबिलिटी है। तमाम 6 एक डिटेंशन सेंटर्स है, कुछ यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, कुछ राजीव गांधी स्टेडियम, कुछ छत्रसाल स्टेडियम। तो दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से आज नेशनल दिल्ली को, नेशनल कैपिटल को जो सेंट्रल जोन है उसको एक छावनी में तब्दील कर चुके हैं और यही आप देख सकते हैं उसका नजारा है। वीडियो जर्नलिस्ट नासिर के साथ श्रेया चैटर्जी आज तक।
0: तो दिल्ली पुलिस लगातार प्रदर्शन से पहले आगाह कर रही है, घोषणा की जा रही है कि नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है, ऐसे में किसी को भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। यही अनाउंसमेंट किया जा रहा है।
7: आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे मामले में बीएनएस की धारा 223 सहित अन्य लागू धाराओं के तहत कार्यवाही हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति पुलिस के साथ मारपीट करता है, पुलिस के काम में बाधा डालता है, बैरिकेड तोड़ता है या सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ अलग से भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अर्थात सभी लोग शांतिपूर्वक यहां से हट जाएं और पुलिस के वैध निर्देशों का पालन करें। यातायात और आम लोगों को रास्ता ना रोकें तथा पुलिस के काम में किसी प्रकार की बाधा ना डालें। धारा 163 के आदेश का उल्लंघन करने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामले में बीएनएस की धारा 223 सहित अन्य लागू धाराओं के तहत कार्रवाई।
0: देखिए इसी तरह से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, जगह जगह इस तरह के भोपू लगाए गए हैं और इसी तरीके से लोगों को सूचित किया जा रहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है, अगर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो खामियाजा भुगतना होगा।
6: राजधानी दिल्ली में लगाया गया है और जहां हम मौजूद है वो इलेक्शन कमीशन के सामने है। मैं हमारे कैमरामैन नासिर को बोलूंगी कि वो एक बार इलेक्शन कमीशन किस तरफ है वो दिखाए। ये वो जगह है जो सबसे ज्यादा सिक्योर्ड जोन माना जाएगा क्योंकि निर्वाचन सदन ही सेंटर ऑफ जो पॉलिटिकल डिस्कशन है, एसआईआर को लेकर जो प्रोटेस्ट है, यही इंस्टीट्यूशन है। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ किस तरीके की सिक्योरिटी यहां पे लगाई गई है। दिल्ली पुलिस के जवान से लेके सीआरपीएफ से लेके डिप्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में है और जो टोटल कंपनीज है सीआरपीएफ के वो 220 प्लस है। प्रोहिबिशनरी ऑर्डर्स है इस पूरे इलाके में 163 के तहत। किसी को भी आज जंतर मंतर पहुंचने नहीं दिया जाएगा। कुछ विजुअल्स हमें दिखने को मिले थे जहां प्रोटेस्टर्स दिखे थे सुबह सुबह, जिनको कनॉट प्लेस और जंतर मंतर के पास से डिटेन किया गया था। ये वो प्रोटेस्टर्स है जो कल रात पहुंच चुके थे, लेकिन अभी का नजारा आप देखिए, क्योंकि जो सिक्योरिटी अपैरेटस है वो फुल इन फंक्शनिंग है, हैवी डिप्लॉयमेंट है। मैं फिर से एक बार बोलूंगी कैमरामैन को कि कैसे ये पूरा जो रास्ता है वो एक तरीके से ब्लॉक्ड है, क्योंकि ये रास्ता निर्वाचन सदन को हाउस करता है। इसके अलावा इसी रास्ते से होते हुए हम जंतर मंतर भी पहुंचते हैं, और इसीलिए आप समझ सकते हैं कि अगर कोई चाहे भी तो शायद आज जंतर मंतर नहीं भटक पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नासिर के साथ श्रेया चैटर्जी आज तक।
0: श्रेया चटर्जी की एक रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन अब आप ये तस्वीरें भी देखिए। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आज बाहर माहौल क्या है। देखिए, घरों में अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत जरूरी काम से अगर आपको निकलना है बाहर तो पहले इन तस्वीरों को आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आप अपने चारपहिया वाहन से निकलते हैं तो जगह जगह चेकिंग का आपको सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि लंबा जाम भी लगे, और अगर आप जंतर मंतर के आसपास वाले इलाके में जाते हैं तो वहां मुसीबतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, आपसे पूछताछ भी हो सकती है। अब ये देखिए, कुछ युवा पहुंच चुके हैं, वो प्रदर्शन में शामिल होना चाह रहे थे, CJP का साथ देना चाह रहे थे, और जैसे ही वो पहुंचे तो उनको तुरंत डिटेन कर लिया गया। ये देखिए, ये पुलिस की गाड़ी में उनको भर लिया गया है, उनको डिटेन कर लिया गया है, और ये पुलिस अनाउंस कर रही है। उनका ये कहना है कि अगर आप आते हैं, प्रदर्शन में शामिल होते हैं, तो आप जो पुलिस कार्रवाई करेगी उसके खुद जिम्मेदार होंगे। दिल्ली की सीमाओं पर इस वक्त अवैध सुरक्षा घेरा है, हर जगह चेकिंग की। देखिए, दो पहिया वाहन की भी चेकिंग की जा रही है, चार पहिया वाहन की भी चेकिंग की जा रही है, कोई बस निकल रही है तो उसको भी देखा जा रहा है। अगर कहीं कुछ संदिग्ध पाया जाता है तो उससे बातचीत की जाती है, सवाल पूछे जाते हैं। ये देखिए, चेकिंग की जा रही है, आईडी कार्ड देखा जा रहा है, दो पहिया वाहन, अगर आप सिंगल भी जा रहे हैं तो भी। और इसीलिए कहा जा रहा है 45 मेट्रो स्टेशन बंद है, कई ट्रेनें यहां पर नहीं आ पा रही हैं, 37 जगहों पर घेराबंदी की गई है। तो बहुत जरूरी काम अगर नहीं है तो मत आइए, आज आप घर से बाहर मत निकलिए, और आज तक पर आप देखते रहिए कि आज दिन भर क्या हो रहा है और दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, जंतर मंतर पर किस तरह के हालात हैं, CJP के प्रदर्शन को लेकर क्या अपडेट है, ये आपको आज तक पर सब पता चल जाएगा। घर से बाहर मत निकलिए अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो। लेकिन फिर भी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हालांकि ट्रैफिक की जब बात की जा रही है, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ट्रैफिक को लेकर बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, आम लोगों को दिक्कत ना हो, प्रदर्शनकारी नहीं पहुंच सके प्रोटेस्ट साइट पर। अब इसको लेकर क्या तैयारी है, हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा ने जॉइंट CP ट्रैफिक से बात की, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं।
8: ये बताएं कि किस तरीके की तैयारी है।
9: देखिए, कल के प्रोटेस्ट के दौरान मद्देनजर रखते हुए हमने ट्रैफिक का अपना एक एडवाइजरी इशू करी है, जिसमें हमने करीब 30 स्ट्रेचेज हैं जो हमारे नई दिल्ली के तरफ जो है स्ट्रेचेज है उस पर हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा, और अगर कहीं भी किसी प्रकार का अगर कोई डिसरप्शन होता है ट्रैफिक में तो उसके अकॉर्डिंग हम नेसेसरी डाइवर्जेंस करेंगे। और हमने इसके लिए हमारे जो भी ट्रैफिक पुलिस साइट है, हमारे सोशल मीडिया के थ्रू अपनी एडवाइजरी को हमने दे दिया है, और जैसे वहाँ पे कहीं भी किसी भी स्ट्रेच पे हमारे स्टाफ डिप्लॉयड रहेंगे, और अगर कहीं वहाँ पे हमें प्रोटेस्ट या कोई किसी तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन दिखता है तो अकॉर्डिंगली हम इसको डायरेक्ट करेंगे।
8: बॉर्डर्स को लेकर के सर, बॉर्डर्स को लेकर के काफ़ी लोगों में बातचीत हो रही है कि बॉर्डर बंद कर दिए जाएंगे, सील कर दिए जाएंगे, तो बॉर्डर कैसे तैयारी है।
9: देखिए, बॉर्डर्स पे हमारी जो है हमारे स्टाफ डिप्लॉयड रहेंगे, और बॉर्डर्स पे हम लोगों का जो है हमारा जो है ट्रैफिक का स्टाफ भी रहेगा, और हम लोगों का यही है कि किसी प्रकार का हमारा कोई बॉर्डर सील नहीं है, किसी प्रकार का हम लोग का ट्रैफिक का आवागमन होता रहेगा। पर जैसे हमने आपको बताया कि जैसे हम लोग हालात देखेंगे, अगर हमें कोई लगता है कि ये ऐसे कोई प्रोटेस्टर्स हैं जो दिल्ली में आके किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली लोकल पुलिस जो भी एक्शन लेगी। अगर वहाँ पे डिसरप्शन किसी रोड पे होता है तो हमारे ट्रैफिक स्टाफ मौजूद रहेंगे, अकॉर्डिंगली हम लोग पे डिवीजन प्लान बनाएंगे।
0: तो इस बातचीत से आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्या इंतजाम आज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के कुछ जवान बॉडी कैम के साथ तैनात किए गए, मतलब उनकी बॉडी पर एक कैमरा लगाया जो हर एक रिएक्शन को, हर एक गतिविधि को कवर कर रहा है। ये देखिए कुछ इस तरह से हालात को, हर हालात को कैमरे में कैद किया जा सके, क्योंकि बहुत से अराजक तत्व होते हैं, प्रोटेस्ट में ही कुछ ऐसे लोग शामिल होते हैं। जुलाई में हमने देखा भी था, इनफैक्ट कुछ 2-3 दिन पहले भी देखा था, जब पुलिस कर्मियों को लात मारी जाती है, वो पुलिसकर्मी जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, उनको लात मारी जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे वाक्यों को कवर करने के लिए बॉडी कैम।
10: बताइए ये बॉडी कैम जो लगाए हुए हैं किस तरह से इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि देखा था कि
11: ये जो बॉडी कैम है ये हमारे और दूसरों को प्रोटेक्ट के लिए, क्योंकि जो भी हम जहाँ भी लड़ाई में आता है, जो आपने देखा होगा सीन की जो इसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं अफसरों के ऊपर हमारे, जो सही नहीं है, और उसके थ्रू ये बॉडी कैम को सबको मिले हैं जो फील्ड में काम करते हैं, तो ये बॉडी कैम इसको पारदर्शिता करेंगे कि हमने टच करा है या नहीं करा है।
0: तो देखिए, अगर बहुत से प्रदर्शनकारी ये सोच रहे हैं कि भीड़ का चेहरा बनके बच जाएंगे, तो ये बॉडी कैम सब कुछ कवर करता है, सारे चेहरे कैद करता है। श्रेया चटर्जी हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे जुड़ चुकी हैं और धौलाकुआ में मौजूद हैं। श्रेया, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर किस तरह की तस्वीरें देखी जा रही हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या तैयारियां, बताइए तस्वीरों के जरिए।
6: देखिए, मैं धौलाकुआ से मूव करते हुए थोड़ा जंतर मंतर के पास पहुंच चुकी हूं। अच्छा। और ये वो सर्किल है अशोका रोड के, जहां पे एक तरफ निर्वाचन सदन रास्ता जाता है तो दूसरी तरफ जंतर मंतर, और शायद इसीलिए आप देख सकते हैं कि कैसे यहां जो डिप्लॉयमेंट है उसी से आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई कोशिश भी करे तो शायद ही आज जंतर मंतर पहुंच पाएंगे। आप देख सकते हैं कि RAF डिप्लॉयड है ग्राउंड पे, आप देख सकते हैं कि सर्किल पे और भी रीइन्फोर्समेंट्स यहां पे मौजूद है, तमाम जो ये सर्किल है ये बसेस के घेरों में तब्दील किया गया है, किसी भी तरफ अगर कोई भी प्रदर्शनकारी यहां तक भी पहुंच जाए उनको तुरंत डिटेन कर लिया जाएगा। कुछ ऐसे विजुअल सोशल मीडिया में दिखे कि कुछ प्रदर्शनकारी कल रात पहुंच चुके थे, जैसे राजीव चौक और जंतर मंतर के आसपास, तो खबर ये आ रही है कि उन लोगों को भी डिटेन कर लिया गया है। 163
0: तस्वीरें हमने देखी है जहां पर कुछ प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया गया है। श्रेया, बने रहिए हमारे साथ, बीच बीच में आपके पास आएंगे, सारी रिपोर्ट भी देखेंगे क्या हो रहा है वो सब जानेंगे, और अपने दर्शकों को भी बताएंगे। यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: How's the hostel? Settled?
3: Yes, ma'am. It's really nice.
2: कोई आ रहा है क्या?
4: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटी तो निभाली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले।
2: मयंक, फॉर रियल?
4: वन कैरेट फॉर माय वन ट्रू लव। नेचुरल डायमंड रियल लव सॉलिटेयर्स टू रीइग्नाइट योर न्यू सीजन ऑफ लव।
5: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
6: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
5: असली शहद, असली स्वाद।
7: यार ड्रिल करना पड़ेगा।
8: ड्रिल? नहीं नहीं, ओनर से पूछना पड़ेगा।
9: इसका नाम क्या रखेंगे?
10: ये भी ओनर से ही पूछ लेते हैं।
11: अरे भाई साहब, कब तक ओनर के डर में रहेंगे, शान से अपने घर में रहिए ना। विद कैनरा होम लोन,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार तुम ठुमका लगाने बस।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
3: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
3: कौन सी बनानी है?
6: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
7: गड़बड़ है।
8: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
2: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
3: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं, पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
4: इट्स द माही वे।
5: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
6: जेके मैक्स वाइप इजी,
5: दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।
7: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी।
8: यू नो डिजाइन्स कितने हैं, लाख से भी ज्यादा डोर,
9: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
10: एक परिवार, अटूट भरोसा।
11: गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
12: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
13: इन एसोसिएशन विद
14: सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स,
15: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
16: Canara Bank, together we can.
17: Anmol biscuits, swad jo banaye har pal anmol.

0: पड़े
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
0: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई, ट्रैवल एजेंट कोई गांजा फूंक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
0: तुम्हारा
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
0: यार काट देना ये।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली किले में तब्दील। जंतर मंतर के आसपास भारी सुरक्षा। 4 किलोमीटर दायरे में इंटरनेट सेवा बंद। राजधानी की सभी सीमाएं सील। 45 मेट्रो स्टेशन बंद। कुछ प्रदर्शनकारी हिरासत में। मुंबई से दिल्ली रवानगी से पहले सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने प्रदर्शन की इजाजत न मिलने पर सरकार पर साधा निशाना। सुबह 9:30 बजे तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद। दिल्ली की किलेबंदी पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत का मक्खी मारने के लिए हथौड़ा नहीं चला सकते। सर्वोच्च अदालत ने कहा उतना ही एहतियात करें जिससे आम लोगों को ना हो परेशानी। राष्ट्रपति से इंडिया गठबंधन के नेताओं की मुलाकात के बाद राहुल गांधी का दावा, महामहिम ने हमसे मांगे हैं वोट चोरी के सबूत, हम उन्हें हर प्रमाण देंगे। बीजेपी बोली संवैधानिक सीमा लांग रहे हैं राहुल। और उपचुनाव में बीजेपी एनडीए के शानदार प्रदर्शन पर बम बम बीजेपी। पीएम मोदी ने कहा इस जनादेश से मिलेगी और मजबूती। अमित शाह बोले राहुल के झूठ और दुष्प्रचार के बावजूद बड़ी जीत।

0: तो आज की बड़ी खबर पर हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और बड़ी खबर अभी यह है कि जंतर मंतर पर भी कुछ प्रदर्शनकारी पहुंचने में सफल हो गए, हालांकि उन्हें पुलिस ने हिरासत में तुरंत ले लिया है। कुछ प्रदर्शनकारी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और उनको कैसे हिरासत में लिया गया, जरा ये तस्वीरें देखिए। झोला टांगते हुए, कंधे पर बैग लटकाए हुए ये प्रदर्शनकारी पहुंचे थे जंतर मंतर। अब किसी न किसी तरह ये लोग पहुंच गए, लेकिन जब पहुंचे तो उनको हिरासत में ले लिया गया। पहले से ही पुलिस के वाहन वहां पर मौजूद हैं, बसेस वहां पर मौजूद हैं, तो ऐसे में अगर कोई प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंच रहा है तो तुरंत डिटेन किया जा रहा है और अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। आपको पीछे बैकग्राउंड में आवाज आ रही होगी जहां पर लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, अनुरोध किया जा रहा है कि भीड़ ना जुटाए। सुनिए जरा, देखिए। देखिए, अगर कोई महिला प्रदर्शनकारी आती है तो उसको फिर महिला पुलिसकर्मी डिटेन करते हैं। और बाकी अच्छी खासी संख्या में CAPF भी वहां पर मौजूद है, RAF भी वहां पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर मौजूद हैं। देखिए, ये जंतर मंतर की आपने तस्वीरें देखी, लेकिन उससे पहले कनॉट प्लेस में भी प्रदर्शनकारी पहुंचे थे और कनॉट प्लेस में भी उन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था। दौड़ा दौड़ा कर ये देखिए, ये दिल्ली पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस के जवान, आप सोचिए कि प्रदर्शनकारी पर आप अभी अगर देखेंगे तो यहां पर 4 से 5 पुलिस के वाले आपको नजर आएंगे, तो ऐसे में उनको डिटेन किया जा रहा है और स्पीकर पर अनाउंस लगातार किया जा रहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की 163 लागू है, तो ऐसे में आप लोग मत आइए, सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए। लेकिन कनॉट प्लेस पे जैसे ही प्रदर्शनकारी पहुंचे, इन्होंने दौड़ लगाई, पुलिस ने इनसे तेज दौड़ लगाकर इनको डिटेन कर लिया। कुछ जंतर मंतर पर पहुंचे तो वहां पर भी उनको हिरासत में लिया गया।
1: क्रॉड प्लेस में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो क्राउड है, जो प्रदर्शनकारी है, वो कनॉट प्लेस जो है वो पहुंचे थे। उनको फिलहाल पुलिस की तरफ से डिटेन किया जा रहा है। ये देखिए, ये नज़ारा है CP के इनर सर्कल के पास का, चैंपर मार्केट के पास का। आप देखिए कितने सारे ये प्रदर्शनकारी हैं जो प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे थे और अब यहाँ पर पुलिस की तरफ से इन तमाम प्रदर्शनकारियों को जो है वो डिटेन किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें दिल्ली के, आप देख सकते हैं, कनॉट प्लेस के पास की, जहाँ पर ये प्रदर्शनकारी पहुँचे थे। उनको फिलहाल अब दिल्ली पुलिस की तरफ से डिटेन किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, तमाम अधिकारी जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी आए थे। कनॉट प्लेस और आसपास के तमाम हिस्सों में BNS की धारा 163 लागू है, यानी 5 से ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से ये प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुँचे थे, उनको यहाँ पर पुलिस की तरफ से डिटेन किया जा रहा है। और पहले से ही यहाँ पर पुलिस की तरफ से साफ इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पर प्रदर्शन पूरी तरीके से प्रतिबंध है, उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर पहुँचे। पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस की मदद से इन तमाम प्रदर्शनकारियों को जो है वो फिलहाल डिटेन किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कई सारे प्रदर्शनकारियों को फिलहाल पुलिस ने डिटेन किया है। एकाएक देखिए कितने ये प्रदर्शनकारी हैं जिनको यहाँ से अब डिटेन किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। ये सुबह 7 बजे से प्रदर्शनकारी जो है वो पहुँचे थे प्रदर्शन करने के लिए। अब बसों के जरिए, बसों जिन बसों में भरा गया है, वहाँ पर अब ये नारेबाजी जो है वो करते हुए प्रदर्शनकारी जो है वो नजर आ रही है। देखिए ये नारेबाजी आपको सुनाई देगी, किस तरीके से नारेबाजी फिलहाल आप देखिए, बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी जो है वो पहुँचे थे। जैसे पुलिस ने रोकने की कोशिश करी तो जन सुविधा केंद्र के अंदर ये तमाम प्रदर्शनकारी घुस गए, वहीं पर पुलिस ने लोगों को डिटेन कर लिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जो पुलिस जो है वो तमाम प्रदर्शनकारियों को जो है वो इस वक्त बसों के अंदर डिटेन करते हैं। हंगामा आप देख सकते हैं कि बसों में किस तरीके से प्रदर्शनकारी जो है वो हंगामा करते हुए आपको नजर आएंगे। पुलिस का एक कड़ा बंदोबस्त इस वक्त जो है वो दिल्ली के अंदर नजर आएगा। शामली में तब्दील है, रास्ते में देखिए कि कहां कहां से प्रदर्शनकारी आए थे, उनको फिलहाल अब पुलिस की तरफ से डिटेन जो है वो यहां पर किया जा रहा है। कैमरा पर्सन आलोक के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।
0: कनॉट प्लेस से ही आप देख रहे थे, आप देखिए कुछ और तस्वीरें देखिए, ये कुछ और तस्वीरें देखिए।
2: अरे मीडिया साइड दो, नहीं तो मेरी यहाँ के पास मीडिया।
0: अब देखिए जहां भी भीड़ दिखेगी वहां दिल्ली पुलिस तैयार है। और दिल्ली पुलिस, अब कुछ तो प्रदर्शनकारी ऐसे हैं जो बताया जा रहा था कनॉट प्लेस पर प्रदर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश करी तो वो प्रदर्शनकारी जन सुविधा केंद्र में जा घुसे। वो देखिए सामने जन सुविधा केंद्र में जा घुसे, लेकिन पुलिस वहां पर ही पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया। अब जंतर मंतर पे भी देखिए, दिल्ली पुलिस है, महिला पुलिस है। अब कुछ महिलाएं वहां पर आई थी, अब वो कह रही हैं कि हम प्रोटेस्ट में नहीं आए, लेकिन दिल्ली पुलिस के इतने अनाउंसमेंट के बावजूद, इतनी समझाने के बावजूद अगर वहां पर पहुंचे हैं तो फिर उनको प्रदर्शनकारी समझते हुए हिरासत में लिया जा रहा है, डिटेन उन्हें किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस कल से ये सावधान ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस जगह पर मत जाइए, प्रदर्शन करने के लिए मत जाइए, क्योंकि ट्रेन चल नहीं रही है, मेट्रो चल नहीं रही है, जंतर मंतर तक पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं है। तो ऐसे में अगर युवा वहां पर पहुंच रहे हैं तो वो किस लिए पहुंच रहे हैं, दिल्ली पुलिस का ही मानना है। तो ऐसे में उनको हिरासत में लिया जा रहा है, प्रदर्शनकारी जैसे जैसे पहुंच रहे हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है, और अभी तक कई लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। जैसे ये देखिए, यहां पर एक महिला को हिरासत में लिया गया। अब देखिए 6,500 पुलिस बल है, अब ये देखिए इनको हिरासत में लिया जा रहा है। अब हाथों में पोस्टर लेकर ही आई थी और ये प्रोटेस्ट कर रही थी। अभी अभिजीत दीप के पहुंचेंगे, अभी 8:30 का वक्त यहाँ पर हो चला है, और ये बताया जा रहा था जब मुंबई से निकले थे तकरीबन 8 बजे का वक्त था, 7:30 बजे का वक्त था। तो ऐसे में आप मान के चलिए कि 7 बजे अगर मुंबई से वो निकले हैं, 7:15 बजे, तो 9:30 तक पहुंचने की बात है। और उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा था कि 10 बजे वो जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, मिलते हैं 10 बजे जंतर मंतर पर। लेकिन उससे पहले कुछ युवा पहुंचे हैं, प्रदर्शनकारी पहुंचे, तो उनको तुरंत हिरासत में लिया गया। ये देखिए ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुछ तस्वीरें कनॉट प्लेस से हैं और कुछ तस्वीरें जंतर मंतर से हैं। हालांकि सुरक्षा का ऐसा घेरा बना रखा है कि जंतर मंतर तक पहुंचने के जितने भी रास्ते हैं वहां पर बैरिकेडिंग लगा रखी है और बहुत भारी डिप्लॉयमेंट है वहां पर, पुलिस की तैनाती है वहां पर, CAPF भी, RAF भी है, चिल्ला बॉर्डर पर तो BSF है। तो ऐसे में अगर कोई प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंच जाता है तो उसको डिटेन किया जाता है। अब अगर कोई युवा वहां पर पहुंच रहा है और वो अब कह रहे हैं कि नहीं हम प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, तो पुलिस का ये पूछना है उनसे कि आप यहां पर कर क्या रहे हैं, सेंसिटिव एरिया तो यहां पर आप कर क्या रहे हैं, तो उसके बाद फिर उनको डिटेन किया जा रहा है। और कुछ लोग हाथों में पैनल पोस्टर लेकर आए थे तो उनको भी डिटेन किया गया है। अब ये देखिए सुरक्षा का घेरा कैसा है, ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है, हर जगह से निगरानी रखी जा रही है ड्रोन के जरिए। ये देखा जा रहा है कि कहां कहां पर भीड़ प्रदर्शनकारियों की आ रही है या फिर प्रदर्शनकारी किस रास्ते से आ रहे हैं, तो वहीं पर उन पर काबू किया जा सके, उनको डिटेन किया जा सके। अब जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं ना, जहां पर एक छात्र आपको युवा भागता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो प्रदर्शन के लिए आया था, लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस को देखा तो जन सुविधा केंद्र, सुलभ शौचालय वहां पर जाकर छुप गए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने वहां से भी हिरासत में ले लिया। ऐसे ही ये 3 तस्वीरों में हम आपको बता रहे हैं, तीनों तस्वीरें एक कनॉट प्लेस की है, एक जंतर मंतर की है, और अभी कुछ और तस्वीरें सामने आएगी तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। DND मुनीश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुनीश आप जहाँ पर मौजूद हो वहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं?
3: आप जेल की धमकी देखकर, जेल का डर दिखाकर सोचते हो हमें रोक सकते हो, ऐसा नहीं है, जेल जाने की तैयारी।
4: देखिए जहां हमारी मौजूदगी हिमांशु, ये है नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क जिसे DND फ्लाईवे भी बोलते हैं, लेकिन आम दिनों से अलग अलग आज एक तस्वीर देखने को मिल रही है। आम दिनों में इस रास्ते पर कोई तैनाती नहीं रहती है, कोई चेकिंग नहीं होती है, लेकिन आज आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस की भारी तैनाती की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस है, उसके अलावा जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो दूसरे साइड में है, और कुल मिलाकर कोशिश ये की जा रही है कि वो गाड़ियां जो दिल्ली की तरफ जा रही हैं उन्हें चेक किया जाए। सबसे पहले ये देखा जा रहा है कि क्या जो भी दिल्ली के अंदर प्रवेश करना चाह रहा है वो प्रोटेस्ट के मद्देनजर आ रहा है या किसी और वजह से आ रहा है। वो लोग जिनका एयरपोर्ट पर जाना है या रेलवे स्टेशन पर जाना है, जिनके दफ्तर हैं, दुकानें हैं, या फिर वो लोग जिनको मेडिकल इमरजेंसी के लिए जाना है, उन्हें जाने की इजाज़त है। लेकिन वो गाड़ियां जिसमें 3-4 लोग बैठे हुए हों, उन गाड़ियों को कहीं ना कहीं चेक किया जा रहा है। और अभी चूंकि सुबह का वक्त है, इसके लिए आप देख सकते हैं कि ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही 10 बजे का वक्त आएगा, लोग दिल्ली की तरफ निकलना शुरू करेंगे, उसके बाद यहाँ पर दिल्ली तक जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है हिमांशु, क्योंकि ये जो सड़क है ये अपने आप में काफ़ी महत्व रखती है। ना सिर्फ नोएडा बल्कि जो लोग दिल्ली के आसपास यानी कि मथुरा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वहाँ से जो लोग दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं वो भी इस हाईवे का प्रयोग करते हैं। और ऐसे में आज जो पुलिस है उसकी पूरी कोशिश यही है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहता है, कम से कम उसे रोक लिया जाए। हिमांशु,
0: और बिल्कुल वो तस्वीरें हम देख भी रहे हैं अलग अलग जगह से मुनीष, वो तस्वीरें आ रही है जहां पर युवाओं को डिटेन किया जा रहा है। अभी एक तस्वीर जंतर मंतर से हमने आपको दिखाई, अब एक बार फिर से तस्वीर आपको कनॉट प्लेस से दिखाते हैं। अब ये देखिए जो कई जगह के मेट्रो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन की तस्वीर समझ में आ रही है। और यहाँ पर अब देखिए कि पूरी तैयारियां की गई हैं। मुनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ में है और वो उन्होंने बताया डीएनडी पर किस तरह की व्यवस्था की गई है। तो मुनीष ये बताइए कि अभी कुल मिलाकर देखा जाए तो हर जगह पुलिस की तैनाती है, डीएनडी से लेकर हर जगह पर निगरानी रखी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद कुछ प्रोटेस्टर्स पहुंच रहे हैं जंतर मंतर, कनॉट प्लेस तक भी कुछ पहुंच रहे हैं, तो उसके लिए क्या माना जाए कि कितना लंबा ये आज देखने को मिल सकता है, कितना लंबा खिंच सकता है ये मामला?
4: जी देखिए हिमांशु, कुल मिलाकर ये समझना पड़ेगा कि जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं वो दरअसल कहां से आ रहे हैं। जो आज की तारीख में बाहर से आना चाहते हैं, यानी कि चाहे नोएडा की बात कर लें या हरियाणा की बात कर लें, फरीदाबाद की बात कर लें, गुड़गांव की बात कर लें, जो लोग उन इलाकों से आना चाहते हैं उन्हें शायद दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है, उन्हें छुप छुपा के आना पड़ेगा। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं और जो हमारी जानकारी मिल रही है, जो खुफिया सूत्र हैं हमारे, वो बता रहे हैं कि हजारों की संख्या में पहले से ही जो प्रोटेस्टर्स थे, जो प्रदर्शनकारी थे, वो पहले से ही दिल्ली में दाखिल हो चुके थे और अलग अलग इलाकों में रह रहे थे। दूसरा, आज का जो प्रोटेस्ट है सीजेपी का, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, किसी को ये जानकारी नहीं है कि कहां पर पहुंचना है। जंतर मंतर जरूर एक जगह है जहां पर लोग कोशिश करेंगे पहुंचने की, लेकिन सीजेपी की तरफ से ऐसा कोई अभी तक ऐलान नहीं किया गया है कि आपको इस वक्त इस जगह पर पहुंचना है। और यही सबसे बड़ी मुश्किल दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि छोटे छोटे गुटों में हो सकता है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शनकारी निकलें, प्रदर्शन करने की अगर इजाजत ना मिले तो वहीं पर वो प्रदर्शन करें और वहां पर उन्हें पुलिस डिटेन करेगी।
0: मतलब
4: तो
0: ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरी भीड़ जंतर मंतर पर दिखाई दे, जैसे कुछ कनॉट प्लेस पर दिखाई दी तो हो सकता है कि कुछ लोगों का प्रदर्शनकारी कहीं और दिखाई दे, हो सकता है कि कुछ प्रदर्शनकारी कहीं और दिखाई दे, ऐसा नहीं है कि हर कोई जंतर मंतर पर ही पहुंचे। लेकिन अभी के इंतजाम देखकर, मुनीष आपने जुलाई में भी देखा था कि जुलाई में किस तरह से प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पर, तब पुलिस प्रशासन की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्था की गई थी, जुलाई में जो हुआ था उधर दिल्ली पुलिस की व्यवस्था और अभी की दिल्ली पुलिस की तैयारी को देखते हुए क्या अंतर आपको समझ में आता है?
4: ये बहुत अहम सवाल पूछा आपने हिमांशु, और अगर बात करें जुलाई 20 को जो हुआ था, दिल्ली पुलिस उसे दोहराना नहीं चाहती है और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने कल 3 पन्नों का एक प्रेस रिलीज इशू किया है। अमूमन दिल्ली पुलिस इतने बड़े कभी प्रेस रिलीज इशू नहीं करती है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे, लेकिन पहली बार दिल्ली पुलिस ने प्रेस रिलीज इशू किया और उसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा कि एक दिन की परमिशन मांगी गई थी, उसके बाद 17 दिनों तक प्रदर्शन चला था और जब 20 तारीख को वायलेंस हुआ था तो उसमें ना सिर्फ पुलिसकर्मी बल्कि जो प्रदर्शनकारी थे वो भी घायल हुए थे और उस प्रदर्शन में कई ऐसे असामाजिक तत्व थे, 2000 से ज्यादा जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस थे वो भी शामिल हुए थे। दिल्ली पुलिस उस तस्वीर को दोहराना नहीं चाहती है और इसी वजह से इस बार जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रखने के लिए जिस तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अपने आप में काफ़ी हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ना सिर्फ अपनी तैनाती की है बल्कि 23,000 से ज़्यादा जो पैरामिलिट्री के जवान हैं उन्हें भी दिल्ली में तैनात किया गया है। दिल्ली बहुत बड़ी नहीं है, कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सेंट्रल दिल्ली का जितना भी इलाका है, चाहे जंतर मंतर, सीपी, जनपथ, ये सारे जो इलाके हैं वहां पर किलेबंदी की गई है। जो भी आएगा उस प्रदर्शनकारी को कहीं ना कहीं पुलिस डिटेन करके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करेगी। तो जो आपका सवाल था कि उस वक्त जो पुलिस की तैयारी थी और इस बार जो पुलिस की तैयारी है, मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस ने उस घटना से सबक लिया हुआ है और वो चाहते नहीं है कि वो दिन दोबारा दिल्ली में दिखे, और इसी वजह से इस बार तैनाती जो है जबरदस्त तरीके से की गई है। ना सिर्फ इंटरनेट पर पाबंदी है सेंट्रल दिल्ली में, बल्कि जवानों की संख्या, उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर प्रदर्शनकारी आ सकते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो की मदद ली गई है कि कहां कहां पर प्रदर्शनकारी हो सकते हैं, प्रदर्शन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये तमाम तरीके की जो कोशिशें हैं वो दिल्ली पुलिस ने की हैं, और हो सकता है कि 20 तारीख को जो तस्वीर दिखी थी वो शायद आज दिल्ली में ना दिखे।
0: अच्छा मनीष, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा, लेकिन कुछ तस्वीरें देखिए, अब जैसे जैसे आएंगी तो वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। अभी देखिए, ये एक और प्रदर्शनकारी को डिटेन किया गया, ये पहुंचे थे यहाँ पर, लेकिन अब आप देखिए, अब इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि अभी तो ये हालात है कि एक प्रदर्शनकारी पर कम से कम 8 से 10 या उससे ज्यादा ही पुलिस वाले हैं। जो भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंच रहा है उसको डिटेन किया जा रहा है। एक बार जरा सुनिए आप। जो भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर आ रहा है, चाहे वो कनॉट प्लेस हो या फिर वो जंतर मंतर हो, उसको डिटेन किया जा रहा है। ये देखिए, पुलिस की बस तैयार है। अब यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को जो बैग लेकर आए थे, कंधे पर अपना बैग टांग कर आए थे प्रदर्शन करने के लिए, उन सबको डिटेन किया जा रहा है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो कनॉट प्लेस जन सुविधा केंद्र सुलभ शौचालय में एक जो प्रदर्शनकारी थे वो दौड़ के छुप जाते हैं, लेकिन वहां से भी पुलिस ने उसे डिटेन किया, बस में बिठाया और उसके बाद वहां से ले गए। तो ये अलग अलग जगह से तस्वीरें आना शुरू हो गई, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जंतर मंतर, और जैसा मुनीश ने बहुत अहम बात की कि ऐसी डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, जंतर मंतर
5: तरफ से यहाँ पर खंदेड़ा जा रहा है। एक बार फिर से दिल्ली के अंदर इस तरीके से कनॉट प्लेस की तस्वीरें देखिए, तमाम प्रदर्शनकारी जो है वो अंदर की तरफ घुसते हुए नजर आ रहे थे। पुलिस का कड़ा बंदोबस्त, पैरामिलिट्री फोर्स, और तमाम प्रदर्शनकारियों को अब दिल्ली पुलिस की तरफ से खंदेड़ा जा रहा है। ये देखिए कि सैकड़ों प्रदर्शनकारी जो है वो सीपी के अंदर और इनर सर्कल के अंदर प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंचे हैं। पुलिस की तरफ से इन प्रदर्शनकारियों को देखिए किस तरीके से डिटेन किया जा रहा है। ये प्रदर्शनकारी को फिलहाल पुलिस ने डिटेन किया है, और भी कई सारे प्रदर्शनकारी कनॉट प्लेस के अंदर लगातार एंटर कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो तस्वीरें दिखाते जाए। ये देखिए, पुलिस इन तमाम प्रदर्शनकारियों को खंदेड़ती हुई नज़र आ रही है। कई सारे प्रदर्शनकारी जो हैं वो देखिए वहाँ पर आपको नज़र आएंगे। फिलहाल पुलिस की तरफ से जंतर मंतर जाने की इजाज़त नहीं है इन प्रदर्शनकारियों को। ऐसे में पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ जो है वो कर रही है, और आसपास के तमाम हिस्सों में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त इस वक्त जो है वो दिल्ली में नज़र आ रहा है। देखिए कई और प्रदर्शनकारी जिनको फिलहाल पुलिस की तरफ से यहाँ पर डिटेन किया गया है। कैमरा पर्सन मनीष भदूड़ी के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली। आज तक
0: कि जो आपने अभी रिपोर्ट देखी वो कनॉट प्लेस से थी, इनर सर्कल तक कुछ प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे, अब उनको खदेड़ा गया, खदेड़ा के उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में वो भाग रहे हैं और दिल्ली पुलिस उनके पीछे है और उनको डिटेन करने की तैयारी है। बहुत सी बसें, बसों की कमी नहीं है दिल्ली पुलिस के पास। तो ऐसे में अभी दिल्ली पुलिस का मुख्य मकसद वो यही है कि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उनको डिटेन किया जाए, किसी को भी जंतर मंतर पर पहुंचने नहीं दिया जाए। अब ये देखिए चेकिंग कैसे की जा रही है, एक एक गाड़ी को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है, कोई सी भी गाड़ी हो। अब देखिए, एक बड़ी गाड़ी हो, लोडिंग हो, तो उससे भी देखा जा रहा है, उससे भी पूछा जा रहा है, बातचीत की जा रही है। दूसरे दो पहिया वाहन, दो लोग जा रहे हैं या एक आदमी भी जा रहा है, तो उससे भी बातचीत की जा रही है। आईडी कार्ड देखा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। कोई कार जा रही है तो कार में देखा जा रहा है कि पीछे कितने लोग हैं, अगर 3 से 4 लोग हैं तो पूछा जा रहा है कि क्यों जा रहे हैं। अब मुनीष पांडे जैसे बता रहे थे, मुनीष पांडे ने कहा था कि ठीक है यहाँ पर अभी ये दिशा निर्देश नहीं है, जंतर मंतर ठीक है समझ में आता है, लेकिन कुछ लोग कनॉट प्लेस पे हो सकता है, कुछ लोग कहीं और पर। जो अंदर से जो खबर आ रही है कि पहले ही बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रदर्शनकारी आ चुके हैं दिल्ली में, जगह बना चुके हैं।
5: तस्वीरें यहाँ से कनॉट प्लेस जो है वो जाया जा सकता है। और ऐसे में पुलिस को ये सूचना है कि कई सारे प्रदर्शनकारी जो है वो कनॉट प्लेस के अंदर एंटर कर सकते हैं। ऐसे में इस रास्ते को जो है वो फिलहाल बंद कर दिया गया है। कनॉट प्लेस से हनुमान मंदिर की तरफ जाने वाला ये रास्ता है जो आगे की तरफ जाकर के जंतर मंतर की तरफ मिलता है, उस रास्ते को फिलहाल पुलिस की तरफ से डाइवर्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि तमाम गाड़ियां जो है वो शिवाजी स्टेडियम की तरफ डाइवर्ट कर दी गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सड़कों पर, मैं आपको तस्वीरें

0: पहुंच रहे हैं और उसके बाद जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करते हैं तब पुलिस उन्हें पकड़ती है और तब वहां से डिटेन कर लेती है। अभी मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी आया तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी बाहर निकलते ही कुछ लोगों को जिन पे पुलिस को शक हुआ कि ये लोग जंतर मंतर जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास जनरली जो प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं उनके पास जो लगेज है वो हल्का लगेज होगा और यहाँ और वो सीधा धरना स्थल जाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है एक एक करके।
1: आइडेंटिफाई जैसे ये देखिए, ये तस्वीर हम देख रहे हैं, ये देखिए पूछा जा रहा है, ये बिल्कुल सामने ये तस्वीर देखिए, ये झोला उठा के ये बैग लेकर एक शख्स वहां पर जा रहा है सफेद शर्ट में और अंशुल जो दिखा रहे हैं ये आप समझिए, तुरंत पुलिस के 3 से 4 जवान वहां पर आते हैं, आई कार्ड भी देखते हैं और मंशा जानी जाती है, सब पूरी डिटेल में बहुत बारीकी से हर एक चीज देखी जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, सिर्फ खबर पर लगातार बने हैं। वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार। सर एक बार रोटी थमका लगाने बस।
0: मेरे पास एक आइडिया।
1: क्या?
0: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
2: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
3: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
2: कौन सी बनानी है?

0: YPC।
1: सर गैसोफास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसोफास्ट 27%, इनो 9.2%।
2: गड़बड़ है।
3: आहा, गैसोफास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसोफास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
4: आ गया सोमवार और आ गए
5: चकमक चाचा।
4: एक कचौड़ी, दो समोसा, चकमक तेरा क्या भरोसा।
6: चकमक चाचा से सीधे चकमक है।
4: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, बुझ रहा ना।
6: लेकिन भैया नारे, अरे फालतू सब बेकार, एकदम बेकार। नारे होते थे हमारे टाइम।
4: अच्छा
6: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
4: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
6: अरे जमीन के चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में।
4: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
6: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
4: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा देके जाएंगे।
6: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
4: अरे लाल फूल, नीला फूल, जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
6: अरे बारी बारी, सबकी बारी, अब की बारी, अटल बिहारी।
4: चाय गरम, दूध गरम, चकमक चाचा भी शरम। हाँ,
6: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
4: अरे मेरे सिर में दर्द है, जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
7: हम जैसे, इधर आओ।
8: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
9: अक्टूबर को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का अयोध्या दौरा क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में अयोध्या के नाम की राजनीति में इतने रंग बिखर गए कि सियासत में उसमें कहीं भक्ति दिखी तो किसी ने आशीर्वाद देखा, किसी ने चुनौती फेंकी तो किसी ने प्रसाद पर।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सुबह सुबह दिल्ली से कई प्रदर्शनकारी हिरासत में। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर किले में तब्दील राजधानी। जंतर मंतर के 4 किलोमीटर दायरे में इंटरनेट सेवा बंद, सीमाएं सील, 45 मेट्रो स्टेशन बंद। मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक जारी रहेगी लड़ाई। दिल्ली के हर बॉर्डर और होटलों की सघन चेकिंग, 12 डिटेंशन सेंटर बनाए गए। दिल्ली की किलेबंदी पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, का मक्खी मारने के लिए हथौड़ा नहीं चला सकते। सर्वोच्च अदालत ने कहा, उतना ही एहतियात करें जिससे आम लोगों को ना हो परेशानी। राष्ट्रपति से इंडिया गठबंधन के नेताओं की मुलाकात के बाद राहुल गांधी का दावा, महामहिम ने हमसे मांगे हैं वोट, चोरी के सबूत, हम उन्हें हर प्रमाण देंगे। बीजेपी बोली, संवैधानिक सीमा लांग रहे हैं राहुल। और उपचुनाव में बीजेपी एनडीए के शानदार प्रदर्शन पर बम बम बीजेपी। पीएम मोदी ने कहा, इस जनादेश से मिलेगी और मजबूती। अमित शाह बोले, राहुल के झूठ और दुष्प्रचार के बावजूद बड़ी जीत।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आप देख रहे हैं आज तक और आज के स्पेशल बुलेटिन में सभी दर्शकों का स्वागत है। आमतौर पर शनिवार का यह वक्त होता है भाग्य चक्र का, लेकिन आज हम खबरों के विशेष प्रसारण के साथ हाजिर हैं। आज पूरे देश की नजर देश की राजधानी दिल्ली पर है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के लिए मैं तब्दील हो गई। छह तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए इन छह तस्वीरों को आप समझेंगे। अब इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लगा दी गई है नई दिल्ली में, यानी लोगों के जमावड़े पर बैन। जंतर मंतर के तमाम रास्तों पर भारी बैरिकेडिंग कर दी गई है। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के 2,500 जवानों को पूरी राजधानी में तैनात किया गया है। ड्रोन से निगरानी भी हो रही है। नई दिल्ली के 4 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, ऐसी खबरें हैं। 45 मेट्रो स्टेशन एंट्री एग्जिट बंद है। साथ ही दिल्ली आने वाली बताया जा रहा है कि 189 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, मतलब ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया है। और बॉडी कैमरा भी, जो पुलिस के जवान हैं भीड़ से जो मुखातिब होते हैं, बॉडी कैम लगाया गया है। कनॉट प्लेस में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, और बड़ी कार्रवाई वो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आप देखिए, आप समझिए, बहुत से प्रदर्शनकारी कनॉट प्लेस पहुंच जाते हैं, किसी भी तरीके से पहुंच जाते हैं, बहाना बना के या फिर अपनी अपनी जो मंशा छुपा कर पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस उन प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर लेती है। अब ये तस्वीरें आप देखिए कि कितना भारी डिप्लॉयमेंट है पुलिस का, साथ ही बसेस तैयार हैं, और जैसे ही कोई प्रदर्शनकारी वहां पर आता है, भीड़ में आता है, ग्रुप्स में आता है, तो उसके बाद उनको तुरंत डिटेन कर लिया जाता है। कनॉट प्लेस से कई रिपोर्ट भी आपने सुशांत मेहरा हमारे सहयोगी की देखी, और आगे भी आपको बहुत सारी रिपोर्ट दिखाएंगे। और अगर आपको दिल्ली जाना है किसी काम से, अगर आपको घर से बाहर निकलना है किसी काम से, सीपी के आसपास आपको काम है, जंतर मंतर के आसपास आपको काम है, तो आप पहले आज तक को देखिए, इस बुलेटिन को देखिए। आप छावनी बन गई है दिल्ली, जंतर मंतर पर भी पुलिस की बसें तैनात है, कनॉट प्लेस पर भी पुलिस की बसें तैनात है। अगर कोई युवा, कोई छात्र, 2-3 लोग एक साथ कंधे पर बैग टांगे अगर दिखते हैं, तो पहले पूछताछ होती है और उसके बाद डिटेन कर लिया जाता है। सुशांत मेहरा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनकी कई रिपोर्ट्स एक्सक्लूसिव आप देख ही चुके हैं कैसे प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया जा रहा है। सुशांत, आपकी कई रिपोर्ट्स अभी तक हम देख चुके हैं, अभी आप जहां पर मौजूद हैं, आपने अपनी आंखों से क्या देखा, किस तरह की व्यवस्था आपने दिल्ली पुलिस की देखी, और प्रदर्शनकारियों के बारे में अभी तक क्या खबरें आई हैं सामने?
1: देखिए हिमांशु, जिस तरीके से पुलिस का बंदोबस्त है, साफ तौर पर यह है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस, जंतर मंतर, आसपास के तमाम हिस्सों में प्रदर्शनकारी जो है वो ना पहुंच सके, इसको लेकर के पुलिस का कड़ा बंदोबस्त नजर आ रहा है। हालांकि फिर भी कई प्रदर्शनकारी जो है वो कनॉट प्लेस, आसपास के हिस्सों में संसद मार्ग की तरफ पहुंचने की जैसे कोशिश करते हैं, पुलिस धरपकड़ जो है वो शुरू कर देती है। यानी BNS की धारा 163 लागू है, कोई भी 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। कनॉट प्लेस अगर आने की सोच रहे तो तमाम व्यापारियों ने दुकानें बंद करी है। आसपास के तमाम मेट्रो स्टेशन से लेकर के दिल्ली के बाहरी दिल्ली तक के तकरीबन 45 मेट्रो स्टेशन बंद है। पुलिस तमाम हिस्सों के अंदर, इनर सर्कल में भी अगर देखा जाए तो टुकड़ों के अंदर कई सारे प्रदर्शनकारी जो है वो दो दो के, तीन तीन की टुकड़ियों के अंदर जो है वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे पुलिस के आसपास पहुंचते हैं, पैरामिलिट्री के आसपास पहुंचते हैं, तो तुरंत फोर्सेस जो है वो उनसे पूछताछ करती है, क्योंकि ये जो प्रदर्शनकारी है दिल्ली के हिस्सों से नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार से लोग जो है प्रदर्शनकारी जो है वो धीरे धीरे रेलवे स्टेशन के जरिए, बसों के जरिए, कैसे भी करके पैदल चल करके कनॉट प्लेस पहुंच रहे हैं। वहीं पर
0: सुशांत, जो आप जानकारी दे रहे हैं ना, सुशांत जो आप जानकारी दे रहे हैं वो तस्वीरों के जरिए और अच्छे से हम बता देते हैं। आप ही की एक रिपोर्ट थी कनॉट पैलेस से, जहां पर प्रदर्शनकारी थे और दिल्ली पुलिस के जवान उनके पीछे थे, तो जरा वो रिपोर्ट दिखा देते हैं।
1: तस्वीरें देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी जो है पहुंचे हैं, उनको अब पुलिस की तरफ से यहां पर खंदेड़ा जा रहा है। एक बार फिर से दिल्ली के अंदर इस तरीके से कनॉट प्लेस की तस्वीरें देखिए, तमाम प्रदर्शनकारी जो है वो अंदर की तरफ घुसते हुए नजर आ रहे थे। पुलिस का कड़ा बंदोबस्त, पैरामिलिट्री फोर्स, और तमाम प्रदर्शनकारियों को अब दिल्ली पुलिस की तरफ से खंदेड़ा जा रहा है। ये देखिए कि सैकड़ों प्रदर्शनकारी जो है वो CP के अंदर और इनर सर्कल के अंदर प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंचे हैं। पुलिस की तरफ से इन प्रदर्शनकारियों को देखिए किस तरीके से डिटेन किया जा रहा है। ये प्रदर्शनकारी को फिलहाल पुलिस ने डिटेन किया है, और भी कई सारे प्रदर्शनकारी कनॉट प्लेस के अंदर लगातार एंटर कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाते जाएं। ये देखिए पुलिस इन तमाम प्रदर्शनकारियों को खंदेड़ती हुई नजर आ रही है। कई सारे प्रदर्शनकारी जो हैं वो देखिए वहाँ पर आपको नजर आएंगे। फिलहाल पुलिस की तरफ से जंतर मंतर जाने की इजाज़त नहीं है इन प्रदर्शनकारियों को। ऐसे में पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ जो है वो कर रही है और आसपास के तमाम हिस्सों में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त इस वक्त जो है वो दिल्ली में नज़र आ रहा है। देखिए कई और प्रदर्शनकारी जिनको फिलहाल अब पुलिस की तरफ से यहाँ पर डिटेन किया गया है। कैमरा पर्सन मनीष भदूड़ी के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।
0: और देखिए एक हकीकत यह भी है कि इन प्रदर्शनकारियों के चक्कर में जो लोग वाकई काम से निकले हैं बेचारे, उन लोगों को भी डिटेन किया जा रहा है, ऐसे भी कहा जा सकता है। लेकिन अभी आप ये तस्वीरें देखिए, ये कनॉट प्लेस की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिसकर्मी यहां पर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रदर्शनकारियों को डिटेन करने के लिए। सुशांत मेहरा हमारे सहयोगी, उनकी हर एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया जा रहा है। एक और दिखा देते हैं। अच्छा, लेकिन पहले आप देखिए कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कितना एहतियात पुलिस बरत रही है। अब जैसे ये देखिए, ये पुलिसकर्मी यहां से निकलती है, सामने से आप देखिए कि ब्लू कैप में एक शख्स आता है, वहां पर तुरंत उससे पूछा जाता है कि कहां जा रहे हैं आप, बैग टांग के जा रहे हैं, बैग में क्या है, कहीं कोई स्लोगन या फिर कुछ बैनर लेकर नहीं जा रहे हैं। कहीं पर 4 से 5 लोगों का ग्रुप अगर दिखाई देता है, युवाओं का, प्रदर्शनकारियों का, जो बैग टांग के जा रहे होते हैं, तो उनको डिटेन करने के लिए पुलिसकर्मी भी दौड़ पड़ते हैं।
1: कनॉट प्लेस में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो क्राउड है, जो प्रदर्शनकारी है, वो कनॉट प्लेस जो है वो पहुंचे थे। उनको फिलहाल पुलिस की तरफ से डिटेन किया जा रहा है। देखिए ये नज़ारा है सीपी के इनर सर्कल के पास का, चैंपर मार्केट के पास का। आप देखिए कितने सारे ये प्रदर्शनकारी हैं जो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे और अब यहाँ पर पुलिस की तरफ से इन तमाम प्रदर्शनकारियों को जो है वो डिटेन किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें दिल्ली के, आप देख सकते हैं, कनॉट प्लेस के पास की, जहाँ पर ये प्रदर्शनकारी पहुँचे थे, उनको फिलहाल अब दिल्ली पुलिस की तरफ से डिटेन किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, तमाम अधिकारी जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी आए थे कनॉट प्लेस और आसपास के तमाम हिस्सों में। बीएनएस की धारा 163 लागू है, यानी 5 से ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से ये प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुँचे थे, उनको यहाँ पर पुलिस की तरफ से डिटेन किया जा रहा है और पहले से ही यहाँ पर पुलिस की तरफ से साफ इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पर प्रदर्शन पूरी तरीके से प्रतिबंध है। उसके बावजूद लोग यहाँ पर पहुँचे, पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस की मदद से इन तमाम प्रदर्शनकारियों को जो है वो फिलहाल डिटेन किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं,
0: जो आपने अभी रिपोर्ट देखी वो भी आपने कनॉट प्लेस से देखी और आज तक के अलग अलग रिपोर्टर्स अलग अलग जगह पर मौजूद हैं और वो हर एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अंशुल सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए कनॉट प्लेस पे ही हैं। अंशुल, आप क्या देख पा रहे हैं, क्या खबरें आ रही हैं?
2: जी, इस वक्त मैं रीगल सिनेमा के बाहर हूं और यहां से कुल 500 से 700 मीटर दूर जो है वो जंतर मंतर होगा, लेकिन जिस तरीके के हालात यहां पर बने हुए हैं मैं आपको दिखाऊं, यहां पे भारी संख्या में जो है पुलिस डिप्लॉय की गई है। और उसके अलावा एक तस्वीर जो यहां काफी इंटरेस्टिंग है वो अगर आप ये देखें तो ये जो सामने आपको बस दिख रही है, ये जेल बस जो दिख रही है, इसके अंदर जो प्रदर्शनकारी यहां पहुंचे थे उन्हें डिटेन करके रखा गया है। और क्योंकि अभी बस खाली है और लोग बैठ सकते हैं इसलिए इस बस को अभी तक यहां से निकाला नहीं गया है, तो जैसे ही लोग यहां पहुंचेंगे उन्हें इसी तरीके से बसों में डाल करके यहां से निकाल दिया जाएगा। आप देखिए यहां पर भी बस के आसपास भी कितनी भारी संख्या में जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं वो यहां पर खड़े हैं, कई लोगों के पास बॉडी कैम्स हैं, कई लोगों के हाथ में डंडे हैं और ये बार बार अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि यहां पर इकट्ठा होना एकदम इलीगल है और अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पुलिस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो आपके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखिए अभी इस बस को यहां से ले जाया जा रहा है, यहां पे दिल्ली पुलिस की तैयारी पुख्ता है, सैकड़ों की संख्या में जो पुलिस अधिकारी हैं वो हर टर्न पे हर गली के बाहर खड़े हैं, हर रस्ते के बाहर खड़े हैं, सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद हैं।
0: ऐसी कितनी बसों की व्यवस्था की गई है?
2: जी कई 100 बसेज हैं ऐसी डीटीसी को लिख करके, डीटीसी से कई ऐसी बसें हायर पे रखी गई हैं, दिल्ली पुलिस की जो अपनी बसें हैं उन बसों को भी यहाँ पर रखा गया है। करीब 200 से 250 बसें तो कम से कम ऐसी होंगी जो दिल्ली पुलिस ने हायर करके अभी यहाँ पे लगवाई हुई है कि जैसे ही प्रदर्शनकारी आए उन्हें इन बड़ी बड़ी बसों में भर करके यहाँ से ले जाया जाए और कहीं दूर दराज दिल्ली के आउटर डिस्ट्रिक्ट्स में उतार दिया जाए। आप देखिए जो एक के बाद एक जो गाड़ियां लगी हुई हैं ये सारी बसेस जो है ये हायर की हुई है डिटेंशन के लिए कि अगर ज्यादा लोग एक साथ आ गए तो बड़ी बसों में उन्हें भर करके यहाँ से ले जाया जाए और एक के बाद एक आप देखें कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में बस आपको सिक्योरिटी फोर्सेस ही दिख रहे होंगे, बस पुलिस के जवान जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवान है, ये सब यहाँ पे मौजूद है। पूरे नई दिल्ली इलाके को 20 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, हर सेक्टर एक डीसीपी रैंक के ऑफिसर द्वारा कमांड किया जाएगा, तो ये कमांड जल्दी से जल्दी पहुंचे और अगर कोई सिचुएशन कहीं खराब हो तो उसे जल्दी से कंट्रोल कर लिया जाए, ये सबसे बड़ी जो है दिल्ली पुलिस का फोकस है। अगर आप ये रास्ता देखें तो ये संसद मार्ग जो संसद मार्ग पुलिस स्टेशन है जो जंतर मंतर जाता है, ये संसद मार्ग जंतर मंतर जाने वाला रास्ता है और आप यहाँ देखिए कि किस तरीके से चेकिंग हो रही है और किस तरीके से कितनी भारी संख्या में जो पुलिस है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। आप देखिए यहाँ पे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जो जवान है ये बिल्कुल इसी लोकेशन पर है क्योंकि यही वो लोकेशन है। अगर आपको याद हो तो 20 जुलाई की हिंसा के बाद 21 और 22 जुलाई की
0: अच्छा मतलब आग मचोली का खेल चल रहा है अंशुल, अभी तो हम यही कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से तैयारी है, एक बस जाती है तो दूसरी बस पीछे बिल्कुल तैयार खड़ी है कि अगर प्रदर्शनकारी आए तो बस में बिठाकर उनको डिटेन कर कहीं और छोड़ दिया जाए। आग मचोली का खेल है, प्रदर्शनकारी भी पुलिस को चकमा देकर पहुंचना चाह रहे हैं कनॉट प्लेस या जंतर मंतर। हमारी सहयोगी श्रेया चटर्जी वो भी लगातार फील्ड में है, हर एक तस्वीर रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही है, उनकी भी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
3: लगाया गया है और जहां हम मौजूद है वो इलेक्शन कमीशन के सामने है। मैं हमारे कैमरामैन नासिर को बोलूंगी कि वो एक बार इलेक्शन कमीशन किस तरफ है वो दिखाए। ये वो जगह है जो सबसे ज्यादा सिक्योर्ड जोन माना जाएगा क्योंकि निर्वाचन सदन ही सेंटर ऑफ जो पॉलिटिकल डिस्कशन है, एसआईआर को लेकर जो प्रोटेस्ट है यही इंस्टीट्यूशन है। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ किस तरीके की सिक्योरिटी यहां पे लगाई गई है, दिल्ली पुलिस के जवान से लेके सीआरपीएफ से लेके डिप्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में है और जो टोटल कंपनीज है सीआरपीएफ के वो 220 प्लस है। प्रोहिबिशनरी ऑर्डर्स है इस पूरे इलाके में 163 के तहत, किसी को भी आज जंतर मंतर पहुंचने नहीं दिया जाएगा। कुछ विजुअल्स हमें दिखने को मिले थे जहां प्रोटेस्टर्स दिखे थे सुबह सुबह जिनको कनॉट प्लेस और जंतर मंतर के पास से डिटेन किया गया था, ये वो प्रोटेस्टर्स हैं जो कल रात पहुंच चुके थे। लेकिन अभी का नजारा आप देखिए क्योंकि जो सिक्योरिटी अपैरेटस है वो फुल इन फंक्शनिंग है, हैवी डिप्लॉयमेंट है। मैं फिर से एक बार बोलूंगी कैमरामैन को कि कैसे ये पूरा जो रास्ता है वो एक तरीके से ब्लॉक्ड है क्योंकि ये रास्ता निर्वाचन सदन को हाउस करता है, इसके अलावा इसी रास्ते से होते हुए हम जंतर मंतर भी पहुंचते हैं और इसीलिए आप समझ सकते हैं कि अगर कोई चाहे भी तो शायद आज जंतर मंतर नहीं भटक पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नासिर के साथ श्रेया चटर्जी आज तक।
0: तो देखिए तैयारियां देखकर तो ये आप समझ सकते हैं कि आज जंतर मंतर कोई चाहे तो नहीं पहुंच पाएगा और अगर कोई पहुंचेगा तो उसके लिए बसें वहां पर तैयार है। दिल्ली पुलिस ने तैयारी की हुई है। ट्रैफिक पर हर जानकारी हम अब तक लगातार पहुंचा भी रहे हैं कि कैसी व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, तो दूसरी तरफ आप वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसमें प्रदर्शनकारियों को काबू में करने की कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। देखिए इस प्रदर्शन पर हर खबर चप्पे चप्पे पर आज तक के रिपोर्टर मौजूद हैं। अब देखिए दिल्ली पुलिस की कैसी तैयारियां हैं, बॉडी कैम है। इससे पहले आपने देखा होगा कि कुछ अराजक तत्व आ गए थे प्रदर्शनकारियों में, कुछ अराजक तत्व प्रदर्शनकारियों में आ गए थे, दिल्ली पुलिस के साथ बदसलूकी की थी, गाली गलौज भी की गई थी, अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, मारपीट की गई थी। तो ये बॉडी कैम है, अब बच नहीं पाएंगे, चेहरा कैद हो जाएगा कितना भी आप बचने की कोशिश कीजिए। लेडी पुलिस भी वहां पर है, ये आरएएफ जो आप देख रहे हैं लेडी ब्रिगेड भी वहां पर मौजूद है, अगर महिला प्रदर्शनकारी आती हैं माहौल बिगड़ता है तो ये उन पर काबू पाने के लिए मौजूद है। हर जगह पर गाजीपुर बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, सारे जो दिल्ली के एंट्री पॉइंट हैं वहां पर तो भारी डिप्लॉयमेंट किया ही गया है। लेकिन देखिए अभिजीत दीपके ने कहा था कि 10 बजे तक वो जंतर मंतर पर मिलेंगे। अभिजीत दीपके पहुंचने वाले हैं दिल्ली, लेकिन उससे पहले बयान भी सामने आया है और वो कह रहे हैं कि हम धमकियों से डरने वाले नहीं है। दिल्ली पहुंचने से पहले अभिजीत दीपके का बयान आया है और अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, गिरफ्तारी होगी तो हो जाए, ऐसा कल भी उनका बयान देखने को मिला था, हम धमकी से नहीं डरेंगे।
4: कहना चाहता हूँ कि अगर आप जेल की धमकी देकर जेल का डर दिखाकर सोचते हो हमें रोक सकते हो तो ऐसा नहीं है। हम जेल जाने की के लिए तैयार है। अगर आपको हमें जेल में डालना है जेल में डाल दीजिए, एनएसए लगाना है, यूएपी लगाना है, जो लगाना है लगा दो, लेकिन इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम लड़ते रहेंगे और ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेकर रहेंगे, क्योंकि 13 करोड़ से ज्यादा वोट डिलीट करे लोगों का वोटिंग राइट छीना जा रहा है, तो उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। वी हैव टू सेव द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया।
0: एनएसए लगाना है लगा दो, हम नहीं डरेंगे, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हम लेकर रहेंगे, ये अभिजीत दीप के कह रहे थे। लेकिन जिन प्रदर्शनकारियों को उन्होंने कहा है युवाओं को कि आइए जंतर मंतर पर मिलते हैं, प्रदर्शन करते हैं, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेते हैं, दिल्ली पुलिस ने उसके लिए बहुत अच्छा होमवर्क किया है। और ये इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि जुलाई में जो हुआ, 20 जुलाई को जो हुआ वो सबने देखा, उससे सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने होमवर्क किया और उसके बाद तस्वीरें आपके सामने हैं। भीड़ को नहीं जुटने दिया जा रहा है, प्रदर्शनकारियों को नहीं आने दिया जा रहा है। अब सिक्योरिटी कैसे की गई है, किस तरह से व्यवस्थाएं दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है हर जगह पर, एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी मनीष पांडे की दिखाते हैं आपको।
5: हमारी मौजूदगी उस रोड पे जो नोएडा को दिल्ली से जोड़ती है और सीजेपी के प्रोटेस्ट के मद्देनजर यहाँ से जो भी गाड़ियां गुजर रही हैं उससे पहले एक चेकिंग के थ्रू जाना पड़ रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं जो गाड़ियां यहाँ पर अमूमन बड़े स्मूथली निकल जाती थी, आज उन गाड़ियों को रोका जा रहा है और जो दिल्ली पुलिस के यहाँ पर लोग हैं वो उन गाड़ियों में चेक कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं दिल्ली की तरफ उनके जाने की वजह क्या है। वो लोग जिनके दफ्तर दिल्ली में हैं या फिर जिनको मेडिकल के लिए जाना है, एयरपोर्ट पर जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, उन्हें जाने की इजाजत है। लेकिन जो लोग जो प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं नजर में रख रही है दिल्ली पुलिस और इसी वजह से चाहे वो प्राइवेट गाड़ियां हों, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो ऑटो हो, उन सभी गाड़ियों को यहां पर चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर इसे डीएनडी हाईवे बोलते हैं, डीएनडी फ्लाईवे बोलते हैं इसे, और यहां पर आम दिनों से अलग इस तरह से पुलिस की मौजूदगी है जहां पर हर एक व्यक्ति को जिसे दिल्ली में प्रवेश करना है उसे एक चेकिंग से होकर गुजरना पड़ रहा है। कैमरामैन आलोक दास के साथ मनीष पांडे, दिल्ली आज तक।
0: वो बोलते हैं ना कि अगर आप सड़क के रास्ते आएंगे या रेल के रास्ते आएंगे, हर जगह व्यवस्था की गई है, तो सड़क के रास्ते वाली व्यवस्था आपको मनीष पांडे ने दिखा दी। लेकिन अगर रेल यातायात की बात करें, रेलवे स्टेशन पर किस तरह की व्यवस्था की गई, हमारे सहयोगी अंशुल सिंह ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी आपके लिए।
2: कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के कॉल देने के बाद नई दिल्ली इलाके में कई सारे इत्यादन जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। उनमें से एक जो है जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन्स होती हैं यानी कि लोकल ट्रेन्स, उन्हें करीब करीब कैंसिल कर दिया गया है। आज सुबह 4 बजे से लेकर दिन में 2 बजे तक जितनी भी लोकल ट्रेन्स नई दिल्ली स्टेशन और निजामुद्दीन स्टेशन, ऐसे लोग हैं जो खुद को इंडिपेंडेंट मीडिया बोलते हैं और पुलिस के काम में देखे किस तरीके से जो है यहाँ पर अब लोगों को, ये महिलाओं को यहाँ से एक एक करके जो है अब उठाया जा रहा है। 4 से 5 जो महिलाएं थी वो यहाँ पहुंची थी, पोस्टर्स लेकर यहाँ पर पहुंची थी और उन्हें अब यहाँ से हटा करके तुरंत महिलाओं फोर्सेस द्वारा ही उन्हें यहाँ से हैंडल किया जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है। आप देखें किस तरीके से जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर रैंक के भी ऑफिसर हैं वो भी यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खराब ना हो। तो आप समझे इस बात को। और देखिए यहाँ दूसरी तरफ की इमानुअल दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएंगे। आप यहाँ देखिए यहाँ पर किस तरीके से लोगों को अभी दोबारा जो बस में है ये भर के यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये बिल्कुल रीगल सिनेमा के पास है। जो लोग दिल्ली को जानते हैं उन्हें पता है कि ये कितनी वीवीआईपी जगह है और यहाँ पर करीब 3 से 4 लोग जो हैं, 3 से 4 महिलाएं और 1-2 पुरुष जो यहाँ पहुंचे थे, छोटे छोटे पोस्टर्स लेकर पहुंचे थे, उन्हें अब यहाँ से बिल्कुल हटा दिया गया है। महिला पुलिस ने हमारे सामने महिलाओं को वहां से उठाया और उसके बाद अब इन बसों में डाल दिया गया है और अब यहां से इन्हें ले जाया जाएगा। आप देखिए कितनी भारी संख्या में जो है यहां पुलिस ऑफिसर्स जो है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं वो तैनात हैं, चाहे सीआरपी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे सिविल डिफेंस हो, कमांडो हो, सिविल डिफेंस कमांडो हो, सभी लोग देखिए इस तरीके से देखिए यहाँ पे फिर से अंदर से गेट खोल दिया गया है और प्रदर्शनकारियों और बाकियों के बीच में, पुलिस के बीच में कहीं ना कहीं फिर से जो टसल है, जो एक भिड़ंत है वो होते हुए दिखाई दे रही है। तो पूरी जो तैयारी है दिल्ली पुलिस की, वो तैयारी यही सुनिश्चित करने के लिए है कि सीपी की सड़कों पे, जनपद की सड़कों पे किसी भी तरह की अराजकता ना फैले। जो 20 जुलाई को हुआ, जो 25 जुलाई को हुआ, वो दोबारा एक बार 10 अक्टूबर को दिल्ली की सड़कों पर ना हो। आप देखें कि कितनी मुश्किल से इन्हें हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। इससे कुछ ही देर पहले एक बस भरी हुई थी जो प्रोटेस्टर्स से, वो ले जा चुके हैं। और अभी जो ये महिला प्रदर्शनकारी यहाँ पहुंचे थे, इन्होंने पोस्टर निकाले और जैसे ही नारे लगाने शुरू किए, वैसे ही जो सीआरपी की महिला डिवीजन की टीम थी, कंपनी की टीम थी, वो यहाँ आए और इन सबको डिटेन कर लिया गया है। लेकिन आप देखिए अभी भी जो इनके बीच में जो टसल है, जो एक भिड़ंत है, वो भिड़ंत अभी भी चल रही है। ये प्रदर्शनकारी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। उनका यही कहना है कि उनका एक एक कानूनी हक है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन उस कानूनी हक के साथ जो जो ड्यूटीज आती हैं, उन ड्यूटीज का भी ख्याल रखना होता है। और यही एक रीजन है दिल्ली पुलिस ने इस बार जो है परमिशन नहीं दी है, क्योंकि अलग अलग गाइडलाइंस है, जो सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है, वो ये कहती है कि अगर 1000 से ज्यादा लोग एक किसी धरने में आ रहे हैं तो फिर जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट नहीं हो सकता, उसके लिए रामलीला मैदान डेजिग्नेटेड साइट है। लेकिन इनको पता था, कांग्रेस जनता पार्टी को पता था, और शायद जंतर मंतर इसलिए चूज किया गया क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बहुत ही पास है, 1 किलोमीटर से भी कम का डिस्टेंस है इलेक्शन कमीशन से जंतर मंतर का। तो इसलिए शायद नई दिल्ली दोबारा एक बार सिलेक्ट किया गया। और आप देखिए कि यहाँ पर इतनी भारी संख्या में पुलिस है, सैकड़ों की संख्या में पुलिस।
0: अंशुल बताइए आप जहाँ मौजूद है, अभी कुछ देर पहले आप रिपोर्ट दिखा रहे थे कि एक बस तो वहां से गई थी, दूसरी बस वहां पर तैयार थी, तो रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे पहले वो सुन लेते हैं।
6: ये विपक्ष के नेता को सूट नहीं करता है,
7: दिल्ली आज हाई अलर्ट पर है सर, सब चीज बंद
6: क्यों नहीं होना चाहिए? पिछली बार जो हुआ था आपने देखा था ना, भारत की राजधानी है ना, तो क्या दिल्ली की जनता को क्योस पे रखा जाए? ये ठीक नहीं है। धन्यवाद।
0: तो पिछली बार जो हुआ था वो देखा था, दिल्ली की जनता को क्योस में रखा जाए, ये ठीक नहीं है। ये रविशंकर प्रसाद की तरफ से कहा गया इस प्रोटेस्ट को लेकर। अंशुल बने हुए हमारे साथ। अंशुल ये बताइए कि अभी जो आप रिपोर्ट कर रहे थे, हम देख रहे थे कि कुछ महिलाएं वहां पर आती हैं और उसके बाद वो प्रदर्शन करती हैं, मतलब पुलिस के इतनी भारी डिप्लॉयमेंट की मौजूदगी के बाद क्या बीच बीच में अचानक कोई युवा आता है या फिर कुछ प्रदर्शनकारी आते हैं अलग अलग तरीके से और फिर एकजुट हो जाते हैं बाद में पुलिस को चकमा देते हुए, क्या ऐसा एक तरीका अपनाया गया है प्रदर्शनकारियों की तरफ से?
2: बिल्कुल ऐसी ही प्लानिंग जो है समझ में आ रही है। कहीं ना कहीं कल से ही दिल्ली पुलिस को जो इनपुट मिले हैं उनमें कुछ ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो बिना इंटरनेट के चलते हैं, जो सिर्फ ब्लूटूथ के सहारे चलते हैं, ब्लूटूथ के सहारे ग्रुप्स बन जाते हैं फोन्स में और उसके सहारे एक कम्युनिकेशन का काम जो है किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है कि लोग अपनी पहचान छुपाकर, अपनी मंशा छुपा करके यहाँ कनॉट प्लेस तो पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि कनॉट प्लेस आने में रोक नहीं है, आप कनॉट प्लेस आ सकते हैं। हालांकि यहाँ पे दुकानें बंद मिलेंगी आपको, आपको जितने भी ऑफिसेज हैं वो बंद मिलेंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कनॉट प्लेस की तरफ आने की इच्छा है तो आप कनॉट प्लेस आ सकते हैं, आपको रोका नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ आके धंधा स्टार्ट कर दें तो आपको तुरंत हिरासत में लिया जाएगा, जैसा हमने देखा यहाँ पर हुआ। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि प्लानिंग भी थोड़ी सी ऐसी ही है कि जैसे ही पहुंचे अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में पहुंचे और यहाँ आते ही धंधा दे और मीडिया के सामने भी, कैमरेज के सामने भी धरना दे, ताकि एक ज्यादा बड़ा मैसेज भी जा सके। तो प्लानिंग तो दिल्ली पुलिस की जहां एक तरफ लग रही है कि बहुत ही पुख्ता है, वहीं दूसरी तरफ जो धरना देने भी लोग आए हैं उनकी भी स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं बहुत ही पुख्ता दिखाई दे रही है। उन्हें पता है कि वो कौन सी सड़कें हैं।
0: इसी बीच खबर आ रही है अंशुल, वो बता देते हैं कि अभी देखिए लगभग 9:30 का वक्त हो चला है और अभी तक जो खबर आई है उस हिसाब से 150 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। ये आंकड़ा आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन अब तक 150 प्रदर्शनकारियों को, 150 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। ज्यादातर को तो कनॉट प्लेस से ही लिया गया है, क्योंकि कनॉट प्लेस पर मीडिया के सामने आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, बैनर पोस्टर लेकर आते हैं, तो ऐसे में तुरंत जो पुलिस वहां मौजूद रहती है वो उनको डिटेन कर लेती है और उसके बाद बसों में भर के ले जाती है। अंशुल हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंशुल, दिल्ली पुलिस की तरफ से इंतजाम तो हम अच्छे खासे वहां पर देख रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारी भी देख रहे हैं जो इस वक्त वहां पर मौजूद है। मेन जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होना है, लेकिन अब लगता है कि प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर पर ना जाने की जगह कनॉट प्लेस को चुना है, क्योंकि कनॉट प्लेस पर आपका एक्सेस हो सकता है, आप वहां तक पहुंच सकते हैं और इसीलिए इजीली कनॉट प्लेस तक पहुंच भी रहे हैं।
2: जी यही इनकी स्ट्रैटेजी है। अगर आपने कल वो मीडिया बाइट सुनी होगी जो आयसा के प्रेसिडेंट नेहा वोरा ने दिया, उन्होंने ये कहा कि आप जंतर मंतर की तरफ आइए, जहां रोका जाए आप वहीं बैठ जाइए, आप वहीं से धरना दीजिए, और वही स्ट्रैटेजी जो है अब वो कहीं ना कहीं यहां पर इम्प्लीमेंट होती हुई दिख रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स और इंडिपेंडेंट मीडिया के लोग हैं जो यहां पर मौजूद हैं। और दूसरी तरफ की आप तस्वीरें देखें तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये भारी संख्या में जो है यहां दिल्ली पुलिस के जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो डिप्लॉयड हैं। यहां कुछ लोग बहस भी करने की कोशिश कर रहे हैं आईपीएस ऑफिसर्स से, जो जिनको समझाया जा रहा है कि कानून क्या है, कानून का दायरा क्या है और कानून को कैसे कंट्रोल में रखना है। तो ये सारी बातें जो है ये अब पुलिस इन सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और ये देखिए अब ये जो बस थी इसमें करीब 6 से 7 डिटेनीज हैं जो यहां पर अचानक से पहुंचे थे, उन्हें अब डिटेन करके यहां से ले जाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए यहां फ्लैग मार्च भी लगातार जो है ये पुलिस कर रही है, खुद ही पैदल चल के आगे ये मार्च निकाला जा रहा है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो प्रोटेस्टर्स है, जो आम जनता है, उनके आवाजाही पे किसी भी तरह की रोक नहीं है, वो आराम से आ जा सकते हैं, ट्रैफिक मूवमेंट पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप जंतर मंतर पे आ रहे हैं या नई दिल्ली में ये सोच के घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि आप धरने पर बैठेंगे तो ये आपको किसी भी सूरत में करने नहीं दिया जाएगा। तो मैसेज बहुत क्लियर है, पिछले कई दिनों से अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, लेकिन अभी तक
0: अच्छा ठीक है। मैं अंशुल कुछ देर के लिए आपको रोकता हूं। देखिए तस्वीरें तो बहुत अच्छी आ रही है, तस्वीरें आप दिखाते रहिए, वो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन श्रेया चटर्जी हमारी सहयोगी, अभी इलेक्शन कमीशन से भी उनकी रिपोर्ट आपने देखी थी, आपने जंतर मंतर के पास से भी उनकी रिपोर्ट देखी, अलग अलग जगह से वो ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही हैं, हालात दिखा रही हैं, और इस वक्त एयरपोर्ट पर पहुंच गई हैं। अभी एयरपोर्ट बहुत अहम है क्योंकि लगभग अभिजीत दीपके का आने का वक्त भी वहां पर हो चला है, उन्होंने कहा था 10 बजे जंतर मंतर पर मिलेंगे। बताइए वहां से क्या रिपोर्ट है आपके पास, क्या जानकारी है श्रेया?
3: देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डोमेस्टिक अराइवल है आईजीआई एयरपोर्ट की टर्मिनल 3 पे 10:20 के आसपास समय है इनकी पहुंचने की, और हमने अभी कुछ इनके जो समर्थक हैं उनसे बात की, बहुत ही कम है लेकिन कुछ 5-6 समर्थक जो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, और उनका साफ कहना है कि अगर उनको डिटेन कर लिया गया तो जहाँ पे और जहां तक वो पहुंच पाए वहीं पे वो अपना प्रदर्शन करेंगे, ये उनकी इंटरनल कम्युनिकेशन भी हुई है। और ये एक दो कुछ समर्थक है जो यहाँ पे है, एक समर्थक से हम बात करेंगे। आप लोग कितने लगभग आए होंगे यहाँ पे, 5-6?
8: कोई ऐसी हम लोग गिनती से नहीं आए हैं, बस हम आ गए हैं, बस अपने अकेले के लिए इंडिविजुअली आए हैं।
3: वेलकम करने के लिए आए?
8: हाँ, वेलकम क्या है कि मतलब देश के में जो हो रहा है उसका वेलकम तो नहीं कहा जा सकता कि वेलकम।
3: आपके जैसे लीडरशिप सीजेपी के हैं वो आए हैं तो उनके लिए आप एयरपोर्ट आए होंगे?
8: तो बिल्कुल उन्हीं के लिए।
3: आगे का क्या प्लान है?
8: आगे का कोई प्लान अभी नहीं है, और प्लान होगा भी तो वो आने के बाद ही वो होगा कहाँ तक जा सकते हैं क्या कर सकते हैं।
3: जंतर मंतर में देखा वहाँ पे तो कोई भी नहीं
0: अगर इसी तो ऐसे में आप लोग निकलेंगे जैसा कि आप यहाँ पर बता रहे हैं डोमेस्टिक से, तो आप वहाँ पर थोड़ा इंतजाम बताइए कि क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पूरे दिल्ली को तो छावनी में तब्दील किया है, लेकिन अभिजीत दीप के अगर यहाँ आएंगे तो उसके लिए क्या इंतजाम है, वो तस्वीरों के जरिए दिखाइए थोड़ा।
3: देखिए मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, यहाँ पे अभी फिलहाल इंतजाम नहीं थी लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा एक बैरिकेड जरूर लगाई जा रही है आईजीआई एयरपोर्ट में, जो डीसीपी एयरपोर्ट के तहत यहाँ पे सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे भारी मात्रा में सिक्योरिटी है। बेसिक प्रोटोकॉल के तहत अगर कोई ऐसी मूवमेंट्स होती है उसी की जो सिक्योरिटी है हम वही देख रहे हैं। ये हो सकता है कि शायद इनको यहाँ डिटेन ना करके जो पहला चेक पॉइंट है धौलाकुआ से सरदार पटेल मार्ग की तरफ शायद वहां उनको रोका जाए, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे हम हैवी सिक्योरिटी नहीं देख पा रहे हैं। एक बैरिकेड जरूर लगाई गई है, हो सकता है कि उन्हें रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप कोऑपरेट कर लीजिए, या तो अगर यहाँ से उनको जाने दे तो ये लगभग तय है कि जंतर मंतर से पहले तो उनको रोका।
0: अच्छा श्रेया ये बताइए, देखिए अभी एयरपोर्ट की तस्वीरें तो आप दिखा रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन जब आप एयरपोर्ट आ रही थी तो उस दौरान रास्ते में कितनी बैरिकेटिंग की गई, कितने लेवल की बैरिकेटिंग की गई कि अगर यहां से निकलते हैं भीड़ जुटती है तो कहां उनको रोका जा सके, क्या इंतजाम किए गए रास्ते में, आपने क्या देखा एयरपोर्ट के?
3: देखिए एयरपोर्ट के रास्ते अगर आप धौलाकुआ की तरफ से निकलेंगे तो सरदार पटेल मार्ग क्रॉस करने के बाद जो पॉइंट है वहां पे एक चेक पोस्ट है। दिल्ली के कर्तव्य पथ और जंतर मंतर के 4 किलोमीटर के रेडियस में भारी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है और बॉर्डर पॉइंट्स पे कुछ डाइवर्जन्स है, लेकिन यहाँ एयरपोर्ट में फिलहाल हमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मेजर्स नहीं दिखने को मिल रही है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ राजीव कि हो सकता है कि जो डिटेन का प्लान है वो शायद धौलाकुआ से निकलते जो पॉइंट है।
0: सुशांत के पास एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, दोबारा आपके पास सुशांत बताइए क्या हो रहा है।
9: इस तरह से खंडेड़ा जा रहा है, ये देखिए कि सैकड़ों प्रदर्शनकारी जो है वो सीपी के अंदर और
0: जुड़ेंगे हमारे सहयोगी सुशांत मेहरा से। और सुशांत मेहरा हर एक रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं कनॉट प्लेस से जुड़ी हुई, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कहां पर किस तरह की व्यवस्था। अब ये देखिए कई लोगों को पूछताछ की जा रही है अगर जेन्युइन कारण। सुशांत बने हुए हमारे साथ, सुशांत बताइए क्या देख पा रहे हैं आप वहां। सुशांत अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो बताइए कि क्या क्या इस वक्त दिल्ली पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है और क्या प्रदर्शनकारी वहां पहुंच रहे हैं।
10: नहीं नहीं यहीं पे खड़े, बस यहीं पे खड़े।
0: चलिए जुड़ेंगे सुशांत से, लेकिन वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि कई लोग जन सुविधा केंद्र में छुप गए थे तो उनको वहां से डिटेन किया गया। अब ये देखिए बसों को भरा जा रहा है और बसों को अच्छे तरीके से भरा जा रहा है। कैनॉट प्लेस में कई प्रदर्शनकारी आए और जैसे ही प्रदर्शनकारी आते हैं तो उसके बाद उनको इसी तरह की जो बस है वहां पर डिटेन कर लिया जाता है, भर लिया जाता है। सुशांत बन गया हमारे साथ, सुशांत आप जहां पर मौजूद है वहां से और क्या रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं बताइए। सुशांत सुन पा रहे हैं आप?
9: तो तस्वीरें दिखा दूं, मेरी मौजूदगी इस बार आउटर सर्कल पर है और मेरे पीछे आप देखेंगे रास्ता संसद मार्ग की तरफ जाता है और किस तरीके से पूरे रास्ते को पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के तहत यहां पर बैरिकेडिंग लगा करके बंद कर दिया गया। और इसके अलावा चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया, यानी अंदर जाने के कोई भी व्यवस्था जो है वो पुलिस की तरफ से नहीं की गई है, यानी आप इसके पार जो है वो नहीं जा सकते। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए कि कनॉट प्लेस के अगला जो सर्कल के पास आपको कट नजर आएगा वो जनपद का कट है जो सीधा जंतर मंतर की तरफ जाता है टॉलस्टॉय मार्ग पर। वहां पर भी भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है ताकि प्रदर्शनकारी जो है वो आगे ना बढ़ सके। आप ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं, डीसीपी हैं, वो खुद मौके पर मौजूद हैं। जैसे ही एक से दो प्रदर्शनकारी नजर आते हैं उनसे पूछताछ की जाती है और अगर वो प्रदर्शन के लिए पहुंच रहे हैं तो उनको तुरंत जो है वो डिटेन कर लिया जा रहा है। ये तैयारी जो है वो इस वक्त दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है और पूरी दिल्ली इस वक्त अगर कहा जाए खास।
0: सुशांत आप तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे समझ सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है और ये हम आपको दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा जरूरी तस्वीरें हैं क्योंकि आप देखिए दिल्ली गुड़गांव जो रास्ता है, बहुत से लोग दिल्ली से गुड़गांव जाते हैं, गुड़गांव से दिल्ली आते हैं, तो ये तस्वीरें देख लीजिए। और देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत जरूरी काम है, अगर बहुत जरूरी जिसको आप टाल नहीं सकते तो ही आप घर से बाहर निकलिए, अन्यथा ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि हम आपको घर से ना निकलने के लिए क्यों कह रहे हैं। एम्बुलेंस फंसी है, एम्बुलेंस को भी मुश्किल हो रही है क्योंकि जाम हो चुका है, रास्ता मिल ही नहीं पा रहा है, एम्बुलेंस के लिए भी बहुत सारी मुश्किलें हैं। ये पूरा रास्ता जाम हो चुका है, गाड़ियां बहुत मध्यम गति से चल रही हैं और उसकी वजह यह है कि बैरिकेटिंग है। अब जब बैरिकेटिंग है तो वहां पर जानकारी ली जा रही है तो ऐसे में एम्बुलेंस भी फंस गई है, एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है। सायरन जरूर बज रहा है एम्बुलेंस का लेकिन रास्ता नहीं निकल पा रहा है, क्यों? क्योंकि आगे वाली गाड़ी भी रास्ता नहीं दे पा रही है, बैरिकेटिंग है, बैरिकेटिंग पर सब शिनाख्त की जा रही है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि दिल्ली गुड़गांव में किस तरह के हालात हैं, आम लोग तो फंसी रहे हैं, एम्बुलेंस मतलब सोचिए किसी की जान पर बनी हो सकती है, किसी के लिए एक एक पल बहुत कीमती होता है और ऐसे वक्त पर अगर सही वक्त पर वो नहीं पहुंच पाए हॉस्पिटल तो कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है, ये आप समझ सकते हैं। श्रेया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली एयरपोर्ट से। श्रेया और कुछ हलचल आप देख पा रही हैं अभी इस वक्त एयरपोर्ट पर?
3: देखिए अभी फिलहाल तो कोई हलचल यहाँ पे नहीं है क्योंकि अभी भी समय है 10:20 की उनकी फ्लाइट की लैंडिंग है, तो करीबन 10:30 से 10:45 के बीच हमें कुछ हलचल देखने को मिले। अभी फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो और मीडिया कर्मी है वो यहाँ पे है, लेकिन फिलहाल भीड़ ये लोग पहुंचे नहीं है।
0: बिल्कुल, और लेकिन इस दौरान हम बाकी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ दिल्ली गुड़गांव जो रास्ता है हर तरफ जाम ही जाम है। दिल्ली गुरुग्राम कैसे जाम लगा हुआ है, एम्बुलेंस कैसे फंसी हुई है, हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए आप।
11: जहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान सघन चेकिंग अभियान चलाए हुए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खास तौर पर चेक किया जा रहा है। पहले जरा आप तस्वीरें देखिए, ये दिल्ली गुड़गांव सेहरौल बॉर्डर है, NH-48 का इलाका है जहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचे, बैरिगेड किया इस पूरे इलाके को और अब चेकिंग की जा रही है। तमाम बसों को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को या फिर जो संदिग्ध गाड़ियां हैं जिसमें 4 से 5 लोग सवार हैं, युवक सवार हैं, युवतियां सवार हैं, उन तमाम लोगों को चेक किया जा रहा है। और इसी चेकिंग के चलते आप देखिए जाम की स्थिति भी काफी लंबी होती जा रही है। ये जाम शंकर चौक तक जा पहुंचा है, सैकड़ों वाहन इस जाम की चपेट में हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने चूंकि पहले ही ये चेताया था कि बॉर्डर एरिया को खासतौर पर चेक किया जाएगा और दिल्ली से जुड़े जितने भी बॉर्डर हैं, चाहे फरीदाबाद का बॉर्डर हो, सोनीपत का बॉर्डर हो या यूपी से जुड़े जितने भी बॉर्डर हैं, उन तमाम बॉर्डर इलाकों में सघन चेकिंग अभियान के चलते इसी तरह जाम लगा हुआ है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने यह साफ किया था कि किसी भी प्रदर्शनकारी को, छात्र को, युवाओं को इस प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। दिल्ली में PNS की धारा 163 लगी है, इसी के चलते दिल्ली पुलिस ने आप देख सकते हैं बोर्ड भी यहाँ पे चस्पा किए हैं, फ्लैश बोर्ड भी यहाँ पे चस्पा किए हैं, जिस पर साफ तौर से चेतावनी जारी की जा रही है कि दिल्ली में किसी भी प्रोटेस्ट में शामिल होना आपको कानूनी पेचीदगियों से जूझने को मजबूर कर सकता है। और इसी के चलते लगातार चेकिंग अभियान साफ तौर से जारी है। कांग्रेस जनता पार्टी ने इस प्रोटेस्ट का ऐलान किया था, इस ऐलान के बाद से देश भर में कहीं ना कहीं गुस्सा देखा जा रहा था, रोष देखा जा रहा था, और अब दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से ये ठाना है कि किसी भी प्रदर्शनकारी को दिल्ली के अंदर एंटर नहीं करने दिया जाएगा, उसी की तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये तमाम जो पुलिस के जवान देख रहे हैं आप, ये सघन चेकिंग अभियान यहाँ पे चलाए हैं और ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि के दौरान तुरंत ये वाहन को चेक करते हैं, चाहे फिर उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ी बसें हों, स्लीपर बसें हों या बाहर से आने वाली बसें हों। ये जयपुर से दिल्ली जाने वाला रास्ता है जिस पर दिल्ली पुलिस के तमाम जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम आज तक।
0: तो देखिए हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई, उन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि जाम के हालात कैसे हैं, और इसलिए हम बार बार आप लोगों से कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है तो मत निकलिए। एक बार फिर से श्रेया का रुख कर लेते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे साथ में जुड़ी हुई है। श्रेया एक बात बताइए कि सुशांत का रुख कर लेते हैं, कनॉट प्लेस से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और कनॉट प्लेस से हमने ये देखा कि वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, डिप्लॉयमेंट भी है और लोगों को डिटेन भी किया जा रहा है अगर प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंच पा रहे हैं तो। सुशांत, हमने ये देखा कि कनॉट प्लेस पे ज्यादा प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं, भले ही टुकड़ों टुकड़ों में पहुंच रहे हैं, फिर उनको डिटेन भी किया जा रहा है, ये क्या कोई नई रणनीति यहां पर प्रदर्शनकारियों की दिखाई दे रही है कि सीपी पर धावा बोलना है?
1: हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं हिमांशु, दरअसल प्रदर्शनकारियों की जो स्ट्रेटेजी है उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि कनॉट प्लेस के अंदर कई सारे सर्कल है, इनर है, आउटर है और एक मिडल सर्कल है, और उसमें कई सारी छोटी छोटी गलियां, और ऐसे में पुलिस को चकमा देना बहुत आसान होता है। मैं आपको तस्वीरें अपने कैमरामैन से कहूंगा जो कि मनीष वो तस्वीरें दिखाते हैं, जबकि हमारी मौजूदगी आउटर सर्कल में है। ये रास्ता जंतर मंतर की तरफ जाता है और जंतर मंतर जाने वाले तमाम रास्तों पर इसी तरीके का कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पुलिस ने मीडिया की भी एक दायरा जो है वो बना रखा है, यहाँ से अगर लाइन से अगर आप देखेंगे तमाम मीडिया कर्मी आपको नजर आएंगे। इसके अलावा मीडिया कर्मी आप उस रोड पर जाकर के कवरेज जो है वो नहीं कर सकते, पुलिस ने इजाजत नहीं है। इसके जस्ट पीछे अगर कहा जाए तो इनर सर्कल है और तमाम गलियां, और यही वजह जो हमने तस्वीरें सुबह दिखाई थी कि तमाम प्रदर्शनकारी जो है वो इनर सर्कल से होते हुए आउटर सर्कल पे पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और वहीं पर दिल्ली पुलिस ने धर पकड़ कर ली। सबसे पहले जब मैं सुबह दिखाया था आपको, ये संसद मार्ग के आगे का जो रोड है जसवंत सिंह रोड, उसके पास पुलिस ने धर पकड़ पकड़ी। अब देखिए
0: अच्छा, इस दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आपको बता दे, यूट्यूबर ध्रुव राठी को हिरासत में लिया गया है। ध्रुव राठी सोशल मीडिया पर कई वीडियो जारी किए गए थे अभिजीत दीप्ते की तरफ से, ध्रुव राठी बोल रहे थे कि हम आने वाले हैं दिल्ली में, जनता तैयार हो जाइए। अब ध्रुव राठी को हिरासत में ले लिया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए ध्रुव राठी भी लगातार वीडियो अपडेट कर रहे थे, अपलोड कर रहे थे। अब गुरुग्राम में ध्रुव राठी को हिरासत में लिया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभिजीत दीप्के अभी पहुंचे नहीं है, सुशांत जुड़े हुए हैं। सुशांत बताइए।
9: हिमांशु देखिए हिमांशु, एक बार फिर से एक्शन दिल्ली के अंदर नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारी कॉनॉट प्लेस के सर्कल पर पहुंचे थे, सचिन शर्मा डीसीपी यहां पर पहुंचे और एक्शन किया। कई पत्रकारों के बीच में तमाम प्रदर्शनकारी पहुंचे थे। देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस की तरफ से धरपकड़ की जा रही है, यानी जर्नलिस्ट के बीच में यहां पर पहुंच रहे थे, चेहरा छुपा रखा था, ये प्रदर्शनकारी जो है उनको यहां पर पुलिस ने डिटेन किया। ये देखिए और कई प्रदर्शनकारी बैक टू बैक यहां पर लगातार प्रदर्शनकारी जो है मीडिया कर्मियों के पीछे छुप रहे थे, उनको दिल्ली पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया। देखिए और भी कई सारे प्रदर्शनकारी हैं, फिलहाल पुलिस आगे जाने की इजाजत नहीं दे रही है मीडिया को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मीडिया का एक दायरा है। ये देखिए यहाँ पर और भी आपको प्रदर्शनकारी दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि सड़कों पर एक बार फिर से दौड़ाती हुई पुलिस जो है वो इन प्रदर्शनकारियों को नजर आ रही है। देखिए पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में नूरा कुश्ती किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार डिटेन कर रही है। देखिए पुलिस किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को पकड़ रही है। सचिन शर्मा डीसीपी और तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, रणनीति के तहत दोनों
0: मतलब सुशांत ये बता दिया है कि अगर प्रदर्शनकारी बाउंड्री पर चढ़ेंगे तो पुलिस भी प्रदर्शनकारियों को पकड़ने के लिए बाउंड्री पर चढ़कर उनको डिटेन करेगी, हिरासत में लेगी। मतलब पुलिस कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, ये बहुत स्पष्ट कर दिया इन तस्वीरों को देखकर, समझ गए।
9: देखिए पुलिस ने साफ तौर पर कर दिया जो बीएनएस की धारा 163 लगाई है, यानी कि नई दिल्ली में आप प्रदर्शन जो है वो नहीं कर सकते, नियमों को पालन करना पड़ेगा। और यही वजह है देखिए कि छोटे छोटे जो बच्चे इस तरीके से प्रदर्शन के अंदर शामिल हो रहे हैं उनको तो फिलहाल पुलिस हटा रही है, लेकिन कई जो प्रदर्शनकारी है उनको डिटेन कर लिया गया है। ये देखिए तस्वीरें, ये तमाम प्रदर्शनकारी अब इसके अंदर जो है वो आपको नजर आएंगे जो कि प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे। बड़ी बात यह है क्योंकि लाइन से अगर आप देखेंगे तो कई मीडिया कर्मी यहां पर मौजूद हैं, उन सबको बीच में यहाँ पर ये जो है प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे, पुलिस ने आया देखा और उनकी आइडेंटिफिकेशन करी और उसके बाद तुरंत जो है वो पुलिस का एक्शन जो है वो देखने को मिला। और भी कई सारे प्रदर्शनकारी, देखिए बाहरी पुलिस बल हिमांशु इस वक्त जो है वो कनॉट प्लेस के अंदर नजर आ रहा है। ये देखिए तस्वीर, एक पैरामिलिट्री फोर्स और जो ट्रैफिक की आवाजाही है वो किसी प्रकार से बाधित ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, रास्ता क्लियर किया जाए, एक दायरा बनाया गया है कि उस तरफ जाकर के ही आप कवरेज जो है वो कर सकते हैं, पुलिस के काम में रुकावट जो है वो ना की जाए, इसकी पूरी तरीके से पुलिस की कोशिश है। अब ये देखिए कि यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर रोड पर आने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। देखिए काफी बड़ी संख्या में, अगर आप ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाए कि बड़ी संख्या में इस वक्त आपको जो प्रदर्शनकारी जिनको डिटेन किया गया है उन सब के बीच में आपको पुलिस भी जो है वो अब मीडिया से लगातार ये गुजारिश कर रही है कि आप एक दायरे में रहकर के लिए। कई सारे लोग जो सीपी और आसपास के सर्कल पे काम करते हैं वो भी अब मोबाइल पे तस्वीरें जो है वो कैद करी, क्योंकि पुलिस की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया था कि जिनके पास आइडेंटिफिकेशन होगा प्रेस का बकायदा उनको इजाजत जो है वो दी जाएगी।
0: मैं यही समझना चाह रहा हूँ, ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं इसमें इतनी भीड़ कहाँ किसकी नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को तो डिटेन कर लिया गया है।
9: देखिए ये जो पुलिस कर्मी है जो लगातार कवरेज से तमाम जो पत्रकार हैं उनको एक दायरे पर रोक रहे हैं कि इससे ज्यादा आगे ना जाए। ये तमाम पत्रकार हैं जो कि अलग अलग चैनल से हैं, वो अब पुलिस से कहीं ना कहीं बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं।
0: ठीक है, हर अपडेट आपसे लेते रहेंगे सुशांत। अलग अलग जगह पर हमारे रिपोर्टर मौजूद है, हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
12: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ? पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
4: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेंको गहने।

0: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
1: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
0: असली शहद, असली स्वाद।
2: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
3: गैसो फास्ट 27%,
2: इनो 9.2%।
4: गड़बड़ है।
5: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
6: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
7: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
8: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
9: इट्स अ माही वे।
10: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो ठुमका लगाने पर।
11: मेरे पास एक आइडिया।
10: क्या?
11: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
12: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
13: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
14: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
15: कौन सी बनानी है?
16: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
17: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
16: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
18: जेके मैक्स वाइप इजी,
19: दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।
20: How's the hostel? Settled?
21: Yes, ma'am. It's really nice.
20: कोई आ रहा है क्या?
22: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभाली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले।
20: मयंक, for real?
22: One carat for my one true love. Natural diamond, real love, solitaires to reignite your new season of love.
23: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
24: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: आ गया सोमवार और आ गए
3: चकमक चचा।
2: एक कचौड़ी दो समोसा चकमक तेरा क्या भरोसा।
4: चकमक चाचा से सीधे चकमक है।
2: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, पूछ रहा ना।
4: लेकिन भैया नारे, अरे फालतू में सब बेकार, एकदम बेकार। नारे होते थे हमारे टाइम।
2: अच्छा
4: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई
2: छूटेंगे। तो खत्म कहानी।
4: अरे जमीन के चकबंदी में, जमीन के चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में।
2: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
4: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
2: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा देके जाएंगे।
4: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
2: अरे लाल फूल नीला फूल, जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
4: अरे बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी।
2: चाय गरम दूध गरम, चकमक चाचा भी शरम
4: है।
2: हाँ,
4: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
2: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
5: हम जैसे, इधर आओ।
6: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
2: आई चाचा, खेल रहे।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार। सर एक बार दो तुम ठुमका लगाने बस।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
3: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
3: कौन सी बनानी है?
6: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
7: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
6: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
8: जो आंदोलनकारी, उन्होंने तो आपकी तारीफ की, मतलब जितना मैंने सुना है उसमें तो हमने देखा कि वो कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस सॉफ्ट हार्टेड आदमी है, उन्होंने हम पर लाठीचार्ज नहीं किया, उन्होंने हमें आंदोलन करने दिया, जबकि दिल्ली में हमने देखा कि उसको लेकर काफी गुस्सा था कि लाठीचार्ज जिस तरीके से किया गया, जिस तरीके से पुलिस ब्रुटैलिटी रही। आप मतलब आपका नजरिया थोड़ा अलग है उसको लेकर, या आपको लगता है कि बेहतर तरीके से दिल्ली का आंदोलन हैंडल किया जा सकता था?
9: ऐसा है कि अगर मेरी आपके मालिक को गाली देने की इच्छा है तो मैं कहूंगा साहिल अच्छा आदमी, मालिक खराब है, प्रॉब्लम मालिक का है, साहिल बहुत बढ़िया आदमी है, साहिल जैसा आदमी नहीं है। ये बहुत कॉमन है, इससे साहिल ने खुश नहीं होना चाहिए, साहिल को समझना नहीं, होना ही नहीं चाहिए साहिल को, यह समझना, अगर साहिल को यह समझा नहीं है कि भाई ये किस लिए बोल रहे हैं कि साहिल बहुत अच्छा आदमी है, तो फिर तो मतलब सॉरी टू से, पर इससे बड़ी मूर्खता तो कुछ हो नहीं सकती ना साहिल।
8: चलिए ठीक है आप, लेकिन मैं ये तो पूछ सकता हूं ना कि जो दिखता है वो तो हम पूछ ही सकते हैं ना, कि ये बात भी तो सही है कि आपकी पुलिस ने बड़ी समझदारी से इस पूरे आंदोलन को हैंडल किया। There was not a single case of लाठी चार्ज, there was not a single case of firing, मतलब जो टीयर गैस छोड़ा जाता है, there is not a single case of that, कोई ब्रुटैलिटी की खबर नहीं आई। इनफैक्ट महाराष्ट्र वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद सबसे पहले केसेस वापस लेने में भी महाराष्ट्र था। कोई भी ऐसी धाराएं FIR में नहीं लगाई गई जिसके वजह से आप उनको क्रिमिनलाइज करें या स्टूडेंट्स को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े, ये भी तो रियलिटी है, इसीलिए तो कह रहे हैं, इसीलिए तो तारीफ हो रही है।
9: देखिए
8: अब इसमें आप वो तारीफ नहीं लेना चाहते, उसके लिए मैं कुछ नहीं करता।
9: देखिए अगर वो सही मन से तारीफ करते ना तो मैं खुशी खुशी तारीफ ले भी लेता, उनको थैंक यू भी बोल देता, पर उस तारीफ के पीछे का डिजाइन मुझे मालूम है,
8: देयर इज अ ट्रैप,
9: इसलिए ऐसी तारीफ ठीक है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, नॉर्मली महाराष्ट्र में हमेशा हमारी ये पॉलिसी रही है कि जहां तक हो सके एंगेज करिए, और जब तक कानून व्यवस्था का एक्सट्रीम प्रयास, मतलब को एक्सट्रीम हानि जब तक नहीं पहुंचती है तब तक हम बल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन कभी कभी ये होता है, आप देखिए जैसे दिल्ली में हुआ कि अगर ये लोग संसद चले जाते, सवाल वो नहीं होता है, कुछ लोग संसद चले जाएंगे तोड़फोड़ करेंगे, इससे देश की बदनामी होती है, इससे पुलिस फोर्स की बदनामी होती है, और दुनिया में यह संदेशा जाता है कि ये देखिए कितनी वीक डेमोक्रेसी है, ये कितनी वीक कंट्री है।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सीमाएं सील, ध्रुव राठी भी हिरासत में।
1: दिल्ली पहुंचने वाले हैं सीजेपी के अभिजीत दिपके। मुंबई से रवाना होने से पहले कहा सीसी के इस्तीफे तक जारी रहेगी जंग। एयरपोर्ट पर जबरदस्त सुरक्षा घेरा। गुरुग्राम से हिरासत के लिए गए यू टर्न ध्रुव राठी।
0: दिल्ली के हर बॉर्डर और होटलों की सघन चेकिंग। 12 डिटेंशन सेंटर बनाए गए। गुरुग्राम सीमा पर जाम में फंसी एम्बुलेंस। नोएडा बॉर्डर पर भी एक एक गाड़ी की जांच। दिल्ली में 45 मेट्रो स्टेशन बंद, 180 ट्रेनें रद्द।
1: राष्ट्रपति से इंडिया गठबंधन के नेताओं की मुलाकात के बाद राहुल गांधी का दावा, महामहिम ने हमसे मांगे हैं वोट चोरी के सबूत, हम उन्हें हर प्रमाण देंगे। बीजेपी बोली संवैधानिक सेवाएं लांग रहे हैं राहुल गांधी।
0: और उपचुनाव में बीजेपी एनडीए के शानदार प्रदर्शन पर बम बम बीजेपी। पीएम मोदी ने कहा इस जनादेश से मिलेगी मजबूती। अमित शाह बोले राहुल के झूठ और दुष्प्रचार के बावजूद बड़ी जीत।

0: और इस समय सबसे ज्यादा बड़ी खबर यही है कि दिल्ली के आसपास के इलाकों में सीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार मुस्तैद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। चुनावी गड़बड़ी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया, लेकिन कनॉट प्लेस पर ज्यादातर प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी, लेकिन सीजेपी प्रदर्शन पर अड़ी हुई है,
0: लिहाजा दिल्ली में टकराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में किसी भी टकराव को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पुख्ता तैयारियां की हुई। दिल्ली में 25,000 से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। सबसे ज्यादा चौकसी जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में है, जहां पर करीबन 6,500 से ज्यादा जवान तैनात किए गए।
1: और इसके साथ ही चुनाव आयोग के दफ्तर, पुलिस मुख्यालय समेत आसपास के सभी इलाकों में जबरदस्त घेराबंदी की गई है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे, सीजेपी विरोध पर अड़ी हुई है, परमिशन दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। जंतर मंतर पर हद से ज्यादा सख्ती है और कुछ प्रदर्शनकारी जैसे तैसे पुलिस को चकमा देकर जंतर मंतर तक पहुंचे, कैनॉट प्लेस तक पहुंचे, तो उनको तुरंत हिरासत में लिया गया।
0: बिल्कुल, ये 8 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए कि कैसे इस समय दिल्ली का माहौल है, दिल्ली के आसपास के इलाकों में, खासतौर पर नई दिल्ली के आसपास के इलाकों में किस तरीके से प्रदर्शनकारी जब पहुंच रहे हैं तो दिल्ली पुलिस उनको डिटेन कर रही है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने सहयोगी सुशांत मेहरा की रुख करते हैं, जो इस समय मौजूद
2: करती हुई फिलहाल जो है वो नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
1: आज इस तरह की सिचुएशन जरूर आएगी जब अचानक से हमारे सहयोगी कोई रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मूवमेंट दिख रहा है, हलचल दिख रही है ग्राउंड पर। और ये देखिए कैसे डिटेन किया जा रहा है, महिला प्रदर्शनकारी आती हैं तो वहां पर महिला पुलिस तैनात रहती है और तुरंत उनको ऐसी ही बसों में, और सुमित ये बताया जा रहा है कि करीबन 100 से ज्यादा बसें हैं जो कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में है। और अंशुल सुबह से वो रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, सुशांत मेहरा भी वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जो पुलिस को चकमा देने की कोशिश करते हैं प्रदर्शनकारी, तो तुरंत उनको हिरासत में लेते हैं।
0: बिल्कुल, और कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे सीजेपी के पदाधिकारी। देखिए हम आपको बता रहे हैं करीबन 10:30 बजे के करीब अभिजीत दिब के और कई ऐसे पदाधिकारी हैं सीजेपी के जो दिल्ली पहुंचेंगे, और उसके बाद कहा जा रहा है कि इस प्रदर्शन को और बढ़ाया जाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के इलाकों में किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को रोक रही है, डिटेन कर रही है, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आला अधिकारी आईपीएस अफसर लगातार वह मौजूद है हमारे साथ। हमारे सहयोगी सुशांत मेहरा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। सुशांत का रुख करते हैं। सुशांत, इस समय किस तरीके के हालात हैं और प्रदर्शनकारी किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा पहुंच रहे हैं?
2: हाँ देखिए हिमांशु, आपको तस्वीरें दिखा दूं किस तरीके से पुलिस बल जो है वो यहाँ पर लगातार बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए कि अभी यहाँ पर महिला जो प्रदर्शनकारी है वो पहुंची थी पोस्टर्स के साथ, उनको भी अब दिल्ली पुलिस की तरफ से डिटेन किया गया है। और जिस तरीके से लगातार यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को और दिल्ली पुलिस को जो है वो लगातार यहाँ पर फोर्स जो है वो बढ़ानी पड़ रही है, रास्ते पूरी तरीके से ब्लॉक ना हो जाए। अगर तस्वीरें दिखाऊंगा, देखिए ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो कई सारे प्रदर्शनकारी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। पुलिस को यही जो चुनौती है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि जैसे ही ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तमाम प्रदर्शनकारी जो है वो तीतर बितर होना शुरू हो जाते हैं। पुलिस को यहाँ पर परेशानी का सामना भी जो है वो करना पड़ा, एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ जो है वो पुलिस लगातार इन प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ कर रही है।
1: अभी तक हम ये पैटर्न देख रहे थे कि कुछ प्रदर्शनकारी टुकड़ों टुकड़ों में वहां पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद उनको डिटेन किया जा रहा है, लेकिन क्या अब यह माना जाए कि अब प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ रही है? जैसे आपने बताया कि बाउंड्री पर अब प्रदर्शनकारी खड़े हो रहे हैं, तो अब बल्क में प्रदर्शनकारी आ रहे हैं वहां?
2: देखिए अभी भी फिलहाल अगर देखा जाए तो टुकड़ों के अंदर प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंच रहे हैं, एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ प्रदर्शनकारी इसलिए पहुंच रहे हैं कि अगर एक साथ पहुंचेंगे तो पुलिस एक साथ तमाम पत्रकारों को जो है वो जो पत्रकार करो माफी चाहूंगा प्रदर्शनकारियों को जो है वो डिटेन कर लेगी। ऐसे में टुकड़ों में अगर आते हैं तो उनको पकड़ना जरा सा मुश्किल होगा, वो इधर उधर जो है वो भाग सकेंगे अपनी स्ट्रेटेजी के साथ, और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस को यहाँ पर एक परेशानी का सामना भी जो इन प्रदर्शनकारियों को करना पड़ेगा। अब देखिए एक बार फिर से ये पुलिस बल जो है वो आगे की तरफ जाता हुआ आपको नजर आएगा, एक बार फिर से पैरामिलिट्री फोर्स एक एक्शन में नजर आएगी। देखिए पुलिस किस तरीके से तमाम लोगों को कह रही है कि आप ऊपर से हटिए, क्योंकि यहाँ पर कई सारे पत्रकारों के साथ साथ लोग भी जो है वो यहाँ पर कनॉट प्लेस और आसपास के सर्कल में जो काम करते हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मोबाइलों में तस्वीरें कैद कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस को परेशानी हो रही है लोगों को आइडेंटिफाई करने में। अब ये तस्वीरें देखिए, और भी वहां से पुलिस जो पैरामिलिट्री बल है फोर्सेज है उनको आगे लाया जा रहा है कि आगे की तरफ आइए, और यहाँ पर अगर इस तरीके से प्रदर्शनकारी हैं तो उनको हटाया जाए। देखिए यहाँ पर, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि अब पुलिस यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए कि ताकि ऊपर जाकर के इन लोगों को जो है वो यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि पुलिस को यही सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो हो रही है, क्योंकि ऊपर की तरफ कई सारे प्रदर्शनकारी पहुंचे।
0: एक बात बताइए सुशांत,
2: जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की जाएगी।
0: सुशांत एक बात बताइए, क्योंकि देखिए कल ही बता दिया गया था कि कल रात 9 बजे से मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए जाएंगे। नई दिल्ली के करीबन 45 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन में एंट्री और एग्जिट बंद था, तो आखिरकार ये प्रदर्शनकारी कहां से आ रहे हैं, और ये आप जिस इलाके में मौजूद हैं ये कौन सा पर्टिकुलर इलाका है जहां पर ये प्रदर्शनकारी समय मौजूद है?
2: देखिए ये संसद मार्ग से कनॉट प्लेस से संसद मार्ग जाने वाला रास्ता है, ये पालिका बाजार का मार्केट है और उसके ऊपर का ये पूरा गार्डन का एरिया है। अब ये देखिए फोर्स ऊपर जाती हुई आपको यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि अब इस तरीके से पूरे इस पार्क में जो है वो तमाम प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये तमाम प्रदर्शनकारी थे वो दरअसल कल देर रात से ही तमाम हिस्सों के अंदर जो है वो पहुंच गए थे और अलग अलग इलाकों में बैठे हुए थे। अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें आगे की है तरफ जो है वो आकर के दिखाएं, हम कोशिश करेंगे कि आगे की तरफ जाते। देखिए काफी सारे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस जो है वो वहां पर पहुंची है। फिलहाल अब मीडिया वालों को आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई है। अगर आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनकारी है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि मनीष कि वो आगे की तरफ आए और दिखाएं, ठीक है आगे दिखाने दीजिए कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी। देखिए मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं आगे की तस्वीरें कि अब जो ऊपर की तरफ यहाँ पर मौजूद थे उन सबको यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि देखिए अभी आपको हिमांशु ये तस्वीरें देखिए, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आगे की तरफ आए। ये देखिए प्रदर्शनकारी यहाँ से दौड़ते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये ऊपर की तरफ, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं,
1: देखिए अब पुलिस परिस्थितियों में रिपोर्टिंग की
2: इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटा रही है। देखिए यहाँ पे इस तरफ देखेंगे कई सारे प्रदर्शनकारी, देखिए मैं आगे की तरफ कोशिश करता हूँ कि जहाँ पुलिस पहुंची है उस तरफ पहुंचे और दिखाएं कि किस तरीके से, क्योंकि पुलिस के लिए भी चुनौती है, क्योंकि इस तरीके के कई सारी पाबंदियां लगाई गई, उसके बाद प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे और उनको यहाँ से अब हटाने की कोशिश। अब ये देखिए कि यहाँ पर जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उनको ऊपर से नीचे भेजा गया है। अब पुलिस के आला अधिकारी, अब पूरा ये पूरा कनॉट प्लेस का सर्कल मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से टॉप एंगल
0: जी
2: व्यू के जरिए हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से पूरी दिल्ली इस वक्त छावनी में तब्दील है।
1: मतलब कितना भी चकमा देने की कोशिश यहाँ पर कर ली जाए, लेकिन पुलिस बल इतनी ज्यादा संख्या में वहां पर मौजूद है कि वो प्रदर्शनकारियों को चुन चुनकर डिटेन कर रहा है, बसों में बिठा रहा है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए लोगों को जुटने के लिए अपील करने वाले यूट्यूबर ध्रुव राठी को दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम से हिरासत में ले लिया है। अब खबर जो अभी तक मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस की टीम सुबह 8 बजे ध्रुव राठी को गुरुग्राम से हिरासत में ले चुकी है। ये रात का वीडियो है जो ध्रुव राठी की तरफ से जारी किया गया था।
0: देखिए आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले ही बताया गया था कि वो प्रिवेंटिव एक्शंस लेंगे, यानी लगातार अगर उन्हें प्रदर्शनकारी उग्र होते हुए या उनको उकसाने की कोशिश करने वाले जो भी शख्स होंगे उनको पहले से हिरासत में लिया जाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि गुरुग्राम से जो YouTube इन्फ्लुएंसर है ध्रुव राठी, उनको हिरासत में लिया गया है। सुबह सुबह 8 बजे ध्रुव राठी को हिरासत में लिया गया। और देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस 2 दिन से एक्शन मोड में है, और 2 दिन से दिल्ली के 15 जिलों में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी की जा चुकी है, उनको डिटेन किया जा चुका है। और जिस तरीके से हम पहले भी बता रहे थे, दिल्ली पुलिस की तरफ से कल ही ये बता दिया गया था कि देखिए ये प्रिवेंटिव एक्शंस होंगे जो खासतौर पर पहले से उग्र प्रदर्शन ना हो या प्रदर्शन ना बढ़े, इसके लिए ये गिरफ्तारियां की जा रही है।
1: अलग अलग जगह से लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही है। आपको याद होगा कि जब जुलाई में प्रोटेस्ट हुआ था तो जो सीसीटीवी कैमरे थे उन कैमरों में कई आपराधिक रिकॉर्ड वाले अराजक तत्व पाए गए थे, और ये हमने देखा था कि बहुत से ऐसे अराजक तत्व जो बाद में दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी तो उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया है।
3: खिलाफ कार्रवाई हो
4: सकती है।
3: हाँ बिल्कुल, यूपी वालों से हमारी बात हुई है और उन्होंने एश्योर किया है, पूरी तरह उनका पूरा कॉपरेशन मिल रहा है, पीछे भी उनकी पिकेट लगी हुई है, और चेकिंग के बाद ही वो व्हीकल उसको छोड़
4: दिया। कैसे ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है?
3: बिल्कुल ड्रोन से भी नजर है, परमानेंटली यहाँ पे सीसीटीवी कैमराज हमारे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, साथ ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की भी कर रहे हैं।
4: सर हमने देखा कि काफी बॉडी कैमरा लगा हुआ है।
3: हाँ बिल्कुल, बॉडी कैमरा ये सभी स्टाफ पे मैक्सिमम पे हमने दिया हुआ है।
1: तो देखिए इस दौरान एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर है कि अब से कुछ ही देर बाद सीजेपी के पदाधिकारी, अब इसमें सबसे पहले तो संस्थापक अभिजीत दीप्ते का नाम है, मुंबई से निकल चुके थे और मुंबई से निकले थे, एक संदेश भी उन्होंने जारी किया था जब वो फ्लाइट में थे कि उन्होंने कहा चाहे गिरफ्तार करना है तो आप गिरफ्तार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम डरने वाले नहीं है, हम धमकी से नहीं डरते, अभिजीत दीप्ते ने कहा था। 10:30 के करीब दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड होगी डोमेस्टिक टर्मिनल पर, और उसके बाद फिर क्या होता है इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि उनके साथी ध्रुव राठी को पहले से ही हिरासत में ले लिया गया। श्रेया चटर्जी हमारी सहयोगी एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्रेया क्या खबर है आपके पास?
5: देखिए एयरपोर्ट में कुछ ही देर में जो सीजेपी की लीडरशिप है, सौरभ दास, आशुतोष रंका, ये सारे लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, करीबन 10:45 के आसपास उनकी फ्लैट लैंडिंग होगी, और जो कि अभी इन्फॉर्मेशन आ रही है हो सकता है उनको एयरपोर्ट के अंदर ही डिटेन कर लिया जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कोई परमिशन नहीं है प्रोटेस्ट का, और तमाम जो सीजेपी लीडरशिप है जैसे ध्रुव राठी को उनके घर गुड़गांव में सेक्टर 56 में ही उनको डिटेन कर लिया गया है, इसके अलावा जो उनके लीगल अफेयर्स देखते हैं रत्ना सिंह, वो घर से निकल रही थी जंगपुरा में, उनके गाड़ी में वो है, लेकिन पुलिस उनको मॉनिटर कर रही है, तो एक तरीके से नजरबंदी भी है और एक तरीके से पुलिस लगातार मॉनिटर भी कर रही है, तो हो भी सकता है कि जब ये लोग लैंड करे अंदर ही शायद इनको दिल्ली पुलिस मॉनिटरिंग के लिए डिटेन कर ले।
0: श्रेया एक और बात, क्योंकि वहां पर देखिए आम यात्री भी हैं जो लगातार पहुंच रहे हैं, तो क्या वहां पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे, क्योंकि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में खासतौर पर पुख्ता ये बंदोबस्त किए गए, तो वहां पर एयरपोर्ट पर किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, खासतौर पर जो लोग आ रहे हैं, जो भीड़ वहां पर इकट्ठा है?
5: देखिए डिप्लॉयमेंट भारी मात्रा में है, 220 प्लस सीआरपीएफ कंपनीज है, रूट डाइवर्जन्स है, दिल्ली के जो खुद के पर्सनल्स है वो डिप्लॉयड है, तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो भी प्रोहिबिशनरी ऑर्डर्स है उनको फॉलो करने के लिए रैंडम चेक्स हो रहे हैं, लेकिन अगर पर्पस ऑफ विजिट जेन्युइन लिखी सेंट्रल दिल्ली में जाते हुए तो लोगों को रोका नहीं जा रहा है, तो लोगों को, आम लोगों को परेशानी ना हो इन सारी चीजों के बारे में दिल्ली पुलिस नजर रख रही है, ये पुलिस की तरफ से हमें बताया गया है।
1: अच्छा श्रेया आप हमारे साथ बने रहिए, दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे जैसे ही कोई हलचल होती है, लेकिन उससे पहले हर एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, और देखिए आप समझिए कि दिल्ली में हर एंट्री एग्जिट पॉइंट पर सावधानी बरती जा रही है। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो उनकी अंशुल भी जुड़े हुए हमारे साथ, और अब हमारे साथ में अरविंद ओझा भी जुड़ चुके हैं।
0: बिल्कुल अरविंद ओझा इस समय आईटीओ पर मौजूद है, अरविंद ओझा का रुख करते हैं। अरविंद इस समय वहां पर आईटीओ पर किस तरीके के हालात है, क्योंकि देखिए ये कहा जा रहा था कि करीबन 20-25 से ज्यादा एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को बंद कर दिया गया है, आईटीओ पर भी क्या आवाजाही आने दी जा रही है या लोगों को वहां पर भी रोका जा रहा है?
6: देखिए आने तो जिया जा रहा है, लेकिन तस्वीर जरा दिखाइए आप, इस तरीके से लंबा लंबा जाम है और पुलिस का सायरन आपको सुनाई दे रहा होगा, पुलिस का सायरन, लेकिन कितने दूर तक जाम है जरा आप ये देखिए, आप कैमरामैन प्रदीप गुप्ता आपको दिखाएंगे, ये आईटीओ की तस्वीरें हैं, लोग सुबह अपने दफ्तर के लिए निकले हैं और तब इस तरीके से उनको जाम का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बाकायदा जो चेकिंग है वो की जा रही है, और तस्वीर जरा दिखाइए आप जूम करके, देखिए ग्रीन सिग्नल है, आपको ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा होगा, ऐसा नहीं है कि रेड लाइट है, ग्रीन सिग्नल है, उसके बावजूद भी आईटीओ से दीनदयाल की तरफ जो पूरा रास्ता है वो जाम है। और इन सबके बीच एक बड़ी खबर भी आई गुरुग्राम से, जो दिल्ली पुलिस, यानी लगता है कि 20 जुलाई से कोई सबक लिया है, ध्रुव राठी जो यूट्यूबर है उसको गुरुग्राम पुलिस की मदद से दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। उसके अलावा जो बड़ी खबर है वो बड़ी खबर यह है कि 2 दिन से दिल्ली पुलिस का एक ऑपरेशन चल रहा था, उसके तहत कई क्रिमिनल एलिमेंट्स को भी गिरफ्तार किया गया है, उनमें वो क्रिमिनल भी शामिल है जो 20 जुलाई को जंतर मंतर पहुंचे थे और FRS के कैमरे में वो कैद हुए थे, उनमें से भी कई, यानी सैकड़ों की तादाद में जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। बीती रात से अब तक 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की वजह से और नई दिल्ली इलाके में जो ब्लॉकेज है उसकी वजह से इस तरह की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी। पूरा आईटीओ ब्लॉक्ड है, ये दफ्तर के लिए लोग निकले हैं और इस तरह से जाम से उनका सामना हो रहा है, ये तमाम लोग हैं। तो ये तस्वीरें दिल्ली की है।
0: बिल्कुल अरविंद, एक बात बताइए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और देखिए अरविंद ओझा का दोबारा से रुख करेंगे, लेकिन सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें पता जा रहा है कि देखिए किस तरीके से वहां पे भी बैरिकेडिंग की जा रही है और दिल्ली के अलग अलग एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर इस तरीके की बैरिकेडिंग है, लगातार जांच की जा रही है। हम आपको तस्वीरें इससे पहले भी दिखा रहे थे कि कैमरों की ड्रोन की मदद से भी सर्वेलेंस किया जा रहा है और हमारे सहयोगी लगातार अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख भी करेंगे। लेकिन तस्वीरें हम एक बार फिर से आपको दिखा दें कि दिल्ली के अंदर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर तमाम ऐसे बैरिकेडिंग की गई है, उन पर इस तरीके के सर्वेलेंस किए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशांत मेहरा भी जुड़े हुए हैं। सुशांत, जिस तरीके से अरविंद दिखा रहे थे आईटीओ का नजारा, आप इस समय एक नॉट प्लेस के इलाके में मौजूद हैं जहां पर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद थे, पुलिस उनको डिटेन कर रही थी, अभी वहां के ताजा हालात कैसे हैं?
2: देखिए मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाऊं टॉप एंगल व्यू कनॉट प्लेस का, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरा ये कनॉट प्लेस में आपको भारी पुलिस बल इस वक्त जो है वो नजर आएगा। हर चप्पे चप्पे पर आपको पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी, ऐसी अगर कोई गाड़ी सस्पेक्टेड खड़ी है उससे यहाँ पर पुलिस जो है पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। अगर कोई सस्पेक्टेड है उसको तुरंत यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से पुलिस का जो दस्ता है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा, पैरामिलिट्री फोर्स का जो गश्त करता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे सीआरपीएफ, तमाम रैपिड एक्शन फोर्सेस जो है वो आपको नजर आएंगी। हालांकि इक्का दुक्का आपको कुछ प्रदर्शनकारी भी जो है,
7: गंभीर स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। देश की 140 करोड़ जनता जो सुख शांति के साथ भारत के विकास में सबका सहयोग मिल रहा है, उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये कौन कर रहे हैं? ये दो अराजकतावादी समूह, जिसमें एक इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी और दूसरे गुट का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी कर रही है। मैं इन दोनों गुटों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत की जनता पूरी तरह से आपके इन उद्देश्यों को देख रही है और आज जो आपका एनार्किस्ट प्रतिस्पर्धा चल रहा है कि कौन अधिक इस देश में अस्थिरता पैदा कर सकता है, ये आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। आज पूरी तरह से ये कौन लोग हैं जिनको जनता ने नकार दिया, चाहे वो राहुल गांधी के इंडी गठबंधन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो और उनका सीजेपी हो। जनता ने जब इनको नकार दिया, लोकतंत्र ने इनको सजा दी, तो उस सजा को पचाने के, उससे सीखने के बजाय आपने इस देश को अस्थिर करने का मंसूबा बना लिया है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रयास कहीं ना कहीं आपके राजनीतिक उद्देश्य के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पे आप कर रहे हैं और देश जो पूरी तरह से विकास में आगे बढ़ रहा है, लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर यह विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की तरक्की को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पर आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने देशभक्त हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर इन ताकत आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे। साथ ही साथ इस देश में पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां हम लोगों ने भय के वातावरण से इस देश को बाहर निकाला, आतंकवाद को जड़ों से खत्म करने का प्रयास किया, नक्सलवाद से इस देश को मुक्त करने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी कुछ अर्बन नक्सल की मानसिकता के लोग इस देश को अस्थिर करने में लगे हैं। राहुल गांधी जी, आपके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। जिस प्रकार का शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं, सीजेपी के जो तथाकथित युवा नेतृत्व कह रहे हैं, भारत का युवा उनको देख रहा है। भारत का युवा भारतीय संस्कृति से, भारतीय लोकतंत्र से जुड़ा है, भारतीय संविधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है और कहीं ना कहीं यही कारण है कि आपके जो इस तरह के शब्द हैं, ये शब्द भारत की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। आप इस देश के संवैधानिक ढांचों को जिस प्रकार से चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र को चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं, देश के सर्वोच्च हमारे पदों पर आसीन व्यक्तियों को आप जिस प्रकार से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो इस देश की 140 करोड़ जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी और इसकी सजा तो आपको मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ आज के दिन मैं आपको इस विषय पर भी स्पष्ट चेतावनी देता हूं कि जिन विदेशी ताकतों से बल पर आप अपनी बिकाऊ राजनीति कर रहे हैं और विदेशी ताकतों के गठजोड़ से भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके नापाक इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। झूठ के सहारे संविधान के नाम पर लोकतंत्र को चुनौती देना जनादेश का अपमान करना है। देश की जनता ने जिसको जनादेश दिया है, देश की जनता जिसको विश्वास की है, वो देश का नेतृत्व कर रहा है। लगातार राज्यों में आपकी हार हताशा दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं इस देश को शांति के साथ आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे। लेकिन मैं आज के दिन आपको चेतावनी देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और देश के राष्ट्रभक्त जनता आपको पूरी तरह से इसका करारा जवाब देगी। और आज जिस प्रकार से तनाव की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, भारत की सरकार इसको कड़ाई से निपटेगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी पूरी तरह से जनता के बीच में रहकर आपके इस मंसूबे को कहीं ना कहीं रोकेगा। मैं आज के दिन नए भारत के तस्वीर के लिए, नए भारत के निर्माण में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी लगे हैं और जिस प्रकार से 140 करोड़ जनता का विश्वास मिल रहा है, हम भारत की जनता को स्पष्ट कहते हैं कि हम पूरी तरह से देश के विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं और हम सुनिश्चित करेंगे कि देश की जनता शांति के साथ, विकास के साथ और जिस विश्वास को आपने दिया है, हम सब कोई मिलकर विकसित भारत के सपने को आगे बढ़ाएंगे और ऐसी सभी ताकतों से, चाहे वो विदेश में हो चाहे देश के अंदर हो, इनसे सख्ती से निपटेंगे।
0: और देखिए, बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन को आप सुन रहे थे, वो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे थे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बार फिर से वो तमाम तस्वीरें दिखाते हैं जो इस समय दिल्ली, नई दिल्ली के इलाकों से आ रही है। कनॉट प्लेस का इलाका, जंतर मंतर का इलाका, बंगाली मार्केट का इलाका और बंगला साहिब हो, मंडी हाउस हो, धौला कुआं हो, दिल्ली नोएडा बॉर्डर से भी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस समय दिल्ली, नई दिल्ली के आसपास के इलाकों में क्या व्यवस्था है।
1: और बिल्कुल सुमित, ये देश, ये जो दिल्ली के आम लोग हैं उनको समझना होगा कि आज किस तरह की व्यवस्था दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। इसलिए हम बार बार ये अपील कर रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तभी निकलिए, वरना बाहर मत निकलिए। हालांकि ये भी आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की तरफ से सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर भी बयान दिया गया। राहुल गांधी पर तो उन्होंने निशाना साधा ही है, लेकिन ये भी कहा कि देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देश की जनता आपको देख रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन कांग्रेस पर भी निशाना साधते हैं और सीजेपी पर भी निशाना साधते हैं और कहते हैं कि ये सब विदेशी ताकतें हैं जिनके इशारों पर भारत को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है।
0: यार, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल भ्रम फैला रहे हैं। ये भी कहा कि अर्बन नक्सल मानसिकता के लोग अस्थिर करने में लगे हुए। देखिए, विदेशी ताकतों के साथ साथ उन्होंने अर्बन नक्सल का भी जिक्र किया। देशभक्त लोग इनके मंसूबों को पूरा नहीं कर रहे, करने वाले हैं। ये भी नितिन नवीन जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से कहा गया। वो लगातार इसको लेकर, इस प्रदर्शन को लेकर आक्रामक थे। उन्होंने ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप लगाया कि सीजेपी को वो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से हमारी सहयोगी श्रेया का रुख करते हैं जो इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद है। श्रेया, कब से थोड़ी देर के अंदर कहा जा रहा था कि दीपके लैंड करेंगे और दूसरे पदाधिकारी भी लैंड करेंगे, अभी वहां के ताजा हालात कैसे हैं और कब तक उनकी फ्लाइट लैंड कर रही है?
1: लगता है श्रेया तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन दोबारा श्रेया से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सारी तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे, हर एक तस्वीर इस प्रदर्शन से जुड़ी आज तक पर आप देखेंगे। अलग अलग रिपोर्टर अलग अलग जगह पर मौजूद हैं, दिन भर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है।
11: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
10: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायबिटीज जूस।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और वही कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट,
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: सर गैसोफास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसोफास्ट 27%, इनो 9.2%।
1: गड़बड़ है।
2: आहा, गैसोफास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसोफास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
3: हाउ इज द हॉस्टल सेटल्ड?
4: यस
2: मैम,
4: रियली नाइस।
5: कोई आ रहा है क्या?
6: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभा ली, अब फिर से थोड़ा रोमांस हो जाए।
5: मयंक, फॉर रियल?
6: वन कैरेट फॉर माय वन ट्रू लव। नेचुरल डायमंड रियल लव सॉलिटेयर्स टू रीइग्नाइट योर न्यू सीजन ऑफ लव।
7: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbagh Group.
8: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
9: Tera pyar pyar pyar unka baat sir ek baar rukke thumka lagane bas.
10: Mere paas ek idea hai.
9: Kya?
10: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
11: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
12: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
13: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
14: कौन सी बनानी है?
15: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
16: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
17: इट्स अ माय वे।
18: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
19: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
20: In association with
21: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
22: ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अब से कुछ ही देर में कांग्रेस जनता पार्टी के पदाधिकारी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर थोड़ी देर में ही उनकी फ्लाइट लैंड होगी, और उसके बाद कहा जा रहा है कि मुंबई से रवाना होने के बाद अभिजीत दिबके हैं वो पहुंचने वाले।
23: और देखिए, मुंबई से जब रवाना हुए थे, अभिजीत दिबके ने कहा था कि हम डरने वाले नहीं है, गिरफ्तार होते तो हो जाए, लेकिन अब ये खबर आ रही है जो अभी तक ये सिर्फ सूत्रों से कहा जा सकता है कि हो सकता है कि उनको एयरपोर्ट के अंदर ही डिटेन कर लिया जाए, क्योंकि ध्रुव राठी गुरुग्राम से डिटेन हो चुके हैं, उनको हिरासत में ले लिया गया है। अभिजीत दिबके ने कहा था, सोशल मीडिया पर कहा था कि 10 बजे मिलते हैं जंतर मंतर पर, लेकिन जंतर मंतर पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो हो सकता है कि जैसे ही अभिजीत दिबके का प्लेन लैंड हो तो उनको अंदर डिटेन किया जाए। श्रेया हमारी सहयोगी एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्रेया, क्या खबर आ रही है आपके पास?
24: देखिए, लैंड कर चुके हैं अभिजीत दिबके और उनके तमाम जो सीजेपी के साथी है, और कुछ ही देर में वो यहाँ से निकलेंगे। हमारी पुलिस की सूत्रों से बातचीत हो रही है, उनका कहना है कि पहले उनसे ये बताया जाएगा कि ऐसे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स है, आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। अगर उनके तरफ से कोऑपरेशन दिखाया जाता है तो उन्हें आगे जाने दिया जाएगा, अगर कोऑपरेशन नहीं दिखाया जाता है तो उन्हें डिटेन कर लिया जाएगा। तो अभी कुछ ही देर में वो तस्वीर हम आप तक लाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक वो निकले नहीं है यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर।
22: बिल्कुल, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें एक बड़ी खबर जो श्रेया हमारी सहयोगी बता रही है कि अभिजीत दिबके दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं और अब से थोड़ी देर के बाद वो बाहर आएंगे। जैसा श्रेया भी बता रही थी, देखिए अफसर जो है आला अधिकारी पहले उनको बताएंगे कि इस समय दिल्ली के इन इलाकों के अंदर बीएनएस की धारा 163 लागू है। श्रेया, एक और इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर हमेशा ये प्रोटोकॉल होता है कि जब भी कोई शख्स होता है उसको अवगत कराया जाता है, उसे बताया जाता है कि देखिए दिल्ली के इन इलाकों के अंदर आप नहीं जा सकते, ये धाराएं लागू हैं, लेकिन अगर वो तब भी नहीं मानता शख्स तो उसको फिर रिटेन किया जाता है। लेकिन डिटेन करने के बाद उनको कहां ले जाया जा सकता है?
24: देखिए, कुल 6 ऐसे डिटेंशन सेंटर्स दिल्ली पुलिस ने बनाया है, छत्रसाल स्टेडियम से लेके राजीव गांधी स्टेडियम, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऐसे तमाम जो बड़े जगह हैं वहां पे डिटेंशन सेंटर्स में तब्दील कर दिया गया है, और वहीं पे लोगों को डिटेन करके ले जाया जा रहा है। अभी फिलहाल जो मेरी बात हुई थी दिल्ली पुलिस के एक ऑफिशियल से, करीबन 200 के करीब लोग ऑलरेडी डिटेन हो चुके हैं। कुछ लोग जो पहुंच पा रहे हैं उनको तुरंत डिटेन कर लिया जा रहा है कनॉट प्लेस और पटेल चौक से ऐसे दो तीन खबरें आई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस किसी को भी जंतर मंतर के पास भटकने नहीं दे रही है।
1: जंतर मंतर तो नहीं पहुंचने दे रही है, लेकिन शेयर एक बात बताइए, क्योंकि अभिजीत दीपके पिछले कुछ वक्त से लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं कि हम सरकार से डरने वाले नहीं है, हम दिल्ली पुलिस से डरने वाले नहीं है। मुंबई से निकलने से पहले उन्होंने वीडियो जारी किया कि हम डरने वाले नहीं है, गिरफ्तार करना है तो कर लीजिए। जब वो फ्लाइट में थे तब भी उनकी तरफ से वीडियो जारी किया कि हम किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं है, हम तो प्रदर्शन करके ही रहेंगे। जैसा आप बता रही हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से या फिर एयरपोर्ट पर ही उनको अवगत कराया जाएगा कि उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा, तो ज्यादा उम्मीद ये है कि अभिजीत दीपके अपनी बात पर अड़े रहें और हो सकता है कि उनको ज्यादातर चांस यही है कि उनको एयरपोर्ट के अंदर ही डिटेन किया जाए।
24: देखिए 100% चांस ये है कि उनको डिटेन कर लिया जाएगा, लेकिन कुछ सवाल सीजेपी के आयोजकों से भी है, क्योंकि उनके बात सुन के कई समर्थक अभी ग्राउंड पे पहुंचे हैं, बहुत कम मात्रा में ही सही लेकिन पहुंचे हैं। उनको कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है कि कहां इकट्ठा होना है, अगर डिटेन करे तो क्या करना है। तो ऐसे कुछ प्रोटेस्टर्स भी है जो ऑनलाइन अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं, क्योंकि डिटेन होना है ये तो तय है, क्योंकि प्रोहिबिशनरी ऑर्डर्स है, होम सेक्रेटरी के तहत ये चिट्ठी लिखी गई थी कमिश्नर ऑफ दिल्ली को कि पिछले 20 जुलाई प्रोटेस्ट में उन्होंने जो परमिशन मांगी थी उसके मुकाबले उन्होंने कोई भी परमिशन की रिक्वेस्ट फॉलो नहीं किया था, और यही एक कारण है कि उनको इस बार कोई परमिशन नहीं दी गई है। तो डिटेन होना पक्का है, सवाल यह है कि जो समर्थक फिर भी पहुंच जाएंगे उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की क्या सीजेपी के ऑर्गेनाइजर्स उसके बारे में कोई क्लैरिटी देंगे।
22: बिल्कुल बिल्कुल श्रेया, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि अभिजीत दीपके दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से श्रेया चटर्जी हमारी सहयोगी इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद है, वो बता रही है कि देखिए अब से थोड़ी देर पहले ही उनकी फ्लाइट लैंड की है, अब वो उन्हें एयरपोर्ट में आला अधिकारी मौजूद है, वो उनको बताएंगे, उनको जानकारी देंगे कि दिल्ली में परिस्थितियां ऐसी हैं। और जिस तरीके से कल भी दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया था कि परमिशन 7 तारीख को उन्होंने अप्लाई की थी, 10 दिन पहले दी जाती है, और इसके अलावा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट था कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका जो पीछे का जो उन्होंने पिछली बार जुलाई में किया था, उन्होंने कई नियमों का उल्लंघन किया था, इसी के चलते ये परमिशन नहीं दी गई। और एक बार फिर से आज इस प्रदर्शन का आह्वान, इस प्रदर्शन का ऐलान किया गया था सीजेपी की तरफ से, और अब लगातार
1: अच्छा एक और ये बड़ी खबर आपको बता दें कि अभिजीत दीपके को लेकर तो थोड़ी देर में जानकारी मिल जाएगी, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जा रहा है। अब तक 150 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है, ज्यादातर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको कनॉट प्लेस से हिरासत में लिया गया है, क्योंकि कनॉट प्लेस पर कुछ ग्रुप में प्रदर्शनकारी आते हैं और उसके बाद जैसे ही वो नारेबाजी करते हैं तो उनको हिरासत में ले लिया जाता है। अब देखिए राहुल गांधी भी आ गए, राहुल गांधी भी अब शामिल हो चुके हैं, और राहुल गांधी की तरफ से पोस्ट किया गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जाएंगे। इससे पहले हमने कांग्रेस की तरफ से अलग अलग जो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर देखा था, गो ज्ञानेश,
22: उन्होंने ये भी कहा है कि ये सरकार भी जाएगी। देखिए राहुल गांधी ने दो इंपॉर्टेंट अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है, उन्होंने कहा ज्ञानेश कुमार विल गो, द गवर्नमेंट विल गो, देन द रिपेयर ऑफ डेमोक्रेसी विल बिगिन। यानी तीन लाइनों में उन्होंने तीन बड़े संकेत, तीन बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने ज्ञानेश कुमार के साथ साथ सरकार पर भी हमला किया, उन्होंने कहा सरकार भी जाएगी और उसके बाद हम डेमोक्रेसी विल बिगिन या रिपेयर ऑफ डेमोक्रेसी विल रिपेयर बिगिन, ये महत्वपूर्ण बात है,
1: लोकतंत्र को दोबारा से ठीक बनाया जाएगा, ठीक किया जाएगा, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। श्रेया जुड़ गई हमारे साथ, श्रेया बनी है, श्रेया क्या अपडेट है आपके पास, क्या खबर आ रही है?
24: देखिए फिलहाल हम यहीं पे अभी है, यहाँ पे फिलहाल तो कोई एक्शन नहीं है, लेकिन लैंड कर चुके हैं, उनकी कुछ किसी भी वक्त निकल सकते हैं। हम जैसे ही यहाँ पे इनकी निकलने की कोई भी तस्वीर हमें देखे हम तुरंत आपको अपडेट करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं सिक्योरिटी इंक्रीज कर दी गई है। तमाम जो सीआईएसएफ पर्सनल्स है वो मीडिया कर्मियों को भी बोल रहे हैं कि थोड़ा दूर रहे, क्योंकि यहां से ही इनको पहले सवाल किया जाएगा कि क्या कोऑपरेशन इनकी तरफ से दिखाया जाएगा, अगर नहीं दिखाया गया तुरंत ही उनको डिटेल कर दिया
1: जाएगा। मतलब आमतौर पर अगर कोई फ्लाइट लैंड होती है तो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगता है, 15 मिनट में आप बाहर आ जाते हैं, लेकिन चूंकि संवेदनशील मामला है, बातचीत के जरिए समझाने की भी कोशिश की जाएगी, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वक्त और यहां पर लगेगा, तब स्थिति स्पष्ट होगी कि बाहर आएंगे भी या नहीं आएंगे। अभिजीत
24: बिल्कुल यही तरीका है, दिल्ली पुलिस ने यही कहा है कि हम पहले मौका देंगे कि अगर इनके तरफ से वो मौका लेते हुए कोऑपरेशन दिखाई दी गई तो कोई डिटेंशन नहीं होगा। हालांकि अगर पूरे सीजेपी लीडरशिप को ये पता लग ही गया है कि ध्रुव राठी डिटेन हो गए हैं, उनके जो लीगल हेड है रत्ना सिंह उनको जंगपुरा में भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है, तो किसी ना किसी तरीके से इनको भी डिटेन करेंगे, तो शायद अंदर भी वो अपने रणनीति कर रहे हैं तो कि आगे का क्या प्लान है, वीडियोज बना रहे होंगे ताकि अपने जो समर्थक है उनको कोई इन्फॉर्मेशन साझा करे, तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन 10-19 को उनकी फ्लाइट लैंड की थी अभी।
22: बिल्कुल, विचार उनकी तरफ से किया जा रहा होगा, ये जानकारी उन तक भी पहुंच गई होगी। लेकिन श्रेय, एक बार फिर से अगर अपने कैमरे को आप घुमाकर दिखाएं कि इस समय वहां पर सिक्योरिटी के कैसे ताजा हालात, और क्या दूसरे गेट से भी, क्योंकि अक्सर हमने ऐसा देखा है कि जब भी जिसको डिटेन किया जाना होता है एयरपोर्ट से, उसको कई बार वीआईपी गेट से या दूसरे ऐसे गेट से भी ले जाया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा प्रेजेंस ना हो लोगों की।
24: देखिए, डोमेस्टिक अराइवल्स के यहाँ पे दो गेट्स हैं, और क्योंकि हमने पुलिसकर्मियों से बातचीत की है, इसी गेट से निकाले जाएंगे अभिजीत दीप के सौरभ दास और आशुतोष रांका, उसी तरीके से सीआरपीएफ पर्सनल को भी यहाँ पे लगाया गया है। दूसरे गेट का भी आपको तस्वीर दिखा देंगे, आप देख सकते हैं वहां पे कोई भी ऐसी सिक्योरिटी कवर या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल प्लेस इन नहीं है, तो ये स्वाभाविक है कि जो गेट नंबर 1 है यहीं से ये सब निकलेंगे। कोऑपरेशन अगर दिखी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं दिखी तो यही वो पॉइंट है जहां पे हम थोड़ी देर में शायद आपको विजुअल देंगे कि कैसे सीजेपी के तमाम लीडरशिप को दिल्ली एयरपोर्ट में डिटेन कर लिया गया है।
1: ठीक है, आप दोबारा हम आपके पास आएंगे, और जैसा भी कुछ जानकारी मिली आप तुरंत हमें बताइएगा जरूर। लेकिन देखिए, अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। अब आप ऐसे समझिए कि 10:20 पर फ्लाइट लैंड हुई, आमतौर पर 15-20 लगते हैं, लेकिन कुछ बता रही है श्रेया, प्लीज बताइए।
24: अभिजीत दीप के सौरभ दास आशुतोष रंका दे विल बी स्टेपिंग आउट एनी
1: moment. नहीं, दोबारा जुड़ेंगे हम, चलिए तब तक वो अपनी बात वहां पर रख रही है। लेकिन आप ऐसे समझिए कि 20 लगते हैं, लेकिन अब चूंकि अंदर एक दौर चलेगा, वहां पर अधिकारी होंगे, समझाने की कोशिश की जाएगी, और इससे पहले हमने देखा है कि जैसे अभिजीत दीप के अपनी बात पर अड़े हुए हैं, वो नहीं मान रहे, उनका कहना है कि हम प्रदर्शन करेंगे, तो ऐसे में हो सकता है कि उनको डिटेन किया जाए। लेकिन उससे पहले जैसा कि श्रेया भी बता रही थी सुमित, और ये है भी, क्योंकि अभी ये पता नहीं है प्रदर्शनकारियों को करना क्या है, तो ऐसे में हो सकता है कि उनके लिए कोई वीडियो संदेश भी जारी कर दिया जाए, क्योंकि फ्लाइट के अंदर से तो जानकारी दी गई थी, तो हो सकता है कोई वीडियो संदेश जारी कर दिया जाए और बताया जाए कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो पहले से ही दिल्ली में आ गए हैं, उनको क्या करना है, किस तरह से इस मुहिम को आगे बढ़ाना है, हो सकता है कोई दिशा निर्देश जारी किया जाए।
22: बिल्कुल, और देखिए, हमेशा जब भी ऐसे प्रदर्शन होते हैं, या फिर आप सीजेपी के अगर पुराने आप देखें उनके प्रदर्शनों को, ये अंदाजा हो जाता है कि देखिए आज हमें इजाजत नहीं मिलेगी, हमें डिटेन किया जाएगा, एयरपोर्ट पर भी उतरने नहीं दिया जाएगा, लेकिन क्या होती है उनकी स्ट्रेटेजी वो शायद वो बताएंगे हमारे साथ।
1: एक चीज और मेरे को समझनी है श्रेया सर, श्रेया वो तो आप बताइएगा कि कितना वक्त लग रहा है, लेकिन क्या कुछ सीजेपी के समर्थक भी वहां पर कहीं कुछ दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कुछ है उनके लिए आए हैं?
24: बहुत कम, लेकिन है, क्योंकि 4-5 ऐसे समर्थक हैं जो हमें यहाँ पे दिखे, जिनसे हमने बातचीत की, और इंडिपेंडेंटली आए हैं, थोड़ा डर भी रहे हैं क्योंकि सबको डर लगता है डिटेन होने का, और यही एक रीजन है कि आसपास ये लोग अभी दिख भी रहे हैं लेकिन थोड़ा दूर दूर खड़े हैं। 4-5 ऐसे समर्थकों से हमने बात भी की, उनका साफ कहना है कि क्यों प्रोटेस्ट हम नहीं कर सकते, ये हमारी राइट है, और अगर हमें यहाँ पे डिटेन कर लिया गया तो हम यही प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये एक सीजेपी समर्थक
1: की हम आपको बता रहे हैं, जैसे ही फ्लाइट से उतरे उसके बाद की ये तस्वीर है, दिल्ली में इनका जो विमान है वो लैंड हो चुका है। इससे पहले इन्होंने एक संदेश इसी जगह से सुमित जारी किया था, जिसमें कहा था कि हम कभी से डरने वाले नहीं है, और अब एक और वीडियो यहाँ पर अभिजीत दीपके का सामने आया है, और ये फ्लाइट के अंदर से ही आया है, दिल्ली पहुंच चुके हैं अभिजीत दीपके।
22: बिल्कुल, फ्लाइट में से उन्होंने ये वीडियो बनाया है जिसमें देखिए हम बात कर रहे हैं, संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, और बिल्कुल
0: अभिजीत जी, सीजेपी के लोगों को डिटेन करने की अभी भी बात आ रही है, कैसे देखते हैं आप, क्या होगा आप दिल्ली एयरपोर्ट?
3: सबको तो अंदर कर दिया, आप देखते हो हमें भी अंदर करते हैं।
22: देखिए बात का जिक्र वो कर रहे हैं कि सबको अंदर कर दिया है, हम भी देखते हैं। ये देखिए आप, ये फ्लाइट की तस्वीरें हैं, और फ्लाइट में जब वो आप कह सकते हैं कि बाहर निकलने की जब लैंड किया, हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी मुस्तफा भी हमारे साथ जुड़ गए। मुस्तफा, फ्लाइट लैंड कर चुकी है, वो बाहर आ चुके हैं, उनसे आपकी बात हुई, उन्होंने कहा कि देखिए सबको डिटेन कर लिया, हमको भी डिटेन करेंगे, तो ये जानकारी उनको लग गई थी, अभी वहां पर किस तरीके, क्या उनको लेकर जा चुकी है दिल्ली पुलिस, या अभी वो एयरपोर्ट पर ही मौजूद है?
14: जी बिल्कुल, अभी दिल्ली की जो फ्लाइट लैंड हुई है उसमें आशुतोष रंका मौजूद है, सौरभ दास के मौजूद हैं, लेकिन जो दृश्य सीजेपी के लोगों के सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि प्रिवेंशन के तौर पर सबको डिटेन किया जा रहा है, वैसा ही कुछ इन तीनों के साथ भी हो सकता है। तो अभी इंतजार है, ये तीनों फ्लाइट से बाहर निकलेंगे, दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे आएंगे, उसके बाद क्या होता है ये देखना है।
1: अच्छा, क्या कोई बात आपकी हो पाई है अभिजीत दिपके से?
14: जी बिल्कुल, सुबह से उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार आंदोलन रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन आंदोलन रोकने वाला नहीं है और उनका यही कहना है कि वो लोग जंतर मंतर की तरफ जाएंगे।
22: एक बार बताइए मुस्तफा, क्योंकि क्या तीन ही पदाधिकारी है, तीन ही सीजेपी के नेता इसमें मौजूद थे फ्लाइट में, या और भी लोग हैं जो सीजेपी के इसी फ्लाइट में आ रहे हैं?
14: जी मुख्य तौर पर ये जो तीन लोग हैं अभिजीत दिपके, आशुतोष शंका ये और सौरभ शाह, तीन लोग जो है वो इस फ्लाइट में इस वक्त मौजूद हैं और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कुछ साथी उनके मुंबई से आए हैं वो भी इस फ्लाइट में मौजूद हैं, लेकिन दिल्ली में स्थिति अब लोगों को क्या दिल्ली में बाहर निकलने दिया जाता है, सबसे आगे क्या होता है ये देखना है।
22: बिल्कुल मुस्तफा, एक और बात, क्योंकि आप फ्लाइट में मौजूद हैं, आप भी उसी फ्लाइट से फ्लाई कर रहे थे, अभी क्या ये लोग एयरपोर्ट में एंटर कर चुके हैं या अभी भी फ्लाइट में ही बैठे हुए हैं?
14: जी बिल्कुल, अभी की स्थिति है कि वो लोग फ्लाइट में बैठे हुए हैं और आप कह सकते हैं कि फ्लाइट हालांकि एयरपोर्ट पर रुकी हुई है, लेकिन अभी भी ये तीनों फ्लाइट के अंदर है, अभी बाहर निकले नहीं।
1: अच्छा, डिटेन मुस्तफा, डिटेन किया जा रहा है, ध्रुव राठी को भी डिटेन कर लिया गया है, ये तो अभिजीत दिपके और इनको जानकारी मिली गई होगी, तो क्या कोई वीडियो संदेश जारी किया जा सकता है इन लोगों की तरफ से समर्थकों के लिए, प्रदर्शनकारियों के लिए, या ऐसा कोई वीडियो संदेश इनकी तरफ से रिकॉर्ड किया गया है?
14: जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जैसे ही दिल्ली में ये उतरते हैं, कहीं वीडियो संदेश की बात हो या फिर अपने लोगों से बात करने की बात हो या दिल्ली में जो स्थिति है उसकी बात हो, तो ये सारी चीजें इस वक्त होनी है, लेकिन अभी क्योंकि ये तीनों यहाँ से निकले नहीं है बाहर और आप कह सकते हैं कि फोन से ही लोगों के संपर्क में है,
1: तो अगर ये अगर अभी ये आपके पास में है तो क्या फोन के जरिए ही आप इनसे बातचीत कर सकते हैं, ऐसा संभव है क्या?
14: जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए, हम बात करवा देते हैं एक मिनट की। हेलो
1: अभिजीत, अभिजीत, ध्रुव राठी को हिरासत में ले लिया गया है, 150 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है,
14: एयरपोर्ट पे गाड़ियां खड़ी
22: है। अभिजीत आपको अगर जी
1: सुन पा रहे हैं आप,
14: पुलिस आ चुकी है
22: बिल्कुल, और देखिए हमारे
1: को हिरासत में लिया जा रहा है,
22: और देखिए हमारे सहयोगी मुस्तफा बता रहे थे कि पुलिस आ चुकी है, जिस फ्लाइट में वो बैठे हुए थे उनको डिटेन करने के लिए पुलिस के अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आज तक में एक्सक्लूसिव आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं।
1: क्या हिरासत में लिया जा रहा है अभिजीत दिपके को? पुलिस आ चुकी है। देखिए मुस्तफा, हमारे सहयोगी उसी फ्लाइट में है, उसी फ्लाइट में है हमारे सहयोगी मुस्तफा, जिस फ्लाइट में अभिजीत दीप के सौरभ दास और आशुतोष शांका थे, और जो आखिरी बातचीत आपने अभिजीत दीपके की आवाज सुनी, और अभिजीत दीपके ने इस बात को कहा कि पुलिस आ चुकी है, अब पुलिस डिटेन करेगी या समझाइश देगी इसका कुछ देर में पता चल जाएगा, लेकिन अभी फ्लाइट में ही है और फ्लाइट मैं पुलिस आ चुकी है, अब आप समझिए सुमित, ये बताया जा रहा था मुस्तफा की तरफ से।
22: बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभिजीत दिपके हों, आशुतोष रंका हों, ये तमाम लोग जो हैं, तीनों पदाधिकारी इस समय फ्लाइट में मौजूद थे, हमारे सहयोगी मुस्तफा उनसे बात भी कर रहे थे, उन्होंने ये भी बताया कि हमको पता लग गया है कि डिटेन कर लिया गया और हमें भी डिटेन करेंगे, ये सारी जानकारी उन तक थी, और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे सहयोगी मुस्तफा ने बताया कि उन्हें भी डिटेन किया जा रहा है, दिल्ली पुलिस के अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं, ये फ्लाइट में मौजूद है, लेकिन ये तमाम तस्वीरें आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अभिजीत दिपके जिस फ्लाइट से लैंड किए उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कैसे अभिजीत दिपके को ये जानकारी लग गई थी, वो कह रहे थे कि देखिए हमको भी डिटेन किया जाएगा, बाकी लोगों को डिटेन किया जा रहा है, हम तैयार हैं, लेकिन उसी बीच दिल्ली पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचते हैं और अब से थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि उनको डिटेन करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
1: और सुमित, ये बताना हमारे दर्शकों को बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि श्रेया चटर्जी ने इस बारे में जानकारी दी थी कि अभिजीत दिपके को सबसे पहले अधिकारियों की तरफ से समझाया जाएगा कि बीएनएसएस की धारा 163 लागू है, प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, तो आपको सहयोग करना होगा और अगर नहीं करते हैं तो हो सकता है कि उनको डिटेन किया जाए। मुस्तफा जो इसी विमान में मौजूद थे, उनसे जब कहा कि आप अभिजीत दिपके से बात कराइए, तो अभिजीत दिपके से वो बात कराते हैं, अभिजीत दिपके कहते हैं कि हम दिल्ली पहुंच चुके हैं, अब क्या होता है देखते हैं, और उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि पुलिस आ चुकी है, यानी पुलिस पहले समझाने की कोशिश करेगी और अगर अभिजीत दीपके नहीं मानते हैं, सौरभ और आशुतोष शांका नहीं मानते, तो हो सकता है कि जैसे ध्रुव राठी को जैसे डिटेन किया गया तो इनको भी डिटेन किया जाए। और इस दौरान हो सकता है कि बहुत जल्दी कोई वीडियो संदेश भी आए अभिजीत दीपके की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे प्रदर्शनकारी ऐसे हैं जो जंतर मंतर तक पहुंचना चाह रहे हैं, जो कनॉट प्लेस तक पहुंच गए हैं, अब वो दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं कि उसके बाद पता चल सके कि आगे आखिर करना क्या है।
2: देखिए हमेशा ये अमूमन इस तरीके की प्रोटोकॉल, इस तरीके की चीजें की जाती हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी या किसी भी पुलिस अधिकारी जाकर बताते हैं कि देखिए आपको डिटेन नहीं किया जाएगा अगर आप यहां से वापस चले जाते हैं या फिर आप उस जगह पर जाने की कोशिश नहीं करते हैं तो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए या फिर आप पहले से एहतियातन के तौर पर पुलिस के अधिकारी इस तरीके से डिटेन करते हैं। और जब तक आप कह सकते हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अभिजीत दीपके जब फ्लाइट से लैंड किए थे तब उस समय हमारे सहयोगी मुस्तफा भी उस फ्लाइट में मौजूद थे, उन्होंने उनसे बातचीत की, उनसे जाना कि आखिरकार आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। उन्होंने बताया, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरों में उन्होंने बताया आज तक को कि कैसे उनको पता है कि उनके बाकी लोगों को डिटेन कर लिया गया, उनको भी डिटेन किया जाएगा और वो सरकार की धमकी से डरने वाले नहीं है। दीपके ने जो महत्वपूर्ण बातें कही वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, हमारे कई साथियों को हिरासत में ले लिया गया है और हम भी सरकार से डरने वाले नहीं, ये तमाम बातें उन्होंने कही।
0: अभिजीत जी, सीजेपी के लोगों को डिटेन करने की अभी भी बात आ रही है, कैसे देखते हैं आप, क्या होगा आप दिल्ली एयरपोर्ट?
3: सबको तो अंदर कर दिया, आप देखते हो हमें भी अंदर करते हैं।
0: अभिजीत जी, सीजेपी के लोगों को डिटेन करने की अभी भी बात आ रही है, कैसे देखते हैं आप, क्या होगा आप दिल्ली एयरपोर्ट?
3: सबको तो अंदर कर दिया, आप देखते हो हमें भी अंदर करते हैं।
1: अभिजीत दीपके की बात है, ये वीडियो आप देख रहे हैं, लेकिन उसके ठीक बाद मुस्तफा हमारे सहयोगी इसी प्लेन में मौजूद थे और जब हमारी उनसे बात हुई और हमने कहा कि अभिजीत दीपके से बात कराइए, तो ये सवाल अभिजीत दीपके से पूछा कि ध्रुव राठी को हिरासत में ले लिया गया है, आपको जानकारी है? तो उन्होंने कहा कि यहां हिरासत में ले लिया गया। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने कहा कि पुलिस आ रही है। जब ये सवाल पूछा गया क्या आपको भी हिरासत में लिया जा सकता है या लिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि पुलिस आ गई है। अब पुलिस आ गई है, क्या बातचीत हो रही है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगेगा, क्योंकि देखिए मामला संवेदनशील है, समझाने की कोशिश की जाएगी और अगर उसके बावजूद अगर नहीं समझते हैं या फिर कॉपरेट नहीं करते हैं तो फिर दिल्ली पुलिस के पास एक ऑप्शन रहता है हिरासत में लेने का, तो वो हिरासत में लिया जाएगा। लेकिन प्रोटेस्ट का आगे क्या होगा, इसके लिए अभी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने कहा है कि कॉपरेट करना ही होगा।
2: और देखिए तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि ये कैसे हालात इसमें बने। मुंबई से दिल्ली आते ही सबसे पहले अभिजीत दीपके की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें की बात उन्होंने क्या कहा, देखिए विमान से निकलने की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जब दिल्ली पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचे किस तरीके से उनको डिटेन किया जा रहा था, उनसे बातचीत की जा रही थी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आज तक की टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और लगातार उसको आप देख सकते हैं कि अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि कैसी परिस्थिति दिल्ली में है और आपको हम क्या मैसेज लेकर आए हैं, ये भी उनको बताया गया। और देखिए बड़ी खबर,
1: ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे थे विमान के अंदर की, और जरा एक बार आप इसे सुनिए और देखिए कि अधिकारी पहुंच चुके हैं और आशुतोष, सौरभ और अभिजीत वहां पर, एक बार सुनिए और देखिए। सर प्लीज कॉपरेट, ये आप सुना जा रहा है जब दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि प्लीज कॉपरेट कीजिए। श्रेया हमारे साथ जुड़ी हुई है, श्रेया फ्लाइट के अंदर ही दिल्ली पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं अभिजीत दीपके से बात करने, उनको समझाने, और क्या जानकारी है?
24: देखिए तीनों को डिटेन कर लिया गया है, इन्फॉर्मेशन यही थी कि जैसे ही वो लैंड करेंगे उनको पहले रिक्वेस्ट किया जाएगा कि वो कोऑपरेट करें और अगर कोई कोऑपरेशन ना दिखे तो डिटेन कर लिया जाएगा। वही तस्वीरें हैं, अभिजीत दीपके ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो भी जारी किया है कि कैसे जो एयरपोर्ट के अंदर एयरक्राफ्ट के अंदर पुलिस कर्मी आ रही है, और वही विजुअल हमारे कलीग मुस्तफा ने भी अभी साझा किया है कि कैसे अंदर ही फ्लाइट के अंदर ही तीनों को डिटेन कर लिया गया है।
2: बिल्कुल, और हमेशा क्योंकि आपसे जब बात पहले भी बात हो रही थी, आपने बताया कि देखिए पहले बताया जाएगा, समझाने की कोशिश की जाएगी, नियमों का हवाला दिया जाएगा और उसके बाद ही बताया जाएगा कि आपको सहमति देनी पड़ेगी, आपको रिटर्न एक तरीके का रिटर्न आपको साइन करके देना होता है कि हाँ हम इसमें शामिल नहीं होंगे, हम लगातार अव्यवस्था नहीं फैलाएंगे, लेकिन अगर नहीं करते तो फिर उनको डिटेन किया जाएगा। लेकिन अभी कहां पर आपकी क्योंकि बात हो रही, देखिए
1: लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बड़ी खबर ये कि दीपके राका और सौरभ दास को हिरासत में ले लिया गया है। जो आप एक्सक्लूसिव फुटेज इस वक्त देख रहे थे, ये जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, प्लीज कोऑपरेट, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा था। और जब अभिजीत दीप के सौरभ दास आशुतोष शंका नहीं माने तो जो ध्रुव राठी के साथ हुआ, जैसे उनको हिरासत में लिया गया, ऐसे ही इन तीनों को भी हिरासत में ले लिया गया है। यानी प्लेन से नीचे कदम भी नहीं रख पाए, प्लेन से ही इनको हिरासत में ले लिया गया। अभिजीत दीप के, आशुतोष रंका, सौरभ दास को हिरासत में ले लिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले समझाने की कोशिश की गई, दिल्ली पुलिस के अधिकारी पहुंचते हैं, महिला अधिकारी भी होती हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, प्लीज कोऑपरेट ये कहते हैं, लेकिन जब नहीं मानते हैं तो उसके बाद इनको हिरासत में ले लिया जाता। और ज्यादा जानकारी दे रही है श्रेया, प्लीज बताइए श्रेया।
24: देखिए, तीनों को डिटेन भी कर लिया गया है सीजीपी की तरफ से। इस डिटेंशन को कंडेम करते हुए प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है। उनका ये कहना है कि दिल्ली पुलिस द्वारा पूरे मूवमेंट को क्रिपल करने के लिए ये सारे डिटेंशन किए जा रहे हैं और ये एक फ्रीडम मूवमेंट की वायलेशन है। ये एक प्रेस रिलीज है जो अभी सीजीपी ने मीडिया के लोगों को दिया है और ऑलरेडी विजुअल्स आ चुके हैं कि तीनों अंदर ही डिटेन हो चुके हैं।
22: बिल्कुल, और ये भी कहा गया कि इमीडिएट अनकंडीशनल रिलीज ऑफ दीप के, दास एंड रांका, यानी ये भी उन्होंने कहा है कि अनकंडीशनल रिलीज उनका तुरंत किया जाए। एक और बात, क्योंकि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, आपकी बात हो रही है दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से, कौन से डिटेंशन सेंटर में, क्या आइसोलेट कर अलग अलग डिटेंशन सेंटर में लिया जाएगा, क्योंकि अक्सर ये स्ट्रेटेजी की जाती है कि अलग अलग जगहों पर रखा जाए, तीनों को एक जगह ना रखा जाए, या तीनों को एक ही जगह पे डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा।
4: अरे एक सेकंड, मेरा हाउस में बैग ले लूं, अरे मैं अरेस्ट होने के लिए आया हूँ, कर लो अरेस्ट, मैं अरेस्ट होने के लिए आया हूँ, आई एम मैं डरता नहीं, कर लो अरेस्ट।
1: देखिए अभिजीत दीप के बोल रहे हैं मैं तो अरेस्ट होने के लिए आया हूं, कर लीजिए अरेस्ट। और ये तब की बात है जब दिल्ली पुलिस के अधिकारी उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे और उस दौरान अभिजीत दीप के लाइव करने की कोशिश कर रहे थे, यानी जो प्रदर्शनकारी हैं उनको आगे क्या करना है ये बताने के लिए वो लाइव करने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान दिल्ली पुलिस के अधिकारी उन्हें रोकते हैं। तभी अभिजीत दीप की तरफ से आपत्ति जताई जाती है और अभिजीत दीप के कहते हैं कि मैं तो अरेस्ट होने आया हूं, कर लीजिए मुझे अरेस्ट। तो दिल्ली पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि नहीं, आपको अरेस्ट नहीं करना, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको समझाना चाहते हैं, और उसी वक्त उनको डिटेन किया जाता है। तो वो एक्सक्लूसिव फुटेज भी आपने देखा जब लाइव की कोशिश अभिजीत दीपके की तरफ से की जा रही थी।
22: और देखिए तस्वीरें हम आपको इसलिए बार बार दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझ सके कि इस समय के ताजा हालात क्या है प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि 10:30 करीब उनको लैंड करना था, जैसे उनकी फ्लाइट लैंड करती है और उसी के बाद उनको डिटेन कर लिया जाता है दिल्ली पुलिस के अधिकारी। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्रेया चटर्जी भी हमारे साथ जुड़ गए। श्रेया, एक बार फिर से कहां पर रखा जा सकता है, क्या तीनों को एक साथ रखा जाएगा डिटेंशन सेंटर में या अलग अलग आइसोलेट कर रखा जाएगा, ये तमाम संभावनाएं, क्या कोई जानकारी है इसको लेकर?
4: अरे एक अरे एक सेकंड, मेरा हाउस में।

0: हम लोगों को उठाने के लिए दिल्ली पुलिस प्लेन में ही आ रही है, यू कैन सी इट। दिल्ली पुलिस के सारे ऑफिसर्स अभी प्लेन में घुस रहे, हम लोग अभी जस्ट लैंड ही हुए थे। सारे के सारे लोग दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स यहाँ लाइन में खड़े हैं, हमें प्लेन के अंदर से उठाने की कोशिश कर रही है। पूरे दिल्ली पुलिस प्लेन में चढ़ रही
1: है।
0: इनकलाब जिंदाबाद। सो दिल्ली पुलिस इज हियर टू अरेस्ट अस राइट ऑन द फ्लाइट, यू कैन सी वो अभी प्लेन में चढ़ रहे
2: हैं।
0: ये नरेंद्र मोदी का डर है, 30 साल के बच्चों को ये सीधा प्लेन से उठा रहे। ऐसा तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी भी नहीं किया था। ऑल वी वांटेड टू डू इज अ पीसफुल प्रोटेस्ट एंड दे आर पिकिंग अस अप फ्रॉम द फ्लाइट लाइक वी आर क्रिमिनल्स। They are not allowing others to deboard the flight.
3: डिटेन किया जा रहा था उससे पहले ही उन्होंने एक रील अपनी साझा की है, उन्होंने तस्वीरें साझा की है जिसमें वो बता रहे हैं कि देखिए हमको दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो है डिटेन करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दे आर बिहेविंग लाइक वी आर क्रिमिनल्स। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए हमको डिटेन करने के लिए लोग विमान में ही पहुंच गए हैं और हमसे क्रिमिनल जैसा यानी अपराधियों जैसा हमसे बिहेव किया जा रहा है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जब अभिजीत दिबके और राका और उनके तमाम दोस्त तीनों लोगों को जब डिटेन किया जा रहा था तब वहां के हालात, फ्लाइट के अंदर के हालात कैसे थे। दिल्ली पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचते हैं, उनको डिटेन करते हैं और उसी समय ये वीडियो जो है वो अभिजीत दिबके द्वारा बनाई जाती है।
4: अब ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और ये वीडियो ऐसा है जिसको लाइव इस वक्त अभिजीत दिबके कर रहे थे और जब अभिजीत दिबके अब देखिए इस प्रदर्शन, ये वीडियो भी हम आपको दिखाते रहेंगे, तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इस प्रदर्शन पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने क्या कहा
5: वो भी सुनिए। फ्लाइट में कैसे आ गए?
6: बेहद ही खतरनाक और गंभीर स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। देश की 140 करोड़ जनता जो सुख शांति के साथ भारत के विकास में सबका सहयोग मिल रहा है उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। पर ये कौन कर रहे हैं? ये दो अराजकतावादी समूह जिसमें एक इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी और दूसरे गुट का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी कर रही है। मैं इन दोनों गुटों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत की जनता पूरी तरह से आपके इन उद्देश्यों को देख रही है और आज जो आपका एनार्किस्ट प्रतिस्पर्धा चल रहा है कि कौन अधिक इस देश में अस्थिरता पैदा कर सकता है, ये आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने देशभक्त हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर इन तक आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे। साथ
3: नितिन नवीन को आप सुन रहे थे, बीजेपी के अध्यक्ष, वो लगातार राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर आक्रामक रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि देखिए ये लगातार इनको समर्थन कर रहे हैं। सीजेपी को लेकर भी उन्होंने कई बड़ी बातें कही, उन्होंने कहा कि देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, विदेशी ताकतों का इन्वॉल्वमेंट इनमें है और इसके अलावा उन्होंने जो अर्बन नक्सल का जिक्र भी किया। देखिए हम उन्होंने तमाम बातें की लेकिन वे तस्वीरें आप इस समय जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तस्वीरें वो हैं जब अभिजीत दिबके अपने साथियों के साथ लैंड कर रहे थे उस एयरक्राफ्ट के,
0: picking us up from the flight like we are criminals. They are not allowing others to deboard the flight. They are causing inconvenience to the other passengers.
7: You can see where the nation is heading. They are here.

0: to arrest us directly from the flight. This is something not even Indira Gandhi had done. This is dictatorship where Delhi police has entered in the flight and trying to arrest us. आ जाओ कर लो अरेस्ट, अरेस्ट होने के लिए आए हम, अरेस्ट होने के लिए आए, आ जाओ कर लो अरेस्ट, अरेस्ट होने के लिए आए सर, डरेंगे नहीं आपसे, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ यू, कर लो अरेस्ट।
1: भारत माता की
2: जय,
1: भारत माता की
2: जय,
0: इनकलाब,
1: इनकलाब
0: जिंदाबाद,
1: इनकलाब
0: जिंदाबाद,
1: इनकलाब
2: जिंदाबाद।
3: ये वो वीडियो है जो उस वक्त अभिजीत दीप के लाइव कर रहे थे, लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और अपने जो समर्थक है उनको बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी फ्लाइट जैसे ही दिल्ली में लैंड हुई उस वक्त कोई पैसेंजर उतर भी नहीं पाया कि पुलिस के आला अधिकारी आते हैं, महिला पुलिसकर्मी भी आती हैं, अधिकारी आते हैं और उसके बाद फिर उनको समझाने की कोशिश की जाती है और वो कहते हैं कि मैं तो गिरफ्तार होने आया हूं, मुझे गिरफ्तार करिए, लेकिन पुलिस कहती है कि हम आपको गिरफ्तार कर देने आए हैं। फिर बातचीत करने की कोशिश की जाती है और फिर वहां से उनको डिटेन किया जाता है जब कोऑपरेट नहीं करते अभिजीत दीप के, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा गया और उसके बाद इनको डिटेन किया गया। हालांकि अभिजीत दीप के लगातार ये कहते हैं उस वीडियो में कि हम गिरफ्तार होने के लिए आए हैं, आप गिरफ्तार कर लीजिए।
4: और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि अभिजीत दिपके ने खुद ये तस्वीरें बनाई और उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इनको साझा भी किया। उन्होंने बताया कि देखिए जब उनकी फ्लाइट लैंड कर रही थी उसी समय वहां पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, दिल्ली पुलिस वो फ्लाइट में बैठे थे, तभी दिल्ली पुलिस के अधिकारी आते हैं उनको डिटेन करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो डरने वाले नहीं है और सरकार की धमकी से वो डरने वाले कतई नहीं है, ये अभिजीत दिपके की तरफ से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए हमको जानकारी है कि हमें बाकी के साथियों को डिटेन किया गया, हमको भी डिटेन किया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा और इसी के बाद अधिकारी वहां पहुंचते हैं, उनको बताने की कोशिश करते हैं और फिर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उसी एयरक्राफ्ट की तस्वीर है, सौरभ दास को भी हिरासत में ले लिया गया है, अभय आशुतोषा का, अभिजीत दिप के, तीनों शख्स को, तीनों पदाधिकारियों को सीजेपी के इस समय हिरासत में लिया गया। अभिजीत दिपके ने कहा कि हम डरने वाले ने, तमाम बड़ी बातें भी हम आपको दिखा रहे हैं और वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं जो अभिजीत दिपके ने ही साझा किया था। उन्होंने बताया था कि इस समय उनकी फ्लाइट लैंड कर गई है और उनको हिरासत में लेने के लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो है
5: तो अंदर
4: वो
5: कर दिया, अब देखते हैं
4: पहुंच रहे हैं।
3: लेकिन इससे एक बात जरूर समझनी होगी सुमित कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कैसे होमवर्क किया गया है, क्योंकि जुलाई में जो कुछ हुआ था वो पूरे देश ने देखा था, दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी वो बनी थी, लेकिन उससे सबक लेते हुए ऐसी तैयारियां की गई कि ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई जो दिल्ली में नहीं आ सके, मेट्रो में 45 मेट्रो स्टेशन को यहां पर बंद किया गया एंट्री एग्जिट पॉइंट पर, कनॉट प्लेस से लेकर और आपका जो जंतर मंतर है उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया कि कोई भी वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस तरह की तैयारियां की गई। अगर कोई प्रदर्शनकारी आता है तो तुरंत उसको डिटेन किया जाता है, बैरिकेटिंग जगह जगह की जाती है, सारे बॉर्डर्स वहां पर सील किए जाते हैं।
4: हमारे साथ हमारे सहयोगी मुस्तफा भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मुस्तफा आप भी उस फ्लाइट में मौजूद थे, हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब आपने उनसे बातचीत की, इसके अलावा जब उनको डिटेन किया जा रहा था, अभी क्या हालात है, क्या उनको डिटेन किया जा रहा है, एक बार फिर से मुस्तफा का रुख करेंगे। उनका फोन कट गया लेकिन हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। आज तक पर ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं और हम आपको ये भी दिखा रहे थे एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि जब अभिजीत दिपके की फ्लाइट लैंड करती है तो उन्होंने आज तक से बातचीत की, उन्होंने बताया कि वो डिटेन उनके साथियों को किया गया है, उनको जानकारी है और उनको भी डिटेन किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी बनाया जिसमें उन्होंने अधिकारियों के फ्लाइट में आते की तस्वीरें भी दिखाई। मुस्तफा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, मुस्तफा का रुख करते हैं। मुस्तफा इस समय वो कहां पर मौजूद है, क्या उनको डिटेन कर लिया गया, पुलिस दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई है, क्या अभी वो फ्लाइट में मौजूद है?
6: जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि फ्लाइट से उनको निकलकर एक बस में लेकर के गए हैं और इसके बाद आप यहाँ पर उनको एयरपोर्ट पर रखा है या पुलिस स्टेशन ले गए हैं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन फ्लाइट में जैसे लैंड हुई जो ऑफिशियल्स है वो आए, उसके बाद उन तीनों सीजेपी लीडर्स को लेकर के पुलिस एक वैन में, उनको रनवे के पास एक वैन खड़ी थी उस वैन में डाला गया है, उस वैन के बाद उनको लेकर के बाहर चल जा चुके हैं। अब वो डिटेंशन है, अब फिलहाल एयरपोर्ट पर रखा गया है या बाहर लेकर चले गए हैं इसकी क्लैरिटी अभी बाकी।
3: मुस्तफा डिटेल में बताइएगा कि जब फ्लाइट रुकी उसके बाद जब पुलिस अधिकारी वहां पर आए तो क्या बातचीत हुई और उसके बाद क्या वो पूरा डिटेल में बताइए, क्या बातचीत हुई अंदर?
6: जी बिल्कुल, जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई आप कह सकते हैं स्टेयर केस लगी, पुलिस ऑफिशियल आए, उनके साथ लेडी पुलिस ऑफिशियल थी, बातचीत हुई। जब जैसे ही खाकी में यूनिफॉर्म में ऑफिशियल्स को देखा वैसे ही तीनों समझ गए कि आप कह सकते हैं कि उन लोगों को डिटेन किया जाने वाला। इनफेक्ट आशुतोष रंका हमारे साथ फोन पर ही जुड़े हुए थे, वो फोन उन्होंने वापस दिया, उन्होंने पुलिस को देखा, वो समझ गए कि पुलिस क्यों आएगी। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम लोगों को डिटेन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना अपना सामान तीनों ने लिया। और उसके बाद जब उनको बाहर लेकर के गया तो फ्लाइट से उतरने के बाद एक वैन में उनको ले जाया गया है। वैन से अब वो कहाँ लेकर गई है पुलिस, अभी भी दिल्ली एयरपोर्ट पर ही है या कहीं बाहर लेकर डिटेन किया गया है, इसकी जानकारी अवेटेड।
4: मुस्तफा एक और बात बताइए, क्योंकि आप तो उस फ्लाइट में मौजूद थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, और एक और इम्पोर्टेंट बात है, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? क्या वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे? क्योंकि जब वो आपसे बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि देखिए मुझे पता है कि हमारे साथियों को हिरासत में लिया गया है, मुझे भी हिरासत में लिया गया, क्या रिएक्शन था उनका?
6: जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये चीज एक्सपेक्टेड थी, उनको पता था कि सुबह से ही जिस तरह से सभी लोगों को डिटेन किया जा रहा है, उन लोगों को तीनों को भी, अभिजीत दीपके को, बाकी लोगों को डिटेन किया जाएगा, इस बात की जानकारी उन्हें थी। और इसीलिए उन तीनों को आप कह सकते हैं जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई उनने ऑफिशियल्स को देखा, वो ये बात समझ गए कि वो डिटेन करने के लिए आए हुए हैं। अपना अपना बैग उन्होंने लिया, उन्होंने कहा कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है डिटेन होने में। अभिजीत दीपके ने एक वीडियो भी शायद लाइव वीडियो भी उस टाइम पर रिकॉर्ड किया जब पुलिस उन लोगों को लेने आई थी, और वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया। तकरीबन 5 मिनट ये पूरी घटना चली है, घटनाक्रम के में आप कह सकते हैं तीनों को जैसे ही पुलिस ने अपने हिरासत में लिया उनको एक बस में डालकर आगे ले जाया गया।
4: बिल्कुल, और अभिजीत दीपके का तो हम दिखाई रहे हैं, लेकिन आशुतोष रांका और सौरभ दास का रिएक्शन कैसा था, क्योंकि वो भी उनके साथ मौजूद थे, उनका कोई तस्वीरें, उनकी कोई वीडियो उन्होंने नहीं बनाई, या वो बिल्कुल कामली पुलिस के साथ चले गए?
6: जी बिल्कुल, जब मुंबई एयरपोर्ट पर थे तब से सेल्फी अपलोड कर रहे थे, जब बस में थे तब सेल्फी अपलोड कर रहे थे, फ्लाइट में बैठने के बाद किया, और जिस तरीके का रुख इस बार पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने अपनाया है, उन लोगों को पता था कि ये आप कह सकते हैं टेंशन होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी प्रोटेस्ट को आपने बुलाया है, उस प्रोटेस्ट को आप लीड कर रहे हैं, तो वहां पर पहुंचना एक तरह से कहीं ना कहीं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात हो जाती है। और इसीलिए ये पता होने के बावजूद भी कि डिटेन किया जाएगा, इन तीनों को यहां पर आना पड़ा 10 तारीख की, जिस तरह से प्रोटेस्ट कॉल दिया गया है, और अब इन तीनों के डिटेन होने के बाद आगे इस प्रोटेस्ट का क्या होता है ये देखना।
3: अच्छा, आप तो मुस्तफा साथ में थे, मुंबई से लेकर दिल्ली तक आपने सफर तय किया है, क्या आपकी बातचीत हो पाई? ये तो देखिए बहुत तय था कि उनको डिटेन कर लिया जाएगा, लेकिन प्रोटेस्ट का क्या होगा, आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि बहुत दूर दूर से देश के अलग अलग हिस्सों से प्रदर्शनकारियों को बुलाया था, तो ऐसे में क्या इस बारे में आपकी कोई बात हुई कि आगे प्रोटेस्ट का क्या, प्रदर्शनकारियों के लिए क्या संदेश कैसे दिया जाएगा?
6: जी, आपका उन कह सकते हैं कि जो जिस तरह की तैयारी सीजेपी ने इस वक्त की हुई थी, और क्योंकि परमिशन प्रोटेस्ट के लिए नहीं दिया गया था, तो ये बात साफ थी कि जैसे ही डिटेन किया जाता है ये एक तरह से प्रोटेस्ट, जैसे पिछली बार जंतर मंतर में एक साथ आकर किया गया था, उस तरीके की चीज पॉसिबल नहीं है। तो अभी आज के दिन में दिल्ली में जो देखना अपेक्षित है वो कई ग्रुप जो है वो जमा हो सकते हैं अलग अलग इलाकों में, लेकिन उनको जैसे सुबह से हो रहा है कल से हो रहा है डिटेन किया जाएगा, और ये आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक तरह से पूरा जो ग्रुप है वो जमा होकर एक बड़ा प्रोटेस्ट होना अभी दिल्ली की स्थिति मुमकिन लगता है। आप इससे ये सवाल उठेगा कि देश भर में किस तरह का इसका रिस्पॉन्स रहेगा।
4: लेकिन मुस्तफा ये भी बात है कि वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, उनको डिटेन जरूर किया जा रहा है, लेकिन उनका आगे का पड़ाव क्या होगा, आगे का रिएक्शन क्या होगा, ये भी देखने वाला होगा। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा आपका। लेकिन आज हम अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली में आज फुल दंगल जारी है। जी हां, प्रदर्शन पर टकराव है, दौड़ा दौड़ा कर धरपकड़ की जा रही, हिरासत है, पुलिस का डीब्रीफिंग की जा रही है। राजधानी में सुरक्षा का एक ऐसा पहरा है मानो पूरा शहर छावनी में तब्दील हो गया, और जंतर मंतर से कनॉट प्लेस तक दिल्ली पुलिस की मौजूदगी हर तरफ आपको नजर आ रही है।
3: तो देखिए, चप्पे चप्पे पर पुलिस है, सड़कों पर बैरिकेटिंग है, प्रदर्शन करने वाले जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, अब कैसे भी वो पहुंच रहे हैं पुलिस को चकमा देकर, उनकी धरपकड़ की जा रही है। 25,000 से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली तो पुलिस का संदेश बहुत साफ है, और बाकायदा लाउड स्पीकर के जरिए ये बताया जा रहा है कि अगर आप जाएंगे वहां पर तो जिम्मेदार आप खुद होंगे, बिना अनुमति जमावड़ा नहीं होने दिया जाएगा। और ये आप ये 10 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ना, उन 10 तस्वीरों को देखकर आप यही समझेंगे कि दिल्ली पुलिस ने बड़े व्यापक पैमाने पर यह तैयारियां की हुई थी कि इस बार प्रदर्शनकारियों को एकजुट नहीं होने दी जाएगी। अभिजीत दीपके को जब अरेस्ट जब डिटेन किया जा रहा था उस वक्त किस तरह एक वीडियो जारी हुआ, क्या तस्वीरें थी, वो एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं।
2: अरेस्ट होने के लिए आया हो,
4: और देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आपको अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली के मिंटो ब्रिज के पास भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं, इसमें आईएसएफ और इसके अलावा एसएफआई सीपीआईएम कैडर शामिल है। सीपी की तरफ मार्च करते हुए जंतर मंतर की तरफ रुक कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक दिया है।
3: कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है और उनको हिरासत में लिया जा रहा है, लगातार ऐसा हो रहा है। और ज्यादा जानकारी दे रही है आज तक संवाददाता अनमोल बाली।
2: इस समय मैं दिल्ली के मिंटो रोड मिंटो ब्रिज के पास खड़ा हूं और आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रदर्शनकारी हैं, जो लेफ्ट से जुड़े प्रदर्शनकारी हैं, यहां पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं एसएफआई और एआईएसएफ का जो कैडर है यहां पर कैसे भारी संख्या में हाथ में झंडे लेकर यहां पर पहुंचा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मिंटो रोड मिंटो ब्रिज के पास की तस्वीरें हैं। कनॉट प्लेस की तरफ ही जाना चाहते हैं क्योंकि वहां से जंतर मंतर अपनी कूच करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट की कॉल थी जिसमें देखा गया कि आईसा एआईएसएफ और भी जो अन्य वाम छात्र संगठन है उनकी तरफ से भी प्रोटेस्ट मार्च की कॉल दी गई थी। उसी को देखते हुए आप देख सकते हैं कि यहां पर कैसे जो लेफ्ट का कार्डर है धरना मारता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर?
5: कहना चाहेंगे ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए।
2: आपको रोका जा रहा है?
5: रोका जा रहा है, कहीं भी रोका जाएगा हम जाएंगे।
2: जंतर मंतर कैसे पहुंचेंगे?
5: जैसे भी पहुंचे पहुंचेंगे जरूर, चाहे कुछ भी हो।
2: कैसे पहुंचेंगे सर? जंतर मंतर रोका जा रहा आपको? क्या कहेंगे सर? जंतर मंतर रोका जा रहा आपको जाने से?
5: वो चौड़ गद्दी चौड़।
2: तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर जो वाम संगठनों से जुड़े छात्र संगठनों के जो लोग हैं, आईसा एआईएसएफ के जो लोग हैं, यहां पर बैरिकेड तोड़कर जो है आगे बढ़ने की कोशिश करें। तस्वीरें आप देख सकते हैं मिंटो ब्रिज के पास की कि कैसे भारी संख्या में जो वाम संगठनों से जुड़े छात्र संगठन थे उनके जो लोग हैं यहां पर बैरिकेड तोड़कर आगे जो है बढ़ चुके हैं, मिंटो ब्रिज की तरफ बढ़ चुके हैं। पर वही तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पुलिस ने जो है छात्रों को, जो प्रदर्शनकारियों को डिटेन करना शुरू कर लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दो लेयर की बैरिकेडिंग थी, हाथ में वाम संगठनों के आईएसएफ एसएफआई और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के झंडे लेकर जो प्रदर्शनकारी थे यहां पर पहुंचे थे। पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग यहां पर कर रखी थी। पर वही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस का एक्शन यहां पर शुरू हो चुका है, लोगों को दिल्ली पुलिस ने यहां पर डिटेन करना शुरू कर दिया। और देखिए तस्वीरों में पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहां पर लोगों को डिटेन करते दिख रहे हैं। पर तब भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा जूम कर कि भारी संख्या में जो कुछ प्रदर्शनकारी थे वो यहां से पार कर जो पहली लेयर की बैरिकेडिंग थी मिंटो ब्रिज के पास से पार कर दूसरी लेयर की जो बैरिकेडिंग है जो मिंटो ब्रिज के एकदम नीचे है वहां पहुंच गए हैं और वहां भी कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा उनको रोका जा रहा है। तो तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर दिल्ली पुलिस का जो एक्शन है वो शुरू हो चुका है। जो प्रदर्शनकारी है जंतर मंतर की जिन्होंने कॉल दी थी, वाम संगठनों से जुड़े प्रदर्शनकारी थे, जंतर मंतर जाना चाहते थे, पर उनको दिल्ली पुलिस ने यहां पर डिटेन कर लिया। पर तब भी भारी संख्या में कुछ जो प्रदर्शनकारी थे यहां से आगे बढ़ जाते हैं। पर आगे
4: मोल बाली हमारे सहयोगी मिंटो ब्रिज पर मौजूद थे, वो दिखा रहे थे कि मिंटो ब्रिज से लगातार आउटर सर्कल की रुख कर रहे थे, लेकिन हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ सुशांत भी जुड़े हैं। सुशांत इस समय वहां पर आप मौजूद है, वहां पर क्या हालात है?
7: हाँ देखिए हिमांशु आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये सीपी का हनुमान मंदिर है और यहीं से जो गुरुद्वारा है बंगला साहिब वो जाता है। देखिए यहाँ पे किस तरीके से पुलिस का बड़ा एक्शन, बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। अब पुलिस की तरफ से एक बड़ा एक्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। देखिए किस तरीके से पुलिस तमाम प्रदर्शनकारियों को खंदेड़ रही है, उनको डिटेन किया जा रहा है और बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे उसका भी देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं आगे की तरफ, पोस्टर्स बैनर्स के साथ यहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। अब पुलिस किस तरीके से उनको खंदेड़ रही है ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि भारी पुलिस बल इस वक्त नई दिल्ली में इस वक्त जो है वो लगाया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको तस्वीरें दिखाएंगी, यहाँ पर ये प्रदर्शनकारी पोस्टर्स के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। अब देखिए पुलिस का एक और एक्शन, यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये पुलिस जबरदस्त इस वक्त एक्शन, दिल्ली की तमाम पुलिस के अधिकारी है ये पोस्टर्स के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। हिमांशु की तस्वीरें देखिए, आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरीके से ये प्रदर्शनकारी यहाँ से पहुंचे हैं, उनको फिलहाल जो है वो डिटेन किया गया है। आप कोशिश करेंगे, कहाँ से आप आए, फोटो ले लेंगे, कहाँ से आए?
8: पंजाब से,
7: पंजाब से प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं फिलहाल। अब देखिए कि और भी प्रदर्शनकारी आपको नजर आएंगे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों तरफ इस वक्त प्रदर्शनकारी ही इस वक्त जो है वो हिमांशु नजर आएंगे। आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, क्योंकि यहाँ पर स्थिति जो है वो आप देखिए कि यहाँ पर और भी कई सारे
3: सुशांत, लेकिन ये बताइए कि ये शुरुआत में जो हम देख रहे थे कि कुछ ग्रुप में दो चार लोग प्रदर्शनकारी पहुंच रहे थे, अब इतनी भारी संख्या में प्रदर्शनकारी कैसे पहुंच पा रहे इतनी बैरिकेडिंग के बाद?
7: देखिए कहीं ना कहीं क्योंकि कनॉट प्लेस का ये पूरा रूट है और इस रास्ते में कई सारे रास्ते जो है वो छोटे निकलते हैं, और ऐसे में पुलिस को कई जगह पर जहां जहां से इनपुट्स मिल रहे हैं वहां वहां पर पुलिस जो है वो
9: देखिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सुशांत को दोबारा से रुख करेंगे कि दीपके को लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकल गई है दिल्ली पुलिस। आपको ये बड़ा अपडेट बता दें कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो है वो उसी फ्लाइट पे पहुंच गए थे, डिटेन कर लिया गया था, और अब दीपके को दिल्ली पुलिस एयरपोर्ट से लेकर बाहर निकल आई है। ये हम आपको ताजो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब दिल्ली पुलिस की टीमें उस एयरक्राफ्ट में उस फ्लाइट में पहुंची थी। दीपके के साथ साथ उनके सहयोगियों को लगातार डिटेन किया जा रहा था। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए, अरविंद ओझा का रुख करते हैं। अरविंद देखिए ये तस्वीरें भी हम आपको अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि देखिए दिल्ली पुलिस की टीम लेकर बाहर निकल गए, कई डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं, कौन से डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा या किसी और जगह पर इनको रखा जा सकता है?
10: देखिए देखिए जो अभी हमें जानकारी मिली है आज तक को एक्सक्लूसिव दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों के जरिए, वो ये कि अभिजीत, दीपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका, इन तीनों को एयरपोर्ट से दिल्ली पुलिस बाहर लेकर निकल चुकी है। दिल्ली पुलिस की ये तीनों हिरासत में है और इनको किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पर लेकर जाया जा रहा है। सुबह ध्रुव राठी को गुरुग्राम से दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम पुलिस की मदद से उठाया था, तो सीजेपी से जुड़े जो बड़े चेहरे हैं उनको अब दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनको अनडिस्क्लोज लोकेशन पर ले जाया जा रहा है। बहुत मुमकिन है कि आज देर शाम उनको दिल्ली पुलिस छोड़े, लेकिन अभी प्रिवेंटिव डिटेंशन में उनको रखा गया है क्योंकि पहले ही ये बात तय थी। और देखिए एयरपोर्ट पर जैसे ही वो लैंड किए हैं दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंच गई है। उसके अलावा जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, कोशिश करता हूं कैमरा पैन करके जरा प्रदीप गुप्ता आपको दिखाएं कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। जो आप पूछ रहे थे हिमांशु, सुशांत, मैं आपको बता दूं
9: और देखिए लगातार तस्वीरों में आपको कोई टेक्निकल दिक्कत है, इसलिए हम एक बार फिर से अपने सहयोगी का रुख करेंगे, लेकिन ये बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दे।
3: अंशुल हमारे सहयोगी हमारे साथ में, अंशुल के पास ले चलते हैं। अंशुल क्या हो रहा है वहां बताइए।
11: जी यहाँ पर एक जो टसल है वो कहीं ना कहीं शुरू होता हुआ दिख रहा है। अगर आपको इमानुअल तस्वीरों में दिखाएं तो एक तरफ ये सारे प्रोटेस्टर्स हैं जो यहाँ इकट्ठा हो गए थे, ये हनुमान मंदिर की पीछे वाली गली है, बहुत पास है जंतर मंतर के, और यहाँ देखिए किस तरीके से चार्ज का अब कमांड, कहीं ना कहीं अब पुलिस वाले अब दौड़ के इन प्रोटेस्टर्स को यहाँ से तितर बितर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो नई दिल्ली इलाके के डीसीपी हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके कमांड में ये जो पूरा इलाका है अब खाली कराया जा रहा है। देखिए कितनी भारी संख्या में जो है यहाँ ये जो प्रोटेस्टर्स है ये यहाँ पहुंचे थे, सबने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ है और सब यहां आगे बढ़ बढ़ के पुलिस से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर जैसे ही पुलिस थोड़ा चार्ज कर रही है यहां से भाग जा रहे हैं। तो एक वो आंख में चोली का खेल जो है पुलिस के साथ और प्रशासन के साथ लगातार ये प्रोटेस्टर्स जो है इस वक्त खेल रहे हैं। देखिए कितनी भारी संख्या में यहां काफी ज्यादा एक्शन जो है, अभी हनुमान मंदिर के बिल्कुल सामने की बात कर रहे हैं हम, और ये हनुमान मंदिर के सामने यहां कई सारे प्रोटेस्टर्स ऐसे थे जो इकट्ठा हो गए थे और अब उन्हें यहां से निकाला। ये देखिए सामने एक बार फिर से ये प्रोटेस्टर्स जो हैं वो वहां पे रुके हैं, वहां खड़े हैं, और वहीं दूसरी तरफ इमानुअल दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए यहां पे पुलिस सामने प्रोटेस्टर्स बिल्कुल कहीं ना कहीं आमना सामना होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जैसे ही पुलिस को कमांड मिलता है वो आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते ही ये सारे प्रोटेस्टर जो है यहां से तितर बितर हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एक्शन जो है एक बार फिर से यहाँ नई दिल्ली की सड़कों पर दिखने को मिल रहा है। इतनी ज्यादा प्लानिंग के बाद भी, इतने ज्यादा लोगों को ग्राउंड पर उतारने के बाद भी करीब 20-22 हजार लोग जो पुलिस पर्सनल हैं वो इस वक्त नई दिल्ली में तैनात है। उसके बाद भी कई सारे ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जो नई दिल्ली में घुस पाए हैं और नई दिल्ली में घुस करके ये प्रोटेस्ट अभी कर रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल में करती है। देखिए तस्वीरें देखिए, ये नई दिल्ली इलाके के जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, जो बॉस है सचिन शर्मा, वो अभी यहाँ पे मौजूद हैं। वो इस पूरे इलाके में ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है शांति बनी रहे। ये देखिए उस तरफ से भी, गेट से भी कुछ लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे भी पुलिस वाले अब पहुंच गए हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ पर इकट्ठा ना हुए, ये पूरी तरीके से गैरकानूनी है, पुलिस एक्शन ले सकती है। लेकिन जो ये प्रदर्शनकारी हैं ये कहीं ना कहीं पुलिस से भिड़ने के लिए अभी तैयार हैं और जैसे ही पुलिस आती है यहाँ से भागती है। देखिए री एनफोर्समेंट आया है, महिला अफसरों का भी री एनफोर्समेंट आया है। यहाँ पर एक के बाद एक सैकड़ों की संख्या में अब जो पुलिस वाले हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो अब यहाँ पर डिप्लॉय हो गए हैं। अभी से कुछ देर पहले ही यहाँ पे काफी ज्यादा नारेबाजी होनी शुरू हुई थी और जैसे ही पुलिस को पता लगा कि इस तरफ इकट्ठा हो रहे हैं, वैसे ही ये बहुत भारी तादाद में जो है पुलिस को यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया। आप देखें वहां फिर सामने हमसे कुछ 50 से 60 मीटर आगे ही जो है ये सारे प्रोटेस्टर्स जो है वो वहां पर इस वक्त भी खड़े हैं। और देखिए फिर इन्हें लगा कि पुलिस आ रही है तो फिर वहां से जो है ये लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से जो पुलिस है, पुलिस के साथ ये लोग पुलिस को चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं और फिर जैसे ही पुलिस आगे आ रही है ये वहां से भाग रही है। देखिए आप पीछे से पुलिस आई, आइए मैं इमानुएल आगे आइए, आगे चल के मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ थोड़ी कि किस तरीके से ये जो पुलिस है, पुलिस के साथ ये लगातार आंख में छोली का खेल जो है ये चलाया जा रहा है। और एक के बाद एक जो ये प्रदर्शनकारी हैं थोड़ा आगे भागते हैं, रुकते हैं, पुलिस से बहस करते हैं, चढ़ाते हैं और उसके बाद जैसे ही पुलिस आगे बढ़ती है फिर वहां से जो है ये फरार हो जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पहुंच गए हैं, कुछ लोग अन्य लोग जो पहुंचे थे उन्हें डिटेन कर लिया गया है, लेकिन ये कुछ लोग अभी हैं जो यहाँ पे पुलिस के साथ ये खेल लगातार खेल रहे हैं।
8: बिल्कुल, और देखिए अंशुल हमारे सहयोगी हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंशुल एक बात बताइए, क्योंकि दिल्ली में कल रात से ही मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे नई दिल्ली के इलाकों के अंदर, इसके अलावा जो बैरिकेटिंग की जा रही थी, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ मेन रोड पे बल्कि सर्विस रोड, क्योंकि आप ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये मेरे ख्याल से सर्विस रोड का इलाका, यानी हनुमान मंदिर के पीछे की जो रोड है उनके पास का इलाका है, तो फिर भी यहां पर इतनी ज्यादा संख्या में लोग कैसे पहुंच रहे हैं?
11: जी देखें आप, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात बोली थी कि आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाया है, इन रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होने चाहिए और आप इन पर पूर्ण विचार कीजिए। तो जो मेट्रो स्टेशन पहले 57 थे उन्हें कम करके 45 किया गया और भी कई ऐसी सड़कें जो दिल्ली पुलिस ने सोच रखा था कि पूरी तरीके से बंद करेंगे उन्हें भी कहीं ना कहीं खोल दिया गया। इसके अलावा जो नॉर्मल पब्लिक का मूवमेंट है उसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट जो है वो दिल्ली पुलिस खड़ी नहीं कर रही। बस इतना हो रहा है कि जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और उन बैरिकेड्स पर लोगों को चेक किया जा रहा है, उनकी मंशा पूछी जा रही है, क्या वो सेंट्रल दिल्ली जा रहे हैं, क्या वो नई दिल्ली जा रहे हैं और वो क्या करना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ सवाल है जो इनसे पूछे जा रहे हैं और उसके हिसाब से जो है फिर आगे फैसला लिया जा रहा है कि क्या इन्हें आगे जाने दिया जाएगा या नहीं। तो अब देखिए यहां पे अब ये इतनी भारी संख्या में जो री एनफोर्समेंट है अब वो यहां पर आ गई है। ये जो ऑफिसर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एडिशनल डीसीपी हैं नई दिल्ली इलाके के और अब ये पूरा कंटेंजेंट जो है ये लीड करके आगे जा रहे हैं, प्रोटेस्टर्स की तरफ जा रहे हैं उनसे। ये देखिए इमानुएल अगर आप दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएं, दूसरी तरफ देखिए जैसे ही पुलिस आगे बढ़ रही है ये सारे प्रदर्शनकारी जो हैं अचानक से वहां से गायब हो जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पुलिस के साथ खेल चल रहा है ये पिछले 15 से 20 मिनट से इसी तरीके से ये प्रदर्शनकारी पुलिस को अपने पीछे लगवा रहे हैं और फिर वहां से फरार हो जा रहे हैं। और जैसे ही पुलिस थोड़ी देर के लिए रुकती है ये दोबारा रीग्रुप होते हैं और दोबारा रीग्रुप होकर आगे की तरफ चार्ज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस की प्लानिंग थी वो काफी डिटेल प्लानिंग थी, लेकिन अब देख के ऐसा लग रहा है कि जो प्रदर्शनकारी की भी प्लानिंग है वो भी काफी डिटेल में प्लानिंग की गई है। कैसे यहां तक पहुंचना है, इंटरनेट बंद है तो कम्युनिकेशन कैसे करना है, इन सब चीजों पे भी काफी डिटेल में जो है इनकी प्लानिंग दिखाई दे रही है। आप देखें जैसे ही पुलिस आगे बढ़ती है वहां से ये जो पूरा क्राउड है ये तितर बितर हो जाता है। आप मेरे सामने की तस्वीरें देखिए तो ये
4: जी शिवाजी बिल्कुल बिल्कुल अंशु देखिए आप लगातार ऐसे इलाकों से रिपोर्ट कर रहे हैं, आप अपना अपना भी ध्यान रखिए, लेकिन आपका दोबारा से रुक करेंगे, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को तमाम तस्वीरें दिखा दे जो इस समय नई दिल्ली के इलाकों से सामने आ रही है। आपको दिखा रहे हैं कि तस्वीरों में कि एक्शन मोड में है दिल्ली पुलिस, और देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से जंतर मंतर के इलाकों में जो प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं, महिला पुलिस उसमें से कई महिला प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर रही है, उनको आप देख सकते हैं कि उनको हटाने की कोशिश कर रही है, और ये तस्वीरें आपको डिटेंशन में ले जाते हुए या फिर उनको डिटेन करते हुए की तस्वीरें, जहां पर जो प्रदर्शनकारी थे वो जंतर मंतर की तरफ जब रुक कर रहे थे दिल्ली पुलिस ने उनको रोका, और दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो है उनके जो आप सुरक्षाकर्मी है वो लगातार इन लोगों को डिटेन करते हुए इनको हटाते हुए। और देखिए हम तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी अंशुल ने हमें भेजी थी, जो देखिए वो बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है, अलग अलग तस्वीर अलग अलग इलाकों की है। सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कि एक्शन मोड में दिल्ली पुलिस है, महिला पुलिस बल की तैनाती भी भारी संख्या में की गई, जंतर मंतर के इलाकों में खासतौर पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ आरएएफ की तैनाती की गई है, और जंतर मंतर के आसपास पिंक फोर्स भी मौजूद है यानी महिला पुलिस, और एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की मुस्तैदी है, और मेट्रो स्टेशनों पर भी बीएसएफ और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, आप देखते रहिए आज तक, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर, तरक्की का ऑलराउंडर।

0: सर गैसोफास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसोफास्ट 27%, इनो 9.2%।
1: गड़बड़ है।
2: आहा, गैसोफास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसोफास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
3: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
4: मेरे पास एक आइडिया है।
3: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
5: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
6: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
7: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
4: कौन सी बनानी है?
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
9: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
10: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
9: अब मैं चैन की नींद सो पाता कपीवा डायफ्री जूस।
11: जेके मैक्स वाइप इजी, दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।
12: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
13: जिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड,
14: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरनमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
15: एक परिवार, अटूट भरोसा।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। राजधानी दिल्ली फुल एक्शन में है। पाबंदी के बाद भी सीजेपी प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ रहे हैं। पुलिस दौड़ा दौड़ा कर प्रदर्शनकारियों को पकड़ रही है, उन्हें हिरासत में ले रही है। सवाल, दिल्ली पहुंचे सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप के काबे है कि क्या उन्हें एयरपोर्ट से बाहर आने दिया जाएगा या नहीं, लेकिन ये इसका जवाब मिल गया है। और मिल यह गया है कि उनको फ्लाइट से ही डिटेन किया जाता है और उसके बाद बस से उनको ले जाया जाता है। वो तस्वीर, वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त अभिजीत दीपके को बस में डिटेन किया गया और दूसरी तरफ दिल्ली में प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन जारी है, हालांकि उनको डिटेन किया जा रहा है।
0: बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी अपडेट बता दें कि अभिजीत दीपके और उनके दोनों साथियों को यानी सीजेपी के नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया, उन्हें डिटेन कर लिया गया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फ्लाइट के अंदर की, जब अभिजीत दीपके को डिटेन किया जा रहा था। और इसके अलावा जंतर मंतर और आसपास के नई दिल्ली के इलाकों की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं, उनको भी लगातार डिटेन किया जा रहा है। तमाम तस्वीरों के साथ साथ आपको एक बार फिर से अपने सहयोगी सुशांत मेहरा की तरफ लिए चलते हैं। सुशांत, इस समय आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर किस तरीके के हालात है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अंशुल जो तस्वीरें दिखा रहे थे मंदिर के पास की, हनुमान मंदिर के पास की, वहां पर बहुत ज्यादा प्रदर्शनकारी मौजूद थे। आप जहां पर मौजूद हैं वहां के क्या आलम है इस समय?
2: देखिए, मैं हनुमान मंदिर से महज करीबन 100-150 मीटर की दूरी पर हूँ। आप तस्वीरें देखिए कि पुलिस और तमाम प्रदर्शनकारियों में बीच में नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। ये देखिए कि तमाम प्रदर्शनकारियों को किस तरीके से पुलिस की तरफ से यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। ये महिला प्रदर्शनकारी है, इसके अलावा कई सारे प्रदर्शनकारी जो है वो पीछे की तरफ पहुंचेंगे। देखिए मुंह छुपाते हुए ताकि चेहरा जो है वो पहचान में ना आए, और मुंह पर रुमाल बांध करके कपड़ा बांध कर जो है पहुंच रहे थे उनको अब दिल्ली पुलिस यहाँ पर एकाएक जो है वो डिटेन कर रही है। और यहाँ से वो रास्ता हिमांशु अगर कहा जाए तो मंदिर की तरफ जाता है, और वहां पर भी बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे तो
0: जो गुरुद्वारा है। दूसरे सहयोगी का भी रुख करते हैं, आप सुशांत हमारे साथ बने रहिए, लेकिन एक बार फिर से अंशुल का रुख करते हैं। अंशुल, अभी आप जहां मौजूद थे, क्योंकि देखिए सुशांत भी हनुमान मंदिर के पास थे, आप भी वहां मौजूद हैं, आप जहां पर मौजूद है इस समय वहां के क्या हालात हैं?
3: जी, यहाँ लगातार एक्शन जो है पुलिस का किया जा रहा है। इमानुअल आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, अगर आप देखें यहाँ पर, अब हम ये बंगला साहिब गुरुद्वारा है, अब हम यहाँ पर पहुंच गए हैं और गुरुद्वारे के अंदर लगता है कि कुछ प्रोटेस्टर्स घुस गए हैं। तो अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, इमानुअल थोड़ा आगे आए, तस्वीरें दिखाइए कि ये जो लोग हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो शायद अब गुरुद्वारे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस ने रोकने की चेष्टा में। आप ये देखें, ये वाली जो बस है, इस बस में सारे डिटेनीज हैं जिन्हें अभी तुरंत दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है। यही लोग दिल्ली पुलिस को यही लोग नारे लगाकर वहां से भाग रहे थे, तो शूट एंड स्कूट वाली जो स्ट्रैटेजी कहते हैं वो यही पे थी। लेकिन यहाँ लगता है कुछ लोग अंदर जाने में सक्षम भी हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये गुरुद्वारा है तो यहाँ पे कोई भी पुलिसकर्मी या सिक्योरिटी फोर्स का जो आदमी है वो गुरुद्वारे के अंदर नहीं घुस रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे अन्य लोग भी हैं, यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे जो है कन्फ्रंट, ये कह रहे हैं कि यहाँ गुरुद्वारे में किसी को नहीं आने दिया जाएगा। तो जिस तरीके से पुलिस पर्सनल से, ये बंगला साहिब गुरुद्वारा है, दिल्ली का शायद सबसे मशहूर गुरुद्वारा होगा। इमानुअल, एक तस्वीर और एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा आपको। ये देखिए, ये एक बार फिर से जो प्रदर्शनकारी हैं ये बाहर निकले हैं दोबारा गुरुद्वारे से, और एक बार फिर से जैसे ही पुलिस आगे भाग रही है, ये देखिए गुरुद्वारे के अंदर ये सारे प्रोटेस्टर्स फिर से भाग रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जो पुलिस प्रशासन है वो किसी रिलीजियस प्लेस के अंदर नहीं घुसेगी, नहीं घुस सकती जब तक सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब नहीं हो जाती। तो आप देखें किस तरीके से जो ये बंगला साहब गुरुद्वारा है, यहाँ ये लोग घुस गए हैं पुलिस से बचने के लिए। ये बंगला साहब गुरुद्वारे के अंदर लोग घुस गए हैं, और जो बाहर की तस्वीरें हैं दूसरी तरफ, यहाँ लगातार जो है सिक्योरिटी जो है गुरुद्वारे के बाहर खड़ी है और रिस्ट्रेंट पर है, मैक्सिमम रिस्ट्रेंट इस वक्त दिखाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ से नारेबाजी हो रही है, प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है, पुलिस के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, अभद्र शब्दों का भी प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ से बहुत साफ साफ सुनाई दे रहा है। हम लोग क्योंकि यहाँ पर है बिल्कुल सामने, तो बहुत ही गंदी भाषा में भी यहाँ से जो है पुलिस पर वो किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो लोग गुरुद्वारे के अंदर घुस गए हैं, ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस यहाँ से जाए तो एक बार फिर से ये यहाँ से बाहर निकले। तो एक ये जो प्लानिंग है, दिल्ली पुलिस ने काफी इलैबोरेट प्लानिंग की, लेकिन वही लग रहा है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं इनकी भी प्लानिंग काफी पुख्ता है, इनको पता है कौन कौन सी जगह जा सकते हैं जहां पुलिस नहीं आ सकती।
1: देखिए गुरुद्वारे की आड़ में यहां पर प्रदर्शनकारी अभी इस वक्त यहां पर छुप जाते हैं, एक सहारा ले लेते हैं क्योंकि जानते हैं कि कोई भी धार्मिक स्थल पर पुलिस नहीं जाएगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन बड़ी खबर आज की वो हम आपको बता दें कि अभिजीत दिपके, सौरभ दास, आशुतोष शांका को प्लेन से ही हिरासत में ले लिया गया और उसके बाद बस में बैठाकर उनको एयरपोर्ट से बाहर ले जाया गया है। ये बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं। सीजेपी के संस्थापक जब जैसे ही मुंबई से दिल्ली पहुंचे, प्लेन के अंदर ही उनको हिरासत में ले लिया गया। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे, अमित भारद्वाज के पास भी जाएंगे, लेकिन यहां पर आप सोचिए कि एक जैसे ही प्लेन यहां पर रुका उसी वक्त अभिजीत दीपके, आशुतोष शांका और सौरभ दास को हिरासत में लिया गया और उस वक्त अभिजीत दीपके लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, जो उनके समर्थक हैं उनको बता रहे थे कि ये देखिए कि कैसे पुलिस आ रही है, उनको डिटेन करने के लिए आ रही है। वो ये खुद कह रहे थे कि मैं तो अरेस्ट होने ही आया हूं, आइए मुझे अरेस्ट कीजिए, मैं तो अरेस्ट होने के लिए यहां पर आया हूं। और उसके बाद पुलिस आती है और बहुत विनम्रता के साथ कहती है कि बाहर आप प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं, उस प्रदर्शन की अनुमति आपको नहीं मिली है, हम आपको ये बताने आए हैं और आपको उसमें कोऑपरेट करना होगा।
4: सीजेपी के लोगों को डिटेन करने की अभी भी बात आ रही है, कैसे देखते हैं आप, क्या होगा आप दिल्ली एयरपोर्ट?
5: सबको तो अंदर कर दिया, आप देखते हो हमें भी अंदर कर।
4: सीजेपी के लोगों को डिटेन करने की अभी भी बात आ रही है, कैसे देखते हैं आप, क्या होगा आप दिल्ली एयरपोर्ट?
5: सबको तो अंदर कर दिया।
0: अमित भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े, अमित भारद्वाज का रुख करते हैं। अमित आप कहां पर मौजूद हैं और इस समय जिस तरीके से हमारे तमाम सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जंतर मंतर का इलाका हो, हनुमान मंदिर के आसपास का इलाका हो, आप जहां पर मौजूद है क्या वहां पर भी प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो रहे हैं?
3: देखिए जो विजुअल्स हम दिखा रहे थे असल में वो फ्लाइट का दिल्ली एयरपोर्ट का था, जहां आशुतोष, सौरभ और अभिजीत दीपके तीनों ही लैंड किए थे। खुद दिल्ली पुलिस की टीम, या आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इंस्टेंस में आप देखते हैं कि फ्लाइट के अंदर जाके डिटेंशन हो, जिसमें अभिजीत कह रहे हैं कि हम गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं, एनएसए लगाना है लगा लीजिए। लेकिन दिल्ली में असर क्या हो रहा है, देखिए इस वक्त हम आईटीओ पर हैं और लगातार बहुत देर से मैं कहूंगा कि जाम में हम फंसे हुए हैं, क्योंकि गाड़ियां रेंग रही हैं। संभवतः आगे फिर से मंडी हाउस का जो एरिया है, जिसको लेके दिल्ली पुलिस ने पहले भी ये एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि ये सारे क्लॉक पॉइंट्स होंगे जहां पे ट्रैफिक मूवमेंट नहीं होगा, सुचारू नहीं रहेगा। उसी पॉइंट पे लगभग आप मान के चलिए कि हम पहुंचे हुए, अक्षरधाम पे हम थोड़ी देर पहले थे, तो वहां पे बैरिकेड्स लगा के दिल्ली पुलिस लगभग हर वो ऑटो, बाइक या गाड़ी की चेकिंग कर रही है जिसमें उन्हें जेंजीज या यूथ दिखाई दे रहे हैं, युवा दिखाई दे रहे हैं बैकपैक्स के साथ, तो उनसे सवाल जवाब भी किया जा रहा है। लेकिन ये चौराहा जो है आईटीओ का एक इंपॉर्टेंट जंक्शन, वहां पे देखिए कैसे गाड़ियों की मूवमेंट लगभग रेंगते हुए रफ्तार में है, क्योंकि संभवतः आगे बैरिकेड्स होगी और दिल्ली पुलिस की चेकिंग भी हो रही है।
0: बिल्कुल, और शायद आपको याद होगा कि इससे पहले भी दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी दी थी कि डाइवर्जेंस को लेकर, और कल जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि पुलिस और जो संस्थान है वो लगातार लोगों को इसके बारे में अवगत कराते रहे, लेकिन तमाम फिर भी अभी कई जगहों पर जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे अमित भारद्वाज कि आईटीओ के आसपास के इलाकों में गाड़ियों का जाम लगा हुआ, ट्रैफिक जाम है। लेकिन ये तस्वीरें एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता के या ब्रीफ करें कि कैसे इस समय हालात हैं नई दिल्ली के इलाकों में। सीजेपी का प्रदर्शन जारी है, नई दिल्ली के कई इलाकों में इस तरीके से प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद हैं।
1: अंशुल भी हमारे साथ, देखिए आज तक के अलग अलग रिपोर्टर अलग अलग जगह पर हैं, वहां की जमीनी हकीकत आप तक पहुंचा रहे हैं। अंशुल आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर अभी क्या हालात है, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जो गुरुद्वारे में पहुंच गए थे और वहां से भी कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था पुलिस के लिए, अभी वहां पर कैसे हालात है?
6: जी अभी भी वैसे ही कुछ हालात बने हुए हैं, अंदर से थोड़ी देर पहले नारेबाजी शुरू हुई थी, लेकिन वहां जो लोग थे, जो गुरुद्वारे के लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस पर ऑब्जेक्शन दिखाया और अब नारेबाजी कम से कम खत्म हो गई है। लेकिन आप देखें अभी भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी इस वक्त यहीं गुरुद्वारे के अंदर ही खड़े हैं, और दूसरी तरफ की तस्वीरें देखें तो यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ही अगर ये इनमें से कोई भी बाहर निकलने की कोशिश करता है, कोई भी बाहर आने की कोशिश करता है, तो उसे तुरंत जो है कंट्रोल में करके यहाँ से डिटेन करके ले जाया जाएगा। तो पुलिस का जो प्लान है ये काफी ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है इस वक्त। आप देखें ये बंगला साहिब गुरुद्वारा है और बंगला साहिब गुरुद्वारे में ही करीब ज्यादातर अभी जो आपको भीड़ दिख रही है वो शायद इसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो शायद अपने आप को इंडिपेंडेंट मीडिया बोले या अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बोले, लेकिन अंदर कुछ ऐसा क्राउड है जिनके हाथ में कैमरा नहीं है और वो लोग हैं जो प्रदर्शनकारी है। तो कहीं ना कहीं जो है ये कन्फ्रंटेशन की जो सिचुएशन है ये लगातार यहाँ पर बनी हुई है।
1: अच्छा, और ये बात बताइए, गुरुद्वारा है क्या, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से बात की जा रही है दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की तरफ से?
6: जी अभी किसी तरीके का कांटेक्ट नहीं किया गया है। कल देर शाम को यहाँ बिल्कुल बात हुई होगी यहाँ पर, और उन्हें भी बोला गया होगा कि गुरुद्वारे पे भी एंट्री पर कि कौन है यहाँ पर। आप कौन है? बदमाशी नहीं। आप धक्का मुक्की नहीं। तो आप देखिए, ये जो प्रदर्शनकारी हैं इनका गुरुद्वारे से कोई लेना देना नहीं है, प्रदर्शनकारी हैं और इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं, मीडिया के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे हैं
1: जगह जगह,
6: और बचने के लिए गुरुद्वारे के अंदर भाग जा रहे हैं।
0: और ये
6: पुलिस से बचने के लिए गुरुद्वारे के अंदर भाग जा रहे हैं क्योंकि पुलिस का SOP है, वो नहीं घुस सकते ऐसे रिलीजियस प्लेसेस में, पुलिस नहीं घुस सकती।
0: और देखिए, पता है अंशुल, आपका दोबारा से रुख करेंगे, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे और ये भी बता रहे हैं कि इस समय ताजा हालात कैसे हैं, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को एक बड़ा अपडेट देते हैं कि CJP की जो लीगल टीम की हेड है उनको भी हिरासत में लिया गया है, उनको भी डिटेन किया गया है। जी हाँ, लीगल टीम के हेड को लगातार डिटेन किया गया है। आपसे इससे पहले थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि CJP के कई नेताओं को, अभिजीत दिपके हो, आशुतोष रांका हो और इसके अलावा सौरभ दास हो, उनको भी फ्लाइट से ही डिटेन किया गया था। और अब लीगल टीम की हेड रत्ना सिंह को भी डिटेन किया गया है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि प्रिवेंटिव एक्शंस के तौर पर दिल्ली पुलिस ने कल भी बताया था कि हम ये एक्शंस लेंगे और उसी के बाद इन लोगों को डिटेन किया गया।
7: आज फॉर ऑफिशियल कुछ नोटिफिकेशन है उनके पास, कुछ भी नहीं है उनके पास, वो बस कह रहे हैं तुम्हें डिटेन करना है, हमें ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, आई डोंट नो कौन से ऊपर से ऑर्डर्स आए उनको, एंड बार बार ये बोल रहे हैं आप गाड़ी से उतरो, हमारे साथ घर पे ही डिटेन हो, वो मुझे कहीं और भी नहीं ले जाना चाहते, दे वॉन्ट मी टू स्टे योर ओनली एंड आई एम नॉट गेटिंग आउट ऑफ द कार, दे आर नॉट लीविंग द स्पेस, सो आई एम।
0: और देखिए, ये रत्ना सिंह थी जो CJP की लीगल टीम की हेड थी, इनको भी डिटेन किया था। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया, उन्होंने बताया कि देखिए मुझको भी डिटेन किया जा रहा, तमाम अलग अलग CJP के जो नेता हैं, संस्थापक हैं, अभिजीत दिपके हो या फिर उनके बाकी नेताओं, सौरभ दास हो, आशुतोष रांका हो और रत्ना सिंह, तमाम लोगों को, तमाम नेताओं को डिटेन किया गया है।
1: इस दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से जंतर मंतर तक मार्च कर रहे वकीलों को हिरासत में लिया गया है। मतलब जो भी प्रदर्शन कर रहा है उसको दिल्ली पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से जंतर मंतर तक मार्च कर रहे वकीलों को अब हिरासत में ले लिया गया और एक बार फिर से उन्हें बस में भर के डिटेन किया गया है। अलग अलग जगह पर 100 से ज्यादा बसें मौजूद हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, RAF के जवान भी वहां पर मौजूद हैं, CAPF के भी हैं, कई जगह तो BSF भी है। तो यहाँ जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर दिख रहे हैं, जिनके हाथों में बैनर, पोस्टर है, तख्तियां हैं, झंडे हैं, उनको तुरंत हिरासत में लिया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में CPIM महासचिव MA Baby को भी हिरासत में लिया गया है और जंतर मंतर मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। CPIM के कई वरिष्ठ नेता भी हिरासत में लिए गए हैं। अब इनमें किनका नाम है? इनमें वृंदा करात का नाम है, MV गोविंदन का नाम है और PK श्रीमती का भी नाम है। P राजीव को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। जंतर मंतर पर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर यह मार्च निकाला गया था, CPIM की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन सभी बड़े नाम, उन सभी को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कह दिया है कि अगर आप सड़क पर आएंगे, प्रदर्शन करेंगे तो आपको हिरासत में लिया जाएगा, क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा BNSS की धारा, संहिता की धारा 163 लगी है, तो ऐसे में प्रदर्शनकारियों को
0: हिरासत में लिया जा रहा। जी हाँ, हमारे साथ एक बार फिर से हमारे सहयोगी अंशुल हमारे साथ जुड़े हैं। अंशुल का रुख करते हैं, अंशुल अभी वहां के क्या हालात हैं?
6: जी हालात अभी भी कहीं ना कहीं काफी तनावपूर्ण है। अगर मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाऊं तो ये जो बंगला साहिब गुरुद्वारा है उसके बाहर की तस्वीरें हैं। बाहर जो लोग खड़े हैं ये ज्यादातर अपने आप को इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बोलने वाले लोग हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो अंदर की तरफ है। इन्हें पता है कि दिल्ली पुलिस जो है इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, लेकिन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन ले सकती है, उन्हें डिटेन कर सकती है, और इसलिए जो ज्यादातर प्रदर्शनकारी हैं वो इस वक्त गुरुद्वारे के अंदर हैं और उन्हें यह भी पता है कि जो पुलिस और पुलिस है वो गुरुद्वारे के अंदर नहीं घुस सकती है, ऐसा हमने पिछली बार भी होते हुए देखा था। जब पिछली बार 20 जुलाई को भी दिल्ली की सड़कों पर अराजकता फैली थी तो उस वक्त भी कई ऐसे प्रदर्शनकारी थे जो गुरुद्वारे के अंदर घुस गए थे। अब देखिए किस तरीके से मैसेजिंग की जा रही है, आप सामने देखें, यहां अब दिल्ली पुलिस का फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है बिल्कुल बंगला साहिब गुरुद्वारे के सामने से, कहीं ना कहीं ये बताने के लिए कि भारी संख्या में पुलिस बल यहां तैनात है और अगर कोई भी प्रदर्शनकारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, उसको हिरासत में लिया जाएगा। ये डीसीपी नई दिल्ली है अभी जो यहां एक बार फिर से यहां पहुंचे हैं, सचिन शर्मा जो नई दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, ये यहां पे खुद पहुंचे हैं एक बार फिर से। और देखिए अब यहां पे जो बात हो रही है, यहां जो एसजीपीएसएफ प्रबंधक कमेटी है उसके लोगों से, जो यहां के समझदार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बात करके पुलिस इनसे समझाने की कोशिश कर रही है कि इन लोगों को यहां से यहां पे घुसने की इजाजत ना दी जाए और इन्हें यहां से निकाला जाए। और अगर अंदर घुस गए हैं तो शायद पुलिस ये भी सुनिश्चित करे कि पूरे गुरुद्वारे का गेट बंद कर दिया जाए और फिर इन लोगों को बाहर ना निकलने दिया जाए, क्योंकि पुलिस का जो टारगेट है, जो एम है, वो ये सुनिश्चित करना है कि दिल्ली की सड़कों पर अराजकता ना फैले और उसके लिए जो भी कदम उठाने हो वो उठा सकते हैं। इमानुएल,
1: चलिए अगर आप शुरू कर लेते हैं, उनके पास क्या खबर है ये जान लेते हैं। बताइए आपके पास क्या जानकारी है?
8: देखिए मंडी हाउस के पास से तस्वीरें हैं, ये युवा थे जो जेंजीज हैं, साथ में बैग है, मास्क है, दिल्ली पुलिस के अधिकारी उनको रोकते हैं और सवाल जवाब करते हैं। ये लुटियन शैली की तरफ बढ़ रहे थे, जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन उनको रोक लिया गया है। क्या बोला जा रहा है आप लोगों को, आप लोग कहाँ जा रहे थे, क्यों वापस भेजा जा रहा है आप लोगों को?
9: भूख लग रही थी, खाना खाना था, यहाँ सब बंद है जी। और वॉशरूम की फैसिलिटीज भी नहीं है, तो हम बस वॉशरूम की फैसिलिटी या कुछ यही सब देखने के लिए निकल रहे थे क्योंकि यहाँ पर सब बंद था। तो बस वही ढूंढने लेते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि इस तरफ से हमें डिटेन कर लिया जाएगा जो कि हम चाहते नहीं, तो हम उधर खा पी लेंगे।
8: आप लोग प्रोटेस्ट के लिए भी आए थे?
10: हम आए तो
8: लेकिन
10: पुलिस ने कहा है वापस में, तो उन्होंने बोले कि नहीं आ सकते यहाँ से, मना कर रहे हैं।
8: तो देखिए जो युवा हैं अपनी तैयारी के साथ आ रहे हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस उनको बता रही है कि अगर आप आगे जाओगे तो आपको डिटेन किया जाएगा। जगह जगह पे इस तरह से BNSS 163 की धारा लागू है और वकील जो युवा जो भी यूथ आपको दिखाई देगा।
0: और शायद अमित यही बात है कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो इस समय मौजूद हैं सड़कों पर नई दिल्ली की, वो इन तमाम युवाओं से प्रदर्शनकारियों को पहले बता देते हैं कि देखिए इस इलाके में BNSS की धारा जो 163 लागू है, अगर आप जाते हैं प्रदर्शन करते हैं तो आपको हिरासत में लिया जा सकता है और शायद इसी वजह से कुछ जो प्रदर्शनकारी युवा है वापस जा रहे हैं। चले वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
14: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
15: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
14: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ कपीवा डायबिटीज जूस।
16: जेके मैक्स वाइप इजी, दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: आ गया सोमवार और आ गए
3: चकमक चाचा।
2: एक कचौड़ी दो समोसा चकमक तेरा क्या भरोसा।
4: चकमक चाचा से सीधे चकमक है।
2: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, पूछ रहा है नारा।
4: लेकिन भैया नारा, अरे फालतू में सब बेकार, एकदम बेकार। नारे होते थे हमारे टाइम।
2: अच्छा
4: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
2: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
4: अरे जमीन के चकबंदी में, जमीन के चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में।
2: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
4: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
2: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा लेके जाएंगे।
4: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
2: अरे लाल फूल नीला फूल, जंजी नन्हे ब्यूटीफुल।
4: अरे बारी बारी सबकी बारी, अबकी बारी अनिल बिहारी।
2: चाय गरम दूध गरम, चकमक चाचा भी शरम।
4: है
2: हाँ,
4: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
2: अरे मेरे सिर में दर्द है, जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
5: हम जैसे, इधर आओ।
6: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
2: आई चाचा।

0: आ गया सोमवार और आ गए
1: चकमक चाचा।
0: एक कचौड़ी, दो समोसा, चकमक तेरा क्या भरोसा।
2: चकमक चाचा से सीधे चकमक है।
0: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, बुझ रहा ना।
2: लेकिन भैया नारे, अरे फालतू सब बेकार, एकदम बेकार। नारे होते थे हमारे टाइम।
0: अच्छा
2: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
0: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
2: अरे जमीन के चकबंदी में, जमीन के चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में।
0: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
2: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
0: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा लेके जाएंगे।
2: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
0: अरे लाल फूल, नीला फूल, जंजी नन्हे ब्यूटीफुल।
2: अरे बारी बारी, सबकी बारी, अब की बारी अनिल बिहार।
0: चाय गरम, दूध गरम, चकमक चाचा भी शर्म
2: है।
0: हाँ,
2: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
0: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
3: हम जैसे, इधर आओ।
4: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: मायावती सत्यनिष्ठा के प्रतिज्ञा करती हूँ।
1: मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
2: मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ।

0: जेके मैक्स वाइप इजी, दीवारों के दाग का जवाब सर जेके मैक्स वाइप इजी।
1: जो आंदोलनकारी उन्होंने तो आपकी तारीफ की, मतलब जितना मैंने सुना है उसमें तो हमने देखा कि वो कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस सॉफ्ट हार्टेड आदमी है, उन्होंने हम पर लाठीचार्ज नहीं किया, उन्होंने हमें आंदोलन करने दिया। जबकि दिल्ली में हमने देखा कि उसको लेकर काफी गुस्सा था कि लाठीचार्ज जिस तरीके से किया गया, जिस तरीके से पुलिस ब्रुटैलिटी रही। आप मतलब आपका नजरिया थोड़ा अलग है उसको लेकर, या आपको लगता है कि बेहतर तरीके से दिल्ली का आंदोलन हैंडल किया जा सकता था?
2: ऐसा है कि अगर मेरी आपके मालिक को गाली देने की इच्छा है तो मैं कहूंगा साहिल अच्छा आदमी है, मालिक खराब है। प्रॉब्लम मालिक का है, साहिल बहुत बढ़िया आदमी है, साहिल जैसा आदमी नहीं है। ये बहुत कॉमन है, इससे साहिल ने खुश नहीं होना चाहिए। साहिल को समझना नहीं, होना ही नहीं चाहिए साहिल को। यह समझना, अगर साहिल को यह समझा नहीं है कि भाई ये किस लिए बोल रहे हैं कि साहिल बहुत अच्छा आदमी है, तो फिर तो मतलब सॉरी टू से, पर इससे बड़ी मूर्खता तो कुछ हो नहीं सकती ना साहिल।
1: चले ठीक है आप, लेकिन मैं ये तो पूछ सकता हूं ना कि जो दिखता है वो तो हम पूछ ही सकते हैं ना। ये बात भी तो सही है कि आपकी पुलिस ने बड़ी समझदारी से इस पूरे आंदोलन को हैंडल किया। देर वॉज नॉट अ सिंगल केस ऑफ लाठी चार्ज, देर वॉज नॉट अ सिंगल केस ऑफ फायरिंग, मतलब जो टीयर गैस छोड़ा जाता है, देर इज नॉट अ सिंगल केस ऑफ दैट। कोई ब्रुटैलिटी की खबर नहीं आई। इनफैक्ट महाराष्ट्र वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद सबसे पहले केसेस वापस लेने में भी महाराष्ट्र था। कोई भी ऐसी धाराएं FIR में नहीं लगाई गई जिसके वजह से आप उनको क्रिमिनलाइज करें या स्टूडेंट्स को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े। ये भी तो रियलिटी है, इसीलिए तो कह रहे हैं, इसीलिए तो तारीफ हो रही है।
2: देखिए
1: अब इसमें आप वो तारीफ नहीं लेना चाहते, उसके लिए मैं कुछ नहीं करता।
2: देखिए अगर वो सही मन से तारीफ करते ना तो मैं खुशी खुशी तारीफ ले भी लेता, उनको थैंक यू भी बोल देता, पर उस तारीफ के पीछे का डिजाइन मुझे मालूम है,
1: देयर इज अ ट्रैप।
2: इसलिए ऐसी तारीफ ठीक है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, नॉर्मली महाराष्ट्र में हमेशा हमारी ये पॉलिसी रही है कि जहां तक हो सके एंगेज करिए, और जब तक कानून व्यवस्था का एक्सट्रीम प्रयास, मतलब को एक्सट्रीम हानि जब तक नहीं पहुंचती है तब तक हम बल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन कभी कभी ये होता है, आप देखिए जैसे दिल्ली में हुआ कि अगर ये लोग संसद चले जाते, सवाल वो नहीं होता है, कुछ लोग संसद चले जाएंगे तोड़फोड़ करेंगे, इससे देश की बदनामी होती है, इससे पुलिस फोर्स की बदनामी होती है, और दुनिया में यह संदेश आ जाता है कि ये देखिए कितनी वीक डेमोक्रेसी है, ये कितनी वीक

0: JK Maxx Wipe Easy.
1: दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ JK Maxx Wipe Easy.
2: जो आंदोलनकारी उन्होंने तो आपकी तारीफ की, मतलब जितना मैंने सुना है उसमें तो हमने देखा कि वो कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस सॉफ्ट हार्टेड आदमी है, उन्होंने हम पर लाठीचार्ज नहीं किया, उन्होंने हमें आंदोलन करने दिया. जबकि दिल्ली में हमने देखा कि उसको लेकर काफी गुस्सा था कि लाठीचार्ज जिस तरीके से किया गया, जिस तरीके से पुलिस ब्रुटैलिटी रही. आप मतलब आपका नजरिया थोड़ा अलग है उसको लेकर, या आपको लगता है कि बेहतर तरीके से दिल्ली का आंदोलन हैंडल किया जा सकता था?
3: ऐसा है कि अगर मेरी आपके मालिक को गाली देने की इच्छा है तो मैं कहूंगा साहिल अच्छा आदमी है, मालिक खराब है. प्रॉब्लम मालिक का है, साहिल बहुत बढ़िया आदमी है, साहिल जैसा आदमी नहीं है. ये बहुत कॉमन है, इससे साहिल ने खुश नहीं होना चाहिए. साहिल को समझना नहीं होना ही नहीं चाहिए. साहिल को यह समझना, अगर साहिल को यह समझा नहीं है कि भाई ये किस लिए बोल रहे हैं कि साहिल बहुत अच्छा आदमी है, तो फिर तो मतलब सॉरी टू से, पर इससे बड़ी मूर्खता तो कुछ हो नहीं सकती ना साहिल.
2: चले ठीक है आप, लेकिन मैं ये तो पूछ सकता हूं ना कि जो दिखता है वो तो हम पूछ ही सकते हैं ना. ये बात भी तो सही है कि आपकी पुलिस ने बड़ी समझदारी से इस पूरे आंदोलन को हैंडल किया. देर वॉज नॉट अ सिंगल केस ऑफ लाठी चार्ज, देर वॉज नॉट अ सिंगल केस ऑफ फायरिंग, मतलब जो टीयर गैस छोड़ा जाता है, देर इज नॉट अ सिंगल केस ऑफ दैट. कोई ब्रुटैलिटी की खबर नहीं आई. इनफैक्ट महाराष्ट्र वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद सबसे पहले केसेस वापस लेने में भी महाराष्ट्र था. कोई भी ऐसी धाराएं FIR में नहीं लगाई गई जिसके वजह से आप उनको क्रिमिनलाइज करें या स्टूडेंट्स को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े. ये भी तो रियलिटी है, इसीलिए तो कह रहे हैं, इसीलिए तो तारीफ हो रही है.
3: देखिए
2: अब इसमें आप वो तारीफ नहीं लेना चाहते, उसके लिए मैं कुछ नहीं करता.
3: देखिए अगर वो सही मन से तारीफ करते ना तो मैं खुशी खुशी तारीफ ले भी लेता, उनको थैंक यू भी बोल देता. पर उस तारीफ के पीछे का डिजाइन मुझे मालूम है,
2: देयर इज अ ट्रैप.
3: इसलिए ऐसी तारीफ ठीक है. लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, नॉर्मली महाराष्ट्र में हमेशा हमारी ये पॉलिसी रही है कि जहां तक हो सके एंगेज करिए, और जब तक कानून व्यवस्था का एक्सट्रीम प्रयास, मतलब को एक्सट्रीम हानि जब तक नहीं पहुंचती है तब तक हम बल का प्रयोग नहीं करते. लेकिन कभी कभी ये होता है, आप देखिए जैसे दिल्ली में हुआ कि अगर ये लोग संसद चले जाते, सवाल वो नहीं होता है. कुछ लोग संसद चले जाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, इससे देश की बदनामी होती है, इससे पुलिस फोर्स की बदनामी होती है, और दुनिया में यह संदेश जाता है कि ये देखिए कितनी वीक डेमोक्रेसी है, ये कितनी वीक कंट्री है कि जिसके संसद में लोग घुस जाते हैं और संसद के अंदर एक प्रकार से तोड़फोड़ हो जाती है, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होता है. देश की अल्टीमेटली एक जो हमारा डिटेरेंट होता है दुनिया में, एक मजबूत देश, ये उसके लिए इसकी हानि होती है. ये तो इसीलिए कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है कि जब कोई मानने को तैयार नहीं होता, लोग कानून हाथ में ले लेते हैं, जो संविधानिक व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को तोड़ देते हैं, तो बल का प्रयोग तो करना पड़ता है. पर बल का प्रयोग अंतिम होना चाहिए, और महाराष्ट्र में हम लोग बहुत संयम के साथ प्रयास ये करते हैं कि बल का प्रयोग कम से कम करना पड़े.

0: नहीं पड़े हैं।
1: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई। ट्रैवल लायंस कोई गांजा फूक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
0: तुम्हारा
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
0: यार काट देना ये।
3: क्या आप

0: अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

से ही हिरासत में लिए गए सीजेपी के अभिजीत दिपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका बस में बिठा कर ले गई पुलिस। प्लेन में आज तक से कहा सबको हिरासत में लिया गया, मैं गिरफ्तार होने आया हूं। दिल्ली से अब तक सैकड़ों प्रदर्शनकारी हिरासत में, जंतर मंतर और कनॉट प्लेस के पास जबरदस्त किलेबंदी, 4 किलोमीटर दायरे में इंटरनेट सेवाएं ठप, मेट्रो के 45 स्टेशन बंद, राजधानी की सारी सीमाओं पर चेकिंग।

योगी सीजेपी फैला रही अराजकता, राहुल गांधी का पोस्ट, ज्ञानेश भी जाएंगे, सरकार भी जाएगी। राष्ट्रपति से इंडिया गठबंधन के नेताओं की मुलाकात के बाद राहुल गांधी का दावा, महामहिम से हमसे मांगे हैं वोट चोरी के सबूत, हम उन्हें हर प्रमाण देंगे। बीजेपी बोली, संवैधानिक सीमा लांघ रहे हैं राहुल गांधी। उपचुनावों में बीजेपी एनडीए के शानदार प्रदर्शन पर बम बम बीजेपी, पीएम मोदी ने कहा इस जनादेश से मिलेगा और मजबूती। अमित शाह बोले, राहुल के झूठ और दुष्प्रचार के बावजूद बड़ी जीत।

0: नमस्कार, लगातार कवरेज में आपका जारी है, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी और चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन पर दिल्ली में पुलिस एक्शन जारी है। जी हां, सुबह से प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ के बीच कांग्रेस जनता पार्टी के नेताओं को एक एक कर पुलिस हिरासत में ले चुकी है। मुंबई से विमान जब दिल्ली लैंड करता है तो कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत देव के सीजीपी के सह संयोजक सौरभ दास आशुतोष शाखा को पुलिस ने विमान में ही हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी को भी गुरुग्राम सेक्टर 56 से उनके घर से ही हिरासत में ले लिया गया, जबकि सीजेपी के लीगल सेल की हेड रत्ना सिंह को भी दिल्ली स्थित उनके आवास से उनके घर से हिरासत में ले लिया गया। सीजेपी की प्रवक्ता मेहर को भी उनके घर से हिरासत में ले लिया गया। आपको बता रहे कि तमाम बड़े अपडेट की कैसे आज सुबह से ही दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के कई नेताओं को उन्हीं के घरों से डिटेन कर लिया है, या फिर जो सीजेपी के संस्थापक थे, सह संस्थापक थे, वो जब दिल्ली पहुंचे मुंबई से, तब उनको भी फ्लाइट के अंदर ही डिटेन कर लिया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आज दिल्ली के अंदर कैसे दिल्ली पुलिस ने घेराबंदी कर रखी है, मोर्चेबंदी कर रखी है प्रदर्शन को लेकर, सीजेपी की तरफ से जो प्रदर्शन का ऐलान किया गया था।
1: अरे एक सेकंड, मेरा अरे सुनने के लिए आया हूँ, अरे सुनने के लिए आया हूँ,
0: और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे ये तब की तस्वीरें हैं जब फ्लाइट में अभिजीत देव के दिल्ली लैंड करते हैं, तब उनको दिल्ली पुलिस के अधिकारी उनको फ्लाइट में ही डिटेन करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन के ऐलान के बाद से दिल्ली को भी घेराबंदी में मोर्चेबंदी कैसी की गई है ये भी आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी दिल्ली के, नई दिल्ली के इलाकों में मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं अंशुल का, जो हमारे साथ मौजूद है, जो इस समय बाराखंबा के आसपास के इलाकों में, अखनौत प्लेस के आसपास के इलाकों में मौजूद है। अंशुल, आप जहां पर इस समय है वहां के ताजा हालात बताइए और अभी किस तरीके से प्रदर्शनकारी क्या उन इलाकों में अब भी मौजूद है, क्या पुलिस की तरफ से अब भी कुछ लोगों को डिटेन किया गया है?
2: जी बिल्कुल, ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और ये बंगला साहिब गुरुद्वारे के बाहर की तस्वीर है। आप देखें यहाँ पे, आप जो डिटेंशन है ये स्टार्ट हो गया है। अचानक से कुछ प्रदर्शनकारी जो है थोड़ी देर के लिए बाहर आए थे और जैसे ही बाहर आए वो उनको दिल्ली पुलिस ने यहाँ हिरासत में लेकर के अब इस
0: बिल्कुल बिल्कुल अंशुल आप देखें, अंशुल आपका दोबारा से रुख करेंगे, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को चंडीगढ़ लिए चलते हैं जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सीसी गणेश कुमार को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि ना सिर्फ नई दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी इस तरीके के प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। चंडीगढ़ से कुछ तस्वीरें आई है वो आपको दिखाते हैं जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है।
3: घबराया हुआ चोर नेता जो देश का प्रधानमंत्री है और कर क्या सकता है, चोरी के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में ही डालता है वो।
0: साथ हमारे सहयोगी असीम बस्सी जुड़ गए, असीम बस्सी का रुख करते हैं। असीम, देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन चंडीगढ़ में भी किया जा रहा है। हम मनीष सिसोदिया को सुन रहे थे कि वो देखिए लगातार किस तरीके से सरकार पर आक्रामक हो रहे हैं।
4: जी हाँ, हम इस वक्त सेक्टर 17 में हैं और सेक्टर 17 में इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है मेरे पीछे, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट, और इस तरफ आप देखिए कि आम आदमी पार्टी की तमाम लीडरशिप, मनीष सिसोदिया, हरपाल चीमा, मिनिस्टर्स जो हैं वो, और आम आदमी पार्टी के लोग किस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस और पैरामिलिट्री उन्हें यहाँ से धकेल रही है। हमारे पीछे जो है वो इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का जो है वो दफ्तर है, लेकिन यहाँ पर आप विजुअल्स देखिए, भारी भीड़ में आम आदमी पार्टी यहाँ पर खड़ी है, बैरिकेडिंग हुई हुई है और पुलिस लगातार उन्हें धकेल रही है। आम आदमी पार्टी जो है ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग रही है, सड़कों पे है और ये प्रदर्शन सेक्टर 17 में हो रहा है और लगातार जो है ये कह रहे हैं कि हम सीजेपी के प्रोटेस्ट का जो है उसको भी समर्थन करते हैं और मांग कर रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जो है उनको रिमूव किया जाए, उनके ऊपर FIR रजिस्टर की जाए। सो ये हालात है चंडीगढ़ में, जहां आम आदमी पार्टी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस की तरफ बढ़ना चाहती है, वहीं जो है पुलिस उन्हें रोक रही है। लेकिन मेरे पीछे देखिए आप, ये वाटर कैनन का जो है अरेंजमेंट किया गया है, पैरामिलिट्री जो है वो यहां पर है और ये पूरे एरिया को सील किया गया है ताकि आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि हमारे पीछे जो है वो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है। जी हाँ
0: जी, असीम एक और बात, क्योंकि आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लगातार, क्या आम आदमी पार्टी के कई सीनियर लीडर्स भी वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि हम मनीष सिसोदिया की बाइट अपने दर्शकों को सुना रहे थे, क्या वहां पर और भी कई बड़े नेता मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के?
4: देखिए आम आदमी पार्टी से यहाँ मनीष सिसोदिया है, फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा है, कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह मुंडिया है और इनका जितना भी लोकल कार्डर और वर्कर है, कई कैबिनेट मिनिस्टर हैं इनके, बल्तेज पन्नू जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो जनरल सेक्रेटरी है वो है, मनीष सिसोदिया के अलावा बैटरी ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ मौजूद है। और आप देखिए धक्का मुक्की यहाँ किस तरह शुरू हुई है, लगातार जो है आम आदमी पार्टी के वर्कर्स लीडर्स और चंडीगढ़ पुलिस और पैरामिलिट्री के बीच में, ये बैरिकेडिंग के ऊपर हम खड़े हैं और ये इस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे आना चाहते हैं, लगी अभी तक चंडीगढ़ पुलिस इन्हें अलाउ नहीं कर रही है। ये देखिए किस तरह ह्यूमन चेन बना के चंडीगढ़ पुलिस इन्हें पुश बैक कर रही है, लगातार इनको पीछे पुश कर रही है ताकि ये आगे ना आ सके। तो ये हालात है इस वक्त चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में, जहां पर इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है और आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है लेकिन चंडीगढ़ पुलिस अभी उनको रोके रखी है। मेरे पीछे वाटर कैनन भी है लेकिन अभी इसका यूटिलाइजेशन नहीं किया गया है, इसको स्टार्ट कर दिया गया है लेकिन अभी तक पुलिस इनको रोकने में यहाँ पर सफल है अभी तक।
0: बिल्कुल असीम, आप तस्वीरें भी दिखाइए लेकिन एक और बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्या आम आदमी पार्टी ने इस प्रदर्शन का ऐलान, इसकी जानकारी पहले से दी हुई थी या फिर सीजेपी के सपोर्ट में प्रदर्शन किया जा रहा है, खासतौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे को लेकर, उनको हटाए जाने की मांग को लेकर?
4: देखिए सुबह जानकारी दी गई कि आज इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जो है प्रोटेस्ट किया जाएगा, 10:30 से 11 के बीच का टाइमिंग दिया गया था और जितने भी लीडर्स यहां पहुंचे हमने बात की, उन्होंने कहा कि जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है, युवा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम उनका समर्थन करते हैं और आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम भी जो है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो है खड़े हैं, उनका रेजिग्नेशन मांगते हैं, इस्तीफा मांगते हैं। सो इन्होंने इन सपोर्ट ऑफ सीजेपी यहां पर ऑर्गेनाइज किया है प्रोटेस्ट और सुबह ही इसको ऑर्गेनाइज किया गया, कुछ समय में ही जानकारी जो सुबह दी गई और उसके बाद यहां पर भीड़ जुटनी शुरू हुई लेकिन जैसे ही मनीष सिसोदिया ने अपनी स्पीच जो है वो खत्म की उसके बाद लगातार जो लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चंडीगढ़ पुलिस और पैरामिलिट्री उन्हें यहां पर रोकने की कोशिश कर रही है, हाथ में प्लैकेट्स लेकर और नारेबाजी लगातार यहां पर पिछले 1 घंटे से हो रही है लेकिन पुलिस इनको यहां पर रोके हुए है। जी हां
0: बिल्कुल, एक बार असीम अगर आप तस्वीरों में एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखा सके कि वहां पर पुलिस की किस तरीके से बंदोबस्त है, किस तरीके से वहां पर बंदोबस्त किए गए हैं, ये अगर आप एक बार फिर से तस्वीरें दिखा सके तो।
4: ये देखिए पहले मेरे पीछे देखिए कि पैरामिलिट्री किस तरह डिप्लॉयड है, ये पैरामिलिट्री ट्रूप्स है जिनको यहां पर लगाया गया है, ये बंदोबस्त है क्योंकि वो जहां पर आप एक शोरूम देख सकते हैं वो जो है वहां पर इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है, ये यहां पर वाटर कैनन जो है वो डिप्लॉय किया गया है, पुलिस ने यहां पर लंबी बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगाई है और अगर ऊपर चढ़ के हम दिखाएंगे आपको, ऊपर चढ़ के अगर आपको दिखाएंगे तो यहां पर भी भारी बंदोबस्त जो है पुलिस ने किया हुआ है और इस तरफ पुलिस जो है लगातार यहां पर इनको रोकने के लिए हैवी डिप्लॉयमेंट है, री इन्फोर्समेंट भी आ रही है, पैरामिलिट्री यहां पर लगाई है, किसी हालत में आगे ना जा सके, बड़ी बड़ी बसेस से जो है रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, बैरिकेडिंग से ब्लॉक किया गया और आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और ये क्राउड इस तरफ मूव हो रहा है आम आदमी पार्टी के वर्कर्स जो है और यहां पर ये सिचुएशन है कि इस वो किसी हालत में इस बैरिकेडिंग को तोड़ के आगे आना चाहते हैं लेकिन ये बैरिकेड लेकिन पैरामिलिट्री और ये सब लोग यहां पर डिप्लॉयड हैं ताकि ये लोग आगे ना आ सके। अभी तक तो चंडीगढ़ पुलिस अपनी प्लानिंग में जो है वो सफल रही है लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी के वर्कर्स यहां से मूव नहीं हुए हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं ताकि कोई रास्ता मिल जाए लेकिन अभी तक पैरामिलिट्री ने उनको रोक रखा है। मेरे पीछे ही अगर आप देख लेंगे तो हैवीली आर्म जो है पैरामिलिट्री यहां पर खड़ी है, डिप्लॉयड है, वाटर कैनन है ताकि ये लोग यहां से मूव ना कर पाए। जी हाँ
0: बिल्कुल, और देखिए दो तस्वीरें अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं। एक पहली तस्वीर जंतर मंतर की तस्वीर है जहां पर लगातार भारी पुलिस बल तैनात किया गया, नई दिल्ली के कई इलाकों में इस तरीके की बीएनएसएस की धारा 163 लागू की गई है। दूसरी तस्वीर चंडीगढ़ की तस्वीर है जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सीईसी के खिलाफ यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर में आप मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी के नेता को देख रहे हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं और चंडीगढ़ में आज आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भी है और इसी के चलते आज भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और कई लोगों को चंडीगढ़ में डिटेन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन और सीजेपी का प्रदर्शन भी, दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से रुख करते हैं अपने सहयोगी का जो चंडीगढ़ में मौजूद हैं इस समय। असीम बसीम एक बार बताइए कि अभी वहां पर हम देख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को डिटेन किया जा रहा है, क्या वहां से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा है, क्या वहां पर भी उनको डिटेन किया जा रहा है?
4: जी जी हाँ, डेफिनेटली बसेस डिप्लॉयड हैं और इस तरफ यहाँ पर रश लगा हुआ था, इस तरफ इनको मूव किया गया है और ये बसेस आप देख सकते हैं यहाँ पर लगाई हुई हैं और जितने भीड़ में कार्यकर्ता यहाँ पर थे उनको एक तरफ कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिस है उसको पूरी तरह सिक्योर किया गया है। और अगर आप इस तरफ देखें तो वो सामने बस अगर आपको दिखाएं तो वो बस अगर आपको कैमरा पर्सन अमन दिखाएं कि बस में किस तरह जो है आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को लीडर्स को डिटेन किया जा रहा है भर भर। और मनीष सिसोदिया आप देख सकते हैं बस के अंदर बैठे हैं, मनीष सिसोदिया को बस के अंदर बिठाया गया है और यहां से हटाया गया है। सो अभी तक तो पुलिस जो है वो कामयाबी पुलिस को मिली है कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक नहीं जाने गया, लेकिन मनीष सिसोदिया आप देख सकते हैं कि विंडो में बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, रेड शर्ट में हैं और लगातार जो है यहाँ पर डिटेंशन जो अब हो रही हैं और ये बस जो कि जो बस जिसमें आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और लीडर्स को भरा गया है उनको यहाँ से मूव करके लेके जाया जा रहा है। सो जब मेन लीडरशिप चाहे वो सोनिया मान हो, मनीष सिसोदिया हो, हरपाल चीमा हो और दूसरे कैबिनेट
0: मिनिस्टर, बिल्कुल असीम देखिए लगातार तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा, आपका दोबारा से रुख करेंगे। हम जंतर मंतर की तस्वीरें दिखा रहे थे, हम चंडीगढ़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन अब आपको लिए चलते हैं लखनऊ। लखनऊ में भी एक प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ में खास तौर पर अगर आपको दिखाएं कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन है, राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया है। राहुल प्रियंका पर दिल्ली में महिलाओं पुलिस कर्मियों से बदसलूकी का आरोप लगाया गया और इसी बदसलूकी के आरोप के बाद बीजेपी के महिला मोर्चा की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां पर आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ भी प्रदर्शन किया जा रहा है जो बीजेपी की महिला मोर्चा की तरफ से किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि महिला मोर्चा की ये महिला कार्यकर्ता लगातार हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और दरअसल इनका ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने बदसलूकी की है महिला पुलिसकर्मियों के साथ उसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है।
5: लखनऊ में आज बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन है, कांग्रेस पार्टी कार्यालय घेराव करने का कार्यक्रम है और इस समय पर मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से ये महिला मोर्चा का प्रदर्शन शुरू हुआ है और तमाम महिलाएं और उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और सिर्फ आज ये लोग कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर जाएंगे और वहां पर प्रदर्शन करने के लिए जाएंगे। किन मुद्दों को लेकर के आप लोग जा रहे हैं, क्या मुद्दा
6: है? मुद्दा ये है कि महिला सम्मान के लिए हम लोग जा रहे हैं। जब पिछली बार FCRA लागू होने वाला था तब इन्होंने वहां पे धरना दिया था, अब फिर 12 तारीख को पार्लियामेंट्री सेशन होने जा रहा है FCRA को लेके, फिर ये धरना दे रहे हैं। ये सब चोर मौसेरे भाई जो चोरी का पैसा बाहर से लेके आते ना बार बार उसके लिए धरना दे, उस विरोध में हम लोग जा रहे कि
5: FCRA का जो
6: FCRA हमारा मुद्दा और दूसरा महिला सम्मान हमारा मुद्दा। जिस तरीके
5: महिला सम्मान का क्या
6: हुआ, धरना हुआ दिल्ली में, खुद राहुल गांधी महिलाओं को ऐसे छू रहे, प्रियंका गांधी यू कोनी मार रही है, तो हम इस सम्मान के लिए जा रहे हैं कि इस वर्दी का भी आप लोग को सम्मान करना सीखना चाहिए, वो आपके लिए खड़े 24/7 हम उस वर्दी के लिए यहाँ खड़े हैं।
5: यहाँ आप लोग जा रहे हैं तो पुलिस कर्मी जो थे क्या उनके सम्मान के लिए आप लोग खड़े?
7: जी हाँ, सम्मान के लिए, उनके सम्मान के लिए, वो हम यदि हमारी सुरक्षा कर रही है तो हम उनके सम्मान के लिए खड़े हैं। हम ये किसी को परमिशन नहीं दे सकते हैं कि हमारी प्रशासनिक बहनों को कोनी मारे और हमारे मान सम्मान के लिए हमारी बहनों के हमारी बहन बेटियों के कमर में यदि हाथ डालते हैं तो उसके लिए हम ये धरना प्रदर्शन उसका जवाब हम देंगे।
0: यानी प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन, यानी बीजेपी की महिला मोर्चा की तरफ से भी लखनऊ में प्रदर्शन किया गया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की तरफ से भी आज आक्रामक रुख अपनाया गया। उन्होंने सीजेपी के इस प्रदर्शन को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है अराजकता फैलाना चाहते, देश में अस्थिरता लाना चाहते। और देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं।
8: आज देश में बेहद ही खतरनाक और गंभीर स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। देश की 140 करोड़ जनता जो सुख शांति के साथ भारत के विकास में सबका सहयोग मिल रहा है उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। पर ये कौन कर रहे हैं? ये दो अराजकतावादी समूह जिसमें एक इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी और दूसरे गुट का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी कर रही है। मैं इन दोनों गुटों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत की जनता पूरी तरह से आपके इन उद्देश्यों को देख रही है और आज जो आपका एनार्किस्ट प्रतिस्पर्धा चल रहा है कि कौन अधिक इस देश में अस्थिरता पैदा कर सकता है, ये आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने देशभक्त हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर इन ताकत आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे। साथ
0: सहयोगी अंशुल का रुख करते हैं। अंशुल इस समय बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास मौजूद हैं। अंशुल, अभी वहां पर क्या हालात हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारी आप जब दिखा रहे थे कि कई लोग गुरुद्वारे में घुस गए थे, दिल्ली पुलिस बाहर मौजूद थी, अभी क्या ताजा हालात है वहां पर?
2: जी, अभी भी कुछ वैसी स्थिति बनी हुई है। आप देखिए, जो प्रदर्शनकारी हैं वो अभी भी गुरुद्वारे के अंदर घुसे हुए हैं और बाहर जो है दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से इस एग्जिट को घेर लिया है। किसी को भी बाहर आने की इजाजत नहीं है। अगर कोई भी बाहर आ रहा है तो तुरंत उन्हें डिटेन करके यहां से निकाला जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अलावा सीआरपीएफ की भी आप देखें तो यहां पे जो जवान है वो मौजूद है, बिल्कुल तैनात हैं। और अंदर अब शायद गुरुद्वारा की कमेटी से भी पुलिस की बात हो गई है और उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि ये प्रदर्शनकारी गुरुद्वारे के अंदर चले जाएं और यहां सड़कों पर अराजकता ना फैला पाए। तो ऐसा ही कुछ होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। जो प्रोटेस्टर्स हैं काफी देर से अंदर हैं, किसी भी तरह की नारेबाजी नहीं हो रही। कुछ दो तीन लोग बाहर निकले थे जिन्हें डिटेन करके यहां से अब दिल्ली पुलिस ने हटा दिया है, लेकिन अभी भी यहां सिचुएशन जो है काफी टेंस्ड है और पुलिस ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है, सीआरपीएफ ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि जो सिचुएशन है वो एकदम कंट्रोल में रहे और अगर कोई भी बाहर आकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है तो उसे तुरंत यहां डिटेन करके, ये देखिए डीटीसी बसेस यहां लगाई जा रही हैं, इन डीटीसी बसेस में भर के इन्हें यहां से तुरंत हटाया जा रहा है। तो यही स्ट्रैटेजी है दिल्ली पुलिस की कि किसी को भी रुकने ना दिया जाए और अगर कोई बाहर आके नारेबाजी करता है तो तुरंत उन्हें बसों में बैठा के यहां से हटा दिया जाए ताकि भीड़ जो है वो जल्दी से जल्दी कम हो सके और कंट्रोल में रह सके।
0: बिल्कुल, एक और बात, क्योंकि अंशुल आप जिस तरीके से बता रहे थे कि अब पूरी कोशिश की जा रही है कि अगर प्रदर्शनकारी गुरुद्वारे में चले गए तो उसको बाहर से उन्हें रोक दिया जाए, यानी वो बाहर ना निकले ताकि कम से कम जो अराजकता फैलाने के लिए उस सड़कों पर आ रहे थे या फिर आगे बढ़ रहे उनको रोका जा सके। लेकिन जो पहले तस्वीरें आप दिखा रहे थे बाराखंबा रोड की या फिर आप हनुमान मंदिर के पीछे सर्विस लेन की तस्वीरें, क्या अब भी वहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं या वहां से सारा साफ कर दिया गया, प्रदर्शनकारियों को आगे खदेड़ दिया गया?
2: जी, उनको खदेड़ दिया गया, कई को डिटेन कर लिया गया, काफी भारी संख्या में डिटेंशन हुई है यहां से, 50 की संख्या में यहां से जो है दिल्ली पुलिस ने डिटेंशन की है और उनमें से ही एक जो छोटा बचा हुआ ग्रुप था वो इस वक्त गुरुद्वारे के अंदर है, जो अभी कुछ देर पहले पीछे नारे लगा रहा था, हनुमान मंदिर के पास नारे लगा रहा था, वही आगे भाग कर आए और आके ही गुरुद्वारे में घुस गए। पता ये भी लग रहा है कि जो ये प्रदर्शनकारी हैं इनकी प्लानिंग ही यही थी, इनका मीटिंग पॉइंट जो इन्होंने डिसाइड किया था वो मीटिंग पॉइंट ही बंगला साहिब गुरुद्वारा था, क्योंकि पिछली बार भी जब ये पूरा मामला सामने आया था तो उस वक्त भी बंगला साहिब गुरुद्वारे में कई लोग घुसे थे और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई से बच गए थे। तो इस बार भी इन्हें पता था कि जंतर मंतर जाने की इजाजत तो नहीं मिल रही, तो इन्होंने ये बंगला साहिब गुरुद्वारा एक ऐसा पॉइंट मीटिंग पॉइंट बनाया जहां पर कई लोग आकर के मिले और फिर यहां से आगे हनुमान मंदिर की तरफ बढ़े और तब जाकर के पुलिस ने उन्हें वहां रोका और फिर पीछे खदेड़ा। तो अब दोबारा कुछ लोग करीब 20 से 25 लोग जो है प्रदर्शनकारी।
0: और देखिए अंशुल, आपका आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं हमें बता रहे हैं कि कई लोग जो थे वो अंदर घुस गए हैं, लेकिन अब भी दिल्ली पुलिस की तरफ से उनको डिटेन किया जा रहा है। जो प्रदर्शनकारी बाहर निकल रहे हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है। आपका दोबारा से रुख करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बने रहेगी। आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार। सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
3: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
3: कौन सी बनानी है?

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
2: गैसो फास्ट 27%,
1: इनो 9.2%।
3: गड़बड़ है।
4: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
5: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
6: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
5: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
7: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है। तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
8: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेंको गहने।
9: और वही कहाँ गए थे घूमने?
10: जीके मैक्स।
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
10: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
12: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट,
12: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
13: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
14: In association with Signature Finest Cardamom Seeds, E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
15: Canara Bank, together we can.
16: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
17: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है।
4: मैं मायावती सत्यनिष्ठा के प्रतिज्ञान करती हूँ।
5: मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
6: मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
6: जेके वॉल मैक्स।
4: बेस्ट पेंट
7: जेके मैक्स।
4: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
8: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
9: मेरे पास एक आइडिया है।
8: क्या?
9: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
10: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
11: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
12: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
9: कौन सी बनानी है?
13: How's the hostel? Settled?
14: Yes, Mark's really nice.
13: कोई आ रहा है क्या?
15: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटी तो निभाली, अब फिर से थोड़ा रोमांस है।
13: मयंक, for real?
15: One carat for my one true love. Natural diamond, real love, solitaires to reignite your new season of love.
16: स्टूडेंट्स जानते हैं कि देश पूरी हो रही है, नरेंद्र मोदी इसके आर्किटेक्ट हैं, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार इसके इम्प्लीमेंटर्स हैं, और इस बात को राष्ट्रपति ने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने आज डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में सोचेंगी। मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू।
17: राहुल गांधी और उनके नेतृत्व में इंडी गठबंधन के नेता जो पिछले कई दिनों से अनर्गल निराधार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान, महामहिम राष्ट्रपति एक व्यक्ति नहीं है, वो देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है, उसको लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो न सिर्फ विचित्र लगता है बल्कि उसमें सच से ज्यादा सियासत की गंध आ रही है।
18: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सीजेपी के अभिजीत दीप के सौरभ दास और आशुतोष शांका बस में बिठा कर ले गई पुलिस। प्लेन में आज तक से कहा सबको हिरासत में लिया, मैं गिरफ्तार होने आया हूं।
1: दिल्ली से अब तक सैकड़ों प्रदर्शनकारी हिरासत में, जंतर मंतर और कनॉट प्लेस के पास जबरदस्त किलेबंदी, 4 किलोमीटर दायरे में इंटरनेट सेवाएं ठप, मेट्रो के 45 स्टेशन बंद, राजधानी की सारी सीमाओं पर चेकिंग।
0: चंडीगढ़ में भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, मनीष सिसोदिया हिरासत में, बीजेपी महिला मोर्चा का लखनऊ में राहुल गांधी के खिलाफ विरोध, महिला पुलिस कर्मियों से बदसलूकी का आरोप।
1: दिल्ली प्रदर्शन पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का आम आदमी पार्टी पर सीधा अटैक, कहा केजरीवाल की सहयोगी सीजेपी फैला रही अराजकता, राहुल गांधी का पोस्ट, ज्ञानेश भी जाएंगे और सरकार भी जाएगी।
0: राष्ट्रपति से इंडिया गठबंधन के नेताओं की मुलाकात के बाद राहुल गांधी का दावा, महामहिम ने हमसे मांगे है वोट चोरी के सबूत, हम उन्हें हर प्रमाण देंगे। बीजेपी बोली संवैधानिक सीमा लांग रहे हैं राहुल।
1: ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हिमांशु बात करते हैं सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर, जहां दिल्ली में पुलिस एक्शन अब भी जारी है, कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को डिटेन भी किया जा रहा है।
0: और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये 6 तस्वीरें आपको दिल्ली का हाल बयां कर रही है। सबसे पहले जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें अभिजीत दीपके, सौरभ दास, आशुतोष शांका जैसे ही दिल्ली में वो पहुंचते हैं, प्लेन से ही उनको डिटेन कर लिया जाता है। दिल्ली में किस तरह की सुरक्षा है ये आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ हो रही है, उनको डिटेन किया जा रहा है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है कि अगर कहीं से प्रदर्शनकारी आ रहे हैं तो ड्रोन से उनको चिन्हित किया जा सके। बॉडी कैम पुलिस वाले उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार कई ऐसी तस्वीरें देखी थी जहां पुलिस वालों के साथ बदसलूकी हुई थी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में मिंटो ब्रिज के पास भी एक्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारी जैसे ही मिंटो ब्रिज के पास पहुंचे, जिनमें AISF, SFI, CPIM कैडर के शामिल थे प्रदर्शनकारी, तो जंतर मंतर जो जाना चाहते थे लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और उसके बाद उन सभी को डिटेन कर लिया गया। ये वो तस्वीरें जो मिंटो ब्रिज के पास ये प्रदर्शनकारी जंतर मंतर की ओर कूच कर रहे थे लेकिन बीच में ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया।
2: मिंटो ब्रिज पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आईसा और तमाम लेफ्ट विंग के जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर पहुंचे थे, जिनको पुलिस की तरफ से बड़ा एक्शन के तहत डिटेन किया गया। ये देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंचे थे आईसा की तरफ से और तमाम अलग अलग संगठन की तरफ से। अब उनको यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से पुलिस का एक एक्शन जो है वो यहाँ पर नजर आया है। कनॉट प्लेस से तमाम फोर्सेस को जो है वो मिंटो के पास, मिंटो अंडरपास के पास जो है वो पुलिस की तरफ से बुलाया गया और उसके बाद बड़ा एक्शन, क्योंकि बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो दरअसल कनॉट प्लेस के अंदर मिंटो के पास से ही अंदर आ रहे थे और ऐसे में पुलिस की तरफ से अब इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर देखिए किस तरीके से डिटेन किया गया। आपको तस्वीरें दिखाएं कि वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो और भी कई संख्या में, बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी देखिए यहाँ पर आपको नजर आएंगे। पुलिस अब बल का भी प्रयोग कर रही है, कहीं ना कहीं कई प्रदर्शनकारी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको यहाँ से हटा रहे हैं। महिला पुलिस कर्मियों को अंदर भेजा जा रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर भी कई सारे प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंचे थे, उनको भी अब पुलिस की तरफ से यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये महिला जो प्रदर्शनकारी है वो पहुंची थी, उनको यहाँ पर पुलिस की तरफ से डिटेन किया जा रहा है। आपको तस्वीर देखिए कि एक बस वो जाती हुई, भारी पुलिस बल इस वक्त पूरे दिल्ली में कनॉट प्लेस के हिस्से में जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से बल का प्रयोग अब पुलिस को यहाँ पर करना पड़ा है। महिला पुलिस कर्मियों को पुलिस की तरफ दिल्ली पुलिस जो है वो लेकर के आई। आप देख सकते हैं कि पुलिस की किस तरीके से तैयारियां हैं। यहाँ पर तमाम प्रदर्शनकारी जो है पहुंचे थे उनको अब पुलिस की तरफ से यहाँ से हटाया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष भिदुड़ी के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
1: और देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली में नई दिल्ली के आसपास के इलाकों की, मिंटो ब्रिज का इलाका है। इसके अलावा हमने आपको इससे पहले बाराखंबा रोड, इससे अलावा हमने हनुमान मंदिर के आसपास के इलाकों की तस्वीरें भी आपको दिखाई, जहां पर प्रदर्शनकारी जुट रहे थे जिन्हें डिटेन किया गया है।
2: इस वक्त मैं कनॉट प्लेस के रीगल सिनेमा के पास हूं और अगर आप यहां पर देखें तो कनॉट प्लेस इलाके में भी कुछ प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे जिनको पुलिस ने और जो यहां अर्धसैनिक बल के जवान हैं उन्होंने हिरासत में लिया हुआ है। ये कनॉट प्लेस का इलाका और देख पा रहे हैं यहां पर काफ़ी गहमागहमी है यहाँ पर और जो प्रोटेस्टर हैं उनको अभी अभी पुलिस ने हिरासत में लिया है। यहाँ तक पहुँचने में जो प्रोटेस्टर हैं वो कामयाब हो गए थे। बैरिकेड यहाँ पर लगा हुआ है, जो पुलिस की टीम है वो लोगों को समझा भी रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रोटेस्टर जो प्रोटेस्टर हैं उनको पुलिस ने हिरासत में लिया और यहाँ पर भारी तादाद में जो बस है वो लगी हुई है और इन सब के बीच जो प्रोटेस्टर हैं उनको हिरासत में लिया गया है। तो रीगल सिनेमा के पास की ये तस्वीर है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर मौजूद है, बैरिकेड यहाँ पर लगा हुआ है। जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्टर कुछ आ रहे हैं गिनती के उनको पुलिस हिरासत में लिया है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: नॉट प्लेस से बता रहे थे कि कैसे लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, जो प्रदर्शनकारी जो वहां पर पहुंचे हैं, भीड़ जो वहां पर आ रही है उनको हिरासत में लिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से बहुत पहले स्पष्ट कह दिया गया था कि अगर आप आते हैं तो इसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे, आपको हिरासत में लिया जाएगा। क्योंकि फिर हम आपको बताते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 163 लागू है और चेतावनी पहले ही दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी की गई थी। जंतर मंतर के पास कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है, 12 डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पर, 100 से ज्यादा बसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कहीं पर भी भीड़ एकजुट होती है तो उनको डिटेन किया जा रहा है।
1: और चलिए देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी खबर इस समय मुंबई से भी आ रही है जहां पर तुषार गांधी को हिरासत में लिया गया है। तुषार गांधी ने दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन के समर्थन में दोपहर 3:30 बजे सभा करने का ऐलान किया था, जिसके बाद उन्हें मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तुषार गांधी लगातार सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर कहा जा रहा है कि दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन के समर्थन में दोपहर 3:30 बजे सभा करने का ऐलान किया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें डिटेन किया है।
3: पुलिस मुझे कुछ कहीं ले जा रही है, बता नहीं रही कहाँ ले जा रहे हैं, 2-2 मिनट कह रहे हैं, कुछ बताने से तैयार नहीं है। अच्छा, डीएन नगर ला रहे हैं, नेशनल कॉलेज से उठाया, बांद्रा पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, सांताक्रूज पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, डीएन नगर ले आए। डीएन नगर में कुछ खास रिसेप्शन तैयार किया होगा, देखते रहिए।
0: तो देखिए अब जो भी प्रदर्शन करने जा रहा है उसको हिरासत में लिया जा रहा है, और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं मुंबई में भी हो रहा है जो अभी आपने देखा। लेकिन दिल्ली में किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है प्रदर्शनकारियों पर, हमारे सहयोगी सुशांत मेहरा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
2: क्या कह रहे हैं, सीजेपी को प्रदर्शन से रोकने के लिए सिर्फ दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस को भी कनॉट प्लेस के अंदर तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं कि महिला कंपनीज जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की है उनको यहां पर तैनात किया गया है। मिंटो ब्रिज के पास कई सारे प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंचे थे आईसा से जुड़े हुए संगठनों से, उनको अब पुलिस की तरफ से जो है यहां पर डिटेन किया गया है। और इसी रास्ते से तमाम प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार सीपी में एंटर कर रहे हैं और जिनको रोका जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से। और कई कंपनीज जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेज की जो है वो कनॉट प्लेस और आसपास के हिस्सों में जो है वो तैनात की गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बसेस के अंदर आपको हर जगह जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, उसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस के भी कई पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी भी जो है आपको नजर आएंगे, जो कि इस वक्त पूरी दिल्ली में खास तौर पर अगर कहा जाए कनॉट प्लेस पूरी तरीके से छावनी में जो है वो तब्दील हुआ है। पुलिस ने अब स्ट्रेटेजी जो है वो बदली है, जहां भी पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि प्रदर्शनकारी आ रहे हैं कनॉट प्लेस की तरफ एंटर करने जाते हैं, उस रास्ते पर जबरदस्त पुलिस फोर्स जो है वो भेजी जा रही है और ताकि प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया जा सके। कैमरा पर्सन मनीष बिदुड़ी के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
1: और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे कि लगातार प्रदर्शन को लेकर खबरें आ रही है कि सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस का एक्शन अब भी जारी है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, खासतौर पर नई दिल्ली के इलाकों से प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया जा रहा है। अब तक 400 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। देखिए सुबह से ही 10 बजे से जब से प्रदर्शनकारी इकट्ठा होने शुरू हुए थे तब से ही लगातार जंतर मंतर के आसपास के इलाकों से 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। जंतर मंतर के पास हिरासत से लिए गए हैं ये तमाम प्रदर्शनकारी।
0: 10 बजे तक ये खबर आ रही थी कि 150 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई और ज्यादातर लोग कनॉट प्लेस के पास प्रदर्शन करने पहुंच रहे थे।
1: और देखिए, अपने दर्शकों को बताया कि तमाम इन प्रदर्शनकारियों को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम लेकर गया है। दरअसल आपको बताएं कि कई डिटेंशन सेंटर बनाए गए थे, जिसमें सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर कह सकते हैं कि दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम है, जहां पर इन प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया जा रहा है, जहां पर इनको रखा जा रहा है।
4: दिल्ली के मिंटो ब्रिज में जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको यहां पर डिटेन करके लाया गया। आप देखिए, यहीं पर इसी बस के अंदर जो डिटेन करके उन प्रदर्शनकारियों को लाया गया है। लगातार जिनको कहना है कि वहां पर लाठीचार्ज किया गया है और छत्रसाल स्टेडियम यहां पर लाया गया। छत्रसाल स्टेडियम में बस भर करके जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे अलग अलग जगहों में, वहां से उनको यही सीधे छत्रसाल स्टेडियम लाया गया। इन्होंने अभी बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये लोग मिंटो ब्रिज पर प्रदर्शन कर रहे थे, जहां से डिटेन करके इनको सीधे छत्रसाल स्टेडियम लाया गया। छत्रसाल स्टेडियम में पहले से ही पुलिस मौजूद है और इसको डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। इसके अंदर तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो मौजूद है और उनको बड़ी संख्या में यहाँ पर डिटेन करके सीधे छत्रसाल
5: और ये जो हम लोग इलेक्शन कमीशन की मांग करते हैं, उत्तर कमीशन की मांग करते हैं, क्योंकि उन्होंने वोट चोरी किया है, जिस देश के साथ किस तरीके किया है और लोकतंत्र के साथ किस तरीके किया है। लाठीचार्ज तो मेरे पैर में लाठी मारे
4: लाठीचार्ज भी किया गया और जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जंतर मंतर जाना चाह रहे थे, उनको डिटेन करके बड़ी संख्या में छत्रसाल स्टेडियम पहुंचाया जा रहा है। हर्षित मिश्रा आज तक।
1: और ये
0: अब देखिए, लेफ्ट के कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर, कुछ इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। तो दिल्ली में इस वक्त आप जहां भी जाएंगे वहां पर आपको प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हो रहा है और ये देखिए लेफ्ट के कार्यकर्ता, जिसमें आप देखेंगे कि लाल झंडे यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं और ये कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन करने पहुंचे। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। कनॉट प्लेस पे सीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे, उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने आज बसों की कोई कमी नहीं करके रखी है। जहां भी आप देखेंगे दिल्ली पुलिस की कई बसेस वहां मौजूद हैं। जहां भी प्रदर्शनकारी मिलते हैं उनको बसों में भरकर डिटेन किया जाता है और सीधे ले जाया जाता है छत्रसाल स्टेडियम, जहां से कुछ देर पहले आपने आज तक संवाददाता की एक रिपोर्ट देखी। लेकिन अभी ये तस्वीरें बीजेपी दफ्तर की हैं, जहां पर लेफ्ट समर्थकों ने प्रदर्शन किया।
1: बिल्कुल, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे, मानशु की तीनों लोगों को, यानी जो आशुतोष रांका है या फिर आप सौरभ दास है, अभिजीत देव के, तीनों को अलग अलग रखा गया हिरासत में लेने के बाद। तीनों को अलग अलग रखा गया है, रिपोर्ट से तीनों को हिरासत में लिया गया था और फिर तीनों को आइसोलेट करने के लिए अलग अलग डिटेंशन सेंटर में रखा गया।
0: और ये अपने दर्शकों को बता दे कि सुमित ने जब बात श्रेया चटर्जी से चल रही थी एयरपोर्ट पर, जब हिरासत में लिए जाने की बात चल रही थी, तभी सुमित ने इस बात को बहुत स्पष्ट कहा था कि ऐसे कई मामलों में अलग अलग रखा जा सकता है। और सुमित आपकी बात बिल्कुल ठीक निकली, तीनों को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है।
1: बिल्कुल, और देखिए अक्सर ऐसा किया जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेज उनको आइसोलेट कर देती है ताकि वो एक साथ इकट्ठे ना हो सके। और ये तमाम खबरें हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस एक्शन अब भी लगातार जारी है। तालकटोरा रोड से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। श्रेया चटर्जी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
6: भारी प्रोहिबिशनरी ऑर्डर्स के बीच कुछ प्रोटेस्टर्स हैं जो यहाँ सेंट्रल दिल्ली के तालकटोरा रोड जंतर मंतर के पास पहुंच चुके हैं। इनको किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि ये रेजिस्ट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस कि जो कांस्टेबल्स हैं इन प्रोटेस्टर्स को डिटेन कर रहे हैं। आप लोग क्या कहना, आप देख सकते हैं कि इनको एक एक करके पुलिस डिटेन कर रही है। इससे पहले भी एक बस और प्रोटेस्टर्स की डिटेन कर ली गई थी। ये भी एक बहुत बड़ी सवाल है कि इतने प्रोहिबिशनरी ऑर्डर्स के बावजूद कुछ समर्थक यहाँ पहुंच रहे हैं और अपना प्रोटेस्ट वो रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नासिर के साथ श्रेया चटर्जी आज तक।
0: दिखाई देगी वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है। जहां महिला प्रदर्शनकारी हैं वहां पर महिला पुलिस तैनात है और जहां पर या छात्र आ रहे हैं, प्रदर्शनकारी आ रहे हैं, तो उनके लिए दिल्ली पुलिस तैयार है। इस दौरान एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दीपके रांका और सौरभ को अलग अलग रखा गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद ओझा इस वक्त जुड़े हुए। अरविंद, क्या जानकारी आ रही है?
7: देखिए दिल्ली एयरपोर्ट से तीनों को हिरासत में लिया गया था, दीप के, रांका और सौरभ को। अभी जो जानकारी आज तक को मिली है सीनियर अधिकारियों से कि तीनों को अलग अलग रखा गया है, दो को दिल्ली में रखा गया जबकि एक को गुरुग्राम में रखे जाने की खबर है अनडिस्क्लोज लोकेशन पर, और देर शाम इनको छोड़ा भी जाएगा अभी तक की जो जानकारी आई है। और साथ ही साथ इनको वार्निंग भी दी गई है कि जंतर मंतर की तरफ न जाएं, वहां पर धारा 163 लागू है। और देर रात से अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक लगभग 400 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी बात है कि जिस तरह के इनपुट दिल्ली पुलिस को मिल रहे थे उसके बाद एहतियात के तौर पर जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। 20 जुलाई को जो उत्पात मचाते हुए एफआरएस कैमरे में कैद हुए थे क्रिमिनल एलिमेंट्स, जिन पर कई मुकदमे पहले से हैं, उनमें से भी सैकड़ों लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो पूरी नई दिल्ली इलाका है उसमें में शांति है, स्थिति नियंत्रण में है। कुछ इक्का दुक्का जो प्रोटेस्टर हैं अलग अलग इलाकों से आ रहे थे उनको हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ एक ड्राइव ये भी चलाया गया कि खासतौर से जो नौजवान और स्टूडेंट हैं उनको दिल्ली पुलिस ने उनकी काउंसलिंग भी की और उनको समझाया कि जो नई दिल्ली इलाका है वहां पर 163 लगा हुआ है, आप अगर जाएंगे कोई केस बनेगा तो आपका पासपोर्ट भी रद्द हो सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर काउंसलिंग भी की गई है, न सिर्फ हिरासत में लिया जा रहा है बल्कि उनको समझाया भी जा रहा है, उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है कि आप भड़कावे में ना आए। और अभी जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जो तीनों को एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया था उन सभी को अलग अलग जगह पे रखा गया।
1: बिल्कुल, और देखिए यही बात अरविंद ओझा लगातार हमारे सहयोगी हमें बता रहे कि 400 लोगों को डिटेन किया गया।
0: ये प्रदर्शन हो रहा है सुमित, ये जो तस्वीरें हैं ये श्रीनगर से हैं, पहले मुंबई की आपको दिखाई, मुंबई में भी हिरासत में लिया गया जो प्रदर्शन करने जा रहे थे। अब ये देखिए ये कश्मीर की तस्वीरें हैं, ये श्रीनगर की तस्वीर, और यहां पर भी प्रदर्शन हुआ। श्रीनगर में कांग्रेस और एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो बात की जा रही है, विरोध प्रदर्शन ये देखने को मिल रहा है, ये देखिए। और भारी पुलिस बल यहां पर भी तैनात किया गया है हालात को काबू करने के लिए। श्रीनगर में कांग्रेस और एनसी का नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये विरोध प्रदर्शन और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं।
1: और चलिए इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: ये दो अराजकतावादी समूह जिसमें एक इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी और दूसरे गुट का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी कर रही है, मैं इन दोनों गुटों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत की जनता पूरी तरह से आपके इन उद्देश्यों को देख रही है और आज जो आपका एनार्किस्ट प्रतिस्पर्धा चल रहा है कि कौन अधिक इस देश में अस्थिरता पैदा कर सकता है, ये आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। कि जिन विदेशी ताकतों से बल पर आप अपनी बिकाऊ राजनीति कर रहे हैं और विदेशी ताकतों के गठजोड़ से भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके नापाक इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। लगातार राज्यों में आपकी हार हताशा दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं इस देश को शांति के साथ आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे, लेकिन मैं आज के दिन आपको चेतावनी देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और देश के राष्ट्रभक्त जनता आपको पूरी तरह से इसका करारा जवाब देगी। और आज जिस प्रकार से तनाव की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, भारत की सरकार इसको कड़ाई से निपटेगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी पूरी तरह से जनता के बीच में रहकर आपके इस मंसूबे को कहीं ना कहीं रोकेगा।
11: संवैधानिक संस्थान महामहिम राष्ट्रपति एक व्यक्ति नहीं है, वो देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है। उसको लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो न सिर्फ विचित्र लगता है बल्कि उसमें सच से ज्यादा सियासत की गंध आ रही है। उनका यह कहना कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने उनके आरोपों को स्वीकार कर लिया है, यह दर्शाता है कि जो अभी तक राहुल गांधी देश की हर संस्था के बारे में, हर संवैधानिक संस्था को अपनी राजनीति का शिकार बनाने का दुष्चक्र रच रहे हैं। उन्होंने अब आज ऐसा प्रतीत होता है कि सारी सीमाएं पार कर दी।
12: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
13: मैं मायावती सत्यनिष्ठा के प्रतिज्ञान करती हूँ।
14: मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
15: मैं आदित्यनाथ योगी

0: देख सकते हैं कि किस तरीके की सिक्योरिटी मेजर्स राजधानी दिल्ली में लगाया गया है, और जहां हम मौजूद है वो इलेक्शन कमीशन के सामने है। मैं हमारे कैमरामैन नासिर को बोलूंगी कि वो एक बार इलेक्शन कमीशन किस तरफ है वो दिखाए। ये वो जगह है जो सबसे ज्यादा सिक्योर्ड जोन माना जाएगा, क्योंकि निर्वाचन सदन ही सेंटर ऑफ जो पॉलिटिकल डिस्कशन है, एसआईआर को लेके जो प्रोटेस्ट है, यही इंस्टीट्यूशन है। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ किस तरीके की सिक्योरिटी यहां पे लगाई गई है। दिल्ली पुलिस के जवान से लेके सीआरपीएफ से लेके डिप्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में है, और जो टोटल कंपनीज है सीआरपीएफ के वो 220+ है। प्रोहिबिशनरी ऑर्डर्स है इस पूरे इलाके में 163 के तहत। किसी को भी आज जंतर मंतर पहुंचने नहीं दिया जाएगा। कुछ विजुअल्स हमें दिखने को मिले थे जहां प्रोटेस्टर्स दिखे थे सुबह सुबह, जिनको कनॉट प्लेस और जंतर मंतर के पास से डिटेन किया गया था। ये वो प्रोटेस्टर्स हैं जो कल रात पहुंच चुके थे, लेकिन अभी का नजारा आप देखिए, क्योंकि जो सिक्योरिटी अपैरेटस है वो फुल इन फंक्शनिंग है, हैवी डिप्लॉयमेंट है। मैं फिर से एक बार बोलूंगी कैमरामैन को कि कैसे ये पूरा जो रास्ता है वो एक तरीके से ब्लॉक्ड है, क्योंकि ये रास्ता निर्वाचन सदन को हाउस करता है। इसके अलावा इसी रास्ते से होते हुए हम जंतर मंतर भी पहुंचते हैं, और इसीलिए आप समझ सकते हैं कि अगर कोई चाहे भी तो शायद आज जंतर मंतर नहीं भटक पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नासिर के साथ श्रेया चैटर्जी आज तक।
1: योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या ही नहीं हिंदुस्तान के किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़े तो जीत सकते हैं। अखिलेश जी अपने सफाई छोड़ करके कहीं और आकर के लड़ करके दिखाएं। योगी जी हिंदुस्तान के किसी भी विधानसभा से, उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के किसी भी विधानसभा से जाकर के चुनाव लड़ करके जीत सकते हैं। जनता इतना प्यार करती है, देश तो छोड़िए छोड़िए, दुनिया में आज योगी जी का नाम डंका बज रहा है। तो इसलिए ये उनकी चुनौती, वो यदि लड़ना चाहते तो वो आकर अयोध्या से लड़ लें। यदि उनको इतना है, जिस भगवान श्री राम का उन्होंने अपमान किया उसी अयोध्या में जा करके उनको जो है दर्शन नहीं किए, भगवान श्री राम के भक्तों पर उन लोगों ने जो गोली चलाई और माँ सरजू लाल हो गई खून से, और वो जो है अयोध्या की बात करते हैं। आज
2: आप कह रहे हैं अयोध्या से अखिलेश यादव भी चुनाव लड़के दिखाए
1: दिखाए
2: सामने कौन लड़ेगा आपके पास?
1: अरे कोई एक कार्यकर्ता लड़ जाएगा, एक सामान्य कार्यकर्ता भी लड़ जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। लड़े
2: कल जो है
1: वो इटावा मैनपुरी छोड़ करके कहीं जाते हैं लोग आके लड़े।
2: कुल मिलाकर आप सुन रहे थे यूपी सरकार मंत्री जयशंकर सिंह को कहीं ना कहीं अब बीजेपी

0: दिल्ली एयरपोर्ट से ही हिरासत में लिए गए सीजेपी के अभिजीत दीप के सौरभ दास और आशुतोष रंका बस में बिठाकर ले गई पुलिस। प्लेन में आज तक से कहा सबको हिरासत में लिया, मैं गिरफ्तार होने आया हूं।
1: दिल्ली से अब तक सैकड़ों प्रदर्शनकारी हिरासत में, जंतर मंतर और प्लॉट प्लेस के पास जबरदस्त किलेबंदी, 4 किलोमीटर दायरे में इंटरनेट सेवाएं बंद, मेट्रो के 45 स्टेशन बंद, राजधानी की सारी सीमाओं पर चेकिंग।
0: चंडीगढ़ में भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, मनीष सिसोदिया हिरासत में, बीजेपी महिला मोर्चा का लखनऊ में राहुल गांधी के खिलाफ विरोध, महिला पुलिसकर्मियों से बदसलूकी का आरोप।

0: रही अराजकता। राहुल गांधी का पोस्ट, ज्ञानेश भी जाएंगे, सरकार भी जाएगी।
1: और राष्ट्रपति से इंडिया गठबंधन के नेताओं की मुलाकात के बाद राहुल गांधी का दावा, महामहिम ने हमसे मांगे हैं वोट चोरी के सबूत, हम उन्हें हर प्रमाण देंगे। बीजेपी बोली, संवैधानिक सीमा लांग रहे हैं राहुल,

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए कोकरो जनता पार्टी लगातार पहुंच रही है और इससे पहले कई गिरफ्तारियां भी की गई हैं।
0: और इसी दौरान हम आपको यह भी बता दें कि अलग अलग तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। सीजेपी का प्रदर्शन जारी है, बहुत से लोगों को डिटेन किया गया है, छत्रसाल स्टेडियम तक उन्हें पहुंचाया गया है और अभिजीत दीप के आशुतोष रंका और सौरभ दास इनको प्लेन से ही डिटेन किया गया और तीनों को अलग अलग जगह पर रखा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें अभी भी कुछ प्रदर्शनकारी सड़क पर है जिनको डिटेन किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है।
1: जी हां, बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में पीटीआई दफ्तर के पास पुलिस पर पत्थरबाजी करने की भी घटना सामने आई। जी हां, दिल्ली पीटीआई दफ्तर के पास पुलिस पर पत्थरबाजी करने की घटना सामने आई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। पीटीआई दफ्तर दरअसल पार्लियामेंट के बेहद करीब है। दो पुलिसकर्मियों को चोट की खबर भी मिल रही है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि इस बीच लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से कल भी कहा गया था कि वर्दी के पीछे भी इंसान है और इसी के लिए उनसे उन्होंने अपील की थी प्रदर्शनकारियों से कि हिंसक ना हो। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में पीटीआई दफ्तर के पास पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की गई जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं।
0: 20 जुलाई को वो तस्वीरें सामने आई थी जहां पर पुलिस के साथ बदसलूकी की गई थी। बीच में भी कुछ वीडियोस ऐसे सामने आ गए थे जहां पुलिसकर्मियों को लात मारी गई थी। पुलिस की तरफ से कल एक भावुक खुला खत लिखा गया था कि वर्दी के पीछे भी एक आम इंसान है, उसका भी परिवार है। और अब यह खबर है कि पीटीआई दफ्तर के बाहर पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की जाती है, दो पुलिसकर्मी उसमें घायल होते हैं। अभी आप एक और वीडियो देखिए, ये एसएफआई के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते हैं, प्रदर्शन करते हैं और उनको भी हिरासत में लिया जाता है। बसें तैयार है, अगर कहीं पर भी कोई बैनर पोस्टर लेकर आता है, कोई प्रदर्शन करता है, नारेबाजी करता है तो तुरंत दिल्ली पुलिस के जवान आरएएफ उनको हिरासत में लेते। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। अरविंद, खबर आ रही है कि पुलिस वालों पर पत्थरबाजी हुई है।
2: जी बिल्कुल, देखिए जो अरनी सिंह इलाके में पीटीआई बिल्डिंग है उसके पास तकरीबन 50 की संख्या में जो प्रोटेस्टर हैं वो इकट्ठा हुए थे और उनमें से जब पुलिस ने हिरासत में लेने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने पथराव किया जिसमें दो पुलिसकर्मियों को चोट आई है। चोट गंभीर नहीं है, मामूली है, लेकिन पुलिस को

0: पहले से आशंका थी कि प्रोटेस्ट की आड़ में कुछ उपद्रव भी दाखिल हो सकते हैं, और इस वजह से ये पूरी सिक्योरिटी नई दिल्ली इलाके में लगाई गई है, क्योंकि इस तरह के लगातार इनपुट मिल रहे थे, इस वजह से बॉर्डर स्टेट एरिया में भी अलर्ट था। तो फिलहाल पुलिस ने उनमें खदेड़ दिया, उनमें से कुछ को हिरासत में भी लिया हुआ है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि नई दिल्ली इलाके में शांति पूरी तरह से है, शांति बनाने की अपील भी की गई है, जगह जगह प्रोटेस्टर हैं, उनको हिरासत में भी दिल्ली पुलिस की टीम ले रही है।
1: अरविंद एक बात बताइए, क्योंकि आपको याद होगा कि कल भी दिल्ली पुलिस की तरफ से अपील की गई थी कि वर्दी के पीछे भी, यूनिफॉर्म के पीछे भी इंसान है, इंसान, और लगातार ये अपील की जा रही थी कि देखिए आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है लेकिन अराजकता ना फैलाएं, और फिर भी इस तरीके की घटना सामने आ रही।
0: देखिए, एक नए तरह का पैटर्न है जो हाल फिलहाल में सुमित हमने देखा है, और हमने कई पुलिस कर्मियों से, कई महिला पुलिस कर्मियों से भी बात करने की कोशिश की। देखिए, सीजेपी का जब शुरुआत में प्रोटेस्ट हुआ था तो जिस तरह का पुलिस का रवैया था, पुलिस पर भी सवाल उठे थे, लेकिन उसके बाद पुलिस ने कहा कि कुछ लोग आते हैं और जानबूझकर उकसाते हैं जिससे पुलिस रिएक्ट करे। उसके बाद पुलिस को प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई कि ऐसे लोगों को कैसे टैकल करना है, लेकिन उसके बाद हाल फिलहाल में 2 अक्टूबर के बाद जो प्रोटेस्ट हुए उसमें ये देखा गया कि कई पुलिसकर्मियों को असॉल्ट किया गया, महिला पुलिसकर्मियों को असॉल्ट किया गया। तस्वीरें आई हैं पुलिस को लात मारते हुए कि जब कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें ये तस्वीरें थी, एक अंकित कसाना है उसको घेर करके लोगों ने मारा, उसकी वर्दी फाड़ दी। तो इस तरह की भी शिकायतें आई और मल्टीपल वीडियो जो दिल्ली पुलिस है उसने सोशल मीडिया पर डाला है कि किस तरह से पुलिसकर्मियों को असॉल्ट किया जा रहा है। अमूमन जो प्रोटेस्ट है उसमें प्रदर्शनकारी आते थे और उसके बाद वो जब पुलिस उनको डिटेन करती थी तो वो शांति से खुद को हिरासत में लेते थे, देर शाम उनको फिर हिरासत से छोड़ दिया जाता था। अभी भी जो मैं अपने सामने तस्वीर देख पा रहा हूँ, इस वक्त मैं बंगला साहब गुरुद्वारे के पास मौजूद हूँ, गोल टाक खाने के पास, यहाँ कुछ प्रदर्शनकारी आ रहे हैं, उनसे पुलिस की टीम बातचीत कर रही है, अगर जरूरत हो रही है काउंसलिंग की तो उनको काउंसलिंग की जा रही है कि इस इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू है, आप यहां से चले जाएं, लेकिन अगर कोई वाकई प्रोटेस्ट करना चाह रहा है तो उनको हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है। और पीटीआई के पास तो कुछ लोगों ने पथराव करने की कोशिश की, हालांकि तुरंत भीड़ को काबू में किया गया और हिरासत में लिया गया। और दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि कुछ प्रोटेस्टर ऐसे भी हैं जो जो इन्फ्लुएंसर की आड़ ले रहे हैं, सोशल मीडिया पत्रकार की आड़ ले रहे हैं, और उसके बाद फिर जब पुलिस वहां से हटती है तो प्रोटेस्टर की शक्ल में आते हैं, तो ऐसे लोगों पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है।
1: बिल्कुल, और अरविंद हमने ऐसा भी देखा कि बूम माइक लेकर वो लोग निकल जाते हैं, प्रदर्शनकारी अपने आप को पहले रिपोर्टर बताते हैं, जर्नलिस्ट बताते हैं और फिर प्रदर्शन का हिस्सा भी हो जाते हैं। और एक और बात, क्योंकि आपने बताया कि दिल्ली पुलिस ये काउंसलिंग भी कर रही है इन तमाम प्रदर्शनकारियों को या फिर युवाओं को कि देखिए कुछ इस तरीके से आपत्तिजनक ना करें, आप इस तरह से एग्रेसिव ना हो, ताकि उसके रेपिकेशन, उसके गंभीर परिणाम भी आपको भुगतने पड़ सकते हैं।
0: बिल्कुल, और देखिए ये ड्राइव 2 दिन से चल रहा है, ये समझाया भी गया, खासतौर से जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जो पीजी में रहते हैं उनको ये बताया गया, और अभी भी यहाँ पर भी जो आ रहे हैं उनको ये बकायदे उनकी काउंसलिंग हो रही है। देखिए, बीएनएस की धारा 163 लागू है, यहाँ पर कोई भी भीड़ वो इलीगल मानी जाएगी, अवैध मानी जाएगी, इस वजह से आप यहाँ पर ना आए। अगर कोई दुर्घटना होती है, कोई केस दर्ज होता है तो भविष्य में आपका पासपोर्ट रद्द हो सकता है, आपका कैरियर भी चौपट हो सकता है, लेकिन आप यहाँ से चले जाएं। तो इस तरह से काउंसलिंग भी हो रही है और उसके बाद काउंसलिंग करके उनको छोड़ा जा रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आप कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि सभी को हिरासत में लिया जाए, गिरफ्तार किया जाए, जो युवा है उनको काउंसलिंग की जा रही है, उसके बाद उनको समझा बुझा के छोड़ा भी जा रहा है।
2: ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। हमारे सहयोगी अनमोल बाली भी इस वक्त जुड़े हुए हैं और वो जनपद पर मौजूद है। जनपद पर हम कुछ दिन पहले भारी हंगामा देख चुके हैं जब राहुल गांधी की तरफ से प्रोटेस्ट निकाला गया था। अनमोल, ये बताइए कि जहां आप मौजूद हैं वहां पर इस वक्त किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या वहां भी प्रदर्शनकारी दिखाई दिए?
3: हिमांशु, इस समय मैं दिल्ली का जनपद हूं, कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल की तस्वीरें मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा, जहां आप देख सकते हैं कि जो कुछ प्रदर्शनकारी हैं यहां पर इकट्ठे हुए थे, उनको जब डिटेन करने की कोशिश की गई तो रीगल सिनेमा की तरफ से भागते हुए इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ वो इकट्ठे हो रहे हैं। और वहीं सीपी के इनर सर्कल और आउटर सर्कल दोनों जगह देखा जा रहा है कि भारी जो सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो की गई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक तरफ तो तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे भागा दौड़ी यहां पर हो रही है, आप देख सकते हैं कैसे भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं इकट्ठे हो गए हैं और इनर सर्कल की तरफ वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सीपी के इनर सर्कल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनपद की ओर जहां जंतर मंतर वो कूच करना चाहते हैं। दूसरी ओर की मैं तस्वीरें हिमांशु आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे यहां पर भारी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान हैं, सीआरपी के जो जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, एंटी राइड गियर के साथ, शील्ड के साथ और लाठियों के साथ आपको यहां पर नजर आएंगे। और इस पूरी रोड को यहां से बैरिकेड कर दिया गया है, जनपद की रोड है, मतलब यहां से महज 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ही जो है जंतर मंतर। वही तस्वीरों में आपको मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा हिमांशु की, कैसे देख सकते हैं भीड़ जो है यहां पर इकट्ठी हो गई है। सीपी का इनर सर्कल का इलाका आप देख सकते हैं कैसे भारी संख्या में यहां पर लोग हैं। तकरीबन अगर मैं अंदाजा आपको बताऊं तो 100 से 200 के आसपास यहां पर लोग होंगे जो इकट्ठे होकर नारेबाजी यहां पर कर रहे हैं। सीपी के इनर सर्कल का इलाका है, हालांकि भारी संख्या में यहां पर सुरक्षा बल जो है तैनात किए गए हैं, जंतर मंतर कूच की कॉल दी गई है, पर तब भी जो लोग हैं कनॉट प्लेस के आसपास इकट्ठा हो रहे हैं।
1: बिल्कुल, एक और बात अनमोल, क्योंकि आप इनर सर्कल पे आप बता रहे हैं कि आप मौजूद है, ये आप कैसे कमर्शियल हब भी है, यहां पर दुकानें भी हैं, शोरूम्स भी है, क्या वहां पर अभी वो दुकानें शोरूम्स खुल गई हैं या फिर आज एक तरीके से सांकेतिक रूप से उन्होंने भी बंद किया हुआ है?
3: हिमांशु, आज बड़ी जंतर मंतर चलो की कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कॉल दी गई थी, उसको देखते हुए कल ही जो एनडीटी है, न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन, जो कनॉट प्लेस की मार्केट एसोसिएशन, उन्होंने कॉल दी थी, दुकान और जो बाजार है वो बंद रहेगा। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि आप मेरे सामने की दुकानें देख सकते हैं, सब इस समय बंद पड़ी हैं। अगर इस तरफ कनॉट प्लेस के इनर सर्कल और आउटर सर्कल की जो दुकानें आप देखें, और वहीं मैं दूसरी तरफ आपको जनपद की दुकानें भी दिखाना चाहूंगा, वो सब बंद पड़ी है। मतलब एक तरफ से टोटल लॉकडाउन इस समय कनॉट प्लेस दिल्ली में जो हो रखा, चाहे जनपद की बात करूं, कनॉट प्लेस इनर आउटर सर्कल की बात करूं, और भी जो दिल्ली के अन्य बड़े छोटे बाजार हैं जो सेंट्रल दिल्ली के आसपास लगते हैं, वो भी अभी बंद हुए पड़े हैं, क्योंकि जो हालात हैं दिल्ली में इस समय मैं आपको दिखाना चाहूंगा ऐसे बन चुके हैं कि जो भीड़ है वो धीरे धीरे जमा होनी यहां पर शुरू हो चुकी है। हिमांशु, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो वहां पर प्रदर्शनकारी हैं नारेबाजी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहां से आगे बढ़कर जंतर मंतर अपनी कूच कर सके, पर वहीं पैरामिलिट्री के जो जवान हैं वो भी यहां पर अब बढ़ा दिए गए हैं, जो बसेस हैं यहां पर को डिटेन करने के लिए लाई गई है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि सामने भी आप देख सकते हैं कि बसें आ गई हैं, और वहीं दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा रीगल सिनेमा की तरफ भी, अगर आप देखें 1, 2, 3, 4, 5 के आसपास बसें उस तरफ भी खड़ी हैं। अगर जो हालात हैं, अगर ये भीड़ जो है बेकाबू होती है, हालात नाजुक होते हैं, तो दिल्ली पुलिस
2: ने यानी बहुत स्पष्ट कह दिया है और अपने मंसूबे दिखा दिए हैं कि प्रदर्शनकारी अगर कहीं से भी आएंगे तो ये देखिए इस तरह से बस तैयार है, और उसके बाद
4: अजिंक्य शिंदे He will be carrying forward the Kokroch Janata Party after Ashutosh, me and Saurav. Thank you. Hello everyone. If you are watching this video, इसका मतलब मैं, आशु और सौरभ, हम तीनों अरेस्ट हो चुके हैं। हमारे बाद इस मूवमेंट को अजिंक्य लीड करेगा, तो आप जितने भी ये वीडियोज देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो अजिंक्य शिंदे। He will be carrying forward the Kokroch Janata Party after Ashutosh, me and Saurav. Thank you.
1: दिपके को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जब हम तीनों अरेस्ट हो गए हैं तो जो दूसरे उनके सहयोगी है वो इसको लीड करेंगे। उन्होंने देखिए इस वीडियो को सार्वजनिक करते हुए कहा कि सीजेपी के अभिजीत दिपके का प्री रिकॉर्डेड बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब हम तीनों डिटेन किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे बाद हमारे चौथे सहयोगी जो हैं
2: अजिंक्य शिंदे,
1: हाँ, वो इस पूरी की पूरी मूवमेंट को लीड करेंगे। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आज सुबह ही उनको डिटेन किया गया था और उसके बाद उन्होंने रिकॉर्डिंग फिर से एक सार्वजनिक की है, जिसमें बताया गया है कि दिपके का प्री रिकॉर्डेड बयान सामने आया, जिसमें अभिजीत दिपके ने बताया कि अब हम तीनों की डिटेंशन के बाद, गिरफ्तारी के बाद हमारे चौथे सहयोगी इसको लगातार
2: और लीड करेंगे। हम इस बारे में बात कर रहे थे कि जब डिटेन कर लिया गया है तो इसके बाद अब आगे प्रदर्शनकारियों को या फिर सीजेपी समर्थकों को कैसे लीड किया जाएगा, उनको कैसे बताया जाएगा आगे क्या करना है, तो इसका रास्ता पहले ही तैयार कर लिया था। एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, क्योंकि ये जानते थे अभिजीत दिपके कि अगर वो दिल्ली में आएंगे तो उनको डिटेन कर लिया जाएगा, तो ये वीडियो संदेश पहले ही उन्होंने जारी कर दिया था जो अब सामने आया।
4: Carrying forward the Kokroch Janata Party after Ashutosh, me and Saurav. Thank you. Hello everyone. If you are watching this video, इसका मतलब मैं, आशु और सौरभ, हम तीनों अरेस्ट हो चुके हैं। हमारे बाद इस मूवमेंट को अजिंक्य लीड करेगा, तो आप जितने भी ये वीडियोज देख रहे हैं, प्लीज फॉलो अजिंक्य शिंदे। He will be carrying forward the Kokroch Janata Party after Ashutosh, me and Saurav. Thank you.
2: जिंक्या शिंदे लीड करेंगे मेरे बाद, ये अभिजीत दीपके की तरफ से कहा गया और उन्होंने कहा कि मैं, आशुतोष, सौरभ तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया होगा और तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं और हमारे बाद अजिंक्य शिंदे जो हैं वो इस मुहिम को लीड करेंगे। ये अभिजीत दीपके की तरफ से प्री रिकॉर्डेड जो वीडियो था वो अब आपके सामने आया है। देखिए तीनों को अलग अलग रखा गया है। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अमित बताइए क्या हो रहा है, आप जहां मौजूद है वहां?
5: चेक चेक चेक चेक जी। देखिए हमारे जमाने में गेम चलता था टेंपल रन, हाँ। उसमें चेस करके कैरेक्टर दौड़ाता था और गेम जीतता था। उसी तरह के विजुअल्स इस वक्त कनॉट प्लेस से आ रहे हैं। मैं आउटर सर्कल पे हूं और एक बार कहूंगा कुंज को कि वो थोड़ा जूम इन करे तो वहां पे आपको कम से कम 100-150 प्रोटेस्टर्स दिखाई देंगे और ये वो प्रोटेस्टर्स हैं जो भागते हुए दिल्ली पुलिस के जवान उनको चेस कर रहे हैं। वो दौड़ के इस एरिया में आते हैं, सेंट्रल पार्क के अंदर उनको चेस करने की कोशिश की जा रही है। तो आमतौर पर शांति है लेकिन जब चेस सीक्वेंस होता है तो उस वक्त फिर नारेबाजी शुरू होती है। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि रेस्ट्रेंट है। हमने इसी इलाके में पिछली बार देखा था कि लाठी चार्ज हुआ था, लेकिन एक बार मैं यहां की तस्वीरें भी दिखाऊंगा। देखिए पैरा फोर्सेस हैं, दिल्ली पुलिस के मेल पर्सनल हैं, दिल्ली पुलिस की महिला पर्सनल है। हाथ में आपको बेटन जरूर दिखाई देगा लेकिन अभी तक जो पूरा ये डेवलपमेंट मैं आधे घंटे से यहां देख रहा हूं बेटन इस्तेमाल नहीं हुए, यानी कि जो डंडे हैं उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक एक करके इंडिविजुअल्स को उठाया जा रहा है, डिटेन करके डाला जा रहा है। कुछ किसान नेता भी यहां पर पहुंचे थे, उनको डिटेन किया गया। राकेश टिकैत ग्रुप के वो किसान नेता थे जिनको डिटेन किया गया है। लेकिन देखिए वो सेफ स्पेस प्रोटेस्टर्स भी ढूंढ रहे हैं अपना। फिलहाल ये एफ ब्लॉक का इलाका है सेंट्रल पार्क के पास जहां पे आपको 100-150 के तादाद में प्रदर्शनकारी दिखेंगे।
1: अमित ऐसा लग रहा है क्योंकि आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जो कनॉट प्लेस के अब जो इनर सर्कल और आउटर सर्कल के बीच में जो सर्विस लेन्स हैं वहां पर ये प्रदर्शनकारी मौजूद है और जब भी पुलिस इन मेन रोड्स के ऊपर बैरिकेडिंग करती है इनको, आप कह सकते हैं इनको चोक करती है, तब ये सर्विस लेन से आकर मेन सड़कों पर आने की कोशिश करते हैं। शायद इसी वजह से टसल और शायद इसी वजह से पुलिस इनको दूसरे इलाकों की तरफ या बाहर की तरफ खदेड़ने की कोशिश भी कर रही है।
5: बिल्कुल सुमित, जैसा आप डिफेंस को समझते हैं तो कैसे सेक्टर वाइज आप कहते हैं ना कि कंट्रोल लेना, तो सेक्टर वाइज कंट्रोल ही लिया जा रहा है। मैं जिस जगह पे हूं उसके दूसरे छोर पे जो रीगल सिनेमा, दिल्ली का आइकॉनिक रीगल सिनेमा है, वहां पे बड़ी तादाद में पहले प्रोटेस्टर्स थे और कम से कम कह सकते हैं हम 400-500 प्रदर्शनकारी थे। सब युवा, ज्यादातर युवा प्रदर्शनकारी थे और उनको धीरे धीरे करके पहले डिटेन किया गया, फिर वो चेस सीक्वेंस हमने देखा तो कुछ प्रदर्शनकारी यहाँ एफ ब्लॉक की तरफ आ गए हैं और युवा यहाँ आ रहे हैं। देखिए तमाम अरेंजमेंट्स की गई हैं केंद्र सरकार द्वारा, दिल्ली पुलिस द्वारा आज के प्रदर्शन को रोकने के लिए। अभिजीत दीपको को फ्लाइट से ही डिटेन किया गया लेकिन इसके बावजूद जो प्रदर्शनकारी हैं जिनको लगता है कि वो सीजेपी के कौज से जुड़े हुए हैं या सिंपति रखते हैं वो मैनेज कर चुके हैं यहां तक पहुंचने के लिए, भले उनकी तादाद कम हो लेकिन एक बहुत बड़ी तब्दीली जरूर हमें दिख रही है। पिछले बार जुलाई में जब कॉन्फ्रंटेशन हुआ था तो उस वक्त फोर्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ था। आज दिल्ली पुलिस सेक्टर वाइज एरिया को अपने कंट्रोल में ले रही है और एक एक करके प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर रही है। थोड़े थकाने की भी कोशिश है प्रदर्शनकारियों को, भागदौड़ में वो थके घर जाएं तो समय धीरे धीरे कटे। लेकिन अहम बात यह है कि सारे रास्ते, अगर आप ये जनपद का रास्ता देखेंगे वहां बैरिकेड्स हैं, जंतर मंतर जाने का ये मेन सड़क है उसमें मल्टीपल लेयर ऑफ बैरिकेड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं और बीच बीच में मेरे ख्याल से वाटर कैनन होगा ये जो गाड़ी खड़ी है या रॉयड कंट्रोल
2: व्हीकल। कोशिश यहां पर यही है दिल्ली पुलिस की कि बिना बल का प्रयोग किए हुए शांतिपूर्ण तरीके से सबसे पहले इन को समझाया जाए और अगर नहीं मानते तो उसके बाद तो फिर डिटेन का रास्ता है ही। बने रहिए हमारे साथ। इस दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता दें, श्रीनगर में चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन देखने को मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं की जमकर नारेबाजी देखने को मिली। पुलिस के साथ धक्का मुक्की की नौबत भी आई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें जो आप देखेंगे ये श्रीनगर से हैं। श्रीनगर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया चुनाव आयोग के खिलाफ। देश भर में चुनाव आयोग के खिलाफ बिल्कुल विपक्ष की तरफ से फूंक दिया गया है। अब ये देखिए पुतला भी जलाया गया।
1: और देखिए आपको इससे पहले भी बताया कि ऐसी ही कुछ तस्वीरें हमने आपको चंडीगढ़ से भी दिखाई थी, जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया था, मनीष सिसोदिया को डिटेन किया गया था वहां पर। ऐसी तस्वीरें अब जम्मू कश्मीर से भी आ रही है, जहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखिए कुछ ऐसी तस्वीरें लगातार देश के कुछ अलग अलग शहरों से भी आ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी जुट रहे हैं, वहां से उनको डिटेन किया जा रहा है। और इसी बीच अब श्रीनगर की कुछ तस्वीरें, जहां पर कांग्रेस और एनसी की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है।
2: तो एक तरफ श्रीनगर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन अगर आप इन दोनों तस्वीरों की कड़ियों को जोड़ेंगे तो वो है चुनाव आयोग का विरोध, मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, और यही मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है। और एक तरफ सीजेपी तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है। दिल्ली में किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, क्या तस्वीरें आ रही है, ये सारी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। वक्त चला है बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 products, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
2: अब मैं चैन की नींद सो पाता कपीवा डायबिटीज जूस।
4: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार रोटी ठुमका लगाने। बस
5: मेरे पास एक आइडिया है।
4: क्या?
5: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
6: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
7: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
8: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: कौन सी बनानी है?
9: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
10: गड़बड़ है।
11: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसो फास्ट इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
12: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
13: गोल्डी लाए है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
14: हाउस द हॉस्टल सेटल्ड?
15: यस मैम, रियली नाइस।
14: कोई आ रहा है क्या?
16: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभाली, अब फिर से थोड़ा रोमांस है।
14: मयंक, फॉर रियल?
16: 1 कैरेट फॉर माय 1 ट्रू लव। नेचुरल डायमंड रियल लव सॉलिटेयर्स to reignite your new season of love.
17: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
18: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर, तरक्की का ऑलराउंडर।

0: YPC।
1: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी।
2: यू नो डिजाइन्स कितने हैं? लाख से भी ज्यादा डोर
3: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
4: एक परिवार, अटूट भरोसा।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee, lagaye swad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa.
0: In association with
1: Bharat ki apni electric sawari.
3: और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन आपको सीधे लिए चलते हैं जंतर मंतर, जहां पर जो एसएफआई की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है वो तस्वीरें आपको दिखाकर आपको बता रहे हैं कि कैसे अभी भी जंतर मंतर के आसपास लगातार प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं, जिनको पुलिस की तरफ से डिटेन भी किया जा रहा है।
4: देखिए कनॉट प्लेस पर तो आपको वो तस्वीरें हमने दिखाई, लेकिन ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये जंतर मंतर के पास की तस्वीरें हैं, जहां बैरिकेडिंग तक कुछ प्रदर्शनकारी पहुंच गए। और ये बताया जा रहा है कि एसएफआई और लेफ्ट के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, जो बैरिकेड पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से बैरिकेड पर अभी पुलिस भारी संख्या में मौजूद है यहाँ पर, और डिटेन करने की इनको भी तैयारी चल रही है। देखिए ये बैरिकेड पार करने की कोशिश की जा रही है, सुरक्षा के कई घेरे हैं, कई लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। जंतर मंतर के इनर सर्कल, आउटर सर्कल और कनॉट प्लेस के भी हर जगह पर बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन कुछ लेफ्ट समर्थक प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंच चुके हैं और वो पार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ आप देखिए बैरिकेडिंग है और ज्यादातर इसमें आपको युवा दिखाई देंगे और ये पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको रोका जाता है। हिरासत से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा भी यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि बसें तैयार खड़ी हुई हैं, हाथों में तख्तियां हैं।
3: तो देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बार फिर से बयान सामने। आपको बताएं कि कल भी दिल्ली पुलिस की तरफ से ब्रीफ किया गया था और अब दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बार फिर से नया बयान सामने आया सीजेपी प्रदर्शन को लेकर।
5: इस वक्त मैं नई दिल्ली इलाके में मौजूद हूं और नई दिल्ली के जो डीसीपी हैं सचिन शर्मा वो हमारे साथ मौजूद है। सर इस साइड आइए, लाइट नहीं है। सर किस तरह से यहां पर अभी चल रहा है, किस तरह का एक्शन हो रहा है दिल्ली में?
6: कुछ नहीं, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं और शांति बनाए रखने की अपील भी है और उसी के मेजर्स लिए जा रहे हैं।
5: कितने लोगों को डिटेन किया होगा नई दिल्ली इलाके से, कितने लोग
6: प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं?
5: अच्छा, कुछ लोगों पर पथराव भी किया पुलिसकर्मियों को, चोट आई?
6: हाँ, एक जगह पर पथराव,
5: एक जगह पथराव हुआ। तो देखिए ये सचिन शर्मा है जो एक्सक्लूसिव आज तक इंडिया टुडे से ये बातचीत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि प्रिवेंटिव जो एक्शन है वो लिया जा रहा है, पथराव की बात भी इन्होंने कबूली है और इस तरीके से जो पूरी फोर्स है, ये बंगला साहब गुरुद्वारे के पास गोल डाक खाने का इलाका है, यहाँ पर जो सचिन शर्मा है डीसीपी नई दिल्ली वो यहाँ मौजूद है, बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है। और देखिए इस तरह से जो दो लोग हैं इनको हिरासत में लिया जा रहा है। ये जो गाड़ी है आप देखेंगे, इस गाड़ी में जो हिरासत में जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो संदिग्ध भी दिख रहे हैं, उन सभी को यहाँ पर हिरासत में लेकर यहाँ पर पुलिस की टीम जारी है। तो सचिन शर्मा से हमने बातचीत की और उसके बाद हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्रोटेस्टर है,
7: आपके कपड़े का टैक्स का पैसा किसका है?
5: देखिए इस तरह से जो प्रोटेस्टर है उनको हिरासत में भी लिया जा रहा है। तो भारी जमावड़ा नई दिल्ली इलाके में आपको देखने को मिल रहा है और इस तरह से मार्च भी कर रही है दिल्ली पुलिस की टीम। अगर वो सामने की तरफ आप देखें तो बकायदा पुलिस की टीम यहां पर मार्च करती हुई भी दिखाई दे रही है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। सचिन शर्मा खुद डीसीपी यहां पर मौजूद है, उसके अलावा स्पेशल सीपी रैंक के लोग यहां पर मौजूद हैं और यहीं से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और जो हमने आपको तस्वीर भी दिखाई और बस में डाला जा रहा है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
4: खबर देखिए इस वक्त की आपको बता रहे हैं और डीसीपी नई दिल्ली सचिन शर्मा ने आज तक इंडिया टुडे से खास बातचीत की और जब हमारे सहयोगी ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा रहा है, शांति बनाए रखने की भी अपील कर रहे हैं। और जब हमारे सहयोगी ने यह सवाल पूछा कि क्या किसी पुलिसकर्मी को चोट आई है तो उन्होंने बोला कि हाँ, एक पुलिसकर्मी को चोट आई है और ये वही मामला है जहां पीटीआई दफ्तर के बाहर पत्थरबाजी हुई थी सुमित।
3: बिल्कुल, और देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अब तक प्रदर्शन में क्या हुआ है, क्योंकि आज तक की टीम ग्राउंड पर है, आज तक के तमाम संवाददाता लगातार आपको ग्राउंड से और इलाके से ये जानकारी दे रहे हैं कि प्रदर्शन के क्या इस समय हालात हैं और किस तरीके से पुलिस की तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं। हालांकि देखिए सचिन शर्मा जो डीसीपी नई दिल्ली है उन्होंने बताया कि तमाम एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन है, यानी जो इनपुट मिल रहे हैं उसके आधार पर ये प्रिवेंटिव एहतियात के तौर पर ये एक्शन लिए जा रहे हैं, जहां पर प्रदर्शनकारियों को ना सिर्फ रोका जा रहा है जहां पर जंतर मंतर की तरफ आगे बढ़ने से, बल्कि कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। हालांकि देखिए उन्होंने बातचीत में यह भी कहा कि एक जगह पर ये भी देखा गया कि प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गई। हालांकि इसके बारे में और अधिकृत जानकारी उन्होंने नहीं दी, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि पुलिस बल यानी करीबन 25,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती है, 300 से ज्यादा सीसीटीवी से सर्वेलेंस किया जा रहा है। इसके अलावा लगातार 12 डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं और कई जगहों पर बॉर्डर एरियाज के अंदर, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, बदरपुर बॉर्डर, इन जगहों पर ज्यादा सर्वेलेंस, ज्यादा मॉनिटरिंग की जा रही है। उन तमाम जो लगातार जिन लोगों को डिटेन किया जा रहा है, इनको इन्हीं डिटेंशन सेंटर में भेजा भी जा रहा है और करीबन 400 से ज्यादा अब तक लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है।
4: तो 1.5 किलोमीटर दायरे में 6,000 जवान तैनात, वज्र वाहन तैनात, प्रदर्शन पर सख्ती, डिटेंशन सेंटर, छत्रसाल स्टेडियम भेजा जा रहा है, 12 डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं, पुलिस मुस्तैद है। जितने भी एंट्री पॉइंट है दिल्ली पर वो तो हमने आपको बताया, लेकिन कनॉट प्लेस और जंतर मंतर पर बहुत ज्यादा सावधानी बरती जा रही है, भारी सुरक्षा बल डिप्लॉय किया गया है। अगर कोई प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचता है तो उसको तुरंत हिरासत में लिया जाता है। तो देखिए, दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर तनाव का माहौल इस वक्त बना हुआ है, भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है और राजधानी के कई इलाकों में पुलिस ने कार्रवाई भी की है। जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहे सैकड़ों प्रदर्शनकारी हिरासत में भी लिए गए हैं।
3: जी हां, इस विरोध प्रदर्शन के बीच आज तक के संवाददाता लगातार तमाम रिपोर्टिंग में जुटे हुए हैं। आप तक वो हर पहलू, हर खबर आपको बता रहे हैं जो इस समय प्रदर्शन की आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तमाम देखिए, तीन अलग अलग इलाकों से या फिर हमारे 6 संवाददाता अलग अलग इलाकों से आपको ये तस्वीर पहुंचा। अरविंद ओझा हमारे साथ है, अमित भारद्वाज हमारे साथ है, सुशांत मेहरा, इसके अलावा हमारे साथ अनमोल बाली भी है, हमारे साथ पीयूष मिश्रा भी, और हमारे साथ एक और संवाददाता हमारे साथ शंभवी श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो आ रही है, जंतर मंतर के पास SFI और लेफ्ट की तरफ से प्रदर्शन किया गया है और वो तस्वीरें भी हमने आपसे थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी कि यहां पर SFI और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं को की नारेबाजी की गई और उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से उनको डिटेन भी किया गया। तस्वीरें आए जंतर मंतर के पास के इलाकों की, ये तस्वीरें हम आपको सीधे तौर पर टीवी स्क्रीन पर
4: देखिए। हर खबर पर आज तक का हर रिपोर्टर मौजूद है, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाई जा रही है, चाहे वो एयरपोर्ट से हो, चाहे वो जंतर मंतर से हो, PTI दफ्तर से हो, गुरुद्वारा साहिब से हो, या फिर वो कनॉट प्लेस से हो, हमारे सहयोगी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी आप ये देखिए कि कैसी व्यवस्था यहां पर की गई है, बकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा है। ये देखिए बड़े बड़े स्पीकर्स और ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है, बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये देखिए कैसे डिटेन किया जा रहा है, ये जो कार्यकर्ता या प्रदर्शनकारी जो कुछ ग्रुप्स में आ रहे हैं उनको डिटेन किया जा रहा है, तिधर बितर भी उनको किया जा रहा है। पहले तो उनको समझाइश दी जा रही है और उनको ये बताया जा रहा है कि अगर आप इस जगह पर जाएंगे जहां पर BNSS की धारा 163 लागू है तो ऐसे में आपको डिटेन किया जाएगा, लेकिन अगर कुछ लोग प्रदर्शन करने पर डटे हुए हैं, तुले हुए हैं, तो फिर उनके साथ में इस तरह से उनको डिटेन किया जाता है। और ये वो तस्वीरें आपके सामने हम दिखा भी रहे हैं। दिल्ली पुलिस फुल ऑन एक्शन मोड में, पहले समझाइश दी जा रही है, लेकिन अगर उसके बाद कोई नहीं समझता है तो फिर उसको डिटेन भी किया जा रहा है। देखिए, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जाती है, जंतर मंतर पर SFI लेफ्ट के समर्थक पहुंचते हैं तो उनको भी डिटेन किया जाता है और ये आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। पहले ये खबर थी कि 150 लोगों को डिटेन किया गया है, फिर 400 लोगों को डिटेन किया गया, अब ये बताया जा रहा है कि आंकड़ा और तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है।
3: बिल्कुल, और देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज भी जुड़ गए, उनकी रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं जो दिल्ली के इसी नई दिल्ली के इलाके में मौजूद है।
8: कनॉट प्लेस के रीगल थिएटर के पास की ये तस्वीरें, जहां पे बड़ी तादाद में आपको डिटेंशन दिखाई देगा, पैरा फोर्सेस के जवान हैं जो डिटेन करके प्रदर्शनकारियों को ले जा रहे हैं। देखिए, बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी यहां पहुंचे थे, अब नारेबाजी करते हुए वो जा रहे हैं। सब युवा हैं, यंगस्टर्स हैं जिनको डिटेन किया गया है। दिल्ली पुलिस की ये गाड़ी है, रॉयड कंट्रोल व्हीकल है, उसमें डिटेन करके इन युवाओं को, प्रदर्शनकारियों को ले जा रहा है। दूसरी गाड़ी जो आप देख रहे हैं, उस गाड़ी के अंदर राकेश चुकैत गुट के किसान नेताओं को डाला गया है। आप देखिए, एक तरह से जेल नुमा स्ट्रक्चर है उसके अंदर। आप जब एक बार डाल दिए जाते हैं गाड़ी के अंदर, तो कई बार हमने देखा बीते दिनों में कि प्रोटेस्टर्स गाड़ी से बाहर निकलकर, डिटेंशन से बाहर निकलकर आगे चले गए, लेकिन ये जो गाड़ियां लाई गई हैं वो जेल नुमा स्ट्रक्चर है। प्रदर्शनकारियों को खींचकर गाड़ियों के अंदर डाला जा रहा है और फिर उन जालियों के अंदर डाला जा रहा है ताकि फिर से प्रदर्शनकारी बाहर ना आए। तो एक तरफ अभिजीत दीपके से लेके आशुतोष रंका को फ्लाइट के अंदर जाकर डिटेन किया दिल्ली पुलिस ने, वहीं जो प्रदर्शनकारी, युवा प्रदर्शनकारी सीपी के सेंट्रल पार्क तक पहुंच गए थे, उन लोगों को डिटेन करने पर अब पैरा फोर्सेस लग गई है। कई सारे लड़के अपनी तरह से ही जद्दोजहद कर रहे हैं, छूटने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे चाहे वो किसान नेता हो चाहे वो युवा हो, उन सभी को डिटेन करती हुई दिल्ली पुलिस दिखाई दे रही है। ये बीकेयू के नेता मेरे ख्याल से इस गाड़ी में डिटेन करके रखे गए हैं, जिनको अब यहां से हटाया जा रहा है, कनॉट प्लेट से हटाया जा रहा है। अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
9: और देखिए तस्वीरें हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज ने आप तक पहुंचाई, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है कि करीबन 400 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया। सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला है। 400 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया है, और इन तमाम जो हिरासत में लिए गए हैं लोगों को अलग अलग डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। सबसे ज्यादा डिटेंशन सेंटर या सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर है वो है छत्रसाल स्टेडियम, जहां पर इन तमाम लिए गए लोगों को हिरासत में रखा जा रहा है। कॉर्टलेस के पास भी हिरासत में प्रदर्शनकारी लिए गए हैं।
10: तो अलग अलग जगह से जहां भी प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर नारेबाजी करते हैं या फिर बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते हैं तो उनको हिरासत में लिया जा रहा है। और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है ये आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। पहले 150 बताया जा रहा था, फिर 200, 300, 400 और अब 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को लगभग हिरासत में लिया गया है। तो कई जगह समझाइश भी दी जा रही है।
9: और देखिए कनॉट प्लेस में भी पुलिस के कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। आज तक संवाददाता अमित भारद्वाज की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
11: कनॉट प्लेस के रीगल सिनेमा में हूँ। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो गहमागहमी है और कुछ लोगों को हिरासत में यहाँ पर लिया गया है और लेकर जा रही है यहाँ पर, तो ये स्थिति यहाँ पर है। फिलहाल बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बलों की तैनाती आप रीगल सिनेमा के पास देख पाएंगे, जो गहमागहमी की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ फिलहाल तस्वीर दिखाई दे रही है। कुछ डिजिटल मीडिया के लोग भी हैं, उनके साथ भी पुलिस की थोड़ी बहुत झड़प हो रही है। और चूंकि दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है और कोई भी जो प्रोटेस्टर आ रहा है उसको पुलिस हिरासत में यहाँ पर ले रही है, तो यहाँ इस तरह की तस्वीर कनॉट प्लेस इलाके में दिखाई दे रही है। कुछ लोग हैं उनके साथ पुलिस की बहस भी होती यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो कनॉट प्लेस इलाके में पुलिस बेहद सख्त है। और देखिए इस तरह से पुलिस ने हिरासत में लिया है कुछ लोगों को, और ये देखिए ये एक शख्स है, इसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। और यहाँ पर ये इस तरह से हिरासत में लगातार लोगों को लिया जा रहा है। तो कनॉट प्लेस का ये इलाका है और धीरे धीरे पुलिस का ये दावा है कि जो भी आएगा उसको हिरासत में लिया जाएगा। और इस तरह से कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
10: तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं, और जैसे जैसे प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको हिरासत में भी लिया जा रहा है। मिंटो ब्रिज के पास भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे, वहां से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा।
12: मिंटो ब्रिज पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आईसा और तमाम लेफ्ट विंग के जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर पहुंचे थे, जिनको पुलिस की तरफ से बड़े एक्शन के तहत डिटेन किया गया। ये देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंचे थे आईसा की तरफ से और तमाम अलग अलग संगठन की तरफ से। अब उनको यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से पुलिस का एक एक्शन जो है वो यहाँ पर नजर आया है। कनॉट प्लेस से तमाम फोर्सेस को जो है वो मिंटो अंडरपास के पास जो है वो पुलिस की तरफ से बुलाया गया, और उसके बाद बड़ा एक्शन, क्योंकि बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो दरअसल कनॉट प्लेस के अंदर मिंटो के पास से ही अंदर आ रहे थे, और ऐसे में पुलिस की तरफ से अब इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर देखिए किस तरीके से डिटेन किया गया। आपको तस्वीरें दिखाएं कि वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो और भी कई संख्या में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी देखिए यहाँ पर आपको नजर आएंगे। पुलिस अब बल का भी प्रयोग कर रही है, कहीं ना कहीं कई प्रदर्शनकारी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको यहाँ से हटा रहे हैं। महिला पुलिसकर्मियों को अंदर भेजा जा रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर भी कई सारे प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंचे थे, उनको भी अब पुलिस की तरफ से यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। ये देखिए महिला पुलिसकर्मियों को पुलिस की तरफ दिल्ली पुलिस जो है वो लेकर के आई। आप देख सकते हैं कि पुलिस की किस तरीके से तैयारियां हैं। यहाँ पर तमाम प्रदर्शनकारी जो है पहुंचे थे उनको अब पुलिस की तरफ से यहाँ से हटाया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष भिदुड़ी के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
9: और देखिए जंतर मंतर से लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई, इससे पहले हमने आपको मिंटो ब्रिज से भी तस्वीरें दिखाई, और हमने आपको ये भी बताया कि कनॉट प्लेस में भी कैसे लगातार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्शन ले रही है। अब दिल्ली के मंडी हाउस पर भी दिल्ली पुलिस की तरफ से मुस्तैदी देखने को मिली। इसकी और जानकारी दे रहे आज तक के संवाददाता पीयूष मिश्रा। तस्वीरें पहले हम आपको दिखा रहे हैं, ये मंडी हाउस की तस्वीरें हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, उनको डिटेन किया गया और दिल्ली के करीबन नई दिल्ली के इस पूरे 4 किलोमीटर के रेडियस में अलग अलग जगहों पर इस तरीके के बैरिकेडिंग की जा रही है, चाहे वो मिंटो ब्रिज का इलाका हो, नॉर्थ प्लेस का इलाका हो, जंतर मंतर का इलाका हो या फिर मंडी हाउस का इलाका हो। मंडी हाउस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ऐसे ही प्रदर्शनकारियों को वहां पर डिटेन किया गया है। लगातार हमारे संवाददाता आज तक के संवाददाता तमाम इन इलाकों में मौजूद हैं, आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई कैसी चल रही है और कहां कहां पर ये कार्रवाई के अंदर लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है।
13: जनता पार्टी ने आज धरने का आह्वान किया है और इस वजह से सेंट्रल दिल्ली को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी मंडी हाउस गोल चक्कर पर है और इसी गोल चक्कर पर कई अलग अलग रास्ते जंतर मंतर की ओर जाते हैं, इन सभी रास्तों को अब पूरी तरह से बंद कर दिया है। अगर कोई गाड़ी अंदर जा भी रही है तो पूरी आईडी कार्ड चेक करने के बाद ही उनको अलाउ किया जा रहा है। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। ये फिरोजशाह रोड है जो सीधा जंतर मंतर की तरफ जाता है और आगे अगला जो गोल चक्कर है वो अशोका रोड जनपथ और फिर जंतर मंतर रोड की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन अब यहाँ से रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। काफी भारी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, अर्धसैनिक बलों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ चेतावनी देकर साफ साफ सूचित किया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 163 यहाँ पर लागू है। यहाँ पे यानी कि यहाँ पर 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते और यहाँ पर आप देखिए कैसे बैरिकेड्स पूरे लगा दिए गए हैं। अगर कोई गाड़ी अंदर जा भी रही है तो उन लोगों से उनकी आईडी कार्ड्स मांगे जा रहे हैं। जो पुलिसकर्मी हैं उनके पास जो है बॉडी कैम आप देख सकते हैं, उनके बॉडी कैम भी लगा दिया गया है ताकि हर चीज़ जो है उसकी रिकॉर्डिंग भी हो सके और लोग जो हैं अगर कोई कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करें तो वो रिकॉर्ड भी हो सके। तो यहाँ पर पूरी तैयारी इस वक्त कर ली गई है। ये मंडी हाउस का गोल चक्कर है जो फिरोजशाह रोड के से होता हुआ जंतर मंतर की तरफ जाता है। मेरी दाहिनी और मेरे सहयोगी लोकेंद्र पांडे अगर आएंगे तो मेरी दाहिनी और मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ। ये जो रास्ता है ये 12 खंभा का है, यानी इसी गोल चक्कर पर अलग अलग रास्ते जो हैं वो कटते हुए अलग अलग जगहों पर जाते हैं। ये रास्ता है 12 खंभा का जो कनॉट प्लेस की तरफ जाता है और फिर वहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जो रास्ता है वो बढ़ता है, यानी कि इस पूरे इलाके को अब पूरी तरह से छावनी में तब्दील करके यहाँ पर बैरिकेड के बंद जाने वाला रास्ता भी इस वक्त पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आप देखिए कैसे लोगों को खासा परेशानी हो रही है, लेकिन धारा 163 यहाँ पर लागू कर दी गई है और ये रास्ता भी अब पूरी तरह से बंद है।
10: तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कि वहां पर किस तरह के हालात रहे, पुलिस की तरफ से क्या सावधानी बरती गई। अंशुल सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुबह से हर एक रिपोर्ट हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाई है। अंशुल, अभी जहां आप मौजूद हैं क्या वहां पर स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है या फिर प्रदर्शनकारियों का आना अभी भी जारी है वक्त के साथ?
14: जी बिल्कुल, अगर सुबह से कंपेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं अब जो माहौल है वो थोड़ा शांत होता हुआ दिख रहा है। अब एक आध की संख्या में लोग आ रहे हैं और उन्हें डिटेन कर लिया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा चैलेंज दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ अगर सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो वहाँ वो बना हुआ है ये गुरुद्वारा बंगला साहिब, क्योंकि इसके अंदर कई सारे जो प्रदर्शनकारी हैं वो जाकर के रुके हुए हैं और हर कुछ देर में बाहर आते हैं, नारे लगाते हैं और जैसे ही पुलिस उन्हें पकड़ने जाती है वापस अंदर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस उन्हें गुरुद्वारे के अंदर घुस के नहीं पकड़ेगी। और याद रखिए ज्यादातर CJP के लोग नहीं है, ये सारे लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के SFI के और ISA के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लोग यहाँ पर बहुत अच्छी रणनीति बनाकर आए। उन्हें पता था
10: कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोगों से तो बातचीत पुलिस अधिकारियों की चल रही थी, क्या कुछ समाधान नहीं निकल पाया?
14: जी पुलिस ने बस उन्हें इतना सुनिश्चित कर उन्हें दो ऑप्शन दिए, उन्होंने पुलिस ने ये कहा कि या तो आप इन लोगों को बाहर निकालिए या अगर अंदर हैं तो आप इन्हें अंदर ही रखिए और कोई नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो मैसेजिंग है ये अंदर चली गई है, जिसकी वजह से आप देखें तो गेट्स के पास आपको अब प्रदर्शनकारी नहीं दिखेंगे, प्रदर्शनकारी अंदर की तरफ है अब और बाहर बहुत भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है। और जैसे ही पुलिस थोड़ी सी पीछे होती है, 10 कदम पीछे होती है, तो अचानक से अंदर से कुछ लोग आते हैं और गेट के अंदर ही खड़े होकर नारे लगाते हैं और फिर वापस अंदर भाग जाते हैं। तो ये जो है पिछले 1-1.5 घंटे से कुछ ऐसा ही जो खेल है ये दिल्ली पुलिस के साथ चल रहा है। लेकिन जो भी बाहर आता है उसे तुरंत पकड़ के यहाँ से डिटेन करके तुरंत हटाया जा रहा है और धीरे धीरे अंदर रहने वाले लोगों की संख्या भी कम होती है।
9: शायद मेरे ख्याल से अंशुल पुलिस की कोशिश यही है कि इनमें से भीड़ जो है या लोग जो है जंतर मंतर की तरफ ना जाएं, भले ही ये वापस चले जाएं या फिर ये डिटेन हो जाए, शायद इसी कोशिश के मद्देनजर सिक्योरिटी फोर्सेज की इतनी ज्यादा मौजूदगी गुरुद्वारे के बाहर अब भी बनी हुई है।
14: जी बिल्कुल, पुलिस यही चाहती है कि जंतर मंतर तक कोई ना पहुंच पाए, दिल्ली की सड़कों पे किसी तरह की अराजकता ना फैले, और इसीलिए इतनी जो हैवी डिप्लॉयमेंट है वो यहां पर की गई है। और एक चीज जो मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि आज सुबह से ही मैं 6 बजे से यहां ग्राउंड
9: पर बिल्कुल देखिए आपको बीच में रोकेंगे क्योंकि लगातार हमारे दूसरे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए। दिल्ली के मिंटो ब्रिज के पास भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी उतरे हैं जिसमें ISF, SFI, CPIM और ऐसे कई कैडर शामिल है, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक दिया। कई प्रदर्शनकारियों को डिटेन भी कर लिया गया। उस वक्त मौजूद हमारे संवाददाता अनमोल बाली की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
15: इस समय मैं दिल्ली के मिंटो रोड मिंटो ब्रिज के पास खड़ा हूं और आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रदर्शनकारी हैं, जो लेफ्ट से जुड़े प्रदर्शनकारी हैं, यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं SFI और AISF का जो कैडर है यहाँ पर कैसे भारी संख्या में हाथ में झंडे लेकर यहाँ पर पहुंचा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मिंटो रोड मिंटो ब्रिज के पास की तस्वीरें हैं। कनॉट प्लेस की तरफ ही जाना चाहते हैं क्योंकि वहां से जंतर मंतर अपनी कूच करेंगे। आज कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट की कॉल थी जिसमें देखा गया कि ISA, AISF और भी जो अन्य वाम छात्र संगठन है उनकी तरफ से भी प्रोटेस्ट मार्च की कॉल दी गई थी। उसी को देखते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे जो लेफ्ट का कार्डर है धरना मारता हो जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर?
16: कहना चाहेंगे ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए।
15: आपको रोका जा रहा है?
16: रोका जा रहा है, कहीं भी रोका जाएगा हम जाएंगे।
15: जंतर मंतर कैसे पहुँचेंगे?
16: जैसे भी पहुँचेंगे जरूर,
15: चाहे कुछ भी हो। कैसे पहुंचेंगे सर? जंतर मंतर रोका जा रहा आपको? क्या कहेंगे सर? जंतर मंतर रोका जा रहा आपको जाने से?
16: वो चौड़ गद्दी चौड़।
15: तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर जो वाम संगठनों से जुड़े छात्र संगठनों के जो लोग हैं, ISA, AISF के जो लोग हैं, यहां पर बैरिकेड तोड़कर जो है आगे बढ़ने की कोशिश करें। तस्वीरें आप देख सकते हैं मिंटो ब्रिज के पास की कि कैसे भारी संख्या में जो वाम संगठनों से जुड़े छात्र संगठन थे उनके जो लोग हैं यहां पर बैरिकेड तोड़कर आगे जो है बढ़ चुके हैं, मिंटो ब्रिज की तरफ बढ़ चुके हैं। पर वही तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पुलिस ने जो है छात्रों को, जो प्रदर्शनकारियों को डिटेन करना शुरू कर लिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि 2 लेयर की बैरिकेडिंग थी, हाथ में वाम संगठनों के AISF, SFI और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के झंडे लेकर जो प्रदर्शनकारी थे यहां पर पहुंचे थे। पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग यहां पर कर रखी थी। पर वही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस का एक्शन यहां पर शुरू हो चुका है, लोगों को दिल्ली पुलिस ने यहां पर डिटेन करना शुरू कर दिया। और
10: देखिए जैसे आपको बताया कि दिल्ली पुलिस ने 12 डिटेंशन सेंटर बनाए हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रदर्शनकारियों को ले जाया जा रहा है वो है छत्रसाल स्टेडियम, और वहां पर कई प्रदर्शनकारियों को रखा गया है। वहां से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी हर्षित मिश्रा की।
17: दिल्ली के मिंटो ब्रिज में जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको यहाँ पर डिटेन करके लाया गया। आप देखिए यहीं पर इसी बस के अंदर जो डिटेन करके उन प्रदर्शनकारियों को लाया गया है। लगातार इनको कह रहा है कि वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया है और छत्रसाल स्टेडियम यहाँ पर लाया गया। छत्रसाल स्टेडियम में बस भर करके जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे अलग अलग जगहों में, वहां से उनको यही सीधे छत्रसाल स्टेडियम लाया गया। इन्होंने अभी बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये लोग मिंटो ब्रिज पर प्रदर्शन कर रहे थे जहां से डिटेन करके इनको सीधे छत्रसाल स्टेडियम लाया गया। छत्रसाल स्टेडियम में पहले से ही पुलिस मौजूद है और इसको डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। इसके अंदर तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो मौजूद है और उनको बड़ी संख्या में यहाँ पर डिटेन करके सीधे छत्रसाल और ये जो हम लोग इलेक्शन कमीशन की मांग करते हैं उसके रेजिग्नेशन की मांग करते हैं, यानी तुम्हें क्योंकि उन्होंने वोट चोरी किया है, स्टेट के साथ किस तरीके किया है और लोकतंत्र के साथ किस तरीके किया है। लाठीचार्ज तो मेरे पैर में लाठी मारे लाठीचार्ज, और जो लोग प्रदर्शन
18: प्रदर्शन कर रहे थे, जंतर मंतर जाना चाह रहे थे, उनको डिटेन करके बड़ी संख्या में छत्रसाल स्टेडियम पहुंचाया जा रहा है। हर्षित मिश्रा, आज तक।
9: चलिए, इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी। हमारे तमाम संवाददाता लगातार नई दिल्ली के इन इलाकों से आप तक की रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन इस बड़ी खबर को आप देखते रहिए सिर्फ आज तक पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
19: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस।
20: मेरे पास एक आइडिया है।
19: क्या?
20: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
21: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
20: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
22: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
21: कौन सी बनानी है?
23: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
24: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
25: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
26: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
25: अब मैं चैन की नींद सो पाता कपीवा डायट्री जूस।
27: जेके मैक्स वाइप इजी, दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।
28: क्या कहती है आपकी राशि, कैसा बीतेगा आपका दिन, किस दिन क्या करें क्या ना करें, क्या है आपके लिए शुभ रंग, कौन सा उपाय आपके दिन को बनाएगा बेहतर, देखिए राशि चक्र सिर्फ एस्ट्रो तक पर।
29: कंडेम दिस एक्ट बिकॉज इट वॉज अ वेरी पीसफुल एजिटेशन दे वर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिल्ली एंड आई पर्सनली फील इट्स a strong word, but it's cowardly of any government to do that.
30: You're calling it a cowardly act. The government will say, look, our responsibility is to ensure no untoward instance. We have clamped down with section 144. You cannot have these large gatherings. We have made it very clear that we fear, we apprehend. That's what the IB is saying, that there could be trouble if large gatherings were allowed in Delhi today. Therefore, this is a precautionary measure. These are detentions that were necessary.
29: Yeah, but detentions for what? If somebody is having a peaceful march, at the most, what would it be? What was happening at Jantar Mantar in the last agitation? There was no violence ever at Jantar Mantar. And let me tell you one very interesting fact of the entire agitation. 24 hours there were youngsters there. There was no violence. There was no heckling. Women, young girls were as safe as they would be in their home at Jantar Mantar.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: आ गया सोमवार और आ गए
5: चकमक चाचा।
4: एक कचौड़ी दो समोसा चकमक तेरा क्या भरोसा।
6: चकमक चाचा से सीधे चकमक है।
4: अरे नारा है दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है महिला लोग एकदम नारा लगा जा रही बुझ रहा ना।
6: लेकिन भैया नारा अरे फालतू में सब बेकार एकदम बेकार। अरे होते थे हमारे टाइम।
4: अच्छा
6: सुनाए जेल के ताले टूटेंगे जेल के ताले टूटेंगे जेपी भाई छूटेंगे।
4: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए दो कुलचा एक बिरयानी इन नेताओं की खत्म कहानी।
6: अरे जमीन के चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में
4: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा शर्म करो।
6: अरे राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर।
4: अरे लाठी गोली खाएंगे इस्तीफा लेके जाएंगे।
6: अरे सुनो इस दीपक में तेल नहीं सरकार चलाना खेल नहीं।
4: अरे लाल फूल नीला फूल जंजी नन्हे ब्यूटीफुल।
6: अरे बारी बारी सबकी बारी अब की बारी अटल बिहारी।
4: चाय गरम दूध गरम चकमक चाचा भी शर्म
6: है।
4: हाँ।
6: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
4: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
7: हम जैसे इधर आओ।
8: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड। हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
9: स्टूडेंट्स जानते हैं कि देश पूरी हो रही है। नरेंद्र मोदी इसके आर्किटेक्ट हैं, अमित शाह ज्ञानेश कुमार इसके इम्प्लीमेंटर्स हैं और इस बात को राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने आज डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में सोचेंगी। मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू।
10: राहुल गांधी और उनके नेतृत्व में इंडी गठबंधन के नेता जो पिछले कई दिनों से अनर्गल निराधार प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान महामहिम राष्ट्रपति एक व्यक्ति नहीं है वो देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है उसको लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो न सिर्फ विचित्र लगता है बल्कि उसमें सच से ज्यादा सियासत की गंध आ रही है।

0: की सत्य निष्ठा के प्रति ज्ञान करती हूँ।
1: मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
2: मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: प्रेसिडेंट के साथ हमारी मीटिंग हुई, एक प्रकार से मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि जब हमने राष्ट्रपति को इलेक्शन चोरी वोट चोरी के बारे में बताया, राष्ट्रपति ने डिनाई नहीं किया। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने यह नहीं कहा कि हिंदुस्तान में चुनाव चोरी नहीं हो रहे हैं। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने उल्टा हमसे कहा कि आप सबूत हमारे पास लाइए, और यही ग्रुप खुशी से जो पूरा का पूरा सबूत हमने कलेक्ट किया है राष्ट्रपति के पास ले जाएगा, ले जाने के लिए तैयार है।
3: उनका ये कहना कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने उनके आरोपों को स्वीकार कर लिया है, ये दर्शाता है कि जो अभी तक राहुल गांधी देश की हर संस्था के बारे में, हर संवैधानिक संस्था को अपनी राजनीति का शिकार बनाने का दुष्चक्र रच रहे हैं, उन्होंने अब आज ऐसा प्रतीत होता है कि सारी सीमाएं पार कर दी। अंदर वास्तविकता में क्या बात हुई यह तो कोई वहां का बैठा व्यक्ति ही बता सकता है, परंतु जिस समय राहुल गांधी ये बोल रहे थे, उनके साथ खड़े हुए नेताओं की भाव भंगिमा और उनके चेहरे के भाव ये साफ परिलक्षित कर रहे थे कि जो बोला जा रहा है संभवतः सच से उसका कोई सरोकार नहीं है।

0: पड़े
1: नहीं।
2: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई। ट्रैवल एजेंट कोई गांजा फूंक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
3: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
2: तुम्हारा
3: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
0: यार काट देना।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सौरभ दास और आशुतोष शाह का अलग अलग इनको रखा गया, विमान के अंदर जाकर ले गई पुलिस। प्लेन में आज तक से कहा मैं गिरफ्तार होने आया हूं।
1: कश्मीर से चंडीगढ़ तक ज्ञानेश कुमार पर आर पार, श्रीनगर अनंतनाग में इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन, आपका चंडीगढ़ में प्रदर्शन, लखनऊ में बीजेपी महिला मोर्चा का राहुल गांधी पर हल्ला बोल।
0: दिल्ली प्रदर्शन पर नितिन नवीन का आम आदमी पार्टी पर सीधा अटैक, कहा केजरीवाल की सहयोगी सीजेपी फैला रही है अराजकता, राहुल का पोस्ट, ज्ञानेश भी जाएंगे सरकार भी जाएगी।
1: राष्ट्रपति से इंडिया गठबंधन के नेताओं की मुलाकात के बाद राहुल गांधी का दावा, महामहिम ने हमसे मांगे वोट चोरी के सबूत, हम उन्हें हर प्रमाण देंगे, बीजेपी बोली संवैधानिक सीमा लांघ रहे हैं राहुल गांधी।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। और चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर आज दिल्ली में उबाल पड़ा है। दरअसल भारी सुरक्षा के बाद भी सीजेपी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन उनकी एक ना चली। सुरक्षा बलों ने उन्हें फौरन पकड़ लिया। कुछ दौड़ाकर पकड़े गए तो कुछ को आराम से बसों में बिठाया गया।
0: सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को तो दिल्ली आते ही हिरासत में ले लिया गया। जैसे ही मुंबई से आई फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी, दिल्ली पुलिस की टीम ने विमान के अंदर जाकर अभिजीत दिपके, आशुतोष रंगा, सौरभ दास को हिरासत में ले लिया। तो वो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे कि आज दिल्ली में आखिर हो क्या रहा है। दिल्ली में आज फुल दंगल है, प्रदर्शन पर टकराव है, दौड़ा दौड़ा कर धर पकड़ है, हिरासत है, पुलिस का डीब्रीफिंग, राजधानी में सुरक्षा का ऐसा पहरा कि जंतर मंतर से कनॉट प्लेस तक, दिल्ली के बॉर्डर से रेलवे स्टेशन तक चप्पे चप्पे पर पुलिस, सड़कों पर बैरिकेटिंग और प्रदर्शन करने पहुंच रहे लोगों की धर पकड़।
1: मैं आपको बता दें कि सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस का एक्शन मोड नजर आया। कुछ ताजा तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों को पकड़ा जा रहा है। दिल्ली में करीबन अभी 600 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कैसे अभी दिल्ली पुलिस कई लोगों को डिटेन कर रही है।
0: देखिए अनमोल वाली जहां पर मौजूद थे, वहां की हमने अभी आपको तस्वीर दिखाई। अब ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहा है। अब इस चार तस्वीरों में आप आज दिल्ली में जो हुआ वो ए टू जेड समझिए। अभिजीत दीपके अपने सहयोगियों के साथ आते हैं तो प्लेन के अंदर से ही उनको समझाया जाता है, उसके बाद उनको डिटेन किया जाता है। दिल्ली पुलिस की तरफ से एक्शन में कोई कसर नहीं है। जहां भी प्रदर्शनकारी दिखे, पहले उनको समझाया गया, फिर उनको डिटेन किया गया। कुछ को तो दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा गया। अब ये देखिए, ये जो जनसुविधा केंद्र है, सुलभ शौचालय, वहां तक कुछ लोग छुप गए थे, लेकिन वहां से भी उनको डिटेन कर लिया गया। फिर उसके बाद बसों में बिठाया गया और फिर डिटेंशन सेंटर जो 12 बनाए गए थे अलग अलग जगह पर, वहां तक ले जाया गया, लेकिन ज्यादातर छत्रसाल स्टेडियम में ही रहे। 600 से ज्यादा लोगों को अभी तक डिटेन कर लिया गया है और जैसे जैसे प्रदर्शनकारी आ रहे हैं उनको बसों में बैठाकर डिटेन किया जा रहा है।
1: जी, आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले लेफ्ट और आयसा की तरफ से भी प्रदर्शन किया गया था और लेफ्ट नेताओं ने सीपीएम महासचिव और बाकी नेताओं के हिरासत में लिए जाने के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी मुख्यालय के पास भी प्रदर्शन किया गया। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि सीपीआईएम महासचिव एम बेबी हिरासत में लिए गए हैं और कहा जा रहा है कि मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी और दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पष्ट किया गया कि ये प्रिवेंटिव एक्शन है। दरअसल ये तमाम हिरासतों में लोग इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस को अंदेशा है कि ये शायद उग्र ना हो जाए, लगातार इस तरीके से बड़ा प्रदर्शन ना हो जाए, इसी के चलते ये प्रिवेंटिव एक्शन लिए जा रहे हैं। सीपीआईएम के कई वरिष्ठ नेता भी हिरासत में लिए गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं नई दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जहां पर आज तक के तमाम संवाददाता मौजूद हैं और इसके अलावा सीपीआईएम के कई नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है, जिसमें वृंदा कराज जैसे कई नेता शामिल है। ये तस्वीर आप देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी अनमोल बाली भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। अनमोल, आप कहां पर मौजूद हैं और इस समय वहां पर प्रदर्शनकारियों का क्या, किस तरीके की उनकी आप कह सकते अपडेट है उनको लेकर?

0: सुमित, इस समय मैं दिल्ली के जनपथ रोड पर हूँ। कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल का यह इलाका है और मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैसे भारी संख्या में अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो कुछ प्रदर्शनकारी थे इकट्ठे होते हैं, जिसको देखते हुए भारी संख्या में पैरामिलिट्री और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर पहुंचते हैं उनको डिटेन करने के लिए। तो तस्वीरें आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर बसेज लाई गई, वैन लाई गई, ताकि जो प्रदर्शनकारी है उनको डिटेन किया जा सके। जो पुलिस है यहाँ पर सीटी मारकर कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश कर रही है। और कुछ ही मिनटों पहले देखा गया कि तकरीबन 100 से 200 के आसपास जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, नारेबाजी करते हैं, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर देखी जाती है जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ। पर वहीं कुछ ही मिनटों बाद देखा जाता है कि भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं यहाँ पर पहुंचते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि चप्पे चप्पे पर आपको यहाँ पर पैरामिलिट्री के जवान नजर आएंगे, हाथ में जिन्होंने लाठियां पकड़ रखी है, शील्ड पकड़ रखी है, एंटी राइड गियर और हेलमेट के साथ तैनात किए गए। ना केवल जनपथ जो जंतर मंतर की ओर रास्ता जाता है, कनॉट प्लेस का हर एंट्री और एग्जिट उसको बैरिकेड कर दिया गया है। चेकिंग कर ही लोगों को आने जाने दिया जा रहा है और साथ ही जगह जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस की तैनाती की गई है ताकि जो है मौके को संभाला जा सके। और भारी संख्या में महिला सुरक्षा बल भी यहां पर तैनात किए गए क्योंकि बहुत से जो प्रदर्शनकारी थे वो महिलाएं भी देखी गई, तो उसको देखते हुए भारी संख्या में महिला जो सुरक्षा बल है वो भी तैनात किया गया। पर हालांकि अभी जो हालात है वो यहां पर फिर ठीक होते नजर आ रहे हैं, पर कुछ मिनटों पहले यहां देखा गया था कि 100 से 200 के आसपास जो प्रदर्शनकारी थे वो इकट्ठे होते हैं और उनको काबू करने के लिए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक्शन हिमांशु यहां पर देखा जाता है।
1: एक और बात, क्योंकि आप लगातार सुबह से कवर कर रहे हैं, हमारे तमाम संवाददाता यहां पर मौजूद हैं, सुबह से हमने देखा कि पहले कुछ गिरफ्तारियां ज्यादा हुई, डिटेंशन ज्यादा हुई, लेकिन उसके बाद चीजें सामान्य होने लग गई, लोग कम आने लग गए, लेकिन फिर एकाएक लगातार लोग पहुंच गए। क्या धीरे धीरे कुछ कुछ स्पॉट्स पर ज्यादा देखा जा रहा, चाहे वो मिंटो ब्रिज का इलाका हो, चाहे वो जंतर मंतर के आसपास जो आउटर सर्कल है सीपी का, वहां पर ज्यादा प्रदर्शनकारी पहुंच रहे?
0: हिमांशु, सुबह देखा गया कि 10 बजे की कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा कॉल दी गई थी, उसको देखते हुए 7 बजे भी कनॉट प्लेस पे देखा गया दिल्ली पुलिस का एक्शन होता है। फिर उसके बाद 10 से 11 बजे के आसपास देखा जाता है जो कम्युनिस्ट पार्टी और उसके साथ जुड़े छात्र संगठन है वो कनॉट प्लेस से जंतर मंतर जाने की कोशिश करते हैं, पर मिंटो ब्रिज के इलाके से उनको हिरासत में ले लिया जाता है। और उसके बाद अब मैं आपको बताना चाहूंगा रीगल सिनेमा और जो जनपथ रोड है वहां पर दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। एक तस्वीर तो मैं आपको अपने पीछे दिखा रहा था सुरक्षा की, अगर मैं एक तस्वीर आपको दूसरी तरफ अपने कैमरा सहयोगी
1: अनमोल आपका दोबारा से रुख करेंगे, हमारे अनमोल हमारे एक और सहयोगी अमित भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल कई जगहों पर प्रदर्शनकारी अब भी पहुंचे हैं और ऐसे में हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज ने एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं।
2: इस वक्त हम कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में हैं, यहाँ पे प्रदर्शनकारी 150 से 200 के तादाद में दिख रहे थे और अब इस सेक्टर में कंट्रोल करने के लिए आपको दिखाई देगा कि दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, कमांडोज हैं और जो पैरा फोर्सेस के आरएएफ के जवान हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं। देखिए प्रदर्शनकारियों का टेंपल रन शुरू हो गया है, वो एक तरह से इस सेक्टर से दौड़ के भाग रहे हैं और पुलिस उनको यहां से हटाते हुए दिखाई दे रही है। बीते एक घंटे से यहां पर ये प्रदर्शनकारी जेंजी युवा प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे, ज्ञानेश कुमार सीसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वोट चोरी के बारे में नारेबाजी कर रहे थे, जो विपक्ष का आरोप है उसी तरह के नारेबाजी यहां पर सुनाई दे रहा था। बीते एक घंटे से यहां ये जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन अब अचानक से दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आती है और इस सेक्टर में भी जो प्रदर्शनकारी थे उनको हटाया जा रहा है। तो ये लगातार 1.5-2 घंटे से इसी तरह का क्रम चल रहा है कि जहां भी प्रदर्शनकारी इकट्ठा होते हैं पुलिस आती है, आरएएफ आती है और उनको यहां से दौड़ाती है, उसके बाद वो दूसरी तरफ किसी और सेक्टर में चले जाते हैं। सेक्टर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिहाज से, देखिए एक युवा महिला प्रदर्शनकारी है उनको डिटेन किया गया है और डिटेन करके बसों में ले जाया जा रहा है। इस बार जो बसेस भी बुलाए गए हैं वो अलग तरह के बसेस हैं, सारे युवा प्रदर्शनकारी हैं, बैकपैक उनके पास है,
3: पुलिस को भी आप समझिए। लेकिन मुझे
4: और अब बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है, लेकिन किस मुद्दे पर बोलेंगे? क्या सीजेपी के प्रोटेस्ट पर यहां पर अपनी बात रखी जाएगी? ये अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए समझने की कोशिश करते हैं जो बीजेपी की अब शुरू होने जा रही है।
1: और देखिए आपको याद होगा आज सुबह भी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं नितिन नवीन उनकी तरफ से बयान आया था, उन्होंने ना सिर्फ सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को आम आदमी पार्टी द्वारा समर्थित एक प्रोटेस्ट बताया था, उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि कैसे लगातार विदेशी ताकतें भी लगातार देश में असंतुलित करने के लिए असामाजिक तत्व को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही हैं, तमाम चीजें उन्होंने बताई थी। और एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है।
5: मैं आप सभी का स्वागत है। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं लोकसभा सांसद श्री संबित पात्रा जी उपस्थित हैं। मैं संबित जी से आग्रह करता हूं कि आप सबका संबोधन करें।
6: धन्यवाद आदरणीय सिद्धार्थ जी और सभी मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के लिए आप यहां उपलब्ध रहे। भारतवर्ष का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर्स है और जंतर मंतर का क्षेत्रफल लगभग 4 किलोमीटर का है। तो भारत की कहानी जंतर मंतर की कहानी नहीं है। जंतर मंतर में जो हो रहा है, टीवी में जो दिख रहा है और कुछ सोशल मीडिया के हैंडल में जंतर मंतर को दिखाया जा रहा है, वो भारत की कहानी नहीं है। भारत शांत है, भारत सुशासन के साथ आगे बढ़ रहा है, मगर दिल्ली के एक कोने में कुछ अराजक तत्व जिस प्रकार से अराजकता कर रहे हैं वह कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। मगर आज मैं आपको कह सकता हूं कि आज द एनार्किस्ट्स हैव फेल्ड। जो अराजक तत्वों का फ्लॉप शो हम देख रहे हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। प्रयास था, ये कोशिश थी कि भारत को बंधक बनाया जाए, राजधानी को बंधक बनाया जाए, कोशिश थी कि यहां आगजनी हो, कोशिश थी कि यहां मार पिटाई हो, कोशिश थी कि यहां पर सड़कों पर लड़ाई हो, मगर आज भीड़ तंत्र पर लोकतंत्र की जीत हुई है। जिस प्रकार लोकतंत्र ने आज दिल्ली में प्रदर्शन किया है और जिस प्रकार से सारा विषय कंट्रोल में है, एक बात मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि दी अनार्किस्ट्स हैव फेल्ड और उनका यह फ्लॉप शो नहीं चलने वाला है। कुछ दिनों से आप देख रहे हैं, यह केवल आज की घटना नहीं है, कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी ने एक बंद बुलाया था, कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट था, आज कुछ दूसरे तत्वों ने प्रोटेस्ट किया है, फिर 12 तारीख को एक प्रोटेस्ट बुलाया गया है। तो एक कालखंड में किस प्रकार से भारत में स्थितियों को बिगाड़ा जाए उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, मगर उसके पीछे के नियत को भी समझिए। देयर इज एनार्की विद इन द एनार्किस्ट्स ऑल्सो। अराजक तत्वों के अंदर भी अराजकता है। किसको ये क्रेडिट मिले? तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में गुत्थम गुत्थी चल रही है। आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का ठेका क्या कांग्रेस पार्टी ने ले रखा है? ठेका तो हमने भी ले रखा है, तो हमारा डेट अलग होगा। तो कांग्रेस बोल रही है, अच्छा जेब में कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति, तथा कथित प्रति, अब उसके अंदर क्या है हमने नहीं देखा है, तथा कथित प्रति हम लेके घूमेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का दावा ये आम आदमी पार्टी करेगी? ये नहीं चलेगा, हमारा एक अलग दिन होगा। तो इस प्रकार एनार्किज्म विद इन द एनार्किस्ट यह भी चल रहा है। कल आप देखिए, राष्ट्रपति भवन गए थे कुछ राजनेता, राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलने के पश्चात राहुल गांधी जी का बयान एक नालायक नेता के बयान के समान है। मैं बहुत सोच समझ के ये शब्द मुझे भी कुंठा हो रही है बोलते हुए, तकलीफ हो रही है. आई एम सिटिंग ऑन अ वेरी हाई पेडेस्टल, ही इज द एलओपी ऑफ द कंट्री. मगर जब मैं कहता हूं एक नालायक नेता, इसलिए कहता हूं कि चलिए आपने प्रधानमंत्री के लिए जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया, झूठ बोला, वो पूरा देश देख रहा. आपने जिस प्रकार से भारत के संवैधानिक पदों के लिए, संवैधानिक संस्थाओं के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, पूरा भारत सुन रहा है. कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति को सड़क की लड़ाई में घसीटने का प्रयास किया गया, मगर एक नालायक नेता ने राष्ट्रपति महोदया को सड़क की लड़ाई में घसीटने की कोशिश की है. द एनार्किस्ट राहुल गांधी ट्राइड टू पुल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द एनार्किज्म विच ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कंडक्ट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया. ये कहते हुए कि हम कल कुछ वोट चोरी के विषय को लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गए थे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी मान गई कि हम जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं. अब देखिए, बेसिक प्रोटोकॉल भी राहुल गांधी को समझ में नहीं आता है कि आप कोई मेमोरेंडम लेके जाते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट्स द मेमोरेंडम. ये बेसिक प्रोटोकॉल है भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का. इसीलिए तो भारत का लोकतंत्र विराट है. मगर आपने कहा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसी सांस में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कुछ एविडेंस है तो वो भी दीजिए. क्यों एविडेंस क्यों नहीं लेके गए थे? एविडेंस होगा तभी तो लेके जाएंगे. जब इलेक्शन कमीशन आपको बुलाती है कि हैकाथॉन के लिए आइए, आइए आप हैकाथॉन करिए हमारे साथ और आप ईवीएम को टेंपर कर दीजिए, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम ईवीएम में सुधार लाएंगे, तो नदारत गायब. जब प्रेसिडेंट मैडम कहती है कि एविडेंस है तो दिखा दीजिए, बाद में एविडेंस देंगे. अगर बाद में एविडेंस देंगे तो आप गए क्यों थे? तो आप प्रेसिडेंट के पास गए क्यों थे बिना एविडेंस के? मतलब इतने दिनों से, मैं तो कहूंगा लगभग एक साल हो गया वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी करते हुए, उसका एविडेंस आपके जेब में रहना चाहिए था. क्यों नहीं था आपके जेब में? क्यों गए थे राष्ट्रपति भवन बिना एविडेंस लेके? और बाहर आके नालायक नेता कहता है कि राष्ट्रपति महोदया मान गई कि हम जो कह रहे. आप सोचिए, यह व्यक्ति लायक है क्या देश के प्रधानमंत्री या एक उच्च पद में बैठने के? ही हिमसेल्फ प्रूव दैट ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल इनफ टू ऑक्यूपाई ए हाई पोजिशन इन इंडिया. कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक बहुत बड़ा और गंभीर, एक बहुत सशक्त विषय रखा था, और वो विषय था तीन राज्यों में जो बाई इलेक्शन उपचुनाव हुए उसके नतीजे. असम में उपचुनाव हुआ, नौगांव में हम लोकसभा का चुनाव जीते हैं. कांग्रेस को कितने वोट आए हैं वो तो कल बताया गया, खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया. वेस्ट बंगाल में दो असेंबली के चुनाव हुए, लोकसभा का हुआ, आसाम में असेंबली के चुनाव वेस्ट बंगाल में हुए. नंदीग्राम हो या रेजी नगर हो, दोनों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई. और पुडुचेरी में एनडीए की जीत हुई. चार सीट के नतीजे कल आए, चारों सीट पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत हुई. इनके जो वकील गए थे कांग्रेस पार्टी के, और ये तथाकथित एनार्किस्ट के जो वकील कल सुप्रीम कोर्ट गए थे कि हमें फैसिलिटी चाहिए मी लॉर्ड, टॉयलेट की फैसिलिटी चाहिए, वहां पर डॉक्टर की फैसिलिटी चाहिए जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको सारे फैसिलिटी प्रोटेस्ट साइट पे चाहिए, प्रोटेस्ट साइट पे आपको डॉक्टर भी चाहिए, आपको टॉयलेट भी चाहिए. आपके कहने पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी कर ली, मगर जब ये चारों नतीजे निकल कर आ रहे थे उस समय टॉयलेट मांगने के बदले आपको कहना चाहिए था मी लॉर्ड हमारे वोट चोरी हो गए हैं हमें बचाइए, क्यों नहीं कहा? अरे टॉयलेट मांगने गए थे, वोट चोरी का न्याय तो मांग लेते. आपके जेब में सबूत थे तो वो सबूत दिखा देते कि लॉर्डशिप देखिए ये सबूत है, वोट चोरी हो गई बंगाल में, वोट चोरी हो गए नागांव में, गौरव गोगोई हमारा इतना बड़ा नेता उसके साथ धोखा हो गया, आसाम में वोट चोरी हो गई और बीजेपी जीत गई, पुडुचेरी में वोट चोरी हो गई और एनडीए जीत गया. वहां जाके शौचालय मांगेंगे और वह शौचालय भी हमारी सरकार देगी, क्योंकि आपकी सरकार तो शौचालय भी नहीं दे रही थी. और वोट चोरी के विषय में सुप्रीम कोर्ट के सामने आप नहीं बोल सकते क्योंकि तथ्य नहीं है। कल ये जो महानुभाव हैं अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और केजरीवाल, ये तीनों निकल कर आए थे, वो ट्वीट ट्वीट और एक्स में सब केला किया था इन्होंने। ये अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया कि रेजी नगर में जो असेंबली का काउंटिंग हो रहा है उसमें बूथ नंबर 109 में भारी गड़बड़ी हो गई है, वहां वोट चोरी हो गई। कैसे चोरी हो गई वोट? वहां कुल वोट जो है वो 772 है और बीजेपी को 772 में से 909 वोट मिल गया। रजिस्टर्ड वोटर्ड 772, बीजेपी वोट्स रिपोर्टेडली सिक्योर्ड 909। तो ये कितना बड़ा घपला हो गया बूथ नंबर 109 रेजी नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। अरविंद केजरीवाल जी बैठे हुए थे, बिल्कुल फोन पकड़कर अपने हाथ में फटाफट ट्वीट कर दिया, दिस इज एब्सोल्यूटली शॉकिंग, दिस इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ ईवीएम टैम्परिंग। वो शॉक्ड हो गए, शॉक्ड होकर गिर पड़े और उन्होंने कहा कि ये एकदम ईवीएम टैम्परिंग हो गया है, उसका प्रूफ आ गया है हमारे पास। अरे भाई साहब, आप इतने शॉक हो गए, गिर पड़े, ईवीएम टैम्परिंग हो गई, तो टॉयलेट क्यों मांग रहे थे सुप्रीम कोर्ट में? ये वाला क्या हुआ, ये वाला क्या हो गया? चले जाते इसको लेकर। आधे घंटे के बाद जिस चैनल ने ये चलाया था उस चैनल ने लिखा, अरे हमसे गलती हो गई, वहां पर रजिस्टर्ड वोट जो है वो 772 नहीं है, वो 1110 है, लगभग 1110 है, 1101 है। उसके बाद वहां के सीईओ चीफ इलेक्शन ऑफिसर, उन्होंने भी ट्वीट किया कि 1109 वोट है और ये फेक था, ये सब फेक था। और ये सीईओ की ट्वीट देखी, वो भी जानते हैं कि ये फेक है, अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं, अभिषेक बनर्जी भी जानते हैं, ममता बनर्जी भी जानती है कि ये सब फेक था। मगर फेक न्यूज के आधार पर किस प्रकार से यहां एनार्की फैलाया जाए उसका पूरा षड्यंत्र ये केजरीवाल जी और उनकी कंपनी रच रही थी। अब आज एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं केजरीवाल जी से याद आ गया मेरे को, वो सुन तो रहे होंगे शौक धोके, केजरीवाल जी आप इतना शौक हो गए थे कल रिजी नगर में और एकदम कंक्लूसिव प्रूफ था ईवीएम टेम्परिंग का, तो अक्टूबर 8, 2026, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, अक्टूबर 8, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस जयमाला बागची एंड वी मोहना ने आपके 50 वार्ड, म्युनिसिपल वार्ड पंजाब में जो चुनाव हुए थे उसके 50 म्युनिसिपल वार्ड के इलेक्शन को सेट असाइड कर दिया और कहा कि यहां पर मार्च से पहले फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। यह चोरी है या फेक न्यूज चोरी है? ये चोर मचाए शोर, जो सबसे ज्यादा चोरी किया हुआ है, जिन लोगों ने सबसे अधिक लोकतंत्र को और इलेक्टोरल प्रोसेस को खतरा पहुंचाया है, डैमेज किया है, वो लोग यहां चोर चोर चिल्ला रहे हैं। मैं तो वो रेणुका चौधरी जी का एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं वो एक ऑटोमेटिक डोर के सामने खड़ी थी और आप लोग थे उनके सामने, तो वो ऑटोमेटिक, वो कुछ बोल रही थी कि चोर, वोट चोरी हो गई, तो वो ऑटोमेटिक डोर अपने आप कुछ 10 सेकंड में बंद होता है, वो डोर बंद हो रहा था, रेणुका चौधरी धक्का दे रही, कौन बंद कर रहा है इस दरवाजे को, कौन कौन है ये? तो नीचे किसी ने कमेंट किया था, ये मोदी जी डोर को बंद कर रहे हैं, मोदी जी डोर चोर भी हैं। अगर मोदी जी गलती से कल को बोल दे कि सांस लेना बहुत जरूरी है जीवन के लिए, सभी सांस लें, तो मुझे तो शक है कहीं ये अपना नाक ना बंद कर लिए, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि सांस लेना जरूरी है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल छापा है, अन्य अखबारों ने भी छापा है, नो कोरिलेशन बिटवीन SIR डिलीशंस एंड असेंबली पोल रिजल्ट्स बंगाल CEO। यह पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं एक 20 सेकंड के अंदर। डीकोडर, एक डीकोडर नामक इन्फ्लुएंसर है, कौन बैठे हुए हैं आप मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बहुत लोगों ने बहुत हंगामा काटा। डिकोडर ने क्या कहा? डिकोडर ने कहा ये एसआईआर में बड़ी गलतियां हो गई है, बड़े धांधली हो गए हैं बंगाल के अंदर। इसमें जो वोट काटे गए, मुसलमानों के अधिकांश वोट कट गए, और उन्होंने कहा कि ये जो वोट काटे गए, जो 5 टॉप मोस्ट असेंबली सीट थी जिनमें वोट काटे गए, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई और भारतीय जनता पार्टी आगे रही, फायदा हो गया। उन्होंने कहा, डिकोडर ने कहा कि 62% जो वोट काटे गए वो महिला की थी, महिलाओं की थी। तो ये पूरी खबर बनके छप गई, हर जगह सोशल मीडिया में चलने लगा, लोग प्रश्न खड़ा करने लगे कि आखिर ये ऐसे कैसे हुआ, ये मुसलमानों के वोट क्यों काटे जा रहे हैं, 62% महिलाओं की वोट कैसे कट गए, और 5 टॉप सीट्स जिसमें सबसे अधिक वोट कटे बीजेपी को फायदा हो गया। अब सीईओ बंगाल ने ट्वीट किया, सीईओ बंगाल ने ट्वीट करके कहा कि नो, मतलब मैं पूरे डिटेल में नहीं जा रहा हूं, कम समय है। पहले तो उन्होंने 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी के विषय में कहा, द इलेक्टोरल डाटा फॉर द वेस्ट बंगाल डज नॉट सपोर्ट द पॉलिटिकल नरेटिव ऑफ डिकोडर। द 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विद द हाइएस्ट डिलीशंस, शमशेरगंज, चौरंगी, मेटियाबुर्ज, कोलकाता पोर्ट, वेयर वन बाई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एंड जोरासंखो बाई बीजेपी। 4 तृणमूल कांग्रेस जीती है और 1 बीजेपी जीती है। द 5 विद द फ्यूएस्ट डिलीशन, जिनमें सबसे कम डिलीशन हुआ, महिषादल, भगाबन पाऊ, इंदस, कातुलपुर और पातुषपुर, देवर ऑल वन बाई बीजेपी। जिसमें सबसे कम डिलीशन हुआ वो 5 बीजेपी जीती है। और महिलाओं का 50% वोट कटा है, 62% वोट नहीं कटा है। और देर इज नो डाटा बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी, जो अधिकांश वोट मुसलमानों के कटे थे, कोई डाटा नहीं है, ये डाटा गलत है कि 62% महिलाओं के वोट कटे और अधिकांश मुसलमानों के वोट कटे, तो यह भी सब कुछ गलत था। अभी कल, आज शनिवार है, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का दिखा रहा हूं मैं ही आपको, कल का है, आज के अखबारों में छपा है। YRCP कांग्रेस आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट गई थी कि जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उसको आप शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि SIR में कुछ गड़बड़ी लग रहा है। नथिंग रॉन्ग इन डिलीटिंग डेड, शिफ्टेड और डुप्लीकेट वोटर्स, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द बेंच सेड दैट दोज हु हैव मूव्ड अवे कुड नॉट बी अलाउड टू वोट इन द वार्ड्स। नेम्स ऑफ डुप्लीकेट एंड डिसीज्ड वोटर्स ऑल्सो नीडेड टू बी स्ट्रक ऑफ एंड SIR टुक केयर ऑफ दीज एनोमलीज। जो मर गए हैं, जो शिफ्ट हो गए हैं और जो डुप्लीकेट है, वो SIR में स्ट्रक ऑफ हो गए हैं, इसलिए जो इलेक्शन कमीशन ने डेट दिए हैं वो ठीक है, कोई शिफ्टिंग नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के कल का जजमेंट है। और मैं आपको अब असली कहानी पर आता हूं, ये सारा खेल क्यों हो रहा है। कुछ दिनों पहले जयराम रमेश और सुप्रिया सिनेट कांग्रेस की नेत्री हैं, और जयराम रमेश जी को तो हर कोई जानता है, तो दोनों के एक एक ट्वीट पढ़ रहा हूं मैं। जयराम रमेश, मात्र 12 घंटों के अंदर ही एयरटेल और जियो दोनों ने स्टारलिंक के साथ साझेदारी की घोषणा कर दी, जबकि अब तक वे इसके भारत में आने को लेकर लगातार आपत्तियां जताते आ रहे थे। यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि इन साझेदारियों को खुद प्रधानमंत्री ने ही राष्ट्रपति ट्रंप के साथ सद्भावना खरीदने के लिए स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क के जरिए सुगम बनाया है। लेकिन कई अहम सवाल अभी भी बने हुए हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई मामला होगा, तब कनेक्टिविटी को चालू या बंद करने की शक्ति किसके पास होगी? स्टारलिंक के पास या इसके भारतीय साझेदारों के पास? क्या अन्य सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी प्रदाताओं को भी अनुमति दी जाएगी और यदि हां तो किस आधार पर। और निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल टेस्ला के भारत में निर्माण को लेकर भी है, क्या अब जब स्टारलिंग को भारत में प्रवेश मिल गया है टेस्ला के निर्माण को लेकर कोई प्रतिबद्धता जताई गई है। सुप्रिया सिनेट, एलोन मस्क वॉज ऑन द मोदी ट्रंप कॉल जस्ट फ्यू डेज अगो एंड नाउ हिज कंपनी स्टारलिंग्स टॉप एग्जीक्यूटिव्स इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट शॉटवेल एंड वीपी लॉरेन आर इन इंडिया meeting telecom minister Jyotiraditya Scindia and signing MOUs including one with Meghalaya for pilot rollout in remote areas. Too much coincidence. Clearly, revenue maximization was yet another jumla to attack the Congress and has been completely sacrificed to favor a foreign billionaire. Modi ji surrender kar gaye ek foreign billionaire ke samne, yah Supriya Sinet और 13 मार्च 2025 को जयराम रमेश स्टारलिंग को लेकर कह रहे थे। और कल राहुल गांधी जी ने स्टारलिंग को लेकर क्या कहा, वेलकम टू इंडिया, इंडिया में केवल एक व्यक्ति का आधिपत्य है। देखिए मोदी वर्सेस मीर जाफर की लड़ाई है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो देश को भी गिरवी रख सकते हैं सत्ता के लिए, याद रहे। ये जो सड़क के ऊपर अराजकता की लड़ाई करने का प्रयास किया जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान सुने कि केवल और केवल किस प्रकार बिना इलेक्शन जीते, बिना इलेक्शन लड़े सत्ता पे काबिज हो जाना है, किस प्रकार मेहनत किए बगैर प्रधानमंत्री बन जाना है, उसके लिए भले ही देश को गिरवी रखना पड़े, दोहरा मानदंड अपनाना पड़े, उसके लिए मीर जाफर तैयार है। यह लड़ाई मोदी वर्सेस मीर जाफर की है। जो 2025 के अंत में कह रहे थे कि कोई विदेशी कंपनी आकर भारतवर्ष में सैटेलाइट कैसे चालू कर सकता है, भारत के अगर किसी और देश के साथ रिलेशन बिगड़ेंगे उस समय सारी सैटेलाइट सेवाएं ठप कर दी जाएंगी, तो क्या यह केवल धन के आदान प्रदान के लिए भारत ऐसा कर रहा है? और आज उनके ही मालिक राहुल गांधी भारत को धता बता रहे हैं, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने आई थी। यह दिखाता है कि किस प्रकार लोकतंत्र भारत में जीवित है। अभी भी एसेंशियल सर्विसेज पूछताछ करके जिनको आना चाहिए वो सड़कों में आवागमन कर रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसका पूरा पालन हो रहा है, सभी लोग आना जाना कर रहे हैं। यही कारण रहा कि कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग लाल झंडा लाल सलाम करके हमारे दफ्तर तक भी पहुंच गए, वरना तो हमारा दफ्तर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होना चाहिए, यहां तक तो कोई भी नहीं आना चाहिए, आ गए। नक्सलिज्म समाप्त हो गया देश में, नक्सलिज्म के नाम पर उघाई चलती थी। ये जो वृंदा करात और ये जो कम्युनिस्ट लोग आज इतना हो हंगामा मचा रहे हैं, इनके घर कैसे चलते थे? ये नक्सलिज्म के उगाही से चलते थे। नक्सलिज्म समाप्त हो गया है और समाप्त ही रहेगा, चोलबे ना, ये नक्सलिज्म चलेगा नहीं देश में। आप अराजकता फैलाने की कोशिश करो, हम नक्सलिज्म समाप्त करेंगे, 370 समाप्त करेंगे तो खून की नदियां बहेंगी नहीं बहेगी, तिरंगा लहराएगा, होगा देश में, देश का कानून चलेगा, देश में अराजकता नहीं चलेगी और देश में सत्य की जीत होगी। ना आतंकवाद का जीत होगा, ना अराजकता की जीत होगी, ना नक्सलिज्म की जीत होगी और ना ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से आकर यहां विदेशी झंडा फहरा सकेगी। इन मीर जाफरों के कारण मुगल आए, इन मीर जाफरों के कारण अंग्रेज आए, मोदी है और मोदी ही अंग्रेज और घुसपैठियों से इस देश को बचाएंगे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रहे कि मोदी वर्सेस मीर जाफर की लड़ाई में भारत की जनता मोदी जी के साथ और देश के साथ खड़े हैं, क्योंकि मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों के पीछे खड़े हैं, उनके बल पर काम कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी अपील करती है 140 करोड़ जनता से कि पत्थर के भांति, चट्टान के भांति हमें अपने प्रधानमंत्री को शक्ति देना है, उनके पीछे खड़े रहना है, इस देश को मजबूत बनाना है। स्टार भी हमारा होगा, लिंक भी हमारी होगी, यह देश भी हमारा होगा, फतेह भी हमारा होगा, जीत भी हमारी होगी, नक्सलिज्म भी समाप्त होगा और आतंकवाद भी समाप्त होगा। चाहे विदेशी ताकत लाख स्पॉन्सर कर दे, जीत भारत की ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई शक तो छोड़ा ही नहीं मैंने। मैंने आपने प्रश्न पूछा कि राहुल गांधी क्या अराजकता फैला रहे हैं, क्या कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अराजकता फैला रहे हैं, तो मैं
4: तो ये बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज बड़े नेताओं को हिरासत में लिए जाने का दिन है और ये खबर आ रही है कि ममता बनर्जी को भी हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने ममता बनर्जी को हिरासत में लिया और ये तस्वीर देखिए, ये पुलिस की वैन में ममता बनर्जी बिल्कुल पीछे की तरफ बैठी हुई है। दिल्ली पुलिस ने ममता बनर्जी को हिरासत में लिया है और जैसे कि दिल्ली पुलिस ने कह दिया था, आम हो या खास, अगर कोई बाहर निकलेगा प्रोटेस्ट करेगा तो हिरासत में लिया जाएगा। और अब ये तस्वीरें जहां ममता बनर्जी हिरासत में है और बस में बैठी हुई है जो कि पुलिस वैन जिसे कहा जाता है।
1: ये बिल्कुल देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले ही बता दिया गया था कि प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस, नई दिल्ली डीसीपी की तरफ से भी कहा गया था कि कुछ लोगों को प्रिवेंटिवली हमने डिटेन किया है, जिसमें ना सिर्फ आपको याद होगा सीजेपी के तीन बड़े नेता जिनको आज फ्लाइट में ही डिटेन किया गया था, इसके अलावा आपको याद होगा ध्रुव राठी जो एक इन्फ्लुएंसर है उनको भी गुड़गांव से डिटेन किया गया था, वो अपने घर में मौजूद थे। सीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया और अब ममता बनर्जी को भी हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ममता बनर्जी को आज दिल्ली में हिरासत में लिया गया, डिटेन किया गया। दरअसल ये तमाम चीजें जो हैं, तमाम डिटेंशन ये इसलिए की जा रही है ताकि ये प्रदर्शन उग्र ना हो। दिल्ली पुलिस की तरफ से इसको लेकर स्पष्टीकरण भी दिया गया था, इसको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल की गई थी और आज ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आज सीजेपी की तरफ से प्रदर्शन का आह्वान किया गया था, जंतर मंतर पर पहुंचने के लिए कहा गया था। दिल्ली पुलिस की तरफ से आज सुबह से ही इन लोगों को या फिर प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया जा रहा है, 600 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया।
7: ममता बनर्जी तृणमूल के कई और कई सांसद, कई नेता आपको नजर आ जाएंगे। इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि ममता बनर्जी को आज जिस तरीके से डिटेन किया गया उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये कहा जा रहा है कि आज ममता बनर्जी को जब डिटेन किया गया उनके साथ कई और नेता भी उनकी पार्टी के उनके साथ वहां पर इकट्ठा थे, उस वैन में मौजूद थे।
4: अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ममता बनर्जी को हिरासत में ले लिया गया, ममता बनर्जी की तरफ से कुछ बयान भी यहां पर दिया गया है, क्या जानकारी आपके पास?
8: देखिए, ममता बनर्जी ने ये ऐलान किया था कल बैठक में भी और तमाम जो विपक्षी दल है उनको ये कहा था कि आपको सीजेपी के प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा रहना चाहिए, भले ही उनसे आपके जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। और कल से ये अंदेशा दिख रहा था कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नेता अगर सीजेपी पर पुलिस जो है उनके प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश करती है, प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश करती है, तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी जो है उनके समर्थन में सड़क पे आएंगी। तो कल हमने देखा कि वो इंडिया गठबंधन की बैठक में थी, आज अब से कुछ देर पहले का ये विजुअल हमारे सामने है जहां पे ममता बनर्जी बाहर निकलती है प्रोटेस्ट करने के लिए, जंतर मंतर के लिए जाने की कोशिश करती है और उसी वक्त दिल्ली पुलिस उनको डिटेन करती है। अब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बात कही जा रही है कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स को आखिरकार डिटेन क्यों किया जा रहा है, तस्वीर भी साझा की गई है जिसमें ममता बनर्जी ने अपने जो मुंह पर एक बैंडेड लगा रखा है, ये तृणमूल कांग्रेस के द्वारा ये तस्वीर साझा की गई है।
1: एक और बात अमित, क्योंकि क्या ममता बनर्जी को आसपास के किसी पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाएगा डिटेन करने के बाद, या फिर उनको भी छत्रसाल स्टेडियम में दूसरे डिटेंशन सेंटर लेकर जाया जाएगा?
8: देखिए डिटेल्स फिलहाल दिल्ली पुलिस रिलीज नहीं कर रही है, जहां तक प्रदर्शनकारियों का सवाल है या फिर उन नेताओं का भी जो समर्थन में आ रहे हैं प्रदर्शनकारियों का, क्योंकि आपने सुबह देखा होगा एमए बेदी जो सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी हैं, जब उनको डिटेल किया गया तो वो डिटेल्स साझा नहीं की गई, लेकिन आपसे कुछ देर में हमारे पास डिटेल भी आ जाएगी कि आखिरकार उन्हें क्या लुटेन दिल्ली के ही वो पुलिस स्टेशन जहां पे हालिया दिनों में इस हफ्ते में डिटेन करके नेताओं को ले जाया गया है, विपक्षी नेताओं को वहां रखा जाएगा, क्योंकि हमने देखा है हाल फिलहाल में या तो किंग्सवे कैंप या पार्लियामेंट स्ट्रीट या बाराखंबा पुलिस स्टेशन जैसे पुलिस स्टेशन में या मंदिर मार्ग के पुलिस स्टेशन में जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनको डिटेन करके ले जाया गया है।
1: बिल्कुल,
8: तस्वीर पूरी दिन में स्पष्ट हो जाएगी।
1: बिल्कुल, एक और बात, क्योंकि हम ये तस्वीरों में देख रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ कई और नेता भी मौजूद हैं, क्या कुछ और नेताओं को भी ममता बनर्जी के साथ डिटेन किया गया है?
8: जी, तृणमूल कांग्रेस के ये और नेता हैं जिनको डिटेन किया गया है, और एक तस्वीर जो है रिलीज की गई है टीएमसी द्वारा और ममता बनर्जी की टीम के द्वारा, जिसमें ममता बनर्जी ने उनकी हिरासत में जब उनको लिया गया तो जब उनको डिटेन किया गया तो उस वक्त उन्होंने अपने मुंह पे एक टेप लगा लिया है, बैंडेड लगा लिया है अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी बहुत सारे सिंबलिज्म में भी उनकी प्रोटेस्ट से सिंबलिज्म जुड़ा हुआ रहता है, इस वजह से भी ये तस्वीर अहम रूप में आप देख सकते हैं। और मैं डोला सेन को भी देख रहा हूँ, सांसद है तृणमूल कांग्रेस की, उनको भी डिटेन किया गया है ममता बनर्जी।
4: मतलब एक सांकेतिक तौर पर ये बताने की कोशिश की है कि हमारी जुबान बंद कर दी गई है, हमारे शब्दों को हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, ये बताने की कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से यहां पर की गई है। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने ममता बनर्जी को हिरासत में ले लिया है और उनके साथ में देखिए डेरेक ओब्रायन और भी कई सांसद यहां पर दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ में पांच लोगों को, ममता बनर्जी समेत पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है, डोला सेन भी इसमें शामिल है।
1: और देखिए अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कनॉट प्लेस पर पुलिस का एक्शन जारी है, पुलिस खदेड़कर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले रही है। कुछ ताजा तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि आज तक के संवाददाता लगातार इस प्रदर्शन को कवर करने के लिए पुलिस की कार्रवाई को जिस तरीके से पुलिस लगातार लोगों को हिरासत में ले रही है उनको भी लगातार कवर कर रही है, आप तक ये तमाम खबरें पहुंचा रही है।
9: इस वक्त हम कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में हैं, यहाँ पे प्रदर्शनकारी 150 से 200 के तादाद में दिख रहे थे और अब इस सेक्टर में कंट्रोल करने के लिए आपको दिखाई देगा कि दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, कमांडोज हैं और जो पैरा फोर्सेस के आरएएफ के जवान हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं। देखिए प्रदर्शनकारियों का टेम्पल रन शुरू हो गया है, वो एक तरह से इस सेक्टर से दौड़ के भाग रहे हैं और पुलिस उनको यहां से हटाते हुए दिखाई दे रही है। बीते एक घंटे से यहां पर ये प्रदर्शनकारी जेंजी युवा प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे, ज्ञानेश कुमार सीसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वोट चोरी के बारे में नारेबाजी कर रहे थे, जो विपक्ष का आरोप है उसी तरह के नारेबाजी यहां पर सुनाई दे रहा था। बीते एक घंटे से यहां ये जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन अब अचानक से दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आती है और इस सेक्टर में भी जो प्रदर्शनकारी थे उनको हटाया जा रहा है। तो ये लगातार 1.5-2 घंटे से इसी तरह का क्रम चल रहा है कि जहां भी प्रदर्शनकारी इकट्ठा होते हैं पुलिस आती है, आरएएफ आती है और उनको यहां से दौड़ाती है, उसके बाद वो दूसरी तरफ किसी और सेक्टर में चले जाते हैं। सेक्टर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिहाज से देखिए एक युवा महिला प्रदर्शनकारी है उनको डिटेन किया गया है और डिटेन करके बसों में ले जाया जा रहा है। इस बार जो बसेस भी बुलाए गए हैं वो अलग तरह के बसेस हैं।
1: और अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए आपको बता रहे थे कि जंतर मंतर के आसपास
10: इस वक्त हम हैं कनॉट प्लेस में, जहां पर प्रदर्शनकारी जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से अब भाग रहे हैं, और पुलिस जो है वो अब इनके पीछे दौड़ रही है। पुलिस जो है इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है धीरे धीरे कर यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी संख्या बढ़ रही थी। और मैं अपने कैमरा पर्सन हिमांशु से कहूँगा कि वो अगर आपको तस्वीरें दिखा पाएं, जैसे ही पुलिस यहाँ पर आई जो प्रदर्शनकारी हैं वो एक एक करके जो अलग अलग गलियां हैं वहां पर भागी, और उसके बाद में आप देख सकते हैं ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो भी यहां पर पहले से ही तैनात थी। बैरिकेडिंग की गई थी, उसके बावजूद भी यहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहां पर पहुंचे। और अब आप ये तस्वीरें देखिए, कनॉट प्लेस जनपद का ये इलाका है और यहाँ पर एक एक करके जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। धीरे धीरे कर यहाँ पर जो भीड़ थी वो बढ़ रही थी प्रदर्शनकारियों की, और उसके बाद जो अलग अलग छोटी छोटी गलियाँ हैं इन इलाकों में वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको डिटेन किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, और उनको अब गलियों से ढूंढ ढूंढ कर जो पुलिस है पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो डिटेन करके लेकर जा रही है। तो अलग अलग तस्वीरें देखिए चारों तरफ, कहीं भी अगर आपको मेरे कैमरा पर्सन हिमांशु दिखाएंगे तो एक एक करके जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहाँ पर डिटेन किया गया है। तो एक तस्वीर जो थी वो यहाँ पर थोड़ी देर से हम लोग देख रहे थे कि प्रदर्शनकारी एक एक कर यहाँ पर जमा हो रहे थे, और उसके बाद अचानक से जो पुलिस है पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो यहाँ पर आती हैं और इन प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर लेकर गई। कैमरामैन हिमांशु के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक।
4: सुमित, अब ये जो अभी वीडियो अभी देखा, जो फुटेज अभी देखा, जो मनीष पांडे की रिपोर्ट थी उसको देख के ऐसा लगता है कि पूरी रणनीति प्रदर्शनकारियों ने भी बनाई है कि छोटे छोटे वक्त के अंतराल के बाद अचानक से जाना है, प्रदर्शन करना है और फिर हिरासत में हो जाना है।
11: देखिए बिल्कुल, लेकिन भीड़ अगर आप देखें तो ये बढ़ती जा रही है कनॉट प्लेस के आसपास के इलाकों में, ये भीड़ है। देखिए किस तरीके से पुलिस ने करीबन 600 से ज्यादा डिटेन लोगों को किया, हालांकि देखिए संख्या अभी और बढ़ेगी क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे दिन बढ़ता जा रहा है प्रदर्शनकारी वहां पहुंच रहे हैं, दिल्ली पुलिस उनको डिटेन करती जा रही है। लेकिन ये तमाम चीजों के बीच में हम अपने दर्शकों को बताएं कि आज तक की टीम लगातार नई दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मौजूद है, और कनॉट प्लेस के इलाके में खासतौर पर जो आउटर इनर सर्कल है उसके बीच में जो सर्विस लेन्स है प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा वहां पर है, और पुलिसकर्मी जो है या जो लगातार पुलिस सुरक्षा बल वहां मौजूद है उनको ना सिर्फ आगे की तरफ यानी बाहर की तरफ उस 4 किलोमीटर के पेरिफेरल जो या फिर उनका कॉर्डन एरिया है उससे बाहर कर रहे हैं, बल्कि उनको जो लोग उसमें अभी भी है मौजूद है उनको हिरासत में भी ले रहे हैं। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये कनॉट प्लेस की तस्वीरें हैं जहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, और छावनी में तब्दील हो गई है राजधानी दिल्ली। प्रदर्शन पर लगातार प्रदर्शनकारी वहां पहुंच रहे हैं, सीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को कई नेताओं को हिरासत
2: प्लेस में मौजूद हूं, और दिल्ली पुलिस की भारी बैरिकेडिंग और सुरक्षा के बावजूद भी यहां पर भीड़ जमा है काफी संख्या में, और कुछ समर्थक यहां पर हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये पोस्टर क्या लिया हुआ आपने?
12: मैंने लिखा है कॉकरोचो कितना भी दम लगा लो, भारत को बांग्लादेश और नेपाल नहीं बनने देंगे, जो तुम्हारा बाप अमेरिका चाह रहा है ना वो हम नहीं होने देंगे।
2: अच्छा, आपको कैसा लग रहा है अमेरिका ही चाह रहा है?
12: वो चाह रहा है क्योंकि वो बार बार टैरिफ की धमकी देता है, कभी कभी ये बोलता है रूस से तेल मत लो, मोदी जी झुक नहीं रहे हैं।
2: ये पोस्टर क्या है जरा दिखाइएगा प्रदीप गुप्ता, ये पोस्टर इसमें क्या लिखा है?
12: वो बोलते हैं ना मोदी डरपोक है, मोदी डरपोक है, ये मत बोलो तुम्हारे बाप दादा कश्मीर में झंडा नहीं।
13: ठीक है, दिल्ली में ईवीएम गलत हो गई, हिमाचल में ईवीएम ठीक है, हरियाणा में ईवीएम गलत हो गई, झारखंड में ईवीएम ठीक है, छत्तीसगढ़ में ईवीएम गलत हो गई, तमिलनाडु में ईवीएम ठीक है, बंगाल में ईवीएम गलत हो गई।
14: जहाँ मोदी का शासन है ना वहाँ तो ये लोग आतंक बिल्कुल फैला के रखा है, जहाँ मोदी का शासन नहीं है वहाँ जाके करो ना।
2: आप किस लिए यहाँ पर आए?
14: वहाँ नहीं
4: जी हम।
11: ये लगातार ये तस्वीर हम दिखा रहे थे, अरविंद ओझा हमारे सहयोगी, लेकिन दिल्ली पुलिस एक्शन के बीच कई प्रदर्शनकारी पंगला साहिब गुरुद्वारे में भी चले गए, वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं।
15: अभी भी जो सबसे बड़ा चैलेंज दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ अगर सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो वहाँ वो बना हुआ है ये गुरुद्वारा बंगला साहिब, क्योंकि इसके अंदर कई सारे जो प्रदर्शनकारी हैं वो जाकर के रुके हुए हैं और हर कुछ देर में बाहर आते हैं, नारे लगाते हैं, और जैसे ही पुलिस उन्हें पकड़ने जाती है वापस अंदर भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस उन्हें गुरुद्वारे के अंदर घुस के नहीं पकड़ेगी। और याद रखिए ज्यादातर सीजेपी के लोग नहीं है, ये सारे लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस के एसएफआई के और आयसा के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लोग यहाँ पर बहुत अच्छी रणनीति बनाकर आए, उन्हें पता था कि एक रिलीजियस प्लेस के अंदर एक धार्मिक स्थल के अंदर पुलिस घुसेगी नहीं। मैसेजिंग है ये अंदर चली गई है, जिसकी वजह से आप देखें तो गेट्स के पास आपको अब प्रदर्शनकारी नहीं दिखेंगे, प्रदर्शनकारी अंदर की तरफ है अब, और बाहर बहुत भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है। और जैसे ही पुलिस थोड़ी सी पीछे होती है, 10 कदम पीछे होती है, तो अचानक से अंदर से कुछ लोग आते हैं और गेट के अंदर ही खड़े होकर नारे लगाते हैं और फिर वापस अंदर भाग जाते हैं। तो ये जो है पिछले 1-1.5 घंटे से कुछ ऐसा ही जो खेल है ये दिल्ली पुलिस के साथ चल रहा है, लेकिन जो भी बाहर आता है उसे तुरंत पकड़ के यहाँ से डिटेन करके तुरंत हटाया जा रहा है, और धीरे धीरे अंदर रहने वाले लोगों की संख्या भी कम होती हुई अब दिखाई दे रही है।
4: तो सुबह से लेकर अभी तक दिल्ली की अलग अलग जगह से हमारे अलग अलग सहयोगी हर एक रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। कई बड़ी हस्तियों को भी डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया, और आगे भी हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
18: Going back and forth between job sites and the office made it impossible to keep up with calls and texts. I was losing potential customers, losing money, until I switched to Quo.
19: Quo has helped over 90,000 plus companies streamline their communication so they can focus on growing their business.
18: Double time, let's go!
19: Money is on the line. Always say hello with Quo. Try Quo for free at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
20: Election Day is approaching November 3rd, so stay informed with TuneIn as your midterm election headquarters for all the news updates and more. Follow the race with live national and local coverage so you can be in the know leading all the way through Election Day. Hear news on key races, results, and analysis from sources you trust right here on TuneIn. Just search Election on TuneIn or tell your smart speaker to play your favorite news station on TuneIn to stay informed.
21: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
22: गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
23: गड़बड़ है।
24: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ? पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है। तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
1: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
7: गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
8: गड़बड़ है।
9: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
10: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार गोटी थमका लगाने बस।
11: मेरे पास एक आइडिया है।
10: क्या?
11: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
12: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
13: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
14: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
15: कौन सी बनानी है?
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
16: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
17: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
18: फिर डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है,
19: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
18: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायबिटीज जूस।
20: जेके मैक्स वाइप इजी, दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।

0: in association with
1: Signature Finest Cardamom Seeds.
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
3: Canara Bank, together we can.
4: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है,
5: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
4: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायफ्री जूस।
6: How's the hostel? Settled?
7: Yes, Matt, really nice.
6: कोई आ रहा है क्या?
8: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटी तो निभा ली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले।
6: मयंक, for real?
8: One carat for my one true love. Natural diamond real love solitaires to reignite your new season of love.
9: आ गया सोमवार और आ गए
10: चकमक चाचा।
9: एक कचौड़ी दो समोसा चकमक तेरा क्या भरोसा।
11: चकमक चाचा से सीधे चकमक है?
9: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही पूछ रहा ना।
11: लेकिन भैया नारे अरे फालतू में सब बेकार एकदम बेकार नारे होते थे हमारे टाइम।
9: अच्छा
11: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
9: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी इन नेताओं की खत्म कहानी।
11: अरे जमीन की चकबंदी में, जमीन की चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में,
9: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा शर्म करो।
11: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
9: अरे लाठी गोली खाएंगे इस्तीफा लेके जाएंगे।
11: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
9: अरे लाल फूल नीला फूल जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
11: अरे बारी बारी सबकी बारी अब की बारी अटल बिहारी।
9: चाय गरम दूध गरम चकमक चाचा भी शर्म
11: है।
9: हाँ
11: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
9: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
12: हम जैसे इधर आओ।
13: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
6: कंडेम दिस एक्ट because it was a very peaceful agitation they were going to participate in Delhi, and I personally feel it's a strong word but it's cowardly of any government to do that.
14: You're calling it a cowardly act? The government will say, look, our responsibility is to ensure no untoward instance. We have clamped down with section 144, you cannot have these large gatherings. We have made it very clear that we fear, we apprehend, that's what the IB is saying, that there could be trouble if gatherings of a large, if large

0: कोई आ रहा है क्या?
1: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटी तो निभाली, अब फिर से थोड़ा रोमांस है।
0: मयंक, फॉर रियल?
1: वन कैरेट फॉर माय वन ट्रू लव। नेचुरल डायमंड रियल लव सॉलिटेयर्स टू रीइग्नाइट योर न्यू सीजन ऑफ लव।
2: आ गया सोमवार और आ गए
3: चकमक चाचा।
2: एक कचौड़ी, दो समोसा, चकमक तेरा क्या भरोसा?
4: चकमक चाचा से सीधे चकमक है?
2: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, बुझ रहा ना।
4: लेकिन भैया नारे, अरे फालतू में सब बेकार, एकदम बेकार। नारे होते थे हमारे टाइम।
2: अच्छा
4: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
2: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
4: अरे जमीन के चकबंदी में, जमीन के चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में?
2: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
4: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
2: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा देके जाएंगे।
4: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
2: अरे लाल फूल, नीला फूल, जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
4: अरे बारी बारी, सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी।
2: चाय गरम, दूध गरम, चकमक चाचा बेशरम
4: है।
2: हाँ,
4: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
2: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
5: हम जैसे? इधर आओ।
6: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
7: कंडेम दिस एक्ट बिकॉज इट वॉज अ वेरी पीसफुल एजिटेशन दे वर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिल्ली एंड आई पर्सनली फील इट्स अ स्ट्रॉन्ग वर्ड बट इट्स कावर्डली ऑफ एनी गवर्नमेंट टू डू दैट।
8: You're calling it a cowardly act. The government will say, look, our responsibility is to ensure no untoward instance. We have clamped down with Section 144. You cannot have these large gatherings. We have made it very clear that we fear, we apprehend. That's what the IB is saying, that there could be trouble if large gatherings were allowed in Delhi today. Therefore, this is a precautionary measure. These are detentions that were necessary.
7: Yeah, but detentions for what? If somebody is having a peaceful march, at the most, what would it be? What was happening at Jantar Mantar in the last agitation? There was no violence ever at Jantar Mantar. And let me tell you one very interesting fact of the entire agitation. 24 hours there were youngsters there. There was no violence. There was no heckling. Women, young girls were as safe as they would be in their home at Jantar Mantar.
9: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: लिए गए हैं। आम आदमी पार्टी के दूसरे लीडर्स के भी हिरासत में लिए जाने की जानकारी मिल रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी हिरासत में लिए गए। एक विजुअल जो सामने आया है वो हम आपको दिखा भी रहे हैं, लेकिन उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है वो सुनाएंगे नहीं आपको, लेकिन आपको तस्वीरें दिखाएंगे। पुलिसकर्मी किस तरह से अरविंद केजरीवाल को लेकर जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के दूसरे लीडर्स भी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, इनको भी हिरासत में ले जाने की जानकारी मिल रही है। इनको भी लिया गया हिरासत में। कॉकरोचेस का सपोर्ट आम आदमी पार्टी पूरी कर रही थी, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ऐलान था। अरविंद केजरीवाल आज खुद दिल्ली की सड़कों पर उतरे और उतरते ही हिरासत में ले लिए गए। ये तस्वीरें हैं जब दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया है। तो आज जंतर मंतर पर सीसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के लिए दबाव बनाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन का ऐलान किया गया, लेकिन सुबह से ही वो आंदोलन फल फूल नहीं पाया क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ दिल्ली पुलिस थी और पूरी प्लानिंग की हुई थी। जो भी नेता पहुंच रहा था उसको उसकी ऐसा लगता है कि एग्जैक्ट लोकेशन और स्ट्रैटेजी थी, हर एक नेता के लिए एक स्ट्रैटेजी पूरी तरह से बनी हुई दिखाई दी। अब हम दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी जो लगातार अब इस विषय में काफी हमलावर हैं और उन्होंने भी आज एक बिल्कुल अलग अंदाज में प्रोटेस्ट भी किया है, मुंह पर उनके उन्होंने जो है बैंडेड भी एक तरीके से लगा दिया कि लोकतंत्र में हमें खामोश किया जा रहा है, उनको भी हिरासत में लिया गया। तो पहले ममता बनर्जी को हिरासत में लिया गया और उसके कुछ ही देर बाद फिर अरविंद केजरीवाल की भी खबर आ जाती है कि उनको भी हिरासत में ले लिया गया। और दोनों के जो विजुअल्स हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी उस बस में बैठी दिखाई थी, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जाना नहीं चाह रहे थे लेकिन उनको कुछ इस तरह से पुलिस जबरदस्ती लेकर गया। हमारे संवाददाता अरविंद भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए, माफ कीजिएगा, अमित भारद्वाज हमारे साथ। अमित, ये बताएं किस जगह से अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया गया और कहां लेकर जा रहे हैं?
1: राजीव, देखिए अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया था कि वो अपने परिवार के साथ और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ कांग्रेस जनता पार्टी का जो आह्वान है सीसी ज्ञानेश कुमार को हटाने को लेकर उस प्रदर्शन में शामिल होने जाएंगे, जंतर मंतर जाएंगे। और लोधी स्टेट में 95 लोधी स्टेट में अरविंद केजरीवाल का आवास है, वहां से वो निकले ही थे। और लोधी स्टेट के बाहर का ही विजुअल है जहां आप देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान अरविंद केजरीवाल को डिटेन करके ले जा रहे हैं और बस में ले जाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने आज अलग तरह की बसों की व्यवस्था की है, एक बार मैं दिखा भी देता हूं आपको। इस तरह की कुछ स्पेशल बसेस यहां पे है जिनमें ज्यादातर डिटेनीज को ले जाया जा रहा है ताकि इससे कोई डिटेनी बाहर नहीं आ सकता है। ये आमतौर पे जो क्रिमिनल्स गिरफ्तार होते हैं या उस तरह से जिनके कोर्ट में पेशी होती है वैसी स्थिति में इन बसों में ले जाया जाता है, या ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो अरेस्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है। आज उस तरह की भी बसों का इंतजाम किया गया है दिल्ली के अंदर। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर हम देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, दुर्गेश पाठक पीएसी के मेंबर हैं, इन सारे नेताओं को डिटेन कर लिया है दिल्ली पुलिस ने। अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि वो प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, जैसे ही घर से बाहर निकले लोधी स्टेट से ही दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया।
0: बिल्कुल अमित, हमें हम तस्वीर इस समय दिखा रहे हैं, थोड़ा इन तस्वीरों को एक्सप्लेन भी करें क्योंकि अरविंद केजरीवाल को मतलब ऐसा लगता है कि बहुत सारे पुलिसकर्मी जो उनको उठाकर ले गए जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अमित, आप बने रहे आपके साथ हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे। हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चौकसी दिल्ली में खड़ी दिखाई दे रहे हैं सीजेपी की टॉप लीडरशिप, उनको हिरासत में लिया गया, पूरी तरह से पुलिस एक्शन में दिखाई दी। अब पुलिस यहाँ एक्शन पर भले ही एक तरफ सवाल हो रहे हो, पुलिसिया एक्शन क्यों हो रहा है, इतनी जबरदस्ती क्यों हो रही है, क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा है, ये भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आज पुलिस का ये एक्शन है, तमाम लीडरशिप चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज की भी हो उनको भी हिरासत में लिया गया है। तो 10 अक्टूबर का आह्वान सीजेपी के प्रोटेस्ट का, उनको पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट भी, और लेकिन हर कदम पर पुलिस का नजर, पुलिस का पहरा रहा, टॉप लीडरशिप उनके अहम लोकेशन मिनट दर मिनट हर एक घटनाक्रम ने पूरे इस पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को एक तरीके से इंटरेस्टिंग खास बना दिया और उसको बड़ा नहीं बनने दिया गया। अरविंद केजरीवाल जो कि अपने आवास पर ही थे, आवास से निकले क्या कि उनको वहीं हिरासत में ले लिया गया। तो हर एक नेता पर पुलिस की निगाह थी, लोकतंत्र में इस निगाह पर भी सवाल हो सकते हैं कि क्या प्रोटेस्ट करने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन इजाजत नहीं मिली थी, ये भी हम आपको साथ साथ में बता दें। और किस तरह की डिप्लॉयमेंट थी लगातार इसकी चर्चाएं कल से हो ही रही हैं, किस तरह के, क्योंकि मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। लेकिन आप आज देखिए कि जब ये प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतरे तो उतरने नहीं दिया गया, उतरे भी कुछ तो उनको भी हिरासत में ले लिया गया। हमें दिल्ली के भी अलग अलग हिस्सों से वो तस्वीरें आपको दिखाई जहां पर गैदरिंग हुई, लेकिन बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी छोटी सी गैदरिंग कहीं कहीं पर हो रही थी, लोग आ रहे थे, लेकिन उनको फिर हिरासत में ले लिया जा रहा था, तो ज्यादा मूवमेंट भी नहीं दिखाई दी। और पुलिस की तरफ से लगातार सोशल मीडिया पर जानकारी भी दी जा रही है कि कहां पर मूवमेंट सामान्य हो गए हैं, कहां पर अब जो आवागमन है वो सुचारू रूप से शुरू हो गया। खुद पुलिस भी लगातार जानकारी इस बारे में दे रही है, रेलवे स्टेशन के बारे में भी पुलिस की तरफ से जानकारियां दे रहे हैं कि अभी तो नहीं लगता कि आगे कोई ट्रेन कैंसिल होंगी, तो नॉर्मलसी की तरफ न्यू दिल्ली वापस बढ़ रहे हैं, चाहे वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन हो। अभी कोई ट्रेन कैंसिल करने का कोई इरादा नहीं है अभी तक के हिसाब से, तो ये जानकारी है। तो कुल मिलाकर अब सामान्य परिस्थितियां दिल्ली में बनती जा रही, क्योंकि कल के बाद से आज से कल जो ऐलान था उसके बाद आज को लेकर बड़ी टेंशन थी। हमारे संवाददाता पीयूष भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, ग्राउंड जीरो पर इस समय क्या सिचुएशन है, क्या सामान्य हो गए हैं हालात या टेंशन है अभी भी बनी हुई?
2: जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जानकारी देते हैं अपने दर्शकों को कि रेलवे की अगर बात करें तो उसको लेकर स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है, नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ रही है। वहीं जैसा आपने भी बताया, अब आगे कोई ट्रेन कैंसिल करने की कोई तैयारी फिलहाल रेलवे की तरफ से नहीं है और वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के डायरेक्ट टच में, और अगर जैसा निर्देश मिलता है वैसे कदम उठाए जाएंगे। लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर, और आपको बता दें राजीव कि इस जगह पर पिछले काफी समय से रह रहकर प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं, उनको डिटेन किया जाता है और फिर दोबारा यहां पर आ जाते हैं, और इसीलिए इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। ये देखिए, ये जो रास्ता है ये कनॉट प्लेस से जनपद रोड से होता हुआ सीधा जाता है जंतर मंतर की तरफ। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये जनपद रोड है, और जनपद रोड का ये वही जगह है जहां पर कुछ दिनों पहले हमने सागर रत्ना वाला लंच भी देखा था जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था। फिलहाल इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी है वो भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, जो जवान हैं उनको तैनात किया गया, भारी संख्या में रह रहकर यहाँ पर प्रदर्शनकारी आते हैं और यहाँ पर ये जो जगह है देखिए, ये जो मेरे सामने जगह है यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, और अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कुछ प्रदर्शनकारी रह रहकर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पहुंच जा रहे हैं, इकट्ठे होते हैं, वो कुछ लोगों से बात करते हैं, और जब भीड़ ज्यादा हो जाती है तब दिल्ली पुलिस के कुछ जवान आगे बढ़ते हैं और उनको डिटेन किया जाता है। क्यों? क्योंकि परमिशन नहीं दी गई है, इस पूरे इलाके को इस वक्त पूरी तरह से छावनी में बदल दिया गया है, बिल्कुल जंतर मंतर के पास है। मेरे सहयोगी अगर लोकेंद्र पांडे आगे आएंगे एक बार, हम आगे चल के भी आपको तस्वीरें दिखा दें। देखिए ये जो रास्ता है, सामने जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद है, यहाँ पर किसी गाड़ी की आवाजाही नहीं है। ये रास्ता इसलिए पूरी तरह से बंद है क्योंकि यहाँ पर से आगे से लेफ्ट लेने के बाद जंतर मंतर आ जाता है, तो उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वज्र वाहन के साथ साथ 10 से 12 जो गाड़ियां हैं उनको यहाँ पर लगा दिया गया है कि अगर किसी गली से किसी कोने से कुछ प्रदर्शनकारी पहुंच जाते हैं तो उनको तुरंत हिरासत में ले लिया जाए। इसी के साथ साथ एक तस्वीर और मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए कनॉट प्लेस का दूसरा इलाका जो जनपद रोड से होता है, जब कनॉट प्लेस की तरफ आप बढ़ेंगे तो आगे की तरफ जो है इधर कई सारी पुलिस वैन्स को भी यहां पर लगाया गया है कि अगर यहां पर भी प्रदर्शनकारी इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको तुरंत हिरासत में लिया जाए। तो तैयारी पूरी की है क्योंकि परमिशन नहीं है धरना प्रदर्शन करने की, इसलिए फिलहाल इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।
0: जल्दी से ये आंकड़ा भी दे दें कि सुबह से अभी तक कितने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जा चुका है।
2: जो आधिकारिक आंकड़ा कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस के द्वारा जारी किया गया था राजीव, उसके हिसाब से 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है, और बार बार दिल्ली पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है कि प्रदर्शनकारी जो है उनके पास किसी तरह की कोई परमिशन नहीं है धरना प्रदर्शन करने की, और वो ऐसे इलाकों पे ना आए, यहां पर ना जुटे। इसी के साथ साथ इंटरनेट सर्विसेज को तो बंद कर ही दिया गया, मेट्रो स्टेशन भी बंद है। सेंट्रल दिल्ली की अगर हम बात करें राजीव, तो कई जगह जब भी अगर एक इलाके से दूसरे इलाके तक हम जा रहे हैं तो हर जगह आपको बैरिकेड्स दिखाई देंगे, आपको आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा तभी आपकी एंट्री है। बिना दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी है उनको प्रॉपर जवाब दिए आप बैरिकेड पार नहीं कर पाएंगे, यानी सेंट्रल दिल्ली पूरी तरह से बंद है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों के लिए कि अगर वो आईटीओ से आ रहे हैं, नोएडा लक्ष्मीनगर से होते हुए आईटीओ से सेंट्रल दिल्ली में घुस रहे हैं, तो उनको वजह बतानी पड़ेगी कि वो क्यों आ रहे हैं। वहां पर रास्ता बंद कर दिया है, कश्मीरी गेट से रास्ता बंद है, गंगाराम हॉस्पिटल से रास्ता बंद है, अगर आप शांति पथ से आ रहे हैं तो वहां से रास्ता बंद है। तो सेंट्रल दिल्ली के चारों तरफ जो है एक घेरा, एक रिंग जैसा क्रिएट किया गया है, और अगर आप बेहद जरूरी काम से जा रहे हैं, आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपके पास प्रॉपर आईडी कार्ड है तभी आपको एंट्री मिल रही है, उसके अलावा आपको एंट्री नहीं मिलेगी।
0: बिल्कुल, इस बात तो पीयूष दिल्ली में इतनी ज्यादा सख्ती थी इसलिए लोग जो है बहुत तरह की बातें सोशल मीडिया पर कर भी रहे हैं। पीयूष आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। देश की राजधानी दिल्ली वो एक तरीके से सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन पूरी तरह से ब्लॉक रही, इस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं, लेकिन अब सामान्य हालात धीरे धीरे होते जा रहे हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस निकले घरों से बाहर लेकिन उनको हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली में मिंटो ब्रिज के पास से आज तक संवाददाता सुशांत मेहर की हम रिपोर्ट भी दिखाएंगे और हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ गए क्योंकि थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया गया। अमित, अभी ताजा अपडेट आपके पास क्या है? क्या अभी भी आम आदमी पार्टी के दूसरे लीडर्स प्रोटेस्ट कर सकते हैं? क्या उनकी तरह से भी शांति समझा जाए मामला?
1: और देखिए, आम आदमी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उसमें अरविंद केजरीवाल को डिटेन कर लिया गया है और उसके बाद हमें अब ये भी खबर मिल रही है कि संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी चीफ, उनको डिटेन कर लिया गया है। सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष हैं उनको दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है। दुर्गेश पाठक जो पीएसी के मेंबर हैं उनको भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है। और अभी दिल्ली भर में आपको इसी तरह की गाड़ियों की मूवमेंट दिखाई देगी जिसमें पैरा फोर्सेस, दिल्ली पुलिस अलग अलग गाड़ियों में मूव कर रही है, अलग अलग सेक्टर्स में मूव कर रही है और प्रोटेस्टर्स छोटी संख्या में, कहीं बड़ी संख्या में प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कनॉट प्लेस से हम आपको इनर सर्कल से विजुअल्स दिखा रहे हैं जहाँ कुछ प्रदर्शनकारी हैं, युवा प्रदर्शनकारी, उनके हाथ में तिरंगा है। आगे पैरा फोर्सेस की बहुत डिप्लॉयमेंट है जो सड़क जंतर मंतर के लिए जाती है, वहां पे डिप्लॉयमेंट है। सेक्टर वाइज पूरे दिल्ली को इस वक्त कनॉट प्लेस के आसपास के इलाके को डिवाइड करके रखा गया है और वहां पर जब भी प्रदर्शनकारियों द्वारा लंबे समय तक नारेबाजी होती है तो अचानक से पुलिस की मूवमेंट शुरू होती है, पैरा फोर्सेस की मूवमेंट शुरू होती है और उन लोगों को डिटेन किया जा रहा है। पॉलिटिकल लीडरशिप की अगर आप बात करेंगे तो ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की, डोला सेन एआईटीसी की सांसद हैं, डेरेक ओब्रायन एआईटीसी के सांसद हैं उनको डिटेन किया गया, फॉर्मर सांसद है साकेत गोखले उनको डिटेन किया गया, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और अरविंद केजरीवाल को तो डिटेन किया ही गया है। सारा एक्शन लोधी स्टेट पे हुआ है। ममता बनर्जी ने अपने डिटेंशन के समय एक सिंबॉलिक मैसेज जरूर भेजा है, तस्वीर से कई बार नेता अपनी बात को रजिस्टर कराने की कोशिश करते हैं। डिटेंशन के वक्त उन्होंने एक बैंडेड अपने मुंह पर लगा लिया, यानी कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, ये मैसेज भेजने के लिए इस तरह का एक सिंबलिज्म का इस्तेमाल किया गया है ममता बनर्जी द्वारा। लेकिन जिस तरह की भीड़ यहां पर बड़ी तादाद में आने की उम्मीद थी वैसी स्थिति नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की है, जो नेता प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आ रहे हैं उनको भी हिरासत में लिया जा रहा है।
0: क्या अमित ऐसी भी कोई खबर है कि जिनको प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया तो उन्होंने कुछ अभद्रता की है, कुछ बस में तोड़फोड़ की है?
1: और देखिए, आज मैं जिन इलाकों में रहा हूं वहां पर हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस आती है, पैरा फोर्सेस आते हैं, उनको डिटेन करते हैं, लेकिन डिटेंशन के वक्त फोर्स का इस्तेमाल करता हुआ मैंने नहीं देखा है। सुबह से मैं अक्षरधाम पे रहा, मैं आईटीओ पे रहा, मंडी हाउस पे रहा, कनॉट प्लेस के कई अलग अलग सेक्टर्स में रहा, अभी जिस जगह पे हूँ वहाँ पे नारेबाजी मुझे सुनाई दे रही है। प्रदर्शनकारियों का एक छोटा सा गुट है, युवा प्रदर्शनकारी हैं, कुछ बमुश्किल 100 प्रदर्शनकारी इस सेक्टर में कम से कम होंगे, लेकिन फिर अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग संख्या में प्रदर्शनकारी हमें दिखाई दे रहे हैं और वो नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर पुलिस का एक्शन होता है, गलियों में दौड़कर ये प्रदर्शनकारी चले जाते हैं। जो देखिए, जैसे अब यहाँ पर पुलिस की मूवमेंट होती, ये जो युवा प्रदर्शनकारी थे वो दौड़ के गलियों में चले गए, दूर कहीं ले जाकर इस तरफ से शुरू हुआ है। देखिए, मैं कुंज को कहूँगा एक बार, वो तस्वीर बाएं हाथ को दिखाएं, एक्शन है, ये लाइव एक्शन इस वक्त हो रहा है, कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में एक्शन हो रहा है, गेट नंबर 5-6 के आसपास का ये पूरा एक्शन है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और जो उच्च अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के और इसके साथ साथ जो पैरा फोर्सेस है, आरएएफ के जवान हैं, वो लोग मार्च करके, एक तरह से मार्च करते हुए घूम रहे हैं पूरे सेक्टर्स के बीच में। और उनको, उनका ये है कि सेक्टर वाइज वो प्रदर्शनकारियों को डिटेन करें, सेक्टर टू सेक्टर वो जो प्रदर्शनकारी हैं उनको हटाएं। और हम देख पा रहे हैं सीनियर ऑफिशियल्स हैं ये दिल्ली पुलिस के जो इस वक्त मार्च करते हुए जा रहे हैं, आरएएफ के जवानों के साथ ये मार्च चल रहा है। इनर सर्कल से ये जो सुरक्षा बल है उसका मार्च हो रहा है और गलियों में प्रदर्शनकारी चले गए हैं, तो संभव है कि ये तमाम जो पुलिसकर्मी है, देखिए फिर से एक्शन शुरू हो गया, दौड़ाना शुरू कर दिया है, एक एक करके प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया जा रहा है। वहां देखिए इकलौता एक प्रदर्शनकारी हाथ में आया, दूसरा आया, इसी तरह से एक्शन चल रहा है। पूरा एक्शन जो है आज इसी पैटर्न पे चल रहा है कि पुलिस एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे जा रही है और एक युवा प्रदर्शनकारी को पकड़ने के लिए 5-6 पुलिस वाले आते हैं, उसको उठाते हैं और फिर बस के अंदर डाल देते हैं। इस बार स्ट्रैटेजी में तब्दीली है, फर्क यह है कि पहले फोर्स का इस्तेमाल हुआ 20 जुलाई को, इस बार फोर्स का इस्तेमाल ना करके एक प्रदर्शनकारी को ही ले जाने के लिए 5-6 जो सुरक्षाकर्मी हैं, पैरा फोर्सेस के जो जवान हैं, वो उसको उठाते हैं, बस के अंदर डालते हैं और बसें भी इस बार अलग लाई गई हैं। आप जो कह रहे थे कि बसों में कांच हटाकर बसों को एक तरह से पाथवे निकालकर उससे कई बार प्रदर्शनकारी हालिया दिनों में बीते एक हफ्ते में भागते हुए हमें दिखाई दिए हैं, इसलिए इस बार जो बसेज हैं वो अलग तरह से करके लाया गया। ये दिल्ली पुलिस की गाड़ी थी, वो हटाया गया, उसमें डाला जा रहा है। महिला प्रदर्शनकारी हैं, अब उनको यहाँ से डिटेन करके ले जाया जा रहा है। जो दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो खुद ग्राउंड पे अब इनर सर्कल में घूमते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, पैरा फोर्सेस के साथ दिखाई दे रहे हैं। देखिए सारे सीनियर अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, जो लगातार घूम घूम के सेक्टर वाइज, एक तरह से आप कहते हैं कि सेक्टर को कंट्रोल करने की जो एक्टिविटी होती है वो चल रही है। और ये इंपॉर्टेंट तस्वीर है क्योंकि हम सुबह से क्या देख रहे हैं, अभिजीत दीपके के डिटेंशन के बावजूद इस इलाके में, मैं आपको राजीव बताऊं कि यहाँ पर मुझे लगता है कम से कम 500-700 तो प्रोटेस्टर्स इस इलाके में सेंट्रल पार्क के आसपास पहुंचने में कामयाब रहे, या वो नंबर 1000 तक का भी हो सकता है, लेकिन वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में भागते दौड़ते हुए खुद को बचा भी रहे कि डिटेन ना हो। लेकिन पुलिस की भी स्ट्रैटेजी अलग है, वो एक तरह से आप कहते हैं टायर करने की, थकाने की जो स्ट्रैटेजी होती है उस स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रही है। एक सेक्टर में कुछ प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया जाता है, बाकी दूसरे तरफ दौड़ते रहते हैं, फिर दूसरी जगह थोड़ी देर के लिए नारेबाजी होती है, फिर वहां उस सेक्टर में भी पुलिस के जवान, पैरा फोर्सेस के जवान आते हैं और एक प्रदर्शनकारी को उठाने के लिए 5-6 जो पर्सनल हैं उनका इस्तेमाल होता है। देखिए विजुअल फिर सामने है, ये महिला प्रदर्शनकारी है, तो इस बार पिंक फोर्स का भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है, स्पेशली सेक्टर वाइज ये डिप्लॉयमेंट किया गया है पिंक फोर्स का, महिला पर्सनल का, कि महिलाओं को, महिला प्रदर्शनकारियों को डिटेन करने के वक्त कोई आरोप जो है वो प्रदर्शनकारियों की तरफ से ना लगे, इसलिए महिलाओं को की तादाद जो डिप्लॉयमेंट है उसमें बढ़ाई गई है। यहाँ भी देखेंगे अगर आप आरएएफ में भी महिला प्रदर्शनकारियों को हैंडल करने के लिए महिला पर्सनल का की संख्या ज्यादा है। और ये स्ट्रैटेजी में बहुत बड़ा फर्क है कि सेक्टर वाइज कंट्रोल, फोर्स का बिना इस्तेमाल किए हुए एक एक प्रदर्शनकारी को उठाने के लिए 5-7 पर्सनल का इस्तेमाल, महिला प्रदर्शनकारी को पकड़ने के लिए महिला,
0: हमें थोड़ा सा इसे भी एक्सप्लेन करें ना कि एक एक प्रदर्शनकारी को पकड़ने के लिए 5-5, 6-6 जवान है, तो क्या सपोर्ट कम मिला है सीजेपी को, या फिर लोग आ ही नहीं पाए हैं, पूरा कट ऑफ ही एक तरीके से हो गया, इस वजह से सपोर्ट थोड़ा कम दिख रहा है?
1: और राजीव मैं सपोर्ट कम मिला या नहीं मिला ये कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन एक सच्चाई है, देखिए इस फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि दिल्ली, नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने के लिए जो ट्रेनें थी, कई सारी ट्रेन को कैंसिल किया गया, जो मेट्रो स्टेशन है 45 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया, दिल्ली का अहम मेट्रो स्टेशन ये जो राजीव चौक का है वो बंद पड़ा हुआ है, और जंतर मंतर को जाने के लिए जितना भी रास्ता है, ये देखिए सामने ही जनपथ वाली सड़क है, आप इधर से कई बार आए गए होंगे, इस पे हेवी बैरिकेडिंग है, जो दूसरी तरफ बारहखंबा वाली सड़क है वहां पर बैरिकेडिंग है, खड़क सिंह मार्ग वाली सड़क पे एक बैरिकेडिंग है, केजी मार्ग वाली सड़क पे बैरिकेडिंग है, तो कोई रास्ता ऐसा नहीं है जहां से आप आ सकते हैं। अक्षरधाम से लेके मंडी हाउस, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह पे सेक्टर क्रिएशन हुआ है, और वहां पे यंग प्रोटेस्टर्स को अगर आप जंतर मंतर से दूर हैं तो ये कहा जा रहा है कि देखिए अगर आप इस पर्टिकुलर बैरिकेड से आगे जाएंगे तो आपको डिटेन कर लिया जाएगा। इसके बावजूद लगभग 20,000 पर्सनल डिप्लॉय हैं सीएपीएफ के, दिल्ली पुलिस के पर्सनल डिप्लॉयड है। इसके बावजूद अगर 500-700 प्रदर्शनकारी भी यहां तक पहुंचने में सफल हुए हैं तो वो भी एक इंडिकेशन है अभिजीत के, आशुतोष के और सौरभ के डिटेंशन के बावजूद की मैसेजिंग सीजेपी अपने सिंपथाइजर्स के बीच में करने में सफल रही है। लेकिन असली टेस्ट कल होगा, क्योंकि आज का कॉल था, आज पूरी लीडरशिप डिटेन हो गई है। अगर ये लीडरशिप डिटेन ही रहती है तो क्या हमने जैसा जुलाई में देखा था कि हर दिन प्रदर्शनकारी आते जा रहे थे वो दौर चलता रहेगा। और वैसे में टेस्ट सीजेपी के लिए भी है और पुलिस के लिए भी है कि क्या आप इस तरह से बैरिकेडिंग हर दिन कर सकते हैं क्या, क्योंकि आज ये तस्वीर देखना जरूरी है कि सीपी में सारी दुकानें बंद है, ये हो पा रहा है क्योंकि आपने पूरा मार्केट एरिया यहाँ का एक तरह से शटडाउन रखा है, तो ये हर दिन
0: बिल्कुल। मैं इस पर भी आऊंगा अमित, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि इस एक प्रोटेस्ट के बाद, जो अनाउंसमेंट के बाद से जो दिल्ली में एक तरीके से बंद है, इससे कितना नुकसान दिल्ली को हुआ है, व्यापारियों को हुआ है। लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता सुशांत बेहरा की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
3: दिल्ली पुलिस इस वक्त फ्लैग मार्च कर रही है, दिल्ली पुलिस के एडिशनल कमिश्नर और उनके साथ साथ दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखेंगे तो कई सारे प्रदर्शनकारी भी जो है वो आपको नजर आएंगे, जिनको अब पुलिस एकाएक डिटेन भी जो है वो कर रही है। लगभग पिछले अगर बात की जाए तो सुबह 8 बजे से लगातार पुलिस जो है वो कई प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर चुकी है और 3 बज रहे हैं अभी भी, देखेंगे कई सारे प्रदर्शनकारी आपको झंडे के साथ यहाँ पर नजर आएंगे। पुलिस पिछले 8 घंटे से अगर कहा जाए तो इसी तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में खास तौर पर कनॉट प्लेस देखिए क्या, एक बार फिर से एक्शन दिल्ली पुलिस का, पैरामिलिट्री फोर्स का इस वक्त जो है वो नजर आएगा कि किस तरीके से बड़ी संख्या में देखिए डिटेन किया। देखिए प्रदर्शनकारियों को हमने जिस तरीके से दिखाया, पुलिस एक अलग नई स्ट्रेटेजी के साथ प्रदर्शनकारियों को डिटेन करती हुई नजर आ रही है। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो सेंट्रल दिल्ली यानी कनॉट प्लेस का ये वो सर्कल है, क्योंकि कई सारे इनर आउटर और मिडल सर्कल हैं और इसी में
0: सीजेपी की टॉप लीडरशिप हिरासत में लिए गए, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को भी हिरासत में लिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में भी छुटपुट प्रदर्शन के लगातार खबरें, लगातार एक्शन हो रहा है, एक एक खबर पर लगातार नजर है। सबसे पहले आज तक पर आपको दिखाई जाएगी, एक छोटे से ब्रेक लोग देखते रहे आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: सर गैसोफास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसोफास्ट 27%, इनो 9.2%।
1: गड़बड़ है।
2: आहा, गैसोफास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसोफास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
3: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो थमका लगाने बस।
4: मेरे पास एक आइडिया।
3: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
5: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
6: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
7: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
8: कौन सी बनानी है?
9: How's the hostel? Settled?
10: Yes, Mark, really nice.
9: कोई आ रहा है क्या?
11: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभाली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले।
9: मयंक, for real?
11: One carat for my one true love. Natural diamond, real love, solitaires to reignite your new season of love.
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
13: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
14: जीके मैक्स।
15: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
14: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
16: जेके वॉल मैक्स
14: बेस्ट पेंट,
16: जेके मैक्स।
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
17: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
18: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
19: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
20: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
19: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
21: लव एंड केयर, द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट रेंज ऑफ रबर पेट टॉयज।
22: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
23: ये है एक लेगेसी।
24: यू नो डिजाइन्स कितने? लाख से भी ज्यादा डोर,
25: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
26: एक परिवार, अटूट भरोसा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी। सो
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स।
6: बेस्ट पेंट
7: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
9: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
10: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
11: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
12: गैसो फास्ट 27%,
13: इनो 9.2%।
14: गड़बड़ है।
15: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी हिंट एक हिंट तो देते
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।

15,210 फीट की ऊंचाई पर बर्फ की सफेद चादर, कड़ाके की ठंड और आस्था का अटूट विश्वास। चमोली जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। चारों तरफ बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछी है। कड़ाके की ठंड के बीच आज हेमकुंड साहिब और कल लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट बंद होंगे। बर्फबारी के चलते गुरुद्वारा परिसर और हेमकुंड साहिब मार्ग पर आवाजाही चुनौतीपूर्ण हो गई है। ऐसे में मशीनों के जरिए रास्तों से बर्फ हटाई जा रही है ताकि कपाट बंद होने के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। वहीं हेमकुंड साहिब के साथ बद्रीनाथ धाम और आसपास की ऊंची चोटियां भी बर्फ से ढक गई हैं। मौसम के बदले मिजाज के बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आसमान से गिरते बर्फ के फव्वारे, चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और इस कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालुओं की अटूट आस्था। हेमकुंड साहिब में आज अंतिम अरदास के बाद दोपहर 1 बजे कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही इस साल की यात्रा का समापन हो जाएगा। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, आज तक।

0: नहीं पड़े
1: नहीं।
0: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई। ट्रैवल एजेंट्स कोई गांजा फूंक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदी हैं।
0: तुम्हारा
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदी हैं। गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
3: यार काट देना ये।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडिया। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर आज देश की राजधानी दिल्ली फिर उबल पड़ी है और भारी सुरक्षा के बाद भी सीजेपी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। आज उनकी हालांकि एक भी न चली, सुरक्षा बलों ने तुरंत पकड़ भी लिया और कुछ को दौड़ा गया तो कुछ को आराम से बसों में बिठा दिया गया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपकेतु दिल्ली में फ्लाइट के भीतर थे और वहीं से हिरासत में ले लिया गया। जैसे ही मुंबई से फ्लाइट दिल्ली में उतरी, उनको हालांकि प्लेटफॉर्म पर उतरने नहीं दिया गया और फ्लाइट के भीतर ही पुलिस चली गई और विमान पर जाकर दीपके और उनके साथियों को यानी कि सौरभ दास को, आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया गया। और इस बीच में बड़ी खबर यह भी दे दें आपको, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको भी डिटेन कर लिया गया, उनको हिरासत में लिया गया है। और सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि आपके दूसरे नेता संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक को भी हिरासत में लिया गया है। आम आदमी पार्टी के समर्थन का ऐलान था, उन्होंने भी कहा था कि वो भी भाग लेंगे, लेकिन घर से बाहर निकलते ही अरविंद केजरीवाल को लोधी स्टेट में हिरासत में ले लिया गया। उस समय के विजुअल्स,
1: बहुत गुस्से में है। जो जो लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं, मैं पूरे देश के लोगों को, युवाओं को हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, हम सब लोगों को मिलके देश को बचाना होगा। आप जहां भी हैं देश में, अभी निकलिए अपने घर से, दिल्ली की तरफ कूच कीजिए, दिल्ली आइए, स्कूटर पे आइए, पैदल आइए, बस में आइए, हवाई जहाज में आइए, ट्रेन में आइए, जैसे आ सकते हैं आइए, दिल्ली की तरफ कूच कीजिए। जहां मोदी जी आपको रोके वहीं बैठ जाओ, उसी जगह को जंतर मंतर बना दो, पूरे देश को जंतर मंतर बना दो, लेकिन मोदी जी को वोट चोरी करने से रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये देश नहीं बचेगा, ये जनतंत्र नहीं बचेगा। आइए अब चलते
0: और हमारे संवाददाता मुनीष पांडे भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। मुनीष, अभी मौजूदा स्थिति क्या है, क्या प्रोटेस्ट अभी भी चल ही रहा है और किन किन हिस्सों में अभी प्रदर्शनकारियों की सक्रियता दिख रही है?
2: जी बिल्कुल राजीव, अगर मैं बताऊं तो जो सेंट्रल दिल्ली है उसके कई इलाकों में अभी भी प्रदर्शनकारी छुटपुट मात्रा में आ रहे हैं, चाहे वो सीपी का इलाका हो जाए, जनपद का इलाका हो जाए, आईटीओ का इलाका हो जाए, इन सभी इलाकों में छोटे छोटे गुटों में अभी भी प्रदर्शनकारी आ रहे हैं और उन्हें डिटेन किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले हमने कनॉट प्लेस की तस्वीरें दिखाई थी और कनॉट प्लेस में भी प्रदर्शनकारी लगभग 50 से 100 की मात्रा में वहां पर धीरे धीरे करके इकट्ठा हुए थे, लेकिन एक ही बार में उन्हें जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री के जो जवान हैं, उन्होंने खदेड़ा और उसके बाद वो छोटी छोटी तंग गलियाँ जो हैं दिल्ली की उसमें वो घुस गए। तो कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे गुट हैं वो आज ज़्यादा सड़कों पर दिखाई दिए और इसी वजह से जो तस्वीरें भी सामने निकल कर आई, कहीं ऐसा नहीं दिखा कि भारी मात्रा में प्रदर्शनकारी कहीं पे बाहर निकले हों या जंतर मंतर की तरफ कूच किया हो, इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर नहीं आई। कहीं पे इस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने नहीं आई जहां पर दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई हो, क्योंकि जैसे ही वो सड़क पर निकले पुलिस इतनी तैनात थी कि उन्हें उसी वक्त डिटेन करके अलग अलग हिस्सों में दिल्ली के भेज दिया गया और बहुत मुमकिन है कि आज शाम तक उन्हें डिटेन करके ही रखा जाएगा। राजीव,
0: ठीक है मनीष, आप नजर बनाए रखें, आपके पास हम लौटेंगे। तो कांग्रेस जनता पार्टी के सदस्यों को बेहद नाटकीय अंदाज में आज विमान में घुसकर पुलिस ने हिरासत में लिया। कैसे ये मुमकिन हुआ, क्या उस समय हुआ, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।

0: ये उस विमान के अंदर की तस्वीर है जहां से कॉकरोच जनता पार्टी के पदाधिकारियों को हिरासत में लिया गया।
1: जाओ कर लो अरेस्ट होने के लिए आए हम, अरेस्ट होने के लिए आए हैं, आ जाओ कर लो अरेस्ट होने के लिए आए हैं सर, डरेंगे नहीं आपसे।
2: अभिजीत अभिजीत अभिजीत
1: कर लो अरेस्ट,
2: भारत माता की।
0: ये उस वक्त की तस्वीर भी है जब अभिजीत दिपके को दिल्ली पुलिस हिरासत में लेने प्लेन के अंदर पहुंचती है।
1: जाओ कर लो अरेस्ट होने के लिए आए हम, अरेस्ट होने के लिए आए हैं, जाओ कर लो अरेस्ट होने के लिए आए सर, डरेंगे नहीं आपसे।
2: अभिजीत अभिजीत अभिजीत
1: कर लो अरेस्ट,
2: भारत माता की।
0: कॉकरोच जनता पार्टी के पदाधिकारी ये मानकर चल रहे थे कि मुंबई से दिल्ली पहुंचते ही पुलिस उन्हें गिरफ्त में ले लेगी। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो लगातार जारी हो रहे थे जिनमें हिरासत में लेने की बात कही जा रही थी। लिहाजा मुंबई से प्लेन जैसे ही लैंड करता है दिल्ली पुलिस की टीम अंदर दाखिल होती है और सीजेपी के तीनों पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को हिरासत में लेने के साथ ही ये तय हो गया कि आज का प्रदर्शन अब और आगे नहीं बढ़ने वाला। खबर है कि पुलिस ने अभिजीत दिपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को अलग अलग जगहों पर हिरासत में रखा है। बाकी करीब 450 लोगों को छत्रसाल स्टेडियम में बनाए गए डिटेंशन सेंटर में रखा गया है।
3: बस भर करके जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे अलग अलग जगहों में वहां से उनको यही सीधे छत्रसाल स्टेडियम लाया गया। इन्होंने अभी बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये लोग मिंटो ब्रिज पर प्रदर्शन कर रहे थे जहां से डिटेन करके इनको सीधे छत्रसाल स्टेडियम लाया गया। छत्रसाल स्टेडियम में पहले से ही पुलिस मौजूद है और इसको डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। इसके अंदर तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो मौजूद है।
0: दिल्ली में आज के प्रदर्शन में आप और लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए, लेकिन कुल मिलाकर सुरक्षा बल आज के प्रदर्शन पर काबू पाने में कामयाब रहे। अमित भारद्वाज, अंशुल सिंह और अरविंद ओझा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
4: दिल्ली में कैसे प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ चल रही है, क्या कुछ दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में गतिविधियां हो रही हैं, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
0: दिल्ली में ऐसी तस्वीर लंबे अरसे बाद देखी गई थी। सड़कों पर सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च चल रहा था। जंतर मंतर पर जवानों का भारी जमावड़ा था। जंतर मंतर से 4 किलोमीटर के दायरे में किसी को भी आने की मनाही थी। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं थे। दिल्ली में कई जगहों पर प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच एक्शन की तस्वीरें दिखाई दी। प्रदर्शनकारियों ने पाबंदी तोड़ने की कोशिश की तो सुरक्षा बलों ने उनकी धरपकड़ की।
5: मेरी मौजूदगी है और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो क्राउड है, जो प्रदर्शनकारी है, वो कनॉट प्लेस जो है वो पहुंचे थे। उनको फिलहाल और पुलिस की तरफ से डिटेन किया जा रहा है। ये देखिए, ये नजारा है सीपी के इनर सर्कल के पास का, जनपद मार्केट के पास का। आप देखिए कितने सारे ये प्रदर्शनकारी हैं जो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे और अब यहाँ पर पुलिस की तरफ से इन तमाम प्रदर्शनकारियों को जो है वो डिटेन किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें दिल्ली के प्लॉट प्लेस के पास की जहाँ पर ये प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, उनको फिलहाल अब दिल्ली पुलिस की तरफ से डिटेन किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी आए थे।
0: दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में आज सिर्फ सुरक्षा बलों का जमावड़ा दिख रहा था। बाजार बंद था, दुकानें बंद थी, सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा कर्मी दिखाई दे रहे थे।
6: पूरी
5: पुलिस का कड़ा बंदोबस्त जो है वो पूरी दिल्ली के नई दिल्ली इलाके में खास तौर पर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर है रायसिंगा रोड के पास की, आप देख सकते हैं कि जो कि रास्ता इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक जाता है उसके आसपास पुलिस का ज़बरदस्त पैरीबंदी जो है वो दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं और हर हिस्से पर जो कि अगर कहा जाए जो रास्ते इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक जाते हैं उन तमाम हिस्सों पर इसी तरीके से पुलिस की तरफ से ज़बरदस्त बैरिकेडिंग और पुलिस फोर्स जो है वो तैनात किए गए हैं ताकि जो विपक्षी दल प्रोटेस्ट के लिए पहुँचे वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक जो है वो ना पहुँच पाए।
0: जंतर मंतर से सटे तमाम इलाकों में चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती थी। इस बार बैरिकेडिंग ऐसी की गई थी कि उन्हें पार कर आगे बढ़ना नामुमकिन था।
6: यहाँ पे भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो है पीछे सीआरपीएफ और सीएपीएफ के जो अफसर हैं वो भी इस पूरे मार्च में जुड़े हुए हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो इन ऑफिसर्स पे जो बॉडी कैम है वो भी लगाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस की तैयारी है वो पूरी पुख्ता इस वक्त दिख रही है। और ये रायट गेयर में जो है ये सीएपीएफ के जो जवान हैं ये यहाँ पे नई दिल्ली की सड़कों पे कनॉट प्लेस की सड़कों पर घूमते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि जो पुलिस है वो भारी संख्या में ग्राउंड पर मौजूद है और अगर कोई भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का मैसेज बहुत क्लियर है और आसपास की सारी सड़कें जो हैं ये पूरी तरीके से बैरिकेड कर दी गई हैं। अगर आप ये देखिए ये सड़क करीब 100 से 200 मीटर ही यहां से जो है जंतर मंतर है और ये पूरी तरीके से यहां पर ब्लॉक कर दिया गया है। एम्बुलेंसेस और इमरजेंसी व्हीकल के लिए एक लेन खोला गया है और इसके अलावा जो पुलिसकर्मी हैं उनके मूवमेंट के लिए जो है एक लेन खोला गया है, लेकिन किसी भी तरीके के ना ही इंसानों को पैदल या फिर गाड़ी में इस रास्ते से जंतर मंतर के आसपास भी भटकने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
0: अगर जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा रोकना मकसद था तो दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बल इस मकसद में कामयाब रहे, लेकिन इसके लिए उन्हें बेहद कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली के 45 मेट्रो रेलवे स्टेशन आज बंद रहे। दिल्ली आने वाली करीब 180 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। दिल्ली के स्कूलों कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस हुई। दिल्ली का कनॉट प्लेस आज पूरी तरह से बंद रहा। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में करीब 20 से 25 हजार जवानों की तैनाती की गई थी। पूरी दिल्ली को एक तरह से छावनी में तब्दील करना पड़ा। सुशांत बेहरा के साथ अनमोल बाली, दिल्ली आज तक।
4: दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में प्रदर्शनकारियों की कैसे धरपकड़ की गई उस पर भी एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
7: कनॉट प्लेस के रीगल थिएटर के पास की ये तस्वीरें जहां पे बड़ी तादाद में आपको डिटेंशन दिखाई देगा। पैरा फोर्सेस के जवान हैं जो डिटेन करके प्रदर्शनकारियों को ले जा रहे हैं। देखिए बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी यहां पहुंचे थे, अब नारेबाजी करते हुए वो जा रहे हैं। सब युवा हैं, यंगस्टर्स हैं जिनको डिटेन किया गया है। दिल्ली पुलिस की ये गाड़ी है, रॉयड कंट्रोल व्हीकल है, उसमें डिटेन करके इन युवाओं को प्रदर्शनकारियों को ले जा रहा है। दूसरी गाड़ी जो आप देख रहे हैं उस गाड़ी के अंदर राकेश चकैत गुट के किसान नेताओं को डाला गया है। आप देखिए एक तरह से जेल नुमा स्ट्रक्चर है उसके अंदर। आप जब एक बार डाल दिए जाते हैं गाड़ी के अंदर तो कई बार हमने देखा बीते दिनों में कि प्रोटेस्टर्स गाड़ी से बाहर निकलकर डिटेंशन से बाहर निकलकर आगे चले गए, लेकिन ये जो गाड़ियां लाई गई हैं वो जेल नुमा स्ट्रक्चर है। प्रदर्शनकारियों को खींचकर गाड़ियों के अंदर डाला जा रहा है और फिर उन जालियों के अंदर डाला जा रहा है ताकि फिर से प्रदर्शनकारी बाहर ना आए। तो एक तरफ अभिजीत दीपके से लेके आशुतोष रंका को फ्लाइट के अंदर जाकर डिटेन किया दिल्ली पुलिस ने, वहीं जो प्रदर्शनकारी युवा प्रदर्शनकारी सीपी के सेंट्रल पार्क तक पहुंच गए थे उन लोगों को डिटेन करने पर अब पैरा फोर्सेस लग गई है। कई सारे युवा प्रदर्शनकारी इस वक्त आपको दिखाई देंगे जो सेंट्रल पार्क के आसपास हैं और दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप बीएनएस 163 की धारा लागू है और ऐसे में यहां पर प्रदर्शन करना अलाउड नहीं है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं, अभिजीत दीपके के कॉल पर पहुंचे हैं। हालांकि सीजेपी के नेता उसकी लीडरशिप डिटेन हो गई है, लेकिन जो बच्चे यहाँ पहुंचे हैं वो प्रदर्शन जारी रखने की अपनी बात कह रहे हैं।
4: पुलिस के एक्शन की तस्वीरें मिंटो रोड से भी सामने आई, आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा की ग्राउंड रिपोर्ट।
8: मिंटो ब्रिज पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आईसा और तमाम लेफ्ट विंग के जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहां पर पहुंचे थे, जिनको पुलिस की तरफ से बड़े एक्शन के तहत डिटेन किया गया। ये देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में यहां पर प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंचे थे आईसा की तरफ से और तमाम अलग अलग संगठन की तरफ से। अब उनको यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से पुलिस का एक एक्शन जो है वो यहाँ पर नजर आया है। क्रॉट प्लेस से तमाम फोर्सेस को जो है वो मिंटो के पास, मिंटो अंडरपास के पास जो है वो पुलिस की तरफ से बुलाया गया और उसके बाद बड़ा एक्शन, क्योंकि बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो दरअसल क्रॉट प्लेस के अंदर मिंटो के पास से ही अंदर आ रहे थे और ऐसे में पुलिस की तरफ से अब इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर देखिए किस तरीके से डिटेन किया गया। आपको तस्वीरें दिखाएं कि वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो और भी कई संख्या में, बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी देखिए यहाँ पर आपको नजर आएंगे। पुलिस अब बल का भी प्रयोग कर रही है, कहीं ना कहीं कई प्रदर्शनकारी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको यहाँ से हटा रहे हैं। महिला पुलिस कर्मियों को अंदर भेजा जा रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर भी कई सारे प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंचे थे, उनको भी अब पुलिस की तरफ से यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये महिला जो प्रदर्शनकारी है वो पहुंची थी, उनको यहाँ पर पुलिस की तरफ से डिटेन किया जा रहा है। आपको तस्वीर देखेगी एक बस वो जाती हुई। भारी पुलिस बल इस वक्त पूरे दिल्ली में कनॉट प्लेस के हिस्से में जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से बल का प्रयोग अब पुलिस को यहाँ पर करना पड़ा है। महिला पुलिस कर्मियों को पुलिस की तरफ दिल्ली पुलिस जो है वो लेकर के आई। आप देख सकते हैं कि पुलिस की किस तरीके से तैयारियां हैं। यहाँ पर तमाम प्रदर्शनकारी जो पहुंचे थे उनको अब पुलिस की तरफ से यहां से हटाया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष भिदुड़ी के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
4: और अब रुकने छोड़े से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है कि एक अपडेट आज तक पर आपको मिलेगा। रुकने छोड़े से ब्रेक के लिए देखते रहे आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
9: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: ओह सॉरी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: ये दो अराजकतावादी समूह जिसमें एक इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी और दूसरे गुट का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी कर रही है, मैं इन दोनों गुटों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत की जनता पूरी तरह से आपके इन उद्देश्यों को देख रही है और आज जो आपका एनार्किस्ट प्रतिस्पर्धा चल रहा है कि कौन अधिक इस देश में अस्थिरता पैदा कर सकता है, ये आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे कि जिन विदेशी ताकतों से बल पर आप अपनी बिकाऊ राजनीति कर रहे हैं और विदेशी ताकतों के गठजोड़ से भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके नापाक इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। लगातार राज्यों में आपकी हार हताशा दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं इस देश को शांति के साथ आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे, लेकिन मैं आज के दिन आपको चेतावनी देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और देश के राष्ट्रभक्त जनता आपको पूरी तरह से इसका करारा जवाब देगी और आज जिस प्रकार से तनाव की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, भारत की सरकार इसको कड़ाई से निपटेगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी पूरी तरह से जनता के बीच में रहकर आपके इस मंसूबे को कहीं ना कहीं रोकेगा।
3: कंडेम दिस एक्ट बिकॉज इट वॉज अ वेरी पीसफुल एजिटेशन दे वर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिल्ली एंड आई पर्सनली फील इट्स अ स्ट्रॉन्ग वर्ड बट इट्स कावर्डली ऑफ एनी गवर्नमेंट टू डू दैट।
4: You're calling it a cowardly act. The government will say, look, our responsibility is to ensure no untoward instance. We have clamped down with Section 144. You cannot have these large gatherings. We have made it very clear that we fear, we apprehend. That's what the IB is saying, that there could be trouble if large gatherings were allowed in Delhi today. Therefore, this is a precautionary measure. These are detentions that were necessary.
3: Yeah, but detentions for what? If somebody is having a peaceful march, at the most, what would it be? What was happening at Jantar Mantar in the last agitation? There was no violence ever at Jantar Mantar. And let me tell you one very interesting fact of the entire agitation. 24 hours there were youngsters there. There was no violence. There was no heckling. Women, young girls were as safe as they would be in their home at Jantar Mantar.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

गाड़ियों पर जमकर एक्शन, सड़कों पर आने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा गया। टकराव और पथराव के बीच 1000 से ज्यादा लोग कस्टडी में। एयरपोर्ट से दीप के समेत टीम सीजेपी को भी हिरासत में लिया गया। दिल्ली में ममता बनर्जी समेत टीएमसी के 5 नेता हिरासत में लिए गए। अज्ञात जगह पर ले गई दिल्ली पुलिस। केजरीवाल को भी कस्टडी में लिया गया। जंतर मंतर जाने के ऐलान के बाद हिरासत में लिए गए सभी नेता। कश्मीर से चंडीगढ़ तक ज्ञानेश कुमार पर आर पार। श्रीनगर अनंतनाग में इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन। आपका चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन। लखनऊ में

0: अंबित पात्रा ने कहा, देश की राजधानी को बंधक बनाने की कोशिश या अराजकता तत्वों का फ्लॉप शो है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन का आम आदमी पार्टी पर सीधा अटैक। राष्ट्रपति से इंडिया गठबंधन के नेताओं की मुलाकात के बाद राहुल गांधी का दावा, महामहिम ने हमारे मांगे वोट चोरी के सबूत, हम उन्हें हर प्रमाण देंगे। बीजेपी बोली, नालायक नेता को प्रोटोकॉल का ज्ञान नहीं। नमस्कार, 4 बजे के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। शुरुआत करते हैं इस वक्त दिल्ली में हो रहे जबरदस्त एक्शन और प्रदर्शन को लेकर, जहां पर सीजेपी के समर्थन और उनके समर्थन में कुछ छात्र संगठन प्रदर्शन की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सतर्कता के साथ साथ सख्ती भी दिखाई है, जिसमें सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। मुंबई से दिल्ली पहुंचने के बाद अभिजीत दिबके, आशुतोष राका और सौरभ दास को भी एयरक्राफ्ट में ही हिरासत में ले लिया गया। कुल मिलाकर नई दिल्ली का इलाका इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुका है। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि देश विरोधी तत्वों की साजिश नाकाम हो गई है। दिल्ली पुलिस के एक्शन में कुछ देर पहले ही ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को भी हिरासत में लिया गया है। दिल्ली में SFI लेफ्ट और कार्यकर्ताओं भी सड़कों पर उतरे, जिन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। हम आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि आज तक के संवाददाता लगातार नई दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं। वो सुबह से ही इस प्रदर्शन को लेकर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आपको हर अपडेट भी दे रहे हैं और आपको ये भी बता रहे हैं कि आखिरकार ताजा हालात कैसे हैं, किस तरीके से किस किस नेता को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया और किस तरीके से आगे बढ़ रहा है ये प्रदर्शन, ये तमाम चीजें बता रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको एक बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां पर बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सबसे पहले सीधे वहां लिए चलते हैं।
1: भर से चला है और इसके पहले 3 दिन जो चला है उससे 2 बातें साफ साफ आई हैं। इंडियन डेमोक्रेसी हैज डिस्ट्रॉयड द क्वेस्ट फॉर एनार्की। अराजकता को प्रोत्साहित करने की कोशिश को भारत के लोकतंत्र ने ध्वस्त किया है। एक और संदेश गया है कि देश संसद से चलेगा, सड़क से नहीं। कल रिजल्ट आए, आसाम में भाजपा जीती, नंदीग्राम में जीती और एक क्षेत्र तो 70% अल्पसंख्यक मतदाता प्रभावित है, वहां भी बीजेपी 70,000 प्लस से जीती। पांडिचेरी में एनडीए जीता जंत, और ये सब चुनाव तब हुए हैं जब ये सारी खुराफात दिल्ली में हो रही है पिछले काफी दिनों से। द बीजेपी वुड लाइक टू पर्टिकुलरली हाईलाइट दिस स्टेलर परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टी इन बंगाल, इन असम,

0: in Pondicherry, NDA, has happened when the whole movement for anarchy is going on in Delhi and various parts of the country. तो देश तो आपके साथ नहीं है, आप बार बार हारते हैं, लेकिन हम सड़क पर खुराफात करते रहेंगे। ये जो हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है और उसमें भी कमाल है, एक साथ नहीं चल रहे हैं, उसमें भी एक प्रतिस्पर्धा है। लालू जी, राहुल जी रहे 3 दिन, वो चले गए, फिर आ गए आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी, लॉ में 2 शब्द है प्रॉक्सी, लेकिन प्रॉक्सी शब्द थोड़ा शालीन लगता है मुझे, शैडो बॉक्सिंग, सीजेपी आम आदमी पार्टी की शैडो बॉक्सिंग करती है। और आपने देखा होगा सुबह से उनका नाटक चल रहा था और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, फिर वो आ गई और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है और सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर रहे हैं, लेकिन हमें गर्व है हिंदुस्तान की जनता पर कि उन्होंने उनके इस षड्यंत्र को निरस्त किया है, असफल किया है। लोकतंत्र की शालीनता, जनता का आशीर्वाद, अराजकता पर विजय हुआ है। और इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, द डिग्निटी ऑफ डेमोक्रेसी हैज डिस्ट्रॉयड द क्रोनिक एनार्की विच द अपोजिशन इज ट्राइंग टू फोमेंट। क्या चाहते हैं आप? आज कुछ हम बड़े सवाल उठाना चाहते हैं यहां पर, ये चाहते क्या है? और थोड़ा इसका बैकग्राउंड देना जरूरी है आज की परिस्थिति को समझने के लिए। याद करिए, जब मोदी जी 15 में आए थे, जीते थे 14 में, तो 15 से ईवीएम की कहानी शुरू की गई। उस समय देश का कानून मंत्री था, बहुत बहस संसद में हुई, हमने बताया कि जब आप जीते तो ईवीएम ठीक, चाहे मायावती या अखिलेश, और जब मोदी जीते तो ईवीएम खराब। फिर जब 19 में मोदी जी जीत गए, फिर 24 में जीत गए, तो फिर एसआईआर की कहानी शुरू की गई। मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं, लगभग 9 से अधिक बार देश में एसआईआर हुआ है, और ये कानून में प्रावधान है। मैं आज देश के सामने आप लोगों के माध्यम से एक सवाल कहना चाहता हूं, जो मर गए वो वोटर नहीं रह सकते, उन्हें रहना चाहिए क्या? जो अपने क्षेत्र में लोकसभा या विधानसभा में निवास नहीं करते वो वोटर नहीं बन सकते, और एक जगह से अधिक का वोटर नहीं बन सकते। मैं पटना साहिब का एमपी हूं, लगभग 40,000 मेरे यहां भी लोग कटे हैं, मुझे तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आज देश के सामने यह संख्या जानी जरूरी है कि अभी तक 2,89,00,000 वोटर्स वे फाउंडेड, 2.89 करोड़, 6.3 करोड़ शिफ्टेड, 1 करोड़ डुप्लीकेट और 3 करोड़ एब्सेंट, तो यह संख्या लगभग 13 करोड़ की आती है। आपको इस पर कहने का अधिकार है कि कोई गलत है तो उसका नाम ऐड हो सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। एक बड़ा सवाल और मैं उठाना चाहता हूं, जो घुसपैठिए हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है, क्या उनको वोटर बनना चाहिए? तो ये लड़ाई किस बात की कर रहे हैं, ये चाहते क्या है? ये बात बार बार पार्टी की ओर से कही गई है कि संवैधानिक संस्थाओं का राहुल गांधी सम्मान नहीं करते, और अब तो यह हाल है कि उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने को भी झूठ बयानी का आधार बना लिया है। कि समानता देश में यह नहीं होता कि आज राष्ट्रपति के सोर्सेस से भी कहा गया कि उनके बारे में जो बात कही गई है एलओपी के द्वारा वो गलत है। तो राहुल गांधी जी, अब राष्ट्रपति के सोर्सेस से भी आपकी झूठ बयानी पकड़ ली गई है। राष्ट्रपति जी ये तो नहीं कहेंगे ना, वो तो एक्सेप्ट नहीं देंगे, लेकिन अब तो कमेंट आ गया। मित्रों, आज मैं किसी चुनाव आयोग का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ बैकग्राउंड देना जरूरी है। मेरे पास पूरी सूची है कि कितने लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इन्होंने राज्यपाल बनाया। और एक साहब तो कमाल के थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हटे, राज्यसभा के एमपी बने और मंत्री बने। और उस समय मैं पार्टी का मुख्य, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा आज, आई डोंट वांट टू ग्लोरीफाई दम, लेकिन उस समय पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था, यहीं से पूछा था कि आप जवाब दीजिए, तो उनसे पूछा गया था, इसको मैं उचित समय पर जवाब दूंगा, और उचित समय कभी आया ही नहीं। उनकी राज्यसभा भी खत्म हो गई और मंत्री पद भी खत्म हो गया। एक श्रीमान जी का नाम मैं जरूर लूंगा, नवीन चावला का। यहां मेरे कुछ पुराने मित्र बैठे हुए हैं, अखिलेश जी को मैं देख रहा हूं, उनकी कोशिश थी कि भाजपा को बैन कर दिया जाए। और स्वर्गीय अरुण जेटली, हम लोग गए थे इलेक्शन कमीशन में, उनके खिलाफ बायस की शिकायत की थी, और उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर गोपाल रामास्वामी ने लिखा था कि इनको हटाया जाए, और हटाने की बात तो दूर, मनमोहन सिंह की सरकार ने उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया था। और ये कौन थे नवीन चावला? इमरजेंसी में जो डिटेनी थे उनको तंग किया जाए, गर्मी में परेशान किया जाए, ऐसे लोग थे। और ये हमें नसीहत दे रहे हैं, राहुल गांधी कृपया करके ये बदतमीजी बंद करिए कि इमरजेंसी आ गई है। इमरजेंसी की आपकी पूरी कहानी, आपकी दादी की कहानी ये देश जानता है, किस प्रकार से आप ये दादी जी, जब उनका इलेक्शन सेटिसाइड हो गया था तो उनकी कुर्सी को बचाने के लिए इमरजेंसी लगाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला था, जजेस सुपरसीड किए गए, सेंसर लगाया गया, पूरा बहादुर शाह जफर मार्ग में सारे दफ्तर थे अखबारों के, उसकी बिजली काट दी गई, पॉलिटिकल पार्टी बैन की गई, जेपी को गिरफ्तार किया गया, संघ के स्वयंसेवकों की नाखून नोचे गए। राहुल गांधी, यह लगता है आप नहीं जानते हैं या आप जानना नहीं चाहते हैं, तो कृपया करके आप इमरजेंसी की बात तो हमें न कहें। और आज जेपी का तो दो दिन पहले जन्म दिवस था, मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला। उनकी किडनी खराब हो गई थी इन लोगों के द्वारा, और वो जसलोक अस्पताल में थे, डॉक्टरों ने कहा इनको धूप की जरूरत है, वरांडे में बैठने दिया जाए। और नहीं, 26वें फ्लोर जनता देखेगी तो हंगामा हो जाएगा। बाद में स्वर्गीय सोली सोराबजी वगैरह जब कोर्ट जाने की बात की, तब उनको एक घंटे धूप में बैठने दिया गया। यह है राहुल गांधी, आपकी पार्टी का इतिहास, और हमें कहते हैं इमरजेंसी की बात। और ये सारे वामपंथी जो हैं इमरजेंसी के समर्थक थे। इसलिए प्लीज डोंट गिव लेक्चर टू अस ऑन इमरजेंसी, वी हैव फॉट अगेंस्ट द इमरजेंसी। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी आज भी सरदार के वेश में, जो देश में उन्होंने जबरदस्त प्रतिवाद और प्रतिकार पैदा किया था, ऑलमोस्ट लाइक लेजेंड, थोड़े जानते हैं। मित्रों, एक और बात जो मुझे कहनी है कि आप चाहते क्या है। आज ये सवाल, चूंकि आज एक प्रकार से लोकतंत्र की विजय का दिन है, जो बार बार कहा जा रहा है संविधान संविधान, हमें राइट टू प्रोटेस्ट है, तो संविधान की धारा 19 के क्लॉज 2 में इस बात का प्रावधान है कि अगर आप देश की सुरक्षा, हार्मोनी इत्यादि का विरोध करते हैं तो आपकी वो अधिकार को नियंत्रित सीमित किया जा सकता है। तो पूरी दिल्ली को आके आप घेर लेंगे, लोग चल नहीं सकते, आ नहीं सकते, कुछ हजार लोग हैं, और अगर पुलिस ने कार्रवाई की सुरक्षा के नाम पर, सहूलियत के नाम पर, तो आप कहते हैं वी हैव गॉट द राइट टू प्रोटेस्ट। मुझे लगा कि ये जो उनके बार बार दावे किए जा रहे हैं उसको थोड़ा आपके सामने रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार, ये लोग आजकल तो एक और नई बात मुझे दिखाई पड़ती है, एट अ ड्रॉप ऑफ ए हैट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। एसआईआर को चैलेंज करने में वामपंथी भी थे, कांग्रेस पार्टी भी थी, टीएमसी भी थी, सब चले गए थे, और कुछ तो झोला छाप रहते ही हैं, वो चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सुना, और बार बार सुनने के बाद क्या कहा कि एसआईआर चलेगा, और ममता जी ने बहुत शिकायत की तो पूरे बंगाल के चुनाव को उन्होंने जुडिशियल ऑफिसर्स को दे दिया था, याद होगा आपको, ताकि कोई शिकायत तो नहीं होगी। उन जुडिशियल ऑफिसर साथ क्या बदतमीजी बदसलूकी की, आप जानते हैं कि लेडी जुडिशियल ऑफिसर रो रही थी, इतना हंगामा किया था। तो आप कोर्ट नहीं मानते, आप वोट नहीं मानते, आप डेमोक्रेसी नहीं मानते, आप कहीं ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो क्या है? निष्कर्ष साफ है, ये ट्रस्ट एक ही बात में करते हैं, फॉरेन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस को। एक नैरेटिव बनाओ कि भारत में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, और ये नैरेटिव कब कब बनता है, जब जब भारत की आर्थिक प्रगति बहुत तेजी से चलती है मोदी जी की अगुवाई में। आपने लेटेस्ट रिपोर्ट सब देखी होगी, चाहे वो IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट। तो बस, और इसमें तो गजब तमाशा देखने को आ रहा है साहब। कुछ लोग जो विदेशी कुछ इन्वेस्टर्स को लेके क्या क्या राग अलापते थे, आज उनका अभिनंदन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं, इंडिया इज नॉट ए बनाना रिपब्लिक, और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये देश न कभी झुका है न कभी झुकेगा। देश के हित में जो उचित फैसले लिए जाएंगे वो करेगा, और किसी की मोनोपोली को स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वो विदेशी हो या इंडियन हो। बाकी बातें कही गई हैं, इसलिए उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। मित्रों, आज हम देश के सामने एक बात कहना चाहते हैं, देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस। और अगर ये लोग देश में अराजकता करने पर तुले हुए हैं तो देश की जनता को इनके खिलाफ उठना चाहिए। और अब तो सब कुछ टीवी पे दिखाई पड़ता है। अब एक नेता ने टेप लगाया हुआ था, फिर कहा मैं अकेले गिरफ्तार नहीं होंगी तो हमारे सारे MPs को गिरफ्तार करो, क्योंकि वो लेट पहुंचे थे, क्योंकि उसके पहले बाकी लोग पहुंच गए थे। तो ये जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स से अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, हम भारत की जनता को आगाह करना चाहते हैं, ये देश चलेगा लोकतंत्र से, ये देश चलेगा संसद से, ये देश चलेगा अकाउंटेबिलिटी से संसद में चुने हुए लोगों के द्वारा, और ये देश सड़क पे अराजकता से नहीं चलेगा। भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, हमें बहुत गर्व है भारत के भविष्य पर। बस मुझे अपनी ओर से एक बात है कि मेरे पास सारी सूची है चीफ इलेक्शंस कमिश्नर की, कितने को राजभवन का प्रसाद दिया गया, कितने को मंत्री पद का प्रसाद दिया गया, और सब कांग्रेस के रिजिम में ही हुआ है। लेकिन आज मैं वो नहीं कहना चाहता हूं, इसलिए जो बोल रहे हैं तो इनका रिकॉर्ड स्टेट करना जरूरी है। थैंक यू।
1: आप सभी के प्रश्न। देवेंद्र भाई,
2: सर जैसा कि आप बता रहे थे कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की शैडो बॉक्सिंग कर रही है, ऐसे कुछ लड़कों ने प्रोटेस्ट के लिए कॉल किया, कानून के खिलाफ जाके वो धमकी दे रहे थे कि हम आएंगे, और उसका नतीजा ये रहा कि इतनी सारी फोर्सेज आ गई, हजारों लोग इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं। क्या सरकार की अथॉरिटी अपनी कमजोर नजर नहीं आ रही है? कुछ नहीं होते
0: नहीं, पिछली बार जो उन्होंने खुराफात किया उसके हमने सावधान हुए, बल्कि देवेंद्र जी दिल्ली के लोगों को बचाया है और क्या।
3: और देखिए बीजेपी की तरफ से दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही के दिन, इससे पहले संबित पात्रा और रविशंकर प्रसाद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसी बीच एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने भी एक्स पर लिखा है, खास तौर पे कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा है कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं बचा है। ये प्रियंका गांधी की तरफ से लिखा गया। देखिए आपको बता दें कि आज जब सीजेपी का प्रदर्शन किया जा रहा था उसी बीच आज बीजेपी की तरफ से भी दो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और विरोध करने वालों को पकड़ा जा रहा है। देखिए ये भी सांसद प्रियंका गांधी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया। राहुल गांधी ने भी एक्स पर ट्वीट किया था आज, उन्होंने ज्ञानेश कुमार के साथ साथ उन्होंने सरकार को लेकर भी हमला का बोला था। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन इस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
7: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड,
8: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरनमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
9: एक परिवार, अटूट भरोसा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
3: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: कौन सी बनानी है?

0: सर गैसोफास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसोफास्ट 27%, इनो 9.2%।
1: गड़बड़ है।
2: आहा, गैसोफास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसोफास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
3: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर, तरक्की का ऑलराउंडर।
4: जेके मैक्स वाइप इजी,
3: दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।
5: हाउस द हॉस्टल सेटल्ड?
6: यस मैम, रियली
5: नाइस। कोई आ रहा है क्या?
7: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटी तो निभा ली, अब फिर से थोड़ा रोमांस है।
5: मयंक, फॉर रियल?
7: 1 कैरेट for my one true love. Natural diamond real love solitaires to reignite your new season of love.

0: in association with
1: Signature Finest Cardamom Seeds.
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
3: Canara Bank, together we can.
4: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल.
5: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा.
0: In association with
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी.
7: मैं मायावती सत्य निष्ठा के प्रतिज्ञा करती हूँ.
8: मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ.
9: मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ.
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा.
0: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.

0: भारतवर्ष का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर्स है और जंतर मंतर का क्षेत्रफल लगभग 4 किलोमीटर का है। तो भारत की कहानी जंतर मंतर की कहानी नहीं है। जंतर मंतर में जो हो रहा है, टीवी में जो दिख रहा है और कुछ सोशल मीडिया के हैंडल में जंतर मंतर को दिखाया जा रहा है, वो भारत की कहानी नहीं है। भारत शांत है, भारत सुशासन के साथ आगे बढ़ रहा है, मगर दिल्ली के एक कोने में कुछ अराजक तत्व जिस प्रकार से अराजकता कर रहे हैं, वह कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। मगर आज मैं आपको कह सकता हूं कि आज द एनार्किस्ट्स हैव फेल्ड। जो अराजक तत्वों का फ्लॉप शो हम देख रहे हैं, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। प्रयास था, ये कोशिश थी कि भारत को बंधक बनाया जाए, राजधानी को बंधक बनाया जाए। कोशिश थी कि यहां आगजनी हो, कोशिश थी कि यहां मार पिटाई हो, कोशिश थी कि यहां पर सड़कों पर लड़ाई हो, मगर आज भीड़ तंत्र पर लोकतंत्र की जीत हुई है।
1: स्टूडेंट्स जानते हैं कि देश पूरी हो रही है, नरेंद्र मोदी इसके आर्किटेक्ट हैं, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार इसके इंप्लीमेंटर्स हैं और इस बात को राष्ट्रपति ने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने आज डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में सोचेंगी। मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू।
2: राहुल गांधी और उनके नेतृत्व में इंडी गठबंधन के नेता जो पिछले कई दिनों से अनर्गल निराधार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान, महामहिम राष्ट्रपति एक व्यक्ति नहीं है, वो देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है, उसको लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो न सिर्फ विचित्र लगता है बल्कि उसमें सच से ज्यादा सियासत की गंध आ रही है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

चंद सड़कों पर आने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा गया। टकराव और पथराव के बीच 1000 से ज्यादा कस्टडी में लोग, एयरपोर्ट से दीपके समेत टीम सीजेपी हिरासत में। दिल्ली में ममता बनर्जी समेत टीएमसी के 5 नेता हिरासत में लिए गए। अज्ञात जगहों पर ले गई दिल्ली पुलिस। केजरीवाल को भी कस्टडी में लिया गया। जंतर मंतर जाने के ऐलान के बाद हिरासत में लिए गए सभी नेता। कश्मीर से चंडीगढ़ तक ज्ञानेश कुमार पर आरवार। श्रीनगर में अनंतनाग में इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन, आपका चंडीगढ़ में प्रदर्शन। लखनऊ में बीजेपी महिला मोर्चा का राहुल गांधी के खिलाफ हल्ला बोल।

बैठक बनाने की कोशिश या अराजक तत्वों का है फ्लॉप शो। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन का आम आदमी पार्टी पर सीधा अटैक। राष्ट्रपति से इंडिया गठबंधन के नेताओं की मुलाकात के बाद राहुल गांधी का बड़ा दावा, महामहिम ने हमसे मांगे वोट चोरी के सबूत, हम उन्हें हर प्रमाण देंगे, बीजेपी बोली नालायक नेता को प्रोटोकॉल का ज्ञान नहीं।

0: ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और दिल्ली में इस वक्त जबरदस्त एक्शन है, जहां सीजेपी के समर्थन और उनके समर्थनों में छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार उनको हिरासत में लिया जा रहा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सतर्कता रहते हुए सख्ती भी बरती और लगातार सैकड़ों प्रदर्शनकारी को हिरासत में भी लिया। मुंबई से दिल्ली पहुंचे के बाद अभिजीत दीप के आशुतोष शाह का सौरभ दास को भी प्लेन में ही हिरासत में ले लिया गया। कुल मिलाकर नई दिल्ली का इलाका इस वक्त छावनी में बदल गया है। बीजेपी ने कहा है कि देश विरोधी तत्वों की साजिश नाकाम हो गई है। दिल्ली पुलिस के एक्शन के कुछ देर पहले ही ममता बैनर्जी और अरविंद केजरीवाल को भी हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली में SFI और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं को भी वो सड़कों पर उतरे जिन्हें हिरासत में ले लिया गया। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार आज तक के तमाम संवाददाता इस समय नई दिल्ली के इलाकों में मौजूद हैं। वो सुबह से ही आपको पल पल की जानकारी और ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जब प्रदर्शनकारी जंतर मंतर के आसपास के इलाकों में और दिल्ली के आसपास नई दिल्ली के इलाकों में पहुंच रहे हैं और उनको हिरासत में भी लिया जा रहा। अब दिल्ली में नहीं बल्कि दूसरे शहरों में भी जगह जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन करने वालों में विपक्षी दल भी शामिल थे, तो लखनऊ और अहमदाबाद में बीजेपी महिला मोर्चा ने भी कांग्रेस के एक सांसद के खिलाफ प्रदर्शन किया। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चेन्नई में भी DMK के हल्ला बोला है और कुल मिलाकर शहर शहर आज प्रदर्शन की लहरी दिखाई दी। हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर चंडीगढ़ की है, जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। दूसरी तस्वीर में बीजेपी महिला मोर्चा ने लखनऊ में कांग्रेस के सांसद के खिलाफ एक मार्च निकाला, प्रदर्शन किया। इंडिया ब्लॉक का मोर्चा भी हमने आपको श्रीनगर से दिखाई है तस्वीर। अहमदाबाद, अनंतनाग और चेन्नई में भी कुछ इसी तरीके के प्रदर्शन किए गए। देखिए अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देश भर में आज अलग अलग जगहों पर इस तरीके के प्रदर्शन देखे गए, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में किया गया, जहां पर नई दिल्ली के इलाकों में 25,000 से ज्यादा पुलिस बलों को तैनात किया गया था। और इस बीच बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है, जो उस वक्त का है जब मुंबई से दिल्ली पहुंचे अभिजीत दीप के आशुतोष शाह और सौरभ दास को प्लेन में ही हिरासत में लिया गया। बीजेपी द्वारा जारी इस वीडियो में सीजेपी नेताओं को लेकर प्लेन के मुसाफिरों की प्रतिक्रिया भी सुनाई दे रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से बीजेपी ने ये तस्वीरें जारी की है, जिसमें कहा गया है कि उस समय मौजूद कई पैसेंजर्स ने क्या रिएक्शन दिया था, वो आपको दिखा रहे हैं।
1: भारत माता की जय।
2: राजस्थान के NSA UNA जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो। आई एम नॉट अफ्रेड।
1: कचरा साफ स्वच्छ भारत अभियान। भारत माता की जय।
3: रॉन्ग, मैं फिर से कह रहा हूँ, आंदोलन गांधी जी ने करा अंग्रेजों के खिलाफ, आप कर रहे हो अपने आदमियों के खिलाफ। लड़ो ना, कोर्ट्स हैं, कोर्ट कचहरी में जाओ, खूब लड़ो, पैसा भी है। दे आर ट्रेवलिंग बिजनेस क्लास, वकीलों को पैसा दे के लड़ो केस। सही है या नहीं ये बताइए आप, आम पब्लिक को क्यों परेशान।
4: जैसे ही प्रदर्शनकारी इकट्ठे होते हैं जनपद के पास, रीगल सिनेमा के पास, ब्लॉक ए के पास, वहीं देखा जाता है कि भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं इकट्ठे होकर उनको डिटेन करना शुरू कर देते हैं। और अंदर जाकर मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि अंदर जाकर जो इस समय पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो चेकिंग कर रहे हैं एक एक गली की। मैं अपने कैमरा सहयोगी अजय जी से बोलूंगा थोड़ा आपको आगे आकर दिखाए कि अंदर आपको गलियां नजर आएंगी। ये एन ब्लॉक के अंदर का इलाका है, अंदर जाकर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान हैं ढूंढ रहे हैं कि कहीं प्रदर्शनकारी कहीं छुपे तो नहीं हुए। और ये तस्वीरें आप जनपद की मेरे साथ देख रहे हैं, वहीं मैं फिर आपको तस्वीर दिखाऊंगा दूसरी तरफ। आप फिर देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे जो है पुलिस एक्शन शुरू हो चुका है, बसेज लाई गई हैं, तो सुबह से लेकर अब दोपहर हो चुकी है और दोपहर को भी देखा जा रहा है जो दिल्ली पुलिस का एक्शन है वो यहाँ पर जारी है।
0: और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर सीजेपी नेता अजिंक्य शिंदे का बयान भी जारी किया गया है। अपने समर्थकों से कहा है कि वो जंतर मंतर की ओर कूच करें। आपको बता दें अजिंक्य शिंदे हैं, उन्हें खुद जो सीजेपी की तरफ से उनके लिए कहा गया था और अब उनकी तरफ से एक बयान सामने आया। अजिंक्य शिंदे ने क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं।
5: हम क्या मांग रहे थे, इस देश के लोग क्या मांग रहे थे, जिनका वोट का अधिकार चोरी हो चुका है उनको वापस अधिकार मिले यही तो मांग रहे थे, जिस ज्ञानेश ने वोट चोरी की उसका इस्तीफा हो यही तो मांग रहे थे, और इसकी वजह से इस तानाशाही सरकार ने पूरी दिल्ली में एमरजेंसी लागू कर दी और पूरी दिल्ली बंद कर दी। तो मेरा सभी देशवासियों को इस वीडियो के माध्यम से निवेदन है कि आप जहां पर भी हो दिल्ली जंतर मंतर की ओर कूच करें, और जहां पे आपको पुलिस रोकती है वहीं पे आप अपना जंतर मंतर बना लें। जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी।
0: और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशांत मेहरा भी जुड़ गए हैं। सुशांत, आप जहां पर मौजूद हैं इस समय वहां पर क्या प्रदर्शनकारी मौजूद है? और दूसरा, अजिंक्य शिंदे ने यह आह्वान किया है, एक बार फिर से कहा है कि जहां जहां पर प्रदर्शनकारी हैं, जहां जहां पर सीजेपी के समर्थन है, वो अभी कह रहे हैं कि देखिये वो जंतर मंतर पहुंचे।
6: देखिए सुमित, बता दूं कि पुलिस की तरफ से भी पूरी तैयारी जो है वो इस पूरे प्रदर्शन को लेकर की गई थी। उनका पुलिस के जो हमारे अधिकारियों से जब हमारी बातचीत हुई ऑफ रिकॉर्ड, उन्होंने बताया कि लगातार जो इनपुट्स आ रहे थे सुबह से लेकर के अब तक, कई कंपनियां जो है वो दिल्ली के कनॉट प्लेस और आसपास के हिस्से में तैनात की गई है, और अगर शाम को भी इसी तरीके से जिस तरीके से लगातार सीजेपी के जो नेता है वो लगातार अपील कर रहे हैं, और अगर इस तरीके से एक बार फिर से प्रदर्शनकारी पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर पुलिस का एक्शन एक बार फिर से देखने को मिलेगा। पुलिस की पूरी जो है वो दिल्ली में इस वक्त जो है वो नजर आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सुबह 8:30 बजे के आसपास मैं कनॉट प्लेस पहुंचा था, लगभग 4:30 बज रहे हैं, यानी कि लगभग 8 घंटे हो गए, और 8 घंटों के अंदर मैं आपको बता दूं कि लगातार प्रदर्शनकारी अलग अलग हिस्सों से होकर के कनॉट प्लेस पहुंचे और पुलिस लगातार उनको डिटेन कर रही है। लगभग 2000 के आसपास जो अब तक जानकारी आई है, तो लोगों को डिटेन जो है वो दिल्ली पुलिस कर चुकी है। यही वजह थी दिल्ली पुलिस की तरफ से कि पहले से इनपुट मिले थे दिल्ली के अंदर कि दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें 2 दिन के लिए बंद की जाए। व्यापारियों के साथ संपर्क किया गया, व्यापारियों की तरफ से यह ऐलान किया गया कि दिल्ली के तमाम कनॉट प्लेस बाजार को बंद किया जाएगा, मेट्रो के 45 स्टेशन जो है वो बंद किए जाएंगे,
0: एक बात बताइए
6: जो है वो रोकी जाएगी।
0: आज ये सुशांत एक बात बताइए, आज ये अलर्ट जारी किया गया था, इसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे, पुलिस को भी ये उम्मीद थी और आज ये उम्मीद की जा रही थी कि देखिए प्रदर्शनकारियों को, क्योंकि कई लोगों को डिटेन किया गया तो शायद आज ये ठंडा हो जा रही है, देख भी रहा था तस्वीरों में। लेकिन अब जिस तरीके से दोबारा से आह्वान किया जा रहा है, दोबारा से कहा जा रहा है कि आप जंतर मंतर पहुंचिए, क्या कल का दिन भी या शाम का दिन भी, शाम को भी इस तरीके की गहमा गहमी, इस तरीके के प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं?
6: लेकिन निश्चित तौर पर अगर जिस तरीके से अपील की गई है और जो कॉल किया गया था कल सीजेपी की तरफ से, उसका असर भी जो है वो दिल्ली में नजर आया। बेशक पुलिस के इंतजाम पूरे थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस, अर्धसैनिक बल, तमाम जो फोर्सेस थी वो दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी, चाहे वो एडिशनल सीपी हो, इसके अलावा ज्वाइंट सीपी हो, तमाम अधिकारी जो है वो सड़कों पर इस वक्त मौजूद है। और अगर इस तरीके से अपील की जा रही है तो निश्चित तौर पर पुलिस की भी पूरी तरीके से तैयारी जो है वो रहेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से एक बैठक भी जो है वो की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें कनॉट प्लेस के अंदर नजर आ रही है, आज का दिन उनके व्यापार पर काफी असर जो है वो पड़ा है, और उस पर विचार किया जा रहा है कि अगर इस तरीके के हालात देर रात तक रहते हैं तो क्या कल जो उनका व्यापार है उसको खोला जाए या ना खोला जाए, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, प्रदर्शनकारी अगर कल भी पहुंचते, क्योंकि वीकेंड है, संडे का दिन है, कनॉट प्लेस में अच्छी खासी भीड़ होती है, और ऐसे में प्रदर्शनकारी अगर पहुंचते हैं तो दुकानों का नुकसान हो सकता है, उस पर भी विचार किया जा रहा है।
0: बिल्कुल, और देखिए सुशांत, यही बात है कि आज बीजेपी की तरफ से भी इन तमाम प्रदर्शनों को लेकर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पूरे दिन में की गई है। संबित पात्रा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या कुछ उन्होंने कहा है आइए आपको सुनाते हैं।
7: राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलने के पश्चात राहुल गांधी जी का बयान एक नालायक नेता के बयान के समान है। मैं बहुत सोच समझ के ये शब्द, मुझे भी कुंठा हो रही है बोलते, तकलीफ हो रही है। आई एम सिटिंग ऑन अ वेरी हाई पेडेस्टल, ही इज द एलओपी ऑफ द कंट्री, मगर जब मैं कहता हूं एक नालायक नेता, इसलिए कहता हूं कि चलिए आपने प्रधानमंत्री के लिए जिस प्रकार के अब शब्दों का प्रयोग किया, झूठ बोला, वो पूरा देश देख रहा है। आपने जिस प्रकार से भारत के संवैधानिक पदों के लिए, संवैधानिक संस्थाओं के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, पूरा भारत सुन रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति को सड़क की लड़ाई में घसीटने का प्रयास किया गया, मगर एक नालायक नेता ने राष्ट्रपति महोदया को सड़क की लड़ाई में घसीटने की कोशिश की है। अब देखिए, बेसिक प्रोटोकॉल भी राहुल गांधी को समझ में नहीं आता है कि आप कोई मेमोरेंडम लेके जाते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट्स द मेमोरेंडम, ये बेसिक प्रोटोकॉल है भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का। इसीलिए तो भारत का लोकतंत्र विराट है, मगर आपने कहा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसी सांस में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कुछ एविडेंस है तो वो भी दीजिए। क्यों एविडेंस क्यों नहीं लेके गए थे? एविडेंस होगा तभी तो लेके जाएंगे। जब प्रेसिडेंट मैडम कहती है कि एविडेंस है तो दिखा दीजिए, बाद में एविडेंस देंगे। अगर बाद में एविडेंस देंगे तो आप गए क्यों थे? तो आप प्रेसिडेंट के पास गए क्यों थे बिना एविडेंस के? मतलब इतने दिनों से, मैं तो कहूंगा लगभग एक साल हो गया वोट चोरी करते हुए, उसका एविडेंस आपके जेब में रहना चाहिए था। क्यों नहीं था आपके जेब में? क्यों गए थे राष्ट्रपति भवन बिना एविडेंस लेके? और बाहर आके नालायक नेता कहता है कि राष्ट्रपति महोदया मान गई कि हम जो कह रहे हैं। आप सोचिए यह व्यक्ति लायक है क्या देश के प्रधानमंत्री या एक उच्च पद में बैठने के? He himself proved that he is not responsible enough to occupy a high position in India.
0: संबित पात्रा को आप सुन रहे थे। लगातार वो कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर आक्रामक नजर आए, यहां तक कि उनको नालायक तक कह गए। अब दिल्ली पुलिस भी लगातार प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर पर पहुंचने से रोकने के लिए प्रयास में लगी रही। इस बीच बड़ी संख्या में क्रॉट प्लेस पर जुटे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ दिया और कई लोगों को डिटेन भी किया। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
8: इस वक्त हम कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में हैं। यहाँ पे प्रदर्शनकारी 150 से 200 के तादाद में दिख रहे थे और अब इस सेक्टर में कंट्रोल करने के लिए आपको दिखाई देगा कि दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, कमांडोज हैं और जो पैरा फोर्सेस के आरएएफ के जवान हैं वो मूवमेंट कर रहे थे। देखिए प्रदर्शनकारियों का टेम्पल रन शुरू हो गया है, वो एक तरह से इस सेक्टर से दौड़ के भाग रहे हैं और पुलिस उनको यहां से हटाते हुए दिखाई दे रही है। बीते एक घंटे से यहां पर ये प्रदर्शनकारी, जेंजी युवा प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे, ज्ञानेश कुमार सीसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वोट चोरी के बारे में नारेबाजी कर रहे थे, जो विपक्ष का आरोप है उसी तरह के नारेबाजी यहां पर सुनाई दे रहा था। बीते एक घंटे से यहां ये जमावड़ा लगा हुआ था लेकिन अब अचानक से दिल्ली पुलिस एक्शन बोर्ड में आती है और इस सेक्टर में भी जो प्रदर्शनकारी थे उनको हटाया जा रहा है। तो ये लगातार 1.5-2 घंटे से इसी तरह का क्रम चल रहा है कि जहां भी प्रदर्शनकारी इकट्ठा होते हैं पुलिस आती है, आरएएफ आती है और उनको यहां से दौड़ाती है, उसके बाद वो दूसरी तरफ किसी और सेक्टर में चले जाते हैं। सेक्टर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिहाज से, देखिए एक युवा महिला प्रदर्शनकारी है उनको डिटेन किया गया है और डिटेन करके बसों में ले जाया जा रहा है। इस बार जो बसेस भी बुलाए गए हैं वो अलग तरह के बसेस हैं, सारे युवा प्रदर्शनकारी हैं, बैकपैक उनके पास है।
9: पुलिस को भी आप समझिए।
0: देखिए हमारे तमाम सहयोगी लगातार आज सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लगातार नई दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आपको ये खबरें पहुंचा रहे हैं। ना सिर्फ नई दिल्ली के इलाकों से बल्कि देश के अलग अलग कोनों से भी प्रदर्शन और इसको लेकर खबरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि इस समय दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को, 1000 से ज्यादा लोगों को अपनी डिटेंशन में भी रखा है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। चलिए इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: कर चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
1: ये उस विमान के अंदर की तस्वीर है जहां से कॉकरोच जनता पार्टी के पदाधिकारियों को हिरासत में लिया गया।
2: जाओ कर लो अरेस्ट होने के लिए आए हम, अरेस्ट होने के लिए आए हैं, आ जाओ कर लो अरेस्ट होने के लिए आए सर, डरेंगे नहीं आपसे।
3: अभिजीत
2: कर लो अरेस्ट,
3: भारत माता की।
1: ये उस वक्त की तस्वीर भी है जब अभिजीत दिपके को दिल्ली पुलिस हिरासत में लेने प्लेन के अंदर पहुंचती है।
2: जाओ कर लो अरेस्ट होने के लिए आए हम, अरेस्ट होने के लिए आए हैं, आ जाओ कर लो अरेस्ट होने के लिए आए सर, डरेंगे नहीं आपसे।
3: अभिजीत
2: कर लो अरेस्ट,
3: भारत माता की।
1: कॉकरोच जनता पार्टी के पदाधिकारी ये मानकर चल रहे थे कि मुंबई से दिल्ली पहुंचते ही पुलिस उन्हें गिरफ्त में ले लेगी। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो लगातार जारी हो रहे थे जिनमें हिरासत में लेने की बात कही जा रही थी, लिहाजा मुंबई से प्लेन जैसे ही लैंड करता है दिल्ली पुलिस की टीम अंदर दाखिल होती है और सीजेपी के तीनों पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को हिरासत में लेने के साथ ही ये तय हो गया कि आज का प्रदर्शन अब और आगे नहीं बढ़ने वाला। खबर है कि पुलिस ने अभिजीत दिपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को अलग अलग जगहों पर हिरासत में रखा है। बाकी करीब 450 लोगों को छत्रसाल स्टेडियम में बनाए गए डिटेंशन सेंटर में रखा गया है।
4: छत्रसाल स्टेडियम में बस भर करके जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे अलग अलग जगहों में, वहां से उनको यही सीधे छत्रसाल स्टेडियम लाया गया। इन्होंने अभी बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये लोग मिंटो ब्रिज पर प्रदर्शन कर रहे थे, जहां से डिटेन करके इनको सीधे छत्रसाल स्टेडियम लाया गया। छत्रसाल स्टेडियम में पहले से ही पुलिस मौजूद है और इसको डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। इसके अंदर तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो मौजूद है।
1: दिल्ली में आज के प्रदर्शन में आप और लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए, लेकिन कुल मिलाकर सुरक्षा बल आज के प्रदर्शन पर काबू पाने में कामयाब रहे। अमित भारद्वाज, अंशुल सिंह और अरविंद ओझा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: सो सॉरी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: आ गया सोमवार और आ गए
3: चकमक चाचा।
2: एक कचौड़ी दो समोसा चकमक तेरा क्या भरोसा।
4: चकमक चाचा से सीधे चकमक है।
2: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रहे, बुझ रहा ना।
4: लेकिन भैया नारे अरे फालतू में सब बेकार है, एकदम बेकार है। नारे होते थे हमारे टाइम।
2: अच्छा
4: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
2: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी इन नेताओं की खत्म कहानी।
4: अरे जमीन की चकबंदी में, जमीन की चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में,
2: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा शर्म करो।
4: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
2: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा देके जाएंगे।
4: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
2: अरे लाल फूल नीला फूल जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
4: अरे बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी।
2: चाय गरम दूध गरम चकमक चाचा भी शरम
4: है।
2: हाँ।
4: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
2: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
5: हम जैसे, इधर आओ।
6: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
7: ये दो अराजकतावादी समूह जिसमें एक इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी और दूसरे गुट का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी कर रही है, मैं इन दोनों गुटों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत की जनता पूरी तरह से आपके इन उद्देश्यों को देख रही है और आज जो आपका एनार्किस्ट प्रतिस्पर्धा चल रहा है कि कौन अधिक इस देश में अस्थिरता पैदा कर सकता है, ये आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। कि जिन विदेशी ताकतों से बल पर आप अपनी बिकाऊ राजनीति कर रहे हैं और विदेशी ताकतों के गठजोड़ से भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके नापाक इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। लगातार राज्यों में आपकी हार हताशा दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं इस देश को शांति के साथ आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे। लेकिन मैं आज के दिन आपको चेतावनी देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और देश के राष्ट्रभक्त जनता आपको पूरी तरह से इसका करारा जवाब देगी। और आज जिस प्रकार से तनाव की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, भारत की सरकार इसको कड़ाई से निपटेगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी पूरी तरह से जनता के बीच में रहकर आपके इस मंसूबे को कहीं ना कहीं रोकेगा।

0: कि सत्य निष्ठा के प्रति ज्ञान करती हूँ।
1: मैं अजय यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
2: मैं आदित्यनाथ योगी

0: छावनी बनी दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर जमकर एक्शन। सड़कों पर आने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा। टकराव और पथराव के बीच 1000 से ज्यादा कस्टडी में। एयरपोर्ट से अभिजीत दिपके समेत टीम सीजेपी भी हिरासत में। दिल्ली में ममता बनर्जी समेत टीएमसी के 5 नेता हिरासत में लिए गए। अज्ञात जगह पर ले गई दिल्ली पुलिस। केजरीवाल को भी कस्टडी में लिया गया। जंतर मंतर जाने के ऐलान के बाद हिरासत में लिए गए। जंतर मंतर 2.0 पर बीजेपी का एक बार फिर हमला। संबित पात्रा ने कहा, देश की राजधानी को बंधक बनाने की कोशिश, यह अराजक तत्वों का फ्लॉप शो। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन का आम आदमी पार्टी पर सीधा अटैक। राष्ट्रपति से इंडिया गठबंधन के नेताओं की मुलाकात के बाद राहुल गांधी का दावा, महामहिम ने हमसे मांगे हैं वोट चोरी के सबूत, हम उन्हें हर प्रमाण देंगे। बीजेपी बोली, नालायक नेता को प्रोटोकॉल का ज्ञान नहीं। सीएम योगी ने स्वीकार की अखिलेश यादव की चुनौती। बोले, अयोध्या हमारे लिए आस्था का केंद्र, फिर भी अखिलेश लड़ना चाहते हैं यहां से चुनाव, तो मैं भी नामांकन के लिए तैयार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी और आप देख रहे हैं दंगल। दरअसल आज दंगल पूरे दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन का मैदान सजने से पहले ही उजाड़ दिया गया। जिनकी अगुवाई में चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज बुलंद होनी थी, उनकी आवाज एक बार फिर बंद कर दी गई। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को मुंबई से दिल्ली लैंड होते ही फ्लाइट में ही हिरासत की हथकड़ी दिखा दी गई। लेकिन गुस्से की आग दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में दिन भर भड़कती रही। कैनॉट प्लेस से लेकर मिंटो रोड तक और गाजीपुर से लेकर गुरुग्राम तक मुख्य चुनाव आयोग और SIR के खिलाफ प्रदर्शन के नारे लगातार लगते रहे। हालांकि इस बार दिल्ली पुलिस कुछ ज्यादा ही अलर्ट थी। पिछली बार दिल्ली पुलिस ने CJP को एयरपोर्ट पर ही प्रदर्शन की इजाजत दे दी थी, लेकिन इस बार नियमों का फर्रा पकड़ा दिया गया। बताया गया कि प्रदर्शन से 10 दिन पहले आपको दरअसल परमिशन लेनी चाहिए थी। और वहीं इस पूरे प्रदर्शन से कांग्रेस ने फिलहाल अपने आप को अलग रखा है, लेकिन BJP के निशाने पर कांग्रेस और राहुल गांधी ही दिखाई दिए। उन्हीं से उन्होंने सवाल किए और उन पर ही अराजकता के आग भड़काने के इल्जाम भी लगा दिए। इस बीच ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और लेफ्ट के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। अब सवाल यह है कि क्या ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से विरोध का यह बिगुल कुछ थम जाएगा? क्या इस्तीफे से कम मानने को अब विपक्ष तैयार नहीं होगा? क्या विपक्ष के आरोप सचमुच में सही है? क्या BJP के आरोप सचमुच में सही है कि विपक्ष देश को अराजकता की ओर झोंकने की कोशिश कर रहा है? कई सवाल है और इनके सवालों के इर्द गिर्द ही हमारी ये बहस रहेगी। लेकिन उससे पहले दिल्ली में जो आज दिन भर होता रहा, सुबह 10:30 बजे से अब तक लगातार, उस पर हमारी ये खास रिपोर्ट।

0: दिल्ली की जमीन पर कदम भी नहीं पड़े कि विमान के भीतर ही हिरासत में ले लिया गया। मुंबई से दिल्ली फ्लाइट पहुंची ही कि सीजेपी के नेता अभिजीत देबके, सौरभ दास, आशुतोष रांका पर दिल्ली पुलिस ने धावा बोल दिया, जिस पर सीजेपी नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा।
1: अरे सुनने के लिए आया हो, कर लो अरेस्ट।
0: सीजेपी का आरोप है कि विरोध की आवाज दबाने की कोशिश है, लेकिन जिस फ्लाइट में सीजेपी के नेता सवाल उठा रहे थे, वहीं पर वो भी लोगों के सवालों में घिर गए और मामला बिगड़ गया।
2: भारत माता की जय।
1: राजस्थान के एनएसए यूएनए जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो। आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड।
0: स्वच्छ भारत अभियान। चंद महीने पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने वाले सीजेपी का इस बार मुद्दा अलग है। सीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को रोकने की मांग पर प्रदर्शन बुलाया।
3: ये कूद करके बैरिकेड के ऊपर चढ़ जाना और ये प्रयास करना कि दिल्ली जो देश की राजधानी है वहां अराजकता फैला करके एक ऐसा संदेश पूरे विश्व में भेजना कि भारतवर्ष इनकैपेसिटेटेड हो गया, ये क्या संदेश भेजना चाहते हैं?
0: दिल्ली में आज फुल दंगल है, प्रदर्शन पर टकराव है, दौड़ा दौड़ा कर धर पकड़ है। अब तक 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए।
4: कनॉट प्लेस के रीगल थिएटर के पास की ये तस्वीरें, जहां पे बड़ी तादाद में आपको डिटेंशन दिखाई देगा। पैरा फोर्सेस के जवान हैं जो डिटेन करके प्रदर्शनकारियों को ले जा रहे हैं। देखिए, बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी यहां पहुंचे थे, अब नारेबाजी करते हुए वो जा रहे हैं। सब युवा हैं, यंगस्टर्स हैं जिनको डिटेन किया गया है। दिल्ली पुलिस की ये गाड़ी है, रॉयल कंट्रोल व्हीकल है, उसमें डिटेन करके इन युवाओं को, प्रदर्शनकारियों को ले जा रहा है।
0: बीजेपी ने अराजकता का आरोप लगाकर राहुल गांधी पर निशाना साधा।
5: साथियों, आज देश में बेहद ही खतरनाक और गंभीर स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। देश की 140 करोड़ जनता जो सुख शांति के साथ भारत के विकास में सबका सहयोग मिल रहा है, उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। पर ये कौन कर रहे हैं? ये दो अराजकतावादी समूह, जिसमें एक इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी और दूसरे गुट का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी कर रही है। मैं इन दोनों गुटों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत की जनता पूरी तरह से आपके इन उद्देश्यों को देख रही है।
0: कांग्रेस भले ही प्रदर्शन से दूर है, लेकिन आम आदमी पार्टी, लेफ्ट, टीएमसी ने अपना समर्थन दिया है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, बंगाल के पूर्व सीएम ममता बनर्जी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन, त्रिपुरा के पूर्व सीएम माणिक सरकार और सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास को भी हिरासत में लिया। यूट्यूबर ध्रुव राठी को सुबह ही गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया था।
6: वो बहुत गुस्से में है। जो जो लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं, मैं पूरे देश के लोगों को, युवाओं को हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, हम सब लोगों को मिलके देश को बचाना होगा। आप जहां भी हैं देश में, अभी निकलिए अपने घर से, दिल्ली की तरफ कूच कीजिए, दिल्ली आइए, स्कूटर पे आइए, पैदल आइए, बस में आइए, हवाई जहाज में आइए, ट्रेन में आइए, जैसे आ सकते हैं आइए, दिल्ली की तरफ कूच कीजिए। जहां मोदी जी आपको रोके वहीं बैठ जाओ।
0: आज राहुल गांधी चेन्नई में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए दक्षिण

0: भारत में भी सियासी हवा बदलने में लगे हैं, लेकिन दिल्ली में वार उन पर लगातार हो रहे हैं।
1: राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलने के पश्चात राहुल गांधी जी का बयान एक नालायक नेता के बयान के समान है। मैं बहुत सोच समझ के ये शब्द, मुझे भी कुंठा हो रही है बोलते, तकलीफ हो रही है। आई एम सिटिंग ऑन अ वेरी हाई पेडेस्टल, ही इज द एलओपी ऑफ द कंट्री, मगर जब मैं कहता हूं एक नालायक नेता, इसलिए कहता हूं कि चलिए आपने प्रधानमंत्री के लिए जिस प्रकार के अब शब्दों का प्रयोग किया, झूठ बोला, वो पूरा देश देख रहा। आपने जिस प्रकार से भारत के संवैधानिक पदों के लिए, संवैधानिक संस्थाओं के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, पूरा भारत सुन रहा है।
0: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ गुस्से की आग दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में भड़क गई। इसी गुस्से की आग को थामने के लिए मिंटो रोड पर पुलिस मुस्तैद दिखी।
2: मिंटो ब्रिज पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आईसा और तमाम लेफ्ट विंग के जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहां पर पहुंचे थे, जिनको पुलिस की तरफ से बड़े एक्शन के तहत डिटेन किया गया। ये देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंचे थे आईसा की तरफ से और तमाम अलग अलग संगठन की तरफ से। अब उनको यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से पुलिस का एक एक्शन जो है वो यहाँ पर नजर आया है। कनॉट प्लेस से तमाम फोर्सेस को जो है वो मिंटो के पास, मिंटो अंडरपास के पास जो है वो पुलिस की तरफ से बुलाया गया और उसके बाद बड़ा एक्शन, क्योंकि बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो दरअसल कनॉट प्लेस के अंदर मिंटो के पास से ही अंदर आ रहे थे और ऐसे में पुलिस की तरफ से अब इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर देखिए किस तरीके से डिटेन किया गया। आपको तस्वीरें,
0: दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए अलग अलग राज्यों से आने वाले लोगों को भी रोका गया। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के प्रदर्शनकारियों को जगह जगह हिरासत में लिया गया। बीजेपी बिना इजाजत प्रदर्शन को अराजकता का नाम दे रही है।
3: ये अराजकता निर्माण करने की, अराजकता फैलाने की कोशिश है साजिश से प्रतिपक्ष की, और मैं तो इनके रवैये से हैरान हूं। गैरों पे कर्म, अपनों पे सितम। हमारे देश में अराजकता फैले, क्योंकि वैसे जीत नहीं सकते।
4: केवल व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, देश के अंदर एक अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, चाहे ये हो चाहे सीजीपी पार्टी के लोग हो, ये सब मिलकर कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं। आज देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो आपको पच नहीं रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि संसद भी मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, देश भी मेरे हिसाब से चलना चाहिए।
0: दिल्ली में आज तीन मोर्चे खुल गए। पहला एसआईआर पर सवाल, दूसरा प्रदर्शन पर पहरा, तीसरा सत्ता और विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन।
5: आंदोलन चल रहा है, वो चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर उंगली उठी है। केवल सीजेपी की तरफ से उंगली नहीं उठी है, देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने समय समय पर सवाल खड़े किए हैं, और आखिरकार इलेक्शन कमीशन के साथ भारतीय जनता पार्टी क्यों खड़ी है, जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका काम है निष्पक्ष फैसला लेना, अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाए डेमोक्रेसी में। लेकिन लगता तो यह है कि कोई भी आंदोलन अगर चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है।
0: दिल्ली में प्रदर्शनकारी जगह जगह बिखरे रहे, लेकिन सवाल ये कि लोकतंत्र में असहमति के लिए कितनी जगह बची है। आज तक ब्यूरो।
6: तो एक जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने से रोक दिया गया तो पूरी दिल्ली में एक तरीके से दंगल होना शुरू हो गया, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। तीन सवालों के साथ ही चर्चा की शुरुआत होगी। सवाल एक तरफ से यह भी उठाया जा रहा है कि इजाजत नहीं मिली तो प्रदर्शन पर सीजेपी क्यों अड़ी रही, पिछली बार सीजेपी को प्रदर्शन की इजाजत दी गई थी। दूसरा सवाल यह कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार बड़ा होता है, लेकिन क्या कानून व्यवस्था का तर्क जो दिया जा रहा है और जिसके वजह से पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्या उसका तर्क भी भारी है। तीसरा सवाल, क्या सीसीएसआईआर के खिलाफ विरोध पर विपक्ष बिखरा हुआ है या साथ में है, क्योंकि कुछ लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन में कहां नजर आ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी, सभी लोग इस आंदोलन में सीजेपी के साथ में या छात्रों के साथ में खड़े होते यहां पर नजर आ रहे थे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चारू प्रज्ञा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जुड़ रही है, पूजा त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी से इस चर्चा में अपनी भूमिका रखेंगी, प्रणव धवन कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से चर्चा में आ रहे हैं, और विनय सिंह ये डायरेक्टर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के, उनसे भी हम कुछ सवाल पूछेंगे। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि इंडिया गठबंधन के नेता अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च करेंगे। हालांकि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद इस बात का जिक्र किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट अपील करने वाले हैं। सीसी ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेता सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी मार्च कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे कि इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनका इस्तीफा इस पूरे मामले में हो जाए। हमारे साथ में राहुल गौतम इस वक्त जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्या इंडिया गठबंधन का एक मार्च सोमवार को, तीन दिन से लगातार इंडिया गठबंधन के सांसद मार्च कर रहे हैं, क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट का रुख होगा?
7: बिल्कुल, देखिए यही जानकारी मिल रही है साहिल कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा, जिस प्रकार से राष्ट्रपति भवन का रुख किया गया था, और समय मांगा जाएगा कि एक मेमोरेंडम सबमिट किया जाए सीजीआई को, और जितने लोगों को अलाउ किया जाएगा उतने लोगों के थ्रू वो मेमोरेंडम सबमिट होगा, और बाकी लोग जैसे हमने कल भी देखा तमाम लोग जो लोग हैं वो नारेबाजी और तमाम लोग वो सड़कों पर होंगे। एक जानकारी और दे दूं कि सोमवार के मार्च के लिए ममता बैनर्जी अब दिल्ली के अंदर ही रहेंगी ताकि वो मंडे का जो मार्च है उसको ज्वाइन कर सकें। ये भी जानकारी मिल रही है कि अभिषेक बैनर्जी जो वापस चले गए थे कोलकाता वो भी दिल्ली वापस आएंगे ताकि इस मार्च में रह सके। तो कुल मिलाकर आप देखिए कई मोर्चों पर आप कह सकते हैं लड़ाई लड़ी जा रही है, जितने भी दरवाजे खटखटाए जा सकते हैं वहां उन दरवाजों तक पहुंचा जा रहा है ताकि एक मोमेंटम जो क्रिएट किया है कम से कम लगता है राहुल गांधी
6: अनप्रेसिडेंटेड है। राहुल गौतम अनप्रेसिडेंटेड है, ऐतिहासिक होगा कि विपक्षी सांसद नेता विपक्ष के साथ अगर मार्च करेंगे सुप्रीम कोर्ट के तहत और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको जाकर एक मेमोरेंडम देंगे मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ, या जिस तरीके की स्थिति उनका दावा है कि देश में बनी हुई है। लेकिन उसके साथ साथ आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि और एक खबर हमारे पास इस वक्त आ रही है। सवाल ये उठाए जा रहे थे कि क्या इस पूरे आंदोलन के समय कांग्रेस पार्टी कहां है, तो इस वक्त राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपना एक बयान डाला हुआ है और उनका एक बयान सामने आया हुआ है, जरा वो भी खबर दिखा दीजिएगा कि राहुल गांधी ने कहा है कि पिछले एक दशक से ज्यादा समय से नरेंद्र मोदी और आरएसएस से मैं लड़ रहा हूं। उनका यह बयान वीडियो बयान आया हुआ है। इन लोगों की मुख्य विशेषता कायरता है, राहुल गांधी का यह आरोप है, और उन्होंने लिखा है कि आप जो चाहे कर लीजिएगा, सारा पुलिस बल बुला लीजिएगा, सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लीजिएगा, हर घर को घेर लीजिएगा, हम आपको घेर रहे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी ने यह भी लिखा है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये सरकार हमारे संविधान पर हमला करने वालों के लोग आ रहे। इनका बयान एक बार सुन लेते हैं और एक बार फिर राहुल गौतम के पास चलेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि युवा अपना आंदोलन जारी रखे, ये भी उस स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा हुआ है। क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी, जरा एक बार सुनते हैं।
8: नरेंद्र मोदी द आरएसएस एंड द लाइक फॉर ओवर अ डेकेड नाउ एंड आई अंडरस्टैंड देम, लाइक यू नो यू अंडरस्टैंड योर ओपोनेंट, आई अंडरस्टैंड देम इनसाइड आउट लाइक द बैक ऑफ माय हैंड। कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज पीपल इज कावर्डिस। यू सी व्हाट इज हैपनिंग इज नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार, अजीत डोवल, द विलन्स ऑफ दिस स्टोरी आर स्लोली फाइंडिंग द स्पेस अराउंड देम क्लोजिंग। वी आर क्लोजिंग द स्पेस एंड वी हैव सेड दैट इंडिया इज गोइंग टू गेट जस्टिस। डू व्हाटएवर यू वांट राइट नाउ, कॉल आउट ऑल द पुलिस, 10,000, 20,000, 50,000, व्हाटएवर यू वांट, अरेस्ट ऑल द लीडर्स, arrest all the young people, arrest us all, don't worry, we are surrounding you and we are not going to back down, mark my words, we are surrounding you, we already have the information we need, we are not going to back down।
6: हम पीछे नहीं हटेंगे। आगे राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि हिंदुस्तान के युवाओं, मुझे आप पर गर्व है, अपना विरोध जारी रखिए, हम आपके साथ में खड़े हैं। राहुल, अब तक यह माना जा रहा था कि राहुल गांधी इस प्रदर्शन से अपने आप को दूर रखेंगे, जो सीजेपी ने प्रदर्शन किया था। क्या यह हम मानकर चले कि आज जो दिल्ली में हो रहा है उसके समर्थन में राहुल गांधी का यह बयान आया हुआ है? अभी 3-4 मिनट पहले उनके सोशल मीडिया पर यह बयान डाला गया है।
7: देखिए साइन, लेकिन आप अगर देखें तो उन्होंने कहीं पर भी सीजेपी का जिक्र नहीं किया। जो तीन लोग हैं, अभिजीत दीप के, सौरभ दास, उन लोगों का जिक्र नहीं किया। वो बार बार इस बात को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हम जो युवा सड़कों पर हैं उनके साथ में हैं, जेंजी जो आंदोलन कर रहा है उन तमाम मुद्दों पर उनके साथ में है, लेकिन वो हमेशा बचते हैं कॉकरोच जनता पार्टी का नाम लेने से, या कांग्रेस पार्टी आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से बचती है कि किसी प्रकार का कोई वैलिडेशन ना दिया जाए, कोई एंडोर्समेंट ना किया जाए। और अभी भी राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि जो भी युवा सड़क पर हैं हम उनके साथ में खड़े हैं, वो प्रदर्शन जो चाहते हैं करना उनको करने देना चाहिए, आप जितने लोगों को बुलाना चाहें उतने लोगों को बुला सकते हैं, लेकिन ये अब रुकने वाला नहीं है। तो अभी भी आप कह सकते हैं वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं।
6: अभी अभी राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट, बात साफ है, कहीं ना कहीं सरकार को यह कहने की कोशिश है कि हम विपक्ष के तौर पर घेराबंदी करने की कोशिश करें, लेकिन उधर दिल्ली में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है। 3,000 से ज्यादा प्रदर्शनकर्मी गिरफ्त में लिए गए हैं, डिटेन किए गए हैं। सुशांत पेरा मेरे साथ में है, दिल्ली की सड़कों पर क्या हो रहा है? पूरी दिल्ली छावनी बन गई है, जगह जगह पर पुलिस और प्रदर्शनकारी। सुशांत, आपकी रिपोर्ट हम सुबह से देख रहे थे, अभिजीत दिपके और उनके दो साथियों को जब से हिरासत में लिया गया तभी से लेकर दिल्ली की सड़कों पर अलग अलग जगह पर फ्लैश प्रोटेस्ट, छोटे छोटे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है। 3,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आज की स्थिति में अभी क्या स्थिति नजर आ रही है कैनॉट प्लेस और उसके आसपास के लोग?
2: देखिए साहिल, मैं आपको बता दूं, लगभग 8:30 बजे के आसपास से मैं लगातार यहां पर रिपोर्टिंग कर रहा हूं, लगभग 5:45 बजे यानी 9 घंटे के आसपास मैं देख रहा हूं कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो थम नहीं रहे हैं, टुकड़ों के अंदर लगातार जो है वो कनॉट प्लेस और उसके आसपास के हिस्से में आ रहे हैं। 3,000 के आसपास जो प्रदर्शनकारी है उनको कनॉट प्लेस के आसपास के हिस्से से गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया गया है। और अभी भी अगर मैं बात करूं तो कनॉट प्लेस में लगभग अगर बात की जाए तो 200-250 प्रदर्शनकारी अलग अलग टुकड़ियों के अंदर, अलग अलग हिस्सों के अंदर, अलग गलियों के अंदर, इनर सर्कल, आउटर सर्कल और जो इनर सर्कल है और मिडल सर्कल है उन सर्कल्स के अंदर घूम रहे हैं। और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, पैरामिलिट्री फोर्स, इसके अलावा दिल्ली पुलिस, इसके अलावा पिंक पुलिस, तमाम पुलिसकर्मी और दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी इस वक्त सड़कों के अंदर मौजूद हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी के साथ जो है वो पुलिसकर्मी द्वारा इन तमाम प्रदर्शनकारियों को जो है वो हिरासत में ले रहे हैं। लगभग 3,000 जो प्रदर्शनकारी हैं उनको डिटेन किया जा चुका है और मुझे लगता है कि अभी ये आंकड़ा और बढ़ेगा क्योंकि पूरी
6: जल्दी से सुशांत एक अपडेट, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि अभिजीत दिपके को हो सकता है कि अभिजीत दिपके की दादी की का निधन हुआ है तो उनको अगर जाना है तो उसके लिए वो जा सकते हैं, उसके लिए कि क्या उसके बारे में कोई कांग्रेस जनता पार्टी से कहा गया? और दूसरी बात, ये प्रोटेस्ट इस तरीके से कब तक चलेगा, कब तक इनको डिटेंशन में रखा जाएगा? 24 घंटे से ऊपर डिटेंशन में नहीं रख सकते किसी को, तो कब तक डिटेंशन में रखा जाएगा, आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, जल्दी से अपडेट उस पर।
2: देखिए मैं बता दूं कि पुलिस की तरफ से अभी तक इन तमाम जो 3,000 के आसपास कर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है वो अभी फिलहाल पुलिस की हिरासत में रहेंगे। आउटर दिल्ली के आसपास तमाम थानों के अंदर इन प्रदर्शनकारियों को भेजा गया है, उनकी पूरी वेरिफिकेशन होने के बाद ही, उनका पर्चा बनने के बाद ही उनको जो है वो रिलीज किया जाएगा। लेकिन पुलिस के लिए चुनौती ये है क्योंकि इन लोगों को छोड़ने के बाद कहीं एक बार फिर से ये जंतर मंतर की तरफ कूच ना कर ले, तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि कल वीकेंड है, संडे है, और ऐसे में अगर प्रदर्शनकारी फिर से आते हैं, क्योंकि अभी महाराष्ट्र सीजेपी के एक आ सकते हैं, महाराष्ट्र के भी सीजेपी के एक नेता की तरफ से अपील की गई कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर पहुंचे, तो क्या उस अपील के बाद एक बार फिर से प्रदर्शनकारी यहां पे जुटना शुरू होंगे ये देखना होगा। इसमें सीजेपी के
6: अजिंक्य शिंदे, उनके पास वो अब ये आंदोलन को आगे लेकर चलेंगे और उसके बाद सीजेपी की तरफ से उनका एक वीडियो स्टेटमेंट जारी कर दिया गया कि आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। चारू प्रज्ञा, आज तो दिल्ली की पूरी घेराबंदी कर ली गई, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से सुशांत मेरा यहां पर कह रहे हैं, अभी भी वो कह रहे हैं कि अलग अलग सड़कों पर प्रदर्शनकारी बाहर निकल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस कार्रवाई से प्रदर्शन रुक पाएगा? राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट आ रहा है कि हम आपके साथ में हैं, विपक्षी दल भी उनके साथ में सड़क पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं।
9: साहिल जी नमस्ते। पहले तो ये बात सबको मालूम है कि हमारे देश का संविधान हर एक नागरिक को शांतिपूर्ण विरोध करने की आजादी देता है, लेकिन वही संविधान हर एक पुलिसकर्मी को जब वो नौकरी पर जाता है सुरक्षित घर आने की भी आजादी देता है। और आज की तारीख में आई थिंक दैट इज द क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क अगेन एंड अगेन। हम बार बार प्रोटेस्टर्स की बात करते हैं, हम विपक्ष की बात करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि जिस प्रकार से ये प्रोटेस्ट हो रहा है वो ना ही पीसफुल रहा है और ना ही मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल रहा है। कि आपको मैं दो बातें जल्दी से याद दिलाना चाहती हूं। कल कोर्ट के अंदर हियरिंग चल रही थी साहिल जी, आपको मालूम है इस हियरिंग में विपक्ष के लॉयर्स आना ही भूल गए। कोर्ट ने 2 बजे समय भी दिया, ये भी कहा कि आप थोड़े टाइम में हम मैटर फिर से लगा देते हैं, आप भेज दीजिए अपने वकीलों को। उसके बाद भी विपक्ष के वकील नहीं आए, तो ये आपको दिखाता है कि सीरियसनेस क्या है विपक्ष की कोर्ट में जो चल रही है प्रक्रिया उसको लेकर, और जो ये सड़क पे तमाशा कर रहे हैं उसको लेकर। तो फोकस है सड़क के तमाशे पर, फोकस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर नहीं है। विरोध का अधिकार हिंसा की छूट नहीं है, आज भी पुलिस के ऊपर पथराव हुआ है और ये नहीं होना चाहिए। ये बात में जितनी बार दोहराऊं उतनी बार कम है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दो मेन ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर बिना परमिशन के आप प्रोटेस्ट कर रहे हो वो प्रोटेस्ट लॉफुल नहीं है, यह है पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा कि जिसके ऊपर सारी इन्होंने आपत्ति उठा रखी है फॉर्म 6 के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के शब्द में आपको पढ़ के सुनाती हूं साहिल जी, उसमें यह लिखा है इलेक्शन कमीशन रिटेन्स रेसिड्यूअल अथॉरिटी टू डिजाइन अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन फॉर SIR इफ इट डजंट मैकेनिकली ऑपरेशनल इज
6: फॉर्म नंबर 6 का डिबेट हम अब तक मतलब बार कर चुके हैं।
9: जिस प्रकार
6: इस पर तरह तरह की चर्चा हो चुकी है, आज की चर्चा इस मुद्दे को लेकर जो मुद्दा
9: जी बिल्कुल साहिल जी, मैं याद क्यों दिला रही हूँ,
6: तो मैं उस पर कुछ बोलूंगा फिर आप उस पर, मैं भी कुछ याद दिला दूंगा उस पर। फिर फॉर्म नंबर 6 पे हम बीसीओ बार चर्चा कर चुके हैं,
9: 10 सेकंड दीजिए।
6: फॉर्म नंबर 6 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया था, CJI ने यह भी कह दिया था कि फॉर्म नंबर 6 में बदलाव की इजाजत हमने नहीं दी थी, इसका भी जिक्र करना पड़ेगा। फिर इसका भी जिक्र करना पड़ेगा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने कल खुले तौर पर यह कहा था कि मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रही है कि भाई डर था कि कुछ गड़बड़ हो जाए, इसके लिए फ्लाइट के अंदर उतरते ही पुलिस भेजकर उठाना जरूरी था। ठीक है, मतलब आप समर्थन कर सकती है उसका, मैं आपका अधिकार है, वो मैं सिर्फ रख ये भूमिका समझने की कोशिश कर रहा हूं। आपको लगता है कि ये सही है, राइट?
9: जी, मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहती हूँ। पिछली बार जब ये प्रोटेस्ट हुई थी, एक दिन की बात करके 17 दिन तक प्रोटेस्ट चली थी। जब पिछली बार प्रोटेस्ट हुई थी 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल थे, 200 से ज्यादा, जितने प्रोटेस्टर्स घायल नहीं थे उससे ज्यादा पुलिसकर्मी घायल थे। और उसके बाद क्या कोर्ट का निर्णय था वो सब हमको याद है। मैं लेकिन एक बात पर आना चाहती हूँ, पीसफुल प्रोटेस्ट में और इस प्रकार के पथराव में, इस प्रकार के भड़काने में बहुत फर्क है। और राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो मुझे 2-3 बातें फिर से कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछनी है। आज तो राहुल गांधी दिल्ली में भी नहीं है, जब दिल्ली में इतना सब कुछ हो रहा है और आप लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हो, आप तो खुद चेन्नई चले गए, आप क्यों चेन्नई गए हैं हमको ये बता दीजिए। दूसरी बात ऐसी है कि अब ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये जुडिशियल स्क्रूटनी से आगे बढ़ चुकी है। देखिए, एक चीज ये है कि कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है और उसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, वहां से तो अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब ये हो गया है कि हमें अराजकता फैलानी है, हम चाहे उसको कैसे भी फैलाएं, और इसको रोकने का काम, इसको रोकने
6: एक-एक
9: की
6: करके जवाब देते हैं चारू जी।
9: दिल्ली में भी नागरिक रहते हैं,
6: अगर मैं सही समझ रहा
9: हूं, समय से हमारी लाइफ इतनी जी।
6: एक-एक करके मुद्दा लेते हैं, आपने कई सारे मुद्दे रखे, लेकिन पहला मुद्दा आपका जरा प्रणव धवन से हम क्लैरिफाई करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो CJP के प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता, और विनय सिंह जी के पास तो मैं जाऊंगा ही। लेकिन प्रणव, जो मैं समझ रहा हूं ठीक से, चारू प्रज्ञा जी ने अपने ओपनिंग रिमार्क में यह बात कही कि पुलिस को भी अधिकार है सुरक्षा के साथ घर पहुंचे।
10: बिल्कुल साहिल जोशी जी, पुलिस को अधिकार
6: है। सुनिए प्रणव जी, सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए भाई, सुन लीजिए, मेरी आवाज क्यों दबा रहे, मेरी बात तो सुन लीजिएगा। दूसरा वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि चूंकि पिछले आंदोलन में पुलिस पर लाठीचार्ज हुआ था, इसीलिए इस बार क्रैकडाउन हो रहा है, ये वो बात रखने की कोशिश कर रही है। उनका ये कहना है कि पिछली बार पुलिस पर हमला हुआ था, इसके लिए क्रैकडाउन चल रहा है, ये बात वो रखने की कोशिश कर रही है। अब इस पर पहले जवाब ले लीजिए प्रणव धवन
10: जी। सबसे पहली बात, अगर पुलिस के ऊपर क्रैकडाउन हुआ था, उसके ऊपर FIR कहां लॉज हुई है, उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ है, ये चारू प्रज्ञा जी बताएं। लास्ट टाइम जो भी इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो प्रोटेस्टर्स, चाहे वो सो कॉल्ड BJP के सपोर्टर्स और गून एक्टिविस्ट, जिनको आपका गोदी मीडिया गून एक्टिविस्ट बोलता है, वो लोग आके जिन्होंने जिस तरह का वहां पे गंद फैलाया, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ना तो प्रशासन ने लिया है और अब वो सब कुछ जुडिशियल दायरे में है, जुडिशियल प्रोटेस्ट में है। मैं बहुत स्ट्रांगली अपोज करना चाहता हूँ, चारू जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल जो ऑब्जर्वेशन हुई है उनको मिसकोट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एग्जामिनेशन नहीं किया इस इशू का। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लॉ नहीं होता है, लॉ वही होता है जो किसी एक्ट के दायरे में, रूल के दायरे में पास किया जाए। 10 दिन की परमिशन एक इफेक्टिव एनफोर्सेबल लॉ नहीं है। आप उस लॉ को जो इन्फोर्सेबल नहीं है वो उसके लिए हमें बर्डन नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट की दसियों जजमेंट्स हैं कि हमारे पास पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट है, रिस्ट्रिक्शंस बाय द स्टेट हैव टू बी रीजनेबल प्रोपोर्शनेट। आप बताइए ये कैसे रीजनेबल है, ये तो सूर्यकांत जी भी बोल रहे हैं कि ये रीजनेबल नहीं है, ये तो प्रोपोर्शनेट नहीं है। आप मुझे बताइए, हम पिछले 30 मिनट से आपके बीजेपी के नेताओं के बयान सुन रहे थे। हमारे कृषि मंत्री जी बोल रहे हैं कि गैरों पे कर्म अपनों पे सितम, यही तो यहाँ पे हो रहा है। आप पाकिस्तान और चाइना के ऊपर कर्म कर रहे हो और देश के ऊपर, देश के नागरिकों के ऊपर सितम कर रहे हो, और क्या हो रहा है आप बताइए।
6: तो प्रणव, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं डिसप्रोपोर्शनेट एक्शन इस प्रोटेस्ट के तहत किया जा रहा है, और आप ये कहना चाहते हैं कि अगर जंतर मंतर पे आपके कहने पर लोग इकट्ठा होते तो किसी भी तरीके से कोई भी हिंसा होने की कोई संभावना नहीं थी, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट होता, दिल्ली ठीक तरीके से चलती रहती और जंतर मंतर के भीतर आप लोग बैठते वहां पर।
10: बिल्कुल, आप पिछले देखिए 6 जून से लेके 20 जुलाई तक जब प्रोटेस्ट चला, एक भी सीजेपी कार्यकर्ता जिसने वायलेंस किया उसका प्रूफ दीजिए। अगर वो प्रूफ देते हैं मैं भी अपनी पोजीशन से रिजाइन करता हूं, सारी की सारी सीजेपी लीडरशिप रिजाइन करेगी, एक भी चीज प्रूफ नहीं हो पाई है। आप देखिए
6: कहने की कोशिश कर रहे हैं,
10: हमारे सारे कम्युनिकेशन में पहली चीज गांधी होती है, दूसरी चीज गांधी होती है, तीसरी चीज गांधी होती है। हमारी सारी लीडरशिप अरेस्ट होने के लिए विलिंग होके उस फ्लाइट पे चढ़ी थी।
6: और हम जरा इतिहास पे जाते हैं थोड़ा सा, चारू जी थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं, डिसप्रोपोर्शनेट एक्शन को लेकर किस तरीके से विपक्ष सड़क पर उतरता है, थोड़ा सा हम इतिहास में जाते हैं। आपको याद होगा बाबा रामदेव रामलीला मैदान पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच गए थे, दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर एक्शन लिया, उसके बाद रात भर, रात को 1 बजे से सुबह 3 बजे तक बीजेपी के तमाम बड़े नेता इंक्लूडिंग लाल कृष्ण आडवाणी जी वहां पर जाकर बैठे हुए थे और तमाम बीजेपी के सांसद राजघाट पर प्रदर्शन करते हुए वहां पर दिखाई दिए।
9: एक फर्क है साहिल जी,
6: मतलब वही कहा था कि प्रदर्शन राइट है,
9: हमें इतिहास,
6: हम वहां पर जाके प्रदर्शन कर सकते हैं। जिस तरीके से एक्शन लिया गया बाबा रामदेव पर वो गलत है, यह आप ही ने कहा था उस वक्त,
10: वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था।
9: साहिल जी इतिहास याद दिलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझको एक बात बता दीजिए, अगर आप बाबा रामदेव वाली प्रोटेस्ट पर जा रहे हैं, पहली बात तो वो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट थी, वो रामलीला मैदान था, दूसरी बात वहां पर से कौन सी खबरें आई थी कि पुलिस को मारा पीटा जा रहा है, मुझे बताइए, वहां से कौन सी खबरें आई थी कि पुलिस घायल है, कौन सी खबरें आई थी कि हमारे नेता राहुल गांधी जी जैसे लोग महिला पुलिसकर्मियों को इनअप्रोप्रिएटली छू रहे हैं, प्रियंका गांधी जैसे लोग अपनी कोनी मार रहे हैं महिला पुलिसकर्मियों की छाती में, वहां से इस तरीके की कौन सी खबरें आई थी बताइए। यहाँ पर सबसे बड़ा शब्द है कि
6: राहुल गांधी इनअप्रोप्रिएट तरीके से महिला पुलिस कर्मी को छू रहे हैं,
9: जाएगा तो एक्शन कैसे,
6: तो क्यों नहीं उन पर एक्शन लिया जा रहा
10: है?
9: राहुल गांधी पर एक्शन लिया गया है, आपको
10: इतना
9: झूठ होना चाहिए,
6: एफआईआर हो गया, एक्शन हो गया,
9: बहुत सारी एफआईआर दाखिल हुई है और वो एफआईआर में से 3 एफआईआर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों का नाम है। ठीक है, आप जाके जरा थोड़े कागज वागज चेक
6: पूजा जी जवाब दीजिए,
9: और ये सीजेपी के शायद प्रवक्ता को ये मालूम नहीं है, एफआईआर दाखिल हुई है।
6: पूजा जी जवाब
9: दीजिए, शांतिपूर्ण करिए ना प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण
10: अरेस्ट कीजिए ना, आप अरेस्ट कीजिए,
6: राहुल
10: गांधी जी को अरेस्ट करने का आप करिए,
11: आप यहां पर बैठकर,
9: आपको डिटेंशन और अरेस्ट के बीच में फर्क मालूम है बेटा, डिटेंशन और अरेस्ट के बीच में फर्क मालूम है, बताइए मुझे, पहले तो इतना ही समझा दीजिए, आपको डिटेंशन और अरेस्ट के बीच में अगर
6: पूजा त्रिपाठी जवाब दीजिएगा।
11: देखिए
6: बेसिकली ऐसा है कि उनका यह कहना है कि जो बाबा रामदेव के साथ हुआ था उसके बाद जो प्रोटेस्ट होता है वो लेजिटिमेट था, लेकिन अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें एक्शन हो सकता है, उस पर लोग सड़क पर उतर पर पुलिस घर पे ठीक से नहीं पहुंच पाएंगी, इसके लिए ये डिटेंशन जरूरी है। कुल मिलाकर पूजा त्रिपाठी
11: और
6: राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि घेरने की तैयारी और बाकी
9: सारी, मैं फिर से एक बार पूजा जी बोले, मैं बोलना चाहती हूँ, एक मिनट साहिल जी बहुत जल्दी से मैं खत्म कर रही हूँ, आपको मालूम है हमारे देश में ऐसा समय आ जाएगा कि नागरिक सोचेंगे कि पुलिस की नौकरी नहीं करनी है, जिस प्रकार से विपक्ष ने बिल्कुल कानून अपने हाथ में ले रखा है, पुलिस की नौकरी करने को तैयार नहीं होगा। जब त्योहार होता है वो लोग काम कर रहे होते हैं, जब शहर में आपत्ति आती है वो लोग काम कर रहे होते हैं। मैं एक पुलिस के परिवार से आती हूँ,
11: आपको अगर आप
9: मुझे बताओ बैरिकेड पर चढ़कर जाओगे, पुलिस के साथ हाथापाई करोगे, पुलिस घायल होगी और उसके बाद बोलोगे वाह वाह हमारा अधिकार है, कोई अधिकार बताएंगी पूजा जी।
11: आज रोड पे ये तस्वीरें आई हैं, ये वीडियो
9: है, आपका है। देखिए अच्छा ठीक है, मैं चिल्लाना नहीं चाहती,
11: समर्थित
9: झूठे मुझे गुस्सा जरूर आता है साहिल जी, मुझे बस ये बता दीजिए संविधान में कहाँ लिखा है कि सारे अधिकार एक तरफ। अगर पूजा जी मुझे वो
6: पहले जरा चारू जी जवाब दे दीजिए, चारू जी उनका जवाब देने दीजिए,
9: तरफा अधिकार
6: ठीक है, पूजा त्रिपाठी जवाब दीजिए
9: जी,
11: आप उनसे क्या,
6: पूजा जी जवाब दीजिए, चलिए
11: हुए हैं इतने कायर है और इतने डरपोक हो चुके हैं कि जो अपने ही लोगों से डर रहे हैं। अभी चारू जी बोल रही थी कि सड़क पर तमाशा नहीं चाहिए,
9: सड़क पर मत रहिए ना, मैं तो फैक्ट्स कोट कर रही हूँ, आप भी फैक्ट्स कोट कर दीजिए।
11: कर रही हूँ मैं भी फैक्ट्स कोट कर रही हूँ, मुझे फैक्ट्स कोट करने देंगी तब तो, आप दूसरों के ऊपर बोलना तो बंद करिए, आप दूसरों के ऊपर बोलना बंद करेंगे तो सामने वाला भी फैक्ट्स कोट करेगा। आपको अभी साहिल जी ने सुप्रीम कोर्ट का और प्रणब ने सुप्रीम कोर्ट का, आपको तो चुप करा दिया, तो आप दूसरों के ऊपर चढ़ रही, तो आप चुप रहिए, तो आप दूसरे भी फैक्ट्स कोट करेंगे। क्योंकि जो आज दिल्ली में हो रहा है, जिस तरीके के दिल्ली की किलेबंदी हो रही है, मेट्रो स्टेशन बंद हो रहे हैं, गाड़ियां हो रही हैं, गाड़ियां रद्द हो रही हैं, लोगों को रेड करके निकाला जा रहा है, ये सब कुछ बता रहा है कि आप डर किससे रहे हैं। सुना है सत्ता पर काबिज लोग अपने जमीर के अंदर, अपने खुद के अंदर मर चुके हैं, और उनके प्रवक्ता भी जो बैठ के आज सड़क पे आने को तमाशा कहते हैं। तमाशा तो तब भी था जब
9: अटल जी ना, रिटोरिक है साहिल जी, फैक्ट्स पूछिए ना,
11: था जब सुषमा स्वराज,
9: अगर डायलॉग बाजी करनी थी तो पहले बता देते, मैं भी दो चार डायलॉग ही मारती, काम की बात कर रही हूँ मैं।
11: आपको अगर बोलना है तो आप बोलिए, मैं चली जाती हूँ।
9: कांग्रेस के प्रवक्ता क्या सबसे पहले,
6: चलो जरा फैक्ट्स पर आ जाते हैं,
11: वो मुझे
6: यही कर रही है, एक मिनट जरा दोनों को शांत करिएगा, मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। चारू जी आप फैक्ट्स पर बात कर रही हैं तो जरा फैक्ट्स पर बात करते हैं, ठीक है, चलिए एक एक करके जाते हैं। आप, हमने भी तस्वीरें देखी कि दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों पर जिस तरीके से जंतर मंतर के बाहर पे हमला हो रहा था, वो तस्वीरें हमने देखी वहां पर, ठीक है। उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से हलफनामा दायर किया गया कोर्ट के भीतर, उन्होंने कहा कि हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है लोगों को। कैसे आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो वो जो फेस रिकॉग्निशन का जो सॉफ्टवेयर होता है उसके जरिए आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है। 2 महीने हो गए, जुलाई महीने में प्रोटेस्ट हुआ था ये, आज अक्टूबर महीने में हमने बैठे हुए हैं, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है जरा अगर डेटा होगा आपके पास तो बता दीजिएगा। जो पकड़े गए लोग हैं वो किसके साथ एसोसिएटेड है उसके बारे में जानकारी होगी तो वो जरा बता दीजिएगा। तीसरी बात, आज जो प्रोटेस्ट यहां पर होने वाला था इन एंटीसिपेशन, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही थी कि इन एंटीसिपेशन, कल का हियरिंग आपने भी सुना होगा, इन एंटीसिपेशन आप जिस तरीके की कार्यवाही दिल्ली के भीतर कर रहे हो उसको जस्टिफाई करिएगा, इन एंटीसिपेशन कार्यवाही कर रहे हैं आप, ये 3 चीजों का जवाब दीजिए, फैक्ट्स पर बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए चारू जी,
9: जी जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए कल कोर्ट में पहली बात तो ये कहा गया था कि अगर परमिशन नहीं है तो प्रोटेस्ट अनलॉफुल है, इस बात को हम भूले ना। दूसरी बात, परमिशन के लिए 10 दिन का समय पुलिस को चाहिए, ये एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल है। आप 3 दिन पहले परमिशन मांगते हैं और उसके बाद आप नाराज हो जाते हैं क्योंकि आपको आपके हिसाब से परमिशन मिली नहीं। तीसरी बात, प्रोटेस्ट की जगह डेजिग्नेटेड है, लेकिन अगर प्रोटेस्ट की जगह डेजिग्नेटेड है तो मुझको ये बताइए पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव के नॉट प्लेस में कैसे हो रहा है, के नॉट प्लेस कौन सी डेजिग्नेटेड जगह है। और मैं वापस इसी बात पर आ जाती हूं साहिल जी, और मैं इसको बार बार इसलिए दोहराना चाहती हूं क्योंकि अराजकता फैलाना, अपने हाथ में पेंट के कैन लेकर बिल्डिंग्स के ऊपर पता नहीं क्या क्या लिख देना, ये सारी चीजें आपके आरोपों को सच नहीं बना देता। अभी सीजेपी के जो प्रवक्ता है वो कुछ बोल रहे थे। अच्छा, जहां तक आरोपों की बात आती है, मैं जल्दी से एक बात और बोलना चाहती हूं। कल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन और था, एक निर्णय आया है, पंजाब में 50 वार्ड में फिर से इलेक्शन होने वाले, वाले हैं उसको कहते हैं वोट चोरी, जहां पर ऑर्डर आ चुका है, ऑर्डर हाथ में है, उसके बारे में तो आप विपक्ष के किसी भी नेता का कोई भी बयान नहीं सुनेंगे।
12: अब आप जवाब बदल रही है, मेरे सवाल क्या थे?
9: और आखिरी बात, 13 करोड़ बहुत ज्यादा आसान है। नहीं, आपके सवालों का मैं जवाब दे चुकी हूं। नहीं नहीं, मैं आपके सवालों का बिल्कुल जवाब दे चुकी हूं।
12: हम फैक्ट्स पर बात करेंगे ना, आज
9: प्रोपोर्शनल
12: पर बात कर रहे थे।
9: मुझे बताइए आज कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ है जब पुलिस के किसी भी पुलिसकर्मी ने कोई ऐसा एक्शन लिया हो जो इनअप्रोप्रिएट या गलत हो? लेकिन आपको प्रोटेस्टर्स के तो मैं गिनवा रही हूँ ना, प्रोटेस्टर्स के मैं गिनवा रही हूँ। तो अब इसी बात पर आते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप 13 करोड़ का संख्या ले लेकर भी आप झूठ बोलते हैं, आप परमिशन के बारे में भी आप झूठ बोलते हैं, आप कोर्ट के बयानों को भी अपने हिसाब से घुमा देते हैं, सेलेक्टिवली कोर्ट करते हैं, ऐसा थोड़ी चलेगा भाई।
12: तीन सवाल पूछे थे चारू जी, तीन सवाल पूछे थे मैंने स्पेसिफिक सवाल तीन पूछे थे। पूजा त्रिपाठी, आपके पास इसका जवाब है तो दे दीजिएगा।
10: नहीं नहीं, आप
9: जी
10: एक चीज बोलने दीजिए।
12: ठीक, एक मिनट
10: साहिल जी,
12: धवन जी एक मिनट, पहले पूजा जी को बोलना है, मौका ही नहीं मिला है। प्रणव प्लीज उनको बोलने दीजिए जरा, पूजा त्रिपाठी, और उसके बाद विनय जी के पास भी चलना
11: है। पूछिए लोगों पर कार्यवाही हुई, क्योंकि हम तो पैलेट गन से इंजर्ड बच्चों को सामने लेकर आए थे, उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ सामने लेकर आए थे, हम उन बच्चों को भी सामने लेकर आए थे जिन बच्चों पर इन्होंने AK-47 तानी थी। तो ये बताएं कितने पर, क्योंकि कुछ लोग तो रशिया में बैठे हुए थे जिन पर जिनको पुलिस ने आइडेंटिफाई किया था, तो ये तो कितने पे कार्यवाही की, क्योंकि FIR तो बहुत खेलते हैं। और 10 दिन का ये अभी बताया गया कि 10 दिन का कोई संवैधानिक नियम नहीं है, तो 10 दिन के ये प्रोटोकॉल की बात करते हैं। तो ये भी बताएं कि जब जिस तरीके से ये दिल्ली में आज ये कर रहे हैं और जिस तरीके से ये प्रोटेस्टर्स पे मार रहे हैं, अभी एक वीडियो घूम रहा है, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, मैं दिखा दूंगी, उस शोर में मेरी आवाज चली गई, कि सत्ता समर्थित गुंडे पुलिस के सामने एक महिला प्रोटेस्टर की पिटाई कर रहे थे, उस पे चारू जी क्या कहेंगी? क्योंकि आज पुलिस के सामने पुलिस खड़े होकर
12: एक सवाल,
11: हाँ जी,
12: इस बीच में एक सवाल, मैं आता हूं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पूजा जी एक बीच में एक सवाल। देखिए, पुलिसिया एक्शन कांग्रेस पार्टी के सरकार के समय भी इसी तरीके से हुए थे, ठीक है, इसलिए मैंने उदाहरण दिया, बाबा रामदेव जब रामलीला मैदान पर आकर बैठे थे, जिस तरीके से पुलिस ने घुसकर उनको वहां से उठाने की कोशिश की थी, वो भी पुलिसिया एक्शन थी। क्यों उठाने की कोशिश की गई, क्या कहा पुलिस ने, कि हमें लगता है कि असामाजिक तत्व वहां पर आएंगे और दिल्ली का माहौल बिगाड़ देंगे, यही कारण से एक्शन हुआ था ना। तो आज सरकार यही कहने की कोशिश कर रही है कि भाई हमें लगता है कि वहां पर जंतर मंतर पर हम इजाजत देंगे, आंदोलन होगा तो इसी तरीके की बात होगी, सेम लॉजिक इस्तेमाल कर रही है सर।
11: एग्जांपल दिया साहिल जी, क्योंकि क्या यूपीए की सरकार दिल्ली से आने वाली 300 ट्रेनों को रद्द कर रही थी? क्या यूपीए की सरकार होटल और हॉस्टल में घुसकर रेड कर रही थी? क्या यूपीए की सरकार ने तकरीबन 60 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया था? क्या यूपीए की सरकार ने अराजकता फैलेगी कि इंटरनेट बंद कर दिया था? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था ना, वो लोग वहां जुटे थे, वहां प्रोटेस्ट हुआ था, वो डिटेन हुए थे। पर यहाँ तो सरकार पहले से घबराई हुई है, पहले से डरी हुई है कि देखिए अराजकता की बात वही करते हैं जो तानाशाह होते हैं, इनसे ना लोकतंत्र संभलता है ना तानाशाही संभलती है।
12: चारू प्रज्ञा जवाब दीजिएगा, क्या सरकार को लग रहा था जिस तरीके का इम्पैक्ट CJP के पहले प्रोटेस्ट में हुआ वो इम्पैक्ट होगा, इसके लिए सरकार ने कार्यवाही की, क्या जो विपक्ष का आरोप लग रहा है यहाँ पर? चारू जी प्लीज।
9: जी जी, ऐसा है ना, मुझको ना कभी कभी लोकतंत्र शब्द कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से सुनकर समझ नहीं आता मैं हंसूं या मैं नाराज हूं या मैं परेशान हूं, क्योंकि अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं, मैं याद दिलाना चाहती हूं 42 फॉर्मल जजेस हाईकोर्ट
10: और सुप्रीम कोर्ट
9: ने उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, ओपन लेटर लिखा, और उस लेटर में एक बात उन्होंने, अरे भाई रुक जा ना, तुम्हारे समय में मैं नहीं बोल रही, तो मेरे समय में तुम मत बोलो, रुक जाओ। उस चिट्ठी में एक बहुत काम की बात लिखी है साहिर जी, और मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगी, उसमें ये लिखा है और पॉलिटिकल पार्टी से अपील करी गई है कि आप अगर लोकतंत्र की बात करते हैं तो चुनाव लड़ो ना, कंटेस्टेड इलेक्शन, इलेक्शंस को डीलेजिटिमाइज मत करो। तो आप केरल का चुनाव जीत जाते हो तो तालियां बजाते हैं हम, केरल के सीईओ को आप नौकरी दे देते हो अपने मुख्यमंत्री के दफ्तर में, वो भी सब आपको ठीक लगता है, लेकिन जहां आप चुनाव हार जाते हो वहां पर आप रोते रोते घूमते चले जाते हो। तो आपको लगता है देश की जनता को ये बात समझ में नहीं आती? मीडिया से भी अपील करी है जजेस ने, उन्होंने ये कहा है कि हेडलाइन एविडेंस नहीं होता, अगर कोई हेडलाइन बना रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उनके झूठे बयानों में कहीं पर सच आ जाता है। वोट चोरी शब्द हमको को विपक्ष ने दिया है, लेकिन जब वोट चोरी पंजाब में प्रूव हो जाती है तो ये आम आदमी पार्टी की बी टीम के जो प्रवक्ता आपके साथ बैठे हैं वो उसके बारे में एक बयान नहीं दे पाए। ये यहाँ पर बैठ रहे इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहती हूँ दोनों से, एक एक सवाल है। ये सीजेपी के प्रोटेस्टर्स और कांग्रेस में ये मुझे ये बता दे कि संविधान में कहां लिखा है कि एक तरफा आपको अधिकार है, अधिकार के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। आप अपनी जिम्मेदारी
12: पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद पूजा जवाब आज भी आरोप लगाया गया था कि आप बी टीम है।
9: आप पंजाब में बोली, आप कब जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने? आप पटियाला जा रहे हैं?
10: हम पंजाब पे भी बोलेंगे। आप एक मिनट चारू जी हमें बोलने का मौका दीजिए। साहिल जी आपके शो पे, आपके शो पे सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट हो रही है, आपके शो पे एक सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट हो रही है और आप उसको चुपचाप सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा कि 10 डेज की अगर आपने
9: परमिशन नहीं, मुझे ये मत बताओ।
10: मैं भी वकील हूँ, मैं नेशनल लॉ स्कूल एंड ये लॉ स्कूल का ग्रेजुएट हूँ, 4 साल की प्रैक्टिस है। आप मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकती है। बेटा बेटा
12: वो सब होगा, आप जवाब दीजिए। चलिए मुद्दे पर जवाब दीजिए। चलिए कौन क्या है वो बात,
9: बार ये बोल रहे हैं आप। पहले मुझे ये बता, आप मुझे ये
10: कॉन्डिसेंशन अपोज करते हैं।
9: ठीक है भाई साहब, आपका नाम नहीं पता मुझे भाई साहब।
10: प्रणव धवन नाम है।
9: फाइन भाई साहब, बोलना कॉन्डिसेंशन है क्या? बता दो ना क्या बोलना अलाउड है। वो पंजाब में कब प्रोटेस्ट करेंगे? जब एक जगह के लिए चिल्लाते बैठे पंजाब के बारे में नारे नहीं भाई,
10: बताइए
9: थी अब नहीं होगी। सीजेपी स्पोक्स पर्सन मुझे ये बताए पंजाब में कब जा रहे हैं, पंजाब कब जा रहे हैं?
10: पंजाब में
9: 50 वार्डों में फिर से चुनाव घोषित हुए, आप जानते हैं ना।
12: चलिए सब लोग सब जगह जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 124 पूर्व आईएएस और आईएफएस अफसरों ने खुला पत्र अब लिखा है और वो कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया सही है। कल कुछ जजेस का पत्र आया था, 42 पूर्व जजेस का, आज 124 आईएएस आईएफएस अधिकारियों का खुला पत्र आया हुआ है और उनका ये कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया सही है और वो धांधली के आरोप गलत बता रहे हैं। और यहां पर और एक खबर चल रही है कि मुंबई में अगस्त क्रांति मैदान से कुछ 400 कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं, वहां पर भी प्रदर्शन चल रहा था। तो 104 और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इस वक्त और एक बड़ी खबर आ रही है कि सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी अब बयान दिया है। सोनम वांगचुक जंतर मंतर के पहले प्रोटेस्ट के वक्त वहां पर मौजूद थे, अनशन पर बैठे हुए थे। अब सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। सोनम वांगचुक ने यह भी कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें एक बार फिर प्रोटेस्ट में शामिल होना पड़ेगा। तो दिल्ली के भीतर दंगल अभी भी जारी है, हमारे संवाददाता तमाम जगह पर मौजूद है। दिल्ली के भीतर अभी तक 3000 से ज्यादा डिटेन लोग किए जा चुके हैं। मुंबई में भी इसी तरीके से प्रोटेस्ट करने की कोशिश की गई, 400 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब यह प्रोटेस्ट कहां तक जाएगा? क्या रविवार को भी शाम को जब डिटेन नीड्स को छोड़ा जाएगा उसके बाद क्या रविवार को भी सीजेपी एक बार फिर प्रोटेस्ट की कोशिश करेगी? सोमवार को विपक्ष का प्रोटेस्ट किस तरीके से होगा और सरकार का जवाब और भूमिका क्या होगी उस पर भी हम नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल एक ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: सर गैसोफास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसोफास्ट 27%, इनो 9.2%।
1: गड़बड़ है।
2: आहा, गैसोफास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसोफास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
3: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो तीन थमका लगाने बस।
4: मेरे पास एक आइडिया है।
3: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
5: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
6: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
7: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
8: कौन सी बनानी है?
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
10: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
11: जेके मैक्स वाइप इजी, दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।
12: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ? पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
13: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर, और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: My dad was actually very rich and he became so poor that factory neelam ho gayi, ghar neelam ho gaye. किराए देने के पैसे नहीं, घर के बाहर नहीं निकल सकते थे। इतना अनाड़ी था। पहले दो साल की मेरी मिस्टेक है, सुन जाओगे ना रजत सर, मुझे यहाँ पॉडकास्ट पे बिठाओगे नहीं। उड़ने के लिए आपको ग्लास सीलिंग तोड़नी पड़ती है। बहुत पॉपुलर मिस्टेक है। जो अच्छा चलेगा, आपका दिमाग ये कहता है कि वो अच्छा चलता जाएगा, जो बुरा चल रहा है वो बुरा चलता जाएगा। दिस इज कॉल्ड रीसेंसी बायस।
3: एक ऐसी चीज जो पैसा खरीद नहीं सकती,
2: वक्त आपके पेरेंट्स के साथ। So this is what money will not be able to buy. You might become a billionaire, but you will regret this eternally till your last breath.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: आ गया सोमवार और आ गए
3: चकमक चाचा।
2: एक कचौड़ी दो समोसा चकमक तेरा क्या भरोसा।
4: चकमक चाचा से सीधे चकमक है।
2: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, गूंज रहा ना।
4: लेकिन भैया नारे अरे फालतू में सब बेकार, एकदम बेकार। अरे होते थे हमारे टाइम।
2: अच्छा
4: सुना है, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
2: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
4: अरे जमीन की चकबंदी में, जमीन की चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में।
2: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
4: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
2: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा लेके जाएंगे।
4: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
2: अरे लाल फूल नीला फूल, जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
4: अरे बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी।
2: चाय गरम दूध गरम चकमक चाचा भी शर्म
4: है।
2: हाँ
4: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
2: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
5: हम जैसे इधर आओ।
6: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
2: आई चाचा खेल रहा।

0: सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
1: ये उस विमान के अंदर की तस्वीर है जहां से कॉकरोच जनता पार्टी के पदाधिकारियों को हिरासत में लिया गया।
2: जाओ कर लो अरेस्ट, अरेस्ट होने के लिए आए हम, अरेस्ट होने के लिए आए, आ जाओ कर लो अरेस्ट, अरेस्ट होने के लिए आए सर, डरेंगे नहीं आपसे।
3: अभिजीत अभिजीत अभिजीत
2: कर लो अरेस्ट,
3: भारत माता की।
1: ये उस वक्त की तस्वीर भी है जब अभिजीत दिपके को दिल्ली पुलिस हिरासत में लेने प्लेन के अंदर पहुंचती है।
2: जाओ कर लो अरेस्ट, अरेस्ट होने के लिए आए हम, अरेस्ट होने के लिए आए, आ जाओ कर लो अरेस्ट, अरेस्ट होने के लिए आए सर, डरेंगे नहीं आपसे।
3: अभिजीत अभिजीत अभिजीत
2: कर लो अरेस्ट,
3: भारत माता की।
1: कॉकरोच जनता पार्टी के पदाधिकारी ये मानकर चल रहे थे कि मुंबई से दिल्ली पहुंचते ही पुलिस उन्हें गिरफ्त में ले लेगी। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो लगातार जारी हो रहे थे जिनमें हिरासत में लेने की बात कही जा रही थी। लिहाजा मुंबई से प्लेन जैसे ही लैंड करता है दिल्ली पुलिस की टीम अंदर दाखिल होती है और सीजेपी के तीनों पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को हिरासत में लेने के साथ ही ये तय हो गया कि आज का प्रदर्शन अब और आगे नहीं बढ़ने वाला। खबर है कि पुलिस ने अभिजीत दिपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को अलग अलग जगहों पर हिरासत में रखा है। बाकी करीब 450 लोगों को छत्रसाल स्टेडियम में बनाए गए डिटेंशन सेंटर में रखा गया है।
4: छत्रसाल स्टेडियम में बस भर करके जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे अलग अलग जगहों में, वहां से उनको यही सीधे छत्रसाल स्टेडियम लाया गया। इन्होंने अभी बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये लोग मिंटो ब्रिज पर प्रदर्शन कर रहे थे, जहां से डिटेन करके इनको सीधे छत्रसाल स्टेडियम लाया गया। छत्रसाल स्टेडियम में पहले से ही पुलिस मौजूद है और इसको डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। इसके अंदर तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो मौजूद है।
1: दिल्ली में आज के प्रदर्शन में आप और लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए, लेकिन कुल मिलाकर सुरक्षा बल आज के प्रदर्शन पर काबू पाने में कामयाब रहे। अमित भारद्वाज, अंशुल सिंह और अरविंद ओझा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
5: राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलने के पश्चात राहुल गांधी जी का बयान एक नालायक नेता के बयान के समान है। मैं बहुत सोच समझ के ये शब्द, मुझे भी कुंठा हो रही है बोलते, तकलीफ हो रही है। आई एम सिटिंग ऑन अ वेरी हाई पेडेस्टल, ही इज द एलओपी ऑफ द कंट्री, मगर जब मैं कहता हूं एक नालायक नेता, इसलिए कहता हूं कि चलिए आपने प्रधानमंत्री के लिए जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया, झूठ बोला, वो पूरा देश देख रहा है। आपने जिस प्रकार से भारत के संवैधानिक पदों के लिए, संवैधानिक संस्थाओं के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, पूरा भारत सुन रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति को सड़क की लड़ाई में घसीटने का प्रयास किया गया, मगर एक नालायक नेता ने राष्ट्रपति महोदया को सड़क की लड़ाई में घसीटने की कोशिश की है। अब देखिए, बेसिक प्रोटोकॉल भी राहुल गांधी को समझ में नहीं आता है कि आप कोई मेमोरेंडम लेके जाते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट्स द मेमोरेंडम। ये बेसिक प्रोटोकॉल है भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का, इसीलिए तो भारत का लोकतंत्र विराट है। मगर आपने कहा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसी सांस में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कुछ एविडेंस है तो वो भी दीजिए। क्यों एविडेंस क्यों नहीं लेके गए थे? एविडेंस होगा तभी तो लेके जाएंगे। जब प्रेसिडेंट मैडम कहती है कि एविडेंस है तो दिखा दीजिए, बाद में एविडेंस देंगे। अगर बाद में एविडेंस देंगे तो आप गए क्यों थे? तो आप प्रेसिडेंट के पास गए क्यों थे बिना एविडेंस के? मतलब इतने दिनों से, मैं तो कहूंगा लगभग एक साल हो गया वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी करते हुए, उसका एविडेंस आपके जेब में रहना चाहिए था। क्यों नहीं था आपके जेब में? क्यों गए थे राष्ट्रपति भवन बिना एविडेंस लेके? और बाहर आके नालायक नेता कहता है कि राष्ट्रपति महोदया मान गई कि हम जो कह रहे हैं। आप सोचिए, यह व्यक्ति लायक है क्या देश के प्रधानमंत्री या एक उच्च पद में बैठने के? ही हिमसेल्फ प्रूव दैट ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल इनफ टू ऑक्यूपाई ए हाई पोजिशन इन इंडिया।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

दिल्ली में सीजेपी और समर्थकों के प्रदर्शन पर पुलिस की जबरदस्त सख्ती। एयरपोर्ट से हिरासत में दीपके समेत टीम सीजेपी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल पर भी शिकंजा। सीजेपी के प्रदर्शन पर बीजेपी का ताबड़तोड़ हमला, कहा सड़कों पर अराजकता की साजिश, राहुल का बयान, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जारी रहेगी जंग।

0: चुनाव आयोग और एसआईआर के समर्थन में उतरे 124 पूर्व आईएएस और आईएफएस वोट चोरी के आरोपों को बताया निराधार। इससे पहले 42 पूर्व जजेस ने भी पक्ष में लिखा था खुला पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अखिलेश की चुनौती स्वीकार, बोले अयोध्या हमारे लिए आस्था का केंद्र, फिर भी अखिलेश लड़ना चाहते हैं यहां से चुनाव तो मैं भी नामांकन के लिए तैयार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: देश में देश का कानून चलेगा, देश में अराजकता नहीं चलेगी।
3: इसका मतलब साफ है कि चोर की दाढ़ी में तिनका।
4: वो आपका एनार्किस्ट प्रतिस्पर्धा चल रहा है कि कौन अधिक इस देश में अस्थिरता पैदा कर सकता है, ये आपके मंसूबे पूरे नहीं हैं।

नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओमकश्यप। दिल्ली पुलिस ने आज अंतर मंतर 2.0 में काफी सख्ती दिखाई, जहां एक ओर बीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके समेत सीजेपी के आशुतोष रांका और सौरभ दास को एयरपोर्ट से ही हिरासत में लिया गया, उधर ममता बैनर्जी और अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी और टीएमसी के नेताओं को भी पुलिस ने प्रदर्शन करने से पहले हिरासत में ले लिया। इस बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं कि आज शाम 6 बजे 10 अक्टूबर की वो तारीख जब सीजेपी ने बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, तो शाम होते होते इतना तो कहा ही जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और जो जमावड़ा जंतर मंतर वाले पहले प्रदर्शन में हुआ था वैसा एक साथ नहीं हो पाया। दिल्ली पुलिस की सख्ती आज ऐसी थी कि कहीं भी कामयाब होते प्रदर्शनकारी नहीं दिखे इकट्ठा होने में। 3,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर डिटेंशन सेंटर भेजा गया। पुलिस के एक्शन के बीच राजनीति का भी जोरदार वार पलटवार हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को भी सड़क की लड़ाई में लाने की कोशिश की है। बीजेपी का आरोप है कि ये अराजकता है। उधर राहुल गांधी के शब्द थे, ज्ञानेश कुमार जाएंगे फिर शुरू होगी लोकतंत्र की मरम्मत। कुल मिलाकर दोनों

0: जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की तैयारी थी। हाई वोल्टेज एक्शन, पुलिस का सख्त रिएक्शन, आज इसी पर हम बहस करेंगे। हल्ला बोल में कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आज दिन भर क्या हुआ है पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में प्रदर्शन के नाम पर ऐसा हाई वोल्टेज एक्शन और पुलिस का रिएक्शन हाल फिलहाल में देखने को नहीं मिला था। ममता बैनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अभिजीत दीपके की जंतर मंतर पार्ट टू की कोशिश पुलिस ने कामयाब नहीं होने दी। ममता बैनर्जी और अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली की सड़कों से हिरासत में लिए गए, लेकिन सीजेपी के अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को तो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। पुलिस की सख्ती का अंदाजा एक दिन पहले से जग जाहिर हो चुका था। इस बीच जब सीजेपी के लोगों को पुलिस हवाई जहाज से डिटेन करके ले जा रही थी, उस समय का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी ने लिखा है, केजरीवाल के गुंडे बोल रहे थे पूरा देश साथ में है, देखिए एक भी जनता सपोर्ट में नहीं है, बल्कि जनता ने उल्टा सुना दिया, शेम ऑन यू।
1: भारत माता की जय।
0: यूट्यूबर ध्रुव राठी को सुबह ही गुरुग्राम से दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। प्रदर्शन के नाम पर जंतर मंतर जा रहे नेताओं पर तो पुलिस ने सख्ती दिखाई ही। सीजेपी के जो समर्थक सड़कों पर उतरे थे उन पर भी पुलिस की सख्ती जोरदार थी। कुछ जगहों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा या हिरासत में लिया। दिल्ली में अलग अलग जगहों से हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी छत्रसाल स्टेडियम समेत बनाए गए डिटेंशन सेंटर्स ले जाए गए।
2: प्रदर्शनकारी हैं वो दरअसल कनॉट प्लेस के अंदर मिंटो के पास से ही अंदर आ रहे थे, और ऐसे में पुलिस की तरफ से अभी इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर नहीं किस तरीके से डिटेन किया गया।
3: कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में है, यहाँ पे प्रदर्शनकारी 150 से 200 के तादाद में दिख रहे थे, और अब इस सेक्टर में कंट्रोल करने के लिए आपको दिखाई देगा कि दिल्ली पुलिस के जो जवान है, कमांडोज हैं और जो पैरा फोर्सेस के आरएएफ के जवान हैं वो मूवमेंट कर रहे थे। कि प्रदर्शनकारियों का टेम्पल रन शुरू हो गया है, प्रदर्शनकारियों का टेम्पल रन शुरू हो गया है, वो एक तरह से इस सेक्टर से दौड़ के भाग रहे हैं।
4: अगर सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो वहाँ वो बना हुआ है ये गुरुद्वारा बंगला साहिब, क्योंकि इसके अंदर कई सारे जो प्रदर्शनकारी हैं वो जाकर के रुके हुए हैं और हर कुछ देर में बाहर आते हैं, नारे लगाते हैं, और जैसे ही पुलिस उन्हें पकड़ने जाती है वापस अंदर भाग जाते हैं।
5: तस्वीरें आप जनपद की मेरे साथ देख रहे हैं, वही मैं फिर आपको तस्वीर दिखाऊंगा दूसरी तरफ, आप फिर देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे जो है पुलिस एक्शन शुरू हो चुका है, बसेज लाई गई हैं, तो सुबह से लेकर अब दोपहर हो चुकी है और दोपहर को भी देखा जा रहा है जो दिल्ली पुलिस का एक्शन है वो यहाँ पर जारी है।
0: उधर इन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की सख्ती के बीच ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर सियासत और गर्मा गई। बीजेपी ने राहुल गांधी पर राष्ट्रपति को राजनीति में घसीटने का आरोप लगाया है।
6: कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति को सड़क की लड़ाई में घसीटने का प्रयास किया गया, मगर एक नालायक नेता ने राष्ट्रपति महोदया को सड़क की लड़ाई में घसीटने की कोशिश की।
0: इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने दावा किया था कि राष्ट्रपति ने वोट चोरी का खंडन नहीं किया है। इस बीच राहुल गांधी ने एक और एक्सपोस्ट में कहा है कि ज्ञानेश कुमार जाएंगे, ये सरकार जाएगी, फिर शुरू होगी लोकतंत्र की मरम्मत।
7: इंडिया इज गोइंग टू गेट जस्टिस, डू व्हाटएवर यू वांट राइट नाउ, कॉल आउट ऑल द पुलिस, 10,000, 20,000, 50,000, व्हाटएवर यू वांट, अरेस्ट ऑल द लीडर्स, अरेस्ट ऑल द यंग पीपल, अरेस्ट अस ऑल, डोंट वरी, वी आर सराउंडिंग यू एंड वी आर नॉट गोइंग टू बैक डाउन।
0: जबकि दिल्ली पुलिस की सख्ती पर प्रिय

0: का गांधी वाड्रा ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं बचा। दिल्ली में आज की पुलिस की सख्ती पर अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया है।
1: लेकिन लगता तो ये है कि कोई भी आंदोलन अगर चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है तो भारतीय जनता पार्टी आगे आ रही है। इसका मतलब साफ है कि चोर की दाढ़ी में तिनका।
0: सरकार और पुलिस को विपक्ष कटघरे में खड़ा कर रहा है, लेकिन पलटवार में बीजेपी भी पीछे नहीं।
2: आज देश में बेहद ही खतरनाक और गंभीर स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत की जनता पूरी तरह से आपके इन उद्देश्यों को देख रही है और आज जो आपका एनार्किस्ट प्रतिस्पर्धा चल रहा है कि कौन अधिक इस देश में अस्थिरता पैदा कर सकता है, ये आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे।
3: यह अराजकता निर्माण करने की, अराजकता फैलाने की कोशिश है, साजिश है प्रतिपक्ष की। और मैं तो इनके रवैये से हैरान।
4: पिछली बार जो हुआ था आपने देखा था ना, भारत की राजधानी है ना, तो क्या दिल्ली की जनता को क्योस में रखा जाए, ये ठीक नहीं है।
0: बीजेपी की प्रतिक्रियाएं और दिल्ली पुलिस का एक्शन बता रहा है कि ज्ञानेश कुमार के नाम पर हो रहे विपक्ष के हंगामे में अब पीछे हटने का सवाल नहीं। दिल्ली के अलावा चंडीगढ़, अनंतनाग, लखनऊ, अहमदाबाद, चेन्नई जैसे शहरों में भी कहीं ज्ञानेश कुमार के विरोधी सड़कों पर उतरे तो कहीं बीजेपी ने प्रदर्शन किया। आज तक ब्यूरो। तो शहर शहर प्रदर्शन की लहर है। दिल्ली में क्या हुआ आपने देखा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है। इससे पहले की स्ट्रैटेजी में आपने देखा था कि कई जगहों पर एक्शन लिया गया था, जहां पर लाठी चलाने की भी तस्वीरें पुलिस की आई थी, लेकिन इस बार स्ट्रैटेजी अलग है। तीन तीन चार चार लोग एक साथ जा रहे हैं, कोई भी प्रदर्शनकारी जो उनको दिख रहा है उसको उठाकर वहां से हटाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। सही अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं और लगातार गश्त करती हुई दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस आपको दिल्ली में दिखाई देंगी। तीन चार बड़ी खबरें इस वक्त आ रही है शाम के 6 बजे, लेकिन उससे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं। सिद्धार्थ यादव जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल यादव प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, संजीव झा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, विक्रम सिंह साहब पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हैं नेता हैं लेफ्ट के, और सूर्या मैथिल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, सोनम वांगचुक की खबर आ रही है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सीजेपी के प्रदर्शन का समर्थन कर दिया है, कहा है कि भारत अघोषित इमरजेंसी की स्थिति में है। वांगचुक ने कहा है कि उम्मीद है गिरफ्तार किए गए लोगों को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा, अगर कल तक उन्हें रिहा नहीं किया गया तो मुझे अनशन या पदयात्रा करने पर विचार करना पड़ेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक को लेकर सोशल एक्टिविस्ट हैं और पिछली बार भी अगर आपको याद हो तो जंतर मंतर पर इनके अनशन के बाद एक सैलाब उस प्रदर्शन के समर्थन में सामने आया था। क्या कहा पहले सुनते हैं, क्या कहा क्या है उन्होंने।
5: कुछ देर पहले वापस आने पर पता चला कि आज दिल्ली में बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, छात्र नेताओं की, युवा नेताओं की, वकीलों के, पत्रकारों की, यहां तक कि सांसदों की भी। कल जब मैंने आप लोगों को एक संदेश दिया था शांति और एकता बनाए रखने के आज के प्रदर्शनों में, तो मेरा मानना था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति तो दी ही जाएगी, मगर अब लग रहा है कि जैसे कोई अघोषित आपातकाल या इमरजेंसी लगी है देश भर में। मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि ये सब गिरफ्तारियां खत्म कर दी जाएं आज शाम तक और मामलों को सुलझाया जाए, मगर अगर अगले 24 घंटों में भी गिरफ्तारियां नहीं हटाई गई तो मैं भी एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, वो चाहे फिर एक धरना हो या अनशन हो या पद यात्रा हो, लेह में हो या दिल्ली में हो। मगर मेरी उम्मीद है कि सरकार उससे पहले ही इन मसलों को बातचीत से सुलझाएगी और हमें ऐसा कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: और इस बीच 124 पूर्व आईएएस और आईएफएस अधिकारियों ने चुनाव आयोग और एसआईआर का पुरजोर बचाव कर दिया है। वोट में हेराफेरी के बेबुनियाद आरोपों पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। 124 पूर्व आईएएस आईएफएस अधिकारियों ने भारत के नागरिकों के लिए एक खुला पत्र जारी किया है, कहा है कि बिना किसी ठोस सबूत के वोट में हेराफेरी के आरोपों पर जो सवाल उठाए गए हैं वो गलत है। तो चिट्ठी उनकी तरफ से आई है, और कहा है कि इस तरह के आरोप लगाना गलत है, बिना सबूत वोट चोरी के आरोप। इसको ठीक कीजिए, स्पेलिंग वोट चोरी के आरोप में। ये आपको 124 पूर्व आईएएस और आईएफएस अधिकारियों का खत दिखा रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। चलिए सिद्धार्थ यादव जी के पास सबसे पहले चलते हैं, जैसे और भी ताजा तस्वीरें आती हैं, अगर हमारे रिपोर्टर कहीं से हमारे साथ जुड़ते हैं तो सीधे उनका भी रुख करेंगे ताकि हमारे दर्शक समझें कि इस वक्त दिल्ली में क्या चल रहा है। लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, यहीं से शुरुआत करते हैं, अघोषित आपातकाल इसे बता रहे हैं सोनम वांगचुक्जे, आपकी प्रतिक्रिया इस पर। एक वक्त था जब पिछले आंदोलन में उनकी तस्वीर को डीपी बनाया था सीजेपी के सभी लोगों ने और देश में भी कई लोगों ने, क्योंकि वो अनशन पर बैठ गए थे, हालांकि बाद में सबने हटा दिया जब उनका काम हुआ। लेकिन आज वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सिद्धार्थ जी, वो सीधा कह रहे हैं कि ये अघोषित आपातकाल है, मैं खुद अनशन पर या पदयात्रा पर निकलूंगा।
6: अंजना जी नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सब लोगों ने उनकी डीपी लगाई थी, बाद में उस डीपी का क्या किया था वो भी सब जानते हैं। जब उन्होंने अपना अनशन पूरा किया, कैसे उनको जैसे दूध में से मक्खी को निकाल करके बाहर फेंकते हैं, सब विपक्ष के लोगों ने, सीजेपी के लोगों ने क्या किया था सब जानते हैं। पर आज वो विषय नहीं है। मैं मानता हूं कि आज की स्थिति को अघोषित आपातकाल बुलाना या आपातकाल से तुलना करना बेईमानी है, हमारे इतिहास के साथ बेईमानी है, संविधान के साथ बेईमानी है। 352 आर्टिकल को इम्पोज करके, प्रेस पर सेंसरशिप लगा करके, देश में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करके, जो लंबे समय तक देश के लोगों को आपातकाल के काल में जीना पड़ा था, शायद जाकर के इतिहास ठीक से पढ़ना चाहिए तभी वो पता चलेगा। 1,00,000 से ऊपर लोग मीसा में बंद हुए थे, साल साल भर बंद रहे थे, उसकी तुलना आज से करी जाएगी? कोर्ट सस्पेंड कर दिए गए थे, कल तो ये कोर्ट में खड़े होकर के कह रहे थे शौचालयों की व्यवस्था होनी चाहिए जंतर मंतर के आसपास ताकि हम लोग अच्छे से प्रोटेस्ट कर पाए। आज जो लोग शौचालय की व्यवस्था के लिए कोर्ट में खड़े हो पा रहे हैं वो आपातकाल की बात कर रहे हैं। तब तो कोर्ट के दरवाजे बंद थे, ताले बंद थे, प्रेस की सेंसरशिप थी। आप डिबेट कर रही हैं अंजना जी, और आपके शो पर भी सब आएंगे, सब अपना पूरा अपने मन के विचार को रख के जाएंगे। पर रात को बिजलियां काट दी गई थी ताकि अखबार ना छप सके, रात को सभी प्रेस सेंटर्स पर ताले लगा दिए गए थे ताकि मीडिया के पास कोई फ्रीडम ना रहे। सेंसरशिप ऐसी थी कि किसी को कुछ भी चलाना होगा तो पहले उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा तब चल पाएगा। क्या ऐसा है? आज जिनको जिनकी जितनी सीटें नहीं है उससे ज्यादा घंटों की फुटेज नेशनल टेलीविजन पर मिल रही है, जो लोग जितने लोग इकट्ठे नहीं कर सकते राजधानी के अंदर उससे ज्यादा लोग, उससे ज्यादा वो अपने आप को माहौल बनाकर के देश में नेता बता रहे हैं, ये कुछ नहीं है। देश अराजकता से नहीं चलता अंजना जी, हमारा देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है, और इस देश में कानून है। अगर
0: अब आंदोलन करना मना है सिद्धार्थ जी, भारत में अब आंदोलन करना, आवाज नहीं जा रही क्या उनको सिद्धार्थ जी, भारत में आंदोलन करना अब मना है
6: जी? किसी ने नहीं कहा क्या? हमने आंदोलन नहीं देखे? अभी बेंगलोर में आंदोलन हुआ, बेंगलोर के आंदोलन में कोई पहुंचा नहीं, उसमें किसी की कोई गलती नहीं। मुंबई में कोशिश करी गई, कोई गया नहीं, उसमें किसी की कोई गलती नहीं। दिल्ली में भी हमने देखा था कुछ समय पूर्व। पर अगर कहीं 163 बीएनएस लगाई गई है और कहीं कहा गया है कि यहां पर इकट्ठा नहीं हुआ जाएगा, और उसका भी टेक्निकल है, ये हमारे कहने किसी के कहने से नहीं है अंजना जी, जंतर मंतर की कैपेसिटी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर रखी है और बताया हुआ है उससे बड़े स्थान पर जाना है अगर आपको एंटिसिपेशन है कि बड़ी संख्या होगी, और उससे बड़े स्थान दिल्ली में है। पर 3 किलोमीटर के रेडियस में आप अब चाहेंगे कि उत्पात मचा करके 140 करोड़ के देश को हॉस्टेज बनाने का काम कर लेंगे तो ये देश हॉस्टेज बनने वाला नहीं है। देश बहुत बड़ा है, जंतर मंतर का जो रेडियस है 3 किलोमीटर का है, और कुछ लोग मीडिया कैमरास के सामने उस 3 किलोमीटर के रेडियस में तांडव रूपी ये जो विपक्ष के लोग कर रहे हैं, ये प्रोपागेंडा ड्रामा से उभरकर क्या है? जो लोग आज देश के राष्ट्रपति को गलत कोट कर सकते हैं, जो लोग बाहर आकर के हर प्रकार का बेबुनियाद झूठ बोल सकते हैं, जो लोग विदेशी धन्ना सेठों के पपेट बन सकते हैं, वो केवल अपनी झूठी राजनीतिक को बचाने के लिए काम कर रहे हैं।
0: अनिल यादव,
6: देश इससे सरोकार नहीं रखता, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ।
0: ठीक है अनिल यादव जी, अब आप पॉइंटेड इसका जवाब दीजिए जो बातें वो कह रहे हैं। और अगर 124 ऐसे आईएएस आईएफएस अधिकारी सब कह रहे हैं, जो व्यवस्था को चलाते हैं वो सब कह रहे हैं कि भाई धांधली का आरोप बिना सबूत के ऐसे लगाना, मतलब ये अब चुनाव आयोग पर शक केंद्रित कर देना, ये तो पूरे लोकतंत्र के ही नींव को हिला देगा। आपका जवाब इस सब पर?
7: देखिए, मैं समझता हूँ अंजना जी, लोकतंत्र की नींव हिलती है जब वोट चोरी होती है, और जिन्होंने लोकतंत्र को हैंग कर दिया है, जिन्होंने लोकतंत्र को हॉस्टेज बना लिया है, क्योंकि मेरे साथी ने यही वर्ड इस्तेमाल किया, वो हमसे कह रहे हैं कि भाई इन्होंने हॉस्टेज बना लिया। अरे आपको एक सबूत थोड़ी ना दिए, दर्जनों सबूत हम लोगों ने दिए हैं। हमने देखा कि भाई हरियाणा की वोटर लिस्ट देखी, और ये तो खुद हरियाणा से है, वहां पर ब्राजीलियन मॉडल का फोटो देखा, आज तक जवाब नहीं मिला है। बंगाल में चुनाव हुआ, पता चला कि 27 लाख लोगों को आपने वोट नहीं डालने दिया, अरब उनमें से 91% लोग जो है वो ठीक पाए जा रहे हैं, तो जवाब तो आप किसी बात का नहीं देते। फॉर्म 6 में सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि भाई हमारी कोई सहमति नहीं थी इसमें, आपने चेंज कर दिया बिना, उसमें पूरा कानून का उल्लंघन किया है, जबकि आप जानते हैं कि भाई उसका उसको चेंज करने का अधिकार संसद के पास था, उस पर जवाब नहीं देते हैं। आपके खुद के इलेक्शन कमिश्नर्स ने कहा कि भाई हमारी सहमति से फैसले नहीं लिए जाते, जो कि गैरकानूनी है। आज भी आपने खुद चुनाव आयुक्त ये मानते हैं, चुनाव चीफ इलेक्शन का जो ऑफिस है वो ये मानता है कि भाई बिना एजेंडे के मीटिंग्स हो रही थी। आप विदेश जो जाते हैं उसके उसका ब्यौरा नहीं दिया जा रहा था। लेकिन सवाल आज ये नहीं है अंजना जी, सवाल ये है कि आज इस देश के लोगों को अपनी बात कहने से रोका जा रहा है। और आप देखिए ना, 40,000 से ज्यादा पुलिस बल बुलाया गया है, कुछ सेना के जवान है तो कुछ दिल्ली पुलिस के, कुछ आसपास के प्रदेशों से बुलाए गए हैं। वो जवान जिनकी जिम्मेदारी दुश्मन से लड़ना है, हमारे देश की बॉर्डर पे खड़े होके, वो क्या कर रहे हैं? हमारे देश के लोगों से लड़ रहे हैं। और पुलिस क्या कर रही है?
0: ठीक है, मैं लौट रही हूं अनिल जी, थोड़ा होल्ड योर थॉट्स एक सेकंड के लिए। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्दी से दिखाइए, फिर आ रही हूँ फौरन आपके पास भी। झा जी जल्दी से दिखाइए एक बार। हाँ अमित, क्या स्थिति है इस वक्त, कहाँ पर आप मौजूद हैं और क्या चल रहा है?
8: अंजना, जो स्पॉट आज पूरे एक्शन का सेंटर बना हुआ था, मैं वहीं पे हूँ। कनॉट प्लेस के इनर और आउटर सर्कल के बीच की ये सड़क है। तमाम रास्ते जो जंतर मंतर की तरफ जाते हैं उस पे पुलिस की हेवी बैरिकेडिंग, पैराफोर्सेस अभी भी तैनात हैं, और हर थोड़ी थोड़ी देर में हम देख रहे हैं कि एक तरह से गेम चल रहा है। प्रोटेस्टर्स दौड़ के एक जगह इकट्ठा होते हैं, फिर पुलिस वाले उनके पीछे भागते हैं, कुछ लोगों को पकड़ा जाता है। जुलाई और अक्टूबर में यह जरूर फर्क है कि एक प्रोटेस्टर को पकड़ने के लिए 5 से 7 पुलिसकर्मी या पैराफोर्सेज के जवान लग रहे हैं, ताकि फोर्स का इस्तेमाल ना करना पड़े और उनको डिटेन किया जाए, क्योंकि पूरी दिल्ली एक तरह से, जो न्यू दिल्ली का इलाका है, एक तरह से गैरिसन टाउन में कन्वर्ट हो गया है। आज जगह जगह बैरिकेडिंग है, पैराफोर्सेज हैं, तमाम रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रोटेस्टर्स तो नहीं इकट्ठा हुए, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा कि सुबह से मैंने देखा है कि बहुत हर आधे आधे घंटे के अंतराल पे पुलिस को इस तरह से दौड़कर प्रोटेस्टर्स को पकड़ना पड़ा। इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन के बावजूद वो जंतर मंतर के इतने करीब तक पहुंच पाए हैं, तो एक तरह से आप कह सकते हैं सीजेपी भी अपनी मैसेजिंग भेजने में, ट्रिकल डाउन कराने में सफल रही है। एक डायकॉटमी हमें जरूर दिखे कि जो एंटी सीजेपी कुछ एक दो जगह गुट हमको दिखाई दिए, उनको पुलिस वाले रोकते हुए बहुत ज्यादा नहीं दिखे, ये अपने आप में वो विजुअल सवाल है। हाँ, संदीप दीक्षित मुझे थोड़ी देर पहले यहां दिखे थे। इसके अलावा इसे इतर जो भी नेता हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, या लेफ्ट के नेता हो, जो जंतर मंतर की तरफ बढ़ने की कोशिश उन्होंने दिन में आज की, तो उनको उनके इलाकों से, ऑफिस से या घर के बाहर से, जैसे अरविंद केजरीवाल लोधी स्टेट से डिटेन किए गए तो डिटेन कर लिया गया। हाँ। कुल मिला के अभी आप स्थिति देखेंगे तो शांतिपूर्ण ही है।
0: अमित अमित अमित अमित, आज बिल्कुल स्ट्रैटेजी बदल दी गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से। उन्होंने पिछली बार चूंकि कई जगहों पर डंडों की तस्वीरें आई और फिर उसको लेकर और भी लोगों में अग्रेशन, आक्रामकता बढ़ी, इस वजह से आज वो मतलब इकट्ठा ही नहीं होने दे रहे और पकड़ के लोगों को हटा दिया जा रहा है, बैरिकेड्स के जरिए किया जा रहा है। ये भी तस्वीर आप देख रहे हैं, कोशिश उनकी यह है कि किसी के साथ भी मतलब इकट्ठा नहीं होने दिया जाए। ये आपको भी सड़क पर दिखा, क्योंकि तस्वीरें यही बता रही, इकट्ठा नहीं होने दिया, मतलब चार चार पांच पांच जाके एक एक को उठा उठा के ले जा रहे थे।
8: बिल्कुल, ये ही रणनीति में सबसे बड़ी तब्दीली है जुलाई और अक्टूबर में, कि पहले जब आरोप लगा कि आपने एक्सेसेस किए या फोर्स का इस्तेमाल किया, आज मैंने खुद देखा है, चाहे वो अक्षरधाम से लेकर ये कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल तक का एरिया हो, बैरिकेड्स हैं, और जहां भी एक और मुख्य बात मैं बता के बात अपनी खत्म करूंगा कि पुलिस आती है, उनके पास 100-150 प्रोटेस्टर्स होते हैं, लेकिन 100-150 पकड़ने की मंशा से पुलिस नहीं दौड़ती है, वो 20 लोगों को या 30 लोगों को पकड़ते हैं, ताकि एक एक प्रोटेस्टर को 5 से 7 जो पर्सनल हैं वो उठाकर बस में डाले, डिटेन करके यहां से ले जाएं, फिर थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ दिया जाता है नारेबाजी करने के लिए, ताकि जो जो भी उनका नारे हैं वो लगा पाए, और थोड़ी देर बाद फिर डिटेन किया जाता है। सेक्टर बाय सेक्टर मूवमेंट हो रही है। हाँ, आला अधिकारी जो है दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी वो राउंड लगा रहे हैं कनॉट प्लेस का लगातार। अंजना
0: गश्त लगाते हुए आपके पीछे भी अभी सब गुजर ही रहे हैं, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और रिपोर्टर्स भी अलग जगह से जुड़ते हैं तो आप उनको लेते रहिएगा। देखिए हाई वोल्टेज का ये पूरा एक्शन जो आज हुआ है, संजीव झा जी बीजेपी तो सीधा ये आरोप भी लगा रही है। अच्छा ठीक है, दो लाइन में अनिल यादव जी पूरा कीजिए जल्दी से।
7: अंजना जी ऐसा बताया जा रहा है जैसे पता नहीं कितने प्यार से प्रोटेस्टर्स को ले जाया जा रहा है। प्रोटेस्टर तो छोड़िए, पत्रकारों तक को पीटा जा रहा है, लोगों को दुकान नहीं खोलने दी जा रही है, मेट्रो के स्टेशन बंद है, रेल बंद है, इंटरनेट बंद है, और क्या बंद करेंगे ये। और उसके बाद भी कहते हैं कि भाई उस जमाने में ऐसा होता था, इसका मतलब ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि अभी तो और भी करना बाकी है। और क्या कीजिएगा आप, देश को आपने पूरा बंदी बना दिया है, पूरी राजधानी में आपने छावनी बना दी है, ये क्या मतलब है कि आप हमारी पुलिस को हमारे प्रति इस्तेमाल करेंगे। आपकी इतनी जवाबदेही नहीं बनती, एक आदमी को आप क्यों बचाना चाहते हैं। कभी उसके लिए कानून लाते हैं कि भाई इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कभी उसको SPG की सुरक्षा दे देते हैं। आखिर कौन लगता है आपका, वो क्या रिश्ता है आपका। अगर भारतीय जनता पार्टी को आपको फायदा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं जनता की बात को मान लेते हैं और उसको हटा देते हैं। लेकिन क्योंकि आपकी आपको पता है कि चुनाव जीतते ही आप उस ज्ञानेश कुमार की गड़बड़ी से हैं, इसलिए आप उसके बचाव में आ रखे हैं।
0: ठीक है, हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि उन्होंने ग्राउंड पे देखा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाके जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उनको उठाकर ले जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने जो आंखों देखी है वो बताया है। आप उसको काउंटर कर सकते हैं और अगर लाठी से पीटने की आपके पास तस्वीरें हो तो वो भी आप जरूर भेजिएगा, वो भी जरूर दिखाएंगे, आप पोस्ट कीजिए, कांग्रेस भी पोस्ट करे। संजीव झा जी एक बार बोलने, फिर सिद्धार्थ जी आपके पास आ रही हूं। बीजेपी कहती है कि ये आम आदमी पार्टी का ही फ्रंट है CJP, इस पर भी एक जवाब दीजिएगा। और आज अरविंद केजरीवाल को भी डिटेन किया गया। झा जी
9: देखिए, बड़ा ही आश्चर्य है, दिल्ली देश की राजधानी है, आज इसको किला बना दिया गया, आर्मी को छोड़कर जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस थे सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दिए। अभी इमरजेंसी की बात कर रहे थे ना सिद्धार्थ जी, भाई इमरजेंसी में तो ट्रेन टाइम से चलती थी, आपने तो ट्रेन को भी बंद करा दिया, दिल्ली में वाली सारी ट्रेन बंद करा दी, आपने बसेस बंद करा दिए। आप प्रेस सेंसरशिप की बात कर रहे थे, आज तो प्रेस के लोगों को ही मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, उसको अरेस्ट किया गया है और अभी भी वो अरेस्टेड है। तो ये अघोषित आपातकाल है, ये मान लीजिए आप। दूसरी बात, एक बात समझिए कि अगर ज्ञानेश कुमार ने वोट की चोरी कराई है, अगर ज्ञानेश कुमार ने वोट का अधिकार छीना है, जो प्रूफ हो गया है, एक बात बताइए, एक माननीय न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा कि अगर किसी एक व्यक्ति का भी वोटिंग राइट आप छीनते हैं तो उसका आत्मा छीनने के बराबर है। भाई वेस्ट बंगाल में तो 29 लाख लोगों के वोटिंग अधिकार छीन लिए गए, तो उस 29 लाख लोगों के वोट के अधिकार के छीनने वाला व्यक्ति आखिर चुनाव आयोग में कैसे रह सकता है, क्यों नहीं उसका इस्तीफा होना चाहिए। आपको इस्तीफा लेना था ज्ञानेश कुमार का, और आप जो इसके खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं आप उसके लिए दिल्ली को किला बना दिया आपने। मैं बताऊं, मैं तो प्रोटेस्ट में था, कील लाठियों में कील लगा करके मार रहे हैं, कील चुहा रहे हैं ये लोग।
0: आज की बात बता रहा हूं,
9: मुझे कील चुहा है, ये कौन लोग हैं ये, एक बात बताइए आप कि ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास सत्ता है, तो सत्ता से ये पुलिस को अंग्रेजी पुलिस बना दिया इन्होंने। ये सत्ता इसी देश के नौजवान ने आपको दिया था और उसी नौजवान के खिलाफ उस पुलिस को उपयोग कर रहे हैं, और फिर आप चाहती है कि लड़ाई पुलिस वर्सेस जनता हो जाए।
0: चूंकि इसीलिए विक्रम सिंह साहब को हमने शामिल किया है, फॉर्मर DGP रह चुके हैं, अपनी ही पुलिस को अपनी ही जनता के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है सरकार, इस पर आपका जवाब। उसके बाद मैं तुरंत आ रही हूँ विक्रम सिंह साहब, एक बार पुलिस का एंगल आए, वो कह रहे हैं कि आप उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ज्यादतियां कर रहे हैं।
10: अरे विद्वान मित्रों नमस्कार, जरा मुझे केवल 30 सेकंड देने दे दो। अंजना जी बड़ी कृपा की है कि लास्ट बैट्समैन की जगह कुछ समय दे दिया है, मैं प्रॉमिस करता हूं 60 सेकंड ज्यादा नहीं लूंगा। सबसे पहले देख लीजिए, मेरा कोई राजनीतिक लीडिंग नहीं है, लेकिन जो हुआ है जरा उसको सच्चाई से देखना सीखिए। 18 अप्रैल 1976 इमरजेंसी में तुर्कमान गेट पे फायरिंग होती है, 8 मारे जाते हैं, तो वो तो सर्वोदय की पुलिस थी, वो तो कोई ऐसा नहीं था, सामान्य शिष्टाचार में पुष्प वर्षा कर रही थी। दूसरा आ जाइए 1966 में जो संत समाज पे गोली चलाई तो 7 मौतें हुई, वो क्या था, वो उसमें क्या वो भी पुलिस ने कोई अलंकरण प्राप्त नहीं किया था। हम लोग इसको समझ रहे हैं जो 250 दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों और एक अनुसूचित जात के अधिकारी के साथ अमानवीय कृत्य किया गया, मैं उसका जवाब चाहता हूं। और अगर पुलिसकर्मी का खून खून नहीं है, केवल दंगाइयों का खून है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को भी है, और आपने जो दुर्गति और पब्लिक प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया, लोकतंत्र के मंदिर में चढ़ाई करने की कोशिश की, आपने उसको नेपाल और बांग्लादेश बनाने की घोषणा की, और आपका जो दीपके है अंजना जी मुझे घोर आपत्ति है कि उमर खालिद का वो बहुत पक्का दोस्त है, ये कौन, ये ध्रुव राठी। और अगर ये, मैं चाहूंगा कि अगर ध्रुव राठी जर्मन सिटीजन है या सौरभ दास जो है ये नेपाल के हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये जरा इनको देश में हम क्यों इनको मौका दे रहे हैं। सिद्धार्थ जी जरा इसके ऊपर जरा विचार कीजिए, मेरा कुछ परामर्श आपने माना तो आपकी शोइंग थोड़ी इंप्रूव हो गई। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये सामान एजिटेशन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, बैटल ऑफ नर्व्स है। और हर आदमी सोशल मीडिया का, 200 पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ जहर फैला रहे हैं, विषाक्त कर रहे हैं वातावरण, कुछ हमको और कार्रवाई करनी होगी। आप ये बता दीजिए, यहाँ किसी का अंग भंग हुआ, किसी के ऊपर निर्मम लाठी, हमारी जो पुलिस वुमेन थी उनके ऊपर जो कार्रवाई की, और जो हमारे नेताओं ने महिलाओं साथ अभद्र व्यवहार किया, आप बेटी की तरह है जिस तरह का उनका आलिंगन ऑलमोस्ट करने लगे, क्या उसका कोई जवाब है? इसके बारे में प्रकाश डाल दें। और ये देखिए, पहला पत्थर वो मारे जिसने पहले कोई अत्याचार न किया। और इस तरीके की बातें अंजना जी पहले देख लीजिए, पूरी पिक्चर मैंने आपके सामने रखी। आप सब युवा हैं ना, आपने इमरजेंसी देखी थी, MISC का सिद्धार्थ जी ने मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जरा सा शक हुआ बस तुरंत अंदर जाइए, 1,00,000 लोग गिरफ्तार, इसने लोग तब लापता हुए जिसका कोई हिसाब नहीं। जी अंजना,
0: हालांकि आपके एक शब्द से मैं मतभेद रखती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं बता दूं आपको, क्योंकि आपने कहा कि क्या पुलिस वालों का खून खून नहीं है, सिर्फ दंगाइयों का खून है। मैं ये मानती हूँ कि ये प्रदर्शनकारी हैं, बच्चे भी हैं इसमें, हर उम्र के लोग हैं, हो सकता है किसी पार्टी से भी जुड़े हों, लेकिन उनको सीधा दंगाई कह देना भी सही नहीं है। कई उनमें से बच्चे ऐसे हैं जो वहां प्रदर्शन करने के लिए भी आए हैं, तो सभी को एक रंग में नहीं रंगना चाहिए। लेकिन अब मैं इस बहस को आगे ले जाना चाहती हूं, उससे पहले कि मैं विवेक जी और आपके पास आऊं, सूर्य जी, मुंबई में भी 400 लोगों को डिटेन किया गया, जल्दी से दिखा दीजिए दीपेश, वहां क्या चल रहा है? उससे पहले बताइए बताइए,
11: अगस्त क्रांति मैदान के पास है जहां पर पुलिस का बड़ा बंदोबस्त यहां पर देखने को मिल रहा है। 450 से ज्यादा लोगों को अब तक यहां पर डिटेन किया जा चुका है और लगातार यहां पर लोगों के आने का सिलसिला जो है, प्रोटेस्टर्स के आने का सिलसिला है वो जारी है। यहां पर थोड़ी देर पहले बॉलीवुड के अभिनेता इमरान खान अपने परिवार के साथ पहुंचे थे, उनको भी डिटेन कर लिया गया है। और सुबह से अभी तक जो तुषार गांधी थे, इस पूरे प्रोटेस्ट के ऑर्गेनाइजर थे, उनको डिटेन किया गया था, लेकिन उसके बाद भी जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने अपील की थी कि जो बाकी प्रोटेस्टर्स है वो यहां पर पहुंचे और आंदोलन शुरू करें, आंदोलन जारी रखें। जो CJP का प्रोटेस्ट होना था दिल्ली में, उसके सपोर्ट में प्रोटेस्ट जो है वो जारी रखें, जिसके बाद यहां पर कड़ा पुलिस का बंदोबस्त वो देखने को मिल रहा है। पूरा एरिया जो है वो बैरिकेड कर दिया गया है, सैकड़ों की तादाद में जो है पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है और एडिशनल पुलिस फोर्स भी है, उनको भी यहां पर तैनात रखा गया है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन ना हो। इसीलिए पुलिस का कहना है कि यहां पर किसी को जो है प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दी गई थी और ये हेरिटेज साइड है, यहां पर कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, जिसके बाद से जो प्रोटेस्टर्स यहां पर आ रहे हैं उनको डिटेन किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। अंजना
0: जी, और अभी स्थिति कैसी है, डिटेन किया जा रहा है, क्या अभी भी प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं ग्रुप में या अब शांत हो गई है स्थिति?
11: जी, प्रोटेस्टर्स जो हैं वो टुकड़ों टुकड़ों में यहाँ पर आ रहे हैं, थोड़ी ही देर की शांति यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी शांति लगती है वैसे ही तुरंत दूसरे प्रोटेस्टर्स का ग्रुप जो है वो यहाँ पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से पुलिस जो है पुलिस लगातार जो है ऑन द टो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लगातार टुकड़ों टुकड़ों में आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, ये एरिया जो है ये गांधी मैदान के पास जो है ये नाना चौक कहा जाता है और ये पूरा 7 रास्तों से बना हुआ ये चौक है, हर रास्ते से यहाँ पर जो है प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस को यहाँ पर नजर रखने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, पुलिस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस के आला अधिकारी जो है लगातार यहाँ पर खड़े। मैम, कुछ आंकड़े अब तक कितने प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया जा रहा है?
12: आंकड़ा अभी तक लिया नहीं है,
11: फिर भी कुछ अंदाजन आंकड़े हैं?
12: अराउंड 300।
11: और कुछ प्रोटेस्टर से बात हुई पाई, जो ऑर्गेनाइजर थे उनको तो डिटेन कर लिया गया, लेकिन फिर भी लगातार प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं?
12: नहीं, आई थिंक वो सोशल मीडिया मैसेज की वजह से सब लोग इधर आ रहे हैं, बट देन वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड दैट नो एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड एट द पुलिस स्टेशन फॉर दिस प्रोटेस्ट एंड नो परमिशन वॉज गिवन। सो फिर भी जो आ रहे हैं उनको हम प्रोटेस्ट की जाब से आ रहे हैं उनको हम ताबे में ले रहे हैं, वी विल डिसाइड द लीगल कोर्स ऑफ एक्शन इन द फ्यूचर।
11: क्या उनको उनको प्रोटेस्ट के लिए कोई और जगह का ऑप्शन दिया गया, जैसे ये हेरिटेज साइट है यहाँ पर प्रोटेस्ट मनाया, लेकिन कोई और ऑप्शन दिया गया?
12: वन अप्रोच डस, हमको कोई आगे सामने नहीं आए हैं जिससे बात करने के लिए।
0: जी दीपेश, धन्यवाद।
12: बिल्कुल,
0: तो आपने मुंबई का भी हाल देखा, वहां पर भी प्रोटेस्टर्स बीच बीच में आ रहे हैं। विवेक जी, एक कमेंट आपसे, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में तो जंतर मंतर में वामदल काफी ताकत झोंक रहे हैं।
13: हाँ, तो हमारा आंदोलन है, हमारे अजय भवन को और किशन सिंह सुरजीत भवन को, जितने कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस हैं, कल रात से सब में पुलिस घुसी हुई है, रेड्स मार रही है, बच्चों को पकड़ रही है।
0: विक्रम सिंह साहब को ऑडियो नहीं जा रहा है,
13: राज्यसभा।
0: हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए। विक्रम सिंह साहब को ऑडियो नहीं जा रहा है, मुझे लगता है इशारा कर रहे हैं। आप बात पूरी कीजिए विवेक जी।
13: जी जी जी, और हमारे दफ्तरों के ऊपर के अंदर पुलिस घुस करके बच्चों को कल रात से पिकअप कर रही है। तपन सेन 75 साल से ऊपर है, 80 के होने वाले हैं, बड़े वर्कर ट्रेड यूनियन नेता रहे हैं, घसीटा गया, वृंदा करात को उठा करके बस के अंदर फेंका गया। सारी कहानियां सोशल मीडिया पे घूम रही हैं अंजना जी, ये जितना मर्जी कर लें, जो इनको जुल्म करना है, ये आपने सारी ट्रेन रद्द करी, आपने बसें रद्द करी, आपने मेट्रो स्टेशन रोके, पैरामिलिट्री को बुलाया, आप बुला लीजिए, देशव्यापी आंदोलन है, रुकने वाला नहीं है। आज भी हमारी जीत हुई है, इतना सब कुछ करने के बाद भी लोग पहुंचे हैं, लोग पहुंच रहे हैं। आर यू नॉट अशेम्ड? Is this government not ashamed? एक आदमी को क्यों बचा रहे? मैं अपील करूंगा सिद्धार्थ से, यहां से, he is a very talented, you are a lawyer, you are an educated man, Siddharth, why don't you just get this man impeached, throw him off? आपको तो कोई कुछ नहीं कह रहा फिलहाल, हम कह रहे हैं उस आदमी को impeach करो, उसने अगर गलतियां करी है वो transparently उसको हटाओ, आप हमारे साथ मिलिए। ये कोई जरूरी है कि क्या ऑपोजिशन और सत्ता पक्ष हमेशा एक दूसरे के सामने रहे? लेकिन अगर आप हमारी बात नहीं
0: मानेंगे, सूर्य मैथिल जल्दी से कमेंट, वो कह रहे हैं कि बीजेपी क्यों प्रोटेक्ट कर रही है, उनको हटाइए।
14: धन्यवाद अंजना जी, पहले तो आपको और प्रदेश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और रह रहे के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम हम ऊपर से बड़े बोले। ये देखिए यहाँ पर बैठकर किस प्रकार से अनिल यादव हो, चाहे संजीव झा हो, चाहे विवेक श्रीवास्तव जी हो, अगर चुनाव आयोग ने मरे हुए वोटर हटा दिए, स्थानांतरित वोटर हटा दिए, माइग्रेटेड वोटर हटा दिए, इनका एक की जगह दो जगह नाम था वोटर्स लिस्ट में, उनको हटा दिया, तो उसके बाद देशव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, अभी संजीव झा यहाँ पर है आपके पैनल में, और मैं भी बुराड़ी विधानसभा का ही वोटर हूं, मेरे पास में भी खुद एक नोटिस आया हुआ है अंजना जी, मैं यहाँ ऑन एयर बताना चाहता हूं। उस नोटिस के अंदर क्या है कि मेरा नाम जो है वो सूर्य प्रकाश मैथिल है, और उसमें मेरी माता जी के संग एसआईआर के अंदर जो मैंने वोटर लिस्ट का अंदर नंबर दिया, उसमें 15 साल से कम का उम्र का बताया गया कि है आपका डिफरेंस। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कागज जमा कर दीजिए, आप कागज जमा कर देंगे तो आपका नाम जो है वो वोटर लिस्ट नाम आप कर देंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कागज जमा करने की जगह पे आप रोड पे ये लट्ठेबाजी करना शुरू कर दिए, पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज कर, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं आप माहौल को खराब कर रहे हैं, आप दिल्ली को होस्टेज बना के रख रहे हैं, आप बार बार विश्व में एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि वो चुनाव आयोग, जिस चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव हमेशा कराए हैं, भारत के लोकतंत्र की वो नींव है, उस लोकतंत्र की नींव में आप मत्था डालने का काम कर रहे हैं।
0: ठीक है जी, आप तो विधायक है ना, बुराड़ी से जीते ना आप इस बार।
15: बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं वही आता हूँ।
0: तो एक सेकंड, विपक्ष से जब भी ये सवाल पूछिए कि भाई आप कर्नाटक में जीते, आप हिमाचल, कहते हैं कि ये सब जगह तो वो जीत ही नहीं सकते हैं, इसलिए हमें जिता देते हैं। तो आपको भी इसी तरीके से बीजेपी ने जिता दिया क्या बुराड़ी से?
15: अच्छा अंजना जी, बड़ा अच्छा है, सूर्या मैथिल जी ने क्या कहा कि हमारे और पिताजी के एज में चूंकि गैप था, कम था, इसलिए नोटिस आया। समझिए, मेरे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4,35,000 वोट था, आज 2,76,000 वोट रह गया, उसमें भी 58,000 लोगों को और नोटिस चला गया, यानी 2,06,000 वोट रह गए।
0: और समझिए, बीच में नहीं, मैथिल जी का आवाज आ चुकी है, मैथिल जी वेट फॉर योर टर्न सर।
15: लेकिन ऐसे अब बताइए, वो इतने जो 2,00,000 लोगों के वोट काट दिए गए, क्या 2,00,000 लोग विदेशी हैं या 2,00,000 लोग देशद्रोही हैं? क्यों वोट काट दिए गए? किसने इनको अधिकार दिया? आज वो दर बदर भटक रहे हैं। अरे 12 साल से तुमने देश को अस्थिर कर दिया, कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी जीएसटी के नाम पर, कभी कोरोना के नाम पर, कभी गैस के नाम पर, और अब वोट बनाने के नाम पर। तो जब 12 साल में तुमने देश को अस्थिर कर दिया, और एक ऐसे व्यक्ति को जो भारतीय जनता पार्टी को शील्ड की तरह बताने की कोशिश कर रहा है, वो देश का इलेक्शन कमिश्नर नहीं है।
0: ठीक, सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। हालांकि संजीव जी, अभी नाम कट गया, हटा दिया गया, क्योंकि अभी तो चल रही है प्रक्रिया, एसआईआर की प्रक्रिया दिल्ली में चल रही है, तो जो जो भी
15: नहीं अपना... नहीं, एक मिनट
0: चल रही है,
15: जिनके वोट काट दिए गए इनको पूछिए क्या उनके वोट बन जाएंगे।
0: ठीक है, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन। सिद्धार्थ जी जल्दी से आप रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए बहुत सारी बातें हुई है सबकी, और सबसे बड़ी बात विवेक जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ आ जाइए और इम्पीचमेंट कराइए
6: अंजना जी,
0: मुख्य चुनाव आयुक्त का।
6: मैं अंजना जी आपसे एक आग्रह करूंगा कि तीन विपक्षी पार्टियां हैं, सभी के प्रश्न सरकार से हैं, मेरे पर थोड़ी आप दया करना। एक नंबर के हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं इतने अव्वल दर्जे के झूठे हो चुके हैं कि अब उनका झूठ पहचानना भी मुश्किल हो गया। क्या बोले विधायक जी कि मैं साथ था प्रदर्शन में, डंडों पर कील लगी हुई थी, मुझे भी कील लग गई, कील का कोई निशान नहीं, अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो गए, ये भाग आए। आप अपने नेता को छोड़ करके क्यों भाग आए, उनके साथ जाते, पर कील लगे हुए डंडों की कोई फोटो नहीं, कोई बात नहीं, ये आकर के गाड़ी में बैठ गए। 2 लाख वोटर कट गए इनकी विधानसभा में, 2 वोटर को गाड़ी के पीछे वाली सीट पे नहीं बैठा पा रहे विधायक जी, कि उन 2 वोटर को भी दिखा दें कि इन 2 के कटे हैं। ये झूठ और प्रपंच का इतना बड़ा ड्रामा हो गया अंजना जी, और उसका उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। ये अभिषेक बैनर्जी का कल का ट्वीट है, अभिषेक बैनर्जी ने राजीनगर विधानसभा में बंगाल में जहां बाईपोल्स हुए वहां पर कहा रजिस्टर्ड वोटर थे 772 और बीजेपी को वोट मिले 909। रात को इलेक्शन कमीशन ने उसको फैक्ट चेक किया कि ये तो 909 772 नहीं, यहां पर 1100 वोट थे, और कल उससे पहले अरविंद केजरीवाल भी कूद पड़े। दिस इज एब्सोल्यूट शॉकिंग, दिस इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ ईवीएम टेम्परिंग। अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं नॉर्थ कोरिया बन गया भारत, तुरंत झूठ पकड़ा जाता है। रोज झूठ बोलो, सुबह उठ जाओ झूठ बोलने लगो, 4 झूठ में से कोई एक को तो कोई मान लेगा। अगर यही आपकी स्ट्रेटेजी है तो मैं कहता हूं कि इतने झूठे लोगों का देश क्या करेगा। आप सुप्रीम कोर्ट गए थे कि शौचालयों की व्यवस्था करवा दीजिए जंतर मंतर पे, इसके लिए चले जाते। कल आए हैं परिणाम अंजना जी, सारे बाई इलेक्शन के सब हार गए, वोट चोरी हुई तो तुरंत जाओ। पर इन लोगों का कहान दूसरा है। अभी विवेक जी कह रहे थे देशव्यापी आंदोलन है, कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं वो। कम्युनिस्ट पार्टी ने बंगाल में राज किया, त्रिपुरा में किया, केरल में किया, वहां तो हो नहीं रहा, वहां कोई प्रदर्शन नहीं, देशव्यापी प्रदर्शन है। आप जहां थे वहां तो कर लेते।
0: अच्छा, 3 किलोमीटर के दायरे में वहीं। आप ही से सवाल है, आप ही से सवाल है, मुझे पता है 3:1 है इस वक्त, ठीक है। अरे सिद्धार्थ जी सुनिए ना, आप पेशे से तो लॉयर हैं, पर आप किसी आंदोलन में शामिल हुए या नहीं हुए अपने जीवन में?
6: मैं अंजना जी स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहा हूं, दर्जनों आंदोलनों में शामिल हुआ हूं, दर्जनों बार गिरफ्तार हुआ हूं, दर्जनों FIR दर्ज हुई है, दर्जनों हुआ है। पर अराजकता और
0: डिटेल थोड़ी कर लीजिएगा सबको,
6: अंजना जी
0: सबको डिटेल थोड़ी कर लीजिएगा,
6: बनाए रखना पड़ेगा
0: सबको डिटेल थोड़ी कर लीजिएगा।
6: अरे हम भी डिटेन हुए, ये अराजकता का और स्टूडेंट एक्टिविज्म का, ये एक्टिविज्म का एक फर्क रहा है देश में। ये इस फर्क को अगर विपक्ष चाहता है कि धूमिल कर दे और अराजकता के नाम पर देश को चलाए, ऐसे नहीं चलता है। हमने दर्जनों प्रोटेस्ट करे, आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा, यही प्रोसेस इंटीमेशन का, परमिशन का, स्थान का, चुनने का, और कभी 163 लगी हुई है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन होने का, दर्जनों बार गिरफ्तारियां दी। पर यह तरीका नहीं है जो लोग सोच रहे हैं कि गिरती साख को यहां पकड़ लो। और ये किस लिए अंजना जी, मैं ये भी बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी के एक सांसद, JNU के प्रोफेसर, 11 लड़कियों से सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में सस्पेंड हुए हैं JNU से, वो बातें ना आए आगे। अगर ये कोई भाजपा वाला होता ना, ये सब सड़कों पे मिलते आपको, और सब अपने शर्ट को यूं सर पे चढ़ा करके आपको यहां डांस करते हुए मिलते। पर क्योंकि कांग्रेस का सांसद है और क्योंकि कांग्रेस के सांसद को सस्पेंड हो गया, कमिटी ने पा लिया, बाय लॉ ये काम हुआ, सबके मुंह में दही जम जाएगा। कल बाई इलेक्शन हार गए, उस पर झूठ बोला, उसके लिए कोर्ट नहीं गए, कोर्ट गए दूसरी चीज के लिए। जहां जीत जाएंगे वहां नहीं बोलेंगे, यहां ज्ञान देंगे। बहुत पुराना ज्ञान नहीं देता, जी परमेश्वर कर्नाटक के इनके होम मिनिस्टर हैं कांग्रेस पार्टी के, 10,000 प्रदर्शन कर्मियों को लाठी बजाई गई थी और बाद में बयान देते, व्हाट शुड हैव आई डन, शुड आई हैव किस्ड दोस प्रोटेस्टर्स, मैं उनको चूमता, तब जी परमेश्वर को नहीं पता चला क्या करना है। इस देश में एनआरकी नहीं फैलाई जा सकती, ये देश संविधान के आधार पर चलेगा, कानून के आधार पर चलेगा। आप कोर्ट पहुंचे हुए हैं, आप सबूत नहीं दे रहे हैं, आप रोज झूठ बोलते हैं पर आप कोई प्रमाण नहीं दे रहे हैं, आप कहीं भी जाते हैं और सोचते हैं हम प्रपंच खड़ा कर देंगे।
0: तो ये अनिल यादव जी छोटे छोटे सबसे मैं कमेंट ले रही हूं, ये जो आप प्रोफेसर है और कांग्रेस पार्टी के सांसद, इसके बाद विक्रम सिंह साहब आपके पास भी आऊंगे, अंगोमचा बिमोल अकोइल जाम सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में हुआ है, निकाला गया है इनको कॉलेज से।
7: अंजना जी मुझे
0: क्यों नहीं बोलते हैं जब महिलाओं की सशक्तिकरण की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है?
7: नहीं, हम तो उन पे भी बोलेंगे, हम तो प्रज्वल रवन्ना पे भी बोलेंगे, सिद्धार्थ
0: मुझे
7: भाई
0: पता था प्रज्वल रवन्ना पे आप तुरंत आएंगे, लेकिन प्रोफेसर साहब का नाम तो बताइए।
7: अब देखिए आपने पार्टी के नेता कहने दी, अच्छा मैं आपसे ये जानना चाहता
0: हूँ। नहीं नहीं, देखिए सेक्सुअल हरासमेंट पे ना एक ही, सुनिए ना अनिल जी, अनिल जी सुनिए, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं, लेकिन इस बात पर ना तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे इनका कुलदीप सेंगर हो बीजेपी का, समाजवादी पार्टी का गायत्री प्रजापति हो, या आपका ये अंगोमछा साहब हो, कितने ट्वीट किए आपके नेताओं ने अंगोमछा साहब पे, कितने ट्वीट किए, कितने ट्वीट किए।
7: मैं समझता हूं कि कोई भी नेता कानून से बड़ा नहीं है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे सरकार का हो, और वो सभी के लिए होना चाहिए। कोई भी उत्पीड़न करेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
0: लेकिन बात
7: प्रज्वल रवन्ना के चाचा को तो मंत्री बनाएंगे, उसके साथ मंच, प्रज्वल रवन्ना के साथ प्रधानमंत्री मंच साझा करेंगे, तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी, ये दोगली लगेगी। अब जहां
0: सारे के सारे हैं, इसमें बस मैं किसी एक पार्टी को हाई मॉरल ग्राउंड नहीं लेने दूंगी, किसी पार्टी को, चाहे आप लेना चाहे या, क्योंकि आपकी भी वही हालत दिख रही है, आपके मुंह से एक बार उनका नाम नहीं निकला, एक बार नाम नहीं निकला। संजीव झा जी, संजीव झा जी वो कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने वाकई कील वाली लाठियों से मारा है तो चोट दिखाई है, चोट देखना है ना आपको सिद्धार्थ जी?
9: नहीं नहीं, चोट भी दिखा देंगे, चोट भी दिखा देंगे। और सिद्धार्थ जी अभी भी मैं जाफर कला
16: अपने नेता को छोड़ के क्यों भाग के आ गए?
9: नहीं नहीं नहीं नहीं सिद्धार्थ जी, हम भगोरे नहीं है, आप तानाशाह हैं। अभी भी मैं जाफर कला थाना के बाहर ही गाड़ी में बैठ करके डिबेट कर रहा हूँ।
16: आप अपने नेता को गिरफ्तारी में छोड़कर आ गए विधायक जी, टिकट कट जाएगी अगली बार।
9: अरे कर लो ना गिरफ्तार, मैं तो बाहर बाहर खड़ा हूँ, कर लो, मैं तो कहना प्रोटेस्ट में था, करा दो गिरफ्तार, तभी तो कह रहा हूँ तानाशाह हो तुम लोग। एक बात आप समझिए,
16: अच्छा ये गाड़ी में बैठ करके दिल्ली की सड़क से डिबेट कर रहे हैं और इमरजेंसी लगी हुई है। अंजना जी
9: आज भारतीय जनता पार्टी, अरे करा दो ना डी, करा दो ना अरेस्ट, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं प्रोटेस्ट में था, अभी थाने के बाहर हूँ, सरकार आपकी है, कील वाली पुलिस आपकी है, कोई दो चार कील और अरेस्ट कर ले, मैं अरेस्ट होने के लिए तैयार हूँ।
0: संजीव झा जी थोड़ी सी समय की कमी है इसलिए आपको टोक रही हूँ, अगर आप चोट के निशान दिखा सकें तो मतलब अगर हाथ वाथ पे लगाओ कहीं, क्योंकि विक्रम सिंह साहब फिर उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे,
9: चूंकि इसके तो मुझे कपड़े खोल के दिखाने पड़ेंगे, कुट्टा
0: छोड़ दीजिए, फिर ऐसा मत कीजिए।
9: लेकिन
0: विक्रम सिंह साहब,
9: लेकिन एक बात समझिए कि आज जिस तरह से पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, जिस तरह से पुलिस ने लाठियां भाजी है, देश के नौजवान माकूल जवाब देगा, समय का इंतजार कर लीजिए, डरा नहीं सकते यार, सवाल पूछने से रोक नहीं सकते।
0: ठीक है, जल्दी से जल्दी टाइम खत्म हो रहा है, सिंह साहब जल्दी से।
10: केवल दो बात, केवल एक ये था कि आपने जो बात किया कि कीटे वाले देते, लेकिन इस एजिटेशन में केवल पेलेट गन चली है, हताहत कोई नहीं हुआ है, और ये दिल्ली पुलिस का संयम है, मैं उसके जज्बे को सलाम करता हूँ। यही किसी और थिएटर में हुआ होता तो परिदृश्य दूसरा होता। दूसरी चीज, आपसे मेरा मतभेद, आपने कहा ये बच्चे हैं, एक एडवोकेट किड्स है, हमारी पुलिस की भाषा में ये लग्जरी मुझे नहीं है। सामने बलवाई 100 गज एम, हम वहां पे डिस्टिंक्शन करने का न सामर्थ्य है न औचित्य है। सामने अगर बलवाइयों के साथ तथा कथित बच्चे भी हैं, वो भी आटे के साथ अगर गुने तो वो भी पिसने ही का इंतजाम कर रहा हूँ। थैंक यू
0: विवेक जी।
13: आई अग्री विद यू, मैं विक्रम सिंह जी की बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन सर आप बात को समझिए, प्रजातंत्र के सोल्यूशन पुलिस रूल से और फौज के रूल से नहीं आते। आप बिल्कुल सही है अपनी जगह, आप पूर्व डीजीपी है, बट देन दिस नीड्स अ डेमोक्रेटिक एक्शन, लेट ज्ञानेश रिजाइन, लेट हिम बी इम्पीच्ड, वरना ये
0: एजिटेशन। एक लाइन का रिएक्शन आप दीजिए कि वो कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक्शन लीजिए,
13: ही शुड गो, ही शुड सिंपली गो, इफ ही डजंट गो ये एजिटेशन बढ़ेगा।
0: समय समय नहीं है सिद्धार्थ जी, मैंने कहा था आपको बोलने के लिए, छोड़। अच्छा विवेक जी, एक सुझाव मेरा भी मानिए, एक सुझाव मेरा भी मानिए, अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में जेएनयू जो एक वक्त पर वामदलों का गढ़ था, वहां पर एक प्रोफेसर दोषी पाया जाता है, हटाया जाता है, तो एक आंदोलन इस पर भी जरूर कीजिएगा, वहां भी जाइएगा, देखते हैं कि कितनी ईमानदारी सभी पार्टियों की रहती है ना।
13: चलिए
0: ठीक है, पत्री उतरी दिखा लीजिए, फिर तारीख निकालिएगा उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, देखते रहिए आज।

0: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
1: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
0: असली शहद, असली स्वाद।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार। सर एक बार दो ठुमका लगाने पर
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
4: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
4: कौन सी बनानी है?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
2: गड़बड़ है।
3: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
4: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
5: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
6: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं, पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
7: इट्स माई वे।
8: और वही कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
12: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
11: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस

0: How's the hostel? Settled?
1: Yes, ma'am. It's really nice.
0: कोई आ रहा है क्या?
2: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभा ली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले।
0: मयंक, फॉर रियल?
2: वन कैरेट फॉर माय वन ट्रू लव।
3: नेचुरल डायमंड रियल लव सॉलिटेयर्स टू रीइग्नाइट योर न्यू सीजन ऑफ लव।

0: in association with
1: Signature Finest Cardamom Seeds.
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
3: Canara Bank, together we can.
4: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है।
5: मैं मायावती सत्यनिष्ठा के प्रतिज्ञा करती हूँ।
6: मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
7: मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
4: ये भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार। सर एक बार दो तो ठुमका लगाने बस।
9: मेरे पास एक आइडिया है।
8: क्या?
9: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुमटा टीएमटी बार से जो बना है,
10: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
11: क्योंकि वो मजबूत रुमटा टीएमटी से बना है।
12: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
10: कौन सी बनानी है?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट।
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
6: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
7: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
6: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
8: आ गया सोमवार और आ गए
9: चकमक चाचा।
8: एक कचौड़ी दो समोसा चकमक तेरा क्या भरोसा?
10: चकमक चाचा से सीधे चकमक है?
8: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा आ रहा है, जारी बुझ रहा ना।
10: लेकिन भैया नारा अरे फालतू में सब बेकार है, एकदम बेकार है। नारे होते थे हमारे टाइम।
8: अच्छा
10: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
8: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी इन नेताओं की खत्म कहानी।
10: अरे जमीन के चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में?
8: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
10: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
8: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा देके जाएंगे।
10: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
8: अरे लाल फूल नीला फूल जंजी नंग है ब्यूटीफुल।
10: अरे बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी।
8: चाय गरम दूध गरम चकमक चाचा भी शर्म
10: है।
8: हाँ
10: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
8: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
11: हम जैसे? इधर आओ।
12: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
8: आई चाचा।

0: और आप देख सकते हैं।
1: ये उस विमान के अंदर की तस्वीर है जहां से कॉकरोच जनता पार्टी के पदाधिकारियों को हिरासत में लिया गया।
2: जाओ कर लो अरेस्ट होने के लिए आए हो, अरेस्ट होने के लिए आए हैं, आ जाओ कर लो अरेस्ट होने के लिए आए हैं सर, डरेंगे नहीं आपसे।
3: अभिजीत
2: कर लो अरेस्ट,
3: भारत माता की।
1: ये उस वक्त की तस्वीर भी है जब अभिजीत दिपके को दिल्ली पुलिस हिरासत में लेने प्लेन के अंदर पहुंचती है।
2: जाओ कर लो अरेस्ट होने के लिए आए हैं, अरेस्ट होने के लिए आए हैं, आ जाओ कर लो अरेस्ट होने के लिए आए हैं सर, डरेंगे नहीं आपसे।
3: अभिजीत
2: कर लो अरेस्ट,
3: भारत माता की।
1: कॉकरोच जनता पार्टी के पदाधिकारी ये मानकर चल रहे थे कि मुंबई से दिल्ली पहुंचते ही पुलिस उन्हें गिरफ्त में ले लेगी। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो लगातार जारी हो रहे थे जिनमें हिरासत में लेने की बात कही जा रही थी, लिहाजा मुंबई से प्लेन जैसे ही लैंड करता है दिल्ली पुलिस की टीम अंदर दाखिल होती है और सीजेपी के तीनों पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को हिरासत में लेने के साथ ही ये तय हो गया कि आज का प्रदर्शन अब और आगे नहीं बढ़ने वाला। खबर है कि पुलिस ने अभिजीत दिपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को अलग अलग जगहों पर हिरासत में रखा है। बाकी करीब 450 लोगों को छत्रसाल स्टेडियम में बनाए गए डिटेंशन सेंटर में रखा गया है।
4: छत्रसाल स्टेडियम में बस भर करके जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे अलग अलग जगहों में, वहां से उनको यही सीधे छत्रसाल स्टेडियम लाया गया। इन्होंने अभी बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये लोग मिंटो ब्रिज पर प्रदर्शन कर रहे थे, जहां से डिटेन करके इनको सीधे छत्रसाल स्टेडियम लाया गया। छत्रसाल स्टेडियम में पहले से ही पुलिस मौजूद है और इसको डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। इसके अंदर तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो मौजूद है।
1: दिल्ली में आज के प्रदर्शन में आप और लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए, लेकिन कुल मिलाकर सुरक्षा बल आज के प्रदर्शन पर काबू पाने में कामयाब रहे। अमित भारद्वाज, अंशुल सिंह और अरविंद ओझा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शाम के 7 बजने वाले हैं। चुनाव आयोग को लेकर घमासान जारी है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। हम शुरुआत करें खबरों के सिलसिले की, उससे पहले नजर हेडलाइंस। दिल्ली में सीजेपी और समर्थकों के प्रदर्शन में पुलिस की जबरदस्त सख्ती। एयरपोर्ट से हिरासत में दीपके समेत टीम सीजेपी। ममता और केजरीवाल पर भी शिकंजा। सीजेपी के प्रदर्शन पर बीजेपी का ताबड़तोड़ हमला। कहा सड़कों पर अराजकता की साजिश। राहुल का बयान, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जारी रहेगी जंग। मुंबई में भी सीजेपी के पक्ष में प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारी। अगस्त क्रांति मैदान से एक्टर इमरान खान को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। चुनाव आयोग और एसआईआर के समर्थन में उतरे 124 पूर्व आईएएस और आईएफएस। वोट चोरी के आरोपों को बताया निराधार। इससे पहले 42 पूर्व जजों ने भी पक्ष में लिखा था खुला पत्र। सीएम योगी को अखिलेश की चुनौती स्वीकार। बोले, अयोध्या से चुनाव में हो जाए आमना सामना। अखिलेश का जवाब, हमारा युवा पीडीएफ प्रहरी ही काफी है। शो की शुरुआत सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर है और मुंबई से बड़ी खबर और कुछ तस्वीरें सामने आ रहे हैं जहां पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है सीजेपी के समर्थन में। मुंबई की सड़कों पर लोग उतरे हुए दिखाई दिए जिन्हें फिर पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। इस बीच एक्टर इमरान खान, जो कि एक्टर आमिर खान के रिश्तेदार भी हैं, आप बड़े पॉपुलर एक्टर हैं, और इमरान खान को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। उधर सुबह सुबह महात्मा गांधी के पौत्र तुषार गांधी को भी हिरासत में लिया गया था, जहां विपक्ष के नेताओं के जाने का सिलसिला शुरू हो गया। जो बाहर धरने पर बैठ रहे हैं, ये महाराष्ट्र मुंबई की तस्वीरें हैं और वहां पर एक बार फिर सीसी गणेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर प्रोटेस्ट देखने को मिला। दिल्ली का प्रोटेस्ट पुलिस ने नियंत्रित एक तरीके से कर लिया, लेकिन महाराष्ट्र मुंबई में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वहां पर भी सड़कों पर पुलिस दिखाई दी और एक्टर इमरान खान भी आए सड़कों पर, वो भी प्रोटेस्ट करते दिखाई दिए, उनको भी हिरासत में लिया गया।
1: मुंबई में सीजेपी के समर्थन में प्रोटेस्ट शुरू है और जैसे कि आप देख सकते हैं पुलिस द्वारा जो प्रदर्शनकारी हैं उनको निशान किया जा रहा है, लेकिन पुलिस की गाड़ी के आगे ही कुछ महिलाएं आ गई हैं और इस गाड़ी को रोकने की कोशिश किया जा रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं,
2: अरे कैसे जा रहे, आप क्यों जा रहे थे?
1: तो देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी को रोकने का भरसक प्रयास यहां पर हो रहा है, लेकिन पुलिस जो है सारे प्रदर्शनकारियों को गाड़ी में लेकर पुलिस स्टेशन जा रही है। पुलिस को गाड़ी को रोकने का यहां पर भरसक कोशिश थी, लेकिन प्रदर्शनकारी जो है वो तो देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी जो है वो सुन नहीं रहे हैं और पुलिस पे जो है वो झड़प है वो बढ़ती जा रही है। पुलिस डिटेन कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी जो है वो इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं। और ये जो साइट है इसे हेरिटेज साइट पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि हेरिटेज साइट है, यहाँ प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है। लेकिन जैसा कि देख सकते हैं पुरजोर विरोध जो है प्रदर्शनकारियों द्वारा किया जा रहा है और पुलिस जो है इन्हें डिटेन करने की भरपूर कोशिश

0: there is actually no danger and no threat over here. The only threat is from all of these people attacking with sticks.
1: जिस देश में गांधी जी को डिटेन किया जाता है और इतना डर है भाजपा के मन में कि जैसे ही हम यहाँ आने वाले थे उनको लेके गए बुरेवली, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इतना मन में डर क्यों है? भले वो गांधी जी के बारे में हो या हमारे बारे में हो या अभिजीत के बारे में हो या रत्ना या सौरभ या राहुल जी के बारे में हो, आपने ये भी देखा होगा राहुल जी जैसे ही चुनाव आयोग से मिलने गए कितनी बड़ी तादाद में फौज लगाई गई। ये सारी फोर्स जो बॉर्डर पे होनी चाहिए वो आप दिल्ली में लगा रहे हो, इतना डर क्यों है आपके मन में? किससे डरते हो आप? क्यों भय है इतना मन में?
2: और हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपेश, आज तो जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है, तो अभी इस समय मौजूदा स्थिति क्या है, कितने कलाकार आज सड़कों पर दिखाई दिए?
3: और जी राजीव, बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो है यहाँ पर पुलिस ब्रीफिंग शुरू है, सुबह से ही पुलिस यहाँ पर तैनात थी और टुकड़ों में जो है प्रोटेस्टर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस को हर सेकंड यहाँ पर चौकन्ना रहना पड़ रहा है। लगातार प्रोटेस्टर्स यहाँ पर कोने कोने से आ रहे हैं। यहाँ अगस्त क्रांति मैदान जाने के लिए कई सारे एंट्री पॉइंट्स हैं, जिनकी वजह से पुलिस को इस पूरे एरिया में नजर रखने के लिए काफी दिक्कतें हो रही हैं। आपको दिखा दें कि यहीं से 500 मीटर की दूरी पर जो है अगस्त क्रांति मैदान है, लेकिन इस जगह पर आने के लिए कई सारे एंट्री पॉइंट्स हैं। यहां पर कुछ ही देर पहले बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान भी पहुंचे थे उनके परिवार के साथ, तभी पुलिस ने उन्हें भी डिटेन कर लिया। उन्होंने भी अपने डिटेंशन का विरोध किया। 350 से ज्यादा लोगों को, 400 लोगों को अब तक डिटेन किया जा चुका है। सैकड़ों की तादाद में पुलिस फोर्स जो है वो यहां पर मौजूद है। दो रीजन की पुलिस फोर्स यहां पर देखने को मिल सकती है, साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो भी यहां पर तैनात है और लगातार पुलिस की ब्रीफिंग जो है वो यहां पर शुरू है कि किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया जाए, क्योंकि प्रोटेस्टर जो है वो लगातार उनके डिटेंशन का विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजीव
2: जी, बहुत शुक्रिया दीपेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आज दिन भर दिल्ली में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में आंख मिचौले का खेल चलता रहा, और क्या कुछ हुआ आपको विस्तृत रिपोर्ट दिखाते हैं।
4: एक बार फिर सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली से हंगामे की तस्वीरें सामने आई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच लुका छिपी का खेल देखने को मिला। दिल्ली में कई जगहों पर प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच एक्शन की तस्वीरें दिखाई दी। प्रदर्शनकारियों ने पाबंदी तोड़ने की कोशिश की तो सुरक्षा बलों ने उनकी धर पकड़ ली।
5: कनॉट प्लेस के रीगल थिएटर के पास की ये तस्वीरें, जहां पे बड़ी तादाद में आपको डिटेंशन दिखाई देगा। पैरा फोर्सेस के जवान है जो डिटेन करके प्रदर्शनकारियों को ले जा रहे हैं। देखिए बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी यहां पहुंचे थे, अब नारेबाजी करते हुए वो जा रहे हैं। सब युवा हैं, यंगस्टर्स हैं जिनको डिटेन किया गया है। दिल्ली पुलिस की ये गाड़ी है, रॉयड कंट्रोल व्हीकल है, उसमें डिटेन करके इन युवाओं को, प्रदर्शनकारियों को ले जा रहा है। दूसरी गाड़ी जो आप देख रहे हैं, उस गाड़ी के अंदर राकेश टिकैत गुट के किसान नेताओं को डाला गया है। आप देखिए एक तरह से जेल नुमा स्ट्रक्चर है उसके अंदर। आप जब एक बार डाल दिए जाते हैं गाड़ी के अंदर, तो कई बार हमने देखा बीते दिनों में कि प्रोटेस्टर्स गाड़ी से बाहर निकलकर, डिटेंशन से बाहर निकलकर आगे चले गए, लेकिन ये जो गाड़ियां लाई गई हैं वो जेल नुमा स्ट्रक्चर है। प्रदर्शनकारियों को खींचकर गाड़ियों के अंदर डाला जा रहा है।
4: दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में आज सिर्फ सुरक्षा बलों का जमावड़ा दिखा। बाजार बंद था, दुकानें बंद थी, सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा कर्मी दिखाई दे रहे थे, जिनके सामने चुनौती प्रदर्शनकारियों को गिरफ्त में लेने की थी।
6: मिंटो ब्रिज पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आईसा और तमाम लेफ्ट विंग के जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहां पर पहुंचे थे, जिनको पुलिस की तरफ से बड़े एक्शन के तहत डिटेन किया गया। ये देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में यहां पर प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंचे थे आईसा की तरफ से और तमाम अलग अलग संगठन की तरफ से। अब उनको यहां पर आप देखिए किस तरीके से पुलिस का एक एक्शन जो है वो यहां पर नजर आया है।
4: इससे पहले सीजेपी के अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को तो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया।
7: कर लो अरेस्ट होने के लिए आए हम, अरेस्ट होने के लिए आए हैं, आ जाओ कर लो अरेस्ट होने के लिए आए हैं सर, डरेंगे नहीं आपसे।
8: अभिजीत
7: नॉट अफ्रेड ऑफ
8: अभिजीत,
7: कर लो अरेस्ट।
8: भारत माता की।
4: कॉकरोच पार्टी के पदाधिकारी ये मानकर चल रहे थे कि मुंबई से दिल्ली पहुंचते ही पुलिस उन्हें गिरफ्त में ले लेगी। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो लगातार जारी हो रहे

0: थे जिसमें हिरासत में लेने की बात कही जा रही थी। लिहाजा मुंबई से प्लेन जैसे ही लैंड करता है दिल्ली पुलिस की टीम अंदर दाखिल होती है और सीजेपी के तीनों पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया जाता है।
1: अरे एक सेकंड मेरा अरे सुनने के लिए आया हूँ अरेस्ट मैं अरेस्ट सुनने के लिए आया हूँ
0: पुलिस ने अभिजीत दिपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को अलग अलग जगहों पर हिरासत में रखा। बाकी करीब 450 लोगों को छत्रसाल स्टेडियम में बनाए गए डिटेंशन सेंटर में भेजा गया।
2: छत्रसाल स्टेडियम में बस भर करके जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे अलग अलग जगहों में वहां से उनको यही सीधे छत्रसाल स्टेडियम लाया गया। इन्होंने अभी बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये लोग मिंटो ब्रिज पर प्रदर्शन कर रहे थे जहां से डिटेन करके इनको सीधे छत्रसाल स्टेडियम लाया गया। छत्रसाल स्टेडियम में पहले से ही पुलिस मौजूद है और इसको डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। इसके अंदर तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो मौजूद है।
0: यूट्यूबर ध्रुव राठी को सुबह ही गुरुग्राम से दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। प्रदर्शनकारियों को रोकने की जबरदस्त तैयारी के बीच आज दिल्ली में जोरदार हंगामा देखने को मिला। आज तक ब्यूरो।
3: अभिजीत दिपके को हिरासत में लिए जाने के बाद अब कांग्रेस जनता पार्टी की कमान अजिंक्य शिंदे को सौंप दी गई और इससे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सीजेपी ने आगे भी आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया और सीजेपी ने यह साफ कहा है कि कल भी वो जंतर मंतर की ओर कूच करेंगे और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से पहले यह आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। सीजेपी का कहना है प्रदर्शन जारी रहेगा और लक्ष्य क्या है सीजेपी का वो है सीसी का इस्तीफा।
4: दो तीन दिनों से आपने देखा होगा बस हवा और पानी छोड़ के उन्होंने जो रोकना था वो रोक लिया। हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि आपकी इस तानाशाही से हम डरेंगे नहीं। सरकार का ये डर दिखाता है, ये तानाशाही सरकार हमसे डर चुकी है, जनता से डर चुकी है और ये हमारे आंदोलन की आधी जीत है। ये आंदोलन सरकार को लगता होगा कि आज ही खत्म हो जाएगा, इनको डिटेन करेंगे तो ये आज ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये आंदोलन की नई शुरुआत है। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते और आज कितने भी लोग हम डिटेन कर दो हम कल वापस आएंगे, वापस हम जंतर मंतर की ओर कूच करेंगे।
3: उधर सोनम वांगचुक ने भी दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर एक्शन को लेकर सवाल खड़े किए हैं और सोनम ने चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों को रिहा नहीं किया गया तो वो भी इसके विरोध में उतरेंगे। नीट एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था और सोनम वांगचुक तब प्रदर्शन में बैठे थे सीजेपी के साथ और अब उन्होंने अल्टीमेटम दिया है।
5: बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं छात्र नेताओं की, युवा नेताओं की, वकीलों के, पत्रकारों की, यहां तक कि सांसदों की भी। कल जब मैंने आप लोगों को एक संदेश दिया था शांति और एकता बनाए रखने के आज के प्रदर्शनों में, तो मेरा मानना था कि दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति तो दी ही जाएगी, मगर अब लग रहा है कि जैसे कोई अघोषित आपातकाल या इमरजेंसी लगी है देश भर में। मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि ये सब गिरफ्तारियां खत्म कर दी जाएं आज शाम तक और मामलों को सुलझाया जाए, मगर अगर अगले 24 घंटों में भी गिरफ्तारियां नहीं हटाई गई तो मैं भी एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा।
3: दिल्ली में सीजेपी के अलावा सियासी पार्टियों ने भी मोर्चा संभाला जहां ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के बड़े बड़े नेता सड़कों पर उतरे, जबरदस्त हंगामा देखने को मिला।
6: चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। चुनाव आयोग के खिलाफ आज विपक्ष के कई नेताओं ने दिल्ली के सड़कों पर मोर्चा संभाला। सीजेपी से अलग ये नेता ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। हालांकि कांग्रेस ने खुद को इस प्रदर्शन से दूर रखा। पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर की ओर कूच किया जहां आप नेता संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज समेत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता साथ में थे जिन्हें हिरासत में ले लिया गया और पुलिस उन्हें पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले गई।
7: बहुत गुस्से में है जो लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं, मैं पूरे देश के लोगों को, युवाओं को हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, हम सब लोगों को मिलके देश को बचाना होगा। आप जहां भी हैं देश में, अभी निकलिए अपने घर से, दिल्ली की तरफ कूच कीजिए, दिल्ली आइए, स्कूटर पे आइए, पैदल आइए, बस में आइए, हवाई जहाज में आइए, ट्रेन में आइए, जैसे आ सकते हैं आइए, दिल्ली की तरफ कूच कीजिए। जहां मोदी जी आपको रोके वहीं बैठ जाओ, उसी जगह को जंतर मंतर बना दो, पूरे देश को जंतर मंतर बना दो, लेकिन मोदी जी को वोट चोरी करने से रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये देश नहीं बचेगा।
6: उधर ममता बैनर्जी टीएमसी के सांसदों संग साउथ एवेन्यू के बस स्टैंड पर धरना दे रही थी। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने उन्हें और कई टीएमसी नेताओं को हिरासत में ले लिया। बीजेपी सीजेपी के प्रदर्शन को विपक्ष की साजिश बता रही है, तो वहीं राहुल समेत इंडिया गठबंधन को कटघरे में खड़ा कर रही है।
8: कॉल आउट ऑल द पुलिस, 10,000, 20,000, 50,000, whatever you want. Arrest all the leaders, arrest all the young people, arrest us all, don't worry. We are surrounding you and we are not going to back down. Mark my words, we are surrounding you, we already have the information we need, we are not going to back down. We are going to defend our constitution, we are going to protect the voice of the Indian people. Of India, I'm proud of you. Keep protesting. We are standing with you. We are going to ensure that this regime and the people who have attacked our constitution is defeated.
9: राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलने के पश्चात राहुल गांधी जी का बयान एक नालायक नेता के बयान के समान है। मैं बहुत सोच समझ के ये शब्द, मुझे भी कुंठा हो रही है बोलते, तकलीफ हो रही है। आई एम सिटिंग ऑन अ वेरी हाई पेडेस्टल, ही इज द एलओपी ऑफ द कंट्री, मगर जब मैं कहता हूं एक नालायक नेता, इसलिए कहता हूं कि चलिए आपने प्रधानमंत्री के लिए जिस प्रकार के अब शब्दों का प्रयोग किया, झूठ बोला, वो पूरा देश देख रहा है।
10: कांग्रेस चुनाव हारने का प्रयास करता है और हारने का बाद सरकार को ब्लैकमेल करने का कोशिश करता है। जो लोग अपने आप को कॉकरोच बोलते हैं उनका बारे में आप क्यों बात करते हैं? आप तो जो अपने आप को युवा बोलता है उनका बात करो।
6: ज्ञानेश कुमार का मुद्दा अब सड़क पर उतर आया है, जहां घमासान अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं इंडिया ब्लॉग। 12 अक्टूबर को बड़े स्तर पर लोगों को जुटाने की योजना बना रहा है। इंडिया ब्लॉग के वरिष्ठ नेताओं से दिल्ली में मौजूद रहने का अनुरोध किया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं का मार्च 12 अक्टूबर को होने की संभावना है। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट को भी ज्ञापन सौंपने का फैसला किया है। सीपीएम और एआईटीसी का शीर्ष नेतृत्व इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकता है। ममता बैनर्जी ने कोलकाता लौटने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है, ये एक बड़ा अपडेट इसमें है। और वो अब 12 अक्टूबर को इंडिया ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। सीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर हुई कार्रवाई के बाद ये फैसला लिया गया है। अभिषेक बैनर्जी भी सोमवार को होने वाले विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली लौटेंगे। और एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। ममता बैनर्जी को हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। तो ये बड़ा अपडेट, आज प्रोटेस्ट ममता बैनर्जी करती हुई दिखाई दी, अलग अंदाज उनका हमेशा से जाना जाता है प्रोटेस्ट का। आज भी जो है मुंह पर उन्होंने बैंडेड लगाया, विरोध का एक अलग तरीका था। उन्होंने अपना एक बयान भी दिया, सेव इंडिया सेव डेमोक्रेसी, और अब दिल्ली पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज भी जुड़ गए हैं। अमित, ममता बैनर्जी को रिहा कर दिया गया और इंडिया ब्लॉक की बैठक का भी निर्णय लिया गया, तो क्या ये अचानक सब प्लान हुआ या पहले से प्लान था, और अब आगे क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है?
11: राजीव, देखिए 12 तारीख को विपक्ष एक बार फिर से सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। इस वक्त मैं सीपी में मौजूद हूं और तमाम जो युवा प्रदर्शनकारी थे इतने बैरिकेडिंग के बावजूद सीपी तक पहुंचे, प्रदर्शन किया और दिन भर उनको डिटेन करने की प्रक्रिया चलती रही। लेकिन 12 तारीख को अब अपोजिशन ने तय कर लिया है कि बड़ा मोबिलाइजेशन वो करने के लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में वैसा ही ज्ञापन सौंपा जाएगा जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर उनको ज्ञापन सौंपा गया सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि ममता बनर्जी ने आज जो सीजेपी पे एक्शन हुआ है उसके बाद वो तय किया है कि वो बंगाल वापस नहीं जा रही हैं, वो दिल्ली में ही रहेंगी और सोमवार को होने वाले मार्च में, मार्च को लेकर अभी प्लानिंग चल रही है, शामिल हो सकती हैं और बड़ा मोबिलाइजेशन दिल्ली में देखने को मिलेगा अब राजनीतिक दलों की तरफ से। अभिषेक बनर्जी भी कलकत्ता से वापस आ रहे हैं दिल्ली 12 तारीख को इस मार्च में शामिल होने के लिए। और इसके साथ साथ अपोजिशन के कई सारे नेता जो हैं वो देखे एक बार भगदड़। राजीव, ये जो हम बता रहे थे स्थिति आपको, फिर से पुलिस जो पैरा फोर्सेस है संभवतः वो वापस जो बच्चे इकट्ठा हुए थे, जो प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे उनको यहां से हटाने के लिए एक मार्च टाइप का हर थोड़ी थोड़ी देर पे चलता है जिसकी वजह से ऐसी स्थिति सीपी में बन रही है। लेकिन सोमवार को राजनीतिक दलों का जो प्रेशर है सरकार पे सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ वो बढ़ने वाला।
3: अच्छा अमित भाई, कल के बारे में तो बताएं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी मामला शांत हुआ नहीं, अभी भी जगह जगह चुनौती देते हुए दिख रहे हैं, आपके पीछे मूवमेंट है अभी ऐसी?
11: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल राजीव, ये तस्वीरें कनॉट प्लेस से लाइव है जो हम बात बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि हर थोड़ी देर में आपको जैसा आगे दिखेगा कि पैरा फोर्सेस हैं, पैरा फोर्सेस के जवान आगे बढ़ रहे हैं। ये एन ब्लॉक का पूरा इलाका है, जनपद से आगे आने वाला इलाका है जहां पे प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे, नारेबाजी हो रही थी, उसके बाद ये प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पैरा फोर्सेस के जवान मार्च करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक सबसे बड़ा फर्क जो हमें जुलाई और अक्टूबर के महीने में दिख रहा है वो ये है कि भले ही रॉयड गियर्स के साथ ये सारे पैरा फोर्सेस के जवान हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होगा, इनको सेक्टर बाय सेक्टर साइकोलॉजिकली पुशबैक किया जाता है, कुछ लोगों को डिटेन किया जाएगा, लिमिटेड जो 5 से 7 लोगों का इस्तेमाल करके पर्सनल एक एक प्रोटेस्टर को पिक करेंगे और फिर उनको बस में डालकर यहां से ले जाया जाता है। यही प्रक्रिया लगातार चल रही है। देखिए यहाँ पर जो साइकोलॉजिकली इनको पुशबैक किया जा रहा है, इन गलियों में पुशबैक किया गया है, यहाँ पैरा फोर्सेस रुक गई है और हर थोड़ी थोड़ी देर में अगर एक जगह पे ज्यादा युवा प्रदर्शनकारी इकट्ठा होते हैं तो ये प्रक्रिया होती है और फिर कुछ लोगों को डिटेन करके बस में डालकर ले जाया जाता है। राजीव,
3: ठीक है अमित, आप नजर बनाए रखें अपडेट्स के, लौटेंगे फिलहाल, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए और छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर, मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
2: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं, पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
3: इट्स माई वे।
4: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
5: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
4: असली शहद, असली स्वाद।
6: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
7: गड़बड़ है।
8: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: How's the hostel? Settled?
2: Yes, Mom, really nice.
1: कोई आ रहा है क्या?
3: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटी तो निभाली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले।
1: मयंक, फॉर रियल?
3: वन कैरेट फॉर माय वन ट्रू लव। नेचुरल डायमंड रियल लव सॉलिटेयर्स टू रीइग्नाइट योर न्यू सीजन ऑफ लव।
4: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
5: मेरे पास एक आइडिया है।
4: क्या?
5: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
6: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
7: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
8: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: कौन सी बनानी है?
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
10: लव एंड केयर, द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट रेंज ऑफ रबर पेट टॉयज।
11: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
12: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
11: अब मैं चैन की नींद सो पाता कपीवा डायबिटीज जूस।
13: एक दो, श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: जेके मैक्स वाइप इजी,
3: दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।
4: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ? पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
5: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।

15,210 फीट की ऊंचाई पर बर्फ की सफेद चादर, कड़ाके की ठंड और आस्था का अटूट विश्वास। चमोली जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। चारों तरफ बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछी है। कड़ाके की ठंड के बीच आज हेमकुंड साहिब और कल लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट बंद होंगे। बर्फबारी के चलते गुरुद्वारा परिसर और हेमकुंड साहिब मार्ग पर आवाजाही चुनौतीपूर्ण हो गई है। ऐसे में मशीनों के जरिए रास्तों से बर्फ हटाई जा रही है ताकि कपाट बंद होने के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। वहीं हेमकुंड साहिब के साथ बद्रीनाथ धाम और आसपास की ऊंची चोटियां भी बर्फ से ढक गई हैं। मौसम के बदले मिजाज के बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आसमान से गिरते बर्फ के फव्वारे, चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और इस कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालुओं की अटूट आस्था। हेमकुंड साहिब में आज अंतिम अरदास के बाद दोपहर 1 बजे कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही इस साल की यात्रा का समापन हो जाएगा। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: और अब बड़ी खबर आपको देते हैं। रिहाई के बाद ममता बनर्जी का बयान है और उन्होंने कहा है कि हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया है, हमें अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया। ममता बनर्जी आज प्रदर्शन कर रही थी और प्रदर्शन के दौरान फिर उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया और अब ममता बनर्जी जब रिहा हुए, हम उस समय की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बातचीत की मीडिया से और कहा कि हमें गैर कानूनी तरीके से रखा गया और हमारे साथ अपराधियों के जैसा व्यवहार किया गया।
1: रास्ता में चलने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, बैठने नहीं देंगे, मीडिया को भी कवर करने नहीं देंगे, तो ऐसे लोकतंत्र रहेगा किसके लिए? ऐसे सबसे ज्यादा खतरनाक उसका है जो लोग एक कर रहा है,
2: लोकतंत्र
1: मास्टर माइंड जो कर रहा है, एक खतरा उसका लिए है। इससे तो वो मूवमेंट का इम्पोर्टेंस ज्यादा भाव बढ़ता है। देखिए पूरा देश में शुरू हो गया आज का, पता है आपको कि हमारा जागो बांग्ला का प्रोग्राम था, मोहालया है हमारा, हमारे बांग्ला आज के मोहालया, हमारे जागो बांग्ला पत्रिकार उत्सव संकर उद्बोधन, लेकिन तब भी मैंने कोशिश किया जंतर मंतर में जाके उसको सपोर्ट करने के लिए, हर दफे हम लोग उसे सपोर्ट करके आया। इसका बाद भी जो हलचल हल हुआ, ये हम जिंदगी में कभी इतना एट्रोसिटीज नहीं देखा। प्रिजन वैन में ले आना, मेरे स्ट्रगल लाइफ में इतना स्ट्रगल किया एक्स्ट्रा से, इतना गवर्नमेंट मैंने देखा, इतना प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। अरे आपको गाड़ी नहीं था, हम रहते तो खाली हम लोग छः था, दो दो तीन तीन करके, तो थोड़ा बाद में गाड़ी मंग ले आया था, लेकिन प्रिजन वैन में लॉकअप करके हम लोगों को ले आने का क्या जरूरत है।
0: और इस समय एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। दिल्ली की सड़कों पर हलचल लगातार देखने को मिल रहे हैं और बड़ी खबर इस समय कनॉट प्लेस से मिल रही है, जहां पर कुछ प्रदर्शनकारी फिर एकत्रित हुए तो उन्हें फिर खदेड़ा गया है। दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन में दिख रहे हैं, दिल्ली के कनॉट प्लेस में लगातार गतिविधियां, जहां पर जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं और उनको फिर से खदेड़ा गया। थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता भी एक तस्वीर दिखा रहे थे, उस समय भी एकाएक प्रदर्शनकारी एकत्रित हो गए थे। और हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए। अमित, इस समय क्या तस्वीर है?
3: राजीव, देखिए वही प्रोसेस चल रहा है सुबह से लगातार। मैं एक बार कुंज को कहूंगा कैमरा जूम करके दिखाएं, ये वो सड़क है जो जनपद से जंतर मंतर के लिए जाती है, वहां बैरिकेड्स लगे हुए हैं, पैराफोर्सेस के जवान हैं। इस वक्त आपको प्रदर्शनकारी नहीं दिखाई दे रहे होंगे, उसका कारण ये है कि कुछ ही मिनटों पहले पैराफोर्सेस ने, दिल्ली पुलिस ने उन प्रदर्शनकारियों को यहां से खदेड़ा और ये जो बाइलेन्स हैं कनॉट प्लेस के, उनमें प्रदर्शनकारी चले जा रहे हैं, अंदर की गलियों में चले जा रहे हैं और जो गलियां हैं फिर वहां पे रहते हैं, फिर दिल्ली पुलिस छोड़ देती है, पैराफोर्सेस छोड़ देते हैं, लेकिन ये प्रोसेस लगातार चल रहा है। हर आधे घंटे के अंदर इस तरह की गतिविधि दिल्ली जो कनॉट प्लेस का सर्कल है, आउटर सर्कल है, उसमें देखने को मिल रहा है। और ऐसा हो क्यों रहा है वो भी समझिए आप, इतने क्लैम डाउन के बावजूद युवा जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहां तक पहुंचने में सफल रहे हैं। और मैं सुबह से देख रहा हूं कि कैसे आउटर सर्कल से, ये वाला सेक्टर एन ब्लॉक का सेक्टर है, साथ में रीगल सिनेमा का सेक्टर है, यहां पे बहुत मूवमेंट हलचल प्रदर्शनकारियों की लगातार है। कभी सेंट्रल पार्क के अंदर चले जाते हैं, कभी गलियों में भाग कर चले जाते हैं, पुलिस पैराफोर्सेस उनको चेस करती है, कुछ लोगों को डिटेन किया जाता है और बसों में डालकर उनको यहां से भेज दिया जाता है। हालांकि सुबह से मैंने जो देखा है मेजरली, मैं राजीव जरूर कहूंगा कि फोर्स का इस्तेमाल करने के बजाय हर प्रदर्शनकारी को उठाने के लिए 5 से 7 पर्सनल यूज कर रहे हैं, वह फोर्स मतलब उनको उठाने के लिए फोर्स इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन लाठी डंडों का इस्तेमाल इस बार नहीं हो रहा है। तो एक आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजी में तब्दीली है दिल्ली पुलिस की। राजीव,
0: अमित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आप सबके जहन में भी यह सवाल होगा कि अब आगे क्या होगा। आज दिन भर दिल्ली में प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच में कैसे आंख मिचोली चलती रही, दिन भर के एक्शन पर एक रिपोर्ट आप देखिए।
4: अक्टूबर की तारीख पहले से तय थी, दिल्ली पुलिस को अंदाजा था कि हालात क्या हो सकते हैं, इसीलिए ट्रेनें रद्द की, जंतर मंतर के आसपास का इलाका छावनी बनाया, इंटरनेट बंद किया, मेट्रो स्टेशन भी बंद रहे और जो प्रदर्शनकारी जहां दिखा वहीं धर्म। हंगामा तो हुआ, दौड़ भाग भी हुई, लेकिन प्रदर्शन नहीं हो पाया। दिल्ली पुलिस ने नेताओं को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा, सबको प्रदर्शन शुरू करने से पहले ही प्रिवेंटिव कस्टडी में भेज दिया। जिनकी कॉल पर इस प्रदर्शन का ऐलान किया गया था वो अभिजीत दीपके तो फ्लाइट के अंदर से ही पकड़ लिए गए। दोपहर में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी उतरी लेकिन उन्हें भी हिरासत में लिया गया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कई दिनों से 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की कॉल दी हुई थी। वो लगातार लोगों से दिल्ली आने की अपील कर रहे थे। जब ये खबरें आने लगी कि ट्रेन और मेट्रो कैंसिल हो रही हैं, भारी पुलिस बल की तैनाती हो रही है, तो तब भी दीपके चैलेंज कर रहे थे। लेकिन सुबह 10 बजे के करीब जैसे ही उनकी फ्लाइट दिल्ली में लैंड हुई, दिल्ली पुलिस फ्लाइट में ही चढ़ गई और वहीं से उन्हें उठा लिया। अभिजीत दीपके के साथ सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को भी पुलिस ले गई। इसके बाद दीपके ने एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो में कहा कि अब आंदोलन की कमान अजिंक्य शिंदे संभालेंगे।
2: हेलो एवरीवन, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, इसका मतलब मैं, आशु और सौरभ, हम तीनों अरेस्ट हो चुके हैं। हमारे बाद इस मूवमेंट को अजिंक्य लीड करेगा, तो आप जितने भी ये वीडियोज देख रहे हैं प्लीज फॉलो अजिंक्य शिंदे, ही विल बी कैरिंग फॉरवर्ड द कॉकरोच जनता पार्टी आफ्टर आशुतोष, मी एंड सौरभ। थैंक यू।
4: पुलिस ने पहले नेता को गिरफ्तार किया और फिर एक एक करके कार्यकर्ताओं को धरा, जो जहां दिखा वहीं से उठा लिया। शनिवार को दिल्ली में जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, पालिका बाजार और जनपद के आसपास की सड़कों पर खूब हंगामा रहा। सुबह से ही प्रदर्शनकारी जमा होने शुरू हो गए थे, लेकिन पुलिस ने इंतजाम ऐसे किए थे कि किसी को भी कदम जमाने का मौका नहीं मिला।
5: उसी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं और शांति बनाए रखने की अपील भी है और उसी के मेजर्स लिए जा रहे हैं।
6: कितने लोगों को डिटेन किया होगा नई दिल्ली इलाके से, कितने लोग
5: प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं?
6: अच्छा, कुछ लोगों पर पथराव भी किया पुलिसकर्मियों को, चोट आई?
5: हाँ, एक जगह पर पथराव।
4: दिल्ली पुलिस के जवान तो थे ही, पैरामिलिट्री भी भरपूर थी और यूपी पुलिस के जवानों को भी बुलाया गया था, क्योंकि दिल्ली पुलिस किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए तो जहां भी प्रदर्शनकारी मिला तुरंत पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, बसों में भरा और डिटेंशन सेंटर भेज दिया।
7: कनॉट प्लेस के रीगल थिएटर के पास की ये तस्वीरें, जहां पे बड़ी तादाद में आपको डिटेंशन दिखाई देगा। पैरा फोर्सेस के जवान हैं जो डिटेन करके प्रदर्शनकारियों को ले जा रहे हैं। देखिए, बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी यहां पहुंचे थे, अब नारेबाजी करते हुए वो जा रहे हैं। सब युवा हैं, यंगस्टर्स हैं जिनको डिटेन किया गया है। दिल्ली पुलिस की ये गाड़ी है, रॉयड कंट्रोल व्हीकल है, उसमें डिटेन करके इन युवाओं को, प्रदर्शनकारियों को ले जा रहा है। दूसरी गाड़ी जो आप देख रहे हैं, उस गाड़ी के अंदर राकेश चुकैत गुट के किसान नेताओं को डाला गया है। आप देखिए, एक तरह से जेल नुमा स्ट्रक्चर है उसके अंदर। आप जब एक बार डाल दिए जाते हैं गाड़ी के अंदर, तो कई बार हमने देखा बीते दिनों में कि प्रोटेस्टर्स गाड़ी से बाहर निकल कर, डिटेंशन से बाहर निकल कर आगे चले गए, लेकिन ये जो गाड़ियां लाई गई हैं वो जेल नुमा स्ट्रक्चर है। प्रदर्शनकारियों को खींच कर गाड़ियों के अंदर डाला जा रहा है।
4: सबसे ज्यादा हल्ला रहा कनॉट प्लेस और इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा पुलिस की तैनाती थी। पुलिस को पता था कि प्रदर्शनकारी यहीं जुटेंगे, इसीलिए सुबह से ही दिल्ली पुलिस यहाँ तैनात थी। वरिष्ठ अधिकारियों की भी तैनाती थी।
8: इस समय मैं दिल्ली के इनर सर्कल की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि पालिका बाजार के पास आप देख सकते हैं कैसे भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर उन्होंने अपना एक्शन मार्च शुरू कर दिया है। सीजेपी की तरफ से आज एक बड़ी कॉल दी गई थी, प्रोटेस्ट मार्च की कॉल दी गई थी, उसी को देखते हुए मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कैसे भारी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि दूसरी तरफ मैं आपको जनपद की तरफ दिखाना चाहूँगा कैसे भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे कहीं ना कहीं उनको काबू करने के लिए। जो दिल्ली पुलिस का एक्शन है यहाँ पर शुरू हो चुका है, आपने देखा कि कैसे रीगल सिनेमा से भारी मात्रा में जो डिप्लॉयमेंट है इस तरफ मूव करती है, जनपद की तरफ मूव करती है, इनर सर्कल होते हुए, पालिका बाजार होते हुए, और वही तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कैसे प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए अब जो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज का जो एक्शन है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक
4: दिक्कत ये थी कि प्रदर्शनकारी यहाँ गलियों के अंदर घुस जा रहे थे, पुलिस लगातार उन्हें दौड़ा रही थी, जैसे ही पुलिस दौड़ाती तो वो एक गली से घुसकर दूसरी गली से निकल आते, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवानों को साफ ऑर्डर था कि किसी को नहीं छोड़ना है, सबको प्रिवेंटिव कस्टडी में लेना है।
9: कनॉट प्लेस जनपद का ये इलाका है और यहाँ पर एक एक करके जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। धीरे धीरे कर यहाँ पर जो भीड़ थी वो बढ़ रही थी प्रदर्शनकारियों की, और उसके बाद जो अलग अलग छोटी छोटी गलियाँ हैं इन इलाकों में वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको डिटेन किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, और उनको अब गलियों से ढूंढ ढूंढ कर जो पुलिस है पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो डिटेन करके लेकर जा रही है। तो अलग अलग तस्वीरें देखिए चारों तरफ, कहीं भी अगर आपको मेरे कैमरा पर्सन हिमांशु दिखाएंगे तो एक एक करके जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहाँ पर डिटेन किया गया है। तो एक तस्वीर जो थी वो यहाँ पर थोड़ी देर से हम लोग देख रहे थे कि प्रदर्शनकारी एक एक कर यहाँ पर जमा हो रहे थे, और उसके बाद अचानक से जो पुलिस है पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो यहाँ पर आती हैं और इन प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर लेकर गई।
4: कॉकरोच जनता पार्टी की प्रदर्शन की कॉल पर ये प्रदर्शनकारी जमा तो हो गए, लेकिन शायद इन्हें ये अंदाजा नहीं था कि पुलिस की इतनी बड़ी तैनाती होगी। ये सब जंतर मंतर जाना चाहते थे, लेकिन वहां से कई किलोमीटर पहले ही पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया।
10: प्रदर्शनकारियों का टेंपल रन शुरू हो गया है, प्रदर्शनकारियों का टेंपल रन शुरू हो गया है, वो एक तरह से इस सेक्टर से दौड़ के भाग रहे हैं और पुलिस उनको यहाँ से हटाते हुए दिखाई दे रही है। बीते एक घंटे से यहाँ पर ये प्रदर्शनकारी जेंजी युवा प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे, ज्ञानेश कुमार सीसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वोट चोरी के बारे में नारेबाजी कर रहे थे, जो विपक्ष का आरोप है उसी तरह के नारेबाजी यहाँ पर सुनाई दे रहा था। बीते एक घंटे से यहाँ ये जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन अब अचानक से दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आती है और इस सेक्टर में भी जो प्रदर्शनकारी थे उनको हटाया जा रहा है।
11: बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत, ये देश में जो सरकार है ना बहुत गलत कर रही है सर, बहुत ज्यादा गलत कर रही है।
10: हटाया जा रहा है, कहाँ आए थे आप लोग?
12: प्रोटेस्ट
10: करने के लिए आए थे। अभिजीत को डिटेन किया गया, उसके बावजूद आप लोग यहाँ पहुँच गए हैं?
12: वो भले से उनको डिटेन कर लिया गया हो, लेकिन हम उनके सपोर्ट में हैं।
10: किसी पार्टी से हैं आप?
12: नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं बस उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, कॉकरोच जनता पार्टी को।
10: आप लोग नारे लगा रहे थे इसलिए डिटेन हो रहे हैं?
12: हाँ जी, सपोर्ट कर रहे थे इसलिए हमको डिटेन किया गया है।
4: प्रदर्शनकारियों ने शाम शाम तक भी कोशिश की कि किसी भी तरीके से वो कनॉट प्लेस से जंतर मंतर की तरफ चले जाएं, लेकिन पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी, पुलिस ने किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया।
8: दूसरी तरफ मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैसे दिल्ली पुलिस ने यहां पर डिटेन करना शुरू कर लिया। देखिए जो प्रदर्शनकारी थी उनको उठाना शुरू कर दिया। वहीं मैं अपना कैमरा सहयोगी अजय जी से कहूंगा एक तस्वीर उस तरफ की भी दिखाएं कि जैसे ही यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचते हैं प्रदर्शनकारी भागने लग जाते हैं। तस्वीरें मैं आपको इनर सर्कल की दिखा रहा हूं, एन ब्लॉक की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे जैसे ही प्रदर्शनकारी देखते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवान उनको डिटेन करने के लिए आ रहे हैं वो भागते हुए दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं। और पहली बार नहीं, सुबह से देखा जा रहा है कि जैसे ही प्रदर्शनकारी इकट्ठे होते हैं जनपद के पास रीगल सिनेमा के पास ब्लॉक ए के पास, वहीं देखा जाता है कि भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं इकट्ठे होकर उनको डिटेन करना शुरू कर देते हैं।
4: जब पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को दौड़ा रही थी तो कुछ प्रदर्शनकारी बंगला साहिब गुरुद्वारे के अंदर भी चले गए। दिल्ली पुलिस ने उनका पीछा किया लेकिन गुरुद्वारे के गेट पर रुक गई और अंदर नहीं गई।
13: अभी भी जो सबसे बड़ा चैलेंज दिल्ली पुलिस के लिए, यहाँ अगर सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो वहाँ वो बना हुआ है ये गुरुद्वारा बंगला साहिब, क्योंकि इसके अंदर कई सारे जो प्रदर्शनकारी हैं वो जाकर के रुके हुए हैं और हर कुछ देर में बाहर आते हैं, नारे लगाते हैं और जैसे ही पुलिस उन्हें पकड़ने जाती है वापस अंदर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस उन्हें गुरुद्वारे के अंदर घुस के नहीं पकड़ेगी। और याद रखिए ज्यादातर सीजेपी के लोग नहीं है, ये सारे लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के, एसएफआई के और आयसा के।
0: विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
3: गड़बड़ है।
4: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।

0: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बात सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
1: मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
1: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
2: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
3: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
2: कौन सी बनानी है?
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
6: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
7: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
6: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। कपिवा डायट्री जूस।
8: एक दो विश्राम।

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: जेके मैक्स वाइप इजी,
3: दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है।
4: मैं मायावती सत्यनिष्ठा के प्रतिज्ञा करती हूँ।
5: मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
6: मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
3: ये भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस।
8: मेरे पास एक आइडिया है।
7: क्या?
8: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
9: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
10: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
11: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
8: कौन सी बनानी है?
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
13: जेके मैक्स वाइप इजी, दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।
14: राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलने के पश्चात राहुल गांधी जी का बयान एक नालायक नेता के बयान के समान है। मैं बहुत सोच समझ के ये शब्द, मुझे भी कुंठा हो रही है बोलते, तकलीफ हो रही है। आई एम सिटिंग ऑन अ वेरी हाई पेडेस्टल, ही इज द एलओपी ऑफ द कंट्री, मगर जब मैं कहता हूं एक नालायक नेता, इसलिए कहता हूं कि चलिए आपने प्रधानमंत्री के लिए जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया, झूठ बोला, वो पूरा देश देख रहा है। आपने जिस प्रकार से भारत के संवैधानिक पदों के लिए, संवैधानिक संस्थाओं के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, पूरा भारत सुन रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति को सड़क की लड़ाई में घसीटने का प्रयास किया गया, मगर एक नालायक नेता ने राष्ट्रपति महोदया को सड़क की लड़ाई में घसीटने की कोशिश की है। अब देखिए, बेसिक प्रोटोकॉल भी राहुल गांधी को समझ में नहीं आता है कि आप कोई मेमोरेंडम लेके जाते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट्स द मेमोरेंडम। ये बेसिक प्रोटोकॉल है भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का, इसीलिए तो भारत का लोकतंत्र विराट है। मगर आपने कहा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसी सांस में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कुछ एविडेंस है तो वो भी दीजिए। क्यों एविडेंस क्यों नहीं लेके गए थे? एविडेंस होगा तभी तो लेके जाएंगे। जब प्रेसिडेंट मैडम कहती है कि एविडेंस है तो दिखा दीजिए, बाद में एविडेंस देंगे। अगर बाद में एविडेंस देंगे तो आप गए क्यों थे? तो आप प्रेसिडेंट के पास गए क्यों थे बिना एविडेंस के? मतलब इतने दिनों से, मैं तो कहूंगा लगभग एक साल हो गया, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी करते हुए, उसका एविडेंस आपके जेब में रहना चाहिए था। क्यों नहीं था आपके जेब में? क्यों गए थे राष्ट्रपति भवन बिना एविडेंस लेके? और बाहर आके नालायक नेता कहता है कि राष्ट्रपति महोदया मान गई कि हम जो कह रहे। आप सोचिए, यह व्यक्ति लायक है क्या देश के प्रधानमंत्री या एक उच्च पद में बैठने के? He himself proved that he is not responsible enough to occupy a high position in India.

0: पड़े
1: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई। ट्रैवल एजेंट कोई गांजा फूंक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
1: तुम्हारा
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
0: यार काट देना ये।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

दिल्ली में सीजेपी लेफ्ट और समर्थकों के प्रदर्शन पर पुलिस की जबरदस्त सख्ती। एयरपोर्ट से हिरासत में लिए गए दिपके, रांका और सौरभ दास। हिरासत के बाद ममता और केजरीवाल रिहा। सीजेपी के प्रदर्शन पर बीजेपी का ताबड़तोड़ हमला, कहा सड़कों पर अराजकता की साजिश। राहुल का बयान, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जारी रहेगी जंग। मुंबई में भी सीजेपी का प्रदर्शन, हिरासत में 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारी। अगस्त क्रांति मैदान से एक्टर इमरान खान पर भी पुलिस का शिकंजा। चेन्नई में छात्रों के बीच राहुल की गूंज, कहा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं पीएम मोदी। तमिल भाषा और संस्कृति पर प्रधानमंत्री के हमले का आरोप लगाया। अब योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को दी चुनौती, कहा अयोध्या से चुनाव में हो जाए आमना सामना। अखिलेश का जवाब, हमारा युवा पीडीए प्रहरी काफी।

0: रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है खबरदार के स्पेशल एडिशन का। दिल्ली से लेकर मुंबई तक में सीजेपी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच लुका छिपी का खेल दिन भर चल रहा। दिल्ली पुलिस की तैयारियों के चलते सीजेपी प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर नहीं पहुंच पाए, पुलिस ने उन्हें पहले ही हिरासत में ले लिया। 3000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को आज हिरासत में लिया गया है। बीजेपी ने सीजेपी के प्रदर्शन को फ्लॉप शो बताया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सीजेपी आगे भी प्रदर्शन करेगी? उसके नेता हिरासत से कब छोड़े जाएंगे? उसके बाद क्या वो दोबारा जंतर मंतर पर जाने की कोशिश करेंगे? क्या दिल्ली इसी तरह से छावनी बनी रहेगी? सवाल कई हैं, लेकिन सबसे पहले बात अभिजीत दिपके को हिरासत में लिए जाने को लेकर आज तक की आंखों देखी, जिसमें बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसका शायद अंदाजा सीजेपी के किसी नेता को भी नहीं था।
1: कि द एनार्किस्ट्स हैव फेल्ड और उनका ये फ्लॉप शो नहीं चलने वाला है।
2: कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर बीजेपी ने यह दावा शायद इसलिए किया क्योंकि दिल्ली पुलिस सीजेपी पर शुरुआत से भारी पड़ी।
3: भारत माता की जय।
4: लोग चैंट कर चुके हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं।
2: अभिजीत दिपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका जब दिल्ली पहुंचे तो उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। दिल्ली पहुंचते ही पुलिस से प्लेन में ही आमना सामना होगा, इसका अंदाजा अभिजीत दिपके को दूर दूर तक नहीं था।
5: सो ये हम लोगों को उठाने के लिए दिल्ली पुलिस प्लेन में ही आ रही है, यू कैन सी इट। दिल्ली पुलिस के सारे ऑफिसर्स अभी प्लेन में घुस रहे, हम लोग अभी जस्ट लैंड ही हुए थे। सारे के सारे लोग दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स यहाँ लाइन में खड़े, हमें प्लेन के अंदर से उठाने की कोशिश कर रही है।
2: इसके बाद महिला पुलिसकर्मी समेत दिल्ली पुलिस की टीम फ्लाइट में पहुंची और दीपके की ओर बढ़ी। उनके पहुंचने से पहले ही अभिजीत दीपके कहने लगे, लो कर लो अरेस्ट,
6: आ जाओ कर लो अरेस्ट, अरेस्ट होने के लिए आए हम, अरेस्ट होने के लिए आए, आ जाओ कर लो अरेस्ट, अरेस्ट होने के लिए आए सर, डरेंगे नहीं आपसे, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ यू, कर लो अरेस्ट।
2: सामने आए वीडियो में एक महिला पुलिसकर्मी पूरी टीम के साथ दीपके के पास पहुंची, चलने को कहा। इसके बाद दीपके हाथ जोड़कर खड़े नजर आए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस भी हुई।
6: अरे क्यों आप लोग फ्लैट में कैसे आ गए?
7: आपकी परमिशन जो प्रोटेस्ट की थी, परमिशन डिनाई कर दी गई।
6: अरे डिनाई कर दी तो आप लोग तो आप फ्लैट में आ जाओगे उसके लिए? ये बात तो मुझे बाहर आने के ये बात तो मुझे आप बाहर आने के बाद भी बोल सकते थे ना।
2: विमान के अंदर पुलिसकर्मियों से बातचीत के दौरान अभिजीत दिपके ने कहा कि मैं यहां गिरफ्तार होने आया हूं। इस पर पुलिसकर्मियों ने जवाब दिया कि नहीं, ये गिरफ्तारी नहीं है, प्लीज सहयोग कीजिए। तो मुंबई में दिल्ली पुलिस को ललकारने वाले अभिजीत दिपके और उनकी टीम विमान में हिरासत में ले ली गई, जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या अभिजीत दिपके का दिल्ली प्लान फेल हो गया?
8: देश की 140 करोड़ जनता जो सुख शांति के साथ भारत के विकास में सबका सहयोग मिल रहा है,

0: और दूसरे गुट का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी कर रही है।
1: बीजेपी के हौसले बुलंद होने की वजह विमान के अंदर की तस्वीरें हैं। वो आम लोग हैं जो बीजेपी की तरफ से जारी वीडियो में सौरभ दास को शर्म करो कहते सुने गए। सबसे बड़ी बात, जब अभिजीत दिपके को हिरासत में लेने पुलिस आई तब सीजेपी की तरफ से की गई नारेबाजी में आम मुसाफिरों ने सुर नहीं लगाया।
2: भारत माता की जय।
1: अब ये वीडियो दोबारा से देखिए। इस वीडियो में आशुतोष रांका को पुलिस ले जा रही है, वो भारत माता की जय बोलते हैं। फिर सौरभ दास दिखते हैं, तभी एक महिला यात्री की आवाज आती है कि पहले निकल जाते तो बाकी यात्रियों को इतना इंतजार करना नहीं पड़ता। ये सुनते ही सौरभ दास उस महिला को शर्म करो बोलते हैं, जिसके जवाब में महिला भी सौरभ दास को शेम ऑन यू कहती है। लोगों की आवाज आती है, निकलो यहाँ से। महिला एक बार फिर बोलती है, यूजलेस पीपल। वीडियो के बीच में अब अभिजीत दिपके आते ही दिखते हैं और फिर उनके जाते ही आवाज आती है, कचरा साफ स्वच्छ भारत अभियान। इस फ्लाइट में आज तक संवाददाता मुस्तफा शेख भी थे, जो मुंबई से अभिजीत दिपके और उनके साथियों के साथ इसी फ्लाइट में दिल्ली आए। मुस्तफा के मुताबिक अभिजीत, सौरभ और आशुतोष पूरे रास्ते इसी बात का अनुमान लगा रहे थे कि आगे क्या होगा। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि विमान में ही उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा।
3: अभिजीत दिपके को जिस तरह से पुलिस द्वारा फ्लाइट के अंदर घुस डिटेन किया गया, थोड़ी देर के लिए फ्लाइट में अफरा तफरी मच गई थी। पैसेंजर्स चाहते थे वो पहले उतरे, लेकिन पुलिस कर्मी जो है वो प्लेन के अंदर आए, महिला पुलिस कर्मी आगे की तरफ थे। एक एक कर उन लोगों को डिटेन किया गया। कई पैसेंजर्स अभिजीत दिपके और उनकी टीम पर नाराज भी थे, लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह की प्रोटेस्ट करने के लिए सीजेपी के लोग दिल्ली आए थे, वो प्रोटेस्ट हो नहीं पाया है। अब आगे इस प्रोटेस्ट का क्या पड़ाव रहता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा।
1: पिछली बार जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सीजेपी ने विरोध किया था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी के हौसले बुलंद थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की तैयारी इस बार सीजेपी पर भारी पड़ी। विमान के अंदर भी जो कुछ हुआ, जिस तरह से सौरभ दास को एक महिला यात्री ने शर्म करने को कहा, उसके बाद बीजेपी कह रही है कि अराजक लोगों की भारत को बंधक बनाने की कोशिश नाकाम हो गई।
4: कोशिश थी कि यहां आगजनी हो, कोशिश थी कि यहां मार पिटाई हो, कोशिश थी कि यहां पर सड़कों पर लड़ाई हो, मगर आज भीड़ तंत्र पर लोकतंत्र की जीत हुई है। जिस प्रकार लोकतंत्र ने आज दिल्ली में प्रदर्शन किया है और जिस प्रकार से सारा विषय कंट्रोल में है, एक बात मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि द अनार्किस्ट्स हैव फेल्ड और उनका ये फ्लॉप शो नहीं चलने वाला है।
5: सीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर अलग अलग पार्टियों के नेताओं को भी हिरासत में लिया गया था। खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को पुलिस हिरासत से छोड़ दिया गया है। केजरीवाल को पुलिस ने जाफरपुर थाने में बंद कर रखा था और ममता बनर्जी को दिल्ली के द्वारका थाने में रखा गया था। अब खबरों के अनुसार इन दोनों नेताओं को पुलिस हिरासत से छोड़ दिया गया है। बीजेपी ने कहा है कि वो प्रदर्शन के खिलाफ नहीं है, लेकिन सीजेपी के पीछे आम आदमी पार्टी है और ये सब आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश के लिए किया जा रहा है।
0: आज देश में बेहद ही खतरनाक और गंभीर स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। देश की 140 करोड़ जनता जो सुख शांति के साथ भारत के विकास में सबका सहयोग मिल रहा है, उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है।
1: बीजेपी का आरोप है कि देश को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। ऐसा करने वालों में एक तरफ राहुल गांधी हैं, तो दूसरी तरफ है कांग्रेस जनता पार्टी।
0: मैं इन दोनों गुटों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत की जनता पूरी तरह से आपके इन उद्देश्यों को देख रही है।

0: और आज जो आपका एनार्किस्ट प्रतिस्पर्धा चल रहा है कि कौन अधिक इस देश में अस्थिरता पैदा कर सकता है, ये आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे।
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर राहुल गांधी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को वो आकाशवाणी कैंपस में धरने पर बैठ गए तो अगले दिन उन्होंने जंतर मंतर पर धरना देने की कोशिश की। बीजेपी का कहना है कि ये सब देश में अराजकता फैलाने की कोशिश है, जिसका खामियाजा आम आदमी को उठाना पड़ रहा है। इसी अराजकता की आग में घी डालने के मकसद से सीजेपी ने दिल्ली का प्लान बनाया, लेकिन वो फेल हो गया।
2: इंडियन डेमोक्रेसी हैज डिस्ट्रॉयड द क्वेस्ट फॉर एनार्की। अराजकता को प्रोत्साहित करने की कोशिश को भारत के लोकतंत्र ने ध्वस्त किया है। एक और संदेश गया है कि देश संसद से चलेगा, सड़क से नहीं।
1: कांग्रेस जनता पार्टी को इस बार कितना समर्थन मिलेगा, इस पर सबकी नजर थी, लेकिन विमान में जिस तरह से आम लोगों के तेवर दिखे, उसने बीजेपी के हौसले बुलंद कर दिए। क्योंकि अभिजीत दिपके के साथ विमान से दिल्ली पहुंचे मुसाफिरों ने विरोध प्रदर्शन के इस तरीके पर ऐतराज जताया।
3: 20-25 मिनट हो गए,
4: परेशानी हुई?
3: हाँ, परेशानी तो होगी। सी, हर एक का टाइम इम्पोर्टेंट है। इतने आदमी, आप सोचो ना, 100-150 आदमी अगर है, उसके 20 मिनट जा रहे, टोटल कितना वेस्ट हुआ टाइम। प्रॉब्लम तो होती है ना, आज भी अब जाएंगे, अब क्या आगे क्या प्रॉब्लम होगी हमें पता नहीं। तोलन गांधी जी ने करा अंग्रेजों के खिलाफ, आप कर रहे हो अपने आदमियों के खिलाफ। लड़ो ना, कोर्ट्स हैं, कोर्ट कचहरी में जाओ, खूब लड़ो, पैसा भी है। दे आर ट्रेवलिंग बिजनेस क्लास, वकीलों को पैसा दे के लड़ो केस। सही है या नहीं है बताइए आप। आम पब्लिक को क्यों परेशान? ये जनता परेशान है सिर्फ इन लोगों के, कुछ लोगों के लिए।
4: जनता का ही वोट कटा है सर।
3: हाँ तो
4: पूरे फर्क नहीं पड़ रहा।
3: पड़ेगा, अगर गलत वोट कटा है तो पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगी उसको, ये नहीं देखने वाले। ये डिसाइड, अगर आम जनता प्रोटेस्ट करके ये सारी चीज ठीक करने लगे तो कोर्ट्स को बंद कर दो। सी, देयर इज अ सिस्टम विच वी फॉलो। आप सिस्टम को बंद कर दो, आप सो कहो कि देयर इज नो सुप्रीम कोर्ट, हम कोई भी प्रॉब्लम होगी विल प्रोटेस्ट, विल दैट हेल्प यू, ओनली टेल मी।
1: बीजेपी भी चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष और सीजेपी के विरोध को भीड़ तंत्र करार देती है। दावा करती है कि लगातार हो रही हार का नतीजा है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का विश्वास जीतने में वो लगातार कामयाब हो रही है। बीजेपी का इशारा उपचुनाव के नतीजों की तरफ है, जहां पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की।
2: कल रिजल्ट आए, असम में भाजपा जीती, नंदीग्राम में जीती, और एक क्षेत्र तो 70% अल्पसंख्यक मतदाता प्रभावित है, वहां भी बीजेपी 70,000 प्लस से जीती। पांडिचेरी में एनडीए जीता जनता, और ये सब चुनाव तब हुए हैं जब ये सारी खुराफा दिल्ली में हो रही है।
5: कोशिश थी कि यहां मार पिटाई हो, कोशिश थी कि यहां पर सड़कों पर लड़ाई हो, मगर आज भीड़ तंत्र पर लोकतंत्र की जीत हुई।
1: बीजेपी ने राहुल गांधी की राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर भी सवाल उठाए और पूछा, अगर विपक्ष के पास वोट चोरी या चुनावी गड़बड़ी के सबूत थे तो उन्हें ज्ञापन के साथ ही क्यों नहीं सौंपा गया?
5: अब देखिए, बेसिक प्रोटोकॉल भी राहुल गांधी को समझ में नहीं आता है कि आप कोई मेमोरेंडम लेके जाते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट्स द मेमोरेंडम। ये बेसिक प्रोटोकॉल है भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का, इसीलिए तो भारत का लोकतंत्र विराट है। मगर आपने कहा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और उसी सांस में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कुछ एविडेंस है तो वो भी दीजिए। क्यों एविडेंस क्यों नहीं लेके गए थे? एविडेंस होगा तभी तो लेके जाएंगे।
6: दिपके के हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस जनता पार्टी की कमान अजिंक्य शिंदे को सौंप दी गई है। इसी से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर है, सीजेपी ने आगे भी आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। सीजेपी ने साफ कहा है कि कल भी वो जंतर मंतर की ओर कूच करेंगे और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से पहले यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है।
7: दो तीन दिनों से आपने देखा होगा बस हवा और पानी छोड़ के उन्होंने जो रोकना था वो रोक लिया। हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि आपकी इस तानाशाही से हम डरेंगे नहीं। सरकार का ये डर दिखाता है, ये तानाशाही सरकार हमसे डर चुकी है, जनता से डर चुकी है, और ये हमारे आंदोलन की आधी जीत है। यह आंदोलन सरकार को लगता होगा कि आज ही खत्म हो जाएगा, इनको डिटेन करेंगे तो ये आज ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन यह आंदोलन की नई शुरुआत है। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, और आज कितने भी लोग काम डिटेन कर दो, हम कल वापस आएंगे, वापस हम जनदर मंत्र की ओर कूच करेंगे।
6: उधर सोनम वांगचुक ने भी दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर एक्शन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सोनम वांगचुक ने चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों को छोड़ा नहीं गया तो वो भी इसके विरोध में उतर जाएंगे।
8: तो मेरा मानना आज दिल्ली में बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, छात्र नेताओं की, युवा नेताओं की, वकीलों के, पत्रकारों की, यहाँ तक कि सांसदों की भी। कल जब मैंने आप लोगों को एक संदेश दिया था शांति और एकता बनाए रखने के आज के प्रदर्शनों में, तो मेरा मानना था कि दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति तो दी ही जाएगी, मगर अब लग रहा है कि जैसे कोई अघोषित आपातकाल या इमरजेंसी लगी है देश भर में। मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि ये सब गिरफ्तारियां खत्म कर दी जाएं आज शाम तक और मामलों को सुलझाया जाए, मगर अगर अगले 24 घंटों में भी गिरफ्तारियां नहीं हटाई गई तो मैं भी एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा।
6: हालांकि पुलिस की तरफ से भी साफ किया गया है कि गिरफ्तारियां नहीं है बल्कि हिरासत में लिया गया है। बहरहाल सीजेपी के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली में कल रात 9 बजे से बंद रहे 45 मेट्रो स्टेशन 10 बजे तक बंद रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर जो तैयारी की थी उसका असर आज देखने को मिला और एक भी प्रदर्शनकारी जंतर मंतर तक नहीं पहुंच पाया।
9: बीजेपी समर्थकों के भागने और पुलिस के उन्हें पकड़ने की तस्वीर दिल्ली में चारों तरफ देखने को मिली। इस दौरान कई बार पुलिसकर्मी भी पत्थरों की जद में आते दिखे। देखे किस तरह से प्रदर्शनकारी और दिल्ली पुलिस आमने सामने नजर आई।
10: चाहे वो महिला प्रदर्शनकारी हो या युवा प्रदर्शनकारी हो, एक एक करके आपको लगातार यही सीक्वेंस दिखाई देगा। ऐसे ही पैरा फोर्सेस के जवान दौड़ते हुए दिखाई देंगे और एक एक करके, बड़ी तादाद में नहीं, एक एक इंडिविजुअल को पहले डिटेन किया जा रहा है। और ये बसें अलग है, हमने देखा कि बीते दिनों में बसेस तोड़ के, कांच तोड़ के युवा जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बाहर निकले। ये ऐसी बसें लेकर आई गई है इस बार जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप बाहर निकल सकते हो।
9: दिल्ली पुलिस की तरफ से इस बार प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पहले से बड़ी तैयारी की गई थी। उदाहरण के तौर पर ये गाड़ी ही देखिए जिसमें पुलिस ने वैन में चैनल लगा दिए, जिसमें प्रदर्शनकारियों को पकड़कर अंदर डाल दिया जाता और चैनल लगा दिया जाता ताकि कोई दोबारा बाहर न निकल सके।
10: कनॉट प्लेस के रीगल थिएटर के पास की ये तस्वीरें जहां पे बड़ी तादाद में आपको डिटेंशन दिखाई देगा। पैरा फोर्सेस के जवान हैं जो डिटेन करके प्रदर्शनकारियों को ले जा रहे हैं। देखिए बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी यहां पहुंचे थे, अब नारेबाजी करते हुए वो जा रहे हैं। सब युवा हैं, यंगस्टर्स हैं जिनको डिटेन किया गया है। दिल्ली पुलिस की ये गाड़ी है, रॉयड कंट्रोल व्हीकल है, उसमें डिटेन करके इन युवाओं को, प्रदर्शनकारियों को ले जा रहा है। दूसरी गाड़ी जो आप देख रहे हैं उस गाड़ी के अंदर राकेश चुकैत गुट के किसान नेताओं को डाला गया है। आप देखिए एक तरह से जेल नुमा स्ट्रक्चर है उसके अंदर। आप जब एक बार डाल दिए जाते हैं गाड़ी के अंदर तो कई बार हमने देखा बीते दिनों में कि प्रोटेस्टर्स गाड़ी से बाहर निकल कर, डिटेंशन से बाहर निकल कर आगे चले गए, लेकिन ये जो गाड़ियां लाई गई हैं वो जेल नुमा स्ट्रक्चर है। प्रदर्शनकारियों को खींच कर गाड़ियों के अंदर डाला जा रहा है।
9: दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सिर्फ वैन में ही नहीं डाला, दिल्ली में बने डिटेंशन सेंटर में भी ले जाती दिखी।
11: ये देश में जो सरकार है ना बहुत गलत कर रही है, बहुत ज्यादा गलत कर रही है।
10: क्या आप लोगों को डर नहीं था आज प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ आए, जबकि अभिजीत दीपके को भी पहले डिटेन किया गया है?
12: जो युवा प्रोटेस्टर्स हैं, यंग प्रदर्शनकारी हैं, जो कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में थे, वो इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे और सी सी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे लगाते हुए यहाँ से जा रहे हैं।
9: दिल्ली पुलिस की तरफ से जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में जबरदस्त तैयारी देखी गई। जंतर मंतर से 4 किलोमीटर के दायरे में किसी को भी आने की मनाही थी, बावजूद इसके प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं थे। दिल्ली में कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच एक्शन की तस्वीरें दिखी। प्रदर्शनकारियों ने पाबंदी तोड़ने की कोशिश की तो सुरक्षा बलों ने उनकी धरपकड़ की।
13: मिंटो ब्रिज पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आईसा और तमाम लेफ्ट विंग के जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, जिनको पुलिस की तरफ से बड़े एक्शन के तहत डिटेन किया गया। ये देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंचे थे आईसा की तरफ से और तमाम अलग अलग संगठन की तरफ से। अब उनको यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से पुलिस का एक एक्शन जो है वो यहाँ पर नजर आया है। कनॉट प्लेस से तमाम फोर्सेस को जो है वो मिंटो के पास, मिंटो अंडरपास के पास जो है वो पुलिस की तरफ से बुलाया गया और उसके बाद बड़ा एक्शन, क्योंकि बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो दरअसल कनॉट प्लेस के अंदर मिंटो के पास से ही अंदर आ रहे थे और ऐसे में पुलिस की तरफ से अब इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर देखिए किस तरीके से डिटेन किया गया। आपको तस्वीरें दिखाएं कि वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो और भी कई संख्या में, बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी देखिए यहाँ पर आपको नजर आएंगे। पुलिस अब बल का भी प्रयोग कर रही है, कहीं ना कहीं कई प्रदर्शनकारी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको यहाँ से हटा रहे हैं।
9: दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में आज सिर्फ सुरक्षा बलों का जमावड़ा दिख रहा था। बाजार बंद था, दुकानें बंद थी, सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा कर्मी थे।
13: इस वक्त मैं कनॉट प्लेस के रीगल सिनेमा में हूँ। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो गहमा गहमी है और कुछ लोगों को हिरासत में यहाँ पर लिया गया है और लेकर जा रही है यहाँ पर, तो ये स्थिति यहाँ पर है। फिलहाल बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बलों की तैनाती आप रीगल सिनेमा के पास देख पाएंगे, जो गहमा गहमी की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ फिलहाल तस्वीर दिखाई दे रही है। कुछ डिजिटल मीडिया के लोग भी हैं, उनके साथ भी पुलिस की थोड़ी बहुत झड़प हो रही है और अब चूंकि दिल्ली पुलिस यहां पर मौजूद है और कोई भी जो प्रोटेस्टर आ रहा है उसको पुलिस हिरासत में यहां पर ले रही है। तो यहां इस तरह की तस्वीर कनॉट प्लेस इलाके में दिखाई दे रही है। कुछ लोग हैं, उनके साथ पुलिस की बहस भी होती यहाँ पर दिखाई दे रही है।
9: जंतर मंतर से सटे तमाम इलाकों में चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती थी। इस बार बैरिकेडिंग ऐसे की गई थी कि उन्हें पार करके आगे बढ़ना नामुमकिन था। अगर जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा रोकना मकसद था तो दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बल इस मकसद में कामयाब रहे, लेकिन इसके लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।
14: दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, कमांडोज हैं और जो पैरा फोर्सेस के आरएएफ के जवान हैं वो मूवमेंट कर रहे थे कि प्रदर्शनकारियों का टेंपल रन शुरू हो गया है। वो एक तरह से इस सेक्टर से दौड़ के भाग रहे हैं और पुलिस उनको यहां से हटाते हुए दिखाई दे रही है। बीते एक घंटे से यहां पर ये प्रदर्शनकारी, जेंजी युवा प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे, ज्ञानेश कुमार सीसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वोट चोरी के बारे में नारेबाजी कर रहे थे, जो विपक्ष का आरोप है उसी तरह के नारेबाजी यहां पर सुनाई दे रहा था। बीते एक घंटे से यहां ये जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन अब अचानक से दिल्ली पुलिस एक्शन बोर्ड में आती है और इस सेक्टर में भी जो प्रदर्शनकारी थे उनको हटाया जा रहा है।
9: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में करीब 20,000 से 25,000 जवानों की तैनाती की गई। पूरी दिल्ली को एक तरह से छावनी में तब्दील करना पड़ा। सुशांत मेहरा के साथ अनमोल बाली, दिल्ली आज तक।
6: और इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच रविवार को अवमानना याचिका पर सुनवाई करेगी। दिल्ली में जरूरत से ज्यादा शटडाउन, मेट्रो और ट्रेनों को रोकने, लोगों को हिरासत में लेने, इन सब का आरोप लगाया गया है। कोर्ट की तरफ से जो कहा गया था, क्या ये उसके विरुद्ध कदम है, इसका अवलोकन किया जाएगा।

0: इसी खबर पर और जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अनीशा माथुर इस समय जुड़ रही हैं। अनीशा, इस बात को लेकर चर्चा भी चल ही रही थी और साथ में यह हो रहा था कि जो सर्वोच्च अदालत ने कहा और जो पुलिस के द्वारा किया गया उसके बीच कहीं कोई खाई तो नहीं है, कोई डिफरेंस तो नहीं है, और इसको लेकर सुनवाई स्पेशल बेंच के द्वारा।
1: जी बिल्कुल, संडे को यानी कल सुबह 10:30 बजे जस्टिस जॉय मालेबागची और जस्टिस भीमोहना की खंडपीठ इस पर सुनवाई करेगी। याद रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जो है वो अभी फिलहाल दिल्ली में नहीं है। आज जैसे ही सुबह डिटेंशन की झड़ी शुरू हुई है, खासतौर से जब सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स चेंबर ब्लॉक से वकीलों को डिटेन करना शुरू किया गया, साथ ही साथ पॉलिटिकल लीडर्स को डिटेन करना किया गया, एक्टिविस्ट को डिटेन किया गया, तभी दो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। एक कंटेम्प्ट केस होम सेक्रेटरी और दिल्ली पुलिस मेट्रो के दिल्ली मेट्रो के इंचार्ज के खिलाफ और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के खिलाफ, होम सेक्रेटरी के खिलाफ, डीएमआरसी के चेयरपर्सन के खिलाफ कंटेम्प्ट केस दाखिल किया गया। कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को सीधे तौर पे कहा था कि प्रोपोर्शनल रिस्पांस होना चाहिए, आप लंबे समय के लिए ट्रेन मेट्रो सड़क बंद नहीं करेंगे, आप डिस्प्रोपोर्शनेटली लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, लोगों को प्रोटेस्ट करने का हक है, तो फिर इस तरह से क्यों किया गया। दूसरी याचिका डली इस बात पर कि इलीगली डिटेन किया जा रहा है। खासतौर से आप याद रखिएगा, सुबह जब वकीलों को और पॉलिटिकल लीडर्स को डिटेन किया जा रहा था, तब आरोप ये लग रहा था कि बिना बैज के, बिना आइडेंटिफिकेशन के पुलिस वाले जो हैं वो लोगों को उठाकर ले जा रहे हैं। कहां ले जा रहे हैं कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसको आप प्रोटेस्ट रोकने का जरिया नहीं बना सकते, ये चीज हेबियस कॉर्पस पिटिशन में दाखिल की गई है। कल सुबह 10:30 बजे स्पेशल सुनवाई होगी।
0: कल सुबह 10:30 बजे ये हम सुनवाई, अनीशा माथुर की यह जानकारी है। सोमवार को इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी बड़े प्रदर्शन की तैयारी है, इसीलिए वरिष्ठ नेताओं से दिल्ली में मौजूद रहने का अनुरोध किया जा रहा है। माना जा रहा है कि विपक्षी नेता सोमवार को फिर से मार्च करेंगे। राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को भी ज्ञापन सौंपने का फैसला किया है। ममता बनर्जी ने कोलकाता लौटने का अपना प्लान टाल दिया है, वो सोमवार को इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगी। अभिषेक बैनर्जी भी इसके लिए दिल्ली पहुंचेंगे। अमित भारद्वाज इस पर और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, जिस तरीके से सीजेपी का ये प्रदर्शन तो दिल्ली पुलिस की तरफ से एक तरीके से मोटे तौर पर विफल किया गया, लेकिन अब जब राजनेता और पूरे इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व उसमें लगेगा तो एक और बड़ी चुनौती, और इसमें साथ ही इंडिया ब्लॉक के सभी नेताओं की एकजुटता दिख रही है। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि अखिलेश यादव भी, जो अपने पर्सनल कारणों की वजह से अभी तक नहीं आए थे, वो भी इसमें शामिल होंगे, सभी बड़े चेहरे रहेंगे?
2: श्वेता, देखिए, दिल्ली पुलिस के लिए अब असली लिटमस टेस्ट यहां से शुरू होता है। आज आपने तमाम तरह के क्लैंप डाउन करके, चाहे वो ट्रेन कैंसिलेशन हो, मेट्रो शटडाउन हो, इंटरनेट शटडाउन हो, ये करके आपने सीजेपी प्रोटेस्टर्स को जंतर मंतर तक आने से तो रोक लिया, लेकिन वो जंतर मंतर के बेहद करीब जरूर पहुंच गए थे और ये डिटेंशन के आंकड़ों से भी दिख रहा है। लिटमस टेस्ट कल शुरू होगा जब ऑर्गेनिक मोड पे प्रोटेस्ट शिफ्ट हो जाएगा, और इसके बाद 12 तारीख को मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन इस बार न केवल नेता के विरोध प्रदर्शन का प्लान बना रहा है, बल्कि मोबिलाइजेशन एक बड़े स्तर पे करने की भी तैयारी है, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को अहम भूमिका निभाने के लिए कहा गया है। अब इसके लिए क्या हो रहा है कि देखिए, जो बड़े नेता हैं, ममता बनर्जी बंगाल वापस जाने वाली थी, उनका प्लान मुझे बताया जा रहा है फिलहाल टल गया है। वो 12 तारीख को सोमवार वाले डेलीगेशन में भी शामिल रहेंगी जो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है मेमोरेंडम देने के लिए। जिस तरह का मेमोरेंडम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया था, वही मेमोरेंडम सुप्रीम कोर्ट को हैंड ओवर किया जाएगा। अभिषेक बैनर्जी वापस आ रहे हैं, एम ए बेबी जो सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी हैं, हो सकता है उनको भी कहा जाएगा कि आप आइए। समाजवादी पार्टी से मुझे लगता है श्वेता ज्यादा जरूरी इस वक्त ये उम्मीद की जाएगी कि जो मोबिलाइजेशन है कांग्रेस पार्टी से के अलावा समाजवादी पार्टी द्वारा भी किया जाए। अगर अखिलेश यादव जो सपा प्रमुख हैं वो दिल्ली नहीं भी आते हैं तो कोई बड़ा नेता उनके दल से, जैसे राजीव राय गए थे प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, तो वो शामिल हों। लेकिन मोबिलाइजेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी अगर करने में सफल होती है तो उस दिन बड़ा मोबिलाइजेशन का जो टारगेट है वो संभवतः इंडिया ब्लॉक अचीव कर पाएगी।
0: बहुत शुक्रिया अमित भारद्वाज, हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं कि 12 तारीख को यानी सोमवार को एक बार फिर राजनीतिक प्रदर्शन यहां पर देखने के लिए मिल सकता है। ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष भी सड़कों पर है, लेकिन सीजेपी के समर्थन में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ही आए। लेफ्ट पार्टियां भी हालांकि सड़कों पर उतरी, उसके अलग अलग संगठन सड़कों पर नजर आए।
3: पिछले 1.5 घंटे से दिल्ली की सड़कों पे हम लोगों को घुमा रहे हैं, हमें पता नहीं कहां ले जा रहे हैं, कौन से थाने में ले जा रहे हैं।
4: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही कांग्रेस पार्टी सीजेपी के आंदोलन से दूर रही, उसे आम आदमी पार्टी, लेफ्ट और टीएमसी ने अपना समर्थन दिया। ममता मुंह पर बैंडेड लगाकर धरने पर बैठ गईं, लेकिन ममता बनर्जी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस वैन में ममता बनर्जी को ले जाती दिखी, कहा कि वो इस मामले में झुकेंगी नहीं।
5: আমরা আমাদের বাড়ির পাশে যে বাস স্ট্যান্ড, প্রথমে তো আমরা যন্ত্র মন্ত্র যেতে চেয়েছিলাম, সিজেপি আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, স্টুডেন্ট ইউথরা তাদের সবাইকে অ্যারেস্ট করেছে, মিডিয়াকে অ্যারেস্ট করেছে, অল পলিটিক্যাল লিডারদের অ্যারেস্ট করেছে আর ঘোরাচ্ছে। তারপরে আমরা যখন বাড়ির সামনে একটা বেঞ্চ নিয়ে একটা বাস স্ট্যান্ডে বসলাম, তখন আমাদের যেতে দেওয়া হলো না, কিন্তু আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বসেছিলাম। সেভ ইন্ডিয়া, সেভ ডেমোক্রেসি।
4: ममता बनर्जी की तरह अरविंद केजरीवाल भी सीजेपी का समर्थन करने उतरे, लेकिन उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज समेत कई नेता प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें हिरासत में लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया।
6: बहुत गुस्से में है जो जो लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं, मैं पूरे देश के लोगों को, युवाओं को हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, हम सब लोगों को मिलके देश को बचाना होगा। आप जहां भी हैं देश में, अभी निकलिए अपने घर से, दिल्ली की तरफ कूच कीजिए, दिल्ली आइए, स्कूटर पे आइए, पैदल आइए, बस में आइए, हवाई जहाज में आइए, ट्रेन में आइए, जैसे आ सकते हैं आइए, दिल्ली की तरफ कूच कीजिए। जहां मोदी जी आपको रोके वहीं बैठ जाओ, उसी जगह को जंतर मंतर बना दो, पूरे देश को जंतर मंतर बना दो, लेकिन मोदी जी को वोट चोरी करने से रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये देश नहीं बचेगा।
4: अरविंद केजरीवाल ने पहले ही इस प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान कर दिया था। ममता और केजरीवाल के अलावा पुलिस ने केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन, त्रिपुरा के पूर्व सीएम माणिक सरकार और सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास को भी हिरासत में लिया। यूट्यूबर ध्रुव राठी को सुबह ही गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया था। आईसा अध्यक्ष नेहा बोरा को भी हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन से दूरी बनाकर रखी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चेन्नई में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से दक्षिण भारत में इस मामले को गरमाने में लगे हैं।
0: दिल्ली की तरह मुंबई में भी आज सीजेपी समर्थकों की तरफ से प्रदर्शन करने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया। चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
7: मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में जिसने भी प्रदर्शन करने की कोशिश की, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसमें महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी भी शामिल।
8: नेशनल कॉलेज से उठाया, बांद्रा पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, सांता क्रूज पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, डीएन नगर ले आए। डीएन नगर में कुछ खास रिसेप्शन तैयार किया होगा, देखते रहिए। ये पुलिस की गुलामी की निशानी है, बेचारे वो भी क्या कर सके, सत्ता वालों के चाकर जो बन गए। एक दिन तख्ता पलट होगा, फिर हिसाब किया जाएगा।
7: तुषार गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद आदित्य ठाकरे अपने पार्टी नेताओं के साथ वहां पहुंचे।
9: जिस देश में गांधी जी को डिटेन किया जाता है और इतना डर है भाजपा के मन में कि जैसे ही हम यहाँ आने वाले थे उनको लेके गए बोरेवली, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इतना मन में डर क्यों है? भले वो गांधी जी के बारे में हो या हमारे बारे में हो, या अभिजीत के बारे में हो, या रत्ना या सौरभ या राहुल जी के बारे में हो, आपने ये भी देखा होगा राहुल जी जैसे ही चुनाव आयोग से मिलने गए कितनी बड़ी तादाद में फौज लगाएगी। ये सारी फोर्स जो बॉर्डर पे होनी चाहिए वो आप दिल्ली में लगा रहे हो, इतना डर क्यों है आपके मन में? किससे डरते हो आप? क्यों भय है इतना मन में?
7: मुंबई में अभिनेता और आमिर खान के भांजे इमरान खान भी सीजेपी के समर्थन में प्रदर्शन करने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया।
10: मेरा ये मानना है कि इस देश में और इस शहर में वी शुड ऑलवेज हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ऐसी भी क्या खतरा है? आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे पुलिस के लोग हैं।
11: दिल्ली में भी प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया गया, दिल्ली में भी डिटेन किया गया।
10: आई बिलीव दैट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू शो अप एंड शो दैट देयर दैट वी आर नॉट अफ्रेड एंड दैट देयर इज एक्चुअली नो डेंजर एंड नो थ्रेट ओवर हियर। द ओनली थ्रेट इज फ्रॉम ऑल ऑफ दीस पीपल अटैकिंग विद स्टिक्स।
7: मुंबई में प्रदर्शन को देखते हुए सुबह से पुलिस ने तैयारी कर रखी थी। ड्रोन से प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने के इंतजाम भी देखे गए।
12: पुलिस को गाड़ी को रोकने का यहाँ पर भरसक कोशिश थी, लेकिन प्रदर्शनकारी जो है वो तो देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी जो है वो सुन नहीं रहे हैं और पुलिस पे जो है वो झड़प है वो बढ़ती जा रही है। पुलिस डिटेन कर रही है लेकिन प्रदर्शनकारी जो है वो इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं। और ये जो साइट है इसे हेरिटेज साइट पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि हेरिटेज साइट है, यहाँ प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है। लेकिन जैसा कि देख सकते हैं पुरजोर विरोध जो है प्रदर्शनकारियों द्वारा किया जा रहा है और पुलिस जो है इन्हें डिटेन करने की भरपूर कोशिश कर रही है।
7: चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेता चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसके बाद मनीष सिसोदिया समेत कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
13: बस में किस तरह जो है आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को लीडर्स को डिटेन किया जा रहा है भर। और मनीष सिसोदिया आप देख सकते हैं बस के अंदर बैठे हैं, मनीष सिसोदिया को बस के अंदर बिठाया गया है और यहां से हटाया गया है। सो अभी तक तो पुलिस जो है वो कामयाबी पुलिस को मिली है कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक नहीं जाने गया, लेकिन मनीष सिसोदिया आप देख सकते हैं कि विंडो में बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, रेड शर्ट में हैं और लगातार जो है यहां पर डिटेंशन जो अब हो रही हैं। और ये बस जो कि जो बस जिसमें आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और लीडर्स को भरा गया है उनको यहां से मूव करके लेके जाया जा रहा है। सो जब मेन लीडरशिप चाहे वो सोनिया मान हो, मनीष सिसोदिया हो, हरपाल चीमा हो और दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको यहां से मूव कराया जा रहा है।
7: दक्षिण में बेंगलुरु और चेन्नई में भी प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी सड़कों पर प्रदर्शनकारी निकले, जहां पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आईं।
0: मुंबई में इस वक्त इंडिया टुडे कॉन्क्लेव चल रहा है, जहां संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन पर जमकर हमला बोला। रिजिजू ने राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा किया।
14: लेट मी नॉट से दैट इंडिया इज फेसिंग इमरजेंसी, बट लेट्स स्पीक ऑफ दिल्ली सर। यू आर कमिंग इन फ्रॉम दिल्ली। I just want to give you some figures. 56 metro stations today in Delhi are shut. 53 trains coming in from across the country into Delhi have either been diverted or those trains have been cancelled. There are 33,000 personnel on ground, which include BSF, CRPF, Rapid Action Force. 6 kilometer radius of central Delhi has completely been cordoned off. There is no internet. The last time actions like this happened, sir, I don't remember in my public memory, even during the farm protest, something like this happened. So therefore, can we say not in India, but Delhi mein emergency hai aaj?
15: See, the responsibility of the government and the agencies is not only to allow people to protest, but safeguard the safety, security and interests of the general citizens. If you talk about your democratic rights, that doesn't give you permission or a right to take away others' rights. This group of people are basically a rowdy group of people who doesn't believe in rule of law. They talk about democracy, but they don't believe in principles of democracy. If you disregard the mandate of the people and you want to determine and enforce things through the street protests and by gunpoint, sloganeering, and you want to decide the course of the nation through the street protests, that will not happen. We are responsible people. This is a huge mandate given by the people of our country under the leadership of Narendra Modi ji. We will ensure that all the tenets of democratic principles are maintained. We cannot allow any kind of anarchy to prevail in the country. And few bunch of people cannot take country to their own whims and fancies. They may create certain dreams, which is not, you know, related to the ground reality. So we will not allow the common people to suffer. So with regards to Preeti's question about the trains and roads are being sanitized or blocked, these are basically preventive action to ensure that Delhi is not taken into ransom by these people. Delhi is the national capital of India. We cannot allow people to just come and destroy the city. It won't happen. But if you see the police action, you see the police action in the United States, you see the police action in China or in France or UK, and see the police action of Delhi police and our central armed forces, so much of restraint you see. Very humanely our police personnel are handling the protesters. What else you want?
16: Sir, but Rahul Gandhi as leader of opposition says democracy is dead. There is vote chori happening. All elections, the results have to be declared null and void. Return to ballot paper. So, you know, they it is being said that according to Rahul Gandhi, Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, CEC Ganesh Kumar and Rashtriya Swayam Sevak Sangh Sarsangh Chalak, they've subverted democracy of India.
15: Don't trust Rahul Gandhi ji that much. See, in 2014, it was the Congress government, UPA government. We came to the power with absolute majority on our own, BJP. But still we had the NDA government. What did they say? BJP came to power by polarizing the voters' mind. Then 2019, we came back with bigger mandate. And they came out with all kind of allegation that, oh, Hitler Shahi, dictatorship, the country is taken over by the concept of majoritarianism, the Hindu consolidation, all these things, they were giving the alibis. And then 2024, when our numbers got reduced, then they celebrated. And they say, Pappu pass ho gaya, 99 mark mil gaya hai. The Congress got 99 seats. And they celebrated. Everybody saw it. And BJP was reduced to 240. But after 5-6 months, they realized that BJP and the NDA is comfortably managing the country's affairs. And suddenly some group of NGO and some advisors came together and then created this narrative of vote chori. So the same election commission, they got elected in Kerala, in Tamil Nadu, in Himachal, then in Telangana, and in Karnataka. They are enjoying the governance and the fruits there. So I think, yes, I do agree that there are certain section of the people who believe what Congress people are saying. They believe because they are their supporters. In democracy, we cannot claim to have 90% of people support us all the time. There will be always dissent. There will be always people who will be opposed to us. That's fine. But don't create false narrative. We were in opposition for more than 50 years.
0: और अब उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी खबर. क्या अयोध्या से इस बार योगी बनाम अखिलेश के बीच मुकाबला होगा? अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की सलाह दी तो योगी ने आज कह दिया कि हो जाए आमना सामना. अखिलेश चेलों को छोड़ खुद अयोध्या से उतरे.
17: पीडीए का वास्तविक मतलब है प्रदेश डुबाऊ एलायंस।
18: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने पीडीए का मतलब समझाने के बाद वो बात कही जिसे नहले पर दहला कहा जा सकता है।
17: इस अराजकता को स्वीकार करने वाली नहीं, मैं तो आपको ऑफर करता हूं, आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से, चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं, तय हो जाए, आप भी आइए और मैं भी आता हूं। लड़ाई चेलों से क्यों, लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए और उसके लिए मैं कह रहा हूं आइए आप भी।
18: तो योगी ने अखिलेश को चैलेंज दिया है कि हिम्मत है तो लड़ाई आमने सामने लड़ो। योगी का यह बयान अखिलेश के अयोध्या से चुनाव लड़ने की सलाह के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री अगर अयोध्या को लेकर इतने ही आश्वस्त हैं तो अयोध्या से चुनाव लड़ जाएं।
19: अगर वो अयोध्या से इतने ही आश्वस्त हैं और जिन्होंने ये कहा हो कि पानी का दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा 15 दिन के अंदर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अगर वो इतने ही अयोध्या वासियों से अस्वस्थ है तो उन्हें यही फैसला लेना चाहिए, उनके बीच में अगला चुनाव लड़ना चाहिए। ये चुनौती नहीं है, ये सलाह है।
18: अखिलेश ने साफ कहा कि ये उनका चैलेंज नहीं, मुख्यमंत्री को सियासी सलाह है, लेकिन योगी ने इसे स्वीकार करके गेंद अखिलेश के पाले में फेंक दी कि अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाओ, पता चल जाएगा किसमें कितना दम है।
17: ये माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले पेशेवर अपराधियों के सामने उनकी मौत पर उनकी कब्र में जाकर के फातिया पढ़ने वाले लोग, ये हम लोगों से क्या लड़ पाएंगे, इनकी हिम्मत नहीं है। ये पहले ही जनता इनकी छुट्टी कर चुकी है, एक खिसियानी बिल्ली खंपा नोचे जैसी स्थिति इन लोगों की हो चुकी है।
18: योगी ने कहा कि आने वाले चुनाव में 80% सीटें एनडीए जीतेगा और 20% इंडिया गठबंधन, क्योंकि ये जनता ने तय कर लिया है।
17: जिस अयोध्या में जय श्री राम बोलने पर आपकी सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, जिस अयोध्या के सामने आपने केवल और केवल बैरियर खड़ा किए थे, आज वो अयोध्या एक बार फिर से राम राज्य के नए उदाहरण बनकर के त्रेता युग का स्मरण करा रही है।
18: योगी के इस सियासी हमले का अखिलेश ने तुरंत जवाब देते हुए लोकसभा चुनाव याद दिलाते हुए कहा कि इस बार जनता घमंड का सारा पानी उतार देगी, लोकसभा भूल गए क्या। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार अखिलेश यादव की तरफ से लगातार खुद को बीजेपी के मुकाबले सनातन के मोर्चे पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को इसलिए अखिलेश की तरफ से लगातार उठाया जाता है, दावा किया जाता है कि बीजेपी को वहां से प्रत्याशी नहीं मिल रहा, लेकिन योगी ने अखिलेश के नहले पर दहला मारकर गेंद उनके पाले में डाल दी है।
17: क्या इससे पहले संभव था ये?
18: आज तक ब्यूरो।
17: मोदी जी का विजन है।
0: एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार।

0: आगे आगे उधर उधर करेक्ट करेक्ट
1: मिल गया।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: टेक्नोलॉजी के मामले में किसान सुनते सबकी हैं, पर मानते सिर्फ उनकी हैं जिन पर सालों से भरोसा हो। इसीलिए स्वराज पोर्टल टेक्नोलॉजी जो दे ज्यादा प्रोडक्टिविटी और बेमिसाल कंफर्ट। भरोसा और टेक, मेरा स्वराज प्रोटेक।
5: हमारे नेबर मिस्टर कुमार बात बात पे कार मांग रहे हैं।
6: वो इन लॉस को लाना है, कार मिल जाएगी।
7: अरे यार कुमार, अब तो अपनी कार ले लो यार।
8: कैनरा व्हीकल लोन से
9: अप टू 90% फाइनेंसिंग,
10: क्विक प्रोसेसिंग एंड नो प्री क्लोजर पेनल्टी।
11: कैनरा व्हीकल लोन, अपनी वाली गाड़ी के लिए।
12: इस फेस्टिव सीजन हंडे सुपर डिलाइट डे सबके लिए लाए हैं डिलाइट। हंडे शोरूम आओ, अमेजिंग कार्स पे 1,00,000 तक की अमेजिंग डील्स पाओ।
13: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका मान सर, एक बार रोटी थमका लगाने बस।
14: मेरे पास एक आइडिया है।
13: क्या?
14: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
15: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
16: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
17: मेरा नाम सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
18: कौन सी बनानी है?
19: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
20: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
19: असली शहद, असली स्वाद।
21: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
22: गड़बड़ है।
23: गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।

0: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
1: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे,
2: इट्स माय वे।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
4: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर, तरक्की का ऑलराउंडर।
5: JK Maxx Wipe Easy,
4: दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ JK Maxx Wipe Easy।
6: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
7: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
8: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
9: Aage, aage.
10: Arre udhar, udhar kya?
9: Correct, correct.
1: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: इस फेस्टिव सीजन हंडे सुपर डिलाइट डेज सबके लिए लाए हैं डिलाइट। हंडे शोरूम आओ, अमेजिंग कार्स पे 1,00,000 तक की अमेजिंग डील्स पाओ।
12: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो ठुमका लगाने पर
13: मेरे पास एक आइडिया है।
12: क्या?
13: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
14: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाती पर स्टेज नहीं हिलता,
15: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
16: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
14: कौन सी बनानी है?
17: How's the hostel? Settled?
18: Yes, Mom, really nice.
17: कोई आ रहा है क्या?
19: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभा ली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले।
17: मयंक, for real?
19: One carat for my one true love. Natural diamond, real love solitaires to reignite your new season of love.

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: जेके मैक्स वाइप इजी,
3: दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।
4: यहाँ ड्रिल करना पड़ेगा।
5: ड्रिल? नहीं नहीं, ओनर से पूछना पड़ेगा।
6: इसका नाम क्या रखेंगे?
7: ये भी ओनर से ही पूछ लेते हैं।
8: अरे भाई साहब, कब तक ओनर के डर में रहेंगे? शान से अपने घर में रहिए ना, विद कैनरा होम लोन।
9: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी।
10: यू नो डिजाइन कितने हैं? लाख से भी ज्यादा डोर,
11: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
12: एक परिवार अटूट भरोसा।
13: In association with Signature Finest Cardamom Seeds, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Canara Bank, together we can.
14: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: खबरदार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट और हरदम रहिए खबरदार।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओमकश्यप। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आज हुए आंदोलन ने पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, भारी हलचल। विपक्षी दलों का यह आरोप है कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी करके बीजेपी को फायदा पहुंचाया है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष अपनी राजनीतिक हार का ठीकरा फोड़ने के लिए चुनाव आयोग को जबरन विवादों में घसीट रहा है और उस पर झूठे आरोप लगाकर देश की ही जो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर जनता का भरोसा कम करने की साजिश रच रहा है। सरल शब्दों में अगर कहें तो ये चुनाव आयोग के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा संवैधानिक गतिरोध बन गया है, जहां संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खूब छींटाकशी हो रही है। और इसी सियासी छींटाकशी के बीच कांग्रेस जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस का फिर से आमना सामना हुआ और इस बार पुलिस ने 20 जुलाई के आंदोलन से सबक लेकर क्या क्या बदलाव किए, कैसे टुकड़ों में जंतर मंतर पहुंचने वाले प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, इस पर आइए आपको दिखाते हैं हमारी

0: स्पेशल रिपोर्ट।
1: अरे एक
2: शायद पहली बार ऐसा हुआ जब किसी राजनीतिक आंदोलन के नेताओं को हवाई जहाज के लैंड होते ही विमान के भीतर से हिरासत में ले लिया गया।
3: भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद,
4: भारत माता की जय, इंकलाब।
5: राजस्थान के एनएसए यूएनए जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो। आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड।
6: कचरा सा स्वच्छ भारत अभियान।
2: कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके, सौरभ दास और आशुतोष रंका को मुंबई से दिल्ली आई फ्लाइट से उतरने का मौका भी नहीं मिला और दिल्ली पुलिस के जवानों ने विमान के अंदर घुसकर उन्हें सीधे रनवे पर खड़ी बस में चढ़ा दिया और कारण बिल्कुल साफ था। दिल्ली पुलिस का कहना था कि जिस आंदोलन की अनुमति नहीं दी गई है उसमें शामिल होने के लिए दिल्ली आना या बाकी लोगों को नियमों के खिलाफ भड़काकर सड़कों पर उतरने के लिए कहना उचित और कानूनी रूप से सही नहीं हो सकता।
7: देश की 140 करोड़ जनता जो सुख शांति के साथ भारत के विकास में सबका सहयोग मिल रहा है उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, और ये कौन कर रहे हैं? ये दो अराजकतावादी समूह जिसमें एक इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी और दूसरे गुट का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी कर रही है। मैं इन दोनों गुटों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत की जनता पूरी तरह से आपके इन उद्देश्यों को देख रही है, और आज जो आपका एनार्किस्ट प्रतिस्पर्धा चल रहा है कि कौन अधिक इस देश में अस्थिरता पैदा कर सकता है, ये आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने देशभक्त हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर इन ताकत आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
2: इस आंदोलन को लेकर सुबह से ही दिल्ली समेत पूरे देश में भारी हलचल देखी गई। दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रात में ही कई संदिग्धों और प्रदर्शनकारियों को एहतियातन हिरासत में ले लिया और दिल्ली के गाजीपुर और नोएडा जैसे सभी प्रमुख बॉर्डर्स को पूरी तरह सील कर दिया गया।
8: सीजेपी के प्रोटेस्ट के मद्देनजर यहां से जो भी गाड़ियां गुजर रही हैं उसे पहले एक चेकिंग के थ्रू जाना पड़ रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं जो गाड़ियां यहां पर अमूमन बड़े स्मूथली निकल जाती थी, आज उन गाड़ियों को रोका जा रहा है और जो दिल्ली पुलिस के यहां पर लोग हैं वो उन गाड़ियों में चेक कर रहे हैं कि जो लोग यहां से जा रहे हैं दिल्ली की तरफ उनके जाने की वजह क्या है।
2: इस आंदोलन के कारण नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आने वाली 250 से ज्यादा एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनें रद्द कर दी गई ताकि प्रदर्शनकारी दिल्ली न पहुंच सके। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के इलाकों और जंतर मंतर को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अलग अलग तरीकों से आयोजन स्थल तक पहुंचने की कोशिश की। इनमें भी कनॉट प्लेस में एनडीएमसी के एक पब्लिक वॉशरूम के अंदर करीब 100 सीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से बचने के लिए जबरदस्ती घुस गए। वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और वॉशरूम का दरवाजा टूट गया। भनक लगते ही पुलिस और सीआईएसएफ ने वहां पहुंचकर एक एक कार्यकर्ता को खींचकर बाहर निकाला और हिरासत में ले लिया।
9: दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का यहां पर एक्शन जो है शुरू हो चुका है। तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहां पर दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस ने डिटेन करना शुरू कर दिया है। तो तस्वीरें आप मेरे साथ देख रहे हैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस की।
2: सबसे ज्यादा तनाव कनॉट प्लेस के इलाके में रहा क्योंकि वहां रास्तों को पूरी तरह बंद नहीं किया गया था। कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल में इकट्ठा हो रहे करीब 200 प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर की तरफ बढ़ने के दौरान पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा और गाड़ियों में बिठाया। धौलाकुआ इलाके से भी कई कंटेंट क्रिएटर्स और प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा बलों ने रोका। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली के 45 मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट बंद रखे गए, जबकि जनपथ और कर्तव्य पथ के

आसपास 4 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद रखी गई। यही नहीं, दिल्ली के अलग अलग कोनों से कई प्रदर्शनकारियों और संदिग्धों को हिरासत में लेकर बसों में बिठाया गया और हिरासत में लेने के दौरान हुई धक्का मुक्की में सब इंस्पेक्टर बजरंग जाधव समेत कुछ पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सबसे बड़ा आरोप ये लगाया कि सीजेपी और राहुल गांधी के नेतृत्व

0: बीजेपी और राहुल गांधी के नेतृत्व वाला विपक्ष विदेशी ताकतों के इशारे पर देश को अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं।
1: कि जिन विदेशी ताकतों से बल पर आप अपनी बिकाऊ राजनीति कर रहे हैं और विदेशी ताकतों के गठजोड़ से भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके नापाक इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। झूठ के सहारे संविधान के नाम पर लोकतंत्र को चुनौती देना जनादेश का अपमान करना है। देश की जनता ने जिसको जनादेश दिया है, देश की जनता जिसको विश्वास की है, वो देश का नेतृत्व कर रहा है।
0: इन सबके बीच दोपहर के वक्त करीब 50 प्रदर्शनकारियों का एक जत्था सुरक्षा घेरे को तोड़कर अचानक पीटीआई बिल्डिंग के पास पहुंच गया और जब वहां मौजूद पुलिस बल ने उन्हें रोकने और हिरासत में लेने की कोशिश की तो उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों पर सीधे पत्थर बरसाने शुरू कर दिए।
2: दो घंटे पहले की बात होगी, बाबा खड़क सिंह मार्ग पे काफी भीड़ थी, काफी उपद्रवी थे, यहाँ पर प्रोटेस्टर्स तो उनको चेज कर रहे थे। तो चेज करते करते मैं चार आदमियों के साथ पीछे बाईलेन में चला गया, आर स्कूल लेन है, तो वहाँ पर हम चार ही रह गए। बस उन्होंने देखा कि कम है तो हमारी तरफ बढ़ने लगी, उसने बदलाव किया, फॉर्चुनेटली बच गए हम। जितने आ रहे थे हमारी तरफ तो पीछे से स्टाफ आ गया, बच गए।
0: इस आंदोलन में जितने युवा विरोध जताने पहुंचे उनमें कई एसएफआई, वामपंथी दलों और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आयसा के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय और दूसरी जगहों पर मार्च शुरू किया, जिन्हें तुरंत हिरासत में लिया जाने लगा। इसी दौरान सीजेपी की लीगल सेल हेड रत्ना सिंह को भी उनके घर के बाहर कार में पुलिस ने रोक लिया। जब दिल्ली पहुंचने पर विमान के अंदर ही अभिजीत दिपके को हिरासत में लिया गया तब उनका पहले से रिकॉर्डेड वीडियो जारी हुआ जिसमें उन्होंने आंदोलन की कमान अजिंक्य शिंदे को सौंपने की बात कही।
3: फॉलो अजिंक्य शिंदे, he will be carrying forward the कॉकरोच जनता पार्टी।
0: हालांकि दिल्ली में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती के कारण जंतर मंतर पूरी तरह से किले में तब्दील रहा और वहां पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा, जबकि दिल्ली के कनॉट प्लेस, खान मार्केट और साउथ एक्सटेंशन जैसे इलाके नुकसान के डर से पूरी तरह बंद रहे। पुलिस ने आंदोलन से जुड़े उन यूट्यूबर्स को भी हिरासत में लिया जो जंतर मंतर जाना चाहते थे और इनमें ध्रुव राठी का नाम भी शामिल रहा जो इस आंदोलन का लगातार समर्थन कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल होने से ठीक पहले सुबह करीब 8 बजे उन्हें उनके गुरुग्राम स्थित घर से एहतियातन हिरासत में ले लिया।
4: दिल्ली गुड़गांव सहरौल बॉर्डर है, NH-48 का इलाका है, जहां पे दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचे, बैरिकेड किया इस पूरे इलाके को और अब चेकिंग की जा रही है। तमाम बसों को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को या फिर जो संदिग्ध गाड़ियां हैं जिसमें 4 से 5 लोग सवार हैं, युवक सवार हैं, युवतियां सवार हैं, उन तमाम लोगों को चेक किया जा रहा है।
0: दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन के समर्थन में मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में दोपहर 3:30 बजे एक एकजुटता सभा बुलाई गई थी और जब महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी इस प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे तभी मुंबई पुलिस ने उन्हें बांद्रा से हिरासत में ले लिया और डीएन नगर पुलिस स्टेशन ले गई।
5: पुलिस मुझे कुछ कहीं ले जा रही है, बता नहीं रही कहाँ ले जा रहे हैं, 2-2 मिनट कह रहे हैं, कुछ बताने से तैयार नहीं है। अच्छा, डीएन नगर ला रहे हैं, नेशनल कॉलेज से उठाया, बांद्रा पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, संत क्रूज पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, डीएन नगर ले आए। डीएन नगर में कुछ खास रिसेप्शन तैयार किया होगा।
6: वो चोर गद्दी छोड़ और क्या, वो
7: चोर गद्दी तो सबके सब ये एक ही नारा दे रहे हैं कि जो ज्ञानेश कुमार है वो इस्तीफा दें।
0: मुंबई पुलिस का कहना है कि अगस्त क्रांति मैदान एएसआई के अधीन आता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये विरोध प्रदर्शन के लिए एक घोषित स्थल नहीं है, इसलिए वहां प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने दिल्ली और मुंबई पुलिस का ये कहते हुए समर्थन किया कि जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए पिछले प्रदर्शन में भारी तोड़फोड़ और हिंसा हुई थी, नियमों के तहत 10 दिन पहले अनुमति न लेने और पुराने अंडरटेकिंग के नियमों के उल्लंघन को देखते हुए पुलिस ने दिल्ली की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कदम उठाए वो पूरी तरह संवैधानिक है।
8: दिल्ली आज हाई अलर्ट पर है सर, सब चीज बंद
9: क्यों नहीं होना चाहिए? पिछली बार जो हुआ था आपने देखा था ना, भारत की राजधानी है ना, तो क्या दिल्ली की जनता को क्योस में रखा जाए? ये ठीक नहीं है।
10: राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलने के पश्चात राहुल गांधी जी का बयान एक नालायक नेता के बयान के समान है। मैं बहुत सोच समझ के ये शब्द, मुझे भी कुंठा हो रही है बोलते, तकलीफ

0: I'm sitting on a very high pedestal. He is the LOP of the country. मगर जब मैं कहता हूं एक नालायक नेता, इसलिए कहता हूं कि चलिए आपने प्रधानमंत्री के लिए जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया, झूठ बोला, वो पूरा देश देख रहा है। आपने जिस प्रकार से भारत के संवैधानिक पदों के लिए, संवैधानिक संस्थाओं के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, पूरा भारत सुन रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति को सड़क की लड़ाई में घसीटने का प्रयास किया गया, मगर एक नालायक नेता ने राष्ट्रपति महोदया को सड़क की लड़ाई में घसीटने की कोशिश की है।
1: विपक्ष निराश, हताश, मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है।
2: अब सभी की नजरें सोमवार पर टिकी हुई हैं, क्योंकि राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के नेता वोट चोरी और SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को उस दिन ज्ञापन सौंप सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
3: आज दिन भर पूरी दिल्ली में हो हंगामा होता रहा। सभी बड़े नेताओं को, जो कॉकरोच जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप है, उन सभी को प्लेन से ही डिटेन कर लिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ, चाहे वो TMC की तरफ से ममता बैनर्जी हो या फिर अरविंद केजरीवाल, उन सभी को डिटेन कर लिया गया। अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि सरकार किसी को विरोध नहीं करने देना चाहती है। लेकिन एक और बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सोनम वांगचुक, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, और वही सोनम वांगचुक जिनकी वजह से पिछली बार जंतर मंतर का आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले चुका था क्योंकि वो अनशन पर बैठ गए थे, आज उन्होंने अपना एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये अघोषित आपातकाल है। सोनम वांगचुक ने यह भी कहा कि अगर उन लोगों को 24 घंटे के अंदर छोड़ नहीं दिया जाता है तो हो सकता है वो फिर से अनशन पर बैठे, पदयात्रा पर निकले, विरोध प्रदर्शन करें, दिल्ली में भी कर सकते हैं और वहां लेह में भी कर सकते हैं। तो कैसे ये पूरा मामला अब सियासी रूप से एक तरफ बड़ा हुआ जब विपक्षी दल आगे आए, लेकिन वही जंतर मंतर के बड़े किरदार एक बार फिर से इस मैदान में आते दिख रहे हैं।
4: आज एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को रेस्क्यू कर पाएंगे। आज सुबह सोनम वांगचुक ने एक वीडियो संदेश में लद्दाख और देश में शांति, एकता और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर बात की। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने की वकालत की और इसीलिए बहुत सारे लोग अब ये पूछ रहे हैं कि सुबह से शाम आते आते ऐसा क्या बदल गया कि सोनम वांगचुक सरकार को अल्टीमेटम देने लगे।
5: और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, या मैं कहूँ और भी गम है जमाने में सियासत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा।
6: अगर अगले 24 घंटों में भी गिरफ्तारियां नहीं हटाई गई तो मैं भी एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा।
4: दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर सोनम वांगचुक ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने सोचा नहीं था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अघोषित आपातकाल में झोंक दिया जाए।
6: अगले 24 घंटों में भी गिरफ्तारियां नहीं हटाई गई तो मैं भी एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, वो चाहे फिर एक धरना हो या अनशन हो या पद यात्रा हो, लेह में हो या दिल्ली में हो, मगर मेरी उम्मीद है कि सरकार उससे पहले ही इन मसलों को बातचीत से सुलझाएगी और हमें ऐसा कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
4: इस पूरे घटनाक्रम में सोनम वांगचुक की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो केवल लद्दाख के ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलनों के एक बड़े केंद्र बिंदु बन चुके हैं। पिछली बार जब उन्होंने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर 26 दिनों का कड़ा अनशन किया था तो उनके समर्थन में भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। देश भर से छात्रों और आम जनता का हुजूम इकट्ठा होने लगा था। उस समय सोनम वांगचुक के कारण आंदोलन का दबाव इतना बढ़ गया कि केंद्र सरकार को उनकी मांगों पर लिखित सहमति जतानी पड़ी थी और एक बार फिर उनका इस तरह अड़ जाना ये दिखाता है कि वो अपनी मांगों को लेकर बेहद अड़ी।
6: दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति तो दी ही जाएगी, मगर अब लग रहा है कि जैसे कोई अघोषित आपातकाल या इमरजेंसी लगी है देश भर में। मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि ये सब गिरफ्तारियां खत्म कर दी जाएं आज शाम तक और मामलों को सुलझाया जाए।
4: सोनम वांगचुक का ये अल्टीमेटम सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है, क्योंकि उनका अनशन पर बैठना सीधे तौर पर जनता की सहानुभूति को अपनी तरफ खींच सकता है।

हालांकि सोनम वांगचुक की इस चेतावनी को लेकर सरकार के कई समर्थक ये भी कह रहे हैं कि उनका बार बार अनशन की धमकी देना एक पैटर्न बन गया है और अब सरकार को उनकी बात नहीं माननी चाहिए। आज तक ब्यूरो।

0: तो क्या स्थिति दिल्ली में रही है, इस पर आपने हमारी ये विस्तृत रिपोर्ट देखी है और उसके बाद अब वक्त राउंड टेबल का है। ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार क्या वाकई इन आंदोलनों के बाद बैकफुट पर आ रही है, क्या सरकार अलग अलग जगहों पर अगर सभी सीजेपी की टॉप लीडरशिप बड़े बड़े जो आज चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, सबको डिटेन कर रही है, तो क्या कुल मिलाकर सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट पर है या फिर विपक्ष पर जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो सिर्फ अराजकता फैलाना चाहते हैं और अराजकता फैलाकर देश की बड़ी बड़ी जितनी संस्थाएं हैं उन पर छींटाकशी करते हैं, इन तमाम आरोपों पर क्या उनका सोचना है यही जानेंगे।
1: हमारे साथ शिवम त्यागी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। अतुल औडे पाटिल जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। रोहित सिंह जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं और दो युवा नेता आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें हमारे साथ प्रियेश हैं युवा नेता एनएसयूआई की तरफ से और आर्श मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो एबीवीपी के नेता हैं। दयाल सिंह कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप कहाँ पढ़ रहे हैं?
2: पीटू से पढ़ाई लिखाई।
1: अच्छा। और केजी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व एसीपी रह चुके हैं दिल्ली पुलिस के, क्योंकि लगातार वीडियोस भी आ रहे हैं जिस पर ये सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली पुलिस के जो कांस्टेबल्स, जो महिला कांस्टेबल सड़क पर मौजूद हैं, जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्या उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। वहीं लगातार विरोध प्रदर्शनकारी कहते हैं कि पुलिस वाले ज्यादती उन पर कर रहे हैं। तो शिवम त्यागी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या लगातार हो रहे आंदोलनों ने बीजेपी को, आपकी सरकार को बैकफुट पर डाल दिया है, जिसकी वजह से अब आप लोग सबको डिटेन कर रहे हैं, मतलब इस पूरे मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप विपक्ष लगा रहा है, सच सामने आना चाहिए। आप सबको आंदोलन से कैसे रोक सकते हैं, क्या सोच रही है सरकार, क्यों ऐसा कर रहे हैं?
3: मैं ऐसे शुरू नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे शुरू करना पड़ेगा। अंजना, इट्स डन ब्रो, यू विल हैव टू रिजाइन नाउ, यू डू नॉट लेट आवर स्पोक्सपर्सन स्पीक एट ऑल। दो दिन पहले मैं देख रहा था डिबेट में, आपने हमारे
1: आंदोलन
3: को बोलने नहीं दिया।
1: आंदोलन कीजिए,
3: यही बैठूंगा। नहीं, आपको रिजाइन करना पड़ेगा। द वे दे से इट्स ज्ञानो, इट्स डन ब्रो, कोई सोल्यूशन है इसका? मैंने करली से नूडल से बाल करके आऊंगा, क्यूट सा फेस बना के, और आपसे रिजाइन मांगूंगा तो आप रिजाइन दे देंगी? फिर आप मुझसे ये पूछेंगे कि भाई ठीक है, तो मैं लगता है कि भाजपा के प्रवक्ताओं को मैं बोलने नहीं देती, वीडियो दिखा दूं, मैं प्रूफ दिखाऊंगा? नहीं नहीं, प्रूफ कुछ नहीं होता अंजना जी, आपको रिजाइन देना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे ठीक है भाई, मेरे ग्रेवेंस सेल में चले जाओ, कोर्ट चले जाओ, कोर्ट में साबित कर दो। सारी चीजें ना करके अगर मैं यही ब्लॉक करके बैठ जाऊं और कहूं कि नहीं अंजना, जो मैं जी लगाना चाहता हूँ, रिजाइन देना पड़ेगा, नहीं चलता ना ऐसे भाई। पहला आर्गुमेंट उनका है कि इस देश में 13 करोड़ वोट काट दिए। इस देश के सारे जो कॉकरोचेस के लीडर्स हैं वो लगातार बार बार बोले जा रहे हैं 13 करोड़ काट दिए, 13 करोड़ काट दिए, 13 करोड़। आपको क्या लग रहा है इस रेटोरिक से जनता मान जाएगी? सब जानते हैं कि 2 करोड़ 80 लाख लोग मर चुके हैं, इसके अलावा 3 करोड़ जो है वो अनुपस्थित हैं, इसके अलावा 6 करोड़ 30 लाख जो है वो माइग्रेट कर गए हैं, और बाकी करीब 1 करोड़ जो है ड्यूप्लीकेट है। आप ये वाली लाइन बताते नहीं। फिर उसके बाद कहते हैं तमाम जगहों पर जाकर पिक एंड चूज करके कि इस जगह ये हुआ, इस जगह ये हुआ, इसलिए हम इस्तीफा दे दीजिए। खैर, उसके बाद विषय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।
1: अनुपस्थित वाले कहां होते हैं, क्या है अनुपस्थित का मतलब? क्या
3: अनुपस्थित का मतलब? सिर्फ इतना सा है कि कहीं पर अगर किसी की एंट्री है वो अवेलेबल नहीं है उस पर्टिकुलर जगह पर। माइग्रेशन का अर्थ ये है कि जैसे आप बिहार से दिल्ली आई, मैं यूपी से यहां आया, कल अगर दिल्ली होता है दोनों जगह या तो वोट है, तो जाहिर है माइग्रेशन में वहां भी वोट रह गया, यहां भी वोट रह गया। और जो लोग मृत हैं वो तो है ही हैं कि उनकी वोट थी लेकिन वो पाए नहीं गए। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इन सारे विषयों को लेकर हम पहुंच गए सुप्रीम,
1: तो मतलब एसआईआर में किसी का भी गलत तरीके से नाम नहीं कट रहा है?
3: नहीं, 140 करोड़ का देश है, मैं
1: आपके आसपास कोई नहीं आया है
3: 140।
1: शिवम त्यागी जी, इस ऑफिस में हर बार आपके प्रवक्ता के सामने मैं कहती हूँ, इस ऑफिस में मुझसे अनेकों लोग मिले हैं जिन्होंने कहा है कि उनके परिवार के 2 लोग के नाम कट गए हैं। तो उनके दो परिवार के 2 लोग बांग्लादेश से आए थे और बाकी सब यहाँ के थे।
3: मैं आपके शो का एक मतलब रिलीजियस फॉलो करता हूँ, तो मैंने इसीलिए ऐसा कहा नहीं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि 140 करोड़ के देश में ये बिल्कुल संभावना है कि कुछ एरर्स होंगे। उसमें 60 लाख से ज्यादा BLAs हैं, दोनों पार्टी के लोग हैं, हम मिलकर मेहनत करके चीजों को बेहतर कर सकते हैं। पहले 7 बार हो चुका है, लेकिन इस पर एक इशू बना देना जबरदस्ती करके कि नहीं मुझे तो इस्तीफा चाहिए, भाई आप लाला लैंड में नहीं हो, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है।
1: चलिए जवाब दीजिए इसका तो लौंडे पाटिल जी। और एक आंदोलन इसके लिए भी कर दीजिए कि संविधान में ये भी डाल दीजिए कि हम जिसके लिए सड़क पर उतरे कहें इस्तीफा दो तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो नौकरी का किसी का भी अगर जो भी संवैधानिक पद पर होता है एक प्रक्रिया तय है ना संविधान में, तो आप उतर के इसके लिए भी आंदोलन कर दीजिए कि संविधान में डाल दो कि जब विपक्ष सड़क पर उतरेगा इस्तीफा होना पड़ेगा।
4: ऐसा अंजना जी कि डेमोक्रेसी में एक मॉरल स्टैंड भी होता है, आपने देखा होगा कि गलत सलत आरोपों पर भी इस्तीफा दिया गया ताकि फेयर एंड फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके। 12 साल में जितने आरोप इन्होंने पहले लगाए थे सारे के सारे जो है आपने देखा कि एक्विट हो गए, डिस्चार्ज हो गए, क्लोजर रिपोर्ट चले गए, चाहे मनमोहन सिंह साहब हो, डी राजा हो, सारा सारा जज ने खुद कहा मैं 11 बजे से 7 बजे तक बैठा रहा और कोई भी सबूत का चिट्ठा भी जो है बीजेपी ने लाया नहीं। आंदोलन किए, आंदोलन को पॉलिटिकली डील किया गया। आज जिस तरह से हो रहा है, मुझे एक बात बताइए, इंडियन एक्सप्रेस ने जो बातें सामने लाई है, हमारा छोड़ दीजिए, हम 1.5 साल से ला रहे, माधोपुर में ला रहे, सुप्रीम कोर्ट में जो मरे हुए लोग थे वो चले गए, भाई हम तो जिंदा है लेकिन हमको निकाल दिया है, राहुल जी ने मरे हुए लोगों के साथ चाय भी पी, वो भी जनता के सामने है। दूसरी बात, आपने 26 सितंबर को जो प्रेस नोट निकाली है उस प्रेस नोट में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें अप्रूवल दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि लेट इट बी क्लियर वी हैव नॉट अप्रूव्ड एनी काइंड ऑफ थिंग इन फॉर्म नंबर 6। फॉर्म नंबर 6 1960 एक्ट के तहत पार्लियामेंट चेंज करती है गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे, वैसा हुआ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोलते बोलते कह दिया। दीपांकर दत्ता ने क्या कहा कि आप कमिटी को चेंज कर दोगे और एक जूनियर मंत्री को लाओगे तो क्या वो मंत्री अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ जा पाएगा? नहीं। आपने एक सेक्शन 16 में बदलाव लाया, क्या कहा? आप कुछ भी कर लो, जो भी गलत सलत करना है आप कर लो, आपके ऊपर कोई भी सिविल क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी, जो इम्यूनिटी प्रेसिडेंट को भी नहीं है पद से जाने के बाद। प्राइम मिनिस्टर इस देश के दो कड़घरे में खड़े रहे हैं, ऐसी इम्यूनिटी आपने पहुंचाई। फिर दो लोगों ने 10 महीने में 14 बार जो है असहमतियां जताई, उन्होंने कहा कि हमें तो मीडिया से पता चल रहे हैं चेंजेस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वन अमंगस्ट वो इक्वल रहे, वो तीनों का जो है वो सहमति से, तीनों के बहुमत से सारे निर्णय होने चाहिए, वो नहीं हुए हैं तो आज तक तो किसी उनके ऊपर कोई कार्रवाई वैसा दिखता नहीं है। फिर महाराष्ट्र के चोकलिंगम जी जो है सीईओ है महाराष्ट्र के, उन्होंने भी सेम चीज फ्लैग की। और आज तो एक चीज जो है फिर से इंडियन एक्सप्रेस ने निकाली है महाराष्ट्र में, जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारा एवरेज एज है ना वो 72 है। अभी ये रिपोर्ट जो है वल्लभ ओझरकर का है, इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्टर है। 270,000 मतदाता जो है वो 100 वर्ष से लेकर 150 वर्ष के हैं। अकेले नासिक में ऐसे 230,000 मतदाता है। महीने भर में पत्राचार चल रहा था, 6 अक्टूबर को इसे दुरुस्त किया गया, कहां? दिल्ली में। अधिकार किसके है? ईआरओ के है। ईआरओ कौन है? एसडीएम है। एसडीएम कहां बैठता है? एसडीएम बैठता है अपने अपने तालुके में। तो उसके अधिकार जो है वो छीन लिए हैं। फिर बाद में जब ये सारी चीजें सामने आई तो वही 26 सितंबर के प्रेस नोट में कहा गया कि हम ईसीआई नेट का समीक्षा करेंगे,
1: ठीक है, लेकिन अब तो करना क्या है थोड़ा बताइए ना, मतलब करना क्या है?
4: ये है कि
1: रिजाइन करना है।
4: पुतली बनकर ज्ञानेश कुमार ने इस देश के साथ गद्दारी की
1: वो
4: है।
1: तो नहीं कर रहे हैं रिजाइन, अब क्या करना है?
4: नहीं करना पड़ेगा ना,
1: क्या
4: तो प्रधान भी नहीं कर रहे थे, करना पड़ेगा रिजाइन, क्योंकि आपने देश के डेमोक्रेसी के साथ गद्दारी की है, आपने देश के डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ किया है, तो आपको तो जाना ही पड़ेगा। आप जो मर्जी जितना जोर लगाना लगा लो, जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने देश के साथ गद्दारी किया। अच्छा काम किया होता आपको रिवार्ड भी मिलता, आपने गलत काम किया है ऑन रिकॉर्ड ऑन प्रूफ के साथ सब पकड़ा गया है, उसके बावजूद अगर गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करती है तो वो लाभार्थी है गवर्नमेंट, वो बेनिफिशियरी है, स्पष्ट तरीके से सामने आया है और उसके ऊपर कार्रवाई होके रहेगी।
1: चलिए शिवम जी जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स, फिर
3: क्विक हो नहीं पाएगा बट कोशिश करता हूँ।
1: आप ट्राई कीजिए, आप कर लीजिएगा, मुझे भरोसा है।
3: बिहार में 65 लाख वोट कटे थे, 21 लाख ऐड कर दिए, सीधे ज्ञानेश जी को चिट्ठी गई थी क्या? उत्तर प्रदेश में भी वोट कटे थे, उसके बाद 2 लाख उनमें जोड़े गए। महाराष्ट्र में भी हुआ, और जिस महाराष्ट्र की आप बात कर रहे हैं वहां पर 48 लाख वोट काटे गए थे और 8 लाख बाद में जोड़े गए। सारा विषय कोर्ट में, और उसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत है आप कोर्ट जा सकते हैं, स्वतंत्र है। अब आगे आते हैं, इन्होंने एक और चीज कही,
4: महाराष्ट्र में 2.7 करोड़
3: लगते हैं ना, प्लीज आगे चलते
4: हैं।
3: इनिशियल ड्राफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ,
4: इनिशियल ड्राफ्ट की बात कर
3: रहा हूँ। अब आगे आते हैं, आपने एक और चीज कही कि प्रधानमंत्री को कौन चैलेंज कर पाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ये आज ही पैदा हुए हो क्या आप? ये देश आज ही 2014 के बाद पैदा हुआ, पहले कभी दिखाई नहीं दिया? जब 58 साल बैठकर सत्ता की मलाई खा रहे थे तब दिखाई नहीं दिया? 1950 से लेकर 1989 तक इस देश में प्रेसिडेंट को प्रधानमंत्री जो प्रस्थापित कर देते थे और उसके बाद कहते थे कि इनको इलेक्शन कमीशन बना देना चाहिए और वो इलेक्शन कमीशनर बन जाते थे, तब तो समझ में नहीं आई ये बात। उसके बाद 3 हो गए 2023 तक, फिर भी समझ में नहीं आई। UPA 1 UPA 2 आया, फिर भी समझ में नहीं आई। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं एक प्रोटेम कमेटी हम बना दे रहे हैं, उसमें सीजीआई रहेंगे और जब तक सरकार इस पर प्रॉपर कमेटी नहीं बना देती है सीजीआई वहां रहेंगे। उसके बाद सरकार ने कमेटी बनाई, वहां पर एलओपी आए, उससे पहले एलओपी थे क्या? हम तो कभी एज एलओपी आपकी कमेटी में नहीं थे, तब आपको कभी दर्द नहीं हुआ। और आते हैं क्रेडिबिलिटी पर, आपके पास कोई सवाल का कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। इसी देश में इलेक्शन कमिश्नर ने नवीन चावला जी को लेकर यह कहा था कि जब बैठक होती रहती है ऐसी राउंड टेबल जैसे अभी अंजना जी कर रही हैं, तो वो बार बार बाथरूम करने जाते हैं, और जैसे ही बाथरूम करने जाते हैं उसके बाद तुरंत अंदर आते हैं तो मेरे पास कांग्रेस के सीनियर लीडर का फोन आ जाता है। कहां से आता था भाई? ये ऐसे चलाते थे आप? उन नवीन चावला को हटाने के लिए प्रतिभा पाटिल जी को बाकायदा लिखा इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, वो हटाया नहीं, उनको सीईसी बना दिया, ये कैसी बातें कर रहे हैं। अब आते हैं इंडियन एक्सप्रेस पर, आपने कहा कि बार बार एक तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, 14 आपत्तियां जताई, कहां है भाई स्कैन कॉपी है कोई, पेपर है कोई, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। और अब सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, चलिए मान लीजिए हमारी सारी बातें झूठी, सुप्रीम कोर्ट पर तो विश्वास होगा, ये वहां भी बेचैनी है भाई, कहीं ना कहीं तो टिकना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट गलत, इलेक्शन कमिश्नर गलत, अंजना ओम कश्यप गलत, पूरे देश का मीडिया गलत, फौज गलत, कोई तो सही है, अब क्या करें, आईसीजे जाए इसको लेकर।
1: अच्छा एक बात बताइए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन डालने से क्या फायदा हुआ, 2:1 तो है ही नरेश, इधर प्रधानमंत्री एक मंत्री और उधर एक एलओपी, तो फैसला तो हमेशा सरकार की तरफ होगा, तो ये तो झांसा हो गया ना।
3: हम गरीब बेचारे जब 58 साल विपक्ष में थे, हमें तो वो एलओपी का भी मौका नहीं मिला।
1: अरे तो इनको तो जनता ने डन ब्रो कर दिया,
3: 58 साल बाद किया ना।
1: तीसरा बार आपको मौका दिया
3: जैसे
1: है,
3: जैसे इनको किया,
1: इनके जैसे बनने के लिए थोड़ी चुना है,
3: बिल्कुल नहीं, लेकिन जैसे जैसे इनको डन ब्रो किया ऐसे हमें भी कर देंगे अगर हम गलत होंगे तो।
1: अच्छा ठीक है, जल्दी से कोई रिस्पॉन्स जी और दोनों बच्चों ने।
4: देखिए कि जब सीधा प्रधानमंत्री तय करते थे तो टीएन सेशन, लिंगडेव जैसे इलेक्शन कमिश्नर्स आए और कमेटी बनाकर, कमेटी को सीएम जैसा बताया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसे चेंज कर जूनियर मंत्री लाकर उसके साथ फ्रॉड करना और ऐसा लीगल इम्यूनिटी देना कि आप चोरी जितनी करना है कर लो, हम आपके पीछे खड़े और फिर चोरी करवा लेना, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। पहले तो क्या है, महाराष्ट्र में इनिशियल लिस्ट में 48 लाख कटे, महाराष्ट्र में इनिशियल लिस्ट में 2,07,00,000 कटे हैं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड की सारी बातें जो मैंने सामने रखी है। अब इंडियन एक्सप्रेस पास प्रूफ नहीं है तो कितने दिन हो गए, 23 तारीख की बात है ये, 21 तारीख से 23 तारीख के बीच में, ना इलेक्शन कमिश्नर ने कोई नोटिस दिया उनको, ना उनको कोर्ट में घसीटा है, तो घसीटो ना, वो सामने प्रूफ रख देंगे ना वो।
1: ठीक है रोहित जी, नेक्स्ट राउंड।
2: देखिए आज कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीमान राहुल गांधी लगातार सड़क पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इश्यू बनाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, न्यायपालिका व्यवस्थापिका कार्यपालिका की विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं। देश जानना चाहता है ना कि पूर्व में या वर्तमान में या भविष्य में या इतिहास में किसी भी दौर में कांग्रेस पार्टी के अलावा किस सरकार ने इस देश के सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई को सुपरसीड किया हो, जरा बताइए ना। 64 में गजेंद्र गेदकर जी को, 73 में एन रे को और 77 में राजनीतिक रूप से वनवास पर जाने के पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा एचआर बेग को सीजेआई बनाया गया, सुपरसीड किया गया।
1: 26 आई है,
2: 26 में आ रहे हैं ना, और अब राहुल गांधी बेचैन है, चल जा रहे हैं कनॉट प्लेस पर खाना खाने के लिए, माल महाराज के मिर्जा खेले होली, कार्यकर्ता हजारों की संख्या में भूखे लाठी खा रहा है बिना मतलब का, राहुल गांधी की गलती से आई बढ़िया से एसी रेस्टोरेंट में बैठ के 100 लोगों के साथ पिकनिक मना रहे हैं अपने भगना रेहान वाद्रा के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। राहुल गांधी इस देश के अंदर केओस कराना चाहते हैं, गृहयुद्ध कराना चाहते हैं, देश गृहयुद्ध में नहीं जाएगा।
4: एक चीज बतानी थी, कर्नाटक में फॉर्म नंबर 7 जो है वो जबरदस्ती जो जोड़े गए, नपेंगे तो नीचे से ऊपर तक सब, अभी कर्नाटक में इंक्वायरी चालू होगी कि कितने लोगों ने फॉर्म नंबर 7 जोड़ के जबरदस्ती सही होटल को डिलीट करने का काम किया, उसकी भी इंक्वायरी चालू
1: होगी।
2: 10 सेकंड सुन लीजिए, पहले तो डीके शिव कुमार सिद्धरमैया जी उनके बेटा को नापने में लगे हैं, पहले उसकी चिंता कीजिए, अभी आप
1: राहुल गांधी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
5: बिल्कुल, मैं आपको दो नाम के साथ शुरू करूंगा, सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी, ये दो चुनाव आयुक्त हैं इस देश में। 10 महीने में ये लोग 14 बार अपनी बताते हैं कि आईटी मॉड्यूल्स में चेंज हो रहा है,
1: उन्होंने
5: कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखते हैं, जुलाई 29, 2026 को कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखते हैं डॉक्टर विवेक जोशी और डॉक्टर सिंधु, डॉक्टर संधू कहते हैं कि आईटी रूल्स मॉड्यूल्स में चेंजेस हो रहे हैं, हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया जा रहा है, एक साल से हमें मीटिंग का एजेंडा नहीं बताया जा रहा है और मीटिंग मिनट्स नहीं दिए जाते हैं, हमको ये पता ही नहीं चल रहा है कि इस देश में आईटी रूल्स के साथ साथ नए नए अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, हमको पता ही नहीं है, विदेश चले जा रहे हैं हमको पता ही नहीं है, ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं हमको पता ही नहीं है। 14 बार उन्होंने ऐसा किया, ये अगर इंडियन एक्सप्रेस झूठी खबर थी कर दीजिए एफआईआर, आपकी सरकार है, आपके पास सत्ता है, सब कुछ है, लेकिन उस रिपोर्ट के बाद क्या होता है, हम तो इस देश की जनता 12 सालों से जानती है कि इलेक्शन कमीशन की क्या धज्जियां उड़ाई है भाजपा ने, इस देश की जनता तो देखती है ना कि चुनाव आयोग किस तरह चुनाव की डेटे सेट करता है, आचार संहिता में किस तरह भाजपा अलाउ होता है हेट स्पीचेस, किस तरह चुनाव के 2 दिन पहले भाजपा पैसा बांट सकती है और चुनाव आयोग चुप रहता है, इस कैसे शेड्यूलिंग होती है चुनाव आयोग कैसे करता है और कब किस फेज क्या होता है, किस फेज में कहां वोटिंग होगी, ये सब तमाशा इस देश की जनता 12 साल से देख रही थी। ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा क्यों चाहिए, क्योंकि अब वो चीजें प्रूफ हो चुकी हैं, अब वो चीजें साबित हो गई हैं कि ज्ञानेश कुमार सरकार के टूल हैं, और जहां तक अनार्की की बात कर रहे थे हमारे साथी और ये कह रहे थे कि रेजिग्नेशन ऐसे ही हो जाएगा, साहब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया। हम जानते हैं कि ये पूरे सिस्टम जो भारत के लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है वो किस ऑफिस से हो रही है हम जानते हैं। अभी हमने वजीर उड़ाया है, अगला कुछ उड़ाएंगे, हम पहुंचेंगे वहां तक जहां हमको पहुंचना है। ये आंदोलन, ये आंदोलन नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लेकर ही रुकेगा ये तो मान लीजिए, क्योंकि इस देश की सभी, एक सेकंड मुझे कंप्लीट करना है भाई, इस देश की शिक्षा बर्बाद हुई तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, इस देश का चुनावी प्रक्रिया बर्बाद होगी तो ज्ञानेश कुमार इस्तीफा देगा, इस देश की कोई भी लोकतांत्रिक संस्था काम नहीं कर रही है एंड दिस इज गोइंग अंडर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अमित शाह की सरकार ऐसा कर रही है और ये आंदोलन अभी तो एक एक पैदे उड़ा रहा है, ये आंदोलन पहुंचेगा अमित शाह और मोदी के गले।
1: आश आश जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए।
6: मैम भैया ने बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात कही है कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग लो आप, इलेक्शन कमिश्नर के ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग लो आप,
5: मेट्रो खोल दो खाली मांग लेंगे,
6: मिनिस्टर का इस्तीफा मांग लो, पर इंदिरा गांधी जी का इस्तीफा मत मांगना क्योंकि उसके बाद इमरजेंसी लगा देंगे। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात कही। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की बात की थी आपने, आपको लग रहा है वो रिपोर्ट झूठी है, मैं प्रूफ कर देना झूठी है। और अगर मैं यहाँ पे कहीं भी गलत करता हूँ, आप मेरे फैक्ट्स को अगर आप रॉन्ग प्रूफ करते हो, मैं पब्लिक अपोलॉजी के लिए तैयार हूँ, सीधा साफ बोलता हूँ। 21 तारीख को इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी कुछ सवाल की लिस्ट भेजी थी इलेक्शन कमीशन को और उसके बाद बिना जवाब आए उन्होंने अपनी रिपोर्ट डाल दी, जिस रिपोर्ट में उन्होंने येलो जर्नलिज्म का इस्तेमाल किया और सीधा वहां पे टैगलाइन में लिख दिया कि 17 करोड़ वोट काट दिए गए। आप मेरे को यह बताइए कि 26 तारीख को इलेक्शन कमीशन का प्रॉपर प्रेस रिलीज आता है, उस प्रॉपर प्रेस रिलीज में उन्होंने हर एक क्वेश्चन के आंसर दिए। पहला क्वेश्चन उनका था कि सिंधु जी ने और जोशी जी ने आपसे मांग, आप 14 बार लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स भेजे हैं, वो ऑफिशियल लेटर किस चीज के लिए भेजे गए थे, वो ऑफिशियल लेटर्स भेजे गए थे आपके आईटी डिपार्टमेंट वाले के, और जो आईटी डिपार्टमेंट वाले ने आपने बोला वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई।
4: थोड़ा सवाल ये है कि अधिकार किसको है वोटर को डालना या निकालना, इसका फाइनल अधिकार किसको है?
6: ईआरओ को।
4: ईआरओ के अधिकार डीजीआईटी सीमा खन्ना ने कैसे ले लिए?
6: सर देखिए ईआरओ की जो
4: एक्सेप्ट किया फैक्ट है ये।
6: नो, आई डोंट एक्सेप्ट इट सर।
4: आपने नहीं इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट किया।
6: आप बिहार जाइए वहां पे 21 लाख वोटर्स।
4: मैं क्या बोल रहा हूँ, अधिकार क्यों ले लिए
6: वो, किसने
4: अधिकार क्यों ले लिए
6: आप बताओ।
5: एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको ऐड कि बंगाल में
1: पुलिस की ज्यादतियों पर, नहीं नेक्स्ट टाइम पुलिस की ज्यादतियों पर जल्दी से आप आइए कि क्या क्या मामला है भाई केजी त्यागी जी। पुलिस बार बार अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और जो इजाजत आज नहीं दी गई कई जगहों पर मेट्रो और रेल के लिए, उस सबको लेकर लोगों में गुस्सा है, पुलिस का क्या इस पे वो है?
7: देखिए पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा शब्द जुड़ा हुआ है, पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कानून में बड़ी स्पेसिफिक प्रोविजन दिए गए हैं कि पब्लिक ऑर्डर को किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा, कि अगर कोई लॉफुल असेंबली भी जुड़ी हुई है और अगर वो इलीगल हो जाती है तो उसके बाद जो प्रोविजन सीआरपीसी और आईपीसी में लिखे गए हैं उन प्रोविजन के हिसाब से पुलिस वर्क करती है। वो लोग एक उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन जो एक्शन हम लेते हैं वो एक्शन सीआरपीसी आईपीसी और रिटन कानून के हिसाब से होता है। क्यों? क्योंकि हमारा हर कंडक्ट, हर इन्वेस्टिगेशन, हर अरेस्ट स्क्रूटनी होती है कोर्ट से। अगर हम कोई केस बंद भी करते हैं तो भी वो कोर्ट में जाएगा, पहले मजिस्ट्रेट देखेगा कि वास्तव में ये बंद होने के काबिल केस है या नहीं है। प्रोटेस्ट देखिए दो तरह का रॉइट होता है मैडम, एक रॉइट तो वो होता है जैसे एक इलाके में आगजनी हो गई, वारदात हो गई, फलाना हो गया, देखा कि 500 आदमियों की भीड़ आपस में लड़ रही है, वहां का एक्शन कुछ और होगा, वहां डंडा भी चलेगा, गोली भी चलेगी, सब कुछ चलेगा, क्योंकि हमें अपनी लाइफ नहीं, हमें पब्लिक की लाइफ को बचाना है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है इसमें एक सीमा रेखा खींच दी जाती है कि भाई फर्स्ट बैरिकेड, सेकंड बैरिकेड एंड थर्ड बैरिकेड, ये पहले से फर्स्ट बैरिकेड पे ही ये लोग ड्रामा करते थे, सेकंड पे करे लेकिन थर्ड पे कोई कुछ नहीं करता था, क्योंकि उन्हें पता है कि उसके बाद
1: जाके अब तो थर्ड बैरिकेड पे चढ़ा जा रहा है।
7: हाँ ये तो अगर थर्ड बैरिकेड चढ़ा जाएगा तो मैडम फिर तो एक्शन होगा।
4: देश के सांसद विपक्ष के 60% का रिप्रेजेंटेशन करने वाले जाने मिलने के लिए जा रहे हैं, आप बैरिकेड लगाते हो, क्या वो टेररिस्ट है, क्या वो ऐसा कोई अनलॉफुल असेंबली कर रहे हैं? वो तो अहिंसा के मार्ग से शांति से जाकर इस्तीफा मांगना चाहते थे, आप नए नए चीजें जो है खड़ा करोगे, सांसदों के लिए बैरिकेड लगाओगे, ये कहां तक सही है, पहली बात। दूसरी बात, महिलाओं को, अंजना जी, महिलाओं को, बड़ी बड़ी महिला नेताओं को पीछे से चोटी निकालना, बैज हाथ में लेके उसको रब करना,
7: मतलब यही
4: ये चोट पहुंचाना। अगर जाके नहीं मिल सक रहे, नहीं मेरा हो जाएगा, आप बोलिए, तो जाकर मिल नहीं सकते, जाकर बात नहीं कर सकते, बैरिकेड खड़े कर देते। और सांसदों को अगर भीड़ तंत्र कोई कहता है तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। अगर किसी को इलीगल इम्यूनिटी मिली है पूरे देश 70 साल में, तो वो इम्यूनिटी केवल ज्ञानेश कुमार को मिली है वोट चोरी करने के लिए, स्पष्ट तरीके सामने आए। आज ये वोट चोरी तो सामने सामने आई है, इनका विधायक वोट चोरी करता है।
1: चलिए जवाब दीजिए।
3: थैंक यू। मिलने जा रहे थे, मिलने से रोक दिया। भाई एक तो बहुत ही बेसिक भाषा में को समझाना पड़ता है। पहली बात ये कि जून 2025 में ज्ञानेश कुमार जी से मिलने के लिए समय राहुल गांधी ने मांगा था, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, राहुल गांधी जी को उन्होंने कहा था कि डेट एंड टाइम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से तय कर लीजिए, मिलने आ जाइए, कोई नहीं पहुंचा। दूसरी बात, मुझे अंजना ओम कश्यप जी से प्रॉब्लम है, मुझे उनसे मिलना है, मैं उनको मैसेज करूंगा, चिट्ठी लिखूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, वो बोलेंगे आ जाइए, मैं उनके घर पहुंच जाऊंगा। ये 300 लोगों को कॉल लेकर मिलने जाता है भाई, और क्या डिस्कशन करने जाते हो, थोड़ा बहुत लॉजिक नहीं लगाना है क्या? अब आगे आते हैं, इन्होंने एक और बात कही कि जिस तरीके से स्थितियां हैं, इतनी पुलिस लगा, भाई बहुत सीधी सी बात है, 123 पुलिस वाले घायल पिछली बार हुए थे। सिर्फ इतनी सी बात है कि आज की स्थिति देख लीजिए, प्रियंका गांधी जी का ऑन रिकॉर्ड वीडियो है भाई, कोनी मारते हुए एक महिला पुलिस को। मतलब मान लिया आप बड़े घर के लोग हैं, लेकिन आपके ऐसे स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है आपके पास। एक और बात इन्होंने कही कि जिस तरह से चीजें हुई है, 14 बार आपत्ति हुई है, भाई
4: जवाब देना है।
3: एक चीज बताओ, आपको इस शो के लिए बुलाया गया, किसी गेस्ट कोऑर्डिनेशन ने फोन किया होगा, मैसेज होगा, कॉल होगा, उसके बाद कंसेंट पे आप आए? 14 बार जो आपत्तियां दी हैं इलेक्शन कमिश्नर्स ने, उनका रिटर्न रिकॉर्ड होगा? उसके बाद जितने भी एसआईआर के प्रोसेस हुए हैं उस पर सबके सिग्नेचर चाहिए होते हैं, सर्वसम्मति के बिना आपसे कोई सिग्नेचर करा लेगा यहां पर? जैसे आपका यहां आने का फुटप्रिंट है ना, ऐसे ही उन इलेक्शन कमिश्नर्स का उन बैठकों में होने के बाद
1: लॉजिकल रीजनिंग है। अतुल जी आप बोलिए,
3: झूठ से नहीं चलता। 14 बार आपत्ति बताया भाई उन्होंने, अगर सिग्नेचर नहीं होते तो एसआईआर का ऑर्डर ही पास नहीं होता, फिर क्या लॉजिक है इस बात में? सिर्फ बार बार झूठ बोलने से सच नहीं होगा।
4: अभी अभी सुनो,
1: और उसके बाद दोनों ने बैठक की है, फोटो आई है, दोनों ने बैठक की, फोटो आई है,
4: फोटो आई है।
1: अब आगे क्या करना, वही कीजिए ना, उसी पे हम लोग घूमते रहते हैं, वही क्या हुआ नहीं हुआ जल्दी से।
4: प्रेस नोट पीछे हुई है, प्रेस नोट में जो बातें लिखी है सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दी है, फोटो आई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस, बच्चियों का वीडियो दिखाना सही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या दिक्कत थी? और 14 आपत्तियां दिखाई है, ये एक रिपोर्टर बताती है अंजना जी आपकी जैसी, वो रिपोर्टर को आप क्यों अरेस्ट नहीं करते फिर, अगर गलत है तो क्यों इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं लेता? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है,
1: मिलिट्री कू की खबर भी एक्सप्रेस ने छापी थी, अरेस्ट कर लिया क्या? ऐसे थोड़ी होता है।
4: बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके ऊपर आपत्ति ली है, चोक्कलिंगम जी के बारे में जो बातें आई है, उन्होंने जो लेटर लिखा है उसके ऊपर भी आपत्ति नहीं। बंगाल के ट्राइब्यूनल के लोग कह रहे हैं कि हम नोटिस दे नहीं पा रहे, हम नोटिस रिसीव नहीं कर पा रहे, ऐसे चलेगा तो 12 साल, एक मिनट मैं बीच में बोला, 12 साल लगेंगे, 12 साल। और ये कहते कि सबूत के साथ सामने रखे, तुम्हारा विधायक पकड़ा गया, जहां पर होटल नहीं वहां जाके होटिंग किया उसने, उसके बाद बोलते जाओ आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ, अरे अरेस्ट करो ना, उसका होट नाम ही नहीं वहां पे, अलग पार्टी उसका नाम है, उसके बावजूद अगर आप मुजोरी करते हो, इसका मतलब यह है कि आपको इस देश का लोकतंत्र कर रहे हो, और सामने सामने पकड़ने के बाद भी झूठ बोलते हो।
3: मैं फिर से कह रहा हूँ, आप बड़े हो गए, ये देश ट्विटर से नहीं चलता,
4: ये देश ट्विटर से नहीं,
3: मैंने कहा था ना अपने समय में, बीच में बोला
4: नहीं, सामने
3: अपने समय में फेंक के मारना हो फेंक देना, लेकिन अपने समय
4: वो धंधा नहीं करते हम,
3: सो प्लीज रुकिए ना, झगड़ा कौन कर रहा है, मैं तो नहीं बोला। अरे देखें आपके प्रवक्ता पानी फेंक फेंक के मार रहे हैं, झगड़ा नहीं करते, मैं आपके बीच में नहीं बोला, थैंक यू। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि आपने जो ट्विटर पर किया, हाँ ये लोकतंत्र है, कोर्ट ही जाना पड़ेगा, ये राहुल गांधी का घर नहीं है कि भाई जो कह दिया वही होगा, कोर्ट ही जाना पड़ेगा,
1: जनता की अदालत, कानून की अदालत,
4: नहीं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अधिकार होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने गलत वोटिंग करते उसी वक्त वहां पर अरेस्ट करना चाहिए।
5: देश की बुनियाद है लोकतांत्रिक और अहिंसक प्रतिरोध, वो लोग इसको कम समझते हैं जो लोग उस दौर में भी अंग्रेजों के साथ थे, वो लोग कम समझते हैं जिसने इस दौर में, उस दौर में गांधी की हत्या में जो शामिल रहे, वो लोग इस बात को नहीं समझते हैं, डरते हैं। इनफैक्ट अगर आपको इतना डर है, अगर आपको लगता है कि इस देश की जनता आपके साथ खड़ी है, खोल दीजिए ट्रेनें बसें ये रस्ते, बैरिकेडिंग लगा दो, लाठी मार दो। अगर आपको ये लगता था, सर ने जो लाठी की बात कही कि तीसरा बैरिकेड टूटता है तो लाठी चलती है, मैं कह रहा हूं 20 जुलाई की लाठी चार्ज के बाद आंदोलन कमजोर हुआ या मजबूत हुआ? इस देश का युवा लाठी खाने, गोली खाने को तैयार है। मैं
3: तो आप चाहते हैं गोली लगे?
5: अरे पहले चला दिया आपने, हम क्या करें, हम जानते हैं
8: मजबूत होता है आंदोलन,
5: अमित शाह की बात गले तक आ गई है, वो लाठी चलाएगा, अमित शाह करेगा क्या, लाठी नहीं चलाएगा।
2: देखिए भाई,
5: अरे डरे हुए हैं आप लोग, लाठी चलवाइए, हम तैयार हैं, आप कल गोली चलवा
8: दीजिए,
5: हमारी तैयारी पूरी,
2: गोली चली। अरे भाई हम कमजोर आदमी है, बोलने दीजिए,
5: हिंसा
2: देखिए, इस देश में जो माफी वीर नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, जो कर्मवीर प्रधानमंत्री, अरे रुकिए, माफी वीर राहुल गांधी, रुकिए ना भाई, अपने टर्न में बोलिएगा, रुकिए,
5: सड़क पे पूछ,
2: अरे रुकिए प्रवक्ता महोदय, रुकिए, माफी वीर श्रीमान राहुल गांधी कर्मवीर गणनायक नरेंद्र मोदी जी के विरोध में इस स्तर पर गिर गए हैं कि आज देश में एनार्की लाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता नरेंद्र मोदी के साथ कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। जिस प्रकार से वाद्रा परिवार की बहू आदरणीय प्रियंका वाद्रा ने केहुनाथ किया महिला सिपाही को, क्या देश माफ करेगा? क्या क्या तरीका है ये, हिंसा किस प्रकार से बढ़ा रही है, ख्याली पुलाव मत पकाइए,
1: आंदोलन
2: बिरयानी खाने के लिए
1: इधर देखिए आंख खाली मत चमकाइए। ये देखिए, ये जब अन्ना आंदोलन हुआ इनकी सरकार में, किसको फायदा हुआ? बीजेपी को हुआ,
2: देश की जनता को फायदा हुआ,
1: बीजेपी
2: नहीं, जनता,
1: बस कीजिए,
2: जनता का
1: बस कीजिए, कुछ बीजेपी वालों के लिए भी छोड़िए,
2: के लिए मोदी जी आए,
1: कुछ बीजेपी वालों के लिए भी छोड़िए ना रोहित जी,
2: क्या कीजिए,
1: ये क्या बोलेंगे,
8: रामलीला के बाहर खड़ा किया हो आप लोग,
2: लेकिन फर्क
8: है,
1: अब जब ये आंदोलन हो रहा है तो इनको लग रहा है हमको फायदा
2: होगा,
1: क्यों नहीं होगा,
2: क्यों नहीं होगा, आप पूछिए क्यों नहीं,
1: क्यों नहीं होगा,
2: क्या कीजिए भाई, अब आपको छेड़ दिए तो रुक जाइए, खुदा खुदी नहीं, ऐसा है, आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने इस देश में इमरजेंसी इम्पोज किया, और इमरजेंसी के समय, अरे रुकिए ना भाई, आडवाणी जी की चिंता मत कीजिए, उसके लिए देश खड़ा है, आप आडवाणी जी की चिंता मत कीजिए,
8: आडवाणी
2: जी के चिंतन के लिए देश खड़ा है, जी के साथ है, इतिहास यही करेगा, सत्ता के लिए नेहरू जी ने देश बांध दिया, नरेंद्र मोदी अखंड भारत के सपना को लेकर चले हैं, इतिहास की बात करेंगे, अखंड भारत के पैरोकार मोदी और विभाजित भारत के नेहरू
1: जल्दी बोलिए,
7: इम्पोर्टेंट चीज कहना चाहता हूँ, ये जो रामदेव वाले प्रोसेशन को सुप्रीम कोर्ट में भी मेंशन किया गया है, रामदेव वाले केस में वास्तव में इनजस्टिस किया गया, सोते हुए 8,000 आदमियों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, वो बिल्कुल गलत था, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जो
1: किसके कहने पे किया गया था,
7: ये तो कमिश्नर ऑफ पुलिस
1: जिम्मेदार है, पुलिस, अच्छा कमिश्नर,
7: कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसमें क्या दिक्कत है,
1: अच्छा गृह मंत्रालय से कोई नहीं ले रहा,
7: गृह, देखिए गृह मंत्रालय का सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है,
1: आपने अतुल जी को चुपी करा दिया, ऐसा बात बता दिया, अरे किया था ना,
8: पेलेटगन चल नहीं चलाया, बोला पेलेटगन सामने आया, AK-47 सामने आया, जवाब सामने आया,
7: अतुल जी
8: 21 दिन तक अमित शाह की हिम्मत ने भी संसद में आने की, तो बियॉन्ड डाउट प्रूव है, आप हमें चुप करते हो, उन्हें नहीं करते हो,
1: रोहित जी
7: छोटा सा
3: एक चीज है, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि आपको प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट करिए, आप अन्ना आंदोलन से इसको कंपेयर कर रहे हैं, वहां पर बताइए जरा अन्ना जी ने किसको कोनी मारी, बताइए कौन से पुलिस वाले से लड़ाई की, बताइए किसको अपमानित किया, बताइए कौन सी बैरिकेटिंग तोड़ी, बताइए क्या हुआ, फायदा लेना है ना आपको, ले लीजिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से तो कर ही सकते हैं,
1: आप रामलीला मैदान दीजिए ना इनको प्रोटेस्ट करने के लिए,
3: दिया है रामलीला मैदान, खाली पड़ा है, लेकिन पहले दिन जब इन्होंने जब पहली बार इन्होंने खासतौर पर जंतर मंतर पर एक दिन के लिए प्रोटेस्ट के लिए जगह मांगी, उनको जगह मिली, वो 23 दिन वहां पर रहे, 123 पुलिस वाले वहां पर घायल हुए, स्थितियां कैसी हो गई सबने देखा, आप शांति से प्रोटेस्ट कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास 5,000 लोग नहीं, और रही बात खोलने की, और आने दीजिए, ट्रेनें खोल दी, बिल्कुल खोल देंगे, खुले तौर पर ही लोग जनता वोट देने जाती है, क्या हाल हुआ पड़ा आप खुद देख लीजिए, इतनी स्थितियां खराब है कि पूछे मत, कोई पूछने वाला है नहीं, जाहिर है राज्य में हॉस्टेज करके 5,000-6,000 लोगों को इकट्ठा करके अनार्की कराना चाहते हैं, महिलाओं को, बहनों को, पुलिस वालों को पीटना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता, अधिकार सबका है बट जिम्मेदारी,
8: अच्छा क्या त्यागी जी ने बहुत सारी बातें कही लेकिन कील के बारे में बात नहीं की, कील जो लटको कील लगाना, बीच में बोला नहीं मैं आपके, मैं शांत रहा, कील लगा के मारना, पेलेट गन चलाना, सामने से सबूत लाने के बाद झूठ बोलना, फिर सामने आ जाना रिपोर्ट में, ये सारी चीजें देखी है, राहुल गांधी जी ने कहा कि आप बताओ मैं कहां बैठूं, कहा था ऑन रिकॉर्ड है आकाशवाणी में कि आप बताओ मैं कहां बैठना, मैं जाके बैठूंगा, मैं राजनेता घर तो नहीं जा सकता हूं, मैं बैठूंगा, मैं आंदोलन कर रहा हूं, अन्ना हजारे के साथ हमने कम से 12 निगोशिएशन किए, जिस जनलोकपाल की बात हुई थी वो जनलोकपाल का बाद में मोदी जी ने क्या किया ऑन रिकॉर्ड है, उस कैक का क्या हुआ, उस ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का कैसा कैसा इस्तेमाल हुआ, किस तरह से संस्थाओं का इन्होंने दोहन किया है और सैबोटाज किया है, सबवर्ट किया है आरबीआई से लेकर, ये सामने सबूत के साथ सामने इसलिए जनता जुड़ी हुई है।
2: दो बहुत महत्वपूर्ण बात, जन लोकपाल का प्रतिफल आया भारत में, प्रथम लोकपाल के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष देश के प्रथम लोकपाल बने, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल शास्त्री जी और सोनिया गांधी के राज में नहीं बने, 19 या 20 में बने, रिकॉर्ड खोल के चेक कर लीजिए।
8: कब हुआ
2: समझ गए?
8: आंदोलन कब हुआ
2: ना? आंदोलन के बाद तैयारी में
8: हमने कर दिया था जन लोकपाल।
2: और सुनिए, राहुल गांधी जी जो कनॉट प्लेस पर मटन डोसा खाए हैं कार्यकर्ताओं को अकेला छोड़कर, रामलीला मैदान इनके घर के बाहर 10 गो कार्यकर्ता नहीं जाएगा, ये खाएंगे मटन डोसा, कार्यकर्ता खाएगा लाठी डोसा, ये सब नहीं चलेगा।
8: अच्छा,
2: कार्यकर्ताओं को
8: संवेदना
2: मटन डोसा खाएंगे, कार्यकर्ता क्या करेगा, जाके रेवंत रेड्डी के घर में बिरयानी खाएगा और लाठी खाएगा राहुल गांधी के लिए, और प्रियंका वाड्रा का केवनाथ खाएगी महिला पुलिसकर्मी
5: जी,
2: महिला
1: जल्दी जल्दी बोलिए।
5: ये चुटकी की ये मस्खरी की बात नहीं है,
8: चल रही है
5: जिस विचारधारा के मूल में हिंसा और उपद्रव, ये बाबरी मस्जिद ढहाने वाले लोग, ये लोग जो उपद्रव की राजनीति करते करते सत्ता तक पहुंच गए, वो लोग इन हिंसक और अहिंसा की बातें ना करें तो बेहतर है।
6: अच्छा,
5: जो लोग आप प्लीज पूरी बात खत्म करने दीजिए, अरे बैठ जा भाई, बैठ जा बैठ जा, मैं कह रहा हूँ आप में हिम्मत है, आप लोकतांत्रिक प्रतिरोध
6: पे गोली चलाने वाले, तो ये बात बिल्कुल
5: अपने टर्म में बोलना, रुक जा
6: भाई,
5: अभी बोले पहले बोलो, रुक जा मेरे भाई, तू बोलने चल, बात बोलने का वेट कर लूंगा,
6: नहीं जाएंगे,
5: सुनिए सुनिए सुनिए,
2: मंदिर वही बना,
5: उनको बीच में बोलना था, मैं कह रहा हूँ की सर सर
8: अगर मुलायम सिंह जी ने किया है, मगर मुलायम सिंह जी ने गोली चलाई है तो फिर अमित शाह ने गोली
1: चलाई
5: अगर आप में हिम्मत है, आप दिल्ली का ट्रैफिक, दिल्ली की मेट्रो, दिल्ली की ट्रेनें आने वाली, आप खोल दीजिए, आपको दिख जाएगा कि यानिश कुमार ने इस्तीफा दे कर
6: दिया है। डिबेट में मेरे को जो सबसे
5: आप में हिम्मत है तो आप ट्रैफिक खोल के देख लीजिए, तब फिर 5 लाख बच्चे मारेंगे।
6: वो सबसे बड़ा
5: युवा।
1: इसी के साथ आज राउंड टेबल में इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे आज तक।
9: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach in association with
10: Bharat ki apni electric sawari Sokudo.

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ
1: एक हिंट तो देते।
2: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
3: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
4: टेक्नोलॉजी के मामले में किसान सुनते सबकी हैं, पर मानते सिर्फ उनकी हैं जिन पर सालों से भरोसा हो। इसीलिए स्वराज पोर्टल टेक्नोलॉजी जो दे ज्यादा प्रोडक्टिविटी और बेमिसाल कंफर्ट। भरोसा और टेक, मेरा स्वराज प्रोटेक्ट।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: हमारे निबर मिस्टर कुमार बात बात पे कार मांगते रहते हैं।
4: वो इन लॉस को लाना है, कार मिल जाएगी।
5: अरे यार कुमार, अब तो अपनी कार ले लो यार।
6: कैनरा व्हीकल लोन से
4: अप टू 90% फाइनेंसिंग,
5: क्विक प्रोसेसिंग
7: एंड नो प्री क्लोजर पेनल्टी।
8: कैनरा व्हीकल लोन, अपनी वाली गाड़ी के लिए।
9: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
10: इस फेस्टिव सीजन हंडे सुपर डिलाइट डे सबके लिए लाए हैं डिलाइट। हंडे शोरूम आओ, अमेजिंग कार्स पे 1,00,000 तक की अमेजिंग डील्स पाओ।

0: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
1: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
2: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
3: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
1: मतलब
3: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
2: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
3: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: यहाँ ड्रिल करना पड़ेगा।
3: ड्रिल? नहीं नहीं, ओनर से पूछना पड़ेगा।
4: इसका नाम क्या रखेंगे?
5: ये भी ओनर से ही पूछ लेते हैं।
6: अरे भाई साहब, कब तक ओनर के डर में रहेंगे? शान से अपने घर में रहिए ना, विद कैनरा होम लोन।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
3: इस फेस्टिव सीजन हंडे सुपर डिलाइट डे सबके लिए लाए हैं डिलाइट। हंडे शोरूम आओ, अमेजिंग कार्स पे 1,00,000 तक की अमेजिंग डील्स पाओ।
4: How's the hostel? Settled?
5: Yes, Mark, really nice.
4: कोई आ रहा है क्या?
6: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटी तो निभाली, अब फिर से थोड़ा रोमांस है।
4: मयंक, for real?
6: One carat for my one true love. Natural diamond, real love solitaires to reignite your new season of love.

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलने के पश्चात राहुल गांधी जी का बयान एक नालायक नेता के बयान के समान है। मैं बहुत सोच समझ के ये शब्द, मुझे भी कुंठा हो रही है बोलते, तकलीफ हो रही है। आई एम सिटिंग ऑन अ वेरी हाई पेडेस्टल, ही इज द एलओपी ऑफ द कंट्री, मगर जब मैं कहता हूं एक नालायक नेता, इसलिए कहता हूं कि चलिए आपने प्रधानमंत्री के लिए जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया, झूठ बोला, वो पूरा देश देख रहा है। आपने जिस प्रकार से भारत के संवैधानिक पदों के लिए, संवैधानिक संस्थाओं के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, पूरा भारत सुन रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति को सड़क की लड़ाई में घसीटने का प्रयास किया गया, मगर एक नालायक नेता ने राष्ट्रपति महोदया को सड़क की लड़ाई में घसीटने की कोशिश की है। अब देखिए, बेसिक प्रोटोकॉल भी राहुल गांधी को समझ में नहीं आता है कि आप कोई मेमोरेंडम लेके जाते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट्स द मेमोरेंडम। ये बेसिक प्रोटोकॉल है भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का, इसीलिए तो भारत का लोकतंत्र विराट है। मगर आपने कहा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और उसी सांस में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कुछ एविडेंस है तो वो भी दीजिए। क्यों एविडेंस क्यों नहीं लेके गए थे? एविडेंस होगा तभी तो लेके जाएंगे। जब प्रेसिडेंट मैडम कहती है कि एविडेंस है तो दिखा दीजिए, बाद में एविडेंस देंगे। अगर बाद में एविडेंस देंगे तो आप गए क्यों थे? तो आप प्रेसिडेंट के पास गए क्यों थे बिना एविडेंस के? मतलब इतने दिनों से, मैं तो कहूंगा लगभग एक साल हो गया वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी करते हुए, उसका एविडेंस आपके जेब में रहना चाहिए था। क्यों नहीं था आपके जेब में? क्यों गए थे राष्ट्रपति भवन बिना एविडेंस लेके? और बाहर आके नालायक नेता कहता है कि राष्ट्रपति महोदया मान गई कि हम जो कह रहे। आप सोचिए, यह व्यक्ति लायक है क्या देश के प्रधानमंत्री या एक उच्च पद में बैठने के? He himself proved that he is not responsible enough to occupy a high position in India.

दिल्ली में सीजेपी और समर्थकों के प्रदर्शन पर जबरदस्त सख्ती। एयरपोर्ट से हिरासत में लिए गए दीप के, रांका और सौरभ दास, पुलिस ने ममता और केजरीवाल को किया रिहा। सीजेपी के प्रदर्शन पर बीजेपी का ताबड़तोड़ हमला, कहा सड़कों पर अराजकता की साजिश राहुल का बयान, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जारी रहेगी जंग। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मेट्रो स्टेशन बंद करने और लोगों को हिरासत में रखने के खिलाफ याचिका, सोमवार को बड़े मार्च की तैयारी में विपक्ष। चेन्नई में छात्रों के बीच राहुल की गूंज, कहा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं पीएम मोदी, तमिल भाषा और संस्कृति पर प्रधानमंत्री के हमले का जड़ा आरोप। अब सीएम योगी ने अखिलेश को दी चुनौती, कहा अयोध्या से चुनाव में हो जाए आमना सामना, अखिलेश का जवाब, हमारा युवा पीडीए प्रहरी ही काफी।

0: ये उत्तर है पर प्रश्न भी खुद है, ये प्रदेश है पर मानो पूरा देश है। यहां की सियासत जैसे भारत की झांकी है, आने वाले दिनों में जाने क्या क्या अभी बाकी है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। 19वीं विधानसभा के लिए लगभग 4 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में आज से हम हर शनिवार रात 10 बजे और रविवार सुबह 10 बजे आपको यूपी के अब तक की सरकारों की कहानी सुनाएंगे। गोविंद वल्लभ पंत से लेकर योगी आदित्यनाथ के सरकार गठन के बारे में बताएंगे। ये यूपी है भैया, राम जी की भूमि पे राम जी का नाम लेके सब कामकाज हो जाता है। यही अयोध्या जी से तो राम राज्य का सत्ता सूत्र निकला था, यही तो थे बांके बिहारी अपनी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाने वाले। बड़े बड़े योद्धाओं को रण की नीति सिखाने वाले, ये यूपी है। यहां त्रेता और द्वापर से राजधर्म और राजनीति का रिश्ता रहा है।
1: द्वापर हो, त्रेता हो, या जब भी कोई तंत्र होगा तो उसको चलाने का कोई नीति होगी तो उसे हम राजनीति कहेंगे।
0: तो भैया आज हम इसी यूपी की कहानी सुनाते हैं, यहां के सामाजिक प्रयोगों की कहानी, सोशल इंजीनियरिंग की कहानी, सामाजिक समानता के आंदोलन से उपजे राजनीति के नए विमर्श की कहानी।
2: गैर कांग्रेसवाद की राजनीति जब उत्तर प्रदेश में शुरू हुई उसके बाद के ये प्रयोग हैं, और राजनीति में सत्ता कैसे प्राप्त किया जाए उसके बाद उस दौर के सोशल इंजीनियरिंग के प्रयोग हैं, जिसमें लोगों को बांट करके लोगों को राजनीति के लिए जोड़ने का क्रम हुआ था।
0: देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति ने जो बीज बोए, देश की राजनीति ने वही फसल काटी।
3: उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भी ओरिजिन्स की सारी जड़ें हैं, और उसके बाद 50 से 60 के दशक में गैर कांग्रेसवाद का जो इमरजेंस हुआ उसकी जड़ें भी उत्तर प्रदेश में ही हैं।
0: ये यूपी है भैया, संयोग तो ऐसे ऐसे बनते हैं कि पूछिए नहीं। देश के पहले प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से थे, वर्तमान भी हैं। अरे 15 में से 9 तो यहीं से हैं।
3: कहा जाता है कि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में जितना एक्टिव उत्तर प्रदेश का छात्र रहा है उतना शायद किसी और प्रदेश का ना रहा हो, तो कुछ तो ऐसे माहौल में यहाँ के युवा नेता उभरते थे। और दूसरा ये कि दिल्ली से निकटता की वजह से और उस

0: तो कुल जमा ये समझ लीजिए कि संपूर्ण देश का मुद्दा भी यहीं से बनता है और सत्ता भी यहीं से निकलती है।
1: यहाँ नेहरू की कर्मभूमि रही है, अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि रही है, तो जो राष्ट्रीय क्षितिज पर जिन्होंने राजनीति का एक बड़ी रेखा खींची, वो ज्यादा लोग यूपी से जुड़े रहे हैं।
0: आजादी से पहले उत्तर प्रदेश राज्य नहीं था, वो छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। जब 1857 की क्रांति हुई थी तब इन रियासतों ने अंग्रेजों के नाको चने चबवा दिए थे। वैसे तो अंग्रेज विश्वास करते थे डिवाइड एंड रूल, यानी कि बांटो और राज करो पर, लेकिन यहां पर एक अलग तरह का बंटवारा किया, रियासतों को एक साथ राज्य बना दिया ताकि वो एकजुट होकर अंग्रेजों पर हमला न कर सके। 1902 में इसे यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कहा गया। 1937 में नाम बदलकर केवल यूनाइटेड प्रोविंस हो गया और आजादी के 3 साल बाद यह कहलाया उत्तर प्रदेश। क्रांति की अलख जगाने में भी यूपी बहुत आगे रहा। अब बताइए ना, 14 साल की उम्र में भी बेंत खा के चंद्रशेखर आजाद भारत माता की जय बोलते रहे थे।
2: भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।
0: भैया, यूपी की मिट्टी से बड़े बड़े क्रांतिकारी निकले।
1: इसमें बराबर के स्तर पर हिंदू और मुस्लिम लीडरशिप उत्तर प्रदेश में दी। बख्त खान, अशफाकुल्ला खान, आसफ अली, हसरत मोहानी, मौलाना शौकत अली, मुख्तार अहमद अंसारी, उसी तरह गणेश शंकर विद्यार्थी, गोविंद बल्लभ पंत, महावीर त्यागी, पुरुषोत्तम दास टंडन, मुनीश्वर उपाध्याय, राजा महेंद्र प्रताप, ये लोग थे। तो आप देखें तो आज़ादी के कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी कौम एक साथ आजादी की लड़ाई में आगे चल रही थी।
0: इसके समानांतर मुख्य धारा की राजनीति को भी यही जमीन निर्धारित कर रही थी, दिशा दे रही थी। एक ओर इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू थे, उनके लड़के जवाहरलाल थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, डॉक्टर संपूर्णानंद थे, गोविंद वल्लभ पंत थे।
1: तो उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर स्वतंत्रता का संघर्ष हो रहा था और स्थानीय स्तर पर नेता, राष्ट्रीय स्तर पर नेता।
0: पंडित जवाहरलाल नेहरू तेजी से महात्मा गांधी की राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी के तौर पर पहचाने जाने लगे थे। 1935 में अंग्रेजों ने गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया के जरिए चुनाव के बाद भारतीयों को शासन में और अधिक भूमिका देने का फैसला लिया। फरवरी 1937 में चुनाव हुए और कांग्रेस को देश की कुल 1585 असेंबली सीटों में से 711 पर जीत मिली, 11 में से 5 प्रांत, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और यूनाइटेड प्रोविंस यानी यूपी में पूर्ण बहुमत मिला। यूपी में भी पहली बार सरकार बननी थी, सवाल था मुख्यमंत्री कौन। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये वो दौर था जब कांग्रेस वाराणसी में बहुत अधिक मजबूत थी और प्रयागराज के नेताओं का वर्चस्व भी खूब झलकता था। मदन मोहन मालवीय, रघुनाथ सिंह, संपूर्णानंद, कमलापति त्रिपाठी, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे बड़े नाम थे जो बहुत चर्चित थे। लेकिन जो नाम सामने आया वो था गोविंद बल्लभ पंत का, और ये नाम नेहरू की तरफ से आया।
3: उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी पुरुषोत्तम दास टंडन जी को चाहती थी। जवाहरलाल नेहरू जी को ऐसा लगता था कि पंत जी बहुत सरल हैं, सीधे हैं, इसलिए उन्होंने सरदार पटेल जी से बात की। तो सरदार पटेल उस समय 1947 में यहाँ लखनऊ आए थे, लखनऊ भेजे गए थे नेहरू जी के द्वारा। उन्होंने यहाँ के विधायकों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू जी चाहते हैं कि पंत जी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने पुरुषोत्तम दास टंडन जी से भी बात की।

0: टंडन जी को कोई आपत्ति नहीं थी, टंडन जी सरल व्यक्ति थे, वो तैयार हो गए।
1: पंत यूपी के नेताओं में नेहरू को सर्वाधिक प्रिय थे। कांग्रेस में एक समय जब नेहरू और बोस के बीच विवाद हुआ तब पंत ने ही मध्यस्थता की थी। इसके अलावा दोनों कई बार जेल में लंबे समय तक एक साथ रह चुके थे और सबसे बड़ी बात थी पंत गांधीवादी विचारधारा के पक्के समर्थक थे।
2: गोविंद वल्लभ पंत 2 साल यूनाइटेड प्रोविंस के प्रीमियर रहे लेकिन अंग्रेजी हुकूमत से उनके रिश्ते इस दौरान तल्ख ही रहे। इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो गया। ब्रिटेन ने बिना कांग्रेस को विश्वास में लिए भारत को इस युद्ध का हिस्सा बना दिया। कांग्रेस के सभी मंत्रियों ने इससे नाराज होकर पदों से इस्तीफा दे दिया। पंत ने भी गद्दी छोड़ दी।
1: 1942 का साल आजादी के लिए निर्णायक माना जा रहा था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद बोल से गूंज रहा था। आंदोलन दबाने के लिए अंग्रेजों ने नेताओं को जेल भेजना शुरू कर दिया। गोविंद वल्लभ पंत को भी अहमदनगर किले की जेल में डाल दिया गया। इसी किले में पंत और नेहरू साथ रहे।
3: जब 1937 में कांग्रेस की सरकार बननी थी यहाँ, तो पंडित नेहरू ने ही गोविंद वल्लभ पंत का नाम सुझाया था, तो इससे भी इस बॉन्डिंग को समझा जा सकता है।
1: अंग्रेजों ने 1946 में फिर चुनाव करवाए, कांग्रेस को फिर बहुमत मिला और पंत ही दोबारा कांग्रेस की तरफ से यूपी के प्रीमियर बने। लेकिन अब पंत के लिए मुश्किल दौर शुरू होने वाला था क्योंकि समाज में अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता की फूट डाल दी थी और वो रंग दिखाने लगी थी।
3: जब विभाजन हुआ तो उत्तर प्रदेश में बहुत तनाव की स्थितियां थी। यहाँ से बहुत सारे लोग पाकिस्तान जाने वालों की संख्या यूपी और बिहार के मुसलमानों की बहुत ज्यादा थी। उस समय उन सांप्रदायिक तनाव की स्थितियों में गोविंद वल्लभ पंत जैसे व्यक्ति को बेहद चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन यह पंत जी जैसे लोगों का ही योगदान है कि यूपी में उस तरह दंगे नहीं हो पाए, उस तरह हिंसा नहीं हुई जिस तरह बंगाल में हुई।
1: सेंट्रल प्रोविंस में पढ़ाई का सेंटर रही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आवाज उठने लगी थी। मुस्लिम लीग की ओर से तकरीरें करने वाले जिन्ना समेत तमाम नेता ये कह रहे थे कि हमारी तो पहचान अलग है, संस्कृति अलग है, तो देश भी अलग होंगे। अलगाव की आग भड़कने से पहले यूपी में सांप्रदायिकता का धुआं सुलगने लगा था। तब यूपी यानी यूनाइटेड प्रोविंस में 16 सेंट्रल असेंबली सीट हुआ करती थी। इनमें 6 मुसलमानों के लिए आरक्षित थी। जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने सभी 6 सीटें जीत ली। यहाँ तक कि स्टेट असेंबली की 66 मुस्लिम आरक्षित सीटों में से 54 सीटें मुस्लिम लीग ने ही जीती। उस आग में देश जला, लोग कटे, एक देश 2 हिस्सों में बंट गया। समुदायों के जातियों के टकराव तो पहले से रहे लेकिन संप्रदायों के टकराव के आगे भाईचारा नहीं टिक पाया। बहुतों ने कहा यह हमारी धरती नहीं, तो कुछ ने कहा यहीं जिए हैं यहीं मरेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में शायद ऐसा कहने वाले कम थे क्योंकि भारत में सबसे अधिक मुसलमान उत्तर प्रदेश से ही पाकिस्तान गए। उस दौर में टकराव की सबसे बड़ी लकीर बंगाल में खींची पर सबसे गाढ़ी लकीर उत्तर प्रदेश में।
0: 1916 में जो लखनऊ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक समझौता तय हुआ था, उसी अधिवेशन के बाद लखनऊ जिसका नाम जिसको कांग्रेस ने लखनऊ करके शुरू किया था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था और लोगों को लगता था कि हिंदू मुस्लिम राजनीति ठीक से चलेगी। चूंकि मुसलमानों की संख्या वो प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है, सबसे ज़्यादा है, और पाकिस्तान की मांग भी सबसे पहले यहीं उठी थी। मैंने आपको बताया था कि सब सारे प्रयोग जो हुए, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों, चाहे मुस्लिम लीग के रहे हों, चाहे किसी पार्टी के रहे हों, सबसे अधिक प्रयोग उत्तर प्रदेश की धरती पर ही हुए हैं।
1: ये भी समझिए कि यूपी भगवा राजनीति की प्रयोगशाला कोई आज नहीं बनी है। 1948 में फैजाबाद सीट पर उपचुनाव होना था। एक कांग्रेसी नेता थे, बड़े कद और कायदे के समाजवादी कहलाते थे, आचार्य नरेंद्र देव। उसूलों पर कांग्रेस छोड़ दी थी और सोशलिस्ट पार्टी बना ली थी। फैजाबाद सीट से चुनाव में उतर गए थे। कांग्रेस को चुनाव में उतारने के लिए उनकी टक्कर का नेता नहीं मिल रहा था, लेकिन तब काम आया था धर्म।
4: अच्छा, नरेंद्र देव एक साहित्यकार, एक चिंतक और एक प्रखर समाजवादी पुरोधा होने के नाते लोकप्रिय तो थे, लेकिन उनकी सोच जैसा हम कह सकते हैं कि जो एक कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की होती है, जिसमें धर्म का भी एक मेल जोल रहता है, वैसी नहीं थी। और उनका जोर हमेशा शिक्षा पर और समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने पर रहता था, जिसमें धर्म की जगह थोड़ी कम रहती थी। ऐसे में जब उनका एक अलग समर्थन का आधार बनने लगा था, तो कांग्रेस को शायद ये बात उस समय लगा होगा कि अगर वो और मजबूत होते हैं तो कांग्रेस के कई नेताओं के सामने एक संकट खड़ा हो सकता है। इसीलिए उनको इस आधार पर उनका विरोध किया गया कि वे उतने धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं हैं।
2: ये वो दौर था जब राजनीतिक पार्टी का मतलब सिर्फ कांग्रेस होता था। फिर भी कुछ पार्टियां थीं जो चींटी होकर भी हाथी से भिड़ने का ताव रखती थी। यूपी चुनाव में ऐसी ही पार्टियों ने तेवर से ताल ठोकी। 14 पार्टियों ने यूपी विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा।
1: कांग्रेस, ऑल इंडिया भारतीय जनसंघ, बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और सोशलिस्ट पार्टी। इनमें से कुछ पार्टियों ने आगे चलकर नाम बदले, नाम कमाए, लेकिन कुछ क्रांति ही नहीं कर पाई। 429 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। एक सीट नॉमिनेटेड सदस्य के लिए थी। कांग्रेस ने 388 सीटों पर जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर सोशलिस्ट पार्टी, जिसके 20 सदस्य जीते। गोविंद बल्लभ पंत एक बार फिर यूपी के सीएम बन गए। अब सोचिए, ऐसा राज्य जिसकी जितनी आबादी दुनिया के बड़े बड़े देशों की नहीं रही, इतनी वृहद संस्कृति, इतनी बड़ी विरासत, इतने बड़े राज्य का 3 बार मुख्यमंत्री बनना। जी बी पंत का कद बहुत बढ़ा और साथ साथ यूपी कांग्रेस में अब पद की लालसा भी उतनी ही बढ़ी।
5: नेहरू जी ने और कांग्रेस के अधिकतर नेताओं का ये मानना था कि गोविंद बल्लभ पंत से उपयुक्त मुख्यमंत्री इस समय कोई इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वरिष्ठतम है और उनको पहले भी मुख्यमंत्री रहने का अवसर मिल चुका है, उसका अनुभव है। तो सबसे बड़ा कारण ये था उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी, उनकी विद्वता और उनका अनुभव, नेहरू जी से उनकी निकटता, इसलिए उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। उसी बीच कांग्रेस में लोग बताते हैं कि अलग अलग धड़े तैयार हो रहे थे। बनारस में देखिए डॉक्टर संपूर्णानंद थे, कमलापति त्रिपाठी थे।
1: खैर, तब की राजनीति में थोड़ी बहुत लाज नीति भी थी। नेहरू की लाज, पंत की लाज रखने के लिए भीतरी कलह दबाकर सरकारी कामकाज चलता रहा। पर अपने बिगाड़ के डर से ईमान की बात न बोले, ऐसा पंत जी से नहीं होता था। बल्कि उनके उसूल तो ऐसे थे जो अब तक याद किए जाते हैं।
5: अगर इस उत्तर प्रदेश को बनाना है तो पहले हमें अपने आप को बनाना होगा, अपने आप में वह आचरण करके दिखाना होगा जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच ये संदेश जाए कि जब हमारा मुख्यमंत्री इतना सरल, सादगी भरा, इतना ईमानदार और उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने और सुंदर बनाने के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ है, तो हमें भी वैसा करना चाहिए।
3: फिजूल खर्ची के सब नफरत करते थे। दूसरे वो ये मानते थे कि सरकारी ओहदों पर बैठे लोगों को सरकारी संसाधनों का उपयोग अपने निजी हित में नहीं करना चाहिए।
1: यूपी की पहली सरकार में थोड़ी बहुत कलह थी जो संभाल ली गई, लेकिन एक मुद्दा था श्री राम जन्मभूमि का, जो संभालना कांग्रेस के लिए आसान नहीं था। 1949 की बात, योगी आदित्यनाथ के गुरु ने पंत सरकार को पसोपेश में डाल दिया था। तब गोरक्षनाथ पीठ गोरखपुर के महंत हुआ करते थे दिग्विजय नाथ। योगी जी के गुरु महंत अवैद्यनाथ के भी गुरु थे दिग्विजय नाथ। यूपी के मठ मंदिरों से आवाज उठ रही थी, राम जन्मभूमि को मुक्त करो। दिसंबर का महीना था, तारीख थी 22, साल था 1949। आरोप है कि उनकी अगुवाई में विवादित ढांचे के भीतर चोरी छिपे भगवान राम की प्रतिमा रख दी गई थी। भजन कीर्तन होने लगे, मामले को संभालने में पंत सरकार के हाथ पांव फूल गए थे। यहां तक कि फैजाबाद के जिलाधिकारी के नायर से भी आदेश की तामील नहीं करा पाए थे। तब से सरकार की नीति थी कि मंदिर मुद्दे पर संतों के साथ दिखने से देश में माहौल बिगड़ सकता है। कांग्रेस सेक्युलरिज्म के नाम पर आगे बढ़ रही थी। उसे अंदाजा था कि अगर राम मंदिर के मुद्दे पर वो हिंदू पक्ष के साथ आती है तो बुरा राजनीतिक असर उस पर पड़ सकता है। इसीलिए पंत सरकार ने यूपी के सबसे अहम मुद्दे पर कृपया उचित दूरी बनाए रखें की परमानेंट तख्ती टांग ली। राम मंदिर मामले पर विधानसभा में पंत ने नपातुला बयान दिया।
0: तो चूंकि वो तो ताला बंद कर दिया गया था और इसलिए मामला न्यायालय में था, तो वो सरकार को भी सुविधा रहती है ये कहने में कि मामला न्यायालय में है, इसको इसमें क्या निर्णय लिया जाए। तो वो उसका रास्ता अपनाया था पंत जी ने।
1: गोविंद वल्लभ पंत ने आजाद यूपी की पहली सरकार 4 साल तक चलाई। पता नहीं राजनीतिक मजबूरी थी या ये जरूरी था, पर दिसंबर 1955 में एक दिन उन्हें नेहरू जी का दिल्ली से बुलावा आ गया और वो गृह मंत्री बनकर केंद्रीय राजनीति।
2: तो गोविंद वल्लभ पंत के बाद इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री कौन? कहने को तो कई नेता थे जो राष्ट्रीय स्तर के थे, लेकिन बात विश्वास की थी। विश्वास की सुई कहां आकर टिकी, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
9: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
10: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं, पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
11: इट्स अ माय वे।
12: फिर डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है।
13: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपिवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
12: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपिवा डायबिटीज जूस।

0: सर गैसोफास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसोफास्ट 27%, इनो 9.2%।
1: गड़बड़ है।
2: आहा, गैसोफास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसोफास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
3: हाउस द हॉस्टल सेटल्ड?
4: यस
2: मैम,
4: रियली नाइस।
3: वेरी
4: कोई आ रहा है क्या?
5: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभाली, अब फिर से थोड़ा रोमांस है।
4: मयंक, फॉर रियल?
5: वन कैरेट फॉर माय वन ट्रू लव। नेचुरल डायमंड रियल लव सॉलिटेयर्स टू रीइग्नाइट योर न्यू सीजन ऑफ लव।
6: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: और वही कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
9: जेके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट,
9: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints. JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।
10: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
11: मेरे पास एक आइडिया है।
10: क्या?
11: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है।
12: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
13: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
14: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
11: कौन सी बनानी है?
15: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
16: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर, तरक्की का ऑलराउंडर।
17: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
18: जिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड,
19: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
20: एक परिवार, अटूट भरोसा।
21: In association with
22: Signature Finest Cardamom Seeds,
6: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
23: Canara Bank, together we can.
24: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
25: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक YouTube पर और बचिए हर क्राइम से।
26: कंडेम दिस एक्ट बिकॉज इट वॉज अ वेरी पीसफुल एजिटेशन दे वर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिल्ली, एंड आई पर्सनली फील इट्स अ स्ट्रॉन्ग वर्ड बट इट्स कावर्डली ऑफ एनी गवर्नमेंट टू डू दैट।
27: You're calling it a cowardly act. The government will say, look, our responsibility is to ensure no untoward instance. We have clamped down with Section 144. You cannot have these large gatherings. We have made it very clear that we fear, we apprehend. That's what the IB is saying, that there could be trouble if large gatherings were allowed in Delhi today. Therefore, this is a precautionary measure. These are detentions that were necessary.
26: Yeah, but detentions for what? If somebody is having a peaceful march, at the most, what would it be? What was happening at Jantar Mantar in the last agitation? There was no violence ever at Jantar Mantar. And let me tell you one very interesting fact of the entire agitation. 24 hour there were youngsters there. There was no violence. There was no heckling. Women, young girls were as safe as they would be in their home at Jantar Mantar.
28: Thank you.
0: कहां तो रायबरेली से रथ यात्रा की शुरुआत करके अखिलेश यादव ने कांग्रेस के कड़ में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के दावे किए थे और महीने भर के अंदर फुर्सतगंज चौराहे से पार करके सियासत अब पड़ोस के अमेठी जिले में पहुंच गई और वहां इंडिया गठबंधन को कुछ ऐसा झटका लगा कि समाजवादी पार्टी के 3 विधायक बीजेपी की ओर खिसक लिए। खबर है कि 2024 में राज्यसभा चुनाव के दौरान से ही समाजवादी पार्टी से बगावत चल रहे 3 विधायक विनोद चतुर्वेदी, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह बीजेपी में शामिल होंगे। इसके लिए अमेठी के गौरीगंज में 14 अक्टूबर को बीजेपी बड़ा आयोजन कर रही है। खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और बीजेपी महामंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी में तीनों विधायक बीजेपी ज्वाइन करेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी से यह ताजा बगावत सिर्फ अमेठी जिले तक सीमित नहीं है। इसमें जालौन, अमेठी और अयोध्या 3 जिलों के 3 SP विधायक बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में अगर सिर्फ रायबरेली अमेठी के शक्ति संतुलन की बात की जाए तो दोनों जिले मिलाकर कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। दल बदल से पहले यहां समाजवादी पार्टी के 6 और बीजेपी के 4 विधायक थे। इसमें ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे तो मंत्री बन चुके हैं। अब गौरीगंज के राकेश सिंह के आने के बाद 10 में से 6 सीट पर बीजेपी हो जाएगी, 4 सीट पर समाजवादी पार्टी बचेगी, जिसमें अमेठी में 1 और रायबरेली में 3 विधायक बचेंगे। यानी 2022 से 2027 के बीच अमेठी और रायबरेली दोनों जिलों से 1-1 समाजवादी भाजपाई बन गए हैं। यूपी के चुनावी समर से पहले ये दल बदल असरकारी माना जा रहा है, क्योंकि अखिलेश इसी संख्या के आधार पर कांग्रेस के ऊपर भी अमेठी रायबरेली का दबाव बना रहे थे। वैसे अखिलेश लगातार बीजेपी में अंदर खाने नाराजगी का दावा करते रहे हैं, चाहे वो कौशल किशोर के बेटे और यूपी प्रदेश बीजेपी अनुसूचित जाति के मोर्चा उपाध्यक्ष विकास किशोर की नाराजगी की बात हो या आंवला के पूर्व बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप की बात। अखिलेश दावा करते रहे हैं कि बीजेपी के कई विधायक नेता उनके संपर्क में हैं। समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले आप देख रहे हैं सरकार और ये है उसका पहला अध्याय। गोविंद वल्लभ पंत का विकल्प कौन होता, ये कहा जाता है। इस सवाल का जवाब खुद पंत हल करके गए। दरअसल गोविंद वल्लभ पंत काशी के डॉक्टर संपूर्णानंद को काफी माना करते थे। पंत सरकार में संपूर्णानंद वित्त और शिक्षा जैसे अहम मंत्रालय संभाल चुके थे। गुटबाजी तो थी और खूब थी, लेकिन एक विश्वास नेतृत्व का भी था। संपूर्णानंद को संदेश दे दिया गया और पंत के दिल्ली जाने से ठीक अगले दिन संपूर्णानंद को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी गई।

0: मन से साहित्यकार, सोच से गांधीवादी, वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। यूं तो बड़े बड़े नेता थे, कमलापति त्रिपाठी, चौधरी चरण सिंह, त्रिभुवन नारायण सिंह, चंद्रभानु गुप्ता, हेमवती नंदन बहुगुणा, लेकिन नेहरू जी की नजर में संपूर्णानंद की सादगी सब पर भारी पड़ी।
1: डॉक्टर संपूर्णानंद की छवि निर्विवाद छवि थी। डॉक्टर संपूर्णानंद किसी गुटबाजी में नहीं पड़ते थे। डॉक्टर संपूर्णानंद विद्वान थे, साहित्यकार थे। डॉक्टर संपूर्णानंद पत्रकार भी थे, हिंदी और अंग्रेजी की दोनों पुस्तकों के उन्होंने संपादन भी किया था। और उनकी ईमानदारी, उनकी वरिष्ठता, वो भी संयुक्त सरकार में जो है वो अंग्रेजों के समय ब्रिटिश पीरियड जब था तब भी वो नंबर दो के मंत्री थे। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत के बाद उसके पीछे तीन कारण हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत के बाद नंबर दो के मंत्री होना, मतलब वरिष्ठतम मंत्री थे, उनका अनुभव होना, और सबसे बड़ी बात जो थी उनकी निर्विवाद छवि।
0: संपूर्णानंद हिंदी संस्कृत के विद्वान थे, खगोल विज्ञान और ज्योतिष में उनका बड़ा मन रमता था, पर डॉक्टर संपूर्णानंद के लिए ये कांटों भरा ताज था।
2: चौधरी साहब हमेशा संपूर्णानंद जी की जो सरकार चलाने की नीति थी या सिद्धांत थे उनके वो विरोधी रहे हैं, और वो हमेशा किसानों, कृषि, उसको महत्व देने, और चूंकि उस समय देश आज़ाद हुआ ही हुआ था, कुछ ही वर्ष हुए थे, तो कहीं संपूर्णानंद जी ये कोशिश करते थे कि सम्यक विकास की तरफ ध्यान रख कर चला जाए, लेकिन चौधरी साहब का ये मानना था कि इस देश की आर्थिक रीढ़, इस देश की सामाजिक या कह लीजिए कि और अगर विकास की नीति पर देखा जाए तो वो किसान और कृषि आधारित नीति बननी चाहिए। उसको लेकर संपूर्णानंद जी से कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद रहे और इसकी वो शिकायत नेहरू जी से करते रहे।
0: सच यही था कि संपूर्णानंद सरकार बस चल ही रही थी। एक साल में काम जो किया सो किया, लेकिन सरकार और संगठन के कील कांटे दुरुस्त करने में संपूर्णानंद अपनी धाक नहीं जमा पाए। पार्टी के बड़े नेता अपनी डफली अपना राग वाली धुन बजा रहे थे और चुनाव करीब आ रहे थे।
2: नेहरू जी जैसे विशाल विराट व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, वो ये चाहते थे कि किसी भी प्रकार सत्ता और संगठन में या सत्ता और सत्ता के बीच किसी प्रकार का टकराव न हो, आपसी बातचीत विमर्श से इन चीज़ों को टाला जा सके, टकराव को, तो वो टालते रहे। लेकिन चौधरी साहब अगर आज के समय की बात कर लें तो वो अपने वैचारिकी के अड़ियल लोगों में थे, उस पर उन्होंने समझौता नहीं किया। किसानों और कृषि को लेके, सहकारिता को लेके, ये उनकी विचारधारा का मूल था जिसको लेके वो टकराव करते रहे, और अंततः फिर चौधरी चरण सिंह को आके कांग्रेस को छोड़ना ही पड़ा।
0: बहरहाल पहली विधानसभा का कार्यकाल पूरा हुआ। कांग्रेस को इसी चुनाव में संगठन की अहमियत की पहली झलक मिल गई। नेताओं में आपसी बैर था, संगठन वालों को लग रहा था कि हमारे आगे कौन टिकेगा। दूसरे विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के आगे कोई टिक नहीं पाया, लेकिन सीटों की संख्या कम हो गई। 102 सीटों का नुकसान हुआ था उसे। 430 में से कांग्रेस को 286 मिले। दूसरे नंबर पर नई प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जिसके मुखिया थे राम मनोहर लोहिया, जिसे 44 सीटें मिली। जनसंघ को 17, संपूर्णानंद खुद अपनी काशी शहर दक्षिण की सीट बहुत मुश्किल से जीते। कांग्रेस दोबारा सत्ता में लौट तो आई, लेकिन तब तक पार्टी के अंदर इतने धड़े बन चुके थे कि संपूर्णानंद के लिए काम करना मुश्किल हो रहा था। चौधरी चरण सिंह खुले मंच पर दिल खोलकर अपने सीएम का शब्दों से ऐसा अभिषेक कर देते थे कि पूछिए मत। तब 1959 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह को चिट्ठी लिखी, इशारा किया कि चौधरी साहब आपकी निजी पसंद नापसंद अलग हो सकती है, लेकिन पार्टी का हित देखिए, सीएम के खिलाफ खुली बयानबाजी से बचिए। कांग्रेस सरकार कमलापति त्रिपाठी संपूर्णानंद गुट, चंद्रभानु गुप्ता गुट और चरण सिंह गुट में बटी थी। चौधरी चरण सिंह संपूर्णानंद की शिकायत नेहरू से करते रहते थे, लेकिन नेहरू भी जान रहे थे कि अपने आदमी के साथ खड़े रहना। तो चुगली का रिवर्स इफेक्ट ये हुआ कि चौधरी चरण सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ा। लेकिन गुट एक हो तो चैन मिले, गुट तो कई थे। चौधरी साहब का गुट कमजोर पड़ा तो चंद्रभानु गुट ने भी संपूर्णानंद को चैन से बैठने नहीं दिया।
2: कार्यकर्ताओं और जनता दोनों के साथ चंद्रभानु गुप्त जी का बड़ा निकट का नाता था रहा है, बड़ा मजबूत नाता रहा है। कार्यकर्ता भी चंद्रभानु गुप्त के प्रति भरोसा रखते थे और चंद्रभानु गुप्त भी अपने कार्यकर्ताओं का पूरा ध्यान रखते थे। तो इसलिए जहां बाकी लोग नेहरू जी को प्रणाम करते थे, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रभानु गुप्त को लोग दंडवत प्रणाम करते थे।
0: कहा जाता है कि तब चंद्रभानु का दबदबा प्रदेश में इतना था कि कार्यकर्ता पंडित नेहरू से भी पहले उनकी बात माना करते, मतलब जिसके पीछे काडर उसका चलेगा ऑर्डर वाला मामला। ये तब साबित हो गया जब यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हुए। डॉक्टर संपूर्णानंद चाहते थे प्रदेश अध्यक्ष बने मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, लेकिन भैया काडर में तो चंद्रभानु का ऑर्डर चल रहा था। 630 मतों के अंतर से चंद्रभानु गुप्ता से हार गए मुनीश्वर दत्त। संपूर्णानंद ने इसे अपनी हार माना, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नेहरू के समर्थन और संपूर्णानंद के मुख्यमंत्री रहते लाल बहादुर शास्त्री तक प्रदेश उपाध्यक्ष का चुनाव हार गए। कोषाध्यक्ष के पद के लिए कमलापति त्रिपाठी जैसे दिग्गज हार गए।
2: जब अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को लेके एक सवाल उठा, तो चंद्रभानु गुप्त जी मुनीश्वर दत्त उपाध्याय को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए जाने के पक्षधर नहीं थे, जबकि संपूर्णानंद जी ये चाहते थे कि वो ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और अंततः चुनाव हुआ और चुनाव में, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, कि संगठन में कांग्रेस के नेताओं में कार्यकर्ताओं में चंद्रभानु गुप्त जी की मजबूत पकड़ थी और वही हुआ कि संपूर्णानंद जी का प्रत्याशी उपाध्याय चुनाव 630 मतों से हार गए। थोड़े बहुत मतों से नहीं हारे, और चंद्रभानु गुप्त जी ने बड़ी शिकस्त दे दी और उस शिकस्त से आहत होकर या नैतिकता के आधार पर संपूर्णानंद जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
0: एक बात जो कही जाती थी वो ये कि संपूर्णानंद मुख्यमंत्री रहते किसी गुमनामी बाबा से मिलने जाते थे। वो बाबा पत्ते के पीछे से बात किया करते थे। कई इतिहासकारों और जानकारों का दावा है कि वो सुभाष चंद्र बोस थे। लोगों का मानना है कि सुभाष चंद्र बोस की अंतिम और सही जानकारी सिर्फ संपूर्णानंद के पास थी। खैर, संपूर्णानंद इस्तीफा दे चुके थे और उन्हें राजस्थान का गवर्नर बना दिया गया। संपूर्णानंद के जाने के बाद यूपी में कांग्रेस का वो आखिरी सूत्र टूट गया जो सबको नेहरू गांधी नाम की छत्र छाया में रखता था। यहीं से यूपी में कांग्रेस की राह हमेशा के लिए मुश्किल होती चली गई। सात दिसंबर 1960 को चंद्रभानु गुप्ता उत्तर प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री बन गए। भले वो नेहरू के धुर विरोधी थे और नेहरू को भी बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन बात जनमत की थी। बहरहाल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना एक बात थी और बने रहना दूसरी बात। पार्टी के लिए वो फंड रेजर थे तो उन पर ये आरोप भी लगते थे कि वो पैसों की हेरा फेरी करते हैं, लेकिन चंद्रभानु ने इस आरोप को अपने ऊपर मजाक का एक जरिया बना लिया और अक्सर खुद ही अपने खिलाफ नारेबाजी करके लोगों को चौंका देते थे।
3: वो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे, उनके पास एक एक आदमी का हिसाब रखा रहता था। उन्होंने एक रजिस्टर मुझे स्वयं दिखाया था जिसमें उन्होंने दिया था किस किस पार्ट किस किस लोगों को कितना कितना चंदा दिया था। उन्होंने 3,000 रुपये उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद के चुनाव में दिया था, वो रजिस्टर देखा था मैंने। तो उन पर ये उनके विरोधी ये आरोप लगाते थे कि गली गली में शोर है सी बी गुप्ता, चूँकि लखनऊ विश्वविद्यालय का नारा था, लखनऊ विश्वविद्यालय, तो उसको उसका मजाक उड़ाते थे और ये कहते थे आपने नारा नहीं सुना। कोई इस बात पर कोई यकीन नहीं करता था, उनके विरोधी नारा लगाते थे।
0: पर चंद्रभानु गुप्ता कांग्रेस के अंदरूनी कलह शांत नहीं करा पा रहे। कमलापति त्रिपाठी गुट और चौधरी चरण सिंह गुट लगातार उनकी नाक में दम कर रहा था।
4: ऊपर से तब तक सामने आ गया कामराज फॉर्मूला।
5: बड़ा चर्चित फार्मूला है, 1963 में बतौर अध्यक्ष कामराज ने एक फार्मूला सुझाया, नेहरू से कहा कि संगठन कमजोर पड़ रहा है और कांग्रेस को अगर मजबूत करना है तो उन्होंने फार्मूला दिया कि सत्ता में बैठे जो भी लोग हैं उनको संगठन में आना चाहिए और काम करना चाहिए, अपने पदों से इस्तीफा दें।
4: तो अब चंद्रभानु गुप्ता से भी त्याग पत्र देने को कहा गया, पर वो ठहरे खाटी आदमी, उन्हें समझाने के लिए कांग्रेस को कई मोर्चों पर काम करना पड़ा। 2 अक्टूबर 1963 को आखिरकार चंद्रभानु गुप्ता को इस्तीफा देना पड़ा। सुचेता कृपलानी बंगाल में जन्मी थी, दिल्ली में पढ़ी थी, यूपी से कोई नाता नहीं था। हाँ, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी, भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व करती थी, आजादी के बाद पंडित नेहरू की स्पीच से पहले उन्होंने वंदे मातरम गाया था, संविधान सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर चुकी थी।
3: तो नेहरू जी किसी और को चाहते थे मुख्यमंत्री बनना, लेकिन चंद्रभान गुप्ता ने उस समय सुचेता कृपलानी को चीफ मिनिस्टर बनवा दिया था। सुचेता कृपलानी जो मंत्री थी उनको चीफ मिनिस्टर बनवा दिया गया था, और वो एक पहला सबसे बड़ा प्रयोग था उत्तर प्रदेश का, गैर राज्य का आके मुख्यमंत्री बन जाए।
4: खैर, नियति का खेल था, और भारत को सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर सुचेता कृपलानी को चुनना था, सहरा भी यूपी के सर बंधना था, सो बंधा। यूपी में कांग्रेस प्रयोग कर रही थी, लेकिन एक कलह को दबाने की कोशिश दूसरी कलह को बढ़ा देती थी। अब केंद्र में नेहरू नहीं थे, शास्त्री भी नहीं थे, इंदिरा थी। इंदिरा के पास पिता के साथ काम करने का अनुभव तो था, लेकिन यूपी तो फिर यूपी है, हर पुराने अनुभव के सामने नया अनुभव खड़ा कर देती है। कांग्रेस ने जो सोचा भी नहीं था वो हो गया 1967 की चौथी विधानसभा के चुनावों के बाद। पहली बार कांग्रेस 200 सीटों से नीचे आ गई, कई बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए, कमलापति त्रिपाठी अपनी पारंपरिक सीट हार गए, कांग्रेस को 425 में 199 सीटें मिली, जनसंघ को 98 सीटों के साथ बंपर कामयाबी, तीसरे नंबर पर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व वाली संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी रही। इसी चुनाव में लोहिया की पार्टी से एटा की जसवंत नगर सीट से जीत कर पहली बार 28 साल के मुलायम सिंह यादव विधानसभा पहुंचे थे। सुचेता कृपलानी केंद्र की राजनीति में वापस लौट गई। चौधरी चरण सिंह ने बगावत का बिगुल फूंक दिया, कांग्रेस के पास एक ही विकल्प बचा था और वो थे फिर चंद्रभानु गुप्ता। लेकिन इस बार वो सिर्फ 19 दिन मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि यूपी कांग्रेस ही टूट गई।
3: चंद्रभानु गुप्ता की सरकार थी 1967 में, वो दो लोगों को मंत्री बनाना चाहते थे, जयराम गुप्ता फैजाबाद के उनके समर्थक थे और उसी तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश के, वे दो लोगों को मंत्री के रूप में देखना चाहते थे। चंद्रभान गुप्त ने उन चौधरी चरण सिंह को तो मंत्री के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने उनके लोगों को शामिल नहीं किया। ये मुख्य कारण था जिसके कारण चौधरी साहब और उनके साथ 17 लोग और उन्होंने कांग्रेस पार्टी तोड़ दी थी।
4: चौधरी चरण सिंह ने न सिर्फ नई राजनीतिक पार्टी भारतीय क्रांति दल बना ली, बल्कि जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी नेताओं के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। 3 अप्रैल 1967 को चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में पहली बार उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। गैर कांग्रेसी सरकार बन तो गई, लेकिन जब सत्ता मिली तो विचारधाराएं और आपसी अहम का टकराव होने लगा। इस बीच गैर कांग्रेसी राजनीति के जनक राम मनोहर लोहिया का निधन हो गया। भारतीय क्रांति दल और 6 मंत्रियों समेत कुछ विधायकों ने राजभवन जाकर समर्थन वापसी की परेड की। इनमें पहली बार विधायक बने मुलायम सिंह यादव भी शामिल थे। चौधरी चरण सिंह की एक साल पुरानी सरकार गिर गई, विधानसभा भंग कर दी गई।
5: उस सरकार में सभी पार्टियों के लोग थे, विपरीत विचारों के लोग भी थे, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस वो भी था, वो जनसंघ भी थी, वैचारिक मतभेद सरकार बनने के साथ ही शुरू हो गए थे और बाद में इन पार्टियों ने वैचारिक मतभेद के साथ अपने समर्थन वापस ले लिए। चौधरी साहब ने पद त्याग दिया।
4: विधानसभा के लिए चुनाव हुए, नतीजे ऐसे आए कि पांचवी विधानसभा उत्तर प्रदेश के इतिहास की अब तक की सबसे अनोखी विधानसभा साबित हुई। क्या हुआ दिखाएंगे अगले एपिसोड में। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
6: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
9: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है।
10: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
9: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायबिटीज जूस।
11: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
12: गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
13: गड़बड़ है।
14: गैसोफास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसोफास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।

0: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
1: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
3: जेके वॉल मैक्स
1: बेस्ट पेंट,
4: जेके मैक्स।
1: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
5: In association with Signature Finest Cardamom Seeds, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Canara Bank, Together We Can।
6: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
7: ये उस विमान के अंदर की तस्वीर है जहां से कॉकरोच जनता पार्टी के पदाधिकारियों को हिरासत में लिया गया।
8: ये बात तो मुझे आप बाहर आने के बाद भी बोल सकते थे ना।
7: ये उस वक्त की तस्वीर है जब अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस हिरासत में लेने प्लेन के अंदर पहुंचती है। बड़ी बात यह है कि इस दौरान ज्यादातर महिला पुलिसकर्मी ही दिखाई देती हैं और वो ही हिरासत में लेने से पहले अभिजीत दीपके से बातचीत करती हैं।
8: अरे एक सेकंड, मेरा अरे सुन के आया
7: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजीपी ने जंतर मंतर पर आंदोलन का ऐलान किया था। पुलिस का हमला मोर्चे पर डटा था। कोशिश यही थी कि किसी भी सूरत में दिल्ली में हालात न बिगड़े।
8: क्या हुआ ना, क्या हुआ?
7: सड़कों पर सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च चल रहा था। जंतर मंतर पर जवानों का भारी जमावड़ा था। बड़ी संख्या में महिला जवानों ने भी मोर्चा संभाल रखा था। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस के महिला जवानों की तैनाती की गई थी। अर्धसैनिक बलों की महिला जवान भी मौके पर डटी थी। बावजूद इसके कई जगहों पर प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं थे। दिल्ली में कई जगहों पर प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच एक्शन की तस्वीरें दिखाई दी। प्रदर्शनकारियों ने पाबंदी तोड़ने की कोशिश की तो सुरक्षा बलों ने उनकी धर पकड़ की। जंतर मंतर से सटे तमाम इलाकों में चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती थी, जिसमें काफी संख्या में महिला जवान थी जो जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा रोकने के लिए लगातार मशक्कत करती दिखी। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: और अब बड़ी खबर आपको देते हैं, दिल्ली मेट्रो की सेवाएं अब सामान्य हो गए हैं। दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन खोल दिए गए हैं। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है कि सभी स्टेशन सब खोल दिए गए हैं। सीजेपी के विरोध प्रदर्शन की वजह से पिछले 24 घंटों से दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन बंद थे, जिन्हें अब खोल दिया गया है। इसमें कनॉट प्लेस का मार्केट भी अब कल खुला रहेगा, तो कनॉट प्लेस जाने वाले अब जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट वाला जो मेट्रो स्टेशन है वो खुला रहेगा। दरअसल आज बाजार बंद रखा गया था, लेकिन मार्केट एसोसिएशन ने कहा है कि कल वो दुकानें खोलेंगे। अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: आ गया सोमवार और आ गए
4: चकमक चाचा।
3: एक कचौड़ी दो समोसा चकमक, तेरा क्या भरोसा।
5: चकमक चाचा से सीधे चकमक है।
3: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, बुझ रहा ना।
5: लेकिन भैया नारे अरे फालतू में सब बेकार, एकदम बेकार। नारे होते थे हमारे टाइम।
3: अच्छा
5: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
3: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
5: अरे जमीन की चकबंदी में, जमीन की चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में।
3: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
5: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
3: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा लेके जाएंगे।
5: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
3: अरे लाल फूल नीला फूल जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
5: अरे बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी।
3: चाय गरम दूध गरम चकमक चाचा भी शर्म
5: है।
3: हाँ
5: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
3: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
6: हम जैसे इधर आओ।
7: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
8: ये दो अराजकतावादी समूह जिसमें एक इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी और दूसरे गुट का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी कर रही है, मैं इन दोनों गुटों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत की जनता पूरी तरह से आपके इन उद्देश्यों को देख रही है। और आज जो आपका एनार्किस्ट प्रतिस्पर्धा चल रहा है कि कौन अधिक इस देश में अस्थिरता पैदा कर सकता है, ये आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। कि जिन विदेशी ताकतों से बल पर आप अपनी बिकाऊ राजनीति कर रहे हैं और विदेशी ताकतों के गठजोड़ से भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके नापाक इरादे कभी भी पूरे नहीं होंगे। लगातार राज्यों में आपकी हार हताशा दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं इस देश को शांति के साथ आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे। लेकिन मैं आज के दिन आपको चेतावनी देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और देश के राष्ट्रभक्त जनता आपको पूरी तरह से इसका करारा जवाब देगी। और आज जिस प्रकार से तनाव की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, भारत की सरकार इसको कड़ाई से निपटेगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी पूरी तरह से जनता के बीच में रहकर आपके इस मंसूबे को कहीं ना कहीं रोकेगा।

0: पड़े हैं।
1: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई। ट्रैवल एजेंट कोई गांजा फूंक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
1: तुम्हारा
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
0: यार काट देना ये।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन पर सख्ती के बाद खोले गए सभी मेट्रो स्टेशन, अभी भी हिरासत में दीप के रंग और सौरभ दास, पुलिस ने ममता और केजरीवाल को किया रिहा। सीजेपी के प्रदर्शन पर बीजेपी का ताबड़तोड़ हमला, कहा सड़कों पर अराजकता की साजिश, राहुल का बयान, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जारी रहेगी जंग। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई, मेट्रो स्टेशन बंद करने और लोगों को हिरासत में रखने के खिलाफ याचिका, सोमवार को बड़े मार्च की तैयारी में विपक्ष।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बॉलीवुड में सितारे बहुत से आए, कई सुपरस्टार बने और कई वक्त के साथ गुम हो गए। लेकिन कुछ चेहरे, कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी फिल्मों से नहीं बल्कि अपने अंदाज, अपने व्यक्तित्व से लोगों के दिलों में, जहन में जगह बना लेते हैं। नाना पाटेकर भी एक ऐसा ही नाम है, एक ऐसा अभिनेता जिसकी आवाज में दम था, आंखों में आग और अभिनय में वो सच्चाई जो सीधे आपके दिल पर असर करती है। तो आज कहानी नाना पाटेकर की।
1: राज साहब कहते थे, वो जो सीन है मेहुल लाएगा, वो सब देख लो, सही करवा लो। पैसे बटोरने होते तो मैं वही करते रहता, प्रोड्यूसर भी बन जाता। ट्रैफिक पुलिस है या कोई पुलिस है ये कर, तो मैं गाड़ी वो शीशा नीचे करके मैं, अरे कैसे हो, हाँ अरे फिर वो आते हैं, कैसे हैं, कैसा है। मुझे अच्छा लगता, कब तक एक दूसरे को काटोगे तुम, मारोगे कब तक, मारोगे हमको, हमको जो सही लगा हमने किया, वो सही है गलत है आप सोचो, हमको जो लगा हमने किया।
2: वर्ड्स भी नहीं मालूम क्या फैसिस्ट होता है और क्या होता है लेफ्टिस्ट होता है और क्या, वो मुझे नहीं मालूम। मुझे जो सही लगा वो मैंने किया।
3: तो मैं समझता हूँ कि मैं जब फिल्में करूंगा उसमें मैं ऐसी ही फिल्में करूं जिसमें मैं कुछ कह सकूं।
1: मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। कि नाटक करते हुए सामने तो अंधेरा रहता है ना, हम स्टेज पे रहते हैं, तो ये कलाकार का मतलब ये फितरत ही ऐसी है कि उस अंधेरे में अपने सुख ढूंढने पड़ते हैं हमें। वो जो गूंज होती है ना तालियों की, ये समुंदराची गाज बनतो ना अपन, और ये तालियों की गाज, वो आदत हो जाती है यार, उसे निकल नहीं पाते हम। वो जिंदगी जिस दिन वो आवाज बंद हो जाती है वही मौत हो जाती है हमारी।
0: नाना पाटेकर जैसा शायद ही कोई दूसरा अभिनेता बॉलीवुड में कोई और। नाना का अंदाज अलग, उनका मिजाज अलग, अभिनय का तरीका तो बिल्कुल अलग। नाना पर्दे पर आते थे तो किरदार सिर्फ निभाते नहीं बल्कि उस किरदार में जान डाल दिया करते थे। आज नाना के साथ काम कर चुके लोग हों या नाना के चाहने वाले, हर कोई उनके अभिनय को याद करता है। नाना की अपनी एक अलग दुनिया है जहां दिखावे से कहीं ज्यादा अहमियत लोगों की है, और यही कारण है कि नाना सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि अभिनय की एक अलग पहचान थी।
4: सिर्फ एक आर्टिस्ट को नहीं घुमाया, मेरे भाई की तरह था वो।
5: हमारे सबके लिए ये बहुत बड़ा शौक है।
4: मेरी वाइफ तो रोने लगी।

0: मूड ऐसा है सोच के।
1: दुनिया में जहां भी उनके फैन फॉलोअर से हर एक को दुख हुआ है,
2: ये आदमी है यहाँ पे, अगर कुछ लगे तो इसके पास जा सकते हैं, एक फादर फिगर जैसा, ऑब्वियसली वो नहीं रहा।
1: ये एग्जिट एग्जिट है ही नहीं, मतलब वो ऐसे एक्टर थे, ऐसा किरदार निभाते थे कि जिसकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती,
3: जिसकी हम कभी उम्मीद नहीं कर रहे थे वही आज हमारे साथ घटित हुआ।
4: कभी कभी कोई कलाकार पर्दे से विदा नहीं होता, वो पर्दे पर छोड़ी हुई अपनी आवाज में रह जाता है, अपने किरदारों की आंखों में रह जाता है, अपने संवादों की गूंज में रह जाता है। और उन तमाम चेहरों में रह जाता है जिन्होंने कभी उसे पर्दे पर देखकर अपने भीतर के किसी सच को पहचाना था।
1: तो नाना पाटेकर बस एक अभिनेता नहीं थे, तो वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बता दिया लोगों को कि बॉलीवुड का जो रेड कार्पेट होता है उस रेड कार्पेट से ज्यादा किसानों का जो ग्रीन कार्पेट है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
4: गुरुवार की सुबह एक ऐसी ही आवाज खामोश हो गई, जिस आवाज में गुस्सा था तो उसी आवाज में दर्द भी था।
5: क्या बोलते हैं पालक बोलते हैं ना, बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता, बड़ा भाई बड़े भाई जैसा ही था,
6: बहुत अच्छे कलाकार थे। सुबह से जैसे ही हमें खबर सुनी तो अत्यंत दुख की खबर है,
7: जो है मन में वो सामने बोल देते हैं और वो उसमें भी प्यार ही छुपा है। तो
4: जिस चेहरे पर कठोरता थी उसी चेहरे के पीछे एक बेहद नरम दिल भी था।
8: 300-400 रुपए मिलते थे हमको एक 26 जनवरी का वो फ्लोट डिजाइन में, डिब्बा पकड़ो लेटरिंग करो चलो पीछे वॉच दे दो, मजा आता था। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े, इससे और ज्यादा क्या चाहिए यार, झुकना नहीं पड़ा।
4: जिन अभी ऐसी नमी उतर आती थी कि बिना एक शब्द कहे पूरी कहानी कह जाती थी।
9: It's not fair. It's not fair. Some people, you don't think that they will ever go. Nana was one of them. Nana was larger than life. Nana had the largest heart in the world.
4: नाना पाटेकर एक ऐसा नाम जिसे सिर्फ अभिनेता कहना शायद कम होगा। वो किरदार निभाते नहीं थे, किरदार को अपने भीतर उतार लेते थे।
10: इससे ज्यादा शॉकिंग कोई खबर हो ही नहीं सकती। ख्वाब में भी नहीं सोचा जा सकता कि नाना पाटेकर दिल के दौरे पड़ने से चले गए। इतना फिट आदमी।
4: नाना पाटेकर जब बोलते थे तो सिर्फ संवाद नहीं निकलता था, जैसे जिंदगी का कोई सच सामने आकर खड़ा हो जाता था। कभी परिंदा का नाम, कभी क्रांति वीर का प्रताप नारायण तिलक, कभी अब तक 56 का साधु आगाशे और कभी वेलकम का उदय शेट्टी। हर किरदार अलग था लेकिन हर किरदार में एक ही चीज थी, नाना की अपनी धड़कन।
8: वो जो गुजरा जमाना जो है उसमें जो कुछ इन्वेस्ट किया है उसी की वजह से आज आसानी से मिलते हैं। और हम थोड़ी एक्टिंग थोड़ी करते हैं यार, हम तो हमारे इमोशंस बेचते हैं। जो उस दिन हम रोए नहीं, वो रखा है हमने अंदर, तो फिर कैमरा के सामने रो देते हैं तो आपको लगता है हाँ क्या एक्टिंग की, पैसे भी मिलते हैं और भड़ास भी निकलती है।
4: नाना पाटेकर ने सिनेमा को सिर्फ अभिनय नहीं दिया, उन्होंने अभिनय को एक आवाज दी, एक तेवर दिया, एक बेचैनी दी और सबसे बढ़कर एक सच्चाई दी।
11: बिना मेरे हुक्म के कोई भी कमांडो पानी नहीं पिएगा।
12: यस सर।
11: रास्ते में हमें दुश्मन के बूबी ट्रैप्स, माइंस और दूसरी रुकावटों का ख्याल रखना होगा। अगर कोई खतरा पेश आए

0: आगे वाला ग्रुप पीछे वाले ग्रुप को खबरदार करेगा, वो आप कैसे करेंगे?
1: बिल्कुल सही।
0: मिशन पर जाते वक्त तुम्हारे बिट्टू में 15-15 किलो रेत की 2 बोरियां होंगी।
1: यस सर।
2: उनकी आंखें बोलती थी, उनका चेहरा बोलता था, उनका गुस्सा बोलता था, उनकी हंसी बोलती थी और कई बार तो उनकी खामोशी भी पूरा संवाद बन जाती थी।
3: अरे कब तक तेरी गलतियों का टोकरा मैं अपने सर पर घुमाता रहूंगा? मैंने कहा था जाओ गोली चलाओ, कहा था नहीं ना, क्यों चलाई गोली?
4: और भाई साहब वो वाली बात अंकल को उठाने वाली जो मैंने बताई थी, और ऐसे ऐसे गंदे इशारे कर रहे थे।
3: कैसे इशारे कर रहा था? ये क्या मतलब है इसका? कैसे उठाओगे इसके अंकल को ऐसे? मुश्किल से एक रिश्ता जुड़ा है, इतना नेक होनहार लड़का मिला है, उस रिश्ते को तुड़वा दोगे?
2: यही तो खासियत थी नाना की। वो पर्दे पर आते थे तो किरदार बड़ा हो जाता था। वो एक साधारण आदमी को भी ऐसा बना देते थे जैसे उसके भीतर पूरी एक दुनिया बसती हो। उनकी आवाज में हिंदुस्तान का आम आदमी सुनाई देता था। इसलिए नाना सिर्फ फिल्मों के अभिनेता नहीं थे, वो उन लोगों की आवाज भी थे जिनके पास अपनी बात कहने के लिए शायद कोई मंच नहीं था।
5: संवेदनशील व्यक्ति थे वो, और हमारे नाम परिवार में बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। इसका सुख दुख कुछ लगा तो तुरंत उसके ऊपर काम करना।
2: लेकिन जिंदगी कभी कभी अपने सबसे बड़े कलाकार को भी बिना किसी पूर्व सूचना के मंच से उतार देती है। 8 अक्टूबर की सुबह गोवा के उनके घर से आई खबर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। नाना पाटेकर नहीं रहे। कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें बचाने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार जिंदगी की पटकथा में आगे का कोई दृश्य लिखा ही नहीं था।
6: नाना पाटेकर हमारी एम्बुलेंस को बुलाया गया, उनका केयर टेकर आया था हॉस्पिटल में अराउंड 4:18 और सो आवर एम्बुलेंस रीच टू 4:20 एट अराउंड हिज हाउस एंड इज अ फ्लैट नियर बाय आवर हॉस्पिटल में थे, इधर ही नजदीक में। और उधर उनका देखा तो ही वॉज अनरिस्पॉन्सिव, सो दिस वो लोगों ने CPR, हमारे टीम ने CPR चालू किया और CPR करते करते उनको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में शिफ्ट किया बाय अराउंड 4:20-4:30 एंड बाय द टाइम यू नो दे ऑल्सो लीड अस, मैक्सिमम सब लोगों ने CPR किया और 5:20 को डिक्लेयर किया कि वो डेड हो गए।
2: और इस खबर ने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को नहीं सियासत की दुनिया को भी गमगीन कर दिया।
7: मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे। वे एक बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता। नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। मैं नाना पाटेकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों और चाहने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।
2: प्रधानमंत्री से लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं तक हर किसी ने नाना को अपने अपने शब्दों में याद किया, क्योंकि नाना की पहचान किसी एक फिल्म, किसी एक भाषा, किसी एक वर्ग या किसी एक विचार तक सीमित नहीं थी।
8: सिनेमा के एक बहुत ही मजबूत कलाकार और एक बहुत उत्तम व्यक्ति, ऐसे श्री नाना पाटेकर जी, इनका अचानक निधन होना ये एक बहुत बड़ी क्षति है। क्रांतिवीर से लेकर नट सम्राट तक अलग अलग प्रकार की फिल्मों से उन्होंने न केवल लोगों का मन रिझाया बल्कि जन प्रबोधन भी किया, और एक देशभक्त के रूप में हम उनको जानते हैं।
9: अगर नाना पाटेकर जी की मृत्यु की खबर आए, निधन की खबर आए हार्ट अटैक के बाद, तो मन बहुत ही दुखी है, मन बहुत ही उदास है।
10: दिव्या जी ही
2: सियासत का संसार शोक में डूब गया, और फिर उनकी आखिरी सार्वजनिक मौजूदगी का वो वीडियो सामने आया जो अब शायद पहले से कहीं ज्यादा भारी लगता है। चार दिन पहले 4 अक्टूबर को गोवा के कार्यक्रम में नाना ने जिंदगी और मौत पर बात करते हुए कहा था, हम सभी को एक दिन जाना है, मुझे नहीं पता मैं कल यहाँ रहूंगा या नहीं। तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये शब्द इतनी जल्दी उनकी जिंदगी का आखिरी संवाद बन जाएंगे। थिएटर से सिनेमा तक, मराठी फिल्मों से हिंदी सिनेमा तक, गंभीर किरदारों से लेकर कॉमेडी तक, नाना ने हर जगह अपनी एक अलग छाप छोड़ी। और आज बॉलीवुड के तमाम कलाकार, उनके साथ काम करने वाले लोग, उनके दोस्त, उनके प्रशंसक सब उन्हें याद कर रहे हैं।
1: बहुत अच्छे दोस्त थे, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख क्योंकि वो वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड। एक नॉर्मल आदमी की तरह जितना कपड़े बाबे से आपको मालूम पड़ेगा, और अपने बहुत लोगों की मदद करते थे वो, जहाँ भी चाहे वो किसान हो कोई भी हो।
11: इतना लाइवली इंसान, हेल्दी एट दिस एज ऑल्सो, वो इतनी कर्मठता के साथ काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट्स अनबिलीवेबल। एंड मेरे लिए तो वो बिल्कुल फादर फिगर की तरह थे।
12: मैं नहीं चाहता हूँ अभी क्या, मैं इससे कुछ मिलना तो मिलना था बेटा, सब कुछ है नहीं ऐसा।
2: किसी ने उनके अभिनय को याद किया, किसी ने उनके गुस्से के पीछे छिपे प्यार को, किसी ने उनकी दोस्ती को, तो किसी ने उस इंसान को जो पर्दे पर जितना बड़ा था, पर्दे के पीछे शायद उससे कहीं ज्यादा सादा था।
13: पूरे देश को, दुनिया में जहां भी उनके फैन फॉलोअर्स है, हर एक को दुख हुआ है। ये एग्जिट एग्जिट है ही नहीं, मतलब वो ऐसे एक्टर थे, ऐसा किरदार निभाते थे कि जिसकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। बहुत बार ऐसा होता है ना कि रंगमंच पे नाटक चल रहा है और एकाएक किसी एक्टर के एग्जिट हो जाए तो दूसरा एक्टर रिप्लेस करता है उस रोल को और शो मस्ट गो ऑन, लेकिन नाना सर को रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता।
2: 75 साल का एक सफर कुछ पलों में ठहर गया। कितना अजीब है ना, जिस आदमी ने पर्दे पर मौत को आंखों में आंखें डालकर देखा, आज वही जिंदगी से अपना आखिरी संवाद कहकर चला गया, पीछे छोड़ गया फिल्मों का एक लंबा सिलसिला, किरदारों की एक पूरी दुनिया, और वो आवाज जिसे सुनकर लगता था सिनेमा अभी जिंदा है। गुरुवार की रात ही गोवा से उनकी आखिरी यात्रा पुणे की तरफ चली, वही पुणे जिससे नाना का रिश्ता सिर्फ एक शहर का नहीं था, वो उनकी यादों का शहर था, उनका अपना था, उनका फार्म हाउस, उनकी मिट्टी, और फिर उसी मिट्टी में उन्हें आखिरी विदाई दी गई। हर कोई भावुक, नाना को करीब से जानने वाले लोग, उनके प्रशंसक, स्थानीय नेता, और वो तमाम लोग जिनके लिए नाना सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं थे, वो अपने थे।
14: आवाज गूंज रही है कानों में मेरे की, परसों ही बात हुई थी मेरी उनसे कि एक लाइन डबिंग करना था हमारी फिल्म का जो अभी लास्ट कंप्लीट हुई है, तो मुझे बोले मैं परसों आ रहा हूँ, आके कर लेंगे। तो वो मैं क्या बयां नहीं कर सक रहा हूँ, बहुत मुश्किल है ये।
15: उनको ना पैसे का कोई मोह था, ना उनको कोई बड़ा बैनर का कोई वो था, ना कभी ऐसा कि मुझे ये करना है, उनको अपने काम से और अपनी जिंदगी से प्यार।
2: किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के पास नाना से जुड़ी पुरानी कोई याद थी, और किसी के पास कहने के लिए सिर्फ इतना कि ऐसा इंसान बार बार नहीं आता। महाराष्ट्र सरकार ने भी उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी, क्योंकि नाना ने सिर्फ हिंदी और मराठी सिनेमा को नहीं बल्कि रंगमंच और समाज सेवा को भी अपना जीवन दिया था। नाना पाटेकर की जिंदगी भी एक ऐसी ही स्मृति बन गई है, एक आवाज बनकर, एक तेवर बनकर, एक किरदार बनकर।
16: 1956
17: बस बना देते हैं जिसका जैसा बन करता है।
16: देव साहब और शकीला।
2: कुछ कलाकार सिनेमा से विदा नहीं होते हैं। उनकी आखिरी फिल्म खत्म हो सकती है, उनका आखिरी दृश्य खत्म हो सकता है, लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं होती। वो पीढ़ियों तक चलती है, संवादों में, किरदारों में, यादों में और उन आंखों में जो उन्हें देखकर बड़ी हुई। आज नाना पाटेकर को सिर्फ अलविदा कहना शायद मुमकिन नहीं, क्योंकि अलविदा तो उसे कहते हैं जो चला जाए, और नाना कहां गए हैं? वो तो अब भी वही है, किसी पर्दे पर, किसी संवाद में, किसी किरदार की आंखों में, किसी दर्शक की स्मृति में और सिनेमा की उस आत्मा में जहां कुछ कलाकार हमेशा के लिए बस जाते हैं।
18: दमदार आवाज, गुस्से से भरे अंदाज और जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी से नाना ने कई सारे किरदारों को अमर बना दिया। लेकिन पर्दे पर आग उगलने वाले नाना की जिंदगी में कुछ ऐसे शौक भी हैं जो नाना को बाकी सितारों से अलग बनाते हैं। खाना बनाने का शौक हो या सादगी से जीने का नाना का अंदाज, नाना की जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसकों को हैरान कर देता है।
19: पैसे मांगे थे इनके पास उतने दिए, उसके बाद उन्होंने जो कहा वो मैंने कर दिया।
20: कोई अच्छी बात है उसको अच्छा कहना ये बुरा है क्या? प्रोपेगेंडा मतलब क्या है? एक बेहतरीन सब्जेक्ट है, एक बेहतरीन कहानी। प्रहर लिखी थी, डायरेक्ट की थी और काम भी किया था। मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ, अंदर से लगता है ना मैं करूँ। माँ की कसम लेके बोलो मेरा, माँ की कसम मुझे लगता है कि आपको ये करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ।
19: कभी फिल्म प्रमोट नहीं करता, मैं सच कहता हूँ, मुझे फिल्म प्रमोट करने में बड़ी दिक्कत होती है। हुई छायला चश्का तेरा मुझे लगा लगा, वन वे हो या हाईवे, तू तो सबका भाई रे, बाकी पानी कम छाए रे।
2: दमदार आवाज और जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी से नाना पाटेकर ने कई किरदारों को अमर बना दिया। लेकिन पर्दे पर आग उगलने वाले नाना की जिंदगी में कुछ ऐसे शौक भी थे जो उन्हें बाकी सितारों से अलग बनाते थे। खाना बनाने का शौक हो या सादगी से जीने का अंदाज, नाना की असली दुनिया फिल्मी चकाचौंध से काफी दूर थी।
20: हमारे पास एक बहुत बड़ा माध्यम अभी आ गया है, नाम फाउंडेशन, हमने एक शुरुआत की, उसके जरिए इतना कुछ काम चल रहा है, कश्मीर में चल रहा है, गुवाहाटी में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, महाराष्ट्र में, हालांकि हो ही रहा है। मैं किसी की सेवा नहीं करता, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ।
2: फिल्मों की शूटिंग से फुर्सत मिलते ही नाना को खेतों में वक्त बिताना पसंद था। पुणे के पास अपने फार्म हाउस में वो खेती करते, जानवरों के साथ वक्त बिताते और कई बार अपने हाथों से खाना भी बनाते थे।
21: कि नाना क्या जो भी आते हैं गांव के लोग, वो इनके पांव छूते तो ये भी उनके पांव छूते।
22: अच्छा।
21: हाँ, जो पांव नाना का छुएगा नाना उसका पांव छुएगा। दूसरा मुझे क्या अच्छा लगा कि ये खाना आपके लिए बनाते हैं, और जब तक, जैसे ग्रहणियां नहीं होती हैं अपने हिंदुस्तान, जब तक आप परोस के खा ला के आप खा नहीं लें तब तक खुद नहीं खाते। ये दो मैंने क्या, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि देखो कितना रूटेड आदमी है ये लोग।
20: मैं हमेशा माँ बनना चाहता था, वो तो बन नहीं पाया, तो ये एक और जरिया है माँ बनने का यार।
2: नाना को खाना बनाना इतना पसंद था कि वो फिल्म के सेट पर भी साथियों के लिए खाना बनाते थे। मटन कीमा, कीमा कलेजी उनका फेवरेट हुआ करता था। लेकिन नाना का रिश्ता सिर्फ अपने खेत और रसोई तक सीमित नहीं था। किसानों की परेशानी उन्हें भीतर तक परेशान करती थी।
23: कहां तक सरकार पर निर्भर रहेंगे? हमारी एक अपनी जिम्मेदारी, एक समाज का हिस्सा होने के नाते, तो हम करते रहेंगे, किस पर टिप्पणी करेंगे हम? पिछली सरकार, इन पर, आने वाली कौन सी सरकार पर? तो मुझे लगता है कि मुझ में जितनी ताकत है, मेरी जितनी औकात है, उतनी करने की मैं कोशिश करूंगा।
2: 2010 में उन्होंने फिल्म पाठशाला से मिली अपनी फीस 5 सामाजिक संस्थाओं को दान कर दी थी। बिहार में बाढ़ प्रभावित लोगों की हर साल मदद करते थे। 2013 में नाना को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2026 में ही महाराष्ट्र सरकार के राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार की 10 लाख रुपए की राशि भी उन्होंने सूखा राहत के लिए दान कर दी थी। इसके बाद नाना ने अभिनेता मकरंद अनासपुरे के साथ नाम फाउंडेशन की शुरुआत की। इसका मकसद महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों में पानी की समस्या दूर करना, किसानों की मदद करना और गांवों की जिंदगी बेहतर बनाना था।
23: वो सभी के सहयोग से हुआ, ये कोई नाना या मकरंद या चार लोगों ने नहीं शुरू किया, आप सब लोगों ने शुरू किया। जिस दिन शुरू हुआ उसके बाद 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में हम उसका मुआयना करते रहे, आज 12-15 करोड़ रुपए वहां जमा हो गए। ये सभी लोगों ने दिए हुए हैं। बात यह है कि वो 15 के 15 करोड़ वहां पहुंचने वाले हैं, उसमें से एक भी पैसा ना तो मैं लेने वाला हूं, गाड़ी का खर्चा नहीं है, कॉफी का नहीं, चाय का नहीं, खाने का नहीं है। खैर, प्रॉब्लम यह है कि ये पैसे मंजूर कितने हुए और पहुंचे कितने, प्रॉब्लम वो है।
2: नाना की जिंदगी का एक और खास पहलू था घर में गणेशोत्सव की परंपरा। हर साल उनके घर गणपति बप्पा का आगमन होता था। नाना खुद फूलों से सजावट करते थे और परिवार के साथ इस परंपरा को निभाते थे। इस साल भी नाना के घर गणेशोत्सव मनाया गया। गणपति बप्पा की पूजा और आरती में शामिल नाना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ।
0: पिताजी के गुजर जाने के बाद जिम्मेदारी आन पड़ी। वैसे बहुत श्रद्धालु मैं हूं नहीं, लेकिन उसके बाद पिछले 30-35 साल से जो कर रहा हूं, एक पता चला कि इस बहाने सभी लोग मिलते रहते हैं जो बरस भर मिल नहीं पाते।
2: यही नाना पाटेकर की जिंदगी का दूसरा चेहरा था। पर्दे पर अपने गुस्से से दर्शकों को झकझोरने वाला अभिनेता असल जिंदगी में जरूरतमंद लोगों के लिए खड़ा दिखाई देता था। नाना पाटेकर एक ऐसे कलाकार थे जिसने पर्दे पर किरदार जिए और पर्दे के बाहर जिंदगी को अपने अंदाज में जिया।
18: वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नाना के संघर्ष से सफलता तक की कहानी। आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
4: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
22: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड,
24: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरनमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
25: एक परिवार, अटूट भरोसा।
26: हाउस द हॉस्टल सेटल्ड?
27: यस मैम, रियली
26: नाइस। कोई आ रहा है क्या?
28: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभा ली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले।
26: मयंक, फॉर रियल?
28: वन कैरेट फॉर माय वन ट्रू लव, नेचुरल डायमंड रियल लव सॉलिटेयर्स टू रीइग्नाइट योर न्यू सीजन ऑफ लव।

0: लेनी पड़े
1: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई। ट्रैवल एजेंट कोई गांजा फूंक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
1: तुम्हारा
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
0: यार काट देना ये।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: पड़े
1: नहीं, नहीं, नहीं।
0: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई, ट्रैवल एजेंट्स कोई गांजा फूंक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदी हैं।
0: तुम्हारा
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदी हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
3: यार काट देना।

0: नाना पाटेकर का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। बचपन में आर्थिक परेशानियां देखी, कम उम्र में जिम्मेदारियां नाना ने उठाई और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। बॉलीवुड तक पहुंचने का नाना का सफर और रास्ता किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। छोटे छोटे कामों से शुरुआत करने वाले नाना ने अपनी मेहनत और अपने अभिनय के दम पर वो मुकाम हासिल किया जहां पहुंचना हर किसी का सपना होता है। नाना की कहानी हमें ये बताती है कि सफलता सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि अपने जुनून, मेहनत, जज्बे और हुनर पर भरोसा रखने से ही मिलती है।
1: पहली बार मैं उनके हाथ से खाया है, वो खुद बना दे और बुला देते आ जाया।
2: ये बताऊंगा कि नाना बोलते थे कि भाई बस तुम जितना हो सके उतना आदमी पहचानो और उनसे बात करो और उनसे मिलो।
3: अगर कुछ लगे तो इसके पास जा सकते हैं, एक फादर फिगर जैसा। ऑब्वियसली वो नहीं रहा।
4: ये हम लोग के फैमिली रिलेशन थे, नाना के साथ बिजनेस रिलेशन नहीं थे।
5: कुछ लोग जिंदगी जीते हैं और कुछ लोग जिंदगी को अपने भीतर उतार लेते हैं। कुछ चेहरे पर्दे पर आते हैं, कुछ चेहरे पर्दे पर आते ही पर्दा बदल देते हैं। नाना पाटेकर ऐसा ही एक नाम थे। 1 जनवरी 1951 महाराष्ट्र के रायगढ़ के मुरुड जंजीरा की मिट्टी में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम था विश्वनाथ पाटेकर और यही बच्चा बड़ा होकर नाना पाटेकर बन गया।
6: हमारे जो टीचर भी थे ना, वो हमें ऐसे बगल में लेके बैठते थे, बार बार कौन उठ के जाएगा और मारने के लिए। वहां अगर बच्चे हंस देते थे तो उनको मालूम नहीं इसने कुछ शरारत की है, फिर ऐसे बिना कुछ देखे बोले वो मार देते थे, क्योंकि वो मालूम नहीं आदत थी बचपन की। वो वैसे ही थे, सीधा कुछ कभी देखा नहीं।
5: एक साधारण परिवार था और जिंदगी आसान नहीं थी नाना पाटेकर की। पिता को कारोबार में नुकसान हुआ और परिवार आर्थिक संकट में घिर गया था। महज 13 साल की उम्र में नाना ने काम करना शुरू कर दिया था। फिल्मों के पोस्टर पेंट किए और इसके बदले मिलते थे महीने के सिर्फ 35 रुपए। स्कूल के बाद मुंबई के चूना भट्टी इलाके तक पैदल जाना, पोस्टर बनाना और बदले में एक वक्त का खाना मिलता था। यही था नाना पाटेकर का संघर्ष, जिसे आगे चलकर सिनेमा का बड़ा नाम बनना था।
6: हम ये झेब्रा क्रॉसिंग रहती थी ना,
7: हाँ जी हाँ जी,
6: वो हम पेंट करते थे, हमको 15 रुपए मिलते थे एक एक क्रॉसिंग के, एक कर दिया तो 15 रुपए। तो रात को हम शुरू करते थे, जैसे ट्रैफिक बंद हो जाए 1-1.5 बजे शुरू करते थे, नहीं तो फिर उसके ऊपर से गाड़ी चली जाए तो वो धब्बे आ जाएंगे टायर के, तो मार्क्स आते, तो फिर वो दूसरे दिन 15 रुपए मिलेंगे नहीं। तो पहले दोनों बाजू तीन जन दूसरे जो हमारे दोस्त थे वो खड़े रहते थे, फटाफट लगा दो फिर अगला वो करेगा, ऐसे करके एक रात में 25-30 जेब्रा क्रॉसिंग हो गई तो पैसे मिल जाते।
5: नाना पाटेकर ने कभी पोस्टर बनाए, कभी छोटे मोटे काम किए, लेकिन भीतर कहीं एक कलाकार सांस ले रहा था। नाना ने सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई की, बचपन से पेंटिंग बेहतरीन करते थे लेकिन अभिनय उनके भीतर आकार ले रहा था।
6: जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में और वहां भी गुर्बत तो थी यार, इतने पैसे थे ही नहीं, अब क्या करें। तो हमारी टर्म फी थी उस वक्त जेजे स्कूल ऑफ आर्ट की 120 रुपया। तो ये फ्लोट डिजाइनिंग, गवर्नमेंट के बहुत काम होते थे ना, फैमिली प्लानिंग के पोस्टर बनाओ, ये है, बहुत से काम होते थे। तो फ्लोट डिजाइनिंग जो होती थी, कंपटीशन जो होती थी पूरे स्टेट्स की होती थी, तो महाराष्ट्र स्टेट का जो फ्लोट डिजाइनिंग का होता था वो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में करते थे। फिर हमें वहाँ वो जो जरूरतमंद बच्चे हैं तो उनको तो 300-400 रुपये मिलते थे हमको।
5: धीरे धीरे रंगमंच उनकी जिंदगी बन गया। मराठी थिएटर ने उन्हें अभिनय की बारीकियां सिखाई, मंच ने आवाज उधार दी, संघर्ष ने चेहरे को कहानी दी और फिर खुला सिनेमा का दरवाजा। 1978 फिल्म थी गमन, यहीं से बड़े पर्दे पर सफर शुरू हुआ। शुरुआती सालों में छोटे बड़े किरदार मिले लेकिन नाना के अभिनय में कुछ ऐसा था जो उन्हें भीड़ से अलग करता था।
8: तो तभी से मैं इन्वॉल्व होता हूँ फिल्म में, और मेरी एक गलत फहमी है कि मैं लिख सकता हूँ, है तो मैं कभी कभार मैं अपने डायरेक्टर राइटर के साथ बैठ के उनको पूछता हूँ कि अगर ये ऐसे हो, अगर ऐसे हो, इंसिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर सही है तो डायरेक्टर कहता है कि वो फ्रेमवर्क में अगर फिट बैठता है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन करता जरूर हूँ।
5: अंकुश और सलाम बॉम्बे ने उनकी पहचान को मजबूत किया और फिर 1989 में आई परिंदा। इस फिल्म में नाना का अन्ना ऐसा किरदार बना जिसकी हिंसा के पीछे एक खौफनाक दुनिया थी। नाना ने इस भूमिका में ऐसा असर छोड़ा कि उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से लेकर फिल्म फेयर तक सम्मान मिला। और फिर आया क्रांतिवीर, 1994 की वो फिल्म जिसमें नाना की आवाज आम आदमी के गुस्से और व्यवस्था से उसके सवालों की आवाज बन गई। प्रताप नारायण तिलक के किरदार ने उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिलाया।
7: अत्याचार सहना या अत्याचार करने से ज्यादा बड़ा गुनाह है, वो मत सहो, बस वो सहना गलत है, दो हाथ है उसका इस्तेमाल करो यार, ये कोई जरूरी नहीं है ऐसे मोटा आदमी होना चाहिए, ताकत थोड़ी यही होती है। पैसा छिलके के सरीका होता है, केला लेने जाओ तो केले के साथ छिलका तो आता है, सिर्फ छिलका लेने जाओ तो क्योंकि मैं अंदर का जो केला है उसके लिए काम करूंगा, जो मेरा काम है उसके साथ छिलका आएगा।
5: लेकिन नाना सिर्फ गुस्से और गंभीरता के अभिनेता नहीं थे, तिरंगा, अग्नि साक्षी, खामोशी, अब तक 56, अपहरण और राजनीति में उनके अलग अलग रंग दिखे। फिर वेलकम में उदय शेट्टी बनकर उन्होंने दर्शकों को खूब हंसाया।
9: नीसबत भी जब वेलकम के लिए मेरे पास आया तो मैंने कहा यार ये इस किस्म का तो रोल मैं करता नहीं, ना तो किया है, नहीं नहीं नाना जी आप करो, ये बहुत अच्छा है, इसे लोगों को बहुत पसंद आएगा, आपने किया नहीं तो लोगों को, मैंने कहा ऐसे नहीं। अच्छा मैंने कहा तू अपने माँ की कसम ले और बोल मुझे करना चाहिए ये। अब उसके समझ में नहीं आया क्या बोल रहा, मैंने कहा तुझे अंदर से लगता है ना मैं करूँ, माँ की कसम लेके बोल, तो कहता माँ की कसम मुझे लगता है कि आपको ये करना चाहिए, मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ।
5: हिंदी और मराठी सिनेमा के साथ उन्होंने तमिल फिल्मों में भी काम किया, अभिनय के अलावा निर्देशन में भी उतरे। प्रहार द फाइनल उनकी बेहतरीन फिल्मों में से एक है। 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले, 4 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले, मराठी सिनेमा में कई सम्मान मिले और 2013 में पद्मश्री। ये उपलब्धियां उस कलाकार के सफर की गवाह हैं जिसने गरीबी से निकलकर अभिनय की दुनिया में अपनी अलग जगह बनाई। लेकिन नाना पाटेकर सिर्फ अपने अभिनय के लिए ही नहीं, अपने बेबाक बयानों के लिए भी जाने जाते थे। पाकिस्तानी हमले के बाद जब बॉलीवुड में पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर बहस छिड़ी थी तो नाना ने बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात रखी।
9: पाकिस्तान कलाकार ये बातें बाद में, पहले मेरा देश, देश के अलावा मैं किसी को जानता नहीं और ना तो मैं जानना चाहूँगा। कलाकार, हम कलाकार देश के सामने इतने खटमल की तरह इतने से है, हमारी कीमत कोई नहीं है, पहले देश, देश के बाद अगर कोई कुछ है तो फिर बाद में बात करो।
5: नाना पाटेकर का सेना से रिश्ता सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं था। फिल्म प्रहार के लिए उन्होंने मराठा लाइट इन्फेंट्री के साथ कड़ी सैन्य ट्रेनिंग ली। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब 1999 में करगिल युद्ध शुरू हुआ। नाना ने तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस से सैनिकों के साथ जाने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने के बाद वो करीब 60 दिन सेना के जवानों के साथ रहे।
9: तो हमने फोन किया तो वहाँ जनरल पाटन करते 28 डिव के, तो उन्होंने कहा हम आपको नहीं यहाँ ले सकते, आप सिविलियन हैं। मैंने कहा ऐसे ऐसे हमने किया नहीं, मैंने कहा कौन कह सकता है, फर्नांडिस साहब। तो हमने फोन किया, तुम जानते थे मुझे, नाना सिविलियन को अलाउ नहीं कर सकते, ऐसे कैसे होगा। मैंने कहा सिविलियन 6 महीने में तो कमीशन हो जाता है, हमने 3 साल गुजारे हुए, मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा बता रहा हूँ कब जाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा आज, निकल गया। तो 60 दिन था मैं।
5: नाना पाटेकर एक ऐसे कलाकार थे जिसने पोस्टर रंगते हुए अपने सफर की शुरुआत की और फिर करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी तस्वीर छोड़ गए। नाना पाटेकर एक नाम, एक आवाज, अभिनय की ऐसी विरासत जिसे वक्त कभी मिटा नहीं पाएगा।
0: पर्दे पर अपनी बुलंद आवाज से दुनिया को हिला देने वाले नाना की जिंदगी, निजी जिंदगी की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। रिश्ते, परिवार, शादी, जिंदगी के उतार चढ़ाव ने नाना के व्यक्तित्व को कई सारे रंग दिए। नाना की पत्नी नीलकांति पाटेकर और नाना के बेटे मल्हार उनकी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर रहे, लेकिन जिंदगी में ऐसा दौर भी आया जब नाना को अकेलेपन और मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। वो बिल्कुल अकेले तन्हा रह गए।
10: ये तस्वीर सिर्फ एक अभिनेता और उसकी पत्नी की नहीं है, ये उस जिंदगी की तस्वीर है जिसमें मोहब्बत है, संघर्ष है और वक्त के साथ बदलते रिश्तों के कई रंग भी हैं।
6: उसी वक्त मिले थे, वो भी नाटक में काम करती थी और फिर वो बैंक में थी, मैं ये थी अफसर थी। हमको 50 रुपए मिलते थे एक शो के और उनको 2,500 रुपए तनख्वाह थी। तो उन्होंने हमको कहा कि आप अगर करियर करना चाहते तो करो, अपने पास पैसे तो आते हैं, हमारी तनख्वाह है तो बड़ी मेहरबानी है उनकी। बदौलत उनके हम ये कर पाए एक प्रोफेशन करके कि चलो हम यही करेंगे।
10: नाना पाटेकर की जिंदगी के कई ऐसे पहलू हैं जिन्हें दुनिया कम जानती है। एक ऐसा अभिनेता जो हर फिल्म में अलग नजर आता है, लेकिन असल जिंदगी में भी जिसके कई रंग हैं।
6: सुनी पाहता अले धानी वाट पुरती थकलिया है, वळणा मरची खळखळणारी नदी ही आता थकलिया है, सांज कातर उन्हात निजली निवडुंगाची भली सावली, वटवृक्षावर नवस बावटा वाऱ्यावरती झुलतो आहे, उडून गेले विहंग सुस्वर श्वास केवळ घुमतो आहे, हाती कोरल्या रेघांवरती शब्द बोबडे लिहितो आहे, तरीही काही क्षण सानुले रांगत येती माझ्या जवळी, खेळत बसते त्यांच्या संगे लपंडाव का चुक्यान फुकडी।
10: नाना की मुलाकात नीलकांति से थिएटर के दिनों में हुई, दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर 1978 में शादी हुई। परिवार में दो बेटे हुए, लेकिन बड़े बेटे दुर्वासा को खोने का दर्द इस परिवार ने झेला। छोटे बेटे मल्हार ने फिल्म निर्माण की दुनिया चुनी। वक्त के साथ नाना और नीलकांति के रिश्ते में दूरियां आई, हालांकि दोनों ने कानूनी तौर पर तलाक नहीं लिया। लेकिन नाना को सिर्फ उनके पारिवारिक रिश्तों से नहीं समझा जा सकता, उनकी शख्सियत का एक और रंग है उनकी बेबाकी।
9: जो भार्गव जो है उसको फिर वो बहुत आसान था, और अलग अलग करने में जो मजा है वो एक ही तरह के करते रहो और पैसे बटोरते रहो तो क्या है। और मैं हमेशा एक स्टेटमेंट करता हूँ सुदेव के, हमारे सुख और दुख की व्याख्या रोज बदलनी चाहिए आर्टिस्ट की, नहीं तो हम एक ही तरह से इमोट करते रहेंगे। और व्याख्या बदलने के लिए हमको अलग अलग दुख देखने पड़ेंगे, वो दुख देखने हैं तो घर के बाहर निकलना पड़ेगा। कलाकार है वो सबसे दुखी होना चाहिए, असंतुष्ट होना चाहिए।
10: नाना की शख्सियत की तरह नाना नाम की कहानी भी अपने आप में दिलचस्प है। यही नाम आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। पर्दे पर उनका नाम आते ही दर्शकों को एक ऐसे कलाकार की याद आती है जिसकी आवाज और अभिनय दोनों का अपना असर है।
9: अमित जी हमें वो एक फिल्म कर रहे थे कोहराम करके, एक दिन अमित जी आया,
11: अमिताभ बच्चन
9: बच्चन हाँ। और मिठाई बांटने लगे। मैंने कहा क्या हो गया? नहीं, मेरी बेटी को बच्चा पैदा हो गया, मैं नाना बन गया। मैंने कहा कितने साल लगे यार, मैं बचपन से नाना हूँ।
10: नाना के भीतर एक कलाकार के साथ साथ एक शायराना मिजाज भी था। कभी गुनगुनाते हुए, कभी शायरी सुनाते हुए उनका एक सहज और भावुक चेहरा भी सामने आता था।
6: हम बड़े खुशकिस्मत है, तुम वो मालूम नहीं हम कितने अमीर है, तुम सोचते हो उससे कई गुना अमीर है हम, बहुत सी बातें हमारे पास ही है।
10: और जब बात देश की आती है तो नाना अपनी राय खुलकर रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए भी उन्होंने अपनी बात बेझिझक कही है। नाना की यही साफ गोई उन्हें चर्चा में रखती थी, चाहे लोग उनकी बात से सहमत हो या असहमत।
9: लेकिन जो सही है सही है, अच्छा मुझे लगता है, मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, मुझे जो सही लगता है, मैं बहुत कोई इसके जैसा मैं ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है कि ये इतना हमारा जो स्तर है भारत का वो कहाँ का कहाँ पहुँचा है, और अब कौन है उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जो है उनके होते हुए ये हुआ है। तो कोई कहता है कि नहीं अब नाना मोदी भक्त हो गया। मैंने कहा यार मुझे क्या लेना देना है, मैं किसी से कुछ कभी किसी से बात भी नहीं करता, कुछ नहीं है।
10: शोहरत, संघर्ष, परिवार का दर्द, अभिनय के अनगिनत रंग, और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का अंदाज। नाना पाटेकर की कहानी किसी एक पहचान में समेटी नहीं जा सकती। वो पर्दे पर किरदार निभाते हैं, लेकिन पर्दे के बाहर भी उनकी जिंदगी अपने आप में कहानी है।
0: नाना कभी भुलाए नहीं जा सकते, हमेशा याद आएंगे। कहानी में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: दिल्ली में सीजेपी और उनके समर्थकों के प्रदर्शन को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज तक के साथ खास बातचीत की है। हमारे सहयोगी गौरव सावंत से उन्होंने बातचीत में क्या क्या कहा है आपको सुनाते हैं। उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला, युवाओं से भी उन्होंने आवाहन किया कि वो विपक्ष के भ्रम में ना आए।
1: राजधानी दिल्ली की बात करें या देश के अलग अलग भागों में SIR के मुद्दे पर, अलग अलग मुद्दों पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। MPs को, नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विमान से हिरासत में ले लिया गया। कहा जा रहा है इस समय देश में अघोषित इमरजेंसी है। इस समय यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू हमारे साथ हैं। सर, अघोषित इमरजेंसी है देश में, ये आरोप लग रहा है आपकी सरकार पर।
2: कांग्रेस पार्टी तो इमरजेंसी के बारे में बोलने का उनका कोई अधिकार तो नहीं है। कई लोग को मालूम है अभी भी कि असली इमरजेंसी क्या होता है, कांग्रेस पार्टी को अच्छा से मालूम है। जहां तक ये प्रोटेस्टर्स को जो अरेस्ट या जो डिटेंशन का बात है, ये पुलिस का एक्शन है। मिनिस्टर तय नहीं करता है किसको कहाँ अरेस्ट करना है, किसको कहाँ रखना है, ये पुलिस का बंदोबस्त होता है। पुलिस का जिम्मेदारी है कि जो नागरिकों को तकलीफ ना हो। अगर ये प्रोटेस्ट करके आम नागरिकों को दिल्ली में परेशानी करता है, जान माल का नुकसान होगा, किसी वहाँ ऑफिस या कोई इंस्टीट्यूशन पे लोग हमला करेंगे, उसका रक्षा करना पुलिस का काम है जी। तो पुलिस का काम सिर्फ ये प्रोटेस्टर को संभालना नहीं है, पुलिस का ये भी काम होता है कि आम नागरिकों को तकलीफ ना हो। इसलिए पुलिस जो कार्रवाई करता है वो समाज को एक अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए उनका दायित्व को निभा रहे हैं।
1: लेकिन इतनी ज्यादा गिरफ्तारियां करने की आवश्यकता पड़ी क्यों? क्या आपके पास कोई इस तरह की, क्या सरकार के पास कोई इंटेलिजेंस इनपुट था कि कुछ तत्व, जैसा कहा जा रहा है कि कुछ तत्व देश को इस समय नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं?
2: देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो एक्सप्लेनेशन कल दिया और आज भी जो दिया उसमें पर्याप्त है। पिछली बार ये जो कॉकरोच पार्टी के नाम से इन्होंने प्रोटेस्ट का समय मांगा और एक दिन का समय मांगा और महीने भर वहां बैठा और बाद में इलीगली पार्लियामेंट मार्च का काम किया। और उनके प्रोटेस्ट के बाद में आपने देखा होगा कई जो एंटी सोशल एलिमेंट्स, क्रिमिनल्स वगैरह भी इसमें फायदा उठाया। तो ये सबको देखभाल जो करने का जो काम है वो पुलिस का है। तो पुलिस ने कह दिया कि पिछली बार भी इन लोगों ने जो रूल ब्रेक किया है तो दोबारा इसको रूल ब्रेक करने का मौका नहीं देंगे। तो ये पुलिस ने बहुत साफ शब्दों में बता दिया है। तो पुलिस ने जो एक्सप्लेन किया है उसको ध्यान से सुनने से क्लियरली पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस और जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस के लोगों ने कितना प्रोफेशनली मैनेज किया है।
1: लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी या विपक्ष लोग SIR के मुद्दे पर CC पर बोल रहे हैं कि CC इज एन एक्सटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट और एक पूरा प्रोटेस्ट कैलेंडर है, क्या ये सरकार के लिए, क्या सरकार इस समय बैकफुट पर है इस मुद्दे पर?
2: नहीं, बैकफुट का सवाल ही नहीं। हम कोई गलती काम नहीं करते हैं तो हम क्यों बैकफुट पर जाएंगे? बैकफुट तो अपोजिशन को जाना चाहिए कि वो झूठ बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहे हैं, आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं और आप फिर इलेक्शन कमीशन को सर पे उसका ठिकरा फोड़ेंगे, ये कोई बात होता है क्या? अगर चुनाव जीतना चाहता है तो इलेक्शन कमीशन को गाली देके चुनाव नहीं जीतेगा। चुनाव जीतना है तो लोगों का बीच में जाकर के, लोगों का सेवा करके ही आप चुनाव जीत सकते हैं। राहुल गांधी जी इस साल में 7 महीने विदेश में रहता है और यहाँ कुछ दिन हमारा देश में वापस आता है, ऐसे करने से चुनाव थोड़ी जीतते हैं। चुनाव जीतने के लिए लोगों का दिल जीतना पड़ता है। मोदी जी ने पूरा जीवन, पूरा समय हमारा देश के लिए दिया है, देश को, लोगों के लिए दिया है, तभी तो भरोसा प्राप्त करते हैं, लोगों का मैंडेट मिलता है। जनादेश लोगों का दिल जीत करके प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो अपोजिशन पार्टी सोचते हैं कि इलेक्शन कमीशन को गाली दे करके आप चुनाव जीत जाएंगे, ये तो हो नहीं सकता है, लोग देख रहे हैं।
1: तो नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार हैज टू गो, प्राइम मिनिस्टर हैज टू गो, दिस गवर्नमेंट हैज टू गो, उनके स्ट्रीट प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में सरकार इस सिचुएशन से कैसे डील करेगी? आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, क्या पार्लियामेंट में आप रीच आउट करेंगे ऑपोजिशन?
2: देखिए, ऑपोजिशन पार्टी अपना मर्जी से किसी जज को हटा दो, इलेक्शन कमिश्नर को हटा दो, किसी ऑफिसर को हटा दो, ऐसा देश नहीं चलता है। देश नियम कानून से चलता है, संविधान से चलता है। इसलिए ये जो बिना तथ्य का, बिना सबूत का झूठ गलत नैरेटिव या अफवाहें फैला करके, भ्रम फैला करके ये राजनीति करना चाहता है, ये देश के लोग इसको साथ नहीं देंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश के लोग इस तरह का राजनीति को पसंद नहीं करेंगे।
1: आप उन छात्रों से या उन यूथ से जो इस समय सड़कों पर आ रहे हैं या आ चुके हैं, आप क्या कहना चाहेंगे एज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, एज माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर?
2: देखिए, हम तो छात्रों को या युवाओं को ये कहेंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में जो अच्छा काम हो रहा है, भारत पहले का जैसे नहीं रहा, अब तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसमें जिम्मेदारी का साथ देश को आगे बढ़ाने में सब साथ देना चाहिए। ये झूठे बातें करके ऑपोजिशन पार्टी मिसलीड करता है, इस झांसा में कोई युवा नहीं आना चाहिए।
1: सर, आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: नहीं पड़े
1: नहीं।
0: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई। ट्रैवल एजेंट कोई गांजा फूंक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
0: तुम्हारा
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
0: यार काट देना।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: आ गया सोमवार और आ गए
2: चकमक चाचा।
1: एक कचौड़ी दो समोसा चकमक तेरा क्या भरोसा।
3: चकमक चाचा से सीधे चकमक है।
1: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही पूछ रहा ना।
3: लेकिन भैया नारे अरे फालतू में सब बेकार एकदम बेकार नारे होते थे हमारे टाइम।
1: अच्छा
3: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
1: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी इन नेताओं की खत्म कहानी।
3: अरे जमीन की चकबंदी में, जमीन की चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में।
1: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
3: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
1: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा लेके जाएंगे।
3: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
1: अरे लाल फूल नीला फूल जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
3: अरे बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी।
1: चाय गरम दूध गरम चकमक चाचा भी शर्म
3: है।
1: हाँ
3: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
1: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
4: हम जैसे इधर आओ।
5: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन पर सख्ती के बाद सामान्य हो रहे हैं हालात। खुले गए सभी मेट्रो स्टेशन, आज खुलेंगे सभी बाजार, लेकिन सीजेपी ने आज फिर आंदोलन का किया ऐलान। सीजेपी के प्रदर्शन पर बीजेपी का ताबड़तोड़ हमला, कहा सड़कों पर अराजकता की साजिश, राहुल का बयान, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जारी रहेगी जंग। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मेट्रो स्टेशन बंद करने और लोगों को हिरासत में रखने के खिलाफ याचिका, सोमवार को बड़े मार्च की तैयारी में विपक्ष। चेन्नई में छात्रों के बीच राहुल की गूंज, कहा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं पीएम मोदी, तमिल भाषा और संस्कृति पर प्रधानमंत्री के हमले का जड़ा आरोप। अब सीएम योगी ने अखिलेश को दी चुनौती, कहा अयोध्या से चुनाव में हो जाए आमना सामना, अखिलेश का जवाब हमारा युवा पीडीए प्रहरी ही काफी।

दिल्ली में आज दिन भर होता रहा हंगामा। 13 घंटों के बाद हिरासत में सीजेपी नेता विजय दीप के, सौरव दास और आशुतोष शांका। हिरासत में ले जाने के बाद दीप के ने प्री रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज किया जारी, कहा कि अजिंक्य शिंदे मूवमेंट को करेंगे लीड। अजिंक्य शिंदे ने मोर्चा संभालते हुए प्रदर्शनकारियों से अपील की। अजिंक्य ने कहा कि चलो जंतर मंतर। प्रदर्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने पर कोर्ट में चुनौती से दी गई। दिल्ली मेट्रो स्टेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दायर की है याचिका। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के खिलाफ गठबंधन इंडिया का विरोध जारी है, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को पुलिस छत्रसाल स्टेडियम में लेकर गया और छत्रसाल स्टेडियम को डिटेंशन सेंटर बनाया गया। शनिवार को प्रदर्शन से बिगड़ी दिल्ली की यातायात व्यवस्था और लोग होते रहे जगह जगह परेशान। दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा, जंतर मंतर पर जाने से सीधा रोका। बिना इजाजत जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने को लेकर अड़ा कांग्रेस, जनता पार्टी और सीईसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहता था। जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। प्रदर्शनकारियों के हमले में दिल्ली पुलिस के दो सुरक्षाकर्मी घायल, महिला कांस्टेबल ने बदसलूकी का आरोप भी लगाया। प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, 254 सांसदों को हिरासत में लिया गया, देश में अब लोकतंत्र नहीं रहा। पीएम मोदी आरएसएस को राहुल गांधी ने बताया कायर, कहा कि इनकी सबसे बड़ी पहचान कायरता है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा कि नेता विपक्ष भ्रम फैला रहे हैं, जनता ने राहुल गांधी और केजरीवाल को नकारा है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने सीजेपी को बताया आम आदमी पार्टी की प्रॉक्सी, राहुल गांधी इमरजेंसी की नगर बाद कांग्रेस ने लगाई थी इमरजेंसी। राहुल गांधी पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नेता विपक्ष विदेशी ताकतों का एजेंडा चला रहे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले कि दिल्ली में अराजकता फैलाने की कोशिश, सीजेपी को राजनीति करनी है तो पार्टी बनाए। बीजेपी महासचिव स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर हमला, कहा कि कुंठा में संवैधानिक संस्थाओं पर हमले कर रहे हैं कांग्रेस, सत्ता के लिए कुछ भी करेगी कांग्रेस। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने सीजेपी को बताया राहुल केजरीवाल की बी टीम, बोले कि ये नेता हार की खीर जनता पर क्यों उतार रहे हैं। प्रदर्शन को लेकर सीएम योगी बोले कि जो मंदिर निर्माण में बाधक वो अब कर रहे हैं विरोध, कांग्रेस और सहयोगी भूल चुके हैं शिष्टाचार। 124 पूर्व आईएएस आईएफएस ऑफिसर्स ने लिखा खुला खत, एसआईआर प्रक्रिया के समर्थन में लिखी चिट्ठी, पूछा कि जीतने पर प्रक्रिया सही, हारने पर धांधली कैसे। बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर बोला हमला, कहा कि कभी ऐसी सरकार नहीं देखी, मेरे साथ आपराधिक बर्ताव हुआ। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद छोड़ा, दिल्ली के जाफरपुर कलान थाने ले गई थी पुलिस। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले कि सीसी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लो, वोट चोरी बंद करो।

अध्यक्ष का दावा, सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गुरुद्वारा बंगला साहिब के हॉल में घुसने की कोशिश की, रोकने पर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने उनके प्रेसिडेंट हरमीत सिंह कालका ने आप पर साधा निशाना, बोले कि आम आदमी पार्टी कर रही है गंदी राजनीति, गुरुद्वारे में नारेबाजी बर्दाश्त नहीं। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले कि गुरुघर हमारी आस्था के केंद्र, राजनीतिक स्वार्थ का मंच नहीं, इसकी मर्यादा से कोई समझौता नहीं हो सकता। मुंबई में भी सीजेपी के पक्ष में प्रदर्शन, हिरासत में 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारी, अगस्त क्रांति मैदान से एक्टर इमरान खान पर भी पुलिस का शिकंजा। सीजेपी कार्यकर्ता प्रीति लोंढे की हिरासत पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश, मंगलवार तक पेश करे पुलिस। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर लोग परेशान होते रहे, सीजेपी प्रदर्शन की वजह से चार ट्रेनें रद्द होने से यात्री परेशान बेहाल। भोपाल में सीजेपी का प्रदर्शन, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग। चेन्नई में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल गांधी, कहा कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं पीएम मोदी, तमिल भाषा और संस्कृति पर प्रधानमंत्री के हमले का। यूपी में सीएम योगी ने कबूल किया अखिलेश यादव का चैलेंज, बोले मैं अयोध्या से चुनाव लड़ने को तैयार, आप भी नामांकन कीजिए। सीएम योगी पर अखिलेश यादव का पलटवार, अयोध्या में एक युवा पीडीए प्रहरी ही काफी है, चढ़ावा चंदा चोर, हारेंगे चुनाव। पंजाब सीएम के ओजी के परिसर पर सीबीआई का समंचस्पक, अधिक भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई कर रहे इन्वेस्टिगेशन। शर्जील इमाम की अंतरिम जमानत रद्द, जमानत की शर्तों के उल्लंघन पर दिल्ली की अदालत ने रद्द कर दिया। दिल्ली के पूर्व आपा शताहिर हुसैन दोषी करार, 2020 में हुए दंगों से जुड़े मामले में दोषी। कैप्टन स्मिथ पर हमले की एमएचए ने एनआईए को सौंपी जांच, एनआईए ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच। झारखंड के साहिबगंज में बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने युवक को बांग्लादेश भागने से पहले पकड़ लिया। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.2 और कुछ दिन पहले 4.9 तीव्रता का भूकंप भी आया था। जोधपुर एयरबेस पर गर्जे लड़ाकू विमान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तरंग शक्ति 2026 अभ्यास में हुए शामिल। बिहार में मासीता महिला विश्वविद्यालय पर सीएम सम्राट चौधरी का निर्देश, चर्चा के बाद ही होगा फैसला। बिहार के कटिहार में डीएम के सादगी भरे अंदाज ने जीता सबका दिल, बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की चौथी पुण्यतिथि पर सैफई में उमड़ी भीड़, लोगों ने दी श्रद्धांजलि। लखनऊ के अवध ग्रीन अपार्टमेंट में चौथी मंजिल से गिरा 27 साल का शिवा वर्मा, परिवार वालों का आरोप है कि शिवा की हत्या हुई है। सहारनपुर के देवबंद में हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत, सीएम योगी ने लिया संज्ञान, मेरठ से सहारनपुर पहुंचे संगीत सुन। नोएडा के भंगेर सीएससी हॉस्पिटल से 3 दिन के नवजात की चोरी, हुई सीसीटीवी में बाइक सवार के साथ जाती दिखी महिला। मेरठ में मोटरसाइकिल सवार बदमाश मोबाइल छीनकर फरार, घटना सीसीटीवी में कैद। करनाल में चाकू की नोक पर वारदात करने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार, पट्ठा नाम से चल रहा था इनका गैंग। सोनीपत में बेखौफ चोरों का आतंक है, दिन दहाड़े लाखों की चोरी से अड़का। गुजरात के नाडियाड में बाइक हटाने को लेकर बवाल, दुकान के कर्मचारियों ने 4 युवकों पर किया हमला। गुजरात के पंचमहल में माता पिता ने ही जन्म लेते ही बेटी को तालाब में जिंदा डुबो दिया, लाश बरामद। वाराणसी के मणिकर्णिका पर अंतिम संस्कार कराने वाले डोम परिवार को दबंगों ने पीटा, 7 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में तस्करी के 2 अलग अलग मामलों में 78 किलो गांजा जब्त, मां बेटा अरेस्ट। बिहार के आरा में दिन दहाड़े मर्डर, हथियारबंद बदमाशों ने हार्डवेयर कारोबारी के सिर में मारी गोली। अजमेर में महिला पुलिस अधिकारी ने वकील को मारा थप्पड़, सड़क पर गाड़ी खड़े करने पर हुआ था विवाद। अलवर में प्रिंसिपल की गर्भवती पत्नी ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान, सुसाइड नोट में पति, सास और ससुर पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप। मथुरा में मुठभेड़ के दौरान चेन स्नैचिंग करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों से सोने की चेन, एक तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के बिजनौर के खेत में निकला 14 फीट लंबा विशाल अजगर, 4 घंटों के बाद तकिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला। नवरात्र का शुभारंभ आज से, श्रद्धा भक्ति के साथ 9 दिनों तक होगी मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा। कोलकाता के ईडन गार्डन में महालया का भव्य आयोजन, लाइट डिस्प्ले में दिखा मां दुर्गा का दिव्य स्वरूप। कन्याकुमारी से केदारनाथ तक मुरारी बापू की स्वास्थ्य यात्रा शुरू, मुरारी बापू ने हरी झंडी दिखाई, भारत के सांस्कृतिक एकता, सनातन परंपरा, राष्ट्रीय एकजुटता का संदेश इसका मकसद। गांधीनगर में गरबा मैदान में 3-लेयर सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सादे कपड़ों में तैनात रहेंगी महिला पुलिसकर्मी। चमोल में शीतकाल के लिए बंद हुए पवित्र हेमकुंड साहिब के कपाट, अंतिम अरदास के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी ड्रोन हमले का वीडियो आया सामने, 8 अक्टूबर को रूसी सेना ने भीषण हमला किया था।

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने राजधानी कीव में अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की। जेलेंस्की ने रूसी हमलों के बीच में समर्थन देने के लिए अमेरिका का धन्यवाद किया। चीन से बढ़ते सैन्य दबाव के बीच ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ते का बयान, कहा कि ताइवान शांति चाहता है लेकिन अपनी स्वतंत्रता से समझौता नहीं करेगा। वेस्ट बैंक में जैतून की कटाई के दौरान बवाल, इसराइली सेना ने आंसू गैस और स्टन ग्रेनेड छोड़े, फिलिस्तीनी किसानों को खेत छोड़कर भागना पड़ा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर सहमति। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आईसीई की गोलीबारी के बाद से जबरदस्त प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने आईसीई की कार्रवाई की कड़ी निंदा की। वुहान के पूर्व मेयर झो जियानवांग को 14 साल की जेल, रिश्वत के आरोप में चीन की अदालत ने सुनाई सजा, कोर्ट ने 50 लाख का युआन का जुर्माना भी लगाया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की वार्षिक बैठक से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, सुरक्षा के लिए लगभग 500 टूरिस्ट पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया। अमेरिका में फ्लोरिडा में इसायस तूफान के चलते बड़ी तबाही, तूफान की वजह से कई घर और पेट्रोल पंप क्षतिग्रस्त, लगभग 9 लाख घरों की बत्ती गुल। शंघाई मास्टर्स के तीसरे दौर में पहुंचे रूसी खिलाड़ी डेनिल मेदवेदेव, जर्मनी के जान लेनार्ड स्ट्रफ को 4-6, 6-4, 6-3 से हराया।

0: नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आज हुए आंदोलन ने पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, भारी हलचल। विपक्षी दलों का यह आरोप है कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी करके बीजेपी को फायदा पहुंचाया है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष अपनी राजनीतिक हार का ठीकरा फोड़ने के लिए चुनाव आयोग को जबरन विवादों में घसीट रहा है और उस पर झूठे आरोप लगाकर देश की ही जो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर जनता का भरोसा कम करने की साजिश रच रहा है। सरल शब्दों में अगर कहें तो ये चुनाव आयोग के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा संवैधानिक गतिरोध बन गया है, जहां संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खूब छींटाकशी हो रही है। और इसी सियासी छींटाकशी के बीच कांग्रेस जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस का फिर से आमना सामना हुआ और इस बार पुलिस ने 20 जुलाई के आंदोलन से सबक लेकर क्या क्या बदलाव किए, कैसे टुकड़ों में जंतर मंतर पहुंचने वाले प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, इस पर आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट।
1: शायद पहली बार ऐसा हुआ जब किसी राजनीतिक आंदोलन के नेताओं को हवाई जहाज के लैंड होते ही विमान के भीतर से हिरासत में ले लिया गया।
2: भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद,
3: भारत माता की जय, इंकलाब।
4: राजस्थान के एनएसए यूएन में जोर लगाने लगा दू,
1: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके, सौरभ दास और आशुतोष रंका को मुंबई से दिल्ली आई फ्लाइट से उतरने का मौका भी नहीं मिला और दिल्ली पुलिस के जवानों ने विमान के अंदर घुसकर उन्हें सीधे रनवे पर खड़ी बस में चढ़ा दिया और कारण बिल्कुल साफ था। दिल्ली पुलिस का कहना था कि जिस आंदोलन की अनुमति नहीं दी गई है उसमें शामिल होने के लिए दिल्ली आना या बाकी लोगों को नियमों के खिलाफ भड़काकर सड़कों पर उतरने के लिए कहना उचित और कानूनी रूप से सही नहीं हो सकता।
5: देश की 140 करोड़ जनता जो सुख शांति के साथ भारत के विकास में सबका सहयोग मिल रहा है उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, और ये कौन कर रहे हैं? ये दो अराजकतावादी समूह जिसमें एक इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी और दूसरे गुट का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी कर रही है। मैं इन दोनों गुटों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत की जनता पूरी तरह से आपके इन उद्देश्यों को देख रही है और आज जो आपका एनार्किस्ट प्रतिस्पर्धा चल रहा है कि कौन अधिक इस देश में अस्थिरता पैदा कर सकता है, ये आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने देशभक्त हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर इन ताकत आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
1: इस आंदोलन को लेकर सुबह से ही दिल्ली समेत पूरे देश में भारी हलचल देखी गई। दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रात में ही कई संदिग्धों और प्रदर्शनकारियों को एहतियातन हिरासत में ले लिया और दिल्ली के गाजीपुर और नोएडा जैसे सभी प्रमुख बॉर्डर्स को पूरी तरह सील कर दिया गया।
6: सीजेपी के प्रोटेस्ट के मद्देनजर यहां से जो भी गाड़ियां गुजर रही हैं उसे पहले एक चेकिंग के थ्रू जाना पड़ रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं जो गाड़ियां यहां पर अमूमन बड़े स्मूथली निकल जाती थी, आज उन गाड़ियों को रोका जा रहा है और जो दिल्ली पुलिस के यहां पर लोग हैं वो उन गाड़ियों में चेक कर रहे हैं कि जो लोग यहां से जा रहे हैं दिल्ली की तरफ उनके जाने की वजह क्या है।
1: इस आंदोलन के कारण नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आने वाली 250 से ज्यादा एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनें रद्द कर दी गई ताकि प्रदर्शनकारी दिल्ली न पहुंच सके। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के इलाकों और जंतर मंतर को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अलग अलग तरीकों से आयोजन स्थल तक पहुंचने की कोशिश की। इनमें भी कनॉट प्लेस में एनडीएमसी के एक पब्लिक वॉशरूम के अंदर करीब 100 सीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से बचने के लिए जबरदस्ती घुस गए। वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और वॉशरूम का दरवाजा टूट गया। भनक लगते ही पुलिस और सीआईएसएफ ने वहां पहुंचकर एक एक कार्यकर्ता को खींच कर बाहर निकाला और हिरासत में ले लिया।
7: दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का यहां पर एक्शन जो है शुरू हो चुका है। तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहां पर दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस ने डिटेन करना शुरू कर दिया है। तो तस्वीरें आप मेरे साथ देख रहे हैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस की।
1: सबसे ज्यादा तनाव कनॉट प्लेस के इलाके में रहा क्योंकि वहां रास्तों को पूरी तरह बंद नहीं किया गया था। कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल में इकट्ठा हो रहे करीब 200 प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर की तरफ बढ़ने के दौरान पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा और गाड़ियों में बिठाया। धौलाकुआ इलाके से भी कई कंटेंट क्रिएटर्स और प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा बलों ने रोका। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली के 45 मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट बंद रखे गए, जबकि जनपद और कर्तव्य पथ के आसपास 4 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद रखी गयी। यही नहीं, दिल्ली के अलग अलग कोनों से कई प्रदर्शनकारियों और संदिग्धों को हिरासत में लेकर बसों में बिठाया गया और हिरासत में लेने के दौरान हुई धक्का मुक्की में सब इंस्पेक्टर बजरंग जाधव समेत कुछ पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सबसे बड़ा आरोप ये लगाया कि सीजेपी और राहुल गांधी के नेतृत्व वाला विपक्ष विदेशी ताकतों के इशारे पर देश को अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं।
5: कि जिन विदेशी ताकतों से बल पर आप अपनी बिकाऊ राजनीति कर रहे हैं और विदेशी ताकतों के गठजोड़ से भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके नापाक इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। झूठ के सहारे संविधान के नाम पर लोकतंत्र को चुनौती देना जनादेश का अपमान करना है। देश की जनता ने जिसको जनादेश दिया है, देश की जनता जिसको विश्वास की है, वो देश का नेतृत्व कर रहा है।
1: इन सब के बीच दोपहर के वक्त करीब 50 प्रदर्शनकारियों का एक जत्था सुरक्षा घेरे को तोड़कर अचानक पीटीआई बिल्डिंग के पास पहुंच गया और जब वहां मौजूद पुलिस बल ने उन्हें रोकने और हिरासत में लेने की कोशिश की तो उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों पर सीधे पत्थर बरसाने शुरू कर दिए।
8: 2 घंटे पहले की बात होगी, बाबा खड़क सिंह मार्ग पे काफी भीड़ थी, काफी उपद्रवी थे, यहाँ पर प्रोटेस्टर्स तो उनको चेज कर रहे थे। तो चेज करते करते मैं 4 आदमियों के साथ पीछे बाईलेन में चला गया, आर एस स्कूल लेन है, तो वहाँ पर हम 4 ही रह गए। बस उन्होंने देखा कि कम है तो हमारी तरफ बढ़ने लगे, उसने बदलाव किया, फॉर्चुनेटली बच गए हम। जितने आ रहे थे हमारी तरफ तो पीछे से स्टाफ आ गया, बच गए।
1: इस आंदोलन में जितने युवा विरोध जताने पहुंचे उनमें कई एसएफआई, वामपंथी दलों और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आयसा के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय और दूसरी जगहों पर मार्च शुरू किया, जिन्हें तुरंत हिरासत में लिया जाने लगा। इसी दौरान सीजेपी की लीगल सेल हेड रत्ना सिंह को भी उनके घर के बाहर कार में पुलिस ने रोक लिया। जब दिल्ली पहुंचने पर विमान के अंदर ही अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया गया तब उनका पहले से रिकॉर्डेड वीडियो जारी हुआ जिसमें उन्होंने आंदोलन की कमान अजिंक्य शिंदे को सौंपने की बात कही।
9: फॉलो अजिंक्य शिंदे, he will be carrying forward the कॉकरोच जनता पार्टी।
1: हालांकि दिल्ली में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती के कारण जंतर मंतर पूरी तरह से किले में तब्दील रहा और वहां पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा, जबकि दिल्ली के कनॉट प्लेस, खान मार्केट और साउथ एक्सटेंशन जैसे इलाके नुकसान के डर से पूरी तरह बंद रहे। पुलिस ने आंदोलन से जुड़े उन यूट्यूबर्स को भी हिरासत में लिया जो जंतर मंतर जाना चाहते थे और इनमें ध्रुव राठी का नाम भी शामिल रहा जो इस आंदोलन का लगातार समर्थन कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल होने से ठीक पहले सुबह करीब 8 बजे उन्हें उनके गुरुग्राम स्थित घर से एहतियातन हिरासत में ले लिया।
10: दिल्ली गुड़गांव सहरौल बॉर्डर है, NH-48 का इलाका है, जहां पे दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचे, बैरिकेड किया इस पूरे इलाके को और अब चेकिंग की जा रही है। तमाम बसों को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को या फिर जो संदिग्ध गाड़ियां हैं जिसमें 4 से 5 लोग सवार हैं, युवक सवार हैं, युवतियां सवार हैं, उन तमाम लोगों को चेक किया जा रहा है।
1: दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन के समर्थन में मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में दोपहर 3:30 बजे एक एकजुटता सभा बुलाई गई थी और जब महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी इस प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे तभी मुंबई पुलिस ने उन्हें बांद्रा से हिरासत में ले लिया और डीएन नगर पुलिस स्टेशन ले गई।
11: पुलिस मुझे कुछ कहीं ले जा रही है, बता नहीं रही कहाँ ले जा रहे हैं, दो दो मिनट कह रहे हैं, कुछ बताने से तैयार नहीं है। अच्छा, डीएन नगर ला रहे हैं, नेशनल कॉलेज से उठाया, बांद्रा पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, संत क्रूज पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, डीएन नगर ले आए। डीएन नगर में कुछ खास रिसेप्शन तैयार किया होगा।
12: वो चोर गद्दी छोड़ और क्या,
13: तो सबके सब ये एक ही नारा दे रहे हैं कि जो ज्ञानेश कुमार है वो इस्तीफा दें।
14: मुंबई पुलिस का कहना है कि अगस्त क्रांति मैदान एएसआई के अधीन आता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये विरोध प्रदर्शन के लिए एक घोषित स्थल नहीं है, इसलिए वहां प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने दिल्ली और मुंबई पुलिस का ये कहते हुए समर्थन किया कि जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए पिछले प्रदर्शन में भारी तोड़फोड़ और हिंसा हुई थी। नियमों के तहत 10 दिन पहले अनुमति न लेने और पुराने अंडरटेकिंग के नियमों के उल्लंघन को देखते हुए पुलिस ने दिल्ली की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कदम उठाए वो पूरी तरह संवैधानिक है।
15: दिल्ली आज हाई अलर्ट पर है सर, सब चीज बंद
16: क्यों नहीं होना चाहिए? पिछली बार जो हुआ था आपने देखा था ना, भारत की राजधानी है ना, तो क्या दिल्ली की जनता को क्योस में रखा जाए? ये ठीक नहीं है।
17: राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलने के पश्चात राहुल गांधी जी का बयान एक नालायक नेता के बयान के समान है। मैं बहुत सोच समझ के ये शब्द, मुझे भी कुंठा हो रही है बोलते, तकलीफ हो रही है। आई एम सिटिंग ऑन अ वेरी हाई पेडेस्टल, ही इज द एलओपी ऑफ द कंट्री, मगर जब मैं कहता हूं एक नालायक नेता, इसलिए कहता हूं कि चलिए आपने प्रधानमंत्री के लिए जिस प्रकार के अब शब्दों का प्रयोग किया, झूठ बोला, वो पूरा देश देख रहा है। आपने जिस प्रकार से भारत के संवैधानिक पदों के लिए, संवैधानिक संस्थाओं के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, पूरा भारत सुन रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति को सड़क की लड़ाई में घसीटने का प्रयास किया गया, मगर एक नालायक नेता ने राष्ट्रपति महोदया को सड़क की लड़ाई में घसीटने की कोशिश की है।
18: विपक्ष निराश हताश, मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है।
14: अब सभी की नजरें सोमवार पर टिकी हुई हैं, क्योंकि राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के नेता वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को उस दिन ज्ञापन सौंप सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
0: आज दिन भर पूरी दिल्ली में हो हंगामा होता रहा। सभी बड़े नेताओं को जो कॉकरोच जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप है, उन सभी को प्लेन से ही डिटेन कर लिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ चाहे वो टीएमसी की तरफ से ममता बैनर्जी हो या फिर अरविंद केजरीवाल, उन सभी को डिटेन कर लिया गया। अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये स्थितियां ऐसी बन रही है कि सरकार किसी को विरोध नहीं करने देना चाहती है। लेकिन एक और बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सोनम वांगचुक, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, और वही सोनम वांगचुक जिनकी वजह से पिछली बार जंतर मंतर का आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले चुका था क्योंकि वो अनशन पर बैठ गए थे, आज उन्होंने अपना एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये अघोषित आपातकाल है। सोनम वांगचुक ने यह भी कहा कि अगर उन लोगों को 24 घंटे के अंदर छोड़ नहीं दिया जाता है तो हो सकता है वो फिर से अनशन पर बैठे, पदयात्रा पर निकले, विरोध प्रदर्शन करें, दिल्ली में भी कर सकते हैं और वहां लेह में भी कर सकते हैं। तो कैसे ये पूरा मामला अब सियासी रूप से एक तरफ बड़ा हुआ जब विपक्षी दल आगे आए, लेकिन वही जंतर मंतर के बड़े किरदार एक बार फिर से इस मैदान में आते दिख रहे हैं।
14: आज एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को रेस्क्यू कर पाएंगे। आज सुबह सोनम वांगचुक ने एक वीडियो संदेश में लद्दाख और देश में शांति, एकता और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर बात की। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने की वकालत की और इसीलिए बहुत सारे लोग अब ये पूछ रहे हैं कि सुबह से शाम आते आते ऐसा क्या बदल गया कि सोनम वांगचुक सरकार को अल्टीमेटम देने लगे।
19: और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, या मैं कहूं और भी गम है जमाने में, सियासत के सिवा राहतें और भी हैं वसल के राहत के सिवा।
20: अगर अगले 24 घंटों में भी गिरफ्तारियां नहीं हटाई गई तो मैं भी एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा।
14: दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर सोनम वांगचुक ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने सोचा नहीं था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अघोषित आपातकाल में झोंक दिया जाए।
20: अगले 24 घंटों में भी गिरफ्तारियां नहीं हटाई गई तो मैं भी एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, वो चाहे फिर एक धरना हो या अनशन हो या पद यात्रा हो, लेह में हो या दिल्ली में हो। मगर मेरी उम्मीद है कि सरकार उससे पहले ही इन मसलों को बातचीत से सुलझाएगी और हमें ऐसा कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
14: इस पूरे घटनाक्रम में सोनम वांगचुक की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो केवल लद्दाख के ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलनों के एक बड़े केंद्र बिंदु बन चुके हैं। पिछली बार जब उन्होंने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर 26 दिनों का कड़ा अनशन किया था तो उनके समर्थन में भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। देश भर से छात्रों और आम जनता का हुजूम इकट्ठा होने लगा था। उस समय सोनम वांगचुक के कारण आंदोलन का दबाव इतना बढ़ गया कि केंद्र सरकार को उनकी मांगों पर लिखित सहमति जतानी पड़ी थी और एक बार फिर उनका इस तरह अड़ जाना ये दिखाता है कि वो अपनी मांगों को लेकर बेहद अड़ी थी।
20: दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति तो दी ही जाएगी, मगर अब लग रहा है कि जैसे कोई अघोषित आपातकाल या इमरजेंसी लगी है देश भर में। मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि ये सब गिरफ्तारियां खत्म कर दी जाएं आज शाम तक और मामलों को सुलझाया जाए।
14: सोनम वांगचुक का ये अल्टीमेटम सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है क्योंकि उनका अनशन पर बैठना सीधे तौर पर जनता की सहानुभूति को अपनी तरफ खींच सकता है।

हालांकि सोनम वांगचुक की इस चेतावनी को लेकर सरकार के कई समर्थक ये भी कह रहे हैं कि उनका बार बार अनशन की धमकी देना एक पैटर्न बन गया है और अब सरकार को उनकी बात नहीं माननी चाहिए। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन नहीं होने दिया और अब सरकार इसे अपनी सफलता मान सकती है। प्रदर्शनकारियों को ये अपनी कामयाबी लग सकती है कि उन्हें रोकने के लिए हजारों पुलिस वालों का जमावड़ा लगाना पड़ा, ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी, मेट्रो रोकनी पड़ी, बॉर्डर बंद करने पड़े। लेकिन सवाल यह है अब कि आगे क्या होगा।
1: अक्टूबर की तारीख पहले से तय थी। दिल्ली पुलिस को अंदाजा था कि हालात क्या हो सकते हैं, इसीलिए ट्रेनें रद्द की, जंतर मंतर के आसपास का इलाका छावनी बनाया, इंटरनेट बंद किया, मेट्रो स्टेशन भी बंद रहे और जो प्रदर्शनकारी जहां दिखा वहीं धर्म। हंगामा तो हुआ, दौड़ भाग भी हुई, लेकिन प्रदर्शन नहीं हो पाया। दिल्ली पुलिस ने नेताओं को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा, सबको प्रदर्शन शुरू करने से पहले ही प्रिवेंटिव कस्टडी में भेज दिया। जिनकी कॉल पर इस प्रदर्शन का ऐलान किया गया था वो अभिजीत दीपके तो फ्लाइट के अंदर से ही पकड़ लिए गए। दोपहर में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी उतरी लेकिन उन्हें भी हिरासत में लिया गया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कई दिनों से 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की कॉल दी हुई थी। वो लगातार लोगों से दिल्ली आने की अपील कर रहे थे। जब ये खबरें आने लगी कि ट्रेन और मेट्रो कैंसिल हो रही हैं, भारी पुलिस बल की तैनाती हो रही है, तो तब भी दीपके चैलेंज कर रहे थे। लेकिन सुबह 10 बजे के करीब जैसे ही उनकी फ्लाइट दिल्ली में लैंड हुई, दिल्ली पुलिस फ्लाइट में ही चढ़ गई और वहीं से उन्हें उठा लिया। अभिजीत दीपके के साथ सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को भी पुलिस ले गई। इसके बाद दीपके ने एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो में कहा कि अब आंदोलन की कमान अजिंक्य शिंदे संभालेंगे।
2: हेलो एवरीवन, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इसका मतलब मैं, आशु और सौरभ, हम तीनों अरेस्ट हो चुके हैं। हमारे बाद इस मूवमेंट को अजिंक्य लीड करेगा, तो आप जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं प्लीज फॉलो अजिंक्य शिंदे, ही विल बी कैरिंग फॉरवर्ड द कॉकरोच जनता पार्टी आफ्टर आशुतोष, मी एंड सौरभ। थैंक यू।
1: पुलिस ने पहले नेता को गिरफ्तार किया और फिर एक एक करके कार्यकर्ताओं को धरा, जो जहां दिखा वहीं से उठा लिया। शनिवार को दिल्ली में जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, पालिका बाजार और जनपद के आसपास की सड़कों पर खूब हंगामा रहा। सुबह से ही प्रदर्शनकारी जमा होने शुरू हो गए थे, लेकिन पुलिस ने इंतजाम ऐसे किए थे कि किसी को भी कदम जमाने का मौका नहीं मिला।
3: उसी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं और शांति बनाए रखने की अपील भी है और उसी के मेजर्स लिए जा रहे हैं।
4: कितने लोगों को डिटेन किया होगा नई दिल्ली इलाके से, कितने लोग
3: प्रिवेंटिव एक्शंस ले रहे हैं?
4: अच्छा, कुछ लोगों पर पथराव भी किया पुलिसकर्मियों को, चोट आई?
3: हाँ, एक जगह पर पथराव।
1: दिल्ली पुलिस के जवान तो थे ही, पैरामिलिट्री भी भरपूर थी और यूपी पुलिस के जवानों को भी बुलाया गया था, क्योंकि दिल्ली पुलिस किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए तो जहां भी प्रदर्शनकारी मिला तुरंत पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, बसों में भरा और डिटेंशन सेंटर भेज दिया।
5: कनॉट प्लेस के रीगल थिएटर के पास की ये तस्वीरें, जहां पे बड़ी तादाद में आपको डिटेंशन दिखाई देगा। पैरा फोर्सेस के जवान हैं जो डिटेन करके प्रदर्शनकारियों को ले जा रहे हैं। देखिए, बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी यहां पहुंचे थे, अब नारेबाजी करते हुए वो जा रहे हैं। सब युवा हैं, यंगस्टर्स हैं जिनको डिटेन किया गया है। दिल्ली पुलिस की ये गाड़ी है, रॉयड कंट्रोल व्हीकल है, उसमें डिटेन करके इन युवाओं को, प्रदर्शनकारियों को ले जा रहा है। दूसरी गाड़ी जो आप देख रहे हैं, उस गाड़ी के अंदर राकेश चुकैत गुट के किसान नेताओं को डाला गया है। आप देखिए, एक तरह से जेल नुमा स्ट्रक्चर है उसके अंदर। आप जब एक बार डाल दिए जाते हैं गाड़ी के अंदर, तो कई बार हमने देखा बीते दिनों में कि प्रोटेस्टर्स गाड़ी से बाहर निकलकर, डिटेंशन से बाहर निकलकर आगे चले गए, लेकिन ये जो गाड़ियां लाई गई हैं वो जेल नुमा स्ट्रक्चर है। प्रदर्शनकारियों को खींचकर गाड़ियों के अंदर डाला जा रहा है।
1: सबसे ज्यादा हल्ला रहा कनॉट प्लेस और इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा पुलिस की तैनाती थी। पुलिस को पता था कि प्रदर्शनकारी यहीं जुटेंगे, इसीलिए सुबह से ही दिल्ली पुलिस यहाँ तैनात थी। वरिष्ठ अधिकारियों की भी तैनाती थी।
6: इस समय मैं दिल्ली के इनर सर्कल की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि पालिका बाजार के पास आप देख सकते हैं कैसे भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर, उन्होंने अपना एक्शन मार्च शुरू कर दिया है। सीजेपी की तरफ से आज एक बड़ी कॉल दी गई थी, प्रोटेस्ट मार्च की कॉल दी गई थी, उसी को देखते हुए मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कैसे भारी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं यहाँ पर पहुंचे। क्योंकि दूसरी तरफ मैं आपको जनपद की तरफ दिखाना चाहूंगा कैसे भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको काबू करने के लिए जो दिल्ली पुलिस का एक्शन है यहाँ पर शुरू हो चुका है। आपने देखा कि कैसे रीगल सिनेमा से भारी मात्रा में जो डिप्लॉयमेंट है इस तरफ मूव करती है, जनपद की तरफ मूव करती है, इनर सर्कल होते हुए, पालिका बाजार होते हुए। और वही तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कैसे प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए अब जो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज का जो एक्शन है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक
1: दिक्कत ये थी कि प्रदर्शनकारी यहाँ गलियों के अंदर घुस जा रहे थे, पुलिस लगातार उन्हें दौड़ा रही थी। जैसे ही पुलिस दौड़ाती तो वो एक गली से घुसकर दूसरी गली से निकल आते, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवानों को साफ ऑर्डर था कि किसी को नहीं छोड़ना है, सबको प्रिवेंटिव कस्टडी में लेना है।
7: कनॉट प्लेस जनपद का ये इलाका है और यहाँ पर एक एक करके जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। धीरे धीरे कर यहाँ पर जो भीड़ थी वो बढ़ रही थी प्रदर्शनकारियों की, और उसके बाद जो अलग अलग छोटी छोटी गलियाँ हैं इन इलाकों में, वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको डिटेन किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, और उनको अब गलियों से ढूंढ ढूंढ कर जो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो डिटेन करके लेकर जा रही है। तो अलग अलग तस्वीरें देखिए चारों तरफ, कहीं भी अगर आपको मेरे कैमरा पर्सन हिमांशु दिखाएंगे तो एक एक करके जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहाँ पर डिटेन किया गया है। तो एक तस्वीर जो थी वो यहाँ पर थोड़ी देर से हम लोग देख रहे थे कि प्रदर्शनकारी एक एक कर यहाँ पर जमा हो रहे थे, और उसके बाद अचानक से जो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो यहाँ पर आती हैं और इन प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर लेकर गई।
1: कॉकरोच जनता पार्टी की प्रदर्शन की कॉल पर ये प्रदर्शनकारी जमा तो हो गए, लेकिन शायद इन्हें ये अंदाजा नहीं था कि पुलिस की इतनी बड़ी तैनाती होगी। ये सब जंतर मंतर जाना चाहते थे, लेकिन वहां से कई किलोमीटर पहले ही पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया।
5: प्रदर्शनकारियों का टेम्पल रन शुरू हो गया है, प्रदर्शनकारियों का टेम्पल रन शुरू हो गया है। वो एक तरह से इस सेक्टर से दौड़ के भाग रहे हैं और पुलिस उनको यहाँ से हटाते हुए दिखाई दे रही है। बीते एक घंटे से यहाँ पर ये प्रदर्शनकारी, जेंजी युवा प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे, ज्ञानेश कुमार सीसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वोट चोरी के बारे में नारेबाजी कर रहे थे, जो विपक्ष का आरोप है उसी तरह के नारेबाजी आपको नारेबाजी यहाँ पर सुनाई दे रहा था। बीते एक घंटे से यहाँ ये जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन अब अचानक से दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आती है और इस सेक्टर में भी जो प्रदर्शनकारी थे उनको हटाया जा रहा है।
8: बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत, ये देश में जो सरकार है ना बहुत गलत कर रही है सर, बहुत ज्यादा गलत कर रही है।
5: हटाया जा रहा है, कहाँ आए थे आप लोग?
9: प्रोटेस्ट
5: करने के लिए आए थे। अभिजीत को डिटेन किया गया, उसके बावजूद आप लोग यहाँ पहुँच गए हैं।
9: वो भले से उनको डिटेन कर लिया गया हो, लेकिन हम उनके सपोर्ट में है।
5: किसी पार्टी से हैं आप?
9: नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं बस उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, कॉकरोच जनता पार्टी को।
5: आप लोग नारे लगा रहे थे इसलिए डिटेन हो रहे हैं?
9: हाँ जी, सपोर्ट कर रहे थे इसलिए हमको डिटेन किया गया है।
1: प्रदर्शनकारियों ने शाम शाम तक भी कोशिश की कि किसी भी तरीके से वो कनॉट प्लेस से जंतर मंतर की तरफ चले जाएं, लेकिन पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी, पुलिस ने किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया।
6: दूसरी तरफ मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैसे दिल्ली पुलिस ने यहां पर डिटेन करना शुरू कर लिया। देखिए जो प्रदर्शनकारी थी उनको उठाना शुरू कर दिया। वहीं मैं अपना कैमरा सहयोगी अजय जी से कहूंगा एक तस्वीर उस तरफ की भी दिखाएं कि जैसे ही यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचते हैं प्रदर्शनकारी भागने लग जाते हैं। तस्वीरें मैं आपको इनर सर्कल की दिखा रहा हूं, एन ब्लॉक की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे जैसे ही प्रदर्शनकारी देखते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान उनको डिटेन करने के लिए आ रहे हैं वो भागते हुए दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं। और पहली बार नहीं, सुबह से देखा जा रहा है कि जैसे ही प्रदर्शनकारी इकट्ठे होते हैं जनपद के पास रीगल सिनेमा के पास ब्लॉक ए के पास वहीं देखा जाता है कि भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं इकट्ठे होकर उनको डिटेन करना शुरू कर देते हैं।
1: जब पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को दौड़ा रही थी तो कुछ प्रदर्शनकारी बंगला साहिब गुरुद्वारे के अंदर भी चले गए। दिल्ली पुलिस ने उनका पीछा किया लेकिन गुरुद्वारे के गेट पर रुक गए और अंदर नहीं गए।
10: अभी भी जो सबसे बड़ा चैलेंज दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ अगर सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो वहाँ वो बना हुआ है ये गुरुद्वारा बंगला साहिब, क्योंकि इसके अंदर कई सारे जो प्रदर्शनकारी हैं वो जाकर के रुके हुए हैं और हर कुछ देर में बाहर आते हैं, नारे लगाते हैं और जैसे ही पुलिस उन्हें पकड़ने जाती है वापस अंदर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस उन्हें गुरुद्वारे के अंदर घुस के नहीं पकड़ेगी। और याद रखिए ज्यादातर CJP के लोग नहीं है, ये सारे लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के SFI के और ISA के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लोग यहाँ पर बहुत अच्छी रणनीति बनाकर आए। उन्हें पता था कि एक रिलीजियस प्लेस के अंदर, एक धार्मिक स्थल के अंदर पुलिस घुसेगी नहीं। मैसेजिंग है ये अंदर चली गई है जिसकी वजह से आप देखें तो गेट्स के पास आपको अब प्रदर्शनकारी नहीं दिखेंगे, प्रदर्शनकारी अंदर की तरफ है अब और बाहर बहुत भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है। और जैसे ही पुलिस थोड़ी सी पीछे होती है, 10 कदम पीछे होती है तो अचानक से अंदर से कुछ लोग आते हैं और गेट के अंदर ही खड़े होकर नारे लगाते हैं और फिर वापस अंदर भाग जाते हैं। तो ये जो है पिछले 1-1.5 घंटे से कुछ ऐसा ही जो खेल है ये दिल्ली पुलिस के साथ चल रहा है, लेकिन जो भी बाहर आता है उसे तुरंत पकड़ के यहां से डिटेन करके तुरंत हटाया जा रहा है और धीरे धीरे अंदर रहने वाले लोगों की संख्या भी कम होती हुई अब दिखाई दे रही है।
1: आज तक ब्यूरो।
0: अनिश कुमार को लेकर विपक्ष भी सड़कों पर है और CJP के समर्थन में अरविंद केजरीवाल और ममता बैनर्जी भी आए। लेफ्ट पार्टियां भी सड़कों पर उतरी और कांग्रेस पार्टी दूर ही दिखाई थी।
11: 1.5 घंटे से दिल्ली की सड़कों पर हम लोगों को घुमा रहे हैं, हमें पता नहीं कहां ले जा रहे हैं, कौन से थाने में ले जा रहे हैं।
12: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही कांग्रेस पार्टी CJP के आंदोलन से दूर रही। उसे आम आदमी पार्टी, लेफ्ट और TMC ने अपना समर्थन दिया। ममता मुंह पर बैंडेड लगाकर धरने पर बैठ गईं। लेकिन ममता बैनर्जी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस वैन में ममता बैनर्जी को ले जाती दिखी, कहा कि वो इस मामले में झुकेंगे नहीं।
13: আমরা আমাদের বাড়ির পাশে যে বাস স্ট্যান্ড, প্রথমে তো আমরা যন্ত্র মন্ত্র যেতে চেয়েছিলাম, CJP আমাদের ইনভাইট আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, স্টুডেন্ট ইউথরা তাদের সবাইকে অ্যারেস্ট করেছে, মিডিয়াকে অ্যারেস্ট করেছে, অল পলিটিক্যাল লিডারদের অ্যারেস্ট করেছে আর ঘোরাচ্ছে। তারপরে আমরা যখন বাড়ির সামনে একটা বেঞ্চ নিয়ে একটা বাস স্ট্যান্ডে বসলাম তখন আমাদের যেতে দেওয়া হলো না, কিন্তু আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বসেছিলাম। সেভ ইন্ডিয়া, সেভ ডেমোক্রেসি।
12: ममता बैनर्जी की तरह अरविंद केजरीवाल भी CJP का समर्थन करने उतरे लेकिन उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज समेत कई नेता प्रदर्शन करने पहुंचे थे लेकिन उन्हें हिरासत में लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया।
14: बहुत गुस्से में है जो लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं, मैं पूरे देश के लोगों को, युवाओं को हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, हम सब लोगों को मिलके देश को बचाना होगा। आप जहां भी हैं देश में अभी निकलिए अपने घर से, दिल्ली की तरफ कूच कीजिए, दिल्ली आइए, स्कूटर पे आइए, पैदल आइए, बस में आइए, हवाई जहाज में आइए, ट्रेन में आइए, जैसे आ सकते हैं आइए, दिल्ली की तरफ कूच कीजिए। जहां मोदी जी आपको रोके वहीं बैठ जाओ, उसी जगह को जंतर मंतर बना दो, पूरे देश को जंतर मंतर बना दो, लेकिन मोदी जी को वोट चोरी करने से रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये देश नहीं बचेगा।
12: अरविंद केजरीवाल ने पहले ही इस प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान कर दिया था। ममता और केजरीवाल के अलावा पुलिस ने केरल के पूर्व CM पिनराई विजयन, त्रिपुरा के पूर्व सीएम माणिक सरकार और सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास को भी हिरासत में लिया। यूट्यूबर ध्रुव राठी को सुबह ही गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया था। आईसा अध्यक्ष नेहा बोरा को भी हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन से दूरी बनाकर रखी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चेन्नई में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से दक्षिण भारत में इस मामले को गरमाने में लगे हैं।
0: दिल्ली की तरह मुंबई में भी सीजेपी समर्थकों की तरफ से प्रदर्शन करने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया। तो चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने वहां पर उन्हें हिरासत में ले लिया।
15: मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में जिसने भी प्रदर्शन करने की कोशिश की, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसमें महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी भी शामिल।
16: नेशनल कॉलेज से उठाया, बांद्रा पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, सांता क्रूज पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, डीएन नगर ले आए। डीएन नगर में कुछ खास रिसेप्शन तैयार किया होगा। देखते रहिए, ये पुलिस की गुलामी की निशानी है। बेचारे वो भी क्या कर सके, सत्ता वालों के चाकर जो बन गए। एक दिन तख्ता पलट होगा, फिर हिसाब किया जाएगा।
15: तुषार गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद आदित्य ठाकरे अपने पार्टी नेताओं के साथ वहां पहुंचे।
17: जिस देश में गांधी जी को डिटेन किया जाता है और इतना डर है भाजपा के मन में कि जैसे ही हम यहाँ आने वाले थे उनको लेके गए बोरेवली, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इतना मन में डर क्यों है? भले वो गांधी जी के बारे में हो या हमारे बारे में हो या अभिजीत के बारे में हो या रत्ना या सौरभ या राहुल जी के बारे में हो। आपने ये भी देखा होगा, राहुल जी जैसे ही चुनाव आयोग से मिलने गए कितनी बड़ी तादाद में फोर्स लगाई गई। ये सारी फोर्स जो बॉर्डर पे होनी चाहिए वो आप दिल्ली में लगा रहे हो। इतना डर क्यों है आपके मन में? किससे डरते हो आप? क्यों भय है इतना मन में?
15: मुंबई में अभिनेता और आमिर खान के भांजे इमरान खान भी सीजेपी के समर्थन में प्रदर्शन करने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया।
18: मेरा ये मानना है कि इस देश में और इस शहर में वी शुड ऑलवेज हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ऐसी भी क्या खतरा है? आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे पुलिस के लोग हैं।
19: दिल्ली में भी प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया गया, दिल्ली में भी डिटेन किया गया।
18: आई बिलीव दैट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू शो अप एंड शो दैट वी आर नॉट अफ्रेड एंड दैट देयर इज एक्चुअली नो डेंजर एंड नो थ्रेट ओवर हियर। द ओनली थ्रेट इज फ्रॉम ऑल ऑफ दीस पीपल अटैकिंग विद स्टिक्स।
15: मुंबई में प्रदर्शन को देखते हुए सुबह से पुलिस ने तैयारी कर रखी थी। ड्रोन से प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने के इंतजाम भी देखे गए।
19: पुलिस को गाड़ी को रोकने का यहाँ पर भरसक कोशिश थी, लेकिन प्रदर्शनकारी जो है वो हाथ हटाओ। तो देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी जो है वो सुन नहीं रहे हैं और पुलिस में जो है वो झड़प है वो बढ़ती जा रही है। पुलिस डिटेन कर रही है लेकिन प्रदर्शनकारी जो है वो इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं। और ये जो साइट है इसे हेरिटेज साइट पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि हेरिटेज साइट है, यहाँ प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है। लेकिन जैसा कि देख सकते हैं पुरजोर विरोध जो है प्रदर्शनकारियों द्वारा किया जा रहा है और पुलिस जो है इन्हें डिटेन करने की भरपूर कोशिश कर रही है।
15: चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेता चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसके बाद मनीष सिसोदिया समेत कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
20: बस में किस तरह जो है आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को, लीडर्स को डिटेन किया जा रहा है भर भर। और मनीष सिसोदिया आप देख सकते हैं बस के अंदर बैठे हैं। मनीष सिसोदिया को बस के अंदर बिठाया गया है और यहां से हटाया गया है। सो अभी तक तो पुलिस जो है वो कामयाबी पुलिस को मिली है कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक नहीं जाने गया। लेकिन मनीष सिसोदिया आप देख सकते हैं कि विंडो में बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, रेड शर्ट में हैं और लगातार जो है यहां पर डिटेंशन जो अब हो रही है। और ये बस जो कि जो बस जिसमें आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और लीडर्स को भरा गया है उनको यहां से मूव करके लेके जाया जा रहा है। जो जब मेन लीडरशिप चाहे वो सोनिया मान हो, मनीष सिसोदिया हो, हरपाल चीमा हो और दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको यहां से मूव कराया जा रहा है।
15: दक्षिण में बेंगलुरु और चेन्नई में भी प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी सड़कों पर प्रदर्शनकारी निकले, जहां पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आईं।
0: बीजेपी की तरफ से भी विरोध का मोर्चा संभाला गया और दिल्ली में कांग्रेस सांसद पर छात्राओं से छेड़छाड़, तो लखनऊ में महिला पुलिसकर्मियों से राहुल प्रियंका की तरफ से की गई कथित बदसलूकी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा सड़कों पर निकल गया।
2: गणेश कुमार जी को पद्म भूषण से पुरस्कृत करना चाहिए।
21: मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर भले ही विपक्षी दल और सीजेपी प्रदर्शन कर रहे हों, लेकिन बंगाल बीजेपी की तरफ से ज्ञानेश कुमार को हिंसा मुक्त चुनाव का श्रेय दिया जा रहा है, जो 70 सालों में नहीं हुआ।
2: अरे ममता दीदी कलकत्ते में क्यों नहीं आए? हम लोग तो कलकत्ते में उसको बुला रहे, इतना पूजा उसका इंतजार कर रहे। अरे भैया कॉकरोच केकड़ा ये सब लेकर क्या होगा? ममता जी चले ये कलकत्ते में।
21: बीजेपी की तरफ से लखनऊ में महिला मोर्चा के प्रदर्शन की अब ये तस्वीर देखिए। बीजेपी ने ये प्रदर्शन राहुल गांधी के खिलाफ किया, जिन पर दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मियों से बदसलूकी का आरोप है। इसे लेकर बीजेपी की तरफ से वीडियो भी जारी किए गए, जिसमें प्रियंका गांधी एक महिला पुलिसकर्मी को कोहनी मारती दिखती है, तो राहुल गांधी पर एक महिला पुलिसकर्मी को गलत तरीके से छूने का आरोप बीजेपी लगाती है।
22: लखनऊ में आज बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन है, कांग्रेस पार्टी कार्यालय घेराव करने का कार्यक्रम है और इस समय पर मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से ये महिला मोर्चा का प्रदर्शन शुरू हुआ है और तमाम महिलाएं उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं।
23: खुद राहुल गांधी महिलाओं को ऐसे छू रहे, प्रियंका गांधी यूं कोनी मार रही है, तो हम इस सम्मान के लिए जा रहे हैं कि इस वर्दी का भी आप लोग को सम्मान करना सीखना चाहिए, वो आपके लिए खड़े 24/7।
21: बीजेपी महिला मोर्चा ने लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के पास और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना के आवास के पास लगे पोस्टर भी फाड़ दिए। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा ने एक अलग मुद्दे पर प्रदर्शन किया, मामला जेएनयू में प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर छात्राओं के यौन शोषण का है, जिसके बाद उन्हें जेएनयू से बर्खास्त कर दिया गया। अकोइजम कांग्रेस सांसद भी हैं, इसलिए कांग्रेस की चुप्पी पर बीजेपी ने उसे घेर लिया है।
24: राहुल गांधी महिला पुलिस महिला कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और एक व्यक्ति जिस पे आरोप साबित हो गया, जिसको यूनिवर्सिटी से हटाया गया है, पर वो फिर भी उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने उनके लिए राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने एक शब्द नहीं बोला है उनके लिए। क्या उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी उस व्यक्ति के साथ?
21: ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी को घेरने में राहुल समेत पूरा विपक्ष जुटा है, वहीं बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को निशाने पर लिया जा रहा है। भले ही मुद्दे अलग अलग हों, लेकिन दोनों के बीच बढ़ते टकराव ने बता दिया है कि सियासी पारा बढ़ा रहेगा।
0: और अब उत्तर प्रदेश चुनावों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, तो क्या अयोध्या से इस बार योगी बनाम अखिलेश के बीच में मुकाबला होगा? दरअसल अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी, सलाह दी थी, और उसके बाद योगी ने कह दिया कि हो जाए, अखिलेश चेलों को छोड़कर खुद अयोध्या से उतर जाए।
25: पीडीए का वास्तविक मतलब है प्रदेश डुबाऊ एलायंस।
26: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने पीडीए का मतलब समझाने के बाद वो बात कही जिसे नहले पर दहला कहा जा सकता है।
25: इस अराजकता को स्वीकार करने वाली नहीं, मैं तो आपको ऑफर करता हूं, आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं। तय हो जाए, आप भी आइए और मैं भी आता हूं। लड़ाई चेलों से क्यों? लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए और उसके लिए मैं कह रहा हूं आइए आप भी। इससे
26: पहले संभव है तो योगी ने अखिलेश को चैलेंज दिया है कि हिम्मत है तो लड़ाई आमने सामने लड़ो। योगी का यह बयान अखिलेश के अयोध्या से चुनाव लड़ने की सलाह के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री अगर अयोध्या को लेकर इतने ही आश्वस्त हैं, तो अयोध्या से चुनाव लड़ जाएं।
27: अगर वो अयोध्या से इतने ही आश्वस्त हैं और जिन्होंने ये कहा हो कि पानी का दूध पानी का पानी हो जाएगा, 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अगर वो इतने ही अयोध्या वासियों से अस्वस्थ है तो उन्हें यही फैसला लेना चाहिए, उनके बीच में अगला चुनाव लड़ना चाहिए। ये चुनौती नहीं है, ये सलाह है।
26: अखिलेश ने साफ कहा कि ये उनका चैलेंज नहीं, मुख्यमंत्री को सियासी सलाह है, लेकिन योगी ने इसे स्वीकार करके गेंद अखिलेश के पाले में फेंक दी कि अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाओ, पता चल जाएगा किसमें कितना दम है।
25: ये माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले पेशेवर अपराधियों के सामने उनकी मौत पर उनकी कब्र में जाकर के फातिया पढ़ने वाले लोग, ये हम लोगों से क्या लड़ पाएंगे? इनकी हिम्मत नहीं है। ये पहले ही जनता इनकी छुट्टी कर चुकी है। एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी स्थिति इन लोगों की हो चुकी है।
26: योगी ने कहा कि आने वाले चुनाव में 80% सीटें एनडीए जीतेगा और 20% इंडिया गठबंधन, क्योंकि ये जनता ने तय कर लिया है।
25: जिस अयोध्या में जय श्री राम बोलने पर आपकी सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, जिस अयोध्या के सामने आपने केवल और केवल बैरियर खड़ा किए थे, आज वो अयोध्या एक बार फिर से राम राज्य के नए उदाहरण बनकर के त्रेता युग का स्मरण करा रही है।
26: योगी के इस सियासी हमले का अखिलेश ने तुरंत जवाब देते हुए लोकसभा चुनाव याद दिलाते हुए कहा कि इस बार जनता घमंड का सारा पानी उतार देगी। लोकसभा भूल गए क्या? उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार अखिलेश यादव की तरफ से लगातार खुद को बीजेपी के मुकाबले सनातन के मोर्चे पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को इसलिए अखिलेश की तरफ से लगातार उठाया जाता है। दावा किया जाता है कि बीजेपी को वहां से प्रत्याशी नहीं मिल रहा, लेकिन योगी ने अखिलेश के नहले पर दहला मारकर गेंद उनके पाले में डाल दी है।
25: क्या इससे पहले संभव था ये?
26: आज तक ब्यूरो।
25: मोदी जी का ही कहना है।
0: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: बात सामान्य हो रहे हैं, हालात खुले गए, सभी मेट्रो स्टेशन आज खुलेंगे, सभी बाजार, लेकिन सीजेपी ने आज फिर आंदोलन का किया ऐलान। सीजेपी के प्रदर्शन पर बीजेपी का ताबड़तोड़ हमला, कहा सड़कों पर अराजकता की साजिश, राहुल का बयान, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जारी रहेगी जंग। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मेट्रो स्टेशन बंद करने और लोगों को हिरासत में रखने के खिलाफ याचिका, सोमवार को बड़े मार्च की तैयारी में विपक्ष। चेन्नई में छात्रों के बीच राहुल की गूंज, कहा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं पीएम मोदी, तमिल भाषा और संस्कृति पर प्रधानमंत्री के हमले का जड़ा आरोप। अब सीएम योगी ने अखिलेश को दी चुनौती, कहा अयोध्या से चुनाव में हो जाए आमना सामना, अखिलेश का जवाब, हमारा युवा पीडीए प्रहरी ही काफी। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन नहीं होने दिया और अब सरकार इसे अपनी सफलता मान सकती है। प्रदर्शनकारियों को ये अपनी कामयाबी लग सकती है कि उन्हें रोकने के लिए हजारों पुलिस वालों का जमावड़ा लगाना पड़ा, ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी, मेट्रो रोकनी पड़ी, बॉर्डर बंद करने पड़े, लेकिन सवाल यह है अब कि आगे क्या होगा।
1: अक्टूबर की तारीख पहले से तय थी। दिल्ली पुलिस को अंदाजा था कि हालात क्या हो सकते हैं, इसीलिए ट्रेनें रद्द की, जंतर मंतर के आसपास का इलाका छावनी बनाया, इंटरनेट बंद किया, मेट्रो स्टेशन भी बंद रहे और जो प्रदर्शनकारी जहां दिखा वहीं धर्म। हंगामा तो हुआ, दौड़ भाग भी हुई, लेकिन प्रदर्शन नहीं हो पाया। दिल्ली पुलिस ने नेताओं को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा, सबको प्रदर्शन शुरू करने से पहले ही प्रिवेंटिव कस्टडी में भेज दिया। जिनकी कॉल पर इस प्रदर्शन का ऐलान किया गया था वो अभिजीत दीपके तो फ्लाइट के अंदर से ही पकड़ लिए गए। दोपहर में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी उतरी, लेकिन उन्हें भी हिरासत में लिया गया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कई दिनों से 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की कॉल दी हुई थी। वो लगातार लोगों से दिल्ली आने की अपील कर रहे थे। जब ये खबरें आने लगी कि ट्रेन और मेट्रो कैंसिल हो रही हैं, भारी पुलिस बल की तैनाती हो रही है, तो तब भी दीपके चैलेंज कर रहे थे। लेकिन सुबह 10 बजे के करीब जैसे ही उनकी फ्लाइट दिल्ली में लैंड हुई, दिल्ली पुलिस फ्लाइट में ही चढ़ गई और वहीं से उन्हें उठा लिया। अभिजीत दीपके के साथ सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को भी पुलिस ले गई। इसके बाद दीपके ने एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो में कहा कि अब आंदोलन की कमान अजिंक्य शिंदे संभालेंगे।
2: हेलो एवरीवन, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, इसका मतलब मैं, आशु और सौरभ, हम तीनों अरेस्ट हो चुके हैं।

0: the party after Ashutosh, me and Saurav. Thank you.
1: पुलिस ने पहले नेता को गिरफ्तार किया और फिर एक एक करके कार्यकर्ताओं को धरा, जो जहां दिखा वहीं से उठा लिया। शनिवार को दिल्ली में जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, पालिका बाजार और जनपद के आसपास की सड़कों पर खूब हंगामा रहा। सुबह से ही प्रदर्शनकारी जमा होने शुरू हो गए थे, लेकिन पुलिस ने इंतजाम ऐसे किए थे कि किसी को भी कदम जमाने का मौका नहीं मिला।
2: उसी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं और शांति बनाए रखने की अपील भी है और उसी के मेजर्स लिए जा रहे हैं।
3: कितने लोगों को डिटेन किया हो गया होगा नई दिल्ली इलाके से, कितने लोग
2: प्रिवेंटिव एक्शंस ले रहे हैं?
3: अच्छा, कुछ लोगों पर पथराव भी किया पुलिसकर्मियों को, चोट आई?
2: हाँ, एक जगह पर पथराव।
1: दिल्ली पुलिस के जवान तो थे ही, पैरामिलिट्री भी भरपूर थी और यूपी पुलिस के जवानों को भी बुलाया गया था, क्योंकि दिल्ली पुलिस किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए तो जहां भी प्रदर्शनकारी मिला तुरंत पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, बसों में भरा और डिटेंशन सेंटर भेज दिया।
4: कनॉट प्लेस के रीगल थिएटर के पास की ये तस्वीरें, जहां पे बड़ी तादाद में आपको डिटेंशन दिखाई देगा। पैरा फोर्सेस के जवान हैं जो डिटेन करके प्रदर्शनकारियों को ले जा रहे हैं। देखिए, बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी यहां पहुंचे थे, अब नारेबाजी करते हुए वो जा रहे हैं। सब युवा हैं, यंगस्टर्स हैं जिनको डिटेन किया गया है। दिल्ली पुलिस की ये गाड़ी है, रॉयड कंट्रोल व्हीकल है, उसमें डिटेन करके इन युवाओं को, प्रदर्शनकारियों को ले जा रहा है। दूसरी गाड़ी जो आप देख रहे हैं, उस गाड़ी के अंदर राकेश टिकैत गुट के किसान नेताओं को डाला गया है। आप देखिए, एक तरह से जेल नुमा स्ट्रक्चर है उसके अंदर। आप जब एक बार डाल दिए जाते हैं गाड़ी के अंदर, तो कई बार हमने देखा बीते दिनों में कि प्रोटेस्टर्स गाड़ी से बाहर निकलकर, डिटेंशन से बाहर निकलकर आगे चले गए, लेकिन ये जो गाड़ियां लाई गई हैं वो जेल नुमा स्ट्रक्चर है। प्रदर्शनकारियों को खींचकर गाड़ियों के अंदर डाला जा रहा है।
1: सबसे ज्यादा हल्ला रहा कनॉट प्लेस में और इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा पुलिस की तैनाती थी। पुलिस को पता था कि प्रदर्शनकारी यहीं जुटेंगे, इसीलिए सुबह से ही दिल्ली पुलिस यहाँ तैनात थी। वरिष्ठ अधिकारियों की भी तैनाती थी।
5: इस समय मैं दिल्ली के इनर सर्कल की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि पालिका बाजार के पास आप देख सकते हैं कैसे भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर, उन्होंने अपना एक्शन मार्च शुरू कर दिया है। सीजेपी की तरफ से आज एक बड़ी कॉल दी गई थी, प्रोटेस्ट मार्च की कॉल दी गई थी, उसी को देखते हुए मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कैसे भारी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं यहाँ पर पहुंचे। क्योंकि दूसरी तरफ मैं आपको जनपद की तरफ दिखाना चाहूंगा कैसे भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको काबू करने के लिए जो दिल्ली पुलिस का एक्शन है यहाँ पर शुरू हो चुका है। आपने देखा कि कैसे रीगल सिनेमा से भारी मात्रा में जो डिप्लॉयमेंट है इस तरफ मूव करती है, जनपद की तरफ मूव करती है, इनर सर्कल होते हुए, पालिका बाजार होते हुए। और वहीं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कैसे प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए अब जो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज का जो एक्शन है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक
1: दिक्कत ये थी कि प्रदर्शनकारी यहाँ गलियों के अंदर घुस जा रहे थे, पुलिस लगातार उन्हें दौड़ा रही थी। जैसे ही पुलिस दौड़ाती तो वो एक गली से घुसकर दूसरी गली से निकल आते, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवानों को साफ ऑर्डर था कि किसी को नहीं छोड़ना है, सबको प्रिवेंटिव कस्टडी में लेना है।
6: कनॉट प्लेस जनपद का ये इलाका है और यहाँ पर एक एक करके जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। धीरे धीरे कर यहाँ पर जो भीड़ थी वो बढ़ रही थी प्रदर्शनकारियों की, और उसके बाद जो अलग अलग छोटी छोटी गलियाँ हैं इन इलाकों में, वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको डिटेन किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, और उनको अब गलियों से ढूंढ ढूंढ कर जो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो डिटेन करके लेकर जा रही है। तो अलग अलग तस्वीरें देखिए चारों तरफ, कहीं भी अगर आपको मेरे कैमरा पर्सन हिमांशु दिखाएंगे तो एक एक करके जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहाँ पर डिटेन किया गया है। तो एक तस्वीर जो थी वो यहाँ पर थोड़ी देर से हम लोग देख रहे थे कि प्रदर्शनकारी एक एक कर यहाँ पर जमा हो रहे थे, और उसके बाद अचानक से जो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो यहाँ पर आती हैं और इन प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर लेकर गई।
7: कॉकरोच जनता पार्टी की प्रदर्शन के कॉल पर ये प्रदर्शनकारी जमा तो हो गए, लेकिन शायद इन्हें ये अंदाजा नहीं था कि पुलिस

0: इतनी बड़ी तैनाती होगी। ये सब जंतर मंतर जाना चाहते थे, लेकिन वहां से कई किलोमीटर पहले ही पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया।
1: प्रदर्शनकारियों का टेंपल रन शुरू हो गया है, प्रदर्शनकारियों का टेंपल रन शुरू हो गया है। वो एक तरह से इस सेक्टर से दौड़ के भाग रहे हैं और पुलिस उनको यहां से हटाते हुए दिखाई दे रही है। बीते एक घंटे से यहां पर ये प्रदर्शनकारी जेंजी युवा प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे। ज्ञानेश कुमार सीसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वोट चोरी के बारे में नारेबाजी कर रहे थे, जो विपक्ष का आरोप है उसी तरह के नारेबाजी आपको नारेबाजी यहां पर सुनाई दे रहा था। बीते एक घंटे से यहां ये जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन अब अचानक से दिल्ली पुलिस एक्शन बोर्ड में आती है और इस सेक्टर में भी जो प्रदर्शनकारी थे उनको हटाया जा रहा है।
2: बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत। ये देश में जो सरकार है बहुत गलत कर रही है सर, बहुत ज्यादा गलत कर रही है।
1: हटाया जा रहा है, कहाँ आए थे आप लोग?
3: प्रोटेस्ट
1: करने के लिए आए थे। अभिजीत को डिटेन किया गया, उसके बावजूद आप लोग यहाँ पहुँच गए हैं।
3: वो भले से उनको डिटेन कर लिया गया हो, लेकिन हम उनके सपोर्ट में हैं।
1: किसी पार्टी से हैं आप?
3: नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं बस उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, कांग्रेस जनता पार्टी
1: को। आप लोग नारे लगा रहे थे इसलिए डिटेन हो रहे हैं?
3: हाँ जी, सपोर्ट कर रहे थे इसलिए हमको डिटेन किया गया है।
0: प्रदर्शनकारियों ने शाम शाम तक भी कोशिश की कि किसी भी तरीके से वो कनॉट प्लेस से जंतर मंतर की तरफ चले जाएं, लेकिन पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी। पुलिस ने किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया।
4: दूसरी तरफ मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैसे दिल्ली पुलिस ने यहां पर डिटेन करना शुरू कर लिया। देखिए, जो प्रदर्शनकारी थी उनको उठाना शुरू कर दिया। वहीं मैं अपना कैमरा सहयोगी अजय जी से कहूंगा एक तस्वीर उस तरफ की भी दिखाएं कि जैसे ही यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचते हैं प्रदर्शनकारी भागने लग जाते हैं। तस्वीरें मैं आपको इनर सर्कल की दिखा रहा हूं, एन ब्लॉक की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे जैसे ही प्रदर्शनकारी देखते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवान उनको डिटेन करने के लिए आ रहे हैं, वो भागते हुए दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं। और पहली बार नहीं, सुबह से देखा जा रहा है कि जैसे ही प्रदर्शनकारी इकट्ठे होते हैं जनपद के पास, रीगल सिनेमा के पास, ब्लॉक ए के पास, वहीं देखा जाता है कि भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं इकट्ठे होकर उनको डिटेन करना शुरू कर देते हैं।
0: जब पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को दौड़ा रही थी तो कुछ प्रदर्शनकारी बंगला साहिब गुरुद्वारे के अंदर भी चले गए। दिल्ली पुलिस ने उनका पीछा किया लेकिन गुरुद्वारे के गेट पर रुक गए और अंदर नहीं गए।
5: अभी भी जो सबसे बड़ा चैलेंज दिल्ली पुलिस के लिए, यहाँ अगर सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो वहाँ वो बना हुआ है ये गुरुद्वारा बंगला साहिब, क्योंकि इसके अंदर कई सारे जो प्रदर्शनकारी हैं वो जाकर के रुके हुए हैं और हर कुछ देर में बाहर आते हैं, नारे लगाते हैं और जैसे ही पुलिस उन्हें पकड़ने जाती है वापस अंदर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस उन्हें गुरुद्वारे के अंदर घुस के नहीं पकड़ेगी। और याद रखिए, ज्यादातर CJP के लोग नहीं है, ये सारे लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस के, SFI के और ISA के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लोग यहाँ पर बहुत अच्छी रणनीति बनाकर आए। उन्हें पता था कि एक रिलीजियस प्लेस के अंदर, एक धार्मिक स्थल के अंदर पुलिस घुसेगी नहीं। मैसेजिंग है ये अंदर चली गई है, जिसकी वजह से आप देखें तो गेट्स के पास आपको अब प्रदर्शनकारी नहीं दिखेंगे, प्रदर्शनकारी अंदर की तरफ है अब, और बाहर बहुत भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है। और जैसे ही पुलिस थोड़ी सी पीछे होती है, 10 कदम पीछे होती है, तो अचानक से अंदर से कुछ लोग आते हैं और गेट के अंदर ही खड़े होकर नारे लगाते हैं और फिर वापस अंदर भाग जाते हैं। तो ये जो है पिछले 1-1.5 घंटे से कुछ ऐसा ही जो खेल है ये दिल्ली पुलिस के साथ चल रहा है, लेकिन जो भी बाहर आता है उसे तुरंत पकड़ के यहाँ से डिटेन करके तुरंत हटाया जा रहा है और धीरे धीरे अंदर रहने वाले लोगों की संख्या भी कम होती हुई अब दिखाई दे रही है।
0: आज तक ब्यूरो।
6: गणेश कुमार को लेकर विपक्ष भी सड़कों पर है और CJP के समर्थन में अरविंद केजरीवाल और ममता बैनर्जी भी आए। लेफ्ट पार्टियां भी सड़कों पर उतरी और कांग्रेस पार्टी दूर ही दिखाई थी।
7: 1.5 घंटे से दिल्ली की सड़कों पर हम लोगों को घुमा रहे हैं, हमें पता नहीं कहां ले जा रहे हैं, कौन से थाने में ले जा रहे हैं।
8: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही कांग्रेस पार्टी CJP के आंदोलन से दूर रही। उसे आम आदमी पार्टी, लेफ्ट और TMC ने अपना समर्थन दिया। ममता मुंह पर बैंडेड लगाकर धरने पर बैठ गईं। लेकिन ममता बैनर्जी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस वैन में ममता बैनर्जी को ले जाती दिखी, कहा कि वो इस मामले में झुकेंगे नहीं।
9: हमरा हमारे बाड़ी पास के बस स्टैंड যেতে চেয়েছিলাম। সিজেপি আমাদের ইনভাইট আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, স্টুডেন্ট ইউথরা, তাদের সবাইকে অ্যারেস্ট করেছে, মিডিয়াকে অ্যারেস্ট করেছে, অল পলিটিক্যাল লিডার্সদের অ্যারেস্ট করেছে আর ঘোরাচ্ছে। তারপরে আমরা যখন বাড়ির সামনে একটা বেঞ্চ নিয়ে একটা বাস স্ট্যান্ডে বসলাম, তখন আমাদের যেতে দেওয়া হলো না, কিন্তু আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বসেছিলাম। সেভ ইন্ডিয়া, সেভ ডেমোক্রেসি।
8: ममता बैनर्जी की तरह अरविंद केजरीवाल भी सीजेपी का समर्थन करने उतरे, लेकिन उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज समेत कई नेता प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें हिरासत में लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया।
7: बहुत गुस्से में है जो जो लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं। मैं पूरे देश के लोगों को, युवाओं को हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, हम सब लोगों को मिलकर देश को बचाना होगा। आप जहां भी हैं देश में, अभी निकलिए अपने घर से, दिल्ली की तरफ कूच कीजिए, दिल्ली आइए, स्कूटर पे आइए, पैदल आइए, बस में आइए, हवाई जहाज में आइए, ट्रेन में आइए, जैसे आ सकते हैं आइए, दिल्ली की तरफ कूच कीजिए। जहां मोदी जी आपको रोके वहीं बैठ जाओ, उसी जगह को जंतर मंतर बना दो, पूरे देश को जंतर मंतर बना दो, लेकिन मोदी जी को वोट चोरी करने से रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये देश नहीं बचेगा।
8: अरविंद केजरीवाल ने पहले ही इस प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान कर दिया था। ममता और केजरीवाल के अलावा पुलिस ने केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन, त्रिपुरा के पूर्व सीएम माणिक सरकार और सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास को भी हिरासत में लिया। यूट्यूबर ध्रुव राठी को सुबह ही गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया था। आईसा अध्यक्ष नेहा बोरा को भी हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन से दूरी बनाकर रखी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चेन्नई में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से दक्षिण भारत में इस मामले को गरमाने में लगे हैं।
6: दिल्ली की तरह मुंबई में भी सीजेपी समर्थकों की तरफ से प्रदर्शन करने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया। तो चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने वहां पर उन्हें हिरासत में ले लिया।
10: मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में जिसने भी प्रदर्शन करने की कोशिश की, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसमें महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी भी शामिल हैं।
11: नेशनल कॉलेज से उठाया, बांद्रा पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, संता क्रूज पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, डीएन नगर ले आए। डीएन नगर में कुछ खास रिसेप्शन तैयार किया होगा, देखते रहिए। ये पुलिस की गुलामी की निशानी है, बेचारे वो भी क्या कर सके, सत्ता वालों के चाकर जो बन गए। एक दिन तख्ता पलट होगा, फिर हिसाब किया जाएगा।
10: तुषार गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद आदित्य ठाकरे अपने पार्टी नेताओं के साथ वहां पहुंचे।
12: जिस देश में गांधी जी को डिटेन किया जाता है और इतना डर है भाजपा के मन में कि जैसे ही हम यहाँ आने वाले थे उनको लेके गए बोरेवली, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इतना मन में डर क्यों है? भले वो गांधी जी के बारे में हो या हमारे बारे में हो, या अभिजीत के बारे में हो, या रत्ना या सौरभ या राहुल जी के बारे में हो। आपने ये भी देखा होगा, राहुल जी जैसे ही चुनाव आयोग से मिलने गए कितनी बड़ी तादाद में फौज लगाई गई। ये सारी फोर्स जो बॉर्डर पे होनी चाहिए वो आप दिल्ली में लगा रहे हो, इतना डर क्यों है आपके मन में? किससे डरते हो आप? क्यों भय है इतना मन में?
10: मुंबई में अभिनेता और आमिर खान के भांजे इमरान खान भी सीजेपी के समर्थन में प्रदर्शन करने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया।
13: मेरा ये मानना है कि इस देश में और इस शहर में वी शुड ऑलवेज हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ऐसा ऐसी भी क्या खतरा है? आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे पुलिस के लोग हैं।
14: दिल्ली में भी प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया गया, दिल्ली में भी डिटेन किया गया।
13: आई बिलीव दैट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू शो अप एंड शो दैट देयर दैट वी आर नॉट अफ्रेड एंड दैट देयर इज एक्चुअली नो डेंजर एंड नो थ्रेट ओवर हियर। द ओनली थ्रेट इज फ्रॉम ऑल ऑफ दीस पीपल अटैकिंग विद स्टिक्स।
10: मुंबई में प्रदर्शन को देखते हुए सुबह से पुलिस ने तैयारी कर रखी थी। ड्रोन से प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने के इंतजाम भी देखे गए।
15: पुलिस को गाड़ी को रोकने का यहाँ पर भरसक कोशिश थी, लेकिन प्रदर्शनकारी जो है वो तो देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी जो है वो सुन नहीं रहे हैं और पुलिस पे जो है वो झड़प है वो बढ़ती जा रही है। पुलिस डिटेन कर रही है लेकिन प्रदर्शनकारी जो है वो इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं। और ये जो साइट है इसे हेरिटेज साइट पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि हेरिटेज साइट है, यहाँ प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है, लेकिन जैसा कि देख सकते हैं पुरजोर विरोध जो है प्रदर्शनकारियों द्वारा किया जा रहा है और पुलिस जो है इन्हें डिटेन करने की भरपूर कोशिश कर रही है।
10: चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेता चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसके बाद मनीष सिसोदिया समेत कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
16: बस में किस तरह जो है आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को, लीडर्स को डिटेन किया जा रहा है भर। और मनीष सिसोदिया आप देख सकते हैं बस के अंदर बैठे हैं, मनीष सिसोदिया को बस के अंदर बिठाया गया है और यहां से हटाया गया है। सो अभी तक तो पुलिस जो है वो कामयाबी पुलिस को मिली है कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक नहीं जाने गया, लेकिन मनीष सिसोदिया आप देख सकते हैं कि विंडो में बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, रेड शर्ट में हैं और लगातार जो है यहां पर डिटेंशन जो अब हो रही हैं। और ये बस जो कि जो बस जिसमें आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और लीडर्स को भरा गया है उनको यहां से मूव करके लेके जाया जा रहा है। सो जब मेन लीडरशिप चाहे वो सोनिया मान हो, मनीष सिसोदिया हो, हरपाल चीमा हो और दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको यहां से मूव कराया जा रहा है।
10: दक्षिण में बेंगलुरु और चेन्नई में भी प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी सड़कों पर प्रदर्शनकारी निकले, जहां पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आईं।
6: बीजेपी की तरफ से भी विरोध का मोर्चा संभाला गया और दिल्ली में कांग्रेस सांसद पर छात्राओं से छेड़छाड़ तो लखनऊ में महिला पुलिसकर्मियों से राहुल प्रियंका की तरफ से की गई कथित बदसलूकी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा सड़कों पर निकल गया।
17: गणेश कुमार जी को पद्म भूषण से पुरस्कृत करना चाहिए।
18: मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर भले ही विपक्षी दल और सीजेपी प्रदर्शन कर रहे हों, लेकिन बंगाल बीजेपी की तरफ से ज्ञानेश कुमार को हिंसा मुक्त चुनाव का श्रेय दिया जा रहा है जो 70 सालों में नहीं हुआ।
17: अरे ममता दीदी कलकत्ते में क्यों नहीं है? हम लोग तो कलकत्ते में उसको बुला रहे, इतना पूजा उसको इंतजार कर रहे। अरे भैया कॉकरोच केकड़ा ये सब लेकर क्या होगा? ममता जी चले ये कलकत्ते में।
18: बीजेपी की तरफ से लखनऊ में महिला मोर्चा के प्रदर्शन की अब ये तस्वीर देखिए। बीजेपी ने ये प्रदर्शन राहुल गांधी के खिलाफ किया, जिन पर दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मियों से बदसलूकी का आरोप है। इसे लेकर बीजेपी की तरफ से वीडियो भी जारी किए गए जिसमें प्रियंका गांधी एक महिला पुलिसकर्मी को कोहनी मारती दिखती है, तो राहुल गांधी पर एक महिला पुलिसकर्मी को गलत तरीके से छूने का आरोप बीजेपी लगाती है।
19: लखनऊ में आज बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन है, कांग्रेस पार्टी कार्यालय घेराव करने का कार्यक्रम है और इस समय पर मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से ये महिला मोर्चा का प्रदर्शन शुरू हुआ है और तमाम महिलाएं और उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं।
20: खुद राहुल गांधी महिलाओं को ऐसे छू रहे, प्रियंका गांधी यूं कोनी मार रही है, तो हम इस सम्मान के लिए जा रहे हैं कि इस वर्दी का भी आप लोग को सम्मान करना सीखना चाहिए, वो आपके लिए खड़े 24/7।
18: बीजेपी महिला मोर्चा ने लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के पास और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना के आवास के पास लगे पोस्टर भी फाड़ दिए। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा ने एक अलग मुद्दे पर प्रदर्शन किया, मामला जेएनयू में प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर छात्राओं के यौन शोषण का है, जिसके बाद उन्हें जेएनयू से बर्खास्त कर दिया गया। अकोइजम कांग्रेस सांसद भी हैं, इसलिए कांग्रेस की चुप्पी पर बीजेपी ने उसे घेर लिया है।
21: राहुल गांधी महिला पुलिस महिला कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और एक व्यक्ति जिस पे आरोप साबित हो गया, जिसको यूनिवर्सिटी से हटाया गया है, पर वो फिर भी उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने उनके लिए राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने एक शब्द नहीं बोला है उनके, क्या उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी उस व्यक्ति के साथ?
18: ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी को घेरने में राहुल समेत पूरा विपक्ष जुटा है, वहीं बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को निशाने पर लिया जा रहा है। भले ही मुद्दे अलग अलग हों, लेकिन दोनों के बीच बढ़ते टकराव ने बता दिया है कि सियासी पारा बढ़ा रहेगा।
6: और अब उत्तर प्रदेश चुनावों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, तो क्या अयोध्या से इस बार योगी बनाम अखिलेश के बीच में मुकाबला होगा? दरअसल अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी, सलाह दी थी और उसके बाद योगी ने कह दिया कि हो जाए, अखिलेश चेलों को छोड़कर खुद अयोध्या से उतर जाए।
22: पीडीए का वास्तविक मतलब है प्रदेश डुबाऊ एलायंस।
1: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने पीडीए का मतलब समझाने के बाद वो बात कही जिसे नहले पर दहला कहा जा सकता है।
22: इस अराजकता को स्वीकार करने वाली नहीं, मैं तो आपको ऑफर करता हूं, आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं, तय हो जाए, आप भी आइए और मैं भी आता हूं। लड़ाई चेलों से क्यों, लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए और उसके लिए मैं कह रहा हूं आइए आप भी। इससे पहले संभव है
1: तो योगी ने अखिलेश को चैलेंज दिया है कि हिम्मत है तो लड़ाई आमने सामने लड़ो। योगी का यह बयान अखिलेश के अयोध्या से चुनाव लड़ने की सलाह के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री अगर अयोध्या को लेकर इतने ही आश्वस्त हैं तो अयोध्या से चुनाव लड़ जाएं।
2: अगर वो अयोध्या से इतने ही आश्वस्त हैं और जिन्होंने ये कहा हो कि पानी का दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा 15 दिन के अंदर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अगर वो इतने ही अयोध्या वासियों से अस्वस्थ है तो उन्हें यही फैसला लेना चाहिए, उनके बीच में अगला चुनाव लड़ना चाहिए। ये चुनौती नहीं है, ये सलाह है।
1: अखिलेश ने साफ कहा कि ये उनका चैलेंज नहीं, मुख्यमंत्री को सियासी सलाह है, लेकिन योगी ने इसे स्वीकार करके गेंद अखिलेश के पाले में फेंक दी कि अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाओ, पता चल जाएगा किसमें कितना दम है।
22: ये माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले पेशेवर अपराधियों के सामने उनकी मौत पर उनकी कब्र में जाकर के फातिया पढ़ने वाले लोग, ये हम लोगों से क्या लड़ पाएंगे, इनकी हिम्मत नहीं है। ये पहले ही जनता इनकी छुट्टी कर चुकी है, एक खिसियानी बिल्ली खंपा नोचे जैसी स्थिति इन लोगों की हो चुकी है।
1: योगी ने कहा कि आने वाले चुनाव में 80% सीटें एनडीए जीतेगा और 20% इंडिया गठबंधन, क्योंकि ये जनता ने तय कर लिया है।
22: जिस अयोध्या में जय श्री राम बोलने पर आपकी सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, जिस अयोध्या के सामने आपने केवल और केवल बैरियर खड़ा किए थे, आज वो अयोध्या एक बार फिर से राम राज्य के नए उदाहरण बनकर के त्रेता युग का स्मरण करा रही है।
1: योगी के इस सियासी हमले का अखिलेश ने तुरंत जवाब देते हुए लोकसभा चुनाव याद दिलाते हुए कहा कि इस बार जनता घमंड का सारा पानी उतार देगी, लोकसभा भूल गए क्या? उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार अखिलेश यादव की तरफ से लगातार खुद को बीजेपी के मुकाबले सनातन के मोर्चे पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को इसलिए अखिलेश की तरफ से लगातार उठाया जाता है, दावा किया जाता है कि बीजेपी को वहां से प्रत्याशी नहीं मिल रहा, लेकिन योगी ने अखिलेश के नहले पर दहला मारकर गेंद उनके पाले में डाल दी है।
22: क्या इससे पहले संभव था ये?
1: आज तक ब्यूरो
22: मोदी जी का विजन है।
3: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: पड़े हैं।
1: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई। ट्रैवल एजेंट कोई गांजा फूंक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
1: तुम्हारा
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
0: यार काट देना ये।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: सामान्य हो रहे हैं हालात, खुले गए सभी मेट्रो स्टेशन, आज खुलेंगे सभी बाजार, लेकिन सीजेपी ने आज फिर आंदोलन का किया ऐलान। सीजेपी के प्रदर्शन पर बीजेपी का ताबड़तोड़ हमला, कहा सड़कों पर अराजकता की साजिश, राहुल का बयान, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जारी रहेगी जंग। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मेट्रो स्टेशन बंद करने और लोगों को हिरासत में रखने के खिलाफ याचिका, सोमवार को बड़े मार्च की तैयारी में विपक्ष। चेन्नई में छात्रों के बीच राहुल की गूंज, कहा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं पीएम मोदी, तमिल भाषा और संस्कृति पर प्रधानमंत्री के हमले का जड़ा आरोप। अब सीएम योगी ने अखिलेश को दी चुनौती, कहा अयोध्या से चुनाव में हो जाए आमना सामना, अखिलेश का जवाब हमारा युवा पीडीए प्रहरी ही काफी। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन नहीं होने दिया और अब सरकार इसे अपनी सफलता मान सकती है। प्रदर्शनकारियों को ये अपनी कामयाबी लग सकती है कि उन्हें रोकने के लिए हजारों पुलिस वालों का जमावड़ा लगाना पड़ा, ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी, मेट्रो रोकनी पड़ी, बॉर्डर बंद करने पड़े, लेकिन सवाल यह है अब कि आगे क्या होगा।
1: अक्टूबर की तारीख पहले से तय थी। दिल्ली पुलिस को अंदाजा था कि हालात क्या हो सकते हैं, इसीलिए ट्रेनें रद्द की, जंतर मंतर के आसपास का इलाका छावनी बनाया, इंटरनेट बंद किया, मेट्रो स्टेशन भी बंद रहे और जो प्रदर्शनकारी जहां दिखा वहीं धरने। हंगामा तो हुआ, दौड़ भाग भी हुई, लेकिन प्रदर्शन नहीं हो पाया। दिल्ली पुलिस ने नेताओं को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा, सबको प्रदर्शन शुरू करने से पहले ही प्रिवेंटिव कस्टडी में भेज दिया। जिनकी कॉल पर इस प्रदर्शन का ऐलान किया गया था वो अभिजीत दीपके तो फ्लाइट के अंदर से ही पकड़ लिए गए। दोपहर में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी उतरी, लेकिन उन्हें भी हिरासत में लिया गया। बीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कई दिनों से 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की कॉल दी हुई थी। वो लगातार लोगों से दिल्ली आने की अपील कर रहे थे। जब ये खबरें आने लगी कि ट्रेन और मेट्रो कैंसिल हो रही हैं, भारी पुलिस बल की तैनाती हो रही है, तो तब भी दीपके चैलेंज कर रहे थे। लेकिन सुबह 10 बजे के करीब जैसे ही उनकी फ्लाइट दिल्ली में लैंड हुई, दिल्ली पुलिस फ्लाइट में ही चढ़ गई और वहीं से उन्हें उठा लिया।
2: अरे सुने के लिए आया हो,
1: अभिजीत दीपके के साथ सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को भी पुलिस ले गई। इसके बाद दीपके ने एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो में कहा कि अब आंदोलन की कमान अजिंक्य शिंदे संभालेंगे।
3: हेलो एवरीवन, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इसका मतलब मैं, आशु और सौरभ, हम तीनों अरेस्ट हो चुके हैं। हमारे बाद इस मूवमेंट को अजिंक्य लीड करेगा, तो आप जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज फॉलो अजिंक्य शिंदे, ही विल बी कैरिंग फॉरवर्ड द कॉकरोच जनता पार्टी आफ्टर आशुतोष, मी एंड सौरभ। थैंक यू।
1: पुलिस ने पहले नेता को गिरफ्तार किया और फिर एक एक करके कार्यकर्ताओं को धरा, जो जहां दिखा वहीं से उठा लिया। शनिवार को दिल्ली में जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, पालिका बाजार और जनपद के आसपास की सड़कों पर खूब हंगामा रहा। सुबह से ही प्रदर्शनकारी जमा होने शुरू हो गए थे, लेकिन पुलिस ने इंतजाम ऐसे किए थे कि किसी को भी कदम जमाने का मौका नहीं मिला।
4: उसी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं और शांति बनाए रखने की अपील भी है और उसी के मेजर्स लिए जा रहे हैं।
5: कितने लोगों को डिटेन किया हो गया होगा नई दिल्ली इलाके से? कितने लोग
4: प्रिवेंटिव एक्शंस ले रहे हैं?
5: अच्छा, कुछ लोगों पर पथराव भी किया पुलिसकर्मियों को चोट आई?
4: हाँ, एक जगह पर पथराव।
1: दिल्ली पुलिस के जवान तो थे ही, पैरामिलिट्री भी भरपूर थी और यूपी पुलिस के जवानों को भी बुलाया गया था क्योंकि दिल्ली पुलिस किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए तो जहां भी प्रदर्शनकारी मिला तुरंत पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, बसों में भरा और डिटेंशन सेंटर भेज दिया।
6: कनॉट प्लेस के रीगल थिएटर के पास की ये तस्वीरें जहां पे बड़ी तादाद में आपको डिटेंशन दिखाई देगा। पैरा फोर्सेस के जवान हैं जो डिटेन करके प्रदर्शनकारियों को ले जा रहे हैं। देखिए, बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी यहां पहुंचे थे, अब नारेबाजी करते हुए वो जा रहे हैं। सब युवा हैं, यंगस्टर्स हैं जिनको डिटेन किया गया है। दिल्ली पुलिस की ये गाड़ी है, रॉयड कंट्रोल व्हीकल है, उसमें डिटेन करके इन युवाओं को प्रदर्शनकारियों को ले जा रहा है। दूसरी गाड़ी जो आप देख रहे हैं उस गाड़ी के अंदर राकेश चुकैत गुट के किसान नेताओं को डाला गया है। आप देखिए, एक तरह से जेल नुमा स्ट्रक्चर है उसके अंदर। आप जब एक बार डाल दिए जाते हैं गाड़ी के अंदर तो कई बार हमने देखा बीते दिनों में कि प्रोटेस्टर्स गाड़ी से बाहर निकलकर, डिटेंशन से बाहर निकलकर आगे चले गए, लेकिन ये जो गाड़ियां लाई गई हैं वो जेल नुमा स्ट्रक्चर है। प्रदर्शनकारियों को खींचकर गाड़ियों के अंदर डाला जा रहा है।
1: सबसे ज्यादा हल्ला रहा कनॉट प्लेस और इसीलिए यहां सबसे ज्यादा पुलिस की तैनाती थी। पुलिस को पता था कि प्रदर्शनकारी यहीं जुटेंगे, इसीलिए सुबह से ही दिल्ली पुलिस यहां तैनात थी। वरिष्ठ अधिकारियों की भी तैनाती थी।
7: इस समय मैं दिल्ली के इनर सर्कल की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि पालिका बाजार के पास आप देख सकते हैं कैसे भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर उन्होंने अपना एक्शन मार्च शुरू कर दिया है। सीजेपी की तरफ से आज एक बड़ी कॉल दी गई थी, प्रोटेस्ट मार्च की कॉल दी गई थी, उसी को देखते हुए मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कैसे भारी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं यहाँ पर पहुंचे। क्योंकि दूसरी तरफ मैं आपको जनपद की तरफ दिखाना चाहूंगा कैसे भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको काबू करने के लिए जो दिल्ली पुलिस का एक्शन है यहाँ पर शुरू हो चुका है। आपने देखा कि कैसे रीगल सिनेमा से भारी मात्रा में जो डिप्लॉयमेंट है इस तरफ मूव करती है, जनपद की तरफ मूव करती है, इनर सर्कल होते हुए, पालिका बाजार होते हुए। और वही तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कैसे प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए अब जो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज का जो एक्शन है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक
1: दिक्कत ये थी कि प्रदर्शनकारी यहाँ गलियों के अंदर घुस जा रहे थे, पुलिस लगातार उन्हें दौड़ा रही थी। जैसे ही पुलिस दौड़ाती तो वो एक गली से घुसकर दूसरी गली से निकल आते, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवानों को साफ ऑर्डर था कि किसी को नहीं छोड़ना है, सबको प्रिवेंटिव कस्टडी में लेना है।
8: कनॉट प्लेस जनपद का ये इलाका है और यहाँ पर एक एक करके जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। धीरे धीरे कर यहाँ पर जो भीड़ थी वो बढ़ रही थी प्रदर्शनकारियों की, और उसके बाद जो अलग अलग छोटी छोटी गलियाँ हैं इन इलाकों में वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको डिटेन किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, और उनको अब गलियों से ढूंढ ढूंढ कर जो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो डिटेन करके लेकर जा रही है। तो अलग अलग तस्वीरें देखिए चारों तरफ, कहीं भी अगर आपको मेरे कैमरा पर्सन हिमांशु दिखाएंगे तो एक एक करके जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहाँ पर डिटेन किया गया है। तो एक तस्वीर जो थी वो यहाँ पर थोड़ी देर से हम लोग देख रहे थे कि प्रदर्शनकारी एक एक कर यहाँ पर जमा हो रहे थे, और उसके बाद अचानक से जो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो यहाँ पर आती हैं और इन प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर लेकर गई।
1: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन की कॉल पर ये प्रदर्शनकारी जमा तो हो गए, लेकिन शायद इन्हें ये अंदाजा नहीं था कि पुलिस की इतनी बड़ी तैनाती होगी। ये सब जंतर मंतर जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ से कई किलोमीटर पहले ही पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया।
6: प्रदर्शनकारियों का टेंपल रन शुरू हो गया है, वो एक तरह से इस सेक्टर से दौड़ के भाग रहे हैं और पुलिस उनको यहां से हटाते हुए दिखाई दे रही है। बीते एक घंटे से यहां पर ये प्रदर्शनकारी, जेंजी युवा प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे, ज्ञानेश कुमार सीसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वोट चोरी के बारे में नारेबाजी कर रहे थे, जो विपक्ष का आरोप है उसी तरह के नारेबाजी आपको नारेबाजी यहां पर सुनाई दे रहा था। बीते एक घंटे से यहां ये जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन अब अचानक से दिल्ली पुलिस एक्शन बोर्ड में आती है और इस सेक्टर में भी जो प्रदर्शनकारी थे उनको हटाया जा रहा है।
5: बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत। ये देश में जो सरकार है ना, बहुत गलत कर रही है सर, बहुत ज्यादा गलत कर रही है।
6: हटाया जा रहा है। कहाँ आए थे आप लोग?
9: प्रोटेस्ट
6: करने के लिए आए थे। अभिजीत को डिटेन किया गया, उसके बावजूद आप लोग यहाँ पहुँच गए हैं।
9: वो भले से उनको डिटेन कर लिया गया हो, लेकिन हम उनके सपोर्ट में हैं।
6: किसी पार्टी से हैं आप?
9: नहीं नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं बस उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, कांग्रेस जनता पार्टी को।
6: आप लोग नारे लगा रहे थे इसलिए डिटेन हो रहे हैं?
9: हाँ जी, सपोर्ट कर रहे थे इसलिए हमको डिटेन किया गया।
1: प्रदर्शनकारियों ने शाम शाम तक भी कोशिश की कि किसी भी तरीके से वो कनॉट प्लेस से जंतर मंतर की तरफ चले जाए, लेकिन पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी। पुलिस ने किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया।
7: दूसरी तरफ मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैसे दिल्ली पुलिस ने यहां पर डिटेन करना शुरू कर लिया। देखिए, जो प्रदर्शनकारी थी उनको उठाना शुरू कर दिया। वहीं मैं अपना कैमरा सहयोगी अजय जी से कहूंगा एक तस्वीर उस तरफ की भी दिखाएं कि जैसे ही यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचते हैं, प्रदर्शनकारी भागने लग जाते हैं। तस्वीरें मैं आपको इनर सर्कल की दिखा रहा हूं, एन ब्लॉक की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे जैसे ही प्रदर्शनकारी देखते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान उनको डिटेन करने के लिए आ रहे हैं, वो भागते हुए दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं। और पहली बार नहीं, सुबह से देखा जा रहा है कि जैसे ही प्रदर्शनकारी इकट्ठे होते हैं जनपद के पास, रीगल सिनेमा के पास, ब्लॉक ए के पास, वहीं देखा जाता है कि भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं इकट्ठे होकर उनको डिटेन करना शुरू कर देते हैं।
1: जब पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को दौड़ा रही थी तो कुछ प्रदर्शनकारी बंगला साहिब गुरुद्वारे के अंदर भी चले गए। दिल्ली पुलिस ने उनका पीछा किया लेकिन गुरुद्वारे के गेट पर रुक गई और अंदर नहीं गई।
10: अभी भी जो सबसे बड़ा चैलेंज दिल्ली पुलिस के लिए, यहाँ अगर सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो वहाँ वो बना हुआ है ये गुरुद्वारा बंगला साहिब, क्योंकि इसके अंदर कई सारे जो प्रदर्शनकारी हैं वो जाकर के रुके हुए हैं और हर कुछ देर में बाहर आते हैं, नारे लगाते हैं और जैसे ही पुलिस उन्हें पकड़ने जाती है वापस अंदर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस उन्हें गुरुद्वारे के अंदर घुस के नहीं पकड़ेगी। और याद रखिए, ज्यादातर CJP के लोग नहीं है, ये सारे लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के, SFI के और ISA के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लोग यहाँ पर बहुत अच्छी रणनीति बनाकर आए। उन्हें पता था कि एक रिलीजियस प्लेस के अंदर, एक धार्मिक स्थल के अंदर पुलिस घुसेगी नहीं। मैसेजिंग है ये अंदर चली गई है, जिसकी वजह से आप देखें तो गेट्स के पास आपको अब प्रदर्शनकारी नहीं दिखेंगे, प्रदर्शनकारी अंदर की तरफ है अब, और बाहर बहुत भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है। और जैसे ही पुलिस थोड़ी सी पीछे होती है, 10 कदम पीछे होती है, तो अचानक से अंदर से कुछ लोग आते हैं और गेट के अंदर ही खड़े होकर नारे लगाते हैं और फिर वापस अंदर भाग जाते हैं। तो ये जो है पिछले 1-1.5 घंटे से कुछ ऐसा ही जो खेल है ये दिल्ली पुलिस के साथ चल रहा है, लेकिन जो भी बाहर आता है उसे तुरंत पकड़ के यहां से डिटेन करके तुरंत हटाया जा रहा है और धीरे धीरे अंदर रहने वाले लोगों की संख्या भी कम होती हुई अब दिखाई दे रही है।
1: आज तक ब्यूरो।
0: अनिश कुमार को लेकर विपक्ष भी सड़कों पर है और CJP के समर्थन में अरविंद केजरीवाल और ममता बैनर्जी भी आए। लेफ्ट पार्टियां भी सड़कों पर उतरी और कांग्रेस पार्टी दूर ही दिखाई थी।
11: 1.5 घंटे से दिल्ली की सड़कों पर हम लोगों को घुमा रहे हैं, हमें पता नहीं कहां ले जा रहे हैं, कौन से थाने में ले जा रहे हैं।
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही कांग्रेस पार्टी CJP के आंदोलन से दूर रही। उसे आम आदमी पार्टी, लेफ्ट और TMC ने अपना समर्थन दिया। ममता मुंह पर बैंडेड लगाकर धरने पर बैठ गईं। लेकिन ममता बैनर्जी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस वैन में ममता बैनर्जी को ले जाती दिखी, कहा कि वो इस मामले में झुकेंगे नहीं।
12: আমরা আমাদের বাড়ির পাশে যে বাস স্ট্যান্ড, প্রথমে তো আমরা যন্ত্র মন্ত্র যেতে চেয়েছিলাম, CJP আমাদের ইনভাইট আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, স্টুডেন্ট ইউথরা তাদের সবাইকে অ্যারেস্ট করেছে, মিডিয়াকে অ্যারেস্ট করেছে, অল পলিটিক্যাল লিডারদের অ্যারেস্ট করেছে আর ঘোরাচ্ছে। তারপরে আমরা যখন বাড়ির সামনে একটা বেঞ্চ নিয়ে একটা বাস স্ট্যান্ডে বসলাম, তখন আমাদের যেতে দেওয়া হলো না, কিন্তু আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বসেছিলাম। সেভ ইন্ডিয়া, সেভ ডেমোক্রেসি।
1: ममता बैनर्जी की तरह अरविंद केजरीवाल भी CJP का समर्थन करने उतरे, लेकिन उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया।
0: केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज समेत कई नेता प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें हिरासत में लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया।
11: बहुत गुस्से में है जो जो लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं। मैं पूरे देश के लोगों को, युवाओं को हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, हम सब लोगों को मिलके देश को बचाना होगा। आप जहां भी हैं देश में, अभी निकलिए अपने घर से, दिल्ली की तरफ कूच कीजिए, दिल्ली आइए, स्कूटर पे आइए, पैदल आइए, बस में आइए, हवाई जहाज में आइए, ट्रेन में आइए, जैसे आ सकते हैं आइए, दिल्ली की तरफ कूच कीजिए। जहां मोदी जी आपको रोके वहीं बैठ जाओ, उसी जगह को जंतर मंतर बना दो, पूरे देश को जंतर मंतर बना दो, लेकिन मोदी जी को वोट चोरी करने से रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये देश नहीं बचेगा।
0: अरविंद केजरीवाल ने पहले ही इस प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान कर दिया था। ममता और केजरीवाल के अलावा पुलिस ने केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन, त्रिपुरा के पूर्व सीएम माणिक सरकार और सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास को भी हिरासत में लिया। यूट्यूबर ध्रुव राठी को सुबह ही गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया था। आईसा अध्यक्ष नेहा बोरा को भी हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन से दूरी बनाकर रखी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चेन्नई में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से दक्षिण भारत में इस मामले को गरमाने में लगे हैं। दिल्ली की तरह मुंबई में भी सीजेपी समर्थकों की तरफ से प्रदर्शन करने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया। तो चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने वहां पर उन्हें हिरासत में ले लिया।
1: मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में जिसने भी प्रदर्शन करने की कोशिश की, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसमें महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी भी शामिल हैं।
13: नेशनल कॉलेज से उठाया, बांद्रा पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, संताक्रूज पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, डीएन नगर ले आए। डीएन नगर में कुछ खास रिसेप्शन तैयार किया होगा, देखते रहिए। ये पुलिस की गुलामी की निशानी है, बेचारे वो भी क्या कर सके, सत्ता वालों के चाकर जो बन गए। एक दिन तख्ता पलट होगा, फिर हिसाब किया जाएगा।
1: तुषार गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद आदित्य ठाकरे अपने पार्टी नेताओं के साथ वहां पहुंचे।
14: जिस देश में गांधी जी को डिटेन किया जाता है और इतना डर है भाजपा के मन में कि जैसे ही हम यहाँ आने वाले थे उनको लेके गए बुरेवली, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इतना मन में डर क्यों है? भले वो गांधी जी के बारे में हो या हमारे बारे में हो, या अभिजीत के बारे में हो, या रत्ना या सौरभ या राहुल जी के बारे में हो। आपने ये भी देखा होगा, राहुल जी जैसे ही चुनाव आयोग से मिलने गए कितनी बड़ी तादाद में फौज लगाई गई। ये सारी फोर्स जो बॉर्डर पे होनी चाहिए वो आप दिल्ली में लगा रहे हो, इतना डर क्यों है आपके मन में? किससे डरते हो आप? क्यों भय है इतना मन में?
1: मुंबई में अभिनेता और आमिर खान के भांजे इमरान खान भी सीजेपी के समर्थन में प्रदर्शन करने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया।
15: मेरा ये मानना है कि इस देश में और इस शहर में वी शुड ऑलवेज हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ऐसी भी क्या खतरा है? आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे पुलिस के लोग हैं।
16: दिल्ली में भी प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया गया, दिल्ली में भी डिटेन किया गया।
15: आई बिलीव दैट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू शो अप एंड शो दैट देयर दैट वी आर नॉट अफ्रेड एंड दैट देयर इज एक्चुअली नो डेंजर एंड नो थ्रेट ओवर हियर। द ओनली थ्रेट इज फ्रॉम ऑल ऑफ दीस पीपल अटैकिंग विद स्टिक्स।
1: मुंबई में प्रदर्शन को देखते हुए सुबह से पुलिस ने तैयारी कर रखी थी। ड्रोन से प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने के इंतजाम भी देखे गए।
17: पुलिस को गाड़ी को रोकने का यहाँ पर भरसक कोशिश थी, लेकिन प्रदर्शनकारी जो है वो तो देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी जो है वो सुन नहीं रहे हैं और पुलिस पे जो है वो झड़प है वो बढ़ती जा रही है। पुलिस डिटेन कर रही है लेकिन प्रदर्शनकारी जो है वो इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं। और ये जो साइट है इसे हेरिटेज साइट पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि हेरिटेज साइट है, यहाँ प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है। लेकिन जैसा कि देख सकते हैं पुरजोर विरोध जो है प्रदर्शनकारियों द्वारा किया जा रहा है और पुलिस जो है इन्हें डिटेन करने की भरपूर कोशिश कर रही है।
1: चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेता चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसके बाद मनीष सिसोदिया समेत कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
18: बस में किस तरह जो है आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को लीडर्स को डिटेन किया जा रहा है भर भर। और मनीष सिसोदिया आप देख सकते हैं बस के अंदर बैठे हैं, मनीष सिसोदिया को बस के अंदर बिठाया गया है और यहां से हटाया गया है। सो अभी तक तो पुलिस जो है वो कामयाबी पुलिस को मिली है कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक नहीं जाने गया, लेकिन मनीष सिसोदिया आप देख सकते हैं कि विंडो में बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, रेड शर्ट में हैं और लगातार जो है यहां पर डिटेंशन जो अब हो रही हैं। और ये बस जो कि जो बस जिसमें आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और लीडर्स को भरा गया है उनको यहां से मूव करके लेके जाया जा रहा है। सो जब मेन लीडरशिप चाहे वो सोनिया मान हो, मनीष सिसोदिया हो, हरपाल चीमा हो और दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको यहां से मूव कराया जा रहा है।
1: दक्षिण में बेंगलुरु और चेन्नई में भी प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी सड़कों पर प्रदर्शनकारी निकले, जहां पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आईं।
0: बीजेपी की तरफ से भी विरोध का मोर्चा संभाला गया और दिल्ली में कांग्रेस सांसद पर छात्राओं से छेड़छाड़ तो लखनऊ में महिला पुलिसकर्मियों से राहुल प्रियंका की तरफ से की गई कथित बदसलूकी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा सड़कों पर निकल गया।
19: गणेश कुमार जी को पद्म भूषण से पुरस्कृत करना चाहिए।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर भले ही विपक्षी दल और सीजेपी प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन बंगाल बीजेपी की तरफ से ज्ञानेश कुमार को हिंसा मुक्त चुनाव का श्रेय दिया जा रहा है जो 70 सालों में नहीं हुआ।
19: अरे ममता दीदी कलकत्ते में क्यों नहीं आए? हम लोग तो कलकत्ते में उसको बुला रहे, इतना पूजा उसको इंतजार कर रहे हैं। अरे भैया कॉकरोच केकड़ा ये सब लेकर क्या होगा? ममता जी चले ये कलकत्ते में।
1: बीजेपी की तरफ से लखनऊ में महिला मोर्चा के प्रदर्शन की अब ये तस्वीर देखिए। बीजेपी ने ये प्रदर्शन राहुल गांधी के खिलाफ किया, जिन पर दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मियों से बदसलूकी का आरोप है। इसे लेकर बीजेपी की तरफ से वीडियो भी जारी किए गए जिसमें प्रियंका गांधी एक महिला पुलिसकर्मी को कोहनी मारती दिखती है, तो राहुल गांधी पर एक महिला पुलिसकर्मी को गलत तरीके से छूने का आरोप बीजेपी लगाती है।
20: लखनऊ में आज बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन है, कांग्रेस पार्टी कार्यालय घेराव करने का कार्यक्रम है और इस समय पर मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से ये महिला मोर्चा का प्रदर्शन शुरू हुआ है और तमाम महिलाएं और उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं।
21: खुद राहुल गांधी महिलाओं को ऐसे छू रहे, प्रियंका गांधी यू कोनी मार रही है, तो हम इस सम्मान के लिए जा रहे हैं कि इस वर्दी का भी आप लोग को सम्मान करना सीखना चाहिए, वो आपके लिए खड़े 24/7।
1: बीजेपी महिला मोर्चा ने लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के पास और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना के आवास के पास लगे पोस्टर भी फाड़ दिए। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा ने एक अलग मुद्दे पर प्रदर्शन किया, मामला जेएनयू में प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर छात्राओं के यौन शोषण का है, जिसके बाद उन्हें जेएनयू से बर्खास्त कर दिया गया। अकोइजम कांग्रेस सांसद भी हैं, इसलिए कांग्रेस की चुप्पी पर बीजेपी ने उसे घेर लिया है।
22: राहुल गांधी महिला पुलिस महिला कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और एक व्यक्ति जिस पे आरोप साबित हो गया, जिसको यूनिवर्सिटी से हटाया गया है, पर वो फिर भी उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने उनके लिए राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने एक शब्द नहीं बोला है उनके लिए। क्या उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी उस व्यक्ति के साथ?
1: ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी को घेरने में राहुल समेत पूरा विपक्ष जुटा है, वहीं बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को निशाने पर लिया जा रहा है। भले ही मुद्दे अलग अलग हों, लेकिन दोनों के बीच बढ़ते टकराव ने बता दिया है कि सियासी पारा बढ़ा रहेगा।
0: और अब उत्तर प्रदेश चुनावों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, तो क्या अयोध्या से इस बार योगी बनाम अखिलेश के बीच में मुकाबला होगा? दरअसल अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी, सलाह दी थी और उसके बाद योगी ने कह दिया कि हो जाए, अखिलेश चेलों को छोड़कर खुद अयोध्या से उतर जाए।
23: पीडीए का वास्तविक मतलब है प्रदेश डुबाऊ एलायंस।
24: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने पीडीए का मतलब समझाने के बाद वो बात कही जिसे नहले पर दहला कहा जा सकता है।
23: इस अराजकता को स्वीकार करने वाली नहीं, मैं तो आपको ऑफर करता हूं, आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं, तय हो जाए, आप भी आइए और मैं भी आता हूं। लड़ाई चेलों से क्यों? लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए और उसके लिए मैं कह रहा हूं आइए आप भी। क्या इससे पहले संभव था ये?
24: तो योगी ने अखिलेश को चैलेंज दिया है कि हिम्मत है तो लड़ाई आमने सामने लड़ो। योगी का यह बयान अखिलेश के अयोध्या से चुनाव लड़ने की सलाह के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री अगर अयोध्या को लेकर इतने ही आश्वस्त हैं तो अयोध्या से चुनाव लड़ जाएं।
2: अगर वो अयोध्या से इतने ही आश्वस्त हैं और जिन्होंने ये कहा हो कि पानी का दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा 15 दिन के अंदर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अगर वो इतने ही अयोध्या वासियों से अस्वस्थ है तो उन्हें यही फैसला लेना चाहिए, उनके बीच में अगला चुनाव लड़ना चाहिए। ये चुनौती नहीं है, ये सलाह है।
24: अखिलेश ने साफ कहा कि ये उनका चैलेंज नहीं, मुख्यमंत्री को सियासी सलाह है, लेकिन योगी ने इसे स्वीकार करके गेंद अखिलेश के पाले में फेंक दी कि अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाओ, पता चल जाएगा किसमें कितना दम है।
23: ये माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले पेशेवर अपराधियों के सामने उनकी मौत पर उनकी कब्र में जाकर के फातिया पढ़ने वाले लोग ये हम लोगों से क्या लड़ पाएंगे? इनकी हिम्मत नहीं है, ये पहले ही जनता इनकी छुट्टी कर चुकी है। एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी स्थिति इन लोगों की हो चुकी है।
24: योगी ने कहा कि आने वाले चुनाव में 80% सीटें एनडीए जीतेगा और 20% इंडिया गठबंधन, क्योंकि ये जनता ने तय कर लिया है।
23: जिस अयोध्या में जय श्री राम बोलने पर आपकी सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, जिस अयोध्या के सामने आपने केवल और केवल बैरियर खड़ा किए थे, आज वो अयोध्या एक बार फिर से राम राज्य के नए उदाहरण बनकर के त्रेता युग का स्मरण करा रही है।
24: योगी के इस सियासी हमले का अखिलेश ने तुरंत जवाब देते हुए लोकसभा चुनाव याद दिलाते हुए कहा कि इस बार जनता घमंड का सारा पानी उतार देगी। लोकसभा भूल गए क्या? उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार अखिलेश यादव की तरफ से लगातार खुद को बीजेपी के मुकाबले सनातन के मोर्चे पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को इसलिए अखिलेश की तरफ से लगातार उठाया जाता है। दावा किया जाता है कि बीजेपी को वहां से प्रत्याशी नहीं मिल रहा, लेकिन योगी ने अखिलेश के नहले पर दहला मारकर गेंद उनके पाले में डाल दी है।
23: क्या इससे पहले संभव था ये?
24: आज तक ब्यूरो
23: मोदी जी का ही कहना है।
0: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: नहीं पड़े
1: नहीं।
0: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई। ट्रैवल एजेंट कोई गांजा फूंक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
0: तुम्हारा
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
0: यार काट देना।

0: दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन पर सख्ती के बाद सामान्य हो रहे हैं हालात। खुले गए सभी मेट्रो स्टेशन, आज खुलेंगे सभी बाजार, लेकिन सीजेपी ने आज फिर आंदोलन का किया ऐलान। सीजेपी के प्रदर्शन पर बीजेपी का ताबड़तोड़ हमला, कहा सड़कों पर अराजकता की साजिश, राहुल का बयान, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जारी रहेगी जंग। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मेट्रो स्टेशन बंद करने और लोगों को हिरासत में रखने के खिलाफ याचिका, सोमवार को बड़े मार्च की तैयारी में विपक्ष। चेन्नई में छात्रों के बीच राहुल की गूंज, कहा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं पीएम मोदी, तमिल भाषा और संस्कृति पर प्रधानमंत्री के हमले का जड़ा आरोप। अब सीएम योगी ने अखिलेश को दी चुनौती, कहा अयोध्या से चुनाव में हो जाए आमना सामना, अखिलेश का जवाब, हमारा युवा पीडीए प्रहरी ही काफी। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन नहीं होने दिया और अब सरकार इसे अपनी सफलता मान सकती है। प्रदर्शनकारियों को ये अपनी कामयाबी लग सकती है कि उन्हें रोकने के लिए हजारों पुलिस वालों का जमावड़ा लगाना पड़ा, ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी, मेट्रो रोकनी पड़ी, बॉर्डर बंद करने पड़े, लेकिन सवाल यह है अब कि आगे क्या होगा।
1: अक्टूबर की तारीख पहले से तय थी। दिल्ली पुलिस को अंदाजा था कि हालात क्या हो सकते हैं, इसीलिए ट्रेनें रद्द की, जंतर मंतर के आसपास का इलाका छावनी बनाया, इंटरनेट बंद किया, मेट्रो स्टेशन भी बंद रहे और जो प्रदर्शनकारी जहां दिखा वहीं धरना। हंगामा तो हुआ, दौड़ भाग भी हुई, लेकिन प्रदर्शन नहीं हो पाया। दिल्ली पुलिस ने नेताओं को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा, सबको प्रदर्शन शुरू करने से पहले ही प्रिवेंटिव कस्टडी में भेज दिया। जिनकी कॉल पर इस प्रदर्शन का ऐलान किया गया था वो अभिजीत दीपके तो फ्लाइट के अंदर से ही पकड़ लिए गए। दोपहर में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी उतरी, लेकिन उन्हें भी हिरासत में लिया गया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कई दिनों से 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की कॉल दी हुई थी। वो लगातार लोगों से दिल्ली आने की अपील कर रहे थे। जब ये खबरें आने लगी कि ट्रेन और मेट्रो कैंसिल हो रही हैं, भारी पुलिस बल की तैनाती हो रही है, तो तब भी दीपके चैलेंज कर रहे थे। लेकिन सुबह 10 बजे के करीब जैसे ही उनकी फ्लाइट दिल्ली में लैंड हुई, दिल्ली पुलिस फ्लाइट में ही चढ़ गई और वहीं से उन्हें उठा लिया। अभिजीत दीपके के साथ सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को भी पुलिस ले गई। इसके बाद दीपके ने एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो में कहा कि अब आंदोलन की कमान अजिंक्य शिंदे संभालेंगे।
2: हेलो एवरीवन, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इसका मतलब मैं, आशु और सौरभ, हम तीनों अरेस्ट हो चुके हैं। हमारे बाद इस मूवमेंट को अजिंक्य लीड करेगा, तो आप जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज फॉलो अजिंक्य शिंदे, ही विल बी कैरिंग फॉरवर्ड द कॉकरोच जनता पार्टी आफ्टर आशुतोष, मी एंड सौरभ। थैंक यू।
1: पुलिस ने पहले नेता को गिरफ्तार किया और फिर एक एक करके कार्यकर्ताओं को धरा, जो जहां दिखा वहीं से उठा लिया। शनिवार को दिल्ली में जंतर मंतर, कनॉट

0: जमाने का मौका नहीं मिला।
1: उसी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं और शांति बनाए रखने की अपील भी है और उसी के मेजर्स लिए जा रहे हैं।
2: कितने लोगों को डिटेन किया हो गया होगा नई दिल्ली इलाके से, कितने लोग
1: प्रिवेंटिव एक्शंस ले रहे हैं?
2: अच्छा, कुछ लोगों पर पथराव भी किया पुलिसकर्मियों को, चोट आई?
1: हाँ, एक जगह पर पथराव।
0: दिल्ली पुलिस के जवान तो थे ही, पैरामिलिट्री भी भरपूर थी और यूपी पुलिस के जवानों को भी बुलाया गया था क्योंकि दिल्ली पुलिस किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए तो जहां भी प्रदर्शनकारी मिला तुरंत पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, बसों में भरा और डिटेंशन सेंटर भेज दिया।
3: कनॉट प्लेस के रीगल थिएटर के पास की ये तस्वीरें जहां पे बड़ी तादाद में आपको डिटेंशन दिखाई देगा। पैरा फोर्सेस के जवान हैं जो डिटेन करके प्रदर्शनकारियों को ले जा रहे हैं। देखिए, बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी यहां पहुंचे थे, अब नारेबाजी करते हुए वो जा रहे हैं। सब युवा हैं, यंगस्टर्स हैं जिनको डिटेन किया गया है। दिल्ली पुलिस की एक गाड़ी है, रॉयड कंट्रोल व्हीकल है, उसमें डिटेन करके इन युवाओं को प्रदर्शनकारियों को ले जा रहा है। दूसरी गाड़ी जो आप देख रहे हैं, उस गाड़ी के अंदर राकेश टिकैत गुट के किसान नेताओं को डाला गया है। आप देखिए, एक तरह से जेल नुमा स्ट्रक्चर है उसके अंदर। आप जब एक बार डाल दिए जाते हैं गाड़ी के अंदर, तो कई बार हमने देखा बीते दिनों में कि प्रोटेस्टर्स गाड़ी से बाहर निकलकर, डिटेंशन से बाहर निकलकर आगे चले गए, लेकिन ये जो गाड़ियां लाई गई हैं वो जेल नुमा स्ट्रक्चर है। प्रदर्शनकारियों को खींचकर गाड़ियों के अंदर डाला जा रहा है।
0: सबसे ज्यादा हल्ला रहा कनॉट प्लेस में और इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा पुलिस की तैनाती थी। पुलिस को पता था कि प्रदर्शनकारी यहीं जुटेंगे, इसीलिए सुबह से ही दिल्ली पुलिस यहाँ तैनात थी। वरिष्ठ अधिकारियों की भी तैनाती थी।
4: इस समय मैं दिल्ली के इनर सर्कल की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि पालिका बाजार के पास आप देख सकते हैं कैसे भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर, उन्होंने अपना एक्शन मार्च शुरू कर दिया है। सीजेपी की तरफ से आज एक बड़ी कॉल दी गई थी, प्रोटेस्ट मार्च की कॉल दी गई थी, उसी को देखते हुए मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कैसे भारी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, यहाँ पर पहुंचे। क्योंकि दूसरी तरफ मैं आपको जनपद की तरफ दिखाना चाहूंगा कैसे भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको काबू करने के लिए जो दिल्ली पुलिस का एक्शन है यहाँ पर शुरू हो चुका है। आपने देखा कि कैसे रीगल सिनेमा से भारी मात्रा में जो डिप्लॉयमेंट है इस तरफ मूव करती है, जनपद की तरफ मूव करती है, इनर सर्कल होते हुए, पालिका बाजार होते हुए। और वही तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कैसे प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए अब जो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज का जो एक्शन है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक
0: दिक्कत ये थी कि प्रदर्शनकारी यहाँ गलियों के अंदर घुस जा रहे थे, पुलिस लगातार उन्हें दौड़ा रही थी। जैसे ही पुलिस दौड़ाती तो वो एक गली से घुसकर दूसरी गली से निकल आते, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवानों को साफ ऑर्डर था कि किसी को नहीं छोड़ना है, सबको प्रिवेंटिव कस्टडी में लेना है।
5: कनॉट प्लेस जनपद का ये इलाका है और यहाँ पर एक एक करके जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। धीरे धीरे कर यहाँ पर जो भीड़ थी वो बढ़ रही थी प्रदर्शनकारियों की, और उसके बाद जो अलग अलग छोटी छोटी गलियाँ हैं इन इलाकों में, वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको डिटेन किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, और उनको अब गलियों से ढूंढ ढूंढ कर जो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो डिटेन करके लेकर जा रही है। तो अलग अलग तस्वीरें देखिए चारों तरफ, कहीं भी अगर आपको मेरे कैमरा पर्सन हिमांशु दिखाएंगे तो एक एक करके जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहाँ पर डिटेन किया गया है। तो एक तस्वीर जो थी वो यहाँ पर थोड़ी देर से हम लोग देख रहे थे कि प्रदर्शनकारी एक एक कर यहाँ पर जमा हो रहे थे, और उसके बाद अचानक से जो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो यहाँ पर आती हैं और इन प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर लेकर गई।
0: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन की कॉल पर ये प्रदर्शनकारी जमा तो हो गए, लेकिन शायद इन्हें ये अंदाजा नहीं था कि पुलिस की इतनी बड़ी तैनाती होगी। ये सब जंतर मंतर जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ से कई किलोमीटर पहले ही पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया।
3: प्रदर्शनकारियों का टेम्पल रन शुरू हो गया है, वो एक तरह से इस सेक्टर से दौड़ के भाग रहे हैं और पुलिस उनको यहां से हटाते हुए दिखाई दे रही है। बीते एक घंटे से यहां पर ये प्रदर्शनकारी, जेंजी युवा प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे, ज्ञानेश कुमार सीसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वोट चोरी के बारे में नारेबाजी कर रहे थे, जो विपक्ष का आरोप है

0: इसी तरह के नारेबाजी आपको नारेबाजी यहां पर सुनाई दे रहा था। बीते एक घंटे से यहां ये जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन अब अचानक से दिल्ली पुलिस एक्शन बोर्ड में आती है और इस सेक्टर में भी जो प्रदर्शनकारी थे उनको हटाया जा रहा है।
1: बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत। ये देश में जो सरकार है ना, बहुत गलत कर रही है, बहुत ज्यादा गलत कर रही है।
0: हटाया जा रहा है। कहां आए थे आप लोग?
2: प्रोटेस्ट
0: करने के लिए आए थे। अभिजीत को डिटेन किया गया, उसके बावजूद आप लोग यहां पहुंच गए हैं।
2: वो भले से उनको डिटेन कर लिया गया हो, लेकिन हम उनके सपोर्ट में हैं।
0: किसी पार्टी से हैं आप?
3: नहीं,
2: मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं बस उनको सपोर्ट कर रहा हूं। कांग्रेस जनता पार्टी
0: के आप लोग नारे लगा रहे थे, इसलिए डिटेन हो रहे हैं?
2: हाँ जी, सपोर्ट कर रहे थे इसलिए हमको डिटेन किया गया है।
4: प्रदर्शनकारियों ने शाम शाम तक भी कोशिश की कि किसी भी तरीके से वो कनॉट प्लेस से जंतर मंतर की तरफ चले जाएं, लेकिन पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी। पुलिस ने किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया।
5: दूसरी तरफ मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैसे दिल्ली पुलिस ने यहां पर डिटेन करना शुरू कर लिया। देखिए, जो प्रदर्शनकारी थी उनको उठाना शुरू कर दिया। वहीं मैं अपना कैमरा सहयोगी अजय जी से कहूंगा एक तस्वीर उस तरफ की भी दिखाएं कि जैसे ही यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचते हैं, प्रदर्शनकारी भागने लग जाते हैं। तस्वीरें मैं आपको इनर सर्कल की दिखा रहा हूं, एन ब्लॉक की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे जैसे ही प्रदर्शनकारी देखते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवान उनको डिटेन करने के लिए आ रहे हैं, वो भागते हुए दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं। और पहली बार नहीं, सुबह से देखा जा रहा है कि जैसे ही प्रदर्शनकारी इकट्ठे होते हैं जनपद के पास, रीगल सिनेमा के पास, ब्लॉक ए के पास, वहीं देखा जाता है कि भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं इकट्ठे होकर उनको डिटेन करना शुरू कर देते हैं।
4: जब पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को दौड़ा रही थी तो कुछ प्रदर्शनकारी बंगला साहिब गुरुद्वारे के अंदर भी चले गए। दिल्ली पुलिस ने उनका पीछा किया, लेकिन गुरुद्वारे के गेट पर रुक गए और अंदर नहीं गए।
6: अभी भी जो सबसे बड़ा चैलेंज दिल्ली पुलिस के लिए, यहाँ अगर सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो वहाँ वो बना हुआ है ये गुरुद्वारा बंगला साहिब, क्योंकि इसके अंदर कई सारे जो प्रदर्शनकारी हैं वो जाकर के रुके हुए हैं और हर कुछ देर में बाहर आते हैं, नारे लगाते हैं और जैसे ही पुलिस उन्हें पकड़ने जाती है वापस अंदर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस उन्हें गुरुद्वारे के अंदर घुस के नहीं पकड़ेगी। और याद रखिए, ज्यादातर सीजेपी के लोग नहीं है, ये सारे लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस के, एसएफआई के और आयसा के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लोग यहाँ पर बहुत अच्छी रणनीति बनाकर आए। उन्हें पता था कि एक रिलीजियस प्लेस के अंदर, एक धार्मिक स्थल के अंदर पुलिस घुसेगी नहीं। मैसेजिंग है ये अंदर चली गई है, जिसकी वजह से आप देखें तो गेट्स के पास आपको अब प्रदर्शनकारी नहीं दिखेंगे, प्रदर्शनकारी अंदर की तरफ है अब, और बाहर बहुत भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है। और जैसे ही पुलिस थोड़ी सी पीछे होती है, 10 कदम पीछे होती है, तो अचानक से अंदर से कुछ लोग आते हैं और गेट के अंदर ही खड़े होकर नारे लगाते हैं और फिर वापस अंदर भाग जाते हैं। तो ये जो है पिछले 1-1.5 घंटे से कुछ ऐसा ही जो खेल है ये दिल्ली पुलिस के साथ चल रहा है, लेकिन जो भी बाहर आता है उसे तुरंत पकड़ के यहां से डिटेन करके तुरंत हटाया जा रहा है और धीरे धीरे अंदर रहने वाले लोगों की संख्या भी कम होती हुई अब दिखाई दे रही है।
4: आज तक ब्यूरो।
7: अनिश कुमार को लेकर विपक्ष भी सड़कों पर है और सीजेपी के समर्थन में अरविंद केजरीवाल और ममता बैनर्जी भी आए। लेफ्ट पार्टियां भी सड़कों पर उतरी और कांग्रेस पार्टी दूर ही दिखाई थी।
8: 1.5 घंटे से दिल्ली की सड़कों पर हम लोगों को घुमा रहे हैं, हमें पता नहीं कहां ले जा रहे हैं, कौन से थाने में ले जा रहे हैं।
9: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही कांग्रेस पार्टी सीजेपी के आंदोलन से दूर रही। उसे आम आदमी पार्टी, लेफ्ट और टीएमसी ने अपना समर्थन दिया। ममता मुंह पर बैंडेड लगाकर धरने पर बैठ गई, लेकिन ममता बैनर्जी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस वैन में ममता बैनर्जी को ले जाती दिखी, कहा कि वो इस मामले में झुकेंगे नहीं।
10: আমরা আমাদের বাড়ির পাশে যে বাস স্ট্যান্ড, প্রথমে তো আমরা যন্ত্র মন্ত্র যেতে চেয়েছিলাম, সিজেপি আমাদের ইনভাইট আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, স্টুডেন্ট ইউথরা তাদের সবাইকে অ্যারেস্ট করেছে, মিডিয়াকে অ্যারেস্ট করেছে, অল পলিটিক্যাল লিডারদের অ্যারেস্ট করেছে আর ঘোরাচ্ছে। তারপরে আমরা যখন বাড়ির সামনে একটা বেঞ্চ নিয়ে একটা বাস স্ট্যান্ডে বসলাম, তখন আমাদের যেতে দেওয়া হলো না, কিন্তু আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বসেছিলাম। সেভ ইন্ডিয়া, সেভ ডেমোক্রেসি।
9: ममता बैनर्जी की तरह अरविंद केजरीवाल भी सीजेपी का समर्थन करने उतरे, लेकिन उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज समेत कई नेता प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें हिरासत में लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया।
8: बहुत गुस्से में है जो जो लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं। मैं पूरे देश के लोगों को, युवाओं को हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, हम सब लोगों को मिलके देश को बचाना होगा। आप जहां भी हैं देश में, अभी निकलिए अपने घर से, दिल्ली की तरफ कूच कीजिए, दिल्ली आइए, स्कूटर पे आइए, पैदल आइए, बस में आइए, हवाई जहाज में आइए, ट्रेन में आइए, जैसे आ सकते हैं आइए, दिल्ली की तरफ कूच कीजिए। जहां मोदी जी आपको रोके वहीं बैठ जाओ, उसी जगह को जंतर मंतर बना दो, पूरे देश को जंतर मंतर बना दो, लेकिन मोदी जी को वोट चोरी करने से रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये देश नहीं बचेगा।
9: अरविंद केजरीवाल ने पहले ही इस प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान कर दिया था। ममता और केजरीवाल के अलावा पुलिस ने केरल के पूर्व सीएम पिनराय विजयन, त्रिपुरा के पूर्व सीएम माणिक सरकार और सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास को भी हिरासत में लिया। यूट्यूबर ध्रुव राठी को सुबह ही गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया था। आईसा अध्यक्ष नेहा बोरा को भी हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन से दूरी बनाकर रखी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चेन्नई में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से दक्षिण भारत में इस मामले को गरमाने में लगे हैं।
7: दिल्ली की तरह मुंबई में भी सीजेपी समर्थकों की तरफ से प्रदर्शन करने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया। तो चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने वहां पर उन्हें हिरासत में ले लिया।
3: मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में जिसने भी प्रदर्शन करने की कोशिश की, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसमें महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी भी शामिल।
11: नेशनल कॉलेज से उठाया, बैंड्रा पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, सांता क्रूज पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, डीएन नगर ले आए। डीएन नगर में कुछ खास रिसेप्शन तैयार किया होगा, देखते रहिए। ये पुलिस की गुलामी की निशानी है, बेचारे वो भी क्या कर सके, सत्ता वालों के चाकर जो बन गए। एक दिन तख्ता पलट होगा, फिर हिसाब किया जाएगा।
3: तुषार गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद आदित्य ठाकरे अपने पार्टी नेताओं के साथ वहां पहुंचे।
12: जिस देश में गांधी जी को डिटेन किया जाता है और इतना डर है भाजपा के मन में कि जैसे ही हम यहाँ आने वाले थे उनको लेके गए बुरेवली, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इतना मन में डर क्यों है? भले वो गांधी जी के बारे में हो या हमारे बारे में हो, या अभिजीत के बारे में हो, या रत्ना या सौरभ या राहुल जी के बारे में हो। आपने ये भी देखा होगा, राहुल जी जैसे ही चुनाव आयोग से मिलने गए कितनी बड़ी तादाद में फौज लगाई गई। ये सारी फोर्स जो बॉर्डर पे होनी चाहिए वो आप दिल्ली में लगा रहे हो, इतना डर क्यों है आपके मन में? किससे डरते हो आप? क्यों भय है इतना मन में?
3: मुंबई में अभिनेता और आमिर खान के भांजे इमरान खान भी सीजेपी के समर्थन में प्रदर्शन करने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया।
13: मेरा ये मानना है कि इस देश में और इस शहर में वी शुड ऑलवेज हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ऐसा ऐसी भी क्या खतरा है? आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे पुलिस के लोग हैं।
14: दिल्ली में भी प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया गया, दिल्ली में भी डिटेन किया गया।
13: आई बिलीव दैट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू शो अप एंड शो दैट देयर दैट वी आर नॉट अफ्रेड एंड दैट देयर इज एक्चुअली नो डेंजर एंड नो थ्रेट ओवर हियर। द ओनली थ्रेट इज फ्रॉम ऑल ऑफ दीस पीपल अटैकिंग विद स्टिक्स।
3: मुंबई में प्रदर्शन को देखते हुए सुबह से पुलिस ने तैयारी कर रखी थी। ड्रोन से प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने के इंतजाम भी देखे गए।
15: पुलिस को गाड़ी को रोकने का यहाँ पर भरसक कोशिश थी, लेकिन प्रदर्शनकारी जो है वो तो देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी जो है वो सुन नहीं रहे हैं और पुलिस पे जो है वो झड़प है वो बढ़ती जा रही है। पुलिस डिटेन कर रही है लेकिन प्रदर्शनकारी जो है वो इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं। और ये जो साइट है इसे हेरिटेज साइट पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि हेरिटेज साइट है, यहाँ प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है। लेकिन जैसा कि देख सकते हैं पुरजोर विरोध जो है प्रदर्शनकारियों द्वारा किया जा रहा है और पुलिस जो है इन्हें डिटेन करने की भरपूर कोशिश कर रही है।
3: चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेता चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसके बाद मनीष सिसोदिया समेत कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
16: बस में किस तरह जो है आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को लीडर्स को डिटेन किया जा रहा है भर भर। और मनीष सिसोदिया आप देख सकते हैं बस के अंदर बैठे हैं, मनीष सिसोदिया को बस के अंदर बिठाया गया है और यहां से हटाया गया है। सो अभी तक तो पुलिस जो है वो कामयाबी पुलिस को मिली है कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक नहीं जाने गया, लेकिन मनीष सिसोदिया आप देख सकते हैं कि विंडो में बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, रेड शर्ट में हैं और लगातार जो है यहाँ पर डिटेंशन जो अब हो रही हैं। और ये बस जो कि जो बस जिसमें आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और लीडर्स को भरा गया है उनको यहां से मूव करके लेके जाया जा रहा है। सो जब मेन लीडरशिप चाहे वो सोनिया मान हो, मनीष सिसोदिया हो, हरपाल चीमा हो और दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको यहां से मूव कराया जा रहा है।
3: दक्षिण में बेंगलुरु और चेन्नई में भी प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी सड़कों पर प्रदर्शनकारी निकले, जहां पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आईं।
7: बीजेपी की तरफ से भी विरोध का मोर्चा संभाला गया और दिल्ली में कांग्रेस सांसद पर छात्राओं से छेड़छाड़ तो लखनऊ में महिला पुलिसकर्मियों से राहुल प्रियंका की तरफ से की गई कथित बदसलूकी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा सड़कों पर निकल गया।
17: गणेश कुमार जी को पद्म भूषण से पुरस्कृत करना चाहिए।
18: मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर भले ही विपक्षी दल और सीजेपी प्रदर्शन कर रहे हों, लेकिन बंगाल बीजेपी की तरफ से ज्ञानेश कुमार को हिंसा मुक्त चुनाव का श्रेय दिया जा रहा है जो 70 सालों में नहीं हुआ।
17: अरे ममता दीदी कलकत्ते में क्यों नहीं है? हम लोग तो कलकत्ते में उसको बुला रहे, इतना पूजा उसको इंतजार कर रहे। अरे भैया कॉकरोच केकड़ा ये सब लेकर क्या होगा? ममता जी चले ये कलकत्ते में।
18: बीजेपी की तरफ से लखनऊ में महिला मोर्चा के प्रदर्शन की अब ये तस्वीर देखी। बीजेपी ने ये प्रदर्शन राहुल गांधी के खिलाफ किया, जिन पर दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मियों से बदसलूकी का आरोप। इसे लेकर बीजेपी की तरफ से वीडियो भी जारी किए गए जिसमें प्रियंका गांधी एक महिला पुलिसकर्मी को कोहनी मारती दिखती है, तो राहुल गांधी पर एक महिला पुलिसकर्मी को गलत तरीके से छूने का आरोप बीजेपी लगाती है।
19: लखनऊ में आज बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन है, कांग्रेस पार्टी कार्यालय घेराव करने का कार्यक्रम है और इस समय पर मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से ये महिला मोर्चा का प्रदर्शन शुरू हुआ है और तमाम महिलाएं और उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं।
20: खुद राहुल गांधी महिलाओं को ऐसे छू रहे, प्रियंका गांधी यूं कोनी मार रही है, तो हम इस सम्मान के लिए जा रहे हैं कि इस वर्दी का भी आप लोग को सम्मान करना सीखना चाहिए, वो आपके लिए खड़े 24/7।
18: बीजेपी महिला मोर्चा ने लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के पास और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना के आवास के पास लगे पोस्टर भी फाड़ दिए। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा ने एक अलग मुद्दे पर प्रदर्शन किया, मामला जेएनयू में प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर छात्राओं के यौन शोषण का है, जिसके बाद उन्हें जेएनयू से बर्खास्त कर दिया गया। अकोइजम कांग्रेस सांसद भी हैं, इसलिए कांग्रेस की चुप्पी पर बीजेपी ने उसे घेर लिया।
21: राहुल गांधी महिला पुलिस महिला कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और एक व्यक्ति जिस पे आरोप साबित हो गया, जिसको यूनिवर्सिटी से हटाया गया है, पर वो फिर भी उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने उनके लिए राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने एक शब्द नहीं बोला है उनके, क्या उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी उस व्यक्ति के साथ?
18: ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी को घेरने में राहुल समेत पूरा विपक्ष जुटा है, वहीं बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को निशाने पर लिया जा रहा है। भले ही मुद्दे अलग अलग हों, लेकिन दोनों के बीच बढ़ते टकराव ने बता दिया है कि सियासी पारा बढ़ा रहेगा।
7: और अब उत्तर प्रदेश चुनावों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, तो क्या अयोध्या से इस बार योगी बनाम अखिलेश के बीच में मुकाबला होगा? दरअसल अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी, सलाह दी थी और उसके बाद योगी ने कह दिया कि हो जाए, अखिलेश चेलों को छोड़कर खुद अयोध्या से उतर जाएं।
22: पीडीए का वास्तविक मतलब है प्रदेश डुबाऊ अलायंस।
3: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने पीडीए का मतलब समझाने के बाद वो बात कही जिसे नहले पर दहला कहा जा सकता है।
22: इस अराजकता को स्वीकार करने वाली नहीं, मैं तो आपको ऑफर करता हूं, आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से, चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं, तय हो जाए, आप भी आइए और मैं भी आता हूं। लड़ाई चेलों से क्यों? लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए और उसके लिए मैं कह रहा हूं आइए आप भी। क्या इससे पहले संभव था ये?
3: तो योगी ने अखिलेश को चैलेंज दिया है कि हिम्मत है तो लड़ाई आमने सामने लड़ो। योगी का यह बयान अखिलेश के अयोध्या से चुनाव लड़ने की सलाह के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री अगर अयोध्या को लेकर इतने ही आश्वस्त हैं तो अयोध्या से चुनाव लड़ जाएं।
0: अगर वो अयोध्या से इतने ही आश्वस्त हैं और जिन्होंने ये कहा हो कि पानी का दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा 15 दिन के अंदर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अगर वो इतने ही अयोध्या वासियों से अस्वस्थ है तो उन्हें यही फैसला लेना चाहिए, उनके बीच में अगला चुनाव लड़ना चाहिए। ये चुनौती नहीं है, ये सलाह है।
3: अखिलेश ने साफ कहा कि ये उनका चैलेंज नहीं, मुख्यमंत्री को सियासी सलाह है, लेकिन योगी ने इसे स्वीकार करके गेंद अखिलेश के पाले में फेंक दी कि अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाओ, पता चल जाएगा किसमें कितना दम है।
22: ये माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले पेशेवर अपराधियों के सामने उनकी मौत पर उनकी कब्र में जाकर के फातिया पढ़ने वाले लोग ये हम लोगों से क्या लड़ पाएंगे? इनकी हिम्मत नहीं है, ये पहले ही जनता इनकी छुट्टी कर चुकी है। एक खिसियानी बिल्ली खंपा नोचे जैसी स्थिति इन लोगों की हो चुकी है।
3: योगी ने कहा कि आने वाले चुनाव में 80% सीटें एनडीए जीतेगा और 20% इंडिया गठबंधन, क्योंकि ये जनता ने तय कर लिया है।
22: जिस अयोध्या में जय श्री राम बोलने पर आपकी सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, जिस अयोध्या के सामने आपने केवल और केवल बैरियर खड़ा किए थे, आज वो अयोध्या एक बार फिर से राम राज्य के नए उदाहरण बनकर के त्रेता युग का स्मरण करा रही है।
3: योगी के इस सियासी हमले का अखिलेश ने तुरंत जवाब देते हुए लोकसभा चुनाव याद दिलाते हुए कहा कि इस बार जनता घमंड का सारा पानी उतार देगी। लोकसभा भूल गए क्या? उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार अखिलेश यादव की तरफ से लगातार खुद को बीजेपी के मुकाबले सनातन के मोर्चे पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को इसलिए अखिलेश की तरफ से लगातार उठाया जाता है। दावा किया जाता है कि बीजेपी को वहां से प्रत्याशी नहीं मिल रहा, लेकिन योगी ने अखिलेश के नहले पर दहला मारकर गेंद उनके पाले में डाल दी है।
22: क्या इससे पहले संभव था?
3: आज तक ब्यूरो
22: मोदी जी का रीजन है।
7: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन पर सख्ती के बाद सामान्य हो रहे हैं हालात। खुले गए सभी मेट्रो स्टेशन, आज खुलेंगे सभी बाजार, लेकिन सीजेपी ने आज फिर आंदोलन का किया ऐलान। सीजेपी के प्रदर्शन पर बीजेपी का ताबड़तोड़ हमला, कहा सड़कों पर अराजकता की साजिश, राहुल का बयान, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जारी रहेगी जंग। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मेट्रो स्टेशन बंद करने और लोगों को हिरासत में रखने के खिलाफ याचिका, सोमवार को बड़े मार्च की तैयारी में विपक्ष। चेन्नई में छात्रों के बीच राहुल की गूंज, कहा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं पीएम मोदी, तमिल भाषा और संस्कृति पर प्रधानमंत्री के हमले का जड़ा आरोप। अब सीएम योगी ने अखिलेश को दी चुनौती, कहा अयोध्या से चुनाव में हो जाए आमना सामना, अखिलेश का जवाब, हमारा युवा पीडीए प्रहरी ही काफी। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन नहीं होने दिया और अब सरकार इसे अपनी सफलता मान सकती है। प्रदर्शनकारियों को ये अपनी कामयाबी लग सकती है कि उन्हें रोकने के लिए हजारों पुलिस वालों का जमावड़ा लगाना पड़ा, ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी, मेट्रो रोकनी पड़ी, बॉर्डर बंद करने पड़े, लेकिन सवाल यह है अब कि आगे क्या होगा।
1: अक्टूबर की तारीख पहले से तय थी। दिल्ली पुलिस को अंदाजा था कि हालात क्या हो सकते हैं, इसीलिए ट्रेनें रद्द की, जंतर मंतर के आसपास का इलाका छावनी बनाया, इंटरनेट बंद किया, मेट्रो स्टेशन भी बंद रहे और जो प्रदर्शनकारी जहां दिखा वहीं धरना। हंगामा तो हुआ, दौड़ भाग भी हुई, लेकिन प्रदर्शन नहीं हो पाया। दिल्ली पुलिस ने नेताओं को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा, सबको प्रदर्शन शुरू करने से पहले ही प्रिवेंटिव कस्टडी में भेज दिया। जिनकी कॉल पर इस प्रदर्शन का ऐलान किया गया था वो अभिजीत दीपके तो फ्लाइट के अंदर से ही पकड़ लिए गए। दोपहर में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी उतरी, लेकिन उन्हें भी हिरासत में लिया गया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कई दिनों से 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की कॉल दी हुई थी। वो लगातार लोगों से दिल्ली आने की अपील कर रहे थे। जब ये खबरें आने लगी कि ट्रेन और मेट्रो कैंसिल हो रही हैं, भारी पुलिस बल की तैनाती हो रही है, तो तब भी दीपके चैलेंज कर रहे थे। लेकिन सुबह 10 बजे के करीब जैसे ही उनकी फ्लाइट दिल्ली में लैंड हुई, दिल्ली पुलिस फ्लाइट में ही चढ़ गई और वहीं से उन्हें उठा लिया। अभिजीत दीपके के साथ सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को भी पुलिस ले गई। इसके बाद दीपके ने एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो में कहा कि अब आंदोलन की कमान अजिंक्य शिंदे संभालेंगे।
2: हेलो एवरीवन, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इसका मतलब मैं, आशु और सौरभ, हम तीनों अरेस्ट हो चुके हैं। हमारे बाद इस मूवमेंट को अजिंक्य लीड करेगा, तो आप जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज फॉलो अजिंक्य शिंदे, ही विल बी कैरिंग फॉरवर्ड द कॉकरोच जनता पार्टी आफ्टर आशुतोष, मी एंड सौरभ। थैंक यू।
1: पुलिस ने पहले नेता को गिरफ्तार किया और फिर एक एक करके कार्यकर्ताओं को धरा, जो जहां दिखा वहीं से उठा लिया। शनिवार को दिल्ली में जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, पालिका बाजार और जनपद के आसपास की सड़कों पर खूब हंगामा रहा। ले बस, ले बस। सुबह से ही प्रदर्शनकारी जमा होने शुरू हो गए थे, लेकिन पुलिस ने इंतजाम ऐसे किए थे कि किसी को भी कदम जमाने का मौका नहीं मिला।
3: उसी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं और शांति बनाए रखने की अपील भी है और उसी के मेजर्स लिए जा रहे हैं।
4: कितने लोगों को डिटेन किया होगा नई दिल्ली इलाके से, कितने लोगों
3: प्रिवेंटिव एक्शंस ले रहे हैं?
4: अच्छा, कुछ लोगों पर पथराव भी किया पुलिसकर्मियों को, चोट आई?
3: हाँ, एक जगह पर पथराव।
1: दिल्ली पुलिस के जवान तो थे ही, पैरामिलिट्री भी भरपूर थी और यूपी पुलिस के जवानों को भी बुलाया गया था, क्योंकि दिल्ली पुलिस किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए तो जहां भी प्रदर्शनकारी मिला तुरंत पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, बसों में भरा और डिटेंशन सेंटर भेज दिया।
5: कनॉट प्लेस के रीगल थिएटर के पास की ये तस्वीरें, जहां पे बड़ी तादाद में आपको डिटेंशन दिखाई देगा। पैरा फोर्सेस के जवान हैं जो डिटेन करके प्रदर्शनकारियों को ले जा रहे हैं। देखिए, बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी यहां पहुंचे थे, अब नारेबाजी करते हुए वो जा रहे हैं। सब युवा हैं, यंगस्टर्स हैं जिनको डिटेन किया गया है। दिल्ली पुलिस की ये गाड़ी है, रॉयड कंट्रोल व्हीकल है, उसमें डिटेन करके इन युवाओं को, प्रदर्शनकारियों को ले जा रहा है। दूसरी गाड़ी जो आप देख रहे हैं, उस गाड़ी के अंदर राकेश चुकैत गुट के किसान नेताओं को डाला गया है। आप देखिए, एक तरह से जेल नुमा स्ट्रक्चर है उसके अंदर। आप जब एक बार डाल दिए जाते हैं गाड़ी के अंदर, तो कई बार हमने देखा बीते दिनों में कि प्रोटेस्टर्स गाड़ी से बाहर निकल कर, डिटेंशन से बाहर निकल कर आगे चले गए, लेकिन ये जो गाड़ियां लाई गई हैं वो जेल नुमा स्ट्रक्चर है। प्रदर्शनकारियों को खींच कर गाड़ियों के अंदर डाला जा रहा है।
1: सबसे ज्यादा हल्ला रहा कनॉट प्लेस और इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा पुलिस की तैनाती थी। पुलिस को पता था कि प्रदर्शनकारी यहीं जुटेंगे, इसीलिए सुबह से ही दिल्ली पुलिस यहाँ तैनात थी। वरिष्ठ अधिकारियों की भी तैनाती थी।
6: इस समय मैं दिल्ली के इनर सर्कल की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि पालिका बाजार के पास आप देख सकते हैं कैसे भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर, उन्होंने अपना एक्शन मार्च शुरू कर दिया है। सीजेपी की तरफ से आज एक बड़ी कॉल दी गई थी, प्रोटेस्ट मार्च की कॉल दी गई थी, उसी को देखते हुए मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कैसे भारी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं यहाँ पर पहुंचे। क्योंकि दूसरी तरफ मैं आपको जनपद की तरफ दिखाना चाहूंगा कैसे भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको काबू करने के लिए जो दिल्ली पुलिस का एक्शन है यहाँ पर शुरू हो चुका है। आपने देखा कि कैसे रीगल सिनेमा से भारी मात्रा में जो डिप्लॉयमेंट है इस तरफ मूव करती है, जनपद की तरफ मूव करती है, इनर सर्कल होते हुए, पालिका बाजार होते हुए। और वही तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कैसे प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए अब जो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज का जो एक्शन है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक
1: दिक्कत ये थी कि प्रदर्शनकारी यहाँ गलियों के अंदर घुस जा रहे थे, पुलिस लगातार उन्हें दौड़ा रही थी। जैसे ही पुलिस दौड़ाती तो वो एक गली से घुसकर दूसरी गली से निकल आते, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवानों को साफ ऑर्डर था कि किसी को नहीं छोड़ना है, सबको प्रिवेंटिव कस्टडी में लेना है।
7: कनॉट प्लेस जनपद का ये इलाका है और यहाँ पर एक एक करके जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। धीरे धीरे कर यहाँ पर जो भीड़ थी वो बढ़ रही थी प्रदर्शनकारियों की, और उसके बाद जो अलग अलग छोटी छोटी गलियाँ हैं इन इलाकों में, वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको डिटेन किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, और उनको अब गलियों से ढूंढ ढूंढ कर जो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो डिटेन करके लेकर जा रही है। तो अलग अलग तस्वीरें देखिए चारों तरफ, कहीं भी अगर आपको मेरे कैमरा पर्सन हिमांशु दिखाएंगे तो एक एक करके जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहाँ पर डिटेन किया गया है। तो एक तस्वीर जो थी वो यहाँ पर थोड़ी देर से हम लोग देख रहे थे कि प्रदर्शनकारी एक एक कर यहाँ पर जमा हो रहे थे, और उसके बाद अचानक से जो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो यहाँ पर आती हैं और इन प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर लेकर गई।
1: कॉकरोच जनता पार्टी की प्रदर्शन की कॉल पर ये प्रदर्शनकारी जमा तो हो गए, लेकिन शायद इन्हें ये अंदाजा नहीं था कि पुलिस की इतनी बड़ी तैनाती होगी। ये सब जंतर मंतर जाना चाहते थे, लेकिन वहां से कई किलोमीटर पहले ही पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया।
5: प्रदर्शनकारियों का टेंपल रन शुरू हो गया है, प्रदर्शनकारियों का टेंपल रन शुरू हो गया है। वो एक तरह से इस सेक्टर से दौड़ के भाग रहे हैं और पुलिस उनको यहां से हटाते हुए दिखाई दे रही है। बीते एक घंटे से यहाँ पर ये प्रदर्शनकारी जेंजी युवा प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे। ज्ञानेश कुमार सीसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वोट चोरी के बारे में नारेबाजी कर रहे थे, जो विपक्ष का आरोप है उसी तरह के नारेबाजी आपको नारेबाजी यहाँ पर सुनाई दे रहा था। बीते एक घंटे से यहाँ ये जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन अब अचानक से दिल्ली पुलिस एक्शन बोर्ड में आती है और इस सेक्टर में भी जो प्रदर्शनकारी थे उनको हटाया जा रहा है।
8: बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत। ये देश में जो सरकार है ना, बहुत गलत कर रही है सर, बहुत ज्यादा गलत कर रही है।
5: हटाया जा रहा है। कहाँ आए थे आप लोग?
9: प्रोटेस्ट
5: करने के लिए आए थे। अभिजीत को डिटेन किया गया, उसके बावजूद आप लोग यहाँ पहुँच गए हैं।
9: वो भले से उनको डिटेन कर लिया गया हो, लेकिन हम उनके सपोर्ट में हैं।
5: किसी पार्टी से हैं आप?
9: नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं बस उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, कांग्रेस जनता पार्टी
5: को। आप लोग नारे लगा रहे थे इसलिए डिटेन हो रहे हैं?
9: हाँ जी, सपोर्ट कर रहे थे इसलिए हमको डिटेन किया गया है।
1: प्रदर्शनकारियों ने शाम शाम तक भी कोशिश की कि किसी भी तरीके से वो कनॉट प्लेस से जंतर मंतर की तरफ चले जाएं, लेकिन पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी। पुलिस ने किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया।
6: दूसरी तरफ मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैसे दिल्ली पुलिस ने यहां पर डिटेन करना शुरू कर लिया। देखिए, जो प्रदर्शनकारी थी उनको उठाना शुरू कर दिया। वहीं मैं अपना कैमरा सहयोगी अजय जी से कहूंगा एक तस्वीर उस तरफ की भी दिखाएं कि जैसे ही यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचते हैं, प्रदर्शनकारी भागने लग जाते हैं। तस्वीरें मैं आपको इनर सर्कल की दिखा रहा हूं, एन ब्लॉक की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे जैसे ही प्रदर्शनकारी देखते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान उनको डिटेन करने के लिए आ रहे हैं, वो भागते हुए दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं। और पहली बार नहीं, सुबह से देखा जा रहा है कि जैसे ही प्रदर्शनकारी इकट्ठे होते हैं जनपद के पास, रीगल सिनेमा के पास, ब्लॉक ए के पास, वहीं देखा जाता है कि भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं इकट्ठे होकर उनको डिटेन करना शुरू कर देते हैं।
1: जब पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को दौड़ा रही थी तो कुछ प्रदर्शनकारी बंगला साहिब गुरुद्वारे के अंदर भी चले गए। दिल्ली पुलिस ने उनका पीछा किया लेकिन गुरुद्वारे के गेट पर रुक गए और अंदर नहीं गए।
10: अभी भी जो सबसे बड़ा चैलेंज दिल्ली पुलिस के लिए, यहाँ अगर सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो वहाँ वो बना हुआ है ये गुरुद्वारा बंगला साहिब, क्योंकि इसके अंदर कई सारे जो प्रदर्शनकारी हैं वो जाकर के रुके हुए हैं और हर कुछ देर में बाहर आते हैं, नारे लगाते हैं और जैसे ही पुलिस उन्हें पकड़ने जाती है वापस अंदर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस उन्हें गुरुद्वारे के अंदर घुस के नहीं पकड़ेगी। और याद रखिए, ज्यादातर सीजेपी के लोग नहीं है, ये सारे लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के, एसएफआई के और आयसा के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लोग यहाँ पर बहुत अच्छी रणनीति बनाकर आए। उन्हें पता था कि एक रिलीजियस प्लेस के अंदर, एक धार्मिक स्थल के अंदर पुलिस घुसेगी नहीं। मैसेजिंग है ये अंदर चली गई है, जिसकी वजह से आप देखें तो गेट्स के पास आपको अब प्रदर्शनकारी नहीं दिखेंगे, प्रदर्शनकारी अंदर की तरफ है अब, और बाहर बहुत भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है। और जैसे ही पुलिस थोड़ी सी पीछे होती है, 10 कदम पीछे होती है, तो अचानक से अंदर से कुछ लोग आते हैं और गेट के अंदर ही खड़े होकर नारे लगाते हैं और फिर वापस अंदर भाग जाते हैं। तो ये जो है पिछले 1-1.5 घंटे से कुछ ऐसा ही जो खेल है ये दिल्ली पुलिस के साथ चल रहा है, लेकिन जो भी बाहर आता है उसे तुरंत पकड़ के यहां से डिटेन करके तुरंत हटाया जा रहा है और धीरे धीरे अंदर रहने वाले लोगों की संख्या भी कम होती हुई अब दिखाई दे रही है।
1: आज तक ब्यूरो।
0: गणेश कुमार को लेकर विपक्ष भी सड़कों पर है और सीजेपी के समर्थन में अरविंद केजरीवाल और ममता बैनर्जी भी आए। लेफ्ट पार्टियां भी सड़कों पर उतरी और कांग्रेस पार्टी दूर ही दिखाई थी।
11: 1.5 घंटे से दिल्ली की सड़कों पर हम लोगों को घुमा रहे हैं, हमें पता नहीं कहां ले जा रहे हैं, कौन से थाने में ले जा रहे हैं।
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही कांग्रेस पार्टी सीजेपी के आंदोलन से दूर रही। उसे आम आदमी पार्टी, लेफ्ट और टीएमसी ने अपना समर्थन दिया। ममता मुंह पर बैंडेड लगाकर धरने पर बैठ गई, लेकिन ममता बैनर्जी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस वैन में ममता बैनर्जी को ले जाती दिखी, कहा कि वो इस मामले में झुकेंगे नहीं।
12: আমরা আমাদের বাড়ির পাশে যে বাস স্ট্যান্ড, প্রথমে তো আমরা যন্ত্র মন্ত্র যেতে চেয়েছিলাম, সিজেপি আমাদের ইনভাইট আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, স্টুডেন্ট ইউথরা তাদের সবাইকে অ্যারেস্ট করেছে, মিডিয়াকে অ্যারেস্ট করেছে, অল পলিটিক্যাল লিডারদের অ্যারেস্ট করেছে আর ঘোরাচ্ছে। তারপরে আমরা যখন বাড়ির সামনে একটা বেঞ্চ নিয়ে একটা বাস স্ট্যান্ডে বসলাম, তখন আমাদের যেতে দেওয়া হলো না, কিন্তু আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বসেছিলাম। সেভ ইন্ডিয়া
13: মমতা ব্যানার্জি কি তরহ অরবিন্দ কেজরিওয়াল ভি সিজেপি কা সমর্থন করনে উতরে লেকিন উনহে ভি হিরাসত মে লে লিয়া গয়া। কেজরিওয়াল কে সাথ আম আদমি পার্টি কে সঞ্জয় সিং, সৌরভ ভারদ্বাজ সমেত কই নেতা প্রদর্শন করনে পৌঁছে থে লেকিন উনহে হিরাসত মে লেকর পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানে লে যায়া গয়া।
14: বহুত গুসসে মে হ্যায় জো জো লোগ মেরি ইয়ে বাত সুন রহে হ্যায়। मैं पूरे देश के लोगों को, युवाओं को हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, हम सब लोगों को मिलके देश को बचाना होगा। आप जहां भी हैं देश में, अभी निकलिए अपने घर से, दिल्ली की तरफ कूच कीजिए, दिल्ली आइए, स्कूटर पे आइए, पैदल आइए, बस में आइए, हवाई जहाज में आइए, ट्रेन में आइए, जैसे आ सकते हैं आइए, दिल्ली की तरफ कूच कीजिए। जहां मोदी जी आपको रोके वहीं बैठ जाओ, उसी जगह को जंतर मंतर बना दो, पूरे देश को जंतर मंतर बना दो। लेकिन मोदी जी को वोट चोरी करने से रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये देश नहीं बचेगा।
13: अरविंद केजरीवाल ने पहले ही इस प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान कर दिया था। ममता और केजरीवाल के अलावा पुलिस ने केरल के पूर्व सीएम पिनराय विजयन, त्रिपुरा के पूर्व सीएम माणिक सरकार और सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास को भी हिरासत में लिया। यूट्यूबर ध्रुव राठी को सुबह ही गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया था। आईसा अध्यक्ष नेहा बोरा को भी हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन से दूरी बनाकर रखी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चेन्नई में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से दक्षिण भारत में इस मामले को गर्माने में लगे हैं।
0: दिल्ली की तरह मुंबई में भी सीजेपी समर्थकों की तरफ से प्रदर्शन करने की कोशिश हुई लेकिन पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया। तो चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने वहां पर उन्हें हिरासत में ले लिया।
15: मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में जिसने भी प्रदर्शन करने की कोशिश की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसमें महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी भी शामिल।
16: नेशनल कॉलेज से उठाया, बांद्रा पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, सांता क्रूज पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, डीएन नगर ले आए। डीएन नगर में कुछ खास रिसेप्शन तैयार किया होगा, देखते रहिए। ये पुलिस की गुलामी की निशानी है, बेचारे वो भी क्या कर सके, सत्ता वालों के चाकर जो बन गए। एक दिन तख्ता पलट होगा, फिर हिसाब किया जाएगा।
15: तुषार गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद आदित्य ठाकरे अपने पार्टी नेताओं के साथ वहां पहुंचे।
17: जिस देश में गांधी जी को डिटेन किया जाता है और इतना डर है भाजपा के मन में कि जैसे ही हम यहाँ आने वाले थे उनको लेके गए बुरेवली, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इतना मन में डर क्यों है? भले वो गांधी जी के बारे में हो या हमारे बारे में हो या अभिजीत के बारे में हो या रत्ना या सौरभ या राहुल जी के बारे में हो। आपने ये भी देखा होगा राहुल जी जैसे ही चुनाव आयोग से मिलने गए कितनी बड़ी तादाद में फौज लगाई गई। ये सारी फोर्स जो बॉर्डर पे होनी चाहिए वो आप दिल्ली में लगा रहे हो, इतना डर क्यों है आपके मन में? किससे डरते हो आप? क्यों भय है इतना मन में?
15: मुंबई में अभिनेता और आमिर खान के भांजे इमरान खान भी सीजेपी के समर्थन में प्रदर्शन करने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया।
18: मेरा ये मानना है कि इस देश में और इस शहर में वी शुड ऑलवेज हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ऐसा ऐसी भी क्या खतरा है? आप यहाँ देख सकते हैं कितनी सारी पुलिस के लोग हैं।
19: दिल्ली में भी प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया गया, दिल्ली में भी डिटेन किया गया।
18: आई बिलीव दैट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू शो अप एंड शो दैट देयर दैट वी आर नॉट अफ्रेड एंड दैट देयर इज एक्चुअली नो डेंजर एंड नो थ्रेट ओवर हियर। द ओनली थ्रेट इज फ्रॉम ऑल ऑफ दीस पीपल अटैकिंग विद स्टिक्स।
15: मुंबई में प्रदर्शन को देखते हुए सुबह से पुलिस ने तैयारी कर रखी थी। ड्रोन से प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने के इंतजाम भी देखे गए।
19: पुलिस को गाड़ी को रोकने का यहाँ पर भरसक कोशिश थी लेकिन प्रदर्शनकारी जो है वो तो देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी जो है वो सुन नहीं रहे हैं और पुलिस पे जो है वो झड़प है वो बढ़ती जा रही है। पुलिस डिटेन कर रही है लेकिन प्रदर्शनकारी जो है वो इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं और ये जो साइट है इसे हेरिटेज साइट पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि हेरिटेज साइट है, यहाँ प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है। लेकिन जैसा कि देख सकते हैं पुरजोर विरोध जो है प्रदर्शनकारियों द्वारा किया जा रहा है और पुलिस जो है इन्हें डिटेन करने की भरपूर कोशिश कर रही है।
15: चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेता चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसके बाद मनीष सिसोदिया समेत कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
20: बस में किस तरह जो है आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को, लीडर्स को डिटेन किया जा रहा है भर भर, और मनीष सिसोदिया आप देख सकते हैं बस के अंदर बैठे हैं। मनीष सिसोदिया को बस के अंदर बिठाया गया है और यहां से हटाया गया है। सो अभी तक तो पुलिस जो है वो कामयाबी पुलिस को मिली है कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक नहीं जाने गया, लेकिन मनीष सिसोदिया आप देख सकते हैं कि विंडो में बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, रेड शर्ट में हैं और लगातार जो है यहां पर डिटेंशन जो अब हो रही हैं। और ये बस जो कि जो बस जिसमें आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और लीडर्स को भरा गया है उनको यहां से मूव करके लेके जाया जा रहा है। सो जब मेन लीडरशिप चाहे वो सोनिया मान हो, मनीष सिसोदिया हो, हरपाल चीमा हो और दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको यहां से मूव कराया जा रहा है।
15: दक्षिण में बेंगलुरु और चेन्नई में भी प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी सड़कों पर प्रदर्शनकारी निकले, जहां पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आईं।
0: बीजेपी की तरफ से भी विरोध का मोर्चा संभाला गया और दिल्ली में कांग्रेस सांसद पर छात्राओं से छेड़छाड़, तो लखनऊ में महिला पुलिसकर्मियों से राहुल प्रियंका की तरफ से की गई कथित बदसलूकी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा सड़कों पर निकल गया।
21: गणेश कुमार जी को पद्म भूषण से पुरस्कृत करना चाहिए।
15: मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर भले ही विपक्षी दल और सीजेपी प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन बंगाल बीजेपी की तरफ से ज्ञानेश कुमार को हिंसा मुक्त चुनाव का श्रेय दिया जा रहा है जो 70 सालों में नहीं हुआ।
21: अरे ममता दीदी कलकत्ता में क्यों नहीं है? हम लोग तो कलकत्ते में उसको बुला रहे, इतना पूजा उसको इंतजार कर रहे। अरे भैया कॉकरोच केकड़ा ये सब लेकर क्या होगा? ममता जी चले ये कलकत्ते में।
15: बीजेपी की तरफ से लखनऊ में महिला मोर्चा के प्रदर्शन की अब ये तस्वीर देखिए। बीजेपी ने ये प्रदर्शन राहुल गांधी के खिलाफ किया, जिन पर दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मियों से बदसलूकी का आरोप है। इसे लेकर बीजेपी की तरफ से वीडियो भी जारी किए गए, जिसमें प्रियंका गांधी एक महिला पुलिसकर्मी को कोहनी मारती दिखती है, तो राहुल गांधी पर एक महिला पुलिसकर्मी को गलत तरीके से छूने का आरोप बीजेपी लगाती है।
22: लखनऊ में आज बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन है, कांग्रेस पार्टी कार्यालय घेराव करने का कार्यक्रम है और इस समय पर मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से ये महिला मोर्चा का प्रदर्शन शुरू हुआ है और तमाम महिलाएं और उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं।
23: खुद राहुल गांधी महिलाओं को ऐसे छू रहे, प्रियंका गांधी यूं कोनी मार रही है, तो हम इस सम्मान के लिए जा रहे हैं कि इस वर्दी का भी आप लोग को सम्मान करना सीखना चाहिए, वो आपके लिए खड़े 24/7।
15: बीजेपी महिला मोर्चा ने लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के पास और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना के आवास के पास लगे पोस्टर भी फाड़ दिए। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा ने एक अलग मुद्दे पर प्रदर्शन किया, मामला जेएनयू में प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोईजम पर छात्राओं के यौन शोषण का है, जिसके बाद उन्हें जेएनयू से बर्खास्त कर दिया गया। अकोईजम कांग्रेस सांसद भी हैं, इसलिए कांग्रेस की चुप्पी पर बीजेपी ने उसे घेर लिया।
24: राहुल गांधी महिला पुलिस महिला कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और एक व्यक्ति जिस पे आरोप साबित हो गया, जिसको यूनिवर्सिटी से हटाया गया है, पर वो फिर भी उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने उनके लिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने एक शब्द नहीं बोला है उनके लिए। क्या उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी उस व्यक्ति के साथ?
15: ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी को घेरने में राहुल समेत पूरा विपक्ष जुटा है, वहीं बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को निशाने पर लिया जा रहा है। भले ही मुद्दे अलग अलग हों, लेकिन दोनों के बीच बढ़ते टकराव ने बता दिया है कि सियासी पारा बढ़ा रहेगा।
0: और अब उत्तर प्रदेश चुनावों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, तो क्या अयोध्या से इस बार योगी बनाम अखिलेश के बीच में मुकाबला होगा? दरअसल अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी, सलाह दी थी, और उसके बाद योगी ने कह दिया कि हो जाए, अखिलेश चेलों को छोड़कर खुद अयोध्या से उतर जाएं।
25: पीडीए का वास्तविक मतलब है प्रदेश डुबाऊ एलायंस।
15: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने पीडीए का मतलब समझाने के बाद वो बात कही जिसे नहले पर दहला कहा जा सकता है।
25: इस अराजकता को स्वीकार करने वाली नहीं, मैं तो आपको ऑफर करता हूं, आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से, चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं। तय हो जाए आप भी आइए और मैं भी आता हूं। लड़ाई चेलों से क्यों? लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए और उसके लिए मैं कह रहा हूं आइए आप भी।
2: तो योगी ने अखिलेश को चैलेंज दिया है कि हिम्मत है तो लड़ाई आमने सामने लड़ो। योगी का यह बयान अखिलेश के अयोध्या से चुनाव लड़ने की सलाह के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री अगर अयोध्या को लेकर इतने ही आश्वस्त हैं तो अयोध्या से चुनाव लड़ जाएं।
3: अगर वो अयोध्या से इतने ही आश्वस्त हैं और जिन्होंने ये कहा हो कि पानी का दूध पानी का पानी हो जाएगा 15 दिन के अंदर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अगर वो इतने ही अयोध्या वासियों से आश्वस्त हैं तो उन्हें यही फैसला लेना चाहिए, उनके बीच में अगला चुनाव लड़ना चाहिए। ये चुनौती नहीं है, ये सलाह है।
2: अखिलेश ने साफ कहा कि ये उनका चैलेंज नहीं, मुख्यमंत्री को सियासी सलाह है, लेकिन योगी ने इसे स्वीकार करके गेंद अखिलेश के पाले में फेंक दी कि अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाओ, पता चल जाएगा किसमें कितना दम है।
25: ये माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले पेशेवर अपराधियों के सामने उनकी मौत पर उनकी कब्र में जाकर के फातिया पड़ने वाले लोग ये हम लोगों से क्या लड़ पाएंगे? इनकी हिम्मत नहीं है, ये पहले ही जनता इनकी छुट्टी कर चुकी है। एक खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी स्थिति इन लोगों की हो चुकी है।
2: योगी ने कहा कि आने वाले चुनाव में 80% सीटें एनडीए जीतेगा और 20% इंडिया गठबंधन, क्योंकि ये जनता ने तय कर लिया है।
25: जिस अयोध्या में जय श्री राम बोलने पर आपकी सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, जिस अयोध्या के सामने आपने केवल और केवल बैरियर खड़ा किए थे, आज वो अयोध्या एक बार फिर से राम राज्य के नए उदाहरण बनकर के त्रेता युग का स्मरण करा रही है।
2: योगी के इस सियासी हमले का अखिलेश ने तुरंत जवाब देते हुए लोकसभा चुनाव याद दिलाते हुए कहा कि इस बार जनता घमंड का सारा पानी उतार देगी। लोकसभा भूल गए क्या? उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार अखिलेश यादव की तरफ से लगातार खुद को बीजेपी के मुकाबले सनातन के मोर्चे पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को इसलिए अखिलेश की तरफ से लगातार उठाया जाता है। दावा किया जाता है कि बीजेपी को वहां से प्रत्याशी नहीं मिल रहा, लेकिन योगी ने अखिलेश के नहले पर दहला मारकर गेंद उनके पाले में डाल दी है।
25: क्या इससे पहले संभव था ये?
2: आज तक ब्यूरो।
25: मोदी जी का विजन है।
0: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

ये दो अराजकतावादी समूह जिसमें एक इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी और दूसरे गुट का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी कर रही है। मैं इन दोनों गुटों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत की जनता पूरी तरह से आपके इन उद्देश्यों को देख रही है और आज जो आपका एनार्किस्ट प्रतिस्पर्धा चल रहा है कि कौन अधिक इस देश में अस्थिरता पैदा कर सकता है, ये आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। कि जिन विदेशी ताकतों से बल पर आप अपनी बिकाऊ राजनीति कर रहे हैं और विदेशी ताकतों के गठजोड़ से भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके नापाक इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। लगातार राज्यों में आपकी हार हताशा दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं इस देश को शांति के साथ आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे, लेकिन मैं आज के दिन आपको चेतावनी देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और देश के राष्ट्रभक्त जनता आपको पूरी तरह से इसका करारा जवाब देगी। और आज जिस प्रकार से तनाव की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, भारत की सरकार इसको कड़ाई से निपटेगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी पूरी तरह से जनता के बीच में रहकर आपके इस मंसूबे को कहीं ना कहीं रोकेगा।

0: दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन पर सख्ती के बाद सामान्य हो रहे हैं हालात। खुले गए सभी मेट्रो स्टेशन, आज खुलेंगे सभी बाजार, लेकिन सीजेपी ने आज फिर आंदोलन का किया ऐलान। सीजेपी के प्रदर्शन पर बीजेपी का ताबड़तोड़ हमला, कहा सड़कों पर अराजकता की साजिश, राहुल का बयान, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जारी रहेगी जंग। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मेट्रो स्टेशन बंद करने और लोगों को हिरासत में रखने के खिलाफ याचिका, सोमवार को बड़े मार्च की तैयारी में विपक्ष। चेन्नई में छात्रों के बीच राहुल की गूंज, कहा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं पीएम मोदी, तमिल भाषा और संस्कृति पर प्रधानमंत्री के हमले का जड़ा आरोप। अब सीएम योगी ने अखिलेश को दी चुनौती, कहा अयोध्या से चुनाव में हो जाए आमना सामना, अखिलेश का जवाब, हमारा युवा पीडीए प्रहरी ही काफी। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन नहीं होने दिया और अब सरकार इसे अपनी सफलता मान सकती है। प्रदर्शनकारियों को ये अपनी कामयाबी लग सकती है कि उन्हें रोकने के लिए हजारों पुलिस वालों का जमावड़ा लगाना पड़ा, ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी, मेट्रो रोकनी पड़ी, बॉर्डर बंद करने पड़े, लेकिन सवाल यह है अब कि आगे क्या होगा।
1: अक्टूबर की तारीख पहले से तय थी। दिल्ली पुलिस को अंदाजा था कि हालात क्या हो सकते हैं, इसीलिए ट्रेनें रद्द की, जंतर मंतर के आसपास का इलाका छावनी बनाया, इंटरनेट बंद किया, मेट्रो स्टेशन भी बंद रहे और जो प्रदर्शनकारी जहां दिखा वहीं धरना। हंगामा तो हुआ, दौड़ भाग भी हुई, लेकिन प्रदर्शन नहीं हो पाया। दिल्ली पुलिस ने नेताओं को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा, सबको प्रदर्शन शुरू करने से पहले ही प्रिवेंटिव कस्टडी में भेज दिया। जिनकी कॉल पर इस प्रदर्शन का ऐलान किया गया था वो अभिजीत दीपके तो फ्लाइट के अंदर से ही पकड़ लिए गए। दोपहर में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी उतरी, लेकिन उन्हें भी हिरासत में लिया गया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कई दिनों से 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की कॉल दी हुई थी। वो लगातार लोगों से दिल्ली आने की अपील कर रहे थे। जब ये खबरें आने लगी कि ट्रेन और मेट्रो कैंसिल हो रही हैं, भारी पुलिस बल की तैनाती हो रही है, तो तब भी दीपके चैलेंज कर रहे थे। लेकिन सुबह 10 बजे के करीब जैसे ही उनकी फ्लाइट दिल्ली में लैंड हुई, दिल्ली पुलिस फ्लाइट में ही चढ़ गई और वहीं से उन्हें उठा लिया। अभिजीत दीपके के साथ सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को भी पुलिस ले गई। इसके बाद दीपके ने एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो में कहा कि अब आंदोलन की कमान अजिंक्य शिंदे संभालेंगे।
2: हेलो एवरीवन, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इसका मतलब मैं, आशु और सौरभ, हम तीनों अरेस्ट हो चुके हैं। हमारे बाद इस मूवमेंट को अजिंक्य लीड करेगा, तो आप जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज फॉलो अजिंक्य शिंदे, ही विल बी कैरिंग फॉरवर्ड द कॉकरोच जनता पार्टी आफ्टर आशुतोष, मी एंड सौरभ। थैंक यू।
1: पुलिस ने पहले नेता को गिरफ्तार किया और फिर एक एक करके कार्यकर्ताओं को धरा, जो जहां दिखा वहीं से उठा लिया। शनिवार को दिल्ली में जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, पालिका बाजार और जनपद के आसपास की सड़कों पर खूब हंगामा रहा।
3: ये बस, ये बस।
1: सुबह से ही प्रदर्शनकारी जमा होने शुरू हो गए थे, लेकिन पुलिस ने इंतजाम ऐसे किए थे कि किसी को भी कदम जमाने का मौका नहीं मिला।
3: उसी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं और शांति बनाए रखने की अपील भी है और उसी के मेजर्स लिए जा रहे हैं।
4: कितने लोगों को डिटेन किया होगा नई दिल्ली इलाके से? कितने लोग
3: प्रिवेंटिव एक्शंस ले रहे हैं?
4: अच्छा, कुछ लोगों पर पथराव भी किया पुलिसकर्मियों को? चोट आई?
3: हाँ, एक जगह पे पथराव।
1: दिल्ली पुलिस के जवान तो थे ही, पैरामिलिट्री भी भरपूर थी और यूपी पुलिस के जवानों को भी बुलाया गया था, क्योंकि दिल्ली पुलिस किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए तो जहां भी प्रदर्शनकारी मिला तुरंत पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, बसों में भरा और डिटेंशन सेंटर भेज दिया।

0: जो डिटेन करके प्रदर्शनकारियों को ले जा रहे हैं। देखिए बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी यहां पहुंचे थे, अब नारेबाजी करते हुए वो जा रहे हैं। सब युवा हैं, यंगस्टर्स हैं जिनको डिटेन किया गया है। दिल्ली पुलिस की ये गाड़ी है, रॉयड कंट्रोल व्हीकल है, उसमें डिटेन करके इन युवाओं को प्रदर्शनकारियों को ले जा रहा है। दूसरी गाड़ी जो आप देख रहे हैं उस गाड़ी के अंदर राकेश टिकैत गुट के किसान नेताओं को डाला गया है। आप देखिए एक तरह से जेल नुमा स्ट्रक्चर है उसके अंदर। आप जब एक बार डाल दिए जाते हैं गाड़ी के अंदर तो कई बार हमने देखा बीते दिनों में कि प्रोटेस्टर्स गाड़ी से बाहर निकलकर डिटेंशन से बाहर निकलकर आगे चले गए, लेकिन ये जो गाड़ियां लाई गई हैं वो जेल नुमा स्ट्रक्चर है। प्रदर्शनकारियों को खींचकर गाड़ियों के अंदर डाला जा रहा है।
1: सबसे ज्यादा हल्ला रहा कनॉट प्लेस और इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा पुलिस की तैनाती थी। पुलिस को पता था कि प्रदर्शनकारी यहीं जुटेंगे, इसीलिए सुबह से ही दिल्ली पुलिस यहाँ तैनात थी। वरिष्ठ अधिकारियों की भी तैनाती थी।
2: इस समय मैं दिल्ली के इनर सर्कल की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि पालिका बाजार के पास आप देख सकते हैं कैसे भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर उन्होंने अपना एक्शन मार्च शुरू कर दिया है। सीजेपी की तरफ से आज एक बड़ी कॉल दी गई थी, प्रोटेस्ट मार्च की कॉल दी गई थी, उसी को देखते हुए मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कैसे भारी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं दिल्ली पुलिस के जवान हैं यहाँ पर पहुंचे। क्योंकि दूसरी तरफ मैं आपको जनपद की तरफ दिखाना चाहूंगा कैसे भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको काबू करने के लिए जो दिल्ली पुलिस का एक्शन है यहाँ पर शुरू हो चुका है। आपने देखा कि कैसे रीगल सिनेमा से भारी मात्रा में जो डिप्लॉयमेंट है इस तरफ मूव करती है, जनपद की तरफ मूव करती है, इनर सर्कल होते हुए पालिका बाजार होते हुए। और वही तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कैसे प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए अब जो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज का जो एक्शन है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक
1: दिक्कत ये थी कि प्रदर्शनकारी यहाँ गलियों के अंदर घुस जा रहे थे, पुलिस लगातार उन्हें दौड़ा रही थी। जैसे ही पुलिस दौड़ाती तो वो एक गली से घुसकर दूसरी गली से निकल आते, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवानों को साफ ऑर्डर था कि किसी को नहीं छोड़ना है, सबको प्रिवेंटिव कस्टडी में लेना है।
3: कनॉट प्लेस जनपद का ये इलाका है और यहाँ पर एक एक करके जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। धीरे धीरे कर यहाँ पर जो भीड़ थी वो बढ़ रही थी प्रदर्शनकारियों की, और उसके बाद जो अलग अलग छोटी छोटी गलियाँ हैं इन इलाकों में वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको डिटेन किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, और उनको अब गलियों से ढूंढ ढूंढ कर जो पुलिस है पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो डिटेन करके लेकर जा रही है। तो अलग अलग तस्वीरें देखिए चारों तरफ, कहीं भी अगर आपको मेरे कैमरा पर्सन हिमांशु दिखाएंगे तो एक एक करके जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहाँ पर डिटेन किया गया है। तो एक तस्वीर जो थी वो यहाँ पर थोड़ी देर से हम लोग देख रहे थे कि प्रदर्शनकारी एक एक कर यहाँ पर जमा हो रहे थे, और उसके बाद अचानक से जो पुलिस है पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो यहाँ पर आती हैं और इन प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर लेकर गई।
1: कॉकरोच जनता पार्टी की प्रदर्शन की कॉल पर ये प्रदर्शनकारी जमा तो हो गए, लेकिन शायद इन्हें ये अंदाजा नहीं था कि पुलिस की इतनी बड़ी तैनाती होगी। ये सब जंतर मंतर जाना चाहते थे, लेकिन वहां से कई किलोमीटर पहले ही पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया।
0: प्रदर्शनकारियों का टेम्पल रन शुरू हो गया है, प्रदर्शनकारियों का टेम्पल रन शुरू हो गया है। वो एक तरह से इस सेक्टर से दौड़ के भाग रहे हैं और पुलिस उनको यहाँ से हटाते हुए दिखाई दे रही है। बीते एक घंटे से यहाँ पर ये प्रदर्शनकारी जेंजी युवा प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे, ज्ञानेश कुमार सीसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वोट चोरी के बारे में नारेबाजी कर रहे थे, जो विपक्ष का आरोप है उसी तरह के नारेबाजी आपको नारेबाजी यहाँ पर सुनाई दे रहा था। बीते एक घंटे से यहाँ ये जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन अब अचानक से दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आती है और इस सेक्टर में भी जो प्रदर्शनकारी थे उनको हटाया जा रहा है।
4: बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत। ये देश में जो सरकार है ना बहुत गलत कर रही है सर, बहुत ज्यादा गलत कर रही है।
0: हटाया जा रहा है, कहाँ आए थे आप लोग?
5: प्रोटेस्ट
0: करने के लिए आए थे। अभिजीत को डिटेन किया गया उसके बावजूद आप लोग यहाँ पहुँच गए हैं।
5: वो भले से उनको डिटेन कर लिया गया हो लेकिन हम उनके सपोर्ट में है।
0: किसी पार्टी से हैं आप?
5: नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं बस उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, कॉकरोच जनता पार्टी को।
0: आप लोग नारे लगा रहे थे इसलिए डिटेन हो रहे हैं?
5: हाँ जी, सपोर्ट कर रहे थे इसलिए हमको डिटेन किया गया है।
1: प्रदर्शनकारियों ने शाम शाम तक भी कोशिश की कि किसी भी

0: तरीके से वो कनॉट प्लेस से जंतर मंतर की तरफ चले जाएं। लेकिन पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी, पुलिस ने किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया।
1: दूसरी तरफ मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैसे दिल्ली पुलिस ने यहां पर डिटेन करना शुरू कर लिया। देखिए जो प्रदर्शनकारी थी उनको उठाना शुरू कर दिया। वहीं मैं अपना कैमरा सहयोगी अजय जी से कहूंगा एक तस्वीर उस तरफ की भी दिखाएं कि जैसे ही यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचते हैं प्रदर्शनकारी भागने लग जाते हैं। तस्वीरें मैं आपको इनर सर्कल की दिखा रहा हूं, एन ब्लॉक की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे जैसे ही प्रदर्शनकारी देखते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवान उनको डिटेन करने के लिए आ रहे हैं वो भागते हुए दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं। और पहली बार नहीं, सुबह से देखा जा रहा है कि जैसे ही प्रदर्शनकारी इकट्ठे होते हैं जनपद के पास रीगल सिनेमा के पास ब्लॉक ए के पास, वहीं देखा जाता है कि भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं इकट्ठे होकर उनको डिटेन करना शुरू कर देते हैं।
0: जब पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को दौड़ा रही थी तो कुछ प्रदर्शनकारी बंगला साहिब गुरुद्वारे के अंदर भी चले गए। दिल्ली पुलिस ने उनका पीछा किया लेकिन गुरुद्वारे के गेट पर रुक गए और अंदर नहीं गए।
2: अभी भी जो सबसे बड़ा चैलेंज दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ अगर सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो वहाँ वो बना हुआ है ये गुरुद्वारा बंगला साहिब, क्योंकि इसके अंदर कई सारे जो प्रदर्शनकारी हैं वो जाकर के रुके हुए हैं और हर कुछ देर में बाहर आते हैं, नारे लगाते हैं और जैसे ही पुलिस उन्हें पकड़ने जाती है वापस अंदर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस उन्हें गुरुद्वारे के अंदर घुस के नहीं पकड़ेगी। और याद रखिए ज्यादातर CJP के लोग नहीं है, ये सारे लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के SFI के और ISA के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लोग यहाँ पर बहुत अच्छी रणनीति बनाकर आए। उन्हें पता था कि एक रिलीजियस प्लेस के अंदर, एक धार्मिक स्थल के अंदर पुलिस घुसेगी नहीं। मैसेजिंग है ये अंदर चली गई है जिसकी वजह से आप देखें तो गेट्स के पास आपको अब प्रदर्शनकारी नहीं दिखेंगे, प्रदर्शनकारी अंदर की तरफ है अब और बाहर बहुत भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है। और जैसे ही पुलिस थोड़ी सी पीछे होती है, 10 कदम पीछे होती है तो अचानक से अंदर से कुछ लोग आते हैं और गेट के अंदर ही खड़े होकर नारे लगाते हैं और फिर वापस अंदर भाग जाते हैं। तो ये जो है पिछले 1-1.5 घंटे से कुछ ऐसा ही जो खेल है ये दिल्ली पुलिस के साथ चल रहा है, लेकिन जो भी बाहर आता है उसे तुरंत पकड़ के यहाँ से डिटेन करके तुरंत हटाया जा रहा है और धीरे धीरे अंदर रहने वाले लोगों की संख्या भी कम होती हुई अब दिखाई दे रही है।
0: आज तक ब्यूरो
3: अनिश कुमार को लेकर विपक्ष भी सड़कों पर है और CJP के समर्थन में अरविंद केजरीवाल और ममता बैनर्जी भी आए। लेफ्ट पार्टियां भी सड़कों पर उतरी और कांग्रेस पार्टी दूर ही दिखाई थी।
4: 1.5 घंटे से दिल्ली की सड़कों पर हम लोगों को घुमा रहे हैं, हमें पता नहीं कहां ले जा रहे हैं, कौन से थाने में ले जा रहे हैं।
5: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही कांग्रेस पार्टी CJP के आंदोलन से दूर रही, उसे आम आदमी पार्टी, लेफ्ट और TMC ने अपना समर्थन दिया। ममता मुंह पर बैंडेड लगाकर धरने पर बैठ गईं, लेकिन ममता बैनर्जी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस वैन में ममता बैनर्जी को ले जाती दिखी, कहा कि वो इस मामले में झुकेंगे नहीं।
6: আমরা আমাদের বাড়ির পাশে যে বাস স্ট্যান্ড, প্রথমে তো আমরা যন্ত্র মন্ত্র যেতে চেয়েছিলাম, CJP আমাদের ইনভাইট আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, স্টুডেন্ট ইউথরা তাদের সবাইকে অ্যারেস্ট করেছে, মিডিয়াকে অ্যারেস্ট করেছে, অল পলিটিক্যাল লিডারদের অ্যারেস্ট করেছে আর ঘোরাচ্ছে। তারপরে আমরা যখন বাড়ির সামনে একটা বেঞ্চ নিয়ে একটা বাস স্ট্যান্ডে বসলাম, তখন আমাদের যেতে দেওয়া হলো না, কিন্তু আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বসেছিলাম। সেভ ইন্ডিয়া, সেভ ডেমোক্রেসি।
5: ममता बैनर्जी की तरह अरविंद केजरीवाल भी CJP का समर्थन करने उतरे, लेकिन उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज समेत कई नेता प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें हिरासत में लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया।
7: बहुत गुस्से में है जो जो लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं, मैं पूरे देश के लोगों को, युवाओं को हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, हम सब लोगों को मिलकर देश को बचाना होगा। आप जहां भी हैं देश में अभी निकलिए अपने घर से, दिल्ली की तरफ कूच कीजिए, दिल्ली आइए, स्कूटर पे आइए, पैदल आइए, बस में आइए, हवाई जहाज में आइए, ट्रेन में आइए, जैसे आ सकते हैं आइए, दिल्ली की तरफ कूच कीजिए। जहां मोदी जी आपको रोके वहीं बैठ जाओ, उसी जगह को जंतर मंतर बना दो, पूरे देश को जंतर मंतर बना दो, लेकिन मोदी जी को वोट चोरी करने से रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये देश नहीं बचेगा।
5: अरविंद केजरीवाल ने पहले ही इस प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान कर दिया था। ममता और केजरीवाल के अलावा पुलिस ने केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन, त्रिपुरा के पूर्व सीएम माणिक सरकार और सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास को भी हिरासत में लिया। यूट्यूबर ध्रुव राठी को सुबह ही गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया था। आईसा अध्यक्ष नेहा बोरा को भी हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन से दूरी बनाकर रखी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चेन्नई में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से दक्षिण भारत में इस मामले को गरमाने में लगे हैं।
3: दिल्ली की तरह मुंबई में भी सीजेपी समर्थकों की तरफ से प्रदर्शन करने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया। तो चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने वहां पर उन्हें हिरासत में ले लिया।
8: मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में जिसने भी प्रदर्शन करने की कोशिश की, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसमें महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी भी शामिल।
9: नेशनल कॉलेज से उठाया, बांद्रा पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, संत क्रूज पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, डीएन नगर ले आए। डीएन नगर में कुछ खास रिसेप्शन तैयार किया होगा, देखते रहिए। ये पुलिस की गुलामी की निशानी है, बेचारे वो भी क्या कर सके, सत्ता वालों के चाकर जो बन गए। एक दिन तख्ता पलट होगा, फिर हिसाब किया जाएगा।
8: तुषार गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद आदित्य ठाकरे अपने पार्टी नेताओं के साथ वहां पहुंचे।
10: जिस देश में गांधी जी को डिटेन किया जाता है और इतना डर है भाजपा के मन में कि जैसे ही हम यहाँ आने वाले थे उनको लेके गए बोरेवली, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इतना मन में डर क्यों है? भले वो गांधी जी के बारे में हो या हमारे बारे में हो या अभिजीत के बारे में हो या रत्ना या सौरभ या राहुल जी के बारे में हो। आपने ये भी देखा होगा, राहुल जी जैसे ही चुनाव आयोग से मिलने गए कितनी बड़ी तादाद में फोर्स लगाई गई। ये सारी फोर्स जो बॉर्डर पे होनी चाहिए वो आप दिल्ली में लगा रहे हो, इतना डर क्यों है आपके मन में? किससे डरते हो आप? क्यों भय है इतना मन में?
8: मुंबई में अभिनेता और आमिर खान के भांजे इमरान खान भी सीजेपी के समर्थन में प्रदर्शन करने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया।
11: मेरा ये मानना है कि इस देश में और इस शहर में वी शुड ऑलवेज हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ऐसा ऐसी भी क्या खतरा है? आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे पुलिस के लोग हैं।
12: दिल्ली में भी प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया गया, दिल्ली में भी डिटेन किया गया।
11: आई बिलीव दैट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू शो अप एंड शो दैट देयर दैट वी आर नॉट अफ्रेड एंड दैट देयर इज एक्चुअली नो डेंजर एंड नो थ्रेट ओवर हियर। द ओनली थ्रेट इज फ्रॉम ऑल ऑफ दीस पीपल अटैकिंग विद स्टिक्स।
8: मुंबई में प्रदर्शन को देखते हुए सुबह से पुलिस ने तैयारी कर रखी थी। ड्रोन से प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने के इंतजाम भी देखे गए।
13: पुलिस को गाड़ी को रोकने का यहाँ पर भरसक कोशिश थी, लेकिन प्रदर्शनकारी जो है वो तो देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी जो है वो सुन नहीं रहे हैं और पुलिस पे जो है वो झड़प है वो बढ़ती जा रही है। पुलिस डिटेन कर रही है लेकिन प्रदर्शनकारी जो है वो इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं। और ये जो साइट है इसे हेरिटेज साइट पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि हेरिटेज साइट है, यहाँ प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है। लेकिन जैसा कि देख सकते हैं पुरजोर विरोध जो है प्रदर्शनकारियों द्वारा किया जा रहा है और पुलिस जो है इन्हें डिटेन करने की भरपूर कोशिश कर रही है।
8: चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेता चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसके बाद मनीष सिसोदिया समेत कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
14: बस में किस तरह जो है आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को, लीडर्स को डिटेन किया जा रहा है भर। और मनीष सिसोदिया आप देख सकते हैं बस के अंदर बैठे हैं, मनीष सिसोदिया को बस के अंदर बिठाया गया है और यहां से हटाया गया है। सो अभी तक तो पुलिस जो है वो कामयाबी पुलिस को मिली है कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक नहीं जाने गया, लेकिन मनीष सिसोदिया आप देख सकते हैं कि विंडो में बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, रेड शर्ट में हैं और लगातार जो है यहां पर डिटेंशन जो अब हो रही हैं। और ये बस जो कि जो बस जिसमें आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और लीडर्स को भरा गया है उनको यहां से मूव करके लेके जाया जा रहा है। सो जब मेन लीडरशिप चाहे वो सोनिया मान हो, मनीष सिसोदिया हो, हरपाल चीमा हो और दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको यहां से मूव कराया जा रहा है।
8: दक्षिण में बेंगलुरु और चेन्नई में भी प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी सड़कों पर प्रदर्शनकारी निकले जहां पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आईं।
3: बीजेपी की तरफ से भी विरोध का मोर्चा संभाला गया और दिल्ली में कांग्रेस सांसद पर छात्राओं से छेड़छाड़, तो लखनऊ में महिला पुलिसकर्मियों से राहुल प्रियंका की तरफ से की गई कथित बदसलूकी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा सड़कों पर निकल गया।
15: गणेश कुमार जी को पद्म भूषण से पुरस्कृत करना चाहिए।
16: मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर भले ही विपक्षी दल और सीजेपी प्रदर्शन कर रहे हों, लेकिन बंगाल बीजेपी की तरफ से ज्ञानेश कुमार को हिंसा मुक्त चुनाव का श्रेय दिया जा रहा है, जो 70 सालों में नहीं हुआ।
15: अरे ममता दीदी कलकत्ते में क्यों नहीं है? हम लोग तो कलकत्ते में उसको बुला रहे हैं, इतना पूजा उसको इंतजार कर रहे हैं। अरे भैया, कॉकरोच केकड़ा ये सब लेकर क्या होगा? ममता जी चले ये कलकत्ते में।
16: बीजेपी की तरफ से लखनऊ में महिला मोर्चा के प्रदर्शन की अब ये तस्वीर देखिए। बीजेपी ने ये प्रदर्शन राहुल गांधी के खिलाफ किया, जिन पर दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मियों से बदसलूकी का आरोप है। इसे लेकर बीजेपी की तरफ से वीडियो भी जारी किए गए, जिसमें प्रियंका गांधी एक महिला पुलिसकर्मी को कोहनी मारती दिखती है, तो राहुल गांधी पर एक महिला पुलिसकर्मी को गलत तरीके से छूने का आरोप बीजेपी लगाती है।
17: लखनऊ में आज बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन है, कांग्रेस पार्टी कार्यालय घेराव करने का कार्यक्रम है और इस समय पर मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से ये महिला मोर्चा का प्रदर्शन शुरू हुआ है और तमाम महिलाएं और उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं।
18: खुद राहुल गांधी महिलाओं को ऐसे छू रहे, प्रियंका गांधी यूं कोनी मार रही है, तो हम इस सम्मान के लिए जा रहे हैं कि इस वर्दी का भी आप लोग को सम्मान करना सीखना चाहिए, वो आपके लिए खड़े 24/7।
16: बीजेपी महिला मोर्चा ने लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के पास और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना के आवास के पास लगे पोस्टर भी फाड़ दिए। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा ने एक अलग मुद्दे पर प्रदर्शन किया, मामला जेएनयू में प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर छात्राओं के यौन शोषण का है, जिसके बाद उन्हें जेएनयू से बर्खास्त कर दिया गया। अकोइजम कांग्रेस सांसद भी हैं, इसलिए कांग्रेस की चुप्पी पर बीजेपी ने उसे घेर लिया।
19: राहुल गांधी महिला पुलिस महिला कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और एक व्यक्ति जिस पे आरोप साबित हो गया, जिसको यूनिवर्सिटी से हटाया गया है, पर वो फिर भी उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने उनके लिए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने एक शब्द नहीं बोला है उनके लिए। क्या उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी उस व्यक्ति के साथ?
16: ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी को घेरने में राहुल समेत पूरा विपक्ष जुटा है, वहीं बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को निशाने पर लिया जा रहा है। भले ही मुद्दे अलग अलग हों, लेकिन दोनों के बीच बढ़ते टकराव ने बता दिया है कि सियासी पारा बढ़ा रहेगा।
3: और अब उत्तर प्रदेश चुनावों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, तो क्या अयोध्या से इस बार योगी बनाम अखिलेश के बीच में मुकाबला होगा? दरअसल अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी, सलाह दी थी, और उसके बाद योगी ने कह दिया कि हो जाए, अखिलेश चेलों को छोड़कर खुद अयोध्या से उतर जाए।
20: पीडीए का वास्तविक मतलब है प्रदेश डुबाऊ अलायंस।
21: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने पीडीए का मतलब समझाने के बाद वो बात कही जिसे नहले पर दहला कहा जा सकता है।
20: इस अराजकता को स्वीकार करने वाली नहीं, मैं तो आपको ऑफर करता हूं, आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं। तय हो जाए, आप भी आइए और मैं भी आता हूं। लड़ाई चेलों से क्यों? लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए और उसके लिए मैं कह रहा हूं आइए आप भी। इससे
21: पहले संभव है? तो योगी ने अखिलेश को चैलेंज दिया है कि हिम्मत है तो लड़ाई आमने सामने लड़ो। योगी का यह बयान अखिलेश के अयोध्या से चुनाव लड़ने की सलाह के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री अगर अयोध्या को लेकर इतने ही आश्वस्त हैं, तो अयोध्या से चुनाव लड़ जाएं।
22: अगर वो अयोध्या से इतने ही आश्वस्त हैं और जिन्होंने ये कहा हो कि पानी का दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा 15 दिन के अंदर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अगर वो इतने ही अयोध्या वासियों से अस्वस्थ है तो उन्हें यही फैसला लेना चाहिए, उनके बीच में अगला चुनाव लड़ना चाहिए। ये चुनौती नहीं है, ये सलाह है।
21: अखिलेश ने साफ कहा कि ये उनका चैलेंज नहीं, मुख्यमंत्री को सियासी सलाह है। लेकिन योगी ने इसे स्वीकार करके गेंद अखिलेश के पाले में फेंक दी कि अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाओ, पता चल जाएगा किसमें कितना दम है।
20: ये माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले पेशेवर अपराधियों के सामने उनकी मौत पर उनकी कब्र में जाकर के फातिया पढ़ने वाले लोग, ये हम लोगों से क्या लड़ पाएंगे? इनकी हिम्मत नहीं है, ये पहले ही जनता इनकी छुट्टी कर चुकी है। एक खिसियानी बिल्ली खंपा नोचे जैसी स्थिति इन लोगों की हो चुकी है।
21: योगी ने कहा कि आने वाले चुनाव में 80% सीटें एनडीए जीतेगा और 20% इंडिया गठबंधन, क्योंकि ये जनता ने तय कर लिया है।
20: जिस अयोध्या में जय श्री राम बोलने पर आपकी सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, जिस अयोध्या के सामने आपने केवल और केवल बैरियर खड़ा किए थे, आज वो अयोध्या एक बार फिर से राम राज्य के नए उदाहरण बनकर के त्रेता युग राज्य के नए उदाहरण बनकर के त्रेता युग का स्मरण करा रही है।
21: योगी के इस सियासी हमले का अखिलेश ने तुरंत जवाब देते हुए लोकसभा चुनाव याद दिलाते हुए कहा कि इस बार जनता उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार अखिलेश यादव की तरफ से लगातार खुद को बीजेपी के मुकाबले सनातन के मोर्चे पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को इसलिए अखिलेश की तरफ से लगातार उठाया जाता है, दावा किया जाता है कि बीजेपी को वहां से प्रत्याशी नहीं मिल रहा, लेकिन योगी ने अखिलेश के नहले पर दहला मारकर गेंद उनके पाले में डाल दी है।
20: क्या इससे पहले संभव था?
21: आज तक ब्यूरो
20: मोदी जी का रीजन है।
3: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन पर सख्ती के बाद सामान्य हो रहे हैं हालात। खुले गए सभी मेट्रो स्टेशन, आज खुलेंगे सभी बाजार, लेकिन सीजेपी ने आज फिर आंदोलन का किया ऐलान। सीजेपी के प्रदर्शन पर बीजेपी का ताबड़तोड़ हमला, कहा सड़कों पर अराजकता की साजिश, राहुल का बयान, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जारी रहेगी जंग। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मेट्रो स्टेशन बंद करने और लोगों को हिरासत में रखने के खिलाफ याचिका, सोमवार को बड़े मार्च की तैयारी में विपक्ष। चेन्नई में छात्रों के बीच राहुल की गूंज, कहा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं पीएम मोदी, तमिल भाषा और संस्कृति पर प्रधानमंत्री के हमले का जड़ा आरोप। अब सीएम योगी ने अखिलेश को दी चुनौती, कहा अयोध्या से चुनाव में हो जाए आमना सामना, अखिलेश का जवाब हमारा युवा पीडीए प्रहरी ही काफी। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन नहीं होने दिया और अब सरकार इसे अपनी सफलता मान सकती है। प्रदर्शनकारियों को ये अपनी कामयाबी लग सकती है कि उन्हें रोकने के लिए हजारों पुलिस वालों का जमावड़ा लगाना पड़ा, ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी, मेट्रो रोकनी पड़ी, बॉर्डर बंद करने पड़े, लेकिन सवाल यह है अब कि आगे क्या होगा।
1: अक्टूबर की तारीख पहले से तय थी। दिल्ली पुलिस को अंदाजा था कि हालात क्या हो सकते हैं, इसीलिए ट्रेनें रद्द की, जंतर मंतर के आसपास का इलाका छावनी बनाया, इंटरनेट बंद किया, मेट्रो स्टेशन भी बंद रहे और जो प्रदर्शनकारी जहां दिखा वहीं धर। हंगामा तो हुआ, दौड़ भाग भी हुई, लेकिन प्रदर्शन नहीं हो पाया। दिल्ली पुलिस ने नेताओं को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा, सबको प्रदर्शन शुरू करने से पहले ही प्रिवेंटिव कस्टडी में भेज दिया। जिनकी कॉल पर इस प्रदर्शन का ऐलान किया गया था वो अभिजीत दीपके तो फ्लाइट के अंदर से ही पकड़ लिए गए। दोपहर में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी उतरी, लेकिन उन्हें भी हिरासत में लिया गया। बीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कई दिनों से 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की कॉल दी हुई थी। वो लगातार लोगों से दिल्ली आने की अपील कर रहे थे। जब ये खबरें आने लगी कि ट्रेन और मेट्रो कैंसिल हो रही हैं, भारी पुलिस बल की तैनाती हो रही है, तो तब भी दीपके चैलेंज कर रहे थे। लेकिन सुबह 10 बजे के करीब जैसे ही उनकी फ्लाइट दिल्ली में लैंड हुई, दिल्ली पुलिस फ्लाइट में ही चढ़ गई और वहीं से उन्हें उठा लिया। अभिजीत दीपके के साथ सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को भी पुलिस ले गई। इसके बाद दीपके ने एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो में कहा कि अब आंदोलन की कमान अजिंक्य शिंदे संभालेंगे।
2: हेलो एवरीवन, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इसका मतलब मैं, आशु और सौरभ, हम तीनों अरेस्ट हो चुके हैं। हमारे बाद इस मूवमेंट को अजिंक्य लीड करेगा, तो आप जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज फॉलो अजिंक्य शिंदे, ही विल बी कैरिंग फॉरवर्ड द कॉकरोच जनता पार्टी आफ्टर आशुतोष, मी एंड सौरभ। थैंक यू।
1: पुलिस ने पहले नेता को गिरफ्तार किया और फिर एक एक करके कार्यकर्ताओं को धरा, जो जहां दिखा वहीं से उठा लिया। शनिवार को दिल्ली में जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, पालिका बाजार और जनपद के आसपास की सड़कों पर खूब हंगामा रहा। सुबह से ही प्रदर्शनकारी जमा होने शुरू हो गए थे, लेकिन पुलिस ने इंतजाम ऐसे किए थे कि किसी को भी कदम जमाने का मौका नहीं मिला।
3: उसी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं और शांति बनाए रखने की अपील भी है और उसी के मेजर्स लिए जा रहे हैं।
4: कितने लोगों को डिटेन किया गया होगा नई दिल्ली इलाके से? कितने लोग
3: प्रिवेंटिव एक्शंस ले रहे हैं?
4: अच्छा, कुछ लोगों पर पथराव भी किया पुलिसकर्मियों को, चोट आई?
3: हाँ, एक जगह पर पथराव।
1: दिल्ली पुलिस के जवान तो थे ही, पैरामिलिट्री भी भरपूर थी और यूपी पुलिस के जवानों को भी बुलाया गया था क्योंकि दिल्ली पुलिस किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए तो जहां भी प्रदर्शनकारी मिला तुरंत पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, बसों में भरा और डिटेंशन सेंटर भेज दिया।
5: कनॉट प्लेस के रीगल थिएटर के पास की ये तस्वीरें जहां पे बड़ी तादाद में आपको डिटेंशन दिखाई देगा। पैरा फोर्सेस के जवान हैं जो डिटेन करके प्रदर्शनकारियों को ले जा रहे हैं। देखिए, बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी यहां पहुंचे थे, अब नारेबाजी करते हुए वो जा रहे हैं। सब युवा हैं, यंगस्टर्स हैं जिनको डिटेन किया गया है। दिल्ली पुलिस की ये गाड़ी है, रॉयड कंट्रोल व्हीकल है, उसमें डिटेन करके इन युवाओं को, प्रदर्शनकारियों को ले जा रहा है। दूसरी गाड़ी जो आप देख रहे हैं, उस गाड़ी के अंदर राकेश चुकैत गुट के किसान नेताओं को डाला गया है। आप देखिए, एक तरह से जेल नुमा स्ट्रक्चर है उसके अंदर। आप जब एक बार डाल दिए जाते हैं गाड़ी के अंदर, तो कई बार हमने देखा बीते दिनों में कि प्रोटेस्टर्स गाड़ी से बाहर निकल कर, डिटेंशन से बाहर निकल कर आगे चले गए, लेकिन ये जो गाड़ियां लाई गई हैं वो जेल नुमा स्ट्रक्चर है। प्रदर्शनकारियों को खींच कर गाड़ियों के अंदर डाला जा रहा है।
1: सबसे ज्यादा हल्ला रहा कनॉट प्लेस में और इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा पुलिस की तैनाती थी। पुलिस को पता था कि प्रदर्शनकारी यहीं जुटेंगे, इसीलिए सुबह से ही दिल्ली पुलिस यहाँ तैनात थी। वरिष्ठ अधिकारियों की भी तैनाती थी।
6: इस समय मैं दिल्ली के इनर सर्कल की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि पालिका बाजार के पास आप देख सकते हैं कैसे भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर, उन्होंने अपना एक्शन मार्च शुरू कर दिया है। सीजेपी की तरफ से आज एक बड़ी कॉल दी गई थी, प्रोटेस्ट मार्च की कॉल दी गई थी, उसी को देखते हुए मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कैसे भारी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं यहाँ पर पहुंचे। क्योंकि दूसरी तरफ मैं आपको जनपद की तरफ दिखाना चाहूंगा कैसे भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको काबू करने के लिए जो दिल्ली पुलिस का एक्शन है यहाँ पर शुरू हो चुका है। आपने देखा कि कैसे रीगल सिनेमा से भारी मात्रा में जो डिप्लॉयमेंट है इस तरफ मूव करती है, जनपद की तरफ मूव करती है, इनर सर्कल होते हुए, पालिका बाजार होते हुए। और वहीं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कैसे प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए अब जो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज का जो एक्शन है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक
1: दिक्कत ये थी कि प्रदर्शनकारी यहाँ गलियों के अंदर घुस जा रहे थे, पुलिस लगातार उन्हें दौड़ा रही थी। जैसे ही पुलिस दौड़ाती तो वो एक गली से घुसकर दूसरी गली से निकल आते, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवानों को साफ ऑर्डर था कि किसी को नहीं छोड़ना है, सबको प्रिवेंटिव कस्टडी में लेना है।
7: कनॉट प्लेस जनपद का ये इलाका है और यहाँ पर एक एक करके जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। धीरे धीरे कर यहाँ पर जो भीड़ थी वो बढ़ रही थी प्रदर्शनकारियों की, और उसके बाद जो अलग अलग छोटी छोटी गलियाँ हैं इन इलाकों में, वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको डिटेन किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, और उनको अब गलियों से ढूंढ ढूंढ कर जो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो डिटेन करके लेकर जा रही है। तो अलग अलग तस्वीरें देखिए चारों तरफ, कहीं भी अगर आपको मेरे कैमरा पर्सन हिमांशु दिखाएंगे तो एक एक करके जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहाँ पर डिटेन किया गया है। तो एक तस्वीर जो थी वो यहाँ पर थोड़ी देर से हम लोग देख रहे थे कि प्रदर्शनकारी एक एक कर यहाँ पर जमा हो रहे थे, और उसके बाद अचानक से जो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो यहाँ पर आती हैं और इन प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर लेकर गई।
1: कॉकरोच जनता पार्टी की प्रदर्शन की कॉल पर ये प्रदर्शनकारी जमा तो हो गए, लेकिन शायद इन्हें ये अंदाजा नहीं था कि पुलिस की इतनी बड़ी तैनाती होगी। ये सब जंतर मंतर जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ से कई किलोमीटर पहले ही पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया।
5: प्रदर्शनकारियों का टेम्पल रन शुरू हो गया है, प्रदर्शनकारियों का टेम्पल रन शुरू हो गया है। वो एक तरह से इस सेक्टर से दौड़ के भाग रहे हैं और पुलिस उनको यहाँ से हटाते हुए दिखाई दे रही है। बीते एक घंटे से यहाँ पर ये प्रदर्शनकारी, जेंजी युवा प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे। ज्ञानेश कुमार सीसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वोट चोरी के बारे में नारेबाजी कर रहे थे, जो विपक्ष का आरोप है उसी तरह के नारेबाजी आपको नारेबाजी यहां पर सुनाई दे रहा था। बीते एक घंटे से यहां ये जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन अब अचानक से दिल्ली पुलिस एक्शन बोर्ड में आती है और इस सेक्टर में भी जो प्रदर्शनकारी थे उनको हटाया जा रहा है।
4: बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत। ये देश में जो सरकार है ना बहुत गलत कर रही है सर, बहुत ज्यादा गलत कर रही है।
5: हटाया जा रहा है, कहाँ आए थे आप लोग?
8: प्रोटेस्ट
5: करने के लिए आए थे। अभिजीत को डिटेन किया गया, उसके बावजूद आप लोग यहाँ पहुँच गए हैं।
8: वो भले से उनको डिटेन कर लिया गया हो, लेकिन हम उनके सपोर्ट में हैं।
5: किसी पार्टी से हैं आप?
8: नहीं नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं बस उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, कांग्रेस जनता पार्टी को।
5: आप लोग नारे लगा रहे थे इसलिए डिटेन हो रहे हैं?
8: हाँ जी, सपोर्ट कर रहे थे इसलिए हमको डिटेन किया गया है।
1: प्रदर्शनकारियों ने शाम शाम तक भी कोशिश की कि किसी भी तरीके से वो कनॉट प्लेस से जंतर मंतर की तरफ चले जाएं, लेकिन पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी, पुलिस ने किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया।
6: दूसरी तरफ मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैसे दिल्ली पुलिस ने यहां पर डिटेन करना शुरू कर लिया। देखिए, जो प्रदर्शनकारी थी उनको उठाना शुरू कर दिया। वहीं मैं अपना कैमरा सहयोगी अजय जी से कहूंगा एक तस्वीर उस तरफ की भी दिखाएं कि जैसे ही यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचते हैं प्रदर्शनकारी भागने लग जाते हैं। तस्वीरें मैं आपको इनर सर्कल की दिखा रहा हूं, एन ब्लॉक की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे जैसे ही प्रदर्शनकारी देखते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवान उनको डिटेन करने के लिए आ रहे हैं, वो भागते हुए दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं। और पहली बार नहीं, सुबह से देखा जा रहा है कि जैसे ही प्रदर्शनकारी इकट्ठे होते हैं जनपद के पास, रीगल सिनेमा के पास, ब्लॉक ए के पास, वहीं देखा जाता है कि भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं इकट्ठे होकर उनको डिटेन करना शुरू कर देते हैं।
1: जब पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को दौड़ा रही थी तो कुछ प्रदर्शनकारी बंगला साहिब गुरुद्वारे के अंदर भी चले गए। दिल्ली पुलिस ने उनका पीछा किया लेकिन गुरुद्वारे के गेट पर रुक गए और अंदर नहीं गए।
9: अभी भी जो सबसे बड़ा चैलेंज दिल्ली पुलिस के लिए, यहाँ अगर सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो वहाँ वो बना हुआ है ये गुरुद्वारा बंगला साहिब, क्योंकि इसके अंदर कई सारे जो प्रदर्शनकारी हैं वो जाकर के रुके हुए हैं और हर कुछ देर में बाहर आते हैं, नारे लगाते हैं और जैसे ही पुलिस उन्हें पकड़ने जाती है वापस अंदर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस उन्हें गुरुद्वारे के अंदर घुस के नहीं पकड़ेगी। और याद रखिए, ज्यादातर CJP के लोग नहीं है, ये सारे लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के, SFI के और ISA के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लोग यहाँ पर बहुत अच्छी रणनीति बनाकर आए। उन्हें पता था कि एक रिलीजियस प्लेस के अंदर, एक धार्मिक स्थल के अंदर पुलिस घुसेगी नहीं। मैसेजिंग है ये अंदर चली गई है, जिसकी वजह से आप देखें तो गेट्स के पास आपको अब प्रदर्शनकारी नहीं दिखेंगे, प्रदर्शनकारी अंदर की तरफ है अब, और बाहर बहुत भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है। और जैसे ही पुलिस थोड़ी सी पीछे होती है, 10 कदम पीछे होती है, तो अचानक से अंदर से कुछ लोग आते हैं और गेट के अंदर ही खड़े होकर नारे लगाते हैं और फिर वापस अंदर भाग जाते हैं। तो ये जो है पिछले 1-1.5 घंटे से कुछ ऐसा ही जो खेल है ये दिल्ली पुलिस के साथ चल रहा है, लेकिन जो भी बाहर आता है उसे तुरंत पकड़ के यहां से डिटेन करके तुरंत हटाया जा रहा है और धीरे धीरे अंदर रहने वाले लोगों की संख्या भी कम होती हुई अब दिखाई दे रही है।
1: आज तक ब्यूरो।
0: अनिश कुमार को लेकर विपक्ष भी सड़कों पर है और CJP के समर्थन में अरविंद केजरीवाल और ममता बैनर्जी भी आए। लेफ्ट पार्टियां भी सड़कों पर उतरी और कांग्रेस पार्टी दूर ही दिखाई थी।
10: 1.5 घंटे से दिल्ली की सड़कों पर हम लोगों को घुमा रहे हैं, हमें पता नहीं कहां ले जा रहे हैं, कौन से थाने में ले जा रहे हैं।
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही कांग्रेस पार्टी CJP के आंदोलन से दूर रही, उसे आम आदमी पार्टी, लेफ्ट और TMC ने अपना समर्थन दिया। ममता मुंह पर बैंडेड लगाकर धरने पर बैठ गईं, लेकिन ममता बैनर्जी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस वैन में ममता बैनर्जी को ले जाती दिखी, कहा कि वो इस मामले में झुकेंगे नहीं।
11: আমরা আমাদের বাড়ির পাশে যে বাস স্ট্যান্ড, প্রথমে তো আমরা যন্ত্র মন্ত্র যেতে চেয়েছিলাম, CJP আমাদের ইনভাইট আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, স্টুডেন্ট ইউথরা তাদের সবাইকে অ্যারেস্ট করেছে, মিডিয়াকে অ্যারেস্ট করেছে, অল পলিটিক্যাল লিডারদের অ্যারেস্ট করেছে আর ঘোরাচ্ছে। তারপরে আমরা যখন বাড়ির সামনে একটা বেঞ্চ নিয়ে একটা বাস স্ট্যান্ডে বসলাম, তখন আমাদের যেতে দেওয়া হলো না, কিন্তু আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বসেছিলাম। সেভ ইন্ডিয়া, সেভ ডেমোক্রেসি।
1: ममता बैनर्जी की तरह अरविंद केजरीवाल भी CJP का समर्थन करने उतरे, लेकिन उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया।
0: केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज समेत कई नेता प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें हिरासत में लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया।
10: बहुत गुस्से में है जो जो लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं। मैं पूरे देश के लोगों को, युवाओं को हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, हम सब लोगों को मिलके देश को बचाना होगा। आप जहां भी हैं देश में, अभी निकलिए अपने घर से, दिल्ली की तरफ कूच कीजिए, दिल्ली आइए, स्कूटर पे आइए, पैदल आइए, बस में आइए, हवाई जहाज में आइए, ट्रेन में आइए, जैसे आ सकते हैं आइए, दिल्ली की तरफ कूच कीजिए। जहां मोदी जी आपको रोके वहीं बैठ जाओ, उसी जगह को जंतर मंतर बना दो, पूरे देश को जंतर मंतर बना दो, लेकिन मोदी जी को वोट चोरी करने से रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये देश नहीं बचेगा।
0: अरविंद केजरीवाल ने पहले ही इस प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान कर दिया था। ममता और केजरीवाल के अलावा पुलिस ने केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन, त्रिपुरा के पूर्व सीएम माणिक सरकार और सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास को भी हिरासत में लिया। यूट्यूबर ध्रुव राठी को सुबह ही गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया था। आईसा अध्यक्ष नेहा बोरा को भी हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन से दूरी बनाकर रखी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चेन्नई में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से दक्षिण भारत में इस मामले को गरमाने में लगे हैं। दिल्ली की तरह मुंबई में भी सीजेपी समर्थकों की तरफ से प्रदर्शन करने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया। तो चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने वहां पर उन्हें हिरासत में ले लिया।
1: मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में जिसने भी प्रदर्शन करने की कोशिश की, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसमें महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी भी शामिल।
12: नेशनल कॉलेज से उठाया, बांद्रा पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, संतक्रूज पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, डीएन नगर ले आए। डीएन नगर में कुछ खास रिसेप्शन तैयार किया होगा, देखते रहिए। ये पुलिस की गुलामी की निशानी है, बेचारे वो भी क्या कर सके, सत्ता वालों के चाकर जो बन गए। एक दिन तख्ता पलट होगा, फिर हिसाब किया जाएगा।
1: तुषार गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद आदित्य ठाकरे अपने पार्टी नेताओं के साथ वहां पहुंचे।
13: जिस देश में गांधी जी को डिटेन किया जाता है और इतना डर है भाजपा के मन में कि जैसे ही हम यहाँ आने वाले थे उनको लेके गए बुरेवली, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इतना मन में डर क्यों है? भले वो गांधी जी के बारे में हो या हमारे बारे में हो, या अभिजीत के बारे में हो, या रत्ना या सौरभ या राहुल जी के बारे में हो। आपने ये भी देखा होगा, राहुल जी जैसे ही चुनाव आयोग से मिलने गए कितनी बड़ी तादाद में फोर्स लगाई गई। ये सारी फोर्स जो बॉर्डर पे होनी चाहिए वो आप दिल्ली में लगा रहे हो, इतना डर क्यों है आपके मन में? किससे डरते हो आप? क्यों भय है इतना मन में?
1: मुंबई में अभिनेता और आमिर खान के भांजे इमरान खान भी सीजेपी के समर्थन में प्रदर्शन करने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया।
14: मेरा ये मानना है कि इस देश में और इस शहर में वी शुड ऑलवेज हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ऐसा ऐसी भी क्या खतरा है? आप यहाँ देख सकते हैं कितनी सारी पुलिस के लोग हैं।
15: दिल्ली में भी प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया गया, दिल्ली में भी डिटेन किया गया।
14: आई बिलीव दैट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू शो अप एंड शो दैट देयर दैट वी आर नॉट अफ्रेड एंड दैट देयर इज एक्चुअली नो डेंजर एंड नो थ्रेट ओवर हियर। द ओनली थ्रेट इज फ्रॉम ऑल ऑफ दीस पीपल अटैकिंग विद स्टिक्स।
1: मुंबई में प्रदर्शन को देखते हुए सुबह से पुलिस ने तैयारी कर रखी थी। ड्रोन से प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने के इंतजाम भी देखे गए।
16: पुलिस को गाड़ी को रोकने का यहाँ पर भरसक कोशिश थी, लेकिन प्रदर्शनकारी जो है वो तो देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी जो है वो सुन नहीं रहे हैं और पुलिस पे जो है वो झड़प है वो बढ़ती जा रही है। पुलिस डिटेन कर रही है लेकिन प्रदर्शनकारी जो है वो इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं। और ये जो साइट है इसे हेरिटेज साइट पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि हेरिटेज साइट है, यहाँ प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है। लेकिन जैसा कि देख सकते हैं पुरजोर विरोध जो है प्रदर्शनकारियों द्वारा किया जा रहा है और पुलिस जो है इन्हें डिटेन करने की भरपूर कोशिश कर रही है।
1: चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेता चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसके बाद मनीष सिसोदिया समेत कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
17: बस में किस तरह जो है आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को लीडर्स को डिटेन किया जा रहा है भर भर। और मनीष सिसोदिया आप देख सकते हैं बस के अंदर बैठे हैं, मनीष सिसोदिया को बस के अंदर बिठाया गया है और यहां से हटाया गया है। सो अभी तक तो पुलिस जो है वो कामयाबी पुलिस को मिली है कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक नहीं जाने गया, लेकिन मनीष सिसोदिया आप देख सकते हैं कि विंडो में बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, रेड शर्ट में हैं और लगातार जो है यहां पर डिटेंशन जो अब हो रही हैं। और ये बस जो कि जो बस जिसमें आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और लीडर्स को भरा गया है उनको यहां से मूव करके लेके जाया जा रहा है। सो जब मेन लीडरशिप चाहे वो सोनिया मान हो, मनीष सिसोदिया हो, हरपाल चीमा हो और दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको यहां से मूव कराया जा रहा है।
18: दक्षिण में बेंगलुरु और चेन्नई में भी प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी सड़कों पर प्रदर्शनकारी निकले, जहां पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आईं।
0: बीजेपी की तरफ से भी विरोध का मोर्चा संभाला गया और दिल्ली में कांग्रेस सांसद पर छात्राओं से छेड़छाड़ तो लखनऊ में महिला पुलिसकर्मियों से राहुल प्रियंका की तरफ से की गई कथित बदसलूकी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा सड़कों पर निकल गया।
19: गणेश कुमार जी को पद्म भूषण से पुरस्कृत करना चाहिए।
20: मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर भले ही विपक्षी दल और सीजेपी प्रदर्शन कर रहे हों, लेकिन बंगाल बीजेपी की तरफ से ज्ञानेश कुमार को हिंसा मुक्त चुनाव का श्रेय दिया जा रहा है जो 70 सालों में नहीं हुआ।
19: अरे ममता दीदी कलकत्ते में क्यों नहीं है, हम लोग तो कलकत्ते में उसको बुला रहे, इतना पूजा उसको इंतजार कर रहे हैं। अरे भैया कॉकरोच केकड़ा ये सब लेकर क्या होगा, ममता जी चले ये कलकत्ते में।
20: बीजेपी की तरफ से लखनऊ में महिला मोर्चा के प्रदर्शन की अब ये तस्वीर देखी। बीजेपी ने ये प्रदर्शन राहुल गांधी के खिलाफ किया जिन पर दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मियों से बदसलूकी का आरोप। इसे लेकर बीजेपी की तरफ से वीडियो भी जारी किए गए जिसमें प्रियंका गांधी एक महिला पुलिसकर्मी को कोहनी मारती दिखती है तो राहुल गांधी पर एक महिला पुलिसकर्मी को गलत तरीके से छूने का आरोप बीजेपी लगाती है।
21: लखनऊ में आज बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन है, कांग्रेस पार्टी कार्यालय घेराव करने का कार्यक्रम है और इस समय पर मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से ये महिला मोर्चा का प्रदर्शन शुरू हुआ है और तमाम महिलाएं उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं।
22: खुद राहुल गांधी महिलाओं को ऐसे छू रहे, प्रियंका गांधी यूं कोनी मार रही है तो हम इस सम्मान के लिए जा रहे हैं कि इस वर्दी का भी आप लोग को सम्मान करना सीखना चाहिए, वो आपके लिए खड़े 24/7।
20: बीजेपी महिला मोर्चा ने लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के पास और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना के आवास के पास लगे पोस्टर भी फाड़ दिए। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा ने एक अलग मुद्दे पर प्रदर्शन किया, मामला जेएनयू में प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर छात्राओं के यौन शोषण का है जिसके बाद उन्हें जेएनयू से बर्खास्त कर दिया गया। अकोइजम कांग्रेस सांसद भी हैं इसलिए कांग्रेस की चुप्पी पर बीजेपी ने उसे घेर लिया।
23: राहुल गांधी महिला पुलिस महिला कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और एक व्यक्ति जिस पे आरोप साबित हो गया जिसको यूनिवर्सिटी से हटाया गया है पर वो फिर भी उनके साथ खड़े हैं, उन्होंने उनके लिए राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने एक शब्द नहीं बोला है उनके लिए, क्या उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी उस व्यक्ति के साथ।
20: ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी को घेरने में राहुल समेत पूरा विपक्ष जुटा है, वहीं बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को निशाने पर लिया जा रहा है। भले ही मुद्दे अलग अलग हों लेकिन दोनों के बीच बढ़ते टकराव ने बता दिया है कि सियासी पारा बढ़ा रहेगा।
0: और अब उत्तर प्रदेश चुनावों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, तो क्या अयोध्या से इस बार योगी बनाम अखिलेश के बीच में मुकाबला होगा। दरअसल अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी, सलाह दी थी और उसके बाद योगी ने कह दिया कि हो जाए, अखिलेश चेलों को छोड़कर खुद अयोध्या से उतर जाए।
24: पीडीए का वास्तविक मतलब है प्रदेश डुबाऊ एलायंस।
25: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने पीडीए का मतलब समझाने के बाद वो बात कही जिसे नहले पर दहला कहा जा सकता है।
24: इस अराजकता को स्वीकार करने वाली नहीं, मैं तो आपको ऑफर करता हूं, आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं, तय हो जाए, आप भी आइए और मैं भी आता हूं। लड़ाई चेलों से क्यों, लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए और उसके लिए मैं कह रहा हूं आइए आप भी।
25: इससे पहले तो योगी ने अखिलेश को चैलेंज दिया है कि हिम्मत है तो लड़ाई आमने सामने लड़ो। योगी का यह बयान अखिलेश के अयोध्या से चुनाव लड़ने की सलाह के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री अगर अयोध्या को लेकर इतने ही आश्वस्त हैं तो अयोध्या से चुनाव लड़ जाएं।
2: अगर वो अयोध्या से इतने ही आश्वस्त हैं और जिन्होंने ये कहा हो कि पानी का दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा 15 दिन के अंदर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अगर वो इतने ही अयोध्या वासियों से अस्वस्थ है तो उन्हें यही फैसला लेना चाहिए, उनके बीच में अगला चुनाव लड़ना चाहिए। ये चुनौती नहीं है, ये सलाह है।
25: अखिलेश ने साफ कहा कि ये उनका चैलेंज नहीं, मुख्यमंत्री को सियासी सलाह है, लेकिन योगी ने इसे स्वीकार करके गेंद अखिलेश के पाले में फेंक दी कि अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाओ, पता चल जाएगा किसमें कितना दम है।
24: ये माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले पेशेवर अपराधियों के सामने उनकी मौत पर उनकी कब्र में जाकर के फातिया पढ़ने वाले लोग ये हम लोगों से क्या लड़ पाएंगे? इनकी हिम्मत नहीं है, ये पहले ही जनता इनकी छुट्टी कर चुकी है। एक खिसियानी बिल्ली खंपा नोचे जैसी स्थिति इन लोगों की हो चुकी है।
25: योगी ने कहा कि आने वाले चुनाव में 80% सीटें एनडीए जीतेगा और 20% इंडिया गठबंधन, क्योंकि ये जनता ने तय कर लिया है।
24: जिस अयोध्या में जय श्री राम बोलने पर आपकी सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, जिस अयोध्या के सामने आपने केवल और केवल बैरियर खड़ा किए थे, आज वो अयोध्या एक बार फिर से राम राज्य के नए उदाहरण बनकर के त्रेता युग का स्मरण करा रही है।
25: योगी के इस सियासी हमले का अखिलेश ने तुरंत जवाब देते हुए लोकसभा चुनाव याद दिलाते हुए कहा कि इस बार जनता घमंड का सारा पानी उतार देगी। लोकसभा भूल गए क्या? उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार अखिलेश यादव की तरफ से लगातार खुद को बीजेपी के मुकाबले सनातन के मोर्चे पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को इसलिए अखिलेश की तरफ से लगातार उठाया जाता है। दावा किया जाता है कि बीजेपी को वहां से प्रत्याशी नहीं मिल रहा, लेकिन योगी ने अखिलेश के नहले पर दहला मारकर गेंद उनके पाले में डाल दी है।
24: क्या इससे पहले संभव था ये?
25: आज तक ब्यूरो।
24: मोदी जी का विजन है।
0: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: पड़े
1: नहीं।
0: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई। ट्रैवल एजेंट कोई गांजा फूंक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
0: तुम्हारा
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
3: यार काट देना।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन पर सख्ती के बाद सामान्य हो रहे हैं हालात। खोले गए सभी मेट्रो स्टेशन, आज खुलेंगे सभी बाजार, लेकिन सीजेपी ने आज फिर आंदोलन का किया ऐलान। सीजेपी के प्रदर्शन पर बीजेपी का ताबड़तोड़ हमला, कहा सड़कों पर अराजकता की साजिश, राहुल का बयान, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जारी रहेगी जंग। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मेट्रो स्टेशन बंद करने और लोगों को हिरासत में रखने के खिलाफ याचिका, सोमवार को बड़े मार्च की तैयारी में विपक्ष। चेन्नई में छात्रों के बीच राहुल की गूंज, कहा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं पीएम मोदी, तमिल भाषा और संस्कृति पर प्रधानमंत्री के हमले का जड़ आरोप। अब सीएम योगी ने अखिलेश को दी चुनौती, कहा अयोध्या से चुनाव में हो जाए आमना सामना, अखिलेश का जवाब हमारा युवा पीडीए प्रहरी ही काफी। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन नहीं होने दिया और अब सरकार इसे अपनी सफलता मान सकती है। प्रदर्शनकारियों को ये अपनी कामयाबी लग सकती है कि उन्हें रोकने के लिए हजारों पुलिस वालों का जमावड़ा लगाना पड़ा, ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी, मेट्रो रोकनी पड़ी, बॉर्डर बंद करने पड़े, लेकिन सवाल यह है अब कि आगे क्या होगा।
1: अक्टूबर की तारीख पहले से तय थी। दिल्ली पुलिस को अंदाजा था कि हालात क्या हो सकते हैं, इसीलिए ट्रेनें रद्द की, जंतर मंतर के आसपास का इलाका छावनी बनाया, इंटरनेट बंद किया, मेट्रो स्टेशन भी बंद रहे और जो प्रदर्शनकारी जहां दिखा वहीं धर। हंगामा तो हुआ, दौड़ भाग भी हुई, लेकिन प्रदर्शन नहीं हो पाया। दिल्ली पुलिस ने नेताओं को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा, सबको प्रदर्शन शुरू करने से पहले ही प्रिवेंटिव कस्टडी में भेज दिया। जिनकी कॉल पर इस प्रदर्शन का ऐलान किया गया था वो अभिजीत दीपके तो फ्लाइट के अंदर से ही पकड़ लिए गए। दोपहर में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी उतरी, लेकिन उन्हें भी हिरासत में लिया गया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कई दिनों से 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की कॉल दी हुई थी। वो लगातार लोगों से दिल्ली आने की अपील कर रहे थे। जब ये खबरें आने लगी कि ट्रेन और मेट्रो कैंसिल हो रही हैं, भारी पुलिस बल की तैनाती हो रही है, तो तब भी दीपके चैलेंज कर रहे थे। लेकिन सुबह 10 बजे के करीब जैसे ही उनकी फ्लाइट दिल्ली में लैंड हुई, दिल्ली पुलिस फ्लाइट में ही चढ़ गई और वहीं से उन्हें उठा लिया। अभिजीत दीपके के साथ सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को भी पुलिस ले गई। इसके बाद दीपके ने एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो में कहा कि अब आंदोलन की कमान अजिंक्य शिंदे संभालेंगे।
2: हेलो एवरीवन, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, इसका मतलब मैं, आशु और सौरभ, हम तीनों अरेस्ट हो चुके हैं। हमारे बाद इस मूवमेंट को अजिंक्य लीड करेगा, तो आप जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज फॉलो अजिंक्य शिंदे, ही विल बी कैरिंग फॉरवर्ड द कॉकरोच जनता पार्टी आफ्टर आशुतोष, मी एंड सौरभ। थैंक यू।
1: पुलिस ने पहले नेता को गिरफ्तार किया और फिर एक एक करके कार्यकर्ताओं को धरा, जो जहां दिखा वहीं से उठा लिया। शनिवार को दिल्ली में जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, पालिका बाजार और जनपद के आसपास की सड़कों पर खूब हंगामा रहा। सुबह से ही प्रदर्शनकारी जमा होने शुरू हो गए थे, लेकिन पुलिस ने इंतजाम ऐसे किए थे कि किसी को भी कदम जमाने का मौका नहीं मिला।
3: उसी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं और शांति बनाए रखने की अपील भी है और उसी के मेजर्स लिए जा रहे हैं।
4: कितने लोगों को डिटेन किया होगा नई दिल्ली इलाके से, कितने लोग
3: प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं?
4: अच्छा, कुछ लोगों पर पथराव भी किया पुलिसकर्मियों को, चोट आई?
3: हाँ, एक जगह पर पथराव।
1: दिल्ली पुलिस के जवान तो थे ही, पैरामिलिट्री भी भरपूर थी और यूपी पुलिस के जवानों को भी बुलाया गया था क्योंकि दिल्ली पुलिस किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए तो जहां भी प्रदर्शनकारी मिला तुरंत पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, बसों में भरा और डिटेंशन सेंटर भेज दिया।
5: कनॉट प्लेस के रीगल थिएटर के पास की ये तस्वीरें जहां पे बड़ी तादाद में आपको डिटेंशन दिखाई देगा। पैरा फोर्सेस के जवान हैं जो डिटेन करके प्रदर्शनकारियों को ले जा रहे हैं। देखिए, बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी यहां पहुंचे थे, अब नारेबाजी करते हुए वो जा रहे हैं। सब युवा हैं, यंगस्टर्स हैं जिनको डिटेन किया गया है। दिल्ली पुलिस की ये गाड़ी है, रॉयड कंट्रोल व्हीकल है, उसमें डिटेन करके इन युवाओं को, प्रदर्शनकारियों को

0: केस शिकायत गुट के किसान नेताओं को डाला गया है। आप देखिए एक तरह से जेल नुमा स्ट्रक्चर है उसके अंदर। आप जब एक बार डाल दिए जाते हैं गाड़ी के अंदर, तो कई बार हमने देखा बीते दिनों में कि प्रोटेस्टर्स गाड़ी से बाहर निकलकर, डिटेंशन से बाहर निकलकर आगे चले गए, लेकिन ये जो गाड़ियां लाई गई हैं वो जेल नुमा स्ट्रक्चर है। प्रदर्शनकारियों को खींचकर गाड़ियों के अंदर डाला जा रहा है।
1: सबसे ज्यादा हल्ला रहा कनॉट प्लेस और इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा पुलिस की तैनाती थी। पुलिस को पता था कि प्रदर्शनकारी यहीं जुटेंगे, इसीलिए सुबह से ही दिल्ली पुलिस यहां तैनात थी। वरिष्ठ अधिकारियों की भी तैनाती थी।
2: इस समय मैं दिल्ली के इनर सर्कल की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि पालिका बाजार के पास आप देख सकते हैं कैसे भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर, उन्होंने अपना एक्शन मार्च शुरू कर दिया है। सीजेपी की तरफ से आज एक बड़ी कॉल दी गई थी, प्रोटेस्ट मार्च की कॉल दी गई थी, उसी को देखते हुए मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कैसे भारी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं यहाँ पर पहुंचे। क्योंकि दूसरी तरफ मैं आपको जनपद की तरफ दिखाना चाहूंगा कैसे भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको काबू करने के लिए जो दिल्ली पुलिस का एक्शन है यहाँ पर शुरू हो चुका है। आपने देखा कि कैसे रीगल सिनेमा से भारी मात्रा में जो डिप्लॉयमेंट है इस तरफ मूव करती है, जनपद की तरफ मूव करती है, इनर सर्कल होते हुए, पालिका बाजार होते हुए। और वही तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कैसे प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए अब जो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज का जो एक्शन है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक
1: दिक्कत ये थी कि प्रदर्शनकारी यहाँ गलियों के अंदर घुस जा रहे थे, पुलिस लगातार उन्हें दौड़ा रही थी। जैसे ही पुलिस दौड़ाती तो वो एक गली से घुसकर दूसरी गली से निकल आते, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवानों को साफ ऑर्डर था कि किसी को नहीं छोड़ना है, सबको प्रिवेंटिव कस्टडी में लेना है।
3: कनॉट प्लेस जनपद का ये इलाका है और यहाँ पर एक एक करके जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। धीरे धीरे कर यहाँ पर जो भीड़ थी वो बढ़ रही थी प्रदर्शनकारियों की, और उसके बाद जो अलग अलग छोटी छोटी गलियाँ हैं इन इलाकों में, वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको डिटेन किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, और उनको अब गलियों से ढूंढ कर जो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो डिटेन करके लेकर जा रही है। तो अलग अलग तस्वीरें देखिए चारों तरफ, कहीं भी अगर आपको मेरे कैमरा पर्सन हिमांशु दिखाएंगे तो एक एक करके जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहाँ पर डिटेन किया गया है। तो एक तस्वीर जो थी वो यहाँ पर थोड़ी देर से हम लोग देख रहे थे कि प्रदर्शनकारी एक एक कर यहाँ पर जमा हो रहे थे, और उसके बाद अचानक से जो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो यहाँ पर आती हैं और इन प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर लेकर गई।
1: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के कॉल पर ये प्रदर्शनकारी जमा तो हो गए, लेकिन शायद इन्हें ये अंदाजा नहीं था कि पुलिस की इतनी बड़ी तैनाती होगी। ये सब जंतर मंतर जाना चाहते थे, लेकिन वहां से कई किलोमीटर पहले ही पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया।
0: प्रदर्शनकारियों का टेम्पल रन शुरू हो गया है, प्रदर्शनकारियों का टेम्पल रन शुरू हो गया है। वो एक तरह से इस सेक्टर से दौड़ के भाग रहे हैं और पुलिस उनको यहां से हटाते हुए दिखाई दे रही है। बीते एक घंटे से यहां पर ये प्रदर्शनकारी, जेंजी युवा प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे, ज्ञानेश कुमार सीसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वोट चोरी के बारे में नारेबाजी कर रहे थे, जो विपक्ष का आरोप है उसी तरह के नारेबाजी आपको नारेबाजी यहां पर सुनाई दे रहा था। बीते एक घंटे से यहां ये जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन अब अचानक से दिल्ली पुलिस एक्शन बोर्ड में आती है और इस सेक्टर में भी जो प्रदर्शनकारी थे उनको हटाया जा रहा है।
4: बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत। ये देश में जो सरकार है ना बहुत गलत कर रही है, बहुत ज्यादा गलत कर रही है।
0: हटाया जा रहा है। कहां आए थे आप लोग?
5: प्रोटेस्ट करने के लिए
0: आए थे। अभिजीत को डिटेन किया गया, उसके बावजूद आप लोग यहां पहुंच गए हैं।
5: वो भले से उनको डिटेन कर लिया गया हो, लेकिन हम उनके सपोर्ट में हैं।
0: किसी पार्टी से हैं आप?
5: नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं बस उनको सपोर्ट कर रहा हूं, कॉकरोच जनता पार्टी को।
0: आप लोग नारे लगा रहे थे इसलिए डिटेन हो रहे हैं?
5: हाँ जी, सपोर्ट कर रहे थे इसलिए हमको डिटेन किया गया है।
1: प्रदर्शनकारियों ने शाम शाम तक भी कोशिश की कि किसी भी तरीके से वो कनॉट प्लेस से जंतर मंतर की तरफ चले जाएं, लेकिन पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी, पुलिस ने किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया।
2: दूसरी तरफ मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैसे दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर डिटेन करना शुरू कर लिया। देखिए जो प्रदर्शनकारी थी उनको उठाना शुरू कर दिया। वहीं मैं अपना कैमरा सहयोगी अजय जी से कहूंगा एक तस्वीर उस तरफ की भी दिखाएं कि जैसे ही

0: यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचते हैं, प्रदर्शनकारी भागने लग जाते हैं। तस्वीरें मैं आपको इनर सर्कल की दिखा रहा हूँ, एन ब्लॉक की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे जैसे ही प्रदर्शनकारी देखते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवान उनको डिटेन करने के लिए आ रहे हैं, वो भागते हुए दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं। और पहली बार नहीं, सुबह से देखा जा रहा है कि जैसे ही प्रदर्शनकारी इकट्ठे होते हैं जनपद के पास, रीगल सिनेमा के पास, ब्लॉक ए के पास, वहीं देखा जाता है कि भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं इकट्ठे होकर उनको डिटेन करना शुरू कर देते हैं।
1: जब पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को दौड़ा रही थी तो कुछ प्रदर्शनकारी बंगला साहिब गुरुद्वारे के अंदर भी चले गए। दिल्ली पुलिस ने उनका पीछा किया लेकिन गुरुद्वारे के गेट पर रुक गई और अंदर नहीं गई।
2: अभी भी जो सबसे बड़ा चैलेंज दिल्ली पुलिस के लिए, यहाँ अगर सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो वहाँ वो बना हुआ है ये गुरुद्वारा बंगला साहिब, क्योंकि इसके अंदर कई सारे जो प्रदर्शनकारी हैं वो जाकर के रुके हुए हैं और हर कुछ देर में बाहर आते हैं, नारे लगाते हैं और जैसे ही पुलिस उन्हें पकड़ने जाती है वापस अंदर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस उन्हें गुरुद्वारे के अंदर घुस के नहीं पकड़ेगी। और याद रखिए, ज्यादातर CJP के लोग नहीं है, ये सारे लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के, SFI के और ISA के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लोग यहाँ पर बहुत अच्छी रणनीति बनाकर आए। उन्हें पता था कि एक रिलीजियस प्लेस के अंदर, एक धार्मिक स्थल के अंदर पुलिस घुसेगी नहीं। मैसेजिंग है ये अंदर चली गई है, जिसकी वजह से आप देखें तो गेट्स के पास आपको अब प्रदर्शनकारी नहीं दिखेंगे, प्रदर्शनकारी अंदर की तरफ है अब, और बाहर बहुत भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है। और जैसे ही पुलिस थोड़ी सी पीछे होती है, 10 कदम पीछे होती है, तो अचानक से अंदर से कुछ लोग आते हैं और गेट के अंदर ही खड़े होकर नारे लगाते हैं और फिर वापस अंदर भाग जाते हैं। तो ये जो है पिछले 1-1.5 घंटे से कुछ ऐसा ही जो खेल है ये दिल्ली पुलिस के साथ चल रहा है, लेकिन जो भी बाहर आता है उसे तुरंत पकड़ के यहाँ से डिटेन करके तुरंत हटाया जा रहा है और धीरे धीरे अंदर रहने वाले लोगों की संख्या भी कम होती हुई अब दिखाई दे रही है।
1: आज तक ब्यूरो।
3: अनिश कुमार को लेकर विपक्ष भी सड़कों पर है और CJP के समर्थन में अरविंद केजरीवाल और ममता बैनर्जी भी आए। लेफ्ट पार्टियां भी सड़कों पर उतरी और कांग्रेस पार्टी दूर ही दिखाई थी।
4: 1.5 घंटे से दिल्ली की सड़कों पर हम लोगों को घुमा रहे हैं, हमें पता नहीं कहां ले जा रहे हैं, कौन से थाने में ले जा रहे हैं।
5: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही कांग्रेस पार्टी CJP के आंदोलन से दूर रही। उसे आम आदमी पार्टी, लेफ्ट और TMC ने अपना समर्थन दिया। ममता मुंह पर बैंडेड लगाकर धरने पर बैठ गईं। लेकिन ममता बैनर्जी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस वैन में ममता बैनर्जी को ले जाती दिखी, कहा कि वो इस मामले में झुकेंगे नहीं।
6: আমরা আমাদের বাড়ির পাশে যে বাস স্ট্যান্ড, প্রথমে তো আমরা যন্ত্র মন্ত্র যেতে চেয়েছিলাম, CJP আমাদের ইনভাইট আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, স্টুডেন্ট ইউথরা তাদের সবাইকে অ্যারেস্ট করেছে, মিডিয়াকে অ্যারেস্ট করেছে, অল পলিটিক্যাল লিডারদের অ্যারেস্ট করেছে আর ঘোরাচ্ছে। তারপরে আমরা যখন বাড়ির সামনে একটা বেঞ্চ নিয়ে একটা বাস স্ট্যান্ডে বসলাম, তখন আমাদের যেতে দেওয়া হলো না, কিন্তু আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বসেছিলাম। সেভ ইন্ডিয়া, সেভ ডেমোক্রেসি।
5: ममता बैनर्जी की तरह अरविंद केजरीवाल भी CJP का समर्थन करने उतरे, लेकिन उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज समेत कई नेता प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें हिरासत में लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया।
7: बहुत गुस्से में है, जो जो लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं, मैं पूरे देश के लोगों को, युवाओं को हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, हम सब लोगों को मिलकर देश को बचाना होगा। आप जहां भी हैं देश में, अभी निकलिए अपने घर से, दिल्ली की तरफ कूच कीजिए, दिल्ली आइए, स्कूटर पे आइए, पैदल आइए, बस में आइए, हवाई जहाज में आइए, ट्रेन में आइए, जैसे आ सकते हैं आइए, दिल्ली की तरफ कूच कीजिए। जहां मोदी जी आपको रोके वहीं बैठ जाओ, उसी जगह को जंतर मंतर बना दो, पूरे देश को जंतर मंतर बना दो, लेकिन मोदी जी को वोट चोरी करने से रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये देश नहीं बचेगा।
5: अरविंद केजरीवाल ने पहले ही इस प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान कर दिया था। ममता और केजरीवाल के अलावा पुलिस ने केरल के पूर्व CM पिनराई विजयन, त्रिपुरा के पूर्व CM माणिक सरकार और CPM सांसद जॉन ब्रिटास को भी हिरासत में लिया। यूट्यूबर ध्रुव राठी को सुबह ही गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया था। आईसा अध्यक्ष नेहा बोरा को भी हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन से दूरी बनाकर रखी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चेन्नई में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से दक्षिण भारत में इस मामले को गरमाने में लगे हैं।
3: दिल्ली की तरह मुंबई में भी सीजेपी समर्थकों की तरफ से प्रदर्शन करने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया। तो चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने वहां पर उन्हें हिरासत में ले लिया।
8: मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में जिसने भी प्रदर्शन करने की कोशिश की, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसमें महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी भी शामिल।
9: नेशनल कॉलेज से उठाया, बांद्रा पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, संताक्रूज पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, डीएन नगर ले आए। डीएन नगर में कुछ खास रिसेप्शन तैयार किया होगा, देखते रहिए। ये पुलिस की गुलामी की निशानी है, बेचारे वो भी क्या कर सके, सत्ता वालों के चाकर जो बन गए। एक दिन तख्ता पलट होगा, फिर हिसाब किया जाएगा।
8: तुषार गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद आदित्य ठाकरे अपने पार्टी नेताओं के साथ वहां पहुंचे।
10: जिस देश में गांधी जी को डिटेन किया जाता है और इतना डर है भाजपा के मन में कि जैसे ही हम यहाँ आने वाले थे उनको लेके गए बुरेवली, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इतना मन में डर क्यों है? भले वो गांधी जी के बारे में हो या हमारे बारे में हो या अभिजीत के बारे में हो या रत्ना या सौरभ या राहुल जी के बारे में हो। आपने ये भी देखा होगा, राहुल जी जैसे ही चुनाव आयोग से मिलने गए कितनी बड़ी तादाद में फोर्स लगाई गई। ये सारी फोर्स जो बॉर्डर पे होनी चाहिए वो आप दिल्ली में लगा रहे हो। इतना डर क्यों है आपके मन में? किससे डरते हो आप? क्यों भय है इतना मन में?
8: मुंबई में अभिनेता और आमिर खान के भांजे इमरान खान भी सीजेपी के समर्थन में प्रदर्शन करने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया।
11: मेरा ये मानना है कि इस देश में और इस शहर में वी शुड ऑलवेज हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ऐसी भी क्या खतरा है? आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे पुलिस के लोग हैं।
12: दिल्ली में भी प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया गया, दिल्ली में भी डिटेन किया गया।
11: आई बिलीव दैट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू शो अप एंड शो दैट देयर दैट वी आर नॉट अफ्रेड एंड दैट देयर इज एक्चुअली नो डेंजर एंड नो थ्रेट ओवर हियर। द ओनली थ्रेट इज फ्रॉम ऑल ऑफ दीस पीपल अटैकिंग विद स्टिक्स।
8: मुंबई में प्रदर्शन को देखते हुए सुबह से पुलिस ने तैयारी कर रखी थी। ड्रोन से प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने के इंतजाम भी देखे गए।
13: पुलिस को गाड़ी को रोकने का यहाँ पर भरसक कोशिश थी, लेकिन प्रदर्शनकारी जो है वो
14: हाथ हटाओ।
13: तो देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी जो है वो सुन नहीं रहे हैं और पुलिस पे जो है वो झड़प है वो बढ़ती जा रही है। पुलिस डिटेन कर रही है लेकिन प्रदर्शनकारी जो है वो इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं। और ये जो साइट है इसे हेरिटेज साइट पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि हेरिटेज साइट है, यहाँ प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है। लेकिन जैसा कि देख सकते हैं पुरजोर विरोध जो है प्रदर्शनकारियों द्वारा किया जा रहा है और पुलिस जो है इन्हें डिटेन करने की भरपूर कोशिश कर रही है।
8: चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेता चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसके बाद मनीष सिसोदिया समेत कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
15: बस में किस तरह जो है आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को, लीडर्स को डिटेन किया जा रहा है भर। और मनीष सिसोदिया आप देख सकते हैं बस के अंदर बैठे हैं। मनीष सिसोदिया को बस के अंदर बिठाया गया है और यहां से हटाया गया है। सो अभी तक तो पुलिस जो है वो कामयाबी पुलिस को मिली है कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक नहीं जाने गया। लेकिन मनीष सिसोदिया आप देख सकते हैं कि विंडो में बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, रेड शर्ट में हैं और लगातार जो है यहां पर डिटेंशन जो अब हो रही हैं। और ये बस जो कि जो बस जिसमें आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और लीडर्स को भरा गया है उनको यहां से मूव करके लेके जाया जा रहा है। सो जब मेन लीडरशिप चाहे वो सोनिया मान हो, मनीष सिसोदिया हो, हरपाल चीमा हो और दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको यहां से मूव कराया जा रहा है।
8: दक्षिण में बेंगलुरु और चेन्नई में भी प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी सड़कों पर प्रदर्शनकारी निकले, जहां पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आईं।
3: बीजेपी की तरफ से भी विरोध का मोर्चा संभाला गया और दिल्ली में कांग्रेस सांसद पर छात्राओं से छेड़छाड़, तो लखनऊ में महिला पुलिस कर्मियों से राहुल प्रियंका की तरफ से की गई कथित बदसलूकी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा सड़कों पर निकल गया।
14: गणेश कुमार जी को पद्म भूषण से पुरस्कृत करना चाहिए।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर भले ही विपक्षी दल और सीजेपी प्रदर्शन कर रहे हों, लेकिन बंगाल बीजेपी की तरफ से ज्ञानेश कुमार को हिंसा मुक्त चुनाव का श्रेय दिया जा रहा है, जो 70 सालों में नहीं हुआ।
14: अरे ममता दीदी कलकत्ता में क्यों नहीं आए? हम लोग तो कलकत्ता में उसको बुला रहे हैं, इतना पूजा उसका इंतजार कर रहे हैं। अरे भैया कॉकरोच केकड़ा ये सब लेकर क्या होगा? ममता जी चले ये कलकत्ते में।
1: बीजेपी की तरफ से लखनऊ में महिला मोर्चा के प्रदर्शन की अब ये तस्वीर देखी। बीजेपी ने ये प्रदर्शन राहुल गांधी के खिलाफ किया, जिन पर दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मियों से बदसलूकी का आरोप। इसे लेकर बीजेपी की तरफ से वीडियो भी जारी किए गए, जिसमें प्रियंका गांधी एक महिला पुलिसकर्मी को कोहनी मारती दिखती है, तो राहुल गांधी पर एक महिला पुलिसकर्मी को गलत तरीके से छूने का आरोप बीजेपी लगाती है।
16: लखनऊ में आज बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन है, कांग्रेस पार्टी कार्यालय घेराव करने का कार्यक्रम है, और इस समय पर मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से ये महिला मोर्चा का प्रदर्शन शुरू हुआ है, और तमाम महिलाएं और उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं।
17: खुद राहुल गांधी महिलाओं को ऐसे छू रहे, प्रियंका गांधी यूं कोनी मार रही है, तो हम इस सम्मान के लिए जा रहे हैं कि इस वर्दी का भी आप लोग को सम्मान करना सीखना चाहिए, वो आपके लिए खड़े 24/7।
1: बीजेपी महिला मोर्चा ने लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के पास और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना के आवास के पास लगे पोस्टर भी फाड़ दिए। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा ने एक अलग मुद्दे पर प्रदर्शन किया, मामला जेएनयू में प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर छात्राओं के यौन शोषण का है, जिसके बाद उन्हें जेएनयू से बर्खास्त कर दिया गया। अकोइजम कांग्रेस सांसद भी हैं, इसलिए कांग्रेस की चुप्पी पर बीजेपी ने उसे घेर लिया।
18: राहुल गांधी महिला पुलिस महिला कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और एक व्यक्ति जिस पे आरोप साबित हो गया, जिसको यूनिवर्सिटी से हटाया गया है, पर वो फिर भी उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने उनके लिए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने एक शब्द नहीं बोला है उनके लिए। क्या उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी उस व्यक्ति के साथ?
1: ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी को घेरने में राहुल समेत पूरा विपक्ष जुटा है, वहीं बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को निशाने पर लिया जा रहा है। भले ही मुद्दे अलग अलग हों, लेकिन दोनों के बीच बढ़ते टकराव ने बता दिया है कि सियासी पारा बढ़ा रहेगा।
3: और अब उत्तर प्रदेश चुनावों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। तो क्या अयोध्या से इस बार योगी बनाम अखिलेश के बीच में मुकाबला होगा? दरअसल अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी, सलाह दी थी, और उसके बाद योगी ने कह दिया कि हो जाए, अखिलेश चेलों को छोड़कर खुद अयोध्या से उतर जाए।
19: पीडीए का वास्तविक मतलब है प्रदेश डुबाऊ अलायंस।
20: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने पीडीए का मतलब समझाने के बाद वो बात कही जिसे नहले पर दहला कहा जा सकता है।
19: इस अराजकता को स्वीकार करने वाली नहीं, मैं तो आपको ऑफर करता हूं, आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं। तय हो जाए, आप भी आइए और मैं भी आता हूं। लड़ाई चेलों से क्यों? लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए, और उसके लिए मैं कह रहा हूं आइए आप भी।
20: तो योगी ने अखिलेश को चैलेंज दिया है कि हिम्मत है तो लड़ाई आमने सामने लड़ो। योगी का यह बयान अखिलेश के अयोध्या से चुनाव लड़ने की सलाह के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री अगर अयोध्या को लेकर इतने ही आश्वस्त हैं तो अयोध्या से चुनाव लड़ जाएं।
21: अगर वो अयोध्या से इतने ही आश्वस्त हैं, और जिन्होंने ये कहा हो कि पानी का दूध पानी का पानी हो जाएगा 15 दिन के अंदर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अगर वो इतने ही अयोध्या वासियों से आश्वस्त है, तो उन्हें यही फैसला लेना चाहिए, उनके बीच में अगला चुनाव लड़ना चाहिए। ये चुनौती नहीं है, ये सलाह है।
20: अखिलेश ने साफ कहा कि ये उनका चैलेंज नहीं, मुख्यमंत्री को सियासी सलाह है, लेकिन योगी ने इसे स्वीकार करके गेंद अखिलेश के पाले में फेंक दी कि अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाओ, पता चल जाएगा किसमें कितना दम है।
19: ये माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले पेशेवर अपराधियों के सामने उनकी मौत पर उनकी कब्र में जाकर के फातिया पढ़ने वाले लोग,
0: ये हम लोगों से क्या लड़ पाएंगे, इनकी हिम्मत नहीं है। ये पहले ही जनता इनकी छुट्टी कर चुकी है। एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी स्थिति इन लोगों की हो चुकी है।
2: योगी ने कहा कि आने वाले चुनाव में 80% सीटें एनडीए जीतेगा और 20% इंडिया गठबंधन, क्योंकि ये जनता ने तय कर लिया है।
0: जिस अयोध्या में जय श्री राम बोलने पर आपकी सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, जिस अयोध्या के सामने आपने केवल और केवल बैरियर खड़ा किए थे, आज वो अयोध्या एक बार फिर से राम राज्य के नए उदाहरण बनकर के त्रेता युग का स्मरण करा रही है।
2: योगी के इस सियासी हमले का अखिलेश ने तुरंत जवाब देते हुए लोकसभा चुनाव याद दिलाते हुए कहा कि इस बार जनता घमंड का सारा पानी उतार देगी। लोकसभा भूल गए क्या? उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार अखिलेश यादव की तरफ से लगातार खुद को बीजेपी के मुकाबले सनातन के मोर्चे पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को इसलिए अखिलेश की तरफ से लगातार उठाया जाता है। दावा किया जाता है कि बीजेपी को वहां से प्रत्याशी नहीं मिल रहा, लेकिन योगी ने अखिलेश के नहले पर दहला मारकर गेंद उनके पाले में डाल दी है।
0: क्या इससे पहले संभव था?
2: आज तक ब्यूरो
0: मोदी जी का विजन है।
3: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: नहीं पड़े
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
0: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई, ट्रैवल एजेंट कोई गांजा फूंक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
0: तुम्हारा
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
0: यार काट देना ये।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन पर सख्ती के बाद सामान्य हो रहे हैं हालात। खुले गए सभी मेट्रो स्टेशन, आज खुलेंगे सभी बाजार, लेकिन सीजेपी ने आज फिर आंदोलन का किया ऐलान।

0: बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जारी रहेगी जंग। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मेट्रो स्टेशन बंद करने और लोगों को हिरासत में रखने के खिलाफ याचिका। सोमवार को बड़े मार्च की तैयारी में विपक्ष। चेन्नई में छात्रों के बीच राहुल की गूंज। कहा, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं पीएम मोदी। तमिल भाषा और संस्कृति पर प्रधानमंत्री के हमले का जड़ा आरोप। अब सीएम योगी ने अखिलेश को दी चुनौती। कहा, अयोध्या से चुनाव में हो जाए आमना सामना। अखिलेश का जवाब, हमारा युवा पीडीए प्रहरी ही काफी। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन नहीं होने दिया और अब सरकार इसे अपनी सफलता मान सकती है। प्रदर्शनकारियों को ये अपनी कामयाबी लग सकती है कि उन्हें रोकने के लिए हजारों पुलिस वालों का जमावड़ा लगाना पड़ा, ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी, मेट्रो रोकनी पड़ी, बॉर्डर बंद करने पड़े। लेकिन सवाल यह है अब कि आगे क्या होगा।
1: अक्टूबर की तारीख पहले से तय थी। दिल्ली पुलिस को अंदाजा था कि हालात क्या हो सकते हैं, इसीलिए ट्रेनें रद्द की, जंतर मंतर के आसपास का इलाका छावनी बनाया, इंटरनेट बंद किया, मेट्रो स्टेशन भी बंद रहे और जो प्रदर्शनकारी जहां दिखा वहीं धर। हंगामा तो हुआ, दौड़ भाग भी हुई, लेकिन प्रदर्शन नहीं हो पाया। दिल्ली पुलिस ने नेताओं को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा, सबको प्रदर्शन शुरू करने से पहले ही प्रिवेंटिव कस्टडी में भेज दिया। जिनकी कॉल पर इस प्रदर्शन का ऐलान किया गया था वो अभिजीत दीपके तो फ्लाइट के अंदर से ही पकड़ लिए गए। दोपहर में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी उतरी, लेकिन उन्हें भी हिरासत में लिया गया। बीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कई दिनों से 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की कॉल दी हुई थी। वो लगातार लोगों से दिल्ली आने की अपील कर रहे थे। जब ये खबरें आने लगी कि ट्रेन और मेट्रो कैंसिल हो रही हैं, भारी पुलिस बल की तैनाती हो रही है, तो तब भी दीपके चैलेंज कर रहे थे। लेकिन सुबह 10 बजे के करीब जैसे ही उनकी फ्लाइट दिल्ली में लैंड हुई, दिल्ली पुलिस फ्लाइट में ही चढ़ गई और वहीं से उन्हें उठा लिया।
2: अरे सुनने के लिए आया
1: अभिजीत दीपके के साथ सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को भी पुलिस ले गई। इसके बाद दीपके ने एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो में कहा कि अब आंदोलन की कमान अजिंक्य शिंदे संभालेंगे।
3: हेलो एवरीवन, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इसका मतलब मैं, आशु और सौरभ, हम तीनों अरेस्ट हो चुके हैं। हमारे बाद इस मूवमेंट को अजिंक्य लीड करेगा, तो आप जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज फॉलो अजिंक्य शिंदे, ही विल बी कैरिंग फॉरवर्ड द कॉकरोच जनता पार्टी आफ्टर आशुतोष, मी एंड सौरभ। थैंक यू।
1: पुलिस ने पहले नेता को गिरफ्तार किया और फिर एक एक करके कार्यकर्ताओं को धरा, जो जहां दिखा वहीं से उठा लिया। शनिवार को दिल्ली में जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, पालिका बाजार और जनपद के आसपास की सड़कों पर खूब हंगामा रहा। सुबह से ही प्रदर्शनकारी जमा होने शुरू हो गए थे, लेकिन पुलिस ने इंतजाम ऐसे किए थे कि किसी को भी कदम जमाने का मौका नहीं मिला।
2: काफी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं और शांति बनाए रखने की अपील भी है और उसी के मेजर्स लिए जा रहे हैं।
4: कितने लोगों को डिटेन किया गया होगा नई दिल्ली इलाके से? कितने लोग
2: प्रिवेंटिव एक्शंस ले रहे हैं?
4: अच्छा, कुछ लोगों पर पथराव भी किया पुलिसकर्मियों को चोट आई?
2: हाँ, एक जगह पर पथराव।
1: दिल्ली पुलिस के जवान तो थे ही, पैरामिलिट्री भी भरपूर थी और यूपी पुलिस के जवानों को भी बुलाया गया था क्योंकि दिल्ली पुलिस किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए तो जहां भी प्रदर्शनकारी मिला तुरंत पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, बसों में भरा और डिटेंशन सेंटर भेज दिया।
5: कनॉट प्लेस के रीगल थिएटर के पास की ये तस्वीरें जहां पे बड़ी तादाद में आपको डिटेंशन दिखाई देगा। पैरा फोर्सेस के जवान हैं जो डिटेन करके प्रदर्शनकारियों को ले जा रहे हैं। देखिए, बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी यहां पहुंचे थे, अब नारेबाजी करते हुए वो जा रहे हैं। सब युवा हैं, यंगस्टर्स हैं जिनको डिटेन किया गया है। दिल्ली पुलिस की ये गाड़ी है, रॉयड कंट्रोल व्हीकल है, उसमें डिटेन करके इन युवाओं को, प्रदर्शनकारियों को ले जा रहा है। दूसरी गाड़ी जो आप देख रहे हैं, उस गाड़ी के अंदर राकेश चकैत गुट के किसान नेताओं को डाला गया है। आप देखिए, एक तरह से जेल नुमा स्ट्रक्चर है उसके अंदर। आप जब एक बार डाल दिए जाते हैं गाड़ी के अंदर, तो कई बार हमने देखा बीते दिनों में कि प्रोटेस्टर्स गाड़ी से बाहर निकलकर, डिटेंशन से बाहर निकलकर आगे चले गए, लेकिन ये जो गाड़ियां लाई गई हैं वो जेल नुमा स्ट्रक्चर है। प्रदर्शनकारियों को खींचकर गाड़ियों के अंदर डाला जा रहा है।
1: सबसे ज्यादा हल्ला रहा कनॉट प्लेस और इसीलिए यहां सबसे ज्यादा पुलिस की तैनाती थी। पुलिस को पता था कि प्रदर्शनकारी यहीं जुटेंगे, इसीलिए सुबह से ही दिल्ली पुलिस यहां तैनात थी। वरिष्ठ अधिकारियों की भी तैनाती थी।
6: इस समय मैं दिल्ली के इनर सर्कल की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि पालिका बाजार के पास आप देख सकते हैं कैसे भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं यहां पर, उन्होंने अपना एक्शन मार्च शुरू कर दिया है। सीजेपी की तरफ से आज एक बड़ी कॉल दी गई थी, प्रोटेस्ट मार्च की कॉल दी गई थी, उसी को देखते हुए मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कैसे भारी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं यहां पर पहुंचे। क्योंकि दूसरी तरफ मैं आपको जनपद की तरफ दिखाना चाहूंगा कैसे भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं यहां पर इकट्ठे हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको काबू करने के लिए जो दिल्ली पुलिस का एक्शन है यहां पर शुरू हो चुका है। आपने देखा कि कैसे रीगल सिनेमा से भारी मात्रा में जो डिप्लॉयमेंट है इस तरफ मूव करती है, जनपद की तरफ मूव करती है, इनर सर्कल होते हुए, पालिका बाजार होते हुए। और वहीं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कैसे प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए अब जो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज का जो एक्शन है वो यहां पर शुरू हो चुका है। एक
1: दिक्कत ये थी कि प्रदर्शनकारी यहाँ गलियों के अंदर घुस जा रहे थे, पुलिस लगातार उन्हें दौड़ा रही थी। जैसे ही पुलिस दौड़ाती तो वो एक गली से घुसकर दूसरी गली से निकल आते, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवानों को साफ ऑर्डर था कि किसी को नहीं छोड़ना है, सबको प्रिवेंटिव कस्टडी में लेना है।
7: कनॉट प्लेस जनपद का ये इलाका है और यहाँ पर एक एक करके जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। धीरे धीरे कर यहाँ पर जो भीड़ थी वो बढ़ रही थी प्रदर्शनकारियों की, और उसके बाद जो अलग अलग छोटी छोटी गलियाँ हैं इन इलाकों में, वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको डिटेन किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, और उनको अब गलियों से ढूंढ ढूंढ कर जो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो डिटेन करके लेकर जा रही है। तो अलग अलग तस्वीरें देखिए चारों तरफ, कहीं भी अगर आपको मेरे कैमरा पर्सन हिमांशु दिखाएंगे तो एक एक करके जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहां पर डिटेन किया गया है। तो एक तस्वीर जो थी वो यहां पर थोड़ी देर से हम लोग देख रहे थे कि प्रदर्शनकारी एक एक कर यहाँ पर जमा हो रहे थे, और उसके बाद अचानक से जो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो यहाँ पर आती हैं और इन प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर लेकर गई।
1: कॉकरोच जनता पार्टी की प्रदर्शन की कॉल पर ये प्रदर्शनकारी जमा तो हो गए, लेकिन शायद इन्हें ये अंदाजा नहीं था कि पुलिस की इतनी बड़ी तैनाती होगी। ये सब जंतर मंतर जाना चाहते थे, लेकिन वहां से कई किलोमीटर पहले ही पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया।
5: प्रदर्शनकारियों का टेम्पल रन शुरू हो गया है, प्रदर्शनकारियों का टेम्पल रन शुरू हो गया है। वो एक तरह से इस सेक्टर से दौड़ के भाग रहे हैं और पुलिस उनको यहां से हटाते हुए दिखाई दे रही है। बीते एक घंटे से यहां पर ये प्रदर्शनकारी, जेंजी युवा प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे। ज्ञानेश कुमार सीसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वोट चोरी के बारे में नारेबाजी कर रहे थे, जो विपक्ष का आरोप है उसी तरह के नारेबाजी आपको नारेबाजी यहां पर सुनाई दे रहा था। बीते एक घंटे से यहां ये जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन अब अचानक से दिल्ली पुलिस एक्शन बोर्ड में आती है और इस सेक्टर में भी जो प्रदर्शनकारी थे उनको हटाया जा रहा है।
8: बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत। ये देश में जो सरकार है बहुत गलत कर रही है सर, बहुत ज्यादा गलत कर रही है।
5: हटाया जा रहा है। कहां आए थे आप लोग?
9: प्रोटेस्ट
5: करने के लिए आए थे। अभिजीत को डिटेन किया गया, उसके बावजूद आप लोग यहां पहुंच गए हैं।
9: वो भले से उनको डिटेन कर लिया गया हो, लेकिन हम उनके सपोर्ट में हैं।
5: किसी पार्टी से हैं आप?
9: नहीं नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं बस उनको सपोर्ट कर रहा हूं, कांग्रेस जनता पार्टी को।
5: आप लोग नारे लगा रहे थे इसलिए डिटेन हो रहे हैं?
9: हाँ जी, सपोर्ट कर रहे थे इसलिए हमको डिटेन किया गया है।
1: प्रदर्शनकारियों ने शाम शाम तक भी कोशिश की कि किसी भी तरीके से वो कनॉट प्लेस से जंतर मंतर की तरफ चले जाएं, लेकिन पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी। पुलिस ने किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया।
6: दूसरी तरफ मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैसे दिल्ली पुलिस ने यहां पर डिटेन करना शुरू कर लिया। देखिए, जो प्रदर्शनकारी थी उनको उठाना शुरू कर दिया। वहीं मैं अपना कैमरा सहयोगी अजय जी से कहूंगा एक तस्वीर उस तरफ की भी दिखाएं कि जैसे ही यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचते हैं प्रदर्शनकारी भागने लग जाते हैं। तस्वीरें मैं आपको इनर सर्कल की दिखा रहा हूं, एन ब्लॉक की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे जैसे ही प्रदर्शनकारी देखते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान उनको डिटेन करने के लिए आ रहे हैं, वो भागते हुए दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं। और पहली बार नहीं, सुबह से देखा जा रहा है कि जैसे ही प्रदर्शनकारी इकट्ठे होते हैं जनपद के पास, रीगल सिनेमा के पास, ब्लॉक ए के पास, वहीं देखा जाता है कि भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं इकट्ठे होकर उनको डिटेन करना शुरू कर देते हैं।
1: जब पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को दौड़ा रही थी तो कुछ प्रदर्शनकारी बंगला साहिब गुरुद्वारे के अंदर भी चले गए। दिल्ली पुलिस ने उनका पीछा किया लेकिन गुरुद्वारे के गेट पर रुक गए और अंदर नहीं गए।
10: अभी भी जो सबसे बड़ा चैलेंज दिल्ली पुलिस के लिए, यहाँ अगर सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो वहाँ वो बना हुआ है ये गुरुद्वारा बंगला साहिब, क्योंकि इसके अंदर कई सारे जो प्रदर्शनकारी हैं वो जाकर के रुके हुए हैं और हर कुछ देर में बाहर आते हैं, नारे लगाते हैं और जैसे ही पुलिस उन्हें पकड़ने जाती है वापस अंदर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस उन्हें गुरुद्वारे के अंदर घुस के नहीं पकड़ेगी। और याद रखिए, ज्यादातर CJP के लोग नहीं है, ये सारे लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के, SFI के और ISA के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लोग यहाँ पर बहुत अच्छी रणनीति बनाकर आए। उन्हें पता था कि एक रिलीजियस प्लेस के अंदर, एक धार्मिक स्थल के अंदर पुलिस घुसेगी नहीं। मैसेजिंग है ये अंदर चली गई है, जिसकी वजह से आप देखें तो गेट्स के पास आपको अब प्रदर्शनकारी नहीं दिखेंगे, प्रदर्शनकारी अंदर की तरफ है अब। और बाहर बहुत भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है। और जैसे ही पुलिस थोड़ी सी पीछे होती है, 10 कदम पीछे होती है, तो अचानक से अंदर से कुछ लोग आते हैं और गेट के अंदर ही खड़े होकर नारे लगाते हैं और फिर वापस अंदर भाग जाते हैं। तो ये जो है पिछले 1-1.5 घंटे से कुछ ऐसा ही जो खेल है ये दिल्ली पुलिस के साथ चल रहा है, लेकिन जो भी बाहर आता है उसे तुरंत पकड़ के यहां से डिटेन करके तुरंत हटाया जा रहा है। और धीरे धीरे अंदर रहने वाले लोगों की संख्या भी कम होती हुई अब दिखाई दे रही है।
1: आज तक ब्यूरो।
0: अनिश कुमार को लेकर विपक्ष भी सड़कों पर है और CJP के समर्थन में अरविंद केजरीवाल और ममता बैनर्जी भी आए। लेफ्ट पार्टियां भी सड़कों पर उतरी और कांग्रेस पार्टी दूर ही दिखाई थी।
11: 1.5 घंटे से दिल्ली की सड़कों पर हम लोगों को घुमा रहे हैं, हमें पता नहीं कहां ले जा रहे हैं, कौन से थाने में ले जा रहे हैं।
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही कांग्रेस पार्टी CJP के आंदोलन से दूर रही। उसे आम आदमी पार्टी, लेफ्ट और TMC ने अपना समर्थन दिया। ममता मुंह पर बैंडेड लगाकर धरने पर बैठ गईं। लेकिन ममता बैनर्जी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस वैन में ममता बैनर्जी को ले जाती दिखी, कहा कि वो इस मामले में झुकेंगे नहीं।
12: আমরা আমাদের বাড়ির পাশে যে বাস স্ট্যান্ড, প্রথমে তো আমরা যন্ত্র মন্ত্র যেতে চেয়েছিলাম, CJP আমাদের ইনভাইট আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, স্টুডেন্ট ইউথরা তাদের সবাইকে অ্যারেস্ট করেছে, মিডিয়াকে অ্যারেস্ট করেছে, অল পলিটিক্যাল লিডারদের অ্যারেস্ট করেছে আর ঘোরাচ্ছে। তারপরে আমরা যখন বাড়ির সামনে একটা বেঞ্চ নিয়ে একটা বাস স্ট্যান্ডে বসলাম, যখন আমাদের যেতে দেওয়া হলো না, কিন্তু আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বসেছিলাম। সেভ ইন্ডিয়া, সেভ ডেমোক্রেসি।
1: ममता बैनर्जी की तरह अरविंद केजरीवाल भी CJP का समर्थन करने उतरे, लेकिन उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया।
0: केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज समेत कई नेता प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें हिरासत में लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया।
11: बहुत गुस्से में है जो जो लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं। मैं पूरे देश के लोगों को, युवाओं को हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, हम सब लोगों को मिलके देश को बचाना होगा। आप जहां भी हैं देश में, अभी निकलिए अपने घर से, दिल्ली की तरफ कूच कीजिए, दिल्ली आइए, स्कूटर पे आइए, पैदल आइए, बस में आइए, हवाई जहाज में आइए, ट्रेन में आइए, जैसे आ सकते हैं आइए, दिल्ली की तरफ कूच कीजिए। जहां मोदी जी आपको रोके वहीं बैठ जाओ, उसी जगह को जंतर मंतर बना दो, पूरे देश को जंतर मंतर बना दो, लेकिन मोदी जी को वोट चोरी करने से रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये देश नहीं बचेगा।
0: अरविंद केजरीवाल ने पहले ही इस प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान कर दिया था। ममता और केजरीवाल के अलावा पुलिस ने केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन, त्रिपुरा के पूर्व सीएम माणिक सरकार और सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास को भी हिरासत में लिया। यूट्यूबर ध्रुव राठी को सुबह ही गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया था। आईसा अध्यक्ष नेहा बोरा को भी हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन से दूरी बनाकर रखी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चेन्नई में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से दक्षिण भारत में इस मामले को गरमाने में लगे हैं। दिल्ली की तरह मुंबई में भी सीजेपी समर्थकों की तरफ से प्रदर्शन करने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया। तो चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने वहां पर उन्हें हिरासत में ले लिया।
1: मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में जिसने भी प्रदर्शन करने की कोशिश की, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसमें महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी भी शामिल।
13: नेशनल कॉलेज से उठाया, बैंड्रा पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, सांताक्रूज पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, डीएन नगर ले आए। डीएन नगर में कुछ खास रिसेप्शन तैयार किया होगा, देखते रहिए। ये पुलिस की गुलामी की निशानी है, बेचारे वो भी क्या कर सके, सत्ता वालों के चाकर जो बन गए। एक दिन तख्ता पलट होगा, फिर हिसाब किया जाएगा।
1: तुषार गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद आदित्य ठाकरे अपने पार्टी नेताओं के साथ वहां पहुंचे।
14: जिस देश में गांधी जी को डिटेन किया जाता है और इतना डर है भाजपा के मन में कि जैसे ही हम यहाँ आने वाले थे उनको लेके गए बुरेवली, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इतना मन में डर क्यों है? भले वो गांधी जी के बारे में हो या हमारे बारे में हो, या अभिजीत के बारे में हो, या रत्ना या सौरभ या राहुल जी के बारे में हो। आपने ये भी देखा होगा, राहुल जी जैसे ही चुनाव आयोग से मिलने गए कितनी बड़ी तादाद में फौज लगाई गई। ये सारी फोर्स जो बॉर्डर पे होनी चाहिए वो आप दिल्ली में लगा रहे हो, इतना डर क्यों है आपके मन में? किससे डरते हो आप? क्यों भय है इतना मन में?
1: मुंबई में अभिनेता और आमिर खान के भांजे इमरान खान भी सीजेपी के समर्थन में प्रदर्शन करने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया।
15: मेरा ये मानना है कि इस देश में और इस शहर में वी शुड ऑलवेज हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ऐसा ऐसी भी क्या खतरा है? आप यहाँ देख सकते हैं कितनी सारी पुलिस के लोग हैं।
16: दिल्ली में भी प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया गया, दिल्ली में भी डिटेन किया गया।
15: आई बिलीव दैट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू शो अप एंड शो दैट देयर दैट वी आर नॉट अफ्रेड एंड दैट देयर इज एक्चुअली नो डेंजर एंड नो थ्रेट ओवर हियर। द ओनली थ्रेट इज फ्रॉम ऑल ऑफ दीस पीपल अटैकिंग विद स्टिक्स।
1: मुंबई में प्रदर्शन को देखते हुए सुबह से पुलिस ने तैयारी कर रखी थी। ड्रोन से प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने के इंतजाम भी देखे गए।
17: पुलिस को गाड़ी को रोकने का यहाँ पर भरसक कोशिश थी, लेकिन प्रदर्शनकारी जो है वो तो देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी जो है वो सुन नहीं रहे हैं और पुलिस पे जो है वो झड़प है वो बढ़ती जा रही है। पुलिस डिटेन कर रही है लेकिन प्रदर्शनकारी जो है वो इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं। और ये जो साइट है इसे हेरिटेज साइट पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि हेरिटेज साइट है, यहाँ प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है। लेकिन जैसा कि देख सकते हैं पुरजोर विरोध जो है प्रदर्शनकारियों द्वारा किया जा रहा है और पुलिस जो है इन्हें डिटेन करने की भरपूर कोशिश कर रही है।
1: चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेता चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसके बाद मनीष सिसोदिया समेत कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
18: बस में किस तरह जो है आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को लीडर्स को डिटेन किया जा रहा है भर भर। और मनीष सिसोदिया आप देख सकते हैं बस के अंदर बैठे हैं, मनीष सिसोदिया को बस के अंदर बिठाया गया है और यहां से हटाया गया है। सो अभी तक तो पुलिस जो है वो कामयाबी पुलिस को मिली है कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक नहीं जाने गया, लेकिन मनीष सिसोदिया आप देख सकते हैं कि विंडो में बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, रेड शर्ट में हैं और लगातार जो है यहां पर डिटेंशन जो अब हो रही हैं। और ये बस जो कि जो बस जिसमें आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और लीडर्स को भरा गया है उनको यहां से मूव करके लेके जाया जा रहा है। सो जब मेन लीडरशिप चाहे वो सोनिया मान हो, मनीष सिसोदिया हो, हरपाल चीमा हो और दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको यहां से मूव कराया जा रहा है।
1: दक्षिण में बेंगलुरु और चेन्नई में भी प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी सड़कों पर प्रदर्शनकारी निकले, जहां पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आईं।
0: बीजेपी की तरफ से भी विरोध का मोर्चा संभाला गया और दिल्ली में कांग्रेस सांसद पर छात्राओं से छेड़छाड़ तो लखनऊ में महिला पुलिसकर्मियों से राहुल प्रियंका की तरफ से की गई कथित बदसलूकी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा सड़कों पर निकल गया।
19: गणेश कुमार जी को पद्म भूषण से पुरस्कृत करना चाहिए।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर भले ही विपक्षी दल और सीजेपी प्रदर्शन कर रहे हों, लेकिन बंगाल बीजेपी की तरफ से ज्ञानेश कुमार को हिंसा मुक्त चुनाव का श्रेय दिया जा रहा है जो 70 सालों में नहीं हुआ।
19: अरे ममता दीदी कलकत्ते में क्यों नहीं आए? हम लोग तो कलकत्ते में उसको बुला रहे, इतना पूजा उसको इंतजार कर रहे हैं। अरे भैया कॉकरोच केकड़ा ये सब लेकर क्या होगा? ममता जी चले ये कलकत्ते में।
1: बीजेपी की तरफ से लखनऊ में महिला मोर्चा के प्रदर्शन की अब ये तस्वीर देखी। बीजेपी ने ये प्रदर्शन राहुल गांधी के खिलाफ किया जिन पर दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मियों से बदसलूकी का आरोप है। इसे लेकर बीजेपी की तरफ से वीडियो भी जारी किए गए जिसमें प्रियंका गांधी एक महिला पुलिसकर्मी को कोहनी मारती दिखती है तो राहुल गांधी पर एक महिला पुलिसकर्मी को गलत तरीके से छूने का आरोप बीजेपी लगाती है।
20: लखनऊ में आज बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन है, कांग्रेस पार्टी कार्यालय घेराव करने का कार्यक्रम है और इस समय पर मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से ये महिला मोर्चा का प्रदर्शन शुरू हुआ है और तमाम महिलाएं उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं।
21: खुद राहुल गांधी महिलाओं को ऐसे छू रहे, प्रियंका गांधी यूं कोनी मार रही है तो हम इस सम्मान के लिए जा रहे हैं कि इस वर्दी का भी आप लोग को सम्मान करना सीखना चाहिए, वो आपके लिए खड़े 24/7।
1: बीजेपी महिला मोर्चा ने लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के पास और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना के आवास के पास लगे पोस्टर भी फाड़ दिए। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा ने एक अलग मुद्दे पर प्रदर्शन किया, मामला जेएनयू में प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर छात्राओं के यौन शोषण का है जिसके बाद उन्हें जेएनयू से बर्खास्त कर दिया गया। अकोइजम कांग्रेस सांसद भी हैं इसलिए कांग्रेस की चुप्पी पर बीजेपी ने उसे घेर लिया।
22: राहुल गांधी पुलिस महिला कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और एक व्यक्ति जिस पे आरोप साबित हो गया, जिसको यूनिवर्सिटी से हटाया गया है, पर वो फिर भी उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने उनके लिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने एक शब्द नहीं बोला है उनके लिए। क्या उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी उस व्यक्ति के साथ?
1: ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी को घेरने में राहुल समेत पूरा विपक्ष जुटा है, वहीं बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को निशाने पर लिया जा रहा है। भले ही मुद्दे अलग अलग हों, लेकिन दोनों के बीच बढ़ते टकराव ने बता दिया है कि सियासी पारा बढ़ा रहेगा।
0: और अब उत्तर प्रदेश चुनावों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, तो क्या अयोध्या से इस बार योगी बनाम अखिलेश के बीच में मुकाबला होगा? दरअसल अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी, सलाह दी थी और उसके बाद योगी ने कह दिया कि हो जाए, अखिलेश चेलों को छोड़कर खुद अयोध्या से उतर जाए।
23: पीडीए का वास्तविक मतलब है प्रदेश डुबाऊ एलायंस।
24: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने पीडीए का मतलब समझाने के बाद वो बात कही जिसे नहले पर दहला कहा जा सकता है।
23: इस अराजकता को स्वीकार करने वाली नहीं, मैं तो आपको ऑफर करता हूं, आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं, तय हो जाए, आप भी आइए और मैं भी आता हूं। लड़ाई चेलों से क्यों? लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए और उसके लिए मैं कह रहा हूं आइए आप भी।
1: इससे पहले संभव है
24: तो योगी ने अखिलेश को चैलेंज दिया है कि हिम्मत है तो लड़ाई आमने सामने लड़ो। योगी का यह बयान अखिलेश के अयोध्या से चुनाव लड़ने की सलाह के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री अगर अयोध्या को लेकर इतने ही आश्वस्त हैं तो अयोध्या से चुनाव लड़ जाएं।
2: अगर वो अयोध्या से इतने ही आश्वस्त हैं और जिन्होंने ये कहा हो कि पानी का दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा 15 दिन के अंदर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अगर वो इतने ही अयोध्या वासियों से अस्वस्थ है तो उन्हें यही फैसला लेना चाहिए, उनके बीच में अगला चुनाव लड़ना चाहिए। ये चुनौती नहीं है, ये सलाह है।
24: अखिलेश ने साफ कहा कि ये उनका चैलेंज नहीं, मुख्यमंत्री को सियासी सलाह है, लेकिन योगी ने इसे स्वीकार करके गेंद अखिलेश के पाले में फेंक दी कि अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाओ, पता चल जाएगा किसमें कितना दम है।
23: ये माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले पेशेवर अपराधियों के सामने उनकी मौत पर उनकी कब्र में जाकर के फातिया पढ़ने वाले लोग ये हम लोगों से क्या लड़ पाएंगे? इनकी हिम्मत नहीं है, ये पहले ही जनता इनकी छुट्टी कर चुकी है। एक खिसियानी बिल्ली खंपा नोचे जैसी स्थिति इन लोगों की हो चुकी है।
24: योगी ने कहा कि आने वाले चुनाव में 80% सीटें एनडीए जीतेगा और 20% इंडिया गठबंधन, क्योंकि ये जनता ने तय कर लिया है।
23: जिस अयोध्या में जय श्री राम बोलने पर आपकी सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, जिस अयोध्या के सामने आपने केवल और केवल बैरियर खड़ा किए थे, आज वो अयोध्या एक बार फिर से राम राज्य के नए उदाहरण बनकर के त्रेता युग का स्मरण करा रही है।
24: योगी के इस सियासी हमले का अखिलेश ने तुरंत जवाब देते हुए लोकसभा चुनाव याद दिलाते हुए कहा कि इस बार जनता घमंड का सारा पानी उतार देगी। लोकसभा भूल गए क्या? उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार अखिलेश यादव की तरफ से लगातार खुद को बीजेपी के मुकाबले सनातन के मोर्चे पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को इसलिए अखिलेश की तरफ से लगातार उठाया जाता है। दावा किया जाता है कि बीजेपी को वहां से प्रत्याशी नहीं मिल रहा, लेकिन योगी ने अखिलेश के नहले पर दहला मारकर गेंद उनके पाले में डाल दी है।
23: क्या इससे पहले संभव था ये?
24: आज तक ब्यूरो।
23: मोदी जी का रीजन है।
0: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: सामान्य हो रहे हैं हालात, खुले गए सभी मेट्रो स्टेशन, आज खुलेंगे सभी बाजार, लेकिन सीजेपी ने आज फिर आंदोलन का किया ऐलान। सीजेपी के प्रदर्शन पर बीजेपी का ताबड़तोड़ हमला, कहा सड़कों पर अराजकता की साजिश, राहुल का बयान, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जारी रहेगी जंग। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मेट्रो स्टेशन बंद करने और लोगों को हिरासत में रखने के खिलाफ याचिका, सोमवार को बड़े मार्च की तैयारी में विपक्ष। चेन्नई में छात्रों के बीच राहुल की गूंज, कहा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं पीएम मोदी, तमिल भाषा और संस्कृति पर प्रधानमंत्री के हमले का जड़ा आरोप। अब सीएम योगी ने अखिलेश को दी चुनौती, कहा अयोध्या से चुनाव में हो जाए आमना सामना, अखिलेश का जवाब, हमारा युवा पीडीए प्रहरी ही काफी। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन नहीं होने दिया और अब सरकार इसे अपनी सफलता मान सकती है। प्रदर्शनकारियों को ये अपनी कामयाबी लग सकती है कि उन्हें रोकने के लिए हजारों पुलिस वालों का जमावड़ा लगाना पड़ा, ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी, मेट्रो रोकनी पड़ी, बॉर्डर बंद करने पड़े, लेकिन सवाल यह है अब कि आगे क्या होगा।
1: अक्टूबर की तारीख पहले से तय थी। दिल्ली पुलिस को अंदाजा था कि हालात क्या हो सकते हैं, इसीलिए ट्रेनें रद्द की, जंतर मंतर के आसपास का इलाका छावनी बनाया, इंटरनेट बंद किया, मेट्रो स्टेशन भी बंद रहे और जो प्रदर्शनकारी जहां दिखा वहीं धरने। हंगामा तो हुआ, दौड़ भाग भी हुई, लेकिन प्रदर्शन नहीं हो पाया। दिल्ली पुलिस ने नेताओं को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा, सबको प्रदर्शन शुरू करने से पहले ही प्रिवेंटिव कस्टडी में भेज दिया। जिनकी कॉल पर इस प्रदर्शन का ऐलान किया गया था वो अभिजीत दीपके तो फ्लाइट के अंदर से ही पकड़ लिए गए। दोपहर में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी उतरी, लेकिन उन्हें भी हिरासत में लिया गया। बीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कई दिनों से 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की कॉल दी हुई थी। वो लगातार लोगों से दिल्ली आने की अपील कर रहे थे। जब ये खबरें आने लगी कि ट्रेन और मेट्रो कैंसिल हो रही हैं, भारी पुलिस बल की तैनाती हो रही है, तो तब भी दीपके चैलेंज कर रहे थे। लेकिन सुबह 10 बजे के करीब जैसे ही उनकी फ्लाइट दिल्ली में लैंड हुई, दिल्ली पुलिस फ्लाइट में ही चढ़ गई और वहीं से उन्हें उठा लिया। अभिजीत दीपके के साथ सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को भी पुलिस ले गई। इसके बाद दीपके ने एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो में कहा कि अब आंदोलन की कमान अजिंक्य शिंदे संभालेंगे।
2: हेलो एवरीवन, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इसका मतलब मैं, आशु और सौरभ, हम तीनों अरेस्ट हो चुके हैं। हमारे बाद इस मूवमेंट को अजिंक्य लीड करेगा, तो आप जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज फॉलो अजिंक्य शिंदे, ही विल बी कैरिंग फॉरवर्ड द कॉकरोच जनता पार्टी आफ्टर आशुतोष, मी एंड सौरभ। थैंक यू।
1: पुलिस ने पहले नेता को गिरफ्तार किया और फिर एक एक करके कार्यकर्ताओं को धरा, जो जहां दिखा वहीं से उठा लिया। शनिवार को दिल्ली में जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, पालिका बाजार और जनपद के आसपास की सड़कों पर खूब हंगामा रहा। सुबह से ही प्रदर्शनकारी जमा होने शुरू हो गए थे, लेकिन पुलिस ने इंतजाम ऐसे किए थे कि किसी को भी कदम जमाने का मौका नहीं मिला।
3: उसी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं और शांति बनाए रखने की अपील भी है और उसी के मेजर्स लिए जा रहे हैं।
4: कितने लोगों को डिटेन किया हो गया होगा नई दिल्ली इलाके से? कितने लोग
3: प्रिवेंटिव एक्शंस ले रहे हैं?
4: अच्छा, कुछ लोगों पर पथराव भी किया पुलिसकर्मियों को, चोट आई?
3: हाँ, एक जगह पर पथराव।
1: दिल्ली पुलिस के जवान तो थे ही, पैरामिलिट्री भी भरपूर थी और यूपी पुलिस के जवानों को भी बुलाया गया था क्योंकि दिल्ली पुलिस किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए तो जहां भी प्रदर्शनकारी मिला तुरंत पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, बसों में भरा और डिटेंशन सेंटर भेज दिया।
5: कनॉट प्लेस के रीगल थिएटर के पास की ये तस्वीरें जहां पे बड़ी तादाद में आपको डिटेंशन दिखाई देगा। पैरा फोर्सेस के जवान हैं जो डिटेन करके प्रदर्शनकारियों को ले जा रहे हैं। देखिए, बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी यहां पहुंचे थे, अब नारेबाजी करते हुए वो जा रहे हैं। सब युवा हैं, यंगस्टर्स हैं जिनको डिटेन किया गया है। दिल्ली पुलिस की ये गाड़ी है, रॉयड कंट्रोल व्हीकल है, उसमें डिटेन करके इन युवाओं को प्रदर्शनकारियों को ले जा रहा है। दूसरी गाड़ी जो आप देख रहे हैं, उस गाड़ी के अंदर राकेश चुकैत गुट के किसान नेताओं को डाला गया है। आप देखिए, एक तरह से जेल नुमा स्ट्रक्चर है उसके अंदर। आप जब एक बार डाल दिए जाते हैं गाड़ी के अंदर, तो कई बार हमने देखा बीते दिनों में कि प्रोटेस्टर्स गाड़ी से बाहर निकलकर, डिटेंशन से बाहर निकलकर आगे चले गए, लेकिन ये जो गाड़ियां लाई गई हैं वो जेल नुमा स्ट्रक्चर है। प्रदर्शनकारियों को खींचकर गाड़ियों के अंदर डाला जा रहा है।
1: सबसे ज्यादा हल्ला रहा कनॉट प्लेस में और इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा पुलिस की तैनाती थी। पुलिस को पता था कि प्रदर्शनकारी यहीं जुटेंगे, इसीलिए सुबह से ही दिल्ली पुलिस यहाँ तैनात थी। वरिष्ठ अधिकारियों की भी तैनाती थी।
6: इस समय मैं दिल्ली के इनर सर्कल की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि पालिका बाजार के पास आप देख सकते हैं कैसे भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर, उन्होंने अपना एक्शन

0: कैसे भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको काबू करने के लिए जो दिल्ली पुलिस का एक्शन है यहाँ पर शुरू हो चुका है। आपने देखा कि कैसे रीगल सिनेमा से भारी मात्रा में जो डिप्लॉयमेंट है इस तरफ मूव करती है, जनपथ की तरफ मूव करती है, इनर सर्कल होते हुए, पालिका बाजार होते हुए। और वही तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कैसे प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए अब जो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज का जो एक्शन है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक
1: दिक्कत ये थी कि प्रदर्शनकारी यहाँ गलियों के अंदर घुस जा रहे थे, पुलिस लगातार उन्हें दौड़ा रही थी। जैसे ही पुलिस दौड़ाती तो वो एक गली से घुसकर दूसरी गली से निकल आते, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवानों को साफ ऑर्डर था कि किसी को नहीं छोड़ना है, सबको प्रिवेंटिव कस्टडी में लेना है।
2: कनॉट प्लेस जनपद का ये इलाका है और यहाँ पर एक एक करके जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। धीरे धीरे कर यहाँ पर जो भीड़ थी वो बढ़ रही थी प्रदर्शनकारियों की, और उसके बाद जो अलग अलग छोटी छोटी गलियाँ हैं इन इलाकों में वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको डिटेन किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, और उनको अब गलियों से ढूंढ ढूंढ कर जो पुलिस है पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो डिटेन करके लेकर जा रही है। तो अलग अलग तस्वीरें देखिए चारों तरफ, कहीं भी अगर आपको मेरे कैमरा पर्सन हिमांशु दिखाएंगे तो एक एक करके जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहां पर डिटेन किया गया है। तो एक तस्वीर जो थी वो यहां पर थोड़ी देर से हम लोग देख रहे थे कि प्रदर्शनकारी एक एक कर यहाँ पर जमा हो रहे थे, और उसके बाद अचानक से जो पुलिस है पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो यहाँ पर आती हैं और इन प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर लेकर गई।
1: कॉकरोच जनता पार्टी की प्रदर्शन के कॉल पर ये प्रदर्शनकारी जमा तो हो गए, लेकिन शायद इन्हें ये अंदाजा नहीं था कि पुलिस की इतनी बड़ी तैनाती होगी। ये सब जंतर मंतर जाना चाहते थे, लेकिन वहां से कई किलोमीटर पहले ही पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया।
3: प्रदर्शनकारियों का टेंपल रन शुरू हो गया है, प्रदर्शनकारियों का टेंपल रन शुरू हो गया है, वो एक तरह से इस सेक्टर से दौड़ के भाग रहे हैं और पुलिस उनको यहां से हटाते हुए दिखाई दे रही है। बीते एक घंटे से यहां पर ये प्रदर्शनकारी जेंजी युवा प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे, ज्ञानेश कुमार सीसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वोट चोरी के बारे में नारेबाजी कर रहे थे, जो विपक्ष का आरोप है उसी तरह के नारेबाजी यहाँ पर सुनाई दे रहा था। बीते एक घंटे से यहाँ ये जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन अब अचानक से दिल्ली पुलिस एक्शन बोर्ड में आती है और इस सेक्टर में भी जो प्रदर्शनकारी थे उनको हटाया जा रहा है।
4: बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत, ये देश में जो सरकार है ना बहुत गलत कर रही है, बहुत ज्यादा गलत कर रही है।
3: जा रहा है, कहाँ आए थे आप लोग?
5: प्रोटेस्ट
3: करने के लिए आए थे। अभिजीत को डिटेन किया गया, उसके बावजूद आप लोग यहाँ पहुँच गए हैं?
5: वो भले से उनको डिटेन कर लिया गया हो, लेकिन हम उनके सपोर्ट में हैं।
3: किसी पार्टी से हैं आप?
5: नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं बस उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, कॉकरोच जनता पार्टी को।
3: आप लोग नारे लगा रहे थे इसलिए डिटेन हो रहे हैं?
5: हाँ जी, सपोर्ट कर रहे थे इसलिए हमको डिटेन किया गया है।
1: प्रदर्शनकारियों ने शाम शाम तक भी कोशिश की कि किसी भी तरीके से वो कनॉट प्लेस से जंतर मंतर की तरफ चले जाएं, लेकिन पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी, पुलिस ने किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया।
0: दूसरी तरफ मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैसे दिल्ली पुलिस ने यहां पर डिटेन करना शुरू कर लिया। देखिए जो प्रदर्शनकारी थी उनको उठाना शुरू कर दिया। वहीं मैं अपना कैमरा सहयोगी अजय जी से कहूंगा एक तस्वीर उस तरफ की भी दिखाएं कि जैसे ही यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचते हैं प्रदर्शनकारी भागने लग जाते हैं। तस्वीरें मैं आपको इनर सर्कल की दिखा रहा हूं, एन ब्लॉक की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे जैसे ही प्रदर्शनकारी देखते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवान उनको डिटेन करने के लिए आ रहे हैं वो भागते हुए दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं। और पहली बार नहीं, सुबह से देखा जा रहा है कि जैसे ही प्रदर्शनकारी इकट्ठे होते हैं जनपद के पास रीगल सिनेमा के पास ब्लॉक ए के पास, वहीं देखा जाता है कि भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं इकट्ठे होकर उनको डिटेन करना शुरू कर देते हैं।
1: जब पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को दौड़ा रही थी तो कुछ प्रदर्शनकारी बंगला साहिब गुरुद्वारे के अंदर भी चले गए। दिल्ली पुलिस ने उनका पीछा किया लेकिन गुरुद्वारे के गेट पर रुक गए और अंदर नहीं गए।
6: अभी भी जो सबसे बड़ा चैलेंज दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ अगर सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो वहाँ वो बना हुआ है ये गुरुद्वारा बंगला साहिब, क्योंकि इसके अंदर कई सारे जो प्रदर्शनकारी हैं वो जाकर के रुके हुए हैं और हर कुछ देर में बाहर आते हैं, नारे लगाते हैं, और जैसे ही पुलिस उन्हें पकड़ने जाती है

0: वापस अंदर भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस उन्हें गुरुद्वारे के अंदर घुस के नहीं पकड़ेगी। और याद रखिए, ज्यादातर सीजेपी के लोग नहीं है, ये सारे लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस के, एसएफआई के और आयसा के जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो लोग यहाँ पर बहुत अच्छी रणनीति बनाकर आए। उन्हें पता था कि एक रिलीजियस प्लेस के अंदर, एक धार्मिक स्थल के अंदर पुलिस घुसेगी नहीं। मैसेजिंग है ये अंदर चली गई है, जिसकी वजह से आप देखें तो गेट्स के पास आपको अब प्रदर्शनकारी नहीं दिखेंगे, प्रदर्शनकारी अंदर की तरफ है अब, और बाहर बहुत भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है। और जैसे ही पुलिस थोड़ी सी पीछे होती है, 10 कदम पीछे होती है, तो अचानक से अंदर से कुछ लोग आते हैं और गेट के अंदर ही खड़े होकर नारे लगाते हैं और फिर वापस अंदर भाग जाते हैं। तो ये जो है पिछले 1-1.5 घंटे से कुछ ऐसा ही जो खेल है ये दिल्ली पुलिस के साथ चल रहा है, लेकिन जो भी बाहर आता है उसे तुरंत पकड़ के यहाँ से डिटेन करके तुरंत हटाया जा रहा है। और धीरे धीरे अंदर रहने वाले लोगों की संख्या भी कम होती हुई अब दिखाई दे रही है।
1: आज तक ब्यूरो।
2: अनिश कुमार को लेकर विपक्ष भी सड़कों पर है और सीजेपी के समर्थन में अरविंद केजरीवाल और ममता बैनर्जी भी आए। लेफ्ट पार्टियां भी सड़कों पर उतरी और कांग्रेस पार्टी दूर ही दिखाई थी।
3: 1.5 घंटे से दिल्ली की सड़कों पर हम लोगों को घुमा रहे हैं, हमें पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, कौन से थाने में ले जा रहे हैं।
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही कांग्रेस पार्टी सीजेपी के आंदोलन से दूर रही, उसे आम आदमी पार्टी, लेफ्ट और टीएमसी ने अपना समर्थन दिया। ममता मुंह पर बैंडेड लगाकर धरने पर बैठ गईं, लेकिन ममता बैनर्जी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस वैन में ममता बैनर्जी को ले जाती दिखी, कहा कि वो इस मामले में झुकेंगी नहीं।
4: আমরা আমাদের বাড়ির পাশে যে বাস স্ট্যান্ড, প্রথমে তো আমরা যন্ত্র মন্ত্র যেতে চেয়েছিলাম, সিজেপি আমাদের ইনভাইট আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, স্টুডেন্ট ইউথরা তাদের সবাইকে অ্যারেস্ট করেছে, মিডিয়াকে অ্যারেস্ট করেছে, অল পলিটিক্যাল লিডারদের অ্যারেস্ট করেছে আর ঘোরাচ্ছে। তারপরে আমরা যখন বাড়ির সামনে একটা বেঞ্চ নিয়ে একটা বাস স্ট্যান্ডে বসলাম, তখন আমাদের যেতে দেওয়া হলো না, কিন্তু আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বসেছিলাম। সেভ ইন্ডিয়া, সেভ ডেমোক্রেসি।
1: ममता बैनर्जी की तरह अरविंद केजरीवाल भी सीजेपी का समर्थन करने उतरे, लेकिन उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज समेत कई नेता प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें हिरासत में लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया।
5: बहुत गुस्से में है जो जो लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं, मैं पूरे देश के लोगों को, युवाओं को हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, हम सब लोगों को मिलके देश को बचाना होगा। आप जहां भी हैं देश में, अभी निकलिए अपने घर से, दिल्ली की तरफ कूच कीजिए, दिल्ली आइए, स्कूटर पे आइए, पैदल आइए, बस में आइए, हवाई जहाज में आइए, ट्रेन में आइए, जैसे आ सकते हैं आइए, दिल्ली की तरफ कूच कीजिए। जहां मोदी जी आपको रोके वहीं बैठ जाओ, उसी जगह को जंतर मंतर बना दो, पूरे देश को जंतर मंतर बना दो, लेकिन मोदी जी को वोट चोरी करने से रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये देश नहीं बचेगा।
1: अरविंद केजरीवाल ने पहले ही इस प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान कर दिया था। ममता और केजरीवाल के अलावा पुलिस ने केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन, त्रिपुरा के पूर्व सीएम माणिक सरकार और सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास को भी हिरासत में लिया। यूट्यूबर ध्रुव राठी को सुबह ही गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया था। आयसा अध्यक्ष नेहा बोरा को भी हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन से दूरी बनाकर रखी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चेन्नई में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से दक्षिण भारत में इस मामले को गरमाने में लगे हैं।
2: दिल्ली की तरह मुंबई में भी सीजेपी समर्थकों की तरफ से प्रदर्शन करने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया। तो चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने वहां पर उन्हें हिरासत में ले लिया।
6: मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में जिसने भी प्रदर्शन करने की कोशिश की, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसमें महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी भी शामिल।
7: नेशनल कॉलेज से उठाया, बैंड्रा पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, संत क्रूज पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, डीएन नगर ले आए। डीएन नगर में कुछ खास रिसेप्शन तैयार किया होगा, देखते रहिए। ये पुलिस की गुलामी की निशानी है, बेचारे वो भी क्या कर सके, सत्ता वालों के चाकर जो बन गए। एक दिन तख्ता पलट होगा, फिर हिसाब किया जाएगा।
6: तुषार गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद आदित्य ठाकरे अपने पार्टी नेताओं के साथ वहां पहुंचे।
8: जिस देश में गांधी जी को डिटेन किया जाता है और इतना डर है भाजपा के मन में कि जैसे ही हम यहाँ आने वाले थे उनको लेके गए बुरेवली, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इतना मन में डर क्यों है? भले वो गांधी जी के बारे में हो या हमारे बारे में हो या अभिजीत के बारे में हो या रत्ना या सौरभ या राहुल जी के बारे में हो। आपने ये भी देखा होगा राहुल जी जैसे ही चुनाव आयोग से मिलने गए कितनी बड़ी तादाद में फोर्स लगाई गई। ये सारी फोर्स जो बॉर्डर पे होनी चाहिए वो आप दिल्ली में लगा रहे हो, इतना डर क्यों है आपके मन में? किससे डरते हो आप? क्यों भय है इतना मन में?
6: मुंबई में अभिनेता और आमिर खान के भांजे इमरान खान भी सीजेपी के समर्थन में प्रदर्शन करने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया।
9: मेरा ये मानना है कि इस देश में और इस शहर में वी शुड ऑलवेज हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ऐसी भी क्या खतरा है? आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे पुलिस के लोग हैं।
10: दिल्ली में भी प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया गया, दिल्ली में भी डिटेन किया गया।
9: आई बिलीव दैट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू शो अप एंड शो दैट दैट वी आर नॉट अफ्रेड एंड दैट देयर इज एक्चुअली नो डेंजर एंड नो थ्रेट ओवर हियर। द ओनली थ्रेट इज फ्रॉम ऑल ऑफ दीस पीपल अटैकिंग विद स्टिक्स।
6: मुंबई में प्रदर्शन को देखते हुए सुबह से पुलिस ने तैयारी कर रखी थी। ड्रोन से प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने के इंतजाम भी देखे गए।
5: पुलिस को गाड़ी को रोकने का यहाँ पर भरसक कोशिश थी लेकिन प्रदर्शनकारी जो है वो तो देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी जो है वो सुन नहीं रहे हैं और पुलिस पे जो है वो झड़प है वो बढ़ती जा रही है। पुलिस डिटेन कर रही है लेकिन प्रदर्शनकारी जो है वो इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं। और ये जो साइट है इसे हेरिटेज साइट पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि हेरिटेज साइट है, यहाँ प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है। लेकिन जैसा कि देख सकते हैं पुरजोर विरोध जो है प्रदर्शनकारियों द्वारा किया जा रहा है और पुलिस जो है इन्हें डिटेन करने की भरपूर कोशिश कर रही है।
6: चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेता चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसके बाद मनीष सिसोदिया समेत कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
11: बस में किस तरह जो है आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को, लीडर्स को डिटेन किया जा रहा है भर भर। और मनीष सिसोदिया आप देख सकते हैं बस के अंदर बैठे हैं, मनीष सिसोदिया को बस के अंदर बिठाया गया है और यहां से हटाया गया है। सो अभी तक तो पुलिस जो है वो कामयाबी पुलिस को मिली है कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक नहीं जाने गया, लेकिन मनीष सिसोदिया आप देख सकते हैं कि विंडो में बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, रेड शर्ट में हैं और लगातार जो है यहां पर डिटेंशन जो अब हो रही है। और ये बस जो कि जो बस जिसमें आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और लीडर्स को भरा गया है उनको यहां से मूव करके लेके जाया जा रहा है। सो जब मेन लीडरशिप चाहे वो सोनिया मान हो, मनीष सिसोदिया हो, हरपाल चीमा हो और दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको यहां से मूव कराया जा रहा है।
6: दक्षिण में बेंगलुरु और चेन्नई में भी प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी सड़कों पर प्रदर्शनकारी निकले, जहां पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आईं।
2: बीजेपी की तरफ से भी विरोध का मोर्चा संभाला गया और दिल्ली में कांग्रेस सांसद पर छात्राओं से छेड़छाड़ तो लखनऊ में महिला पुलिसकर्मियों से राहुल प्रियंका की तरफ से की गई कथित बदसलूकी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा सड़कों पर निकल गया।
12: गणेश कुमार जी को पद्म भूषण से पुरस्कृत करना चाहिए।
13: मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर भले ही विपक्षी दल और सीजेपी प्रदर्शन कर रहे हों लेकिन बंगाल बीजेपी की तरफ से ज्ञानेश कुमार को हिंसा मुक्त चुनाव का श्रेय दिया जा रहा है जो 70 सालों में नहीं हुआ।
12: अरे ममता दीदी कलकत्ते में क्यों नहीं आए? हम लोग तो कलकत्ते में उसको बुला रहे हैं, इतना पूजा उसको इंतजार कर रहे हैं। अरे भैया कॉकरोच केकड़ा ये सब लेकर क्या होगा? ममता जी चले ये कलकत्ते में।
13: बीजेपी की तरफ से लखनऊ में महिला मोर्चा के प्रदर्शन की अब ये तस्वीर देखिए। बीजेपी ने ये प्रदर्शन राहुल गांधी के खिलाफ किया जिन पर दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मियों से बदसलूकी का आरोप है। इसे लेकर बीजेपी की तरफ से वीडियो भी जारी किए गए जिसमें प्रियंका गांधी एक महिला पुलिसकर्मी को कोहनी मारती दिखती है तो राहुल गांधी पर एक महिला पुलिसकर्मी को गलत तरीके से छूने का आरोप बीजेपी लगाती है।
14: लखनऊ में आज बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन है, कांग्रेस पार्टी कार्यालय घेराव करने का कार्यक्रम है और इस समय पर मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से ये महिला मोर्चा का प्रदर्शन शुरू हुआ है और तमाम महिलाएं और उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं।
15: खुद राहुल गांधी महिलाओं को ऐसे छू रहे, प्रियंका गांधी यूं कोनी मार रही है, तो हम इस सम्मान के लिए जा रहे हैं कि इस वर्दी का भी आप लोग को सम्मान करना सीखना चाहिए, वो आपके लिए खड़े 24/7।
13: बीजेपी महिला मोर्चा ने लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के पास और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना के आवास के पास लगे पोस्टर भी फाड़ दिए। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा ने एक अलग मुद्दे पर प्रदर्शन किया, मामला जेएनयू में प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर छात्राओं के यौन शोषण का है, जिसके बाद उन्हें जेएनयू से बर्खास्त कर दिया गया। अकोइजम कांग्रेस सांसद भी हैं, इसलिए कांग्रेस की चुप्पी पर बीजेपी ने उसे घेर लिया है।
16: राहुल गांधी महिला पुलिस महिला कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और एक व्यक्ति जिस पे आरोप साबित हो गया, जिसको यूनिवर्सिटी से हटाया गया है, पर वो फिर भी उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने उनके लिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने एक शब्द नहीं बोला है उनके लिए। क्या उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी उस व्यक्ति के साथ?
13: ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी को घेरने में राहुल समेत पूरा विपक्ष जुटा है, वहीं बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को निशाने पर लिया जा रहा है। भले ही मुद्दे अलग अलग हों, लेकिन दोनों के बीच बढ़ते टकराव ने बता दिया है कि सियासी पारा बढ़ा रहेगा।
2: और अब उत्तर प्रदेश चुनावों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, तो क्या अयोध्या से इस बार योगी बनाम अखिलेश के बीच में मुकाबला होगा? दरअसल अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी, सलाह दी थी, और उसके बाद योगी ने कह दिया कि हो जाए, अखिलेश चेलों को छोड़कर खुद अयोध्या से उतर जाए।
17: पीडीए का वास्तविक मतलब है प्रदेश डुबाऊ एलायंस।
18: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने पीडीए का मतलब समझाने के बाद वो बात कही जिसे नहले पर दहला कहा जा सकता है।
17: इस अराजकता को स्वीकार करने वाली नहीं, मैं तो आपको ऑफर करता हूं, आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से, चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं, तय हो जाए, आप भी आइए और मैं भी आता हूं। लड़ाई चेलों से क्यों? लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए और उसके लिए मैं कह रहा हूं आइए आप भी। इससे पहले संभव है
18: तो योगी ने अखिलेश को चैलेंज दिया है कि हिम्मत है तो लड़ाई आमने सामने लड़ो। योगी का यह बयान अखिलेश के अयोध्या से चुनाव लड़ने की सलाह के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री अगर अयोध्या को लेकर इतने ही आश्वस्त हैं तो अयोध्या से चुनाव लड़ जाएं।
19: अगर वो अयोध्या से इतने ही आश्वस्त हैं और जिन्होंने ये कहा हो कि पानी का दूध पानी का पानी हो जाएगा 15 दिन के अंदर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अगर वो इतने ही अयोध्या वासियों से अस्वस्थ है तो उन्हें यही फैसला लेना चाहिए, उनके बीच में अगला चुनाव लड़ना चाहिए। ये चुनौती नहीं है, ये सलाह है।
18: अखिलेश ने साफ कहा कि ये उनका चैलेंज नहीं, मुख्यमंत्री को सियासी सलाह है, लेकिन योगी ने इसे स्वीकार करके गेंद अखिलेश के पाले में फेंक दी कि अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाओ, पता चल जाएगा किसमें कितना दम है।
17: ये माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले पेशेवर अपराधियों के सामने उनकी मौत पर उनकी कब्र में जाकर के फातिया पड़ने वाले लोग, ये हम लोगों से क्या लड़ पाएंगे? इनकी हिम्मत नहीं है, ये पहले ही जनता इनकी छुट्टी कर चुकी है। एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी स्थिति इन लोगों की हो चुकी है।
18: योगी ने कहा कि आने वाले चुनाव में 80% सीटें एनडीए जीतेगा और 20% इंडिया गठबंधन, क्योंकि ये जनता ने तय कर लिया है।
17: जिस अयोध्या में जय श्री राम बोलने पर आपकी सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, जिस अयोध्या के सामने आपने केवल और केवल बैरियर खड़ा किए थे, आज वो अयोध्या एक बार फिर से राम राज्य के नए उदाहरण बनकर के त्रेता युग का स्मरण करा रही है।
18: योगी के इस सियासी हमले का अखिलेश ने तुरंत जवाब देते हुए लोकसभा चुनाव याद दिलाते हुए कहा कि इस बार जनता घमंड का सारा पानी उतार देगी। लोकसभा भूल गए क्या? उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार अखिलेश यादव की तरफ से लगातार खुद को बीजेपी के मुकाबले सनातन के मोर्चे पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को इसलिए अखिलेश की तरफ से लगातार उठाया जाता है। दावा किया जाता है कि बीजेपी को वहां से प्रत्याशी नहीं मिल रहा, लेकिन योगी ने अखिलेश के नहले पर दहला मारकर गेंद उनके पाले में डाल दी है।
17: क्या इससे पहले संभव था ये?
18: आज तक ब्यूरो
17: मोदी जी का विजन है।
2: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: बात सामान्य हो रहे हैं हालात, खुले गए सभी मेट्रो स्टेशन, आज खुलेंगे सभी बाजार, लेकिन सीजेपी ने आज फिर आंदोलन का किया ऐलान। सीजेपी के प्रदर्शन पर बीजेपी का ताबड़तोड़ हमला, कहा सड़कों पर अराजकता की साजिश, राहुल का बयान, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जारी रहेगी जंग। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मेट्रो स्टेशन बंद करने और लोगों को हिरासत में रखने के खिलाफ याचिका, सोमवार को बड़े मार्च की तैयारी में विपक्ष। चेन्नई में छात्रों के बीच राहुल की गूंज, कहा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं पीएम मोदी, तमिल भाषा और संस्कृति पर प्रधानमंत्री के हमले का जड़ा आरोप। अब सीएम योगी ने अखिलेश को दी चुनौती, कहा अयोध्या से चुनाव में हो जाए आमना सामना, अखिलेश का जवाब हमारा युवा पीडीए प्रहरी ही काफी। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन नहीं होने दिया और अब सरकार इसे अपनी सफलता मान सकती है। प्रदर्शनकारियों को ये अपनी कामयाबी लग सकती है कि उन्हें रोकने के लिए हजारों पुलिस वालों का जमावड़ा लगाना पड़ा, ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी, मेट्रो रोकनी पड़ी, बॉर्डर बंद करने पड़े, लेकिन सवाल यह है अब कि आगे क्या होगा।
1: दस अक्टूबर की तारीख पहले से तय थी। दिल्ली पुलिस को अंदाजा था कि हालात क्या हो सकते हैं, इसीलिए ट्रेनें रद्द की, जंतर मंतर के आसपास का इलाका छावनी बनाया, इंटरनेट बंद किया, मेट्रो स्टेशन भी बंद रहे और जो प्रदर्शनकारी जहां दिखा वहीं धरना। हंगामा तो हुआ, दौड़ भाग भी हुई, लेकिन प्रदर्शन नहीं हो पाया। दिल्ली पुलिस ने नेताओं को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा, सबको प्रदर्शन शुरू करने से पहले ही प्रिवेंटिव कस्टडी में भेज दिया। जिनकी कॉल पर इस प्रदर्शन का ऐलान किया गया था वो अभिजीत दीपके तो फ्लाइट के अंदर से ही पकड़ लिए गए। दोपहर में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी उतरी, लेकिन उन्हें भी हिरासत में लिया गया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कई दिनों से 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की कॉल